0: सर लेके कुछ बरामदगी दिखाई है, घर से मिला है?
1: कुछ नहीं मिला है सर, केवल कागजात मिला है वही लेकर गए हैं, आधार नंबर, खाता नंबर।
2: पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है। इनमें से करीब 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से मिलने की बात सामने आई है।
0: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये, अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी, ये हॉस्टल है। और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर दो कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर हैं, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहाँ लाया गया। और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए।
2: इस मामले में गिरफ्तार किए गए अनुकल्प मिश्रा पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। पुलिस के अनुसार वो नोटों की गिनती की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेन देन की भी पड़ताल की जा रही है। 2 साल पहले खरीदे गए उसके मकान पर भी आज तक की टीम पहुँची।
3: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, मेरी मुझ में ही है, वही से शादी हुई थी, चाचा की 10 साल से इनका टेस्ट चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
2: उधर राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर CCTV कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और BJP पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि CCTV बंद करके चोरी को अंजाम दिया गया, साथ ही ये भी कहा कि BJP की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है।
4: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
5: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है।
2: रामलला के चढ़ावे में गबन के इस मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बड़ी रकम बरामद होने का दावा किया गया है और आरोपियों से जुड़े आर्थिक पहलुओं की भी जांच की जा रही है। साथ ही मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ऐसे में सभी की नजर अब पुलिस जांच पर, आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
6: पुणे में कीर्तन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी जांच की है। आरोपी नंबर एक और कीर्तन की मंगेतर सिया को लेकर लोहगढ़ किले में लेकर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल की, लेकिन जहां से कीर्तन को धक्का दिया गया और किन परिस्थितियों में दिया गया, उस पूरे के पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया।
2: सिया ने कैसे चेतन के साथ मिलकर कीर्तन को मारा, कैसे उसने कत्ल के लिए लोहगढ़ का किला चुना, कैसे वो केतन को लेकर लोहगढ़ के किले तक पहुंची, कैसे उसने चेतन को कत्ल का इशारा किया, कैसे केतन चेतन और सिया की साजिश नहीं समझ पाया, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए ये कवायद हो रही है। जिसका चेहरा ढका हुआ है वो है सिया, और ये वही लोहगढ़ का किला है जहां सिया को लेकर पुलिस पहुंची है।

0: लोहगढ़ किले में 18 जून को जो कुछ हुआ था उसी को दोहराने की कोशिश आज पुणे पुलिस ने की है। पहाड़ी पर स्थित किले के उसी जगह पर पुलिस की पड़ताल चल रही है। ये तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन देश को सन्न कर देने वाली साजिश की तस्वीर साफ करने के लिए पुलिस ने यह अहम कदम उठाया है। इन धुंधली तस्वीरों में सिया गोयल है, पुणे पुलिस की टीम है और साथ में है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाले एक्सपर्ट। केतन अग्रवाल हत्याकांड की पड़ताल का ये अहम पड़ाव था। कई दिनों से माना जा रहा था कि पुणे पुलिस लोहगढ़ के किले में पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। तमाम कयासबाजी के बाद पुणे पुलिस की टीम सुबह 6:30 बजे ही लोहगढ़ किले में आज दस्तक दे दिया। पुलिस सिया को लेकर किले पहुंची। किला का गेट बंद कर दिया गया, पर्यटकों को रोक दिया गया, हर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सुबह 6:30 बजे सिया को लेकर पुलिस ने किले में चढ़ाई शुरू की। करीब घंटे भर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई। जांच दल के साथ चेतन की कदकाठी का एक डमी भी था। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सिया से कई सवाल किए। 18 जून को क्या क्या हुआ था, केतन और चेतन कहां थे, किसने धक्का दिया, कैसे तीनों यहां तक पहुंचे? ऐसे एक एक सवाल के जवाब पुलिस ने सिया से पूछे और उसके जवाबों के मुताबिक ही क्राइम सीन की बारीकी से जांच पड़ताल की। फिर जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया था पुलिस ने उस जगह से सिया के बयानों के हिसाब से क्राइम सीन रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उसी स्थान से डमी को नीचे धक्का देकर पूरी घटना को दोहराया जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था। इस प्रक्रिया का मकसद घटना के क्रम, हालात और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान करना था ताकि जांच को और मजबूत किया जा सके।
1: ये लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है, किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी उसको रिक्रिएट जा रहा किया गया है, उसमें एक्यूज ने बता दिया है।
0: केतन हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस आज के रिक्रिएशन को काफी अहम मान रही है।
2: सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ?
3: आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी जैसे हुआ था, वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया है।
2: दोनों आरोपियों को आप लेके आए थे?
3: सिया थी,
2: चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना अहम है क्योंकि जिस मतलब जहां से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना वो भी बाकी।
3: अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, वो सीन रिक्रिएशन हमने क्योंकि आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: इस जांच पड़ताल के बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि सिया और चेतन ने केतन को मारने का रिहर्सल भी किया था।
2: रिक्रिएशन वो सिर्फ सिया को लाए थे, अभी चेतन चौधरी का रिक्रिएशन होना बाकी है। लोहगढ़ किले के यहाँ हम बाहर खड़े हैं जहाँ थोड़ी देर पहले ही सीन रिक्रिएशन पूरा हुआ, फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद थी। सबसे अहम बात यह है कि सिया और चेतन ने दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है लेकिन आज पर्यटकों के लिए और जितने विजिटर्स हैं उन सभी के लिए इसे बंद किया गया था। लेकिन यही सीढ़ियां है, इसी सीढ़ियों से तीनों ऊपर गए थे, चेतन चौधरी गया था, उसके बाद सिया और केतन अग्रवाल भी गया था और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।
0: हालांकि ऐसे तमाम दावों पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, सभी तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है।
2: किसने किया था, चेतन ने किया था, फिजिया ने?
3: देखिए आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
2: देखो इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दोनों ने रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी कहीं ना कहीं और फिर आके इसे अंजाम दिया गया। तो क्या या ये अभी कह रही है कि वो प्रैक्टिस किस तरीके से हुई थी और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया,
3: वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आज का तो सीन रिक्रिएशन हो।
0: इस हत्याकांड में सिया और चेतन के सामने आए नए नए वीडियो और केतन के परिजनों के आरोपों के बाद ट्विस्ट और बढ़ गया है। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, लोहगढ़ आज तक।
4: फिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी से मना नहीं कर सकती थी? बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों को पच नहीं रहे। लिहाजा पुणे पुलिस सिया के साथ साथ उसके घर वालों से भी लगातार पूछताछ कर रही है।

0: सिया और केतन बस कुछ ही महीने बाद दोनों साथ फेरे लेने वाले थे। दोनों एक रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे, लेकिन 18 जून को एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। लोहगढ़ के किले में ठीक इसी जगह पर केतन करीब 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। उस घटना के 5 दिन बाद यानी 23 जून को सिया की गिरफ्तारी हो जाती है और वहां से तब तक हादसा लगने वाला मामला पूरी तरह से अलग ट्रैक पर चला जाता है। कत्ल का आरोप लगता है। आरोप ये कि सिया ने अपने मंगेतर को मार डाला। इस गुनाह में सिया का साथ दिया उसके दोस्त चेतन चौधरी ने। वही चेतन जिसका सिया के साथ कई वीडियो सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में दोनों क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते दिखे हैं और सबसे अहम तो ये कि सिया और चेतन ने केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को ही पुणे के कैफे में मुलाकात की थी। दोनों शाम करीब 4:30 बजे मिले थे। माना जा रहा है कि दोनों ने उसी कैफे में हत्या की फाइनल साजिश रची और उसे अंजाम देने पर करीब घंटे भर बात की थी। खुलासा ये भी हुआ है कि हत्या के पहले सिया ने लोहगढ़ किले का वीडियो यूट्यूब पर सर्च किया था और वहां के लोकेशन को कैफे में मुलाकात के दौरान चेतन के साथ साझा किया था। बात यहीं तक नहीं रुकी। सिया का बड़ा भाई साहिल गोयल भी चेतन को जानता था। दोनों ने साथ साथ क्रिकेट खेले थे। उससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है।
1: इस मामले में जो भी लोग जुड़े हुए उन सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं।
2: कल साहिल से जो है 10 घंटे तक पूछताछ की गई है, लेकिन जो चेतन था और साहिल है, इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई और कहां से शुरू हो गई, कहां से मुलाकात हुई और उनके बीच बातचीत शुरू हो गई थी?
1: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे।
2: और इसी क्रिकेट ग्राउंड में सिया भी आती थी और उसकी वजह से जो है चेतन और सिया एक दूसरे को पहचानने लगे थे।
1: यह अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम हर तरीके से ये जारी है, उस हिसाब से हम आगे बताएंगे।
0: चेतन के साथ तमाम वीडियो और कनेक्शन सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। सिया के परिजनों को रडार पर लिया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। 27 जून को पुलिस ने सिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों से करीब 12 घंटे तक सवाल जवाब किए। पुलिस ने परिवार से कई अहम सवाल पूछे जिनके जवाब अब जांच का अहम हिस्सा बन गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से पुलिस ने पूछा कि क्या सिया ने आपको चेतन के साथ अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया था, क्या आपको इसकी जानकारी थी? परिजनों ने जवाब दिया कि सिया ने हमें अपने प्रेम संबंध के बारे में कभी नहीं बताया था, हमें इसकी जानकारी अब हुई है। पुलिस ने पूछा कि क्या आपने सिया पर केतन के साथ शादी करने का दबाव बनाया था, तो उन्होंने कहा कि हमने सिया पर शादी के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला था। 27 जून को हुई पूछताछ के दौरान अपने माता पिता के साथ सिया का भाई साहिल भी मौजूद था। साहिल से 26 जून को ही पुलिस ने केतन हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब किए थे। शुक्रवार को साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में जांच से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थी। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने आज सिर्फ सिया का सीन रिक्रिएट किया, अभी चेतन का सीन भी रिक्रिएट किया जा सकता है। जानकारी जुटाई जाएगी कि इतने बड़े अपराध को इन दोनों ने इतना सरल कैसे समझ लिया, कैसे इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि केतन को मार डालना विकल्प नहीं था, कैसे ये नहीं समझ पाए कि केतन के कत्ल के बाद इनका अंजाम क्या होगा। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार भावले, लोहगढ़, पुणे, आज तक।
3: केतन अग्रवाल का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उसके माता पिता की मांग पर फडणवीस सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करने की मांग उठा ली है। उज्जवल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया, लेकिन इंसाफ की यह लड़ाई अभी लंबे चलने वाली है।
4: किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था।
0: केतन अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसकी यादें हैं। उसकी यादों में आंसू हैं, गम है, गुस्सा है। नाराजगी सिर्फ अग्रवाल परिवार में ही नहीं है, पुणे शहर में हर कोई सवाल हत्याकांड को लेकर उठा रहा है और कह रहा है कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
4: केतन की चाची लगती हूँ और सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। वो मुझे इतना ट्रस्ट था वो लड़की पे, उसने जो किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए और इसके आगे उसके एज की या फिर कोई भी एज की लड़की ये सब चीजें करने से पहले 100 बार डरनी चाहिए। ऐसा जस्टिस मिलना चाहिए हमारे केतन को। दिस इज ओनली ऑल आई वॉन्ट।
5: अब चाहती हो किशन की बचपन से उसे देखा होगा, कुछ यादें साझा करना चाहिए।
4: सेकंड स्टैंडर्ड से ही देख रही हूँ मैं वो बच्चे को, इतना मासूम, इतना प्यारा लड़का। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि उसका मतलब रिश्ता पक्का हो गया, बट वो लड़की ने जो किया दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और जो स्टूपिड रीजंस उसने दिए है कि बाल्ड है और तोतला बोलता है, वो सब बातें तो जब रिश्ता पक्का हुआ था तो वो सब क्लियर हो गई थी। और वो ये सब हरकतें कर रही है, ये सब झूठ बोल रही है। दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एवरीबडी इन द फैमिली।
0: केतन के पिता विशाल अग्रवाल अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे के इंसाफ के लिए 18 जून को जो लोग लोहगढ़ किले में मौजूद थे वो गवाही के लिए आगे आएं। विशाल अग्रवाल बता रहे हैं कि वारदात वाले दिन कई लोगों ने उन्हें फोन किया था।
6: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
0: अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को पता लगाना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारी सामने आ सकती है। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर की प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई। जांच ने तब नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की अब फोरेंसिक एनालिसिस के जरिए जाँच की जा रही है। शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई बल्कि उसे अपने डिवाइस के रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फोरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई है।
1: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम एफएसएल में वो क्यूरी वो पूछेंगे।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच लगातार संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। ऐसे में मोबाइल की जांच से कई राज सामने आ सकते हैं। वैसे सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था। केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
7: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का दे के उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
0: पहले चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो वारदात के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। जब पुलिस ने सख्ती बरती तो सिया और चेतन ने अपने अपराध स्वीकार कर लिया। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। हालांकि इस थ्योरी को पुलिस खारिज कर रही है।
1: अभी जो है इन्वेस्टिगेशन का जो मोटिव है वो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम जो भी कंक्लूजन पे आएंगे तो अब हम बताएंगे।
2: जो विग का मामला बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है?
1: अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमें ये मामला अभी तक आपसे ही अभी पता चल रहा है।
0: सवाल कई हैं, ऐसे में पूरी संभावना है कि सच तक पहुंचने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कृष्णा पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
3: अब खबर मुहर्रम जुलूस से जुड़े हुए हैं। मुंबई में जुलूस के दौरान एक खौफनाक मामला सामने आया। एक आरोपी द्वारा जहरीले पदार्थ को पेन किलर बताकर बांटने की कोशिश की गई। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और अब एक्शन लिया जा रहा है।
9: मुंबई में मुहर्रम पर बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन मुहर्रम के जुलूस से ठीक पहले उस साजिश का खुलासा हो गया। एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर मुंबई सहम गई है, पूरा महाराष्ट्र भी सहमा है और देश भी हैरान है। ये साजिश थी हजारों लोगों की जान लेने की, जहर देकर उन्हें मारने की। मुंबई में मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों को वो जहरीला कैप्सूल बांटा जा रहा था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इस बड़ी और खौफनाक साजिश का राज फाश कर दिया। एक आरोपी फैयाज प्रेमजी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे 14,900 कैप्सूल बरामद किए। जांच में सामने आया है कि आरोपी फैयाज बीबीए कर चुका है और वो पुणे में पेंट का बिजनेस करता है। उसने 30,000 खाली कैप्सूल के ऑन ऑर्डर किए थे, साथ ही 50 किलो फास्फोरस भी मंगवाए थे।
10: एक संशयित व्यक्ति मुंबई पुलिस की टीम को मिला जो कि वहाँ पे कैप्सूल बांट रहा था। उसके पास कोई परमिशन नहीं थी, तो मुंबई पुलिस ने उसको टोक के पूछताछ शुरू करी तो और डाउट बढ़ा। तो उसके बाद उसके पास से जितनी भी कैप्सूल्स का जो स्टॉक था वो जब्त किया गया।
9: पुलिस की माने तो गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कबूला कि वो पेन किलर कैप्सूल बताकर मुहर्रम के जुलूस में उसे बांट रहा था। आरोपी से जो कैप्सूल बरामद हुए उसमें जिंक फॉस्फाइड पाया गया। गिरफ्तार फैयाज प्रेमजी ने कई लोगों को उसने कैप्सूल दिए थे। कैप्सूल खाने से एक युवक की तबीयत भी बिगड़ी। जिंक फॉस्फाइड ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से तेज उल्टी और पेट में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना और बेहोशी, ब्लड प्रेशर तेजी से गिरना, दिल की धड़कन अनियमित होना, लीवर और किडनी फेल होने का खतरा रहता है। पुलिस अब जांच में जुटी है कि कहीं इस वारदात का आतंकी कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि आरोपी फैयाज पहले ईरान और इराक जा चुका है। आरोपी के विदेशी संपर्कों की पड़ताल भी जारी है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
3: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से एक भयानक हादसे की तस्वीर सामने है, जिसमें एक शख्स की जान चले गए। कुछ दोस्त मौसम का मजा लेते हुए पूल पार्टी कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि यह जश्न मातम में बदल गया।
0: इन तस्वीरों को देखकर पहली नजर में यही लगेगा कि कुछ दोस्त मौसम का मजा ले रहे हैं। ये शानदार म्यूजिक में पूल पार्टी कर रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं और गाने की धुन पर थिरक रख रहे हैं। इन्हीं दोस्तों में से एक ये शख्स यहाँ ऊंचाई से सिर के बल पूल में छलांग लगाता है, बाकी के दोस्त इस छलांग पर जश्न मनाते हैं। ये आदमी पानी में सिर के बल कूदा, अब तक इसके दोस्तों को नहीं पता कि कितना बड़ा हादसा हो गया। ये अभी भी नाच रहे हैं, लेकिन पानी में कूदने के बाद ये शख्स पानी से बाहर नहीं आया, बल्कि इसका शव उतराने लगा। तस्वीरें सिंधुदुर्ग के मालवण के वायरी में मालवणी पाहुण चार रिसोर्ट की हैं। दरअसल ये पूल 4 फीट गहरा था और ऊंचाई से छलांग लगाने की वजह से इस शख्स का सिर पूल के फ्लोर से टकराया और इसकी जान चली गई। मृतक का नाम श्रेणिक मिलिंद ताकले है, ये कोल्हापुर का रहने वाला था। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि हादसे बता के नहीं होते। किसे पता था कि चंद मिनट पहले जो दोस्त एंजॉय कर रहे थे, चंद मिनट में ही एक हादसे ने जश्न को मातम में बदल दिया। भरत केसरकर, सिंधुदुर्ग आज तक।
3: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राम मंदिर चंदा गबन मामले में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ी, छापेमारी में जेवरात, जमीन के पेपर बरामद, आज कोर्ट में पेशी, वकीलों का केस लड़ने से इनकार। बंगाल विधानसभा में आज शुभेंदु सरकार पेश करेगी यूसीसी सहित 5 अहम विधेयक, बीजेपी ने कहा ऐतिहासिक होगा आज का दिन, टीएमसी के बागी विधायकों के रुख पर होगी नजर। पंजाब में आज अकाल तख्त के सामने पेश होंगे आपके सभी विधायक और मंत्री, बेअदबी कानून पर मांगा गया है जवाब, भगवंत मान ने की पुष्टि, वायरल वीडियो पर खुद को बताया निर्दोष। सेशल्स की संसद में गूंजा नमो मंत्र, संबोधन में पीएम मोदी ने कहा हिंद महासागर हमें बांटता नहीं जोड़ता है, प्रधानमंत्री को मिला पर्यावरण संरक्षण पर खास सम्मान। आयरलैंड से दूसरे T20 में भी शिकस्त के बाद 0-2 से सीरीज हारा वर्ल्ड चैंपियन भारत, 155 रन के लक्ष्य से 1 रन पीछे रह गई टीम इंडिया।

0: साथ में हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर, लेकिन शुरुआत करेंगे देश की आर्थिक राजधानी से, खबरें जहां मुंबई में देर रात भारी बारिश हो रही है, तमाम इलाके पानी पानी हो गए हैं। अंधेरी सबवे, हाँ सबसे मशहूर वो अंधेरी सबवे, इतना पानी भर गया है कि वो फिर से पूरी तरह से बंद हो गया है। शहर के निचले इलाकों में कई जगहों पर भारी जलभराव की तस्वीरें आ रही हैं। मूसलाधार बारिश के बीच रात करीब 2:45 बजे अंधेरी सबवे में ट्रैफिक बंद करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से जारी उमस और गर्मी के बाद बारिश ने तो राहत दे दी, लेकिन सड़कों पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज सप्ताह का पहला दिन है और दिन में भी अगर यही हाल रहा तो अगर आप काम पर निकलना चाहते हैं तो परेशानी हो सकती है, यानी बस का यातायात ठप पड़ सकता है, रेल यातायात ठप पड़ सकता है। हालांकि तस्वीरें मुंबई के अलग अलग इलाकों से आ रही है जहां पर जल जमाव देखने को मिला है, और बीती रात से मानसून ने एक सप्ताह पहले ही मुंबई में दस्तक दी है, और जिस दिन दस्तक दी उसी दिन रेड अलर्ट जारी हुआ। अब देखिए, देर से सही मानसून ने लगभग 15 से 20 दिन की देरी की है मुंबई पहुंचने में, और अब उसके बाद झमाझम बारिश हो रही है। मुंबई के निचले इलाकों में हमेशा की तरह, हर साल की तरह जल जमाव। रात लगभग 2:45 बजे से अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरह का हादसा ना होने पाए। ये देखिए, अंधेरी सबवे बंद हुआ और घुटनों तक पानी आपको नजर आ रहा है कई सारे रिहायशी इलाकों के बाहर। तो सड़कों पर जल जमाव के चलते जो ट्रैफिक है वो बेहद नैरो चोक पॉइंट से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुंबई की तस्वीरें, देश की आर्थिक राजधानी, हर साल कुछ घंटों की बरसात और उसके बाद डूबती है मुंबई, इस बार फिर डूब रही है। हालांकि एहतियात के तौर पर निचले इलाकों में जहां पर कोई हादसा ना हो इसके लिए उसे एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। हमारे सहयोगी एजाज खान हमारे साथ फोन लाइन पर है। एजाज, रात से तो बारिश हो रही है, राहत मिल गई है, अभी बारिश रुक गई है, मतलब मुंबई वापस पटरी पर लौट पाएगी अगले कुछ घंटों में?
1: जी देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि काफी देर तक रात में रात भर बारिश होती रही है मुंबई के अलग अलग जगहों में, चाहे अगर हम कुर्ला की बात करें, साइन की बात करें, अंधेरी, यानी कह सकते हैं पूरे मुंबई में है रात भर बारिश हुई है। लेकिन अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह से फिलहाल बारिश रुकी हुई है, हालांकि रात में करीब 1:30 से 2:45 बजे के करीब जो है अंधेरी सबवे जो है वो पूरी तरह भर गया था, जिसके बाद एहतियात के तौर पर वहां पर जो मुंबई पुलिस के वो जवान वहां पर रुके थे और अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया था। क्योंकि जब भी बारिश होती है और सबसे पहले अगर हम बात करें तो अंधेरी सबवे भर जाता है, और अंधेरी सबवे से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने वाले हजारों लोग होते हैं जो इस जो रास्ते का यूज करते हैं आर पार जाने के लिए। लेकिन जिस तरह पानी भरा था उसके बाद एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया था, लेकिन क्योंकि सुबह से अर्ली मॉर्निंग से जो है बारिश बंद है तो अभी जो है अंधेरी सबवे को फिर से खोल दिया गया है, जिसके बाद वहां पर जो है आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मुंबई के अलग अलग जोन में भी बारिश हुई थी, लेकिन कहीं पे भी अभी जल जमाव की खबर नहीं है और जो पटरी है वो सही से चल रही है मुंबई की। जी
0: हम कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ अलग अलग इलाकों में मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है। किन किन इलाकों में एहतियात के तौर पर सड़कों को बंद करना पड़ा है? दूसरा, क्या रेल और बस यातायात फिलहाल सुचारू है?
1: ये देखिए, चूंकि बारिश रुकी हुई है इसलिए रेल भी समय से चल रही है और बस जो यातायात है वो भी सही समय से चल रही है। क्योंकि देर रात में बारिश हुई थी जिसका सबसे ज्यादा असर जो है अंधेरी सबवे पे हुआ था, जो पूरी तरह भर गया था। इसके अलावा गोरेगांव ईस्ट बीच की भी बात करें तो गोरेगांव ईस्ट में भी काफी तेज बारिश हुई थी। जो निचला इलाका है खासकर कुर्ला, चेंबूर, घाटकोपर, साइन, इन सभी जगहों में भी काफी तेज बारिश हुई थी, लेकिन जब वो हल्का फल्का हुआ था क्योंकि बारिश रुकते ही फिर वो सभी पानी निकल गया था। तो अभी मुंबई में जो है सुचारू रूप से अगर हम ट्रेन की बात करें या फिर बस की बात करें वो चल रही है, तो पूरी तरह से नॉर्मल है। क्योंकि बारिश रुकी हुई है तो इसलिए जो अमूमन जो जिंदगी चल रही है मुंबईकरों की वो नॉर्मल सी चल रही है। क्योंकि मॉर्निंग का आज हफ्ते का पहला दिन है, सुबह से रात से ये लग रहा था कि अगर मुंबई में तेज बारिश होती है तो कहीं ना कहीं मुंबईकरों को काफी परेशानी हो सकती है, लेकिन चूंकि बारिश रुकी हुई है इसलिए पानी भी कहीं पर नहीं जमा हुआ है।
0: ठीक है, उम्मीद ये कर सकते हैं मुंबई की रफ्तार पर कभी ब्रेक न लगे। हालांकि आंधी पानी तूफान कभी मुंबई का रास्ता रोक नहीं पाई है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं मुंबई के अलग अलग इलाकों में। लेकिन अब खबर अयोध्या से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें 8 लोगों के नाम हैं जिनमें से पुलिस 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था। इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने संकेत दिया है कि वे आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे, यानी उनकी ओर से वकील के रूप में वो नहीं खड़े होंगे। इस मामले में बार एसोसिएशन की आज एक आम सभा होने वाली है जिसमें ये अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी वकील जब अदालत में जाएंगे तो उनकी ओर से वकील खड़े होते हैं। अब बार काउंसिल जो है फैजाबाद की, उसने कहा कि हम नहीं करेंगे, हम इनकी वकालत नहीं करेंगे। उधर आरोपियों के घर छापेमारी में अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे घटनाक्रम की, वहां पर छापेमारी हुई है। अब सूत्र ये कह रहे हैं कि कुछ आरोपियों के घर से पुलिस को जेवरात मिले हैं, प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराया जाए। आपको याद रहे ट्रस्ट में बहुत सारे लोग हैं, पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक सिर्फ छोटी छोटी मछलियों की हुई है और उन्हीं की गिरफ्तारी हुई है, वो सीधा जेल चले गए। अब ये देखना होगा कि जैसे पुलिस बाकी के मामलों में रिमांड लेती है, पूछताछ करती है, यहां तो सीधे जेल चले गए, आज क्या होगा। उधर अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे में चोरी का मामला भी लगातार गहरा रहा है। जांच के दायरे में अब सिर्फ आरोपी ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े लोग, उनकी आर्थिक गतिविधियां भी आ रही हैं। अयोध्या पुलिस ने इस मामले में नामजद आरोपियों के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से पूछताछ की, उनके संपर्क गतिविधियों की जानकारी जुटाई।

0: रामलला के चढ़ावे से चोरी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद जहां राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों के इस्तीफे सामने आए, वहीं अब पुलिस भी कार्रवाई तेज करती नजर आ रही है। अयोध्या पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। मैं इस समय पर अयोध्या में ही रह रहे रमाशंकर मिश्रा, जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। उनके परिजनों से, उसकी भाभी, बहन, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा का घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे और इनको जुडिशियल कस्टडी में सोमवार तक के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अब कल सोमवार को दोबारा जुडिशियल कस्टडी पर सुनवाई होनी है। उससे पहले पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, इन सभी जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कब आते थे, कैसे आते थे, क्या क्या खरीदा गया।
0: अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घरों पर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने आरोपियों के घर आने जाने, उनके संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई। आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या के एक मंदिर में पुजारी हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की
2: जांच के लिए, और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो हैं, तो हम बताए कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, दो ढाई साल से यहाँ रहते नहीं हैं, आना जाना भी यहाँ का नहीं है, एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पाँव नहीं रखते हैं।
1: कब से नहीं आया?
2: दो ढाई साल हो गए यहाँ नहीं आया। हाँ, दो साल।
1: तो राम मंदिर में कब से काम कर रहा था, क्या काम करता था रमाशंकर?
2: पाँच छह साल हो गए, तब वहाँ पैसा गाने में बताओ था गाना कर्मचारी।
1: अच्छा, हाँ। अभी पैसा वैसा ज्यादा देखा आपने रमाशंकर के पास? बहुत
2: कभी नहीं, पैसा तो मांगा था, तो पैसा पाई नहीं है? पैसा मांग लेता है कि दे दे, कहीं जरूरत लगे।
1: पुलिस तो कह रही है कि सब मिलके 80 लाख रुपया चोरी कर लिए चढ़ावे से।
2: कुछ छोड़िए कि नया पैसा यहाँ कहूँ देखे ना आया हुआ।
0: रमाशंकर मिश्रा के परिजनों का कहना है कि वो लंबे समय से घर नहीं आया है और किराए के मकान में रह रहा था।
3: हमको ना वो करे हैं ना हमको दिया है, कभी हमसे उनसे बनता ही नहीं था, कभी वो 10 रुपया हमको दिए ही नहीं थे। मुझको मेरे पति का सहारा है, बस कोई का सहारा नहीं है।
1: तो यहाँ रमाशंकर के बारे में और क्या, घर से कुछ पैसा वैसा ले गए, कुछ बरामदगी दिखाई है, घर से मिला है?
3: कुछ नहीं मिला है सर, केवल कागजात मिला है, वही लेकर गए हैं, आधार नंबर, खाता नंबर।
0: पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है। इनमें से करीब 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से मिलने की बात सामने आई है।
1: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये, अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर दो कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर हैं, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज, जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है, कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए।
0: इस मामले में गिरफ्तार किए गए अनुकल्प मिश्रा पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। पुलिस के अनुसार वो नोटों की गिनती की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है। दो साल पहले खरीदे गए उसके मकान पर भी आज तक की टीम पहुंची।
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, मेरी मुझ में ही है, मुझसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, इनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर सीसीटीवी कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीटीवी बंद करके चोरी को अंजाम दिया गया, साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है।
5: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
6: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है।
0: रामलला के चढ़ावे में गबन के इस मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बड़ी रकम बरामद होने का दावा किया गया है और आरोपियों से जुड़े आर्थिक पहलुओं की भी जांच की जा रही है। साथ ही मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ऐसे में सभी की नज़र अब पुलिस जाँच पर, आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
7: एक जांच अयोध्या में हो रही है, दूसरी जांच महाराष्ट्र में हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी जांच की है। आरोपी नंबर एक और केतन की मंगेतर सिया को पुलिस लोहागढ़ किले लेकर गई, उस जगह भी पहुंची जांच पड़ताल की जहां से केतन को धक्का दिया गया, जहां से उसकी मौत हुई। पुलिस ने सीन को रिक्रिएट किया और इस पूरे घटनाक्रम की जांच में ये एक अहम मोड़ बन गया।
0: ने कैसे चेतन के साथ मिलकर केतन को मारा, कैसे उसने कत्ल के लिए लोहगढ़ का किला चुना, कैसे वो केतन को लेकर लोहगढ़ के किले तक पहुंची, कैसे उसने चेतन को कत्ल का इशारा किया, कैसे केतन चेतन और सिया की साजिश नहीं समझ पाया, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए ये कवायद हो रही है। जिसका चेहरा ढका हुआ है वो है सिया, और ये वही लोहगढ़ का किला है जहां सिया को लेकर पुलिस पहुंची है।

0: लोहगढ़ किले में 18 जून को जो कुछ हुआ था उसी को दोहराने की कोशिश आज पुणे पुलिस ने की है। पहाड़ी पर स्थित किले के उसी जगह पर पुलिस की पड़ताल चल रही है। ये तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन देश को सन्न कर देने वाली साजिश की तस्वीर साफ करने के लिए पुलिस ने यह अहम कदम उठाया है। इन धुंधली तस्वीरों में सिया गोयल है, पुणे पुलिस की टीम है और साथ में है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाले एक्सपर्ट। केतन अग्रवाल हत्याकांड की पड़ताल का ये अहम पड़ाव था। कई दिनों से माना जा रहा था कि पुणे पुलिस लोहगढ़ के किले में पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। तमाम कयासबाजी के बाद पुणे पुलिस की टीम सुबह 6:30 बजे ही लोहगढ़ किले में आज दस्तक दे दिया। पुलिस सिया को लेकर किले पहुंची। किला का गेट बंद कर दिया गया, पर्यटकों को रोक दिया गया, हर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सुबह 6:30 बजे सिया को लेकर पुलिस ने किले में चढ़ाई शुरू की। करीब घंटे भर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई। जांच दल के साथ चेतन की कदकाठी का एक डमी भी था। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सिया से कई सवाल किए। 18 जून को क्या क्या हुआ था, केतन और चेतन कहां थे, किसने धक्का दिया, कैसे तीनों यहां तक पहुंचे? ऐसे एक एक सवाल के जवाब पुलिस ने सिया से पूछे और उसके जवाबों के मुताबिक ही क्राइम सीन की बारीकी से जांच पड़ताल की। फिर जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया था पुलिस ने उस जगह से सिया के बयानों के हिसाब से क्राइम सीन रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उसी स्थान से डमी को नीचे धक्का देकर पूरी घटना को दोहराया जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था। इस प्रक्रिया का मकसद घटना के क्रम, हालात और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान करना था ताकि जांच को और मजबूत किया जा सके।
1: ये लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है, किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी उसको रिक्रिएट जा रहा किया गया है, उसमें एक्यूज ने बता दिया है।
0: केतन हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस आज के रिक्रिएशन को काफी अहम मान रही है।
2: सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ?
3: आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी जैसे हुआ था, वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया है।
2: दोनों आरोपियों को आप लेके आए थे?
3: सिया थी,
2: चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना अहम है क्योंकि जिस मतलब जहां से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना वो भी बाकी।
3: अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, वो सीन रिक्रिएशन हमने क्योंकि आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया। उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: इस जांच पड़ताल के बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि सिया और चेतन ने केतन को मारने का रिहर्सल भी किया था।
2: रिक्रिएशन वो सिर्फ सिया को लाए थे, अभी चेतन चौधरी का रिक्रिएशन होना बाकी है। लोहगढ़ किले के यहाँ हम बाहर खड़े हैं जहाँ थोड़ी देर पहले ही सीन रिक्रिएशन पूरा हुआ, फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद थी। सबसे अहम बात यह है कि सिया और चेतन ने दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है लेकिन आज पर्यटकों के लिए और जितने विजिटर्स हैं उन सभी के लिए इसे बंद किया गया था। लेकिन यही सीढ़ियां हैं, इसी सीढ़ियों से तीनों ऊपर गए थे, चेतन चौधरी गया था, उसके बाद सिया और केतन अग्रवाल भी गया था और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।
0: हालांकि ऐसे तमाम दावों पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, सभी तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है।
2: किसने किया था, चेतन ने किया था, फिजिया ने?
3: देखिए आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
2: देखो इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दोनों ने रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी कहीं ना कहीं और फिर आके इसे अंजाम दिया गया। तो क्या या ये अभी वो कह रही है कि वो प्रैक्टिस किस तरीके से हुई थी और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया,
3: वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आज का तो सीन रिक्रिएशन होगा।
0: इस हत्याकांड में सिया और चेतन के सामने आए नए नए वीडियो और केतन के परिजनों के आरोपों के बाद ट्विस्ट और बढ़ गया है। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, लोहगढ़ आज तक।
4: आखिरकार सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी के लिए मना नहीं कर सकती थी? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो किसी को हजम ही नहीं हो रहे हैं। लिहाजा पुणे पुलिस सिया के साथ उसके घर वालों से लगातार पूछताछ कर रही है। एक दिन पहले पुलिस ने उसके माता पिता से करीब 12 घंटे की मैराथन पूछताछ की, तो भाई से भी 2 दिनों तक सवाल जवाब किए हैं।

0: प्रिया और केतन बस कुछ ही महीने बाद दोनों साथ फेरे लेने वाले थे, दोनों एक रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे, लेकिन 18 जून को एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। लोहगढ़ के किले में ठीक किसी जगह पर केतन करीब 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। उस घटना के 5 दिन बाद यानी 23 जून को सिया की गिरफ्तारी हो जाती है और वहां से तब तक हादसा लगने वाला मामला पूरी तरह से अलग ट्रैक पर चला जाता है। कत्ल का आरोप लगता है, आरोप ये कि सिया ने अपने मंगेतर को मार डाला। इस गुनाह में सिया का साथ दिया उसके दोस्त चेतन चौधरी ने, वही चेतन जिसका सिया के साथ कई वीडियो सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में दोनों क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते दिखे हैं और सबसे अहम तो ये कि सिया और चेतन ने केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को ही पुणे के कैफे में मुलाकात की थी। दोनों शाम करीब 4:30 बजे मिले थे। माना जा रहा है कि दोनों ने उसी कैफे में हत्या की फाइनल साजिश रची और उसे अंजाम देने पर करीब घंटे भर बात की थी। खुलासा ये भी हुआ है कि हत्या के पहले सिया ने लोहगढ़ किले का वीडियो यूट्यूब पर सर्च किया था और वहां के लोकेशन को कैफे में मुलाकात के दौरान चेतन के साथ साझा किया था। बात यहीं तक नहीं रुकी, सिया का बड़ा भाई साहिल गोयल भी चेतन को जानता था, दोनों ने साथ साथ क्रिकेट खेले थे, उससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है।
1: इस मामले में जो भी लोग जुड़े हुए उन सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं।
2: कल साहिल से जो है 10 घंटे तक पूछताछ की गई है, लेकिन जो चेतन था और साहिल है, इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई और कहां से शुरू हो गई, कहां से मुलाकात हुई और उनके बीच बातचीत शुरू हो गई थी?
1: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे और साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे
2: और इसी क्रिकेट ग्राउंड में सिया भी आती थी और उसकी वजह से जो है चेतन और सिया एक दूसरे को पहचानने लगे थे।
1: यह भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम हर तरीके से ये जारी है, उस हिसाब से हम आगे बताएंगे।
0: चेतन के साथ तमाम वीडियो और कनेक्शन सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया, सिया के परिजनों को रडार पर लिया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। 27 जून को पुलिस ने सिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया, दोनों से करीब 12 घंटे तक सवाल जवाब किए। पुलिस ने परिवार से कई अहम सवाल पूछे जिनके जवाब अब जांच का अहम हिस्सा बन गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से पुलिस ने पूछा कि क्या सिया ने आपको चेतन के साथ अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया था, क्या आपको इसकी जानकारी थी? परिजनों ने जवाब दिया कि सिया ने हमें अपने प्रेम संबंध के बारे में कभी नहीं बताया था, हमें इसकी जानकारी अब हुई है। पुलिस ने पूछा कि क्या आपने सिया पर केतन के साथ शादी करने का दबाव बनाया था, तो उन्होंने कहा कि हमने सिया पर शादी के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला था। 27 जून को हुई पूछताछ के दौरान अपने माता पिता के साथ सिया का भाई साहिल भी मौजूद था। साहिल से 26 जून को ही पुलिस ने केतन हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब किए थे। शुक्रवार को साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में जांच से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थी। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने आज सिर्फ सिया का सीन रिक्रिएट किया, अभी चेतन का सीन भी रिक्रिएट किया जा सकता है। जानकारी जुटाई जाएगी कि इतने बड़े अपराध को इन दोनों ने इतना सरल कैसे समझ लिया, कैसे इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि केतन को मार डालना विकल्प नहीं था, कैसे ये नहीं समझ पाए कि केतन के कत्ल के बाद इनका अंजाम क्या होगा। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार भावले, लोहगढ़, पुणे, आज तक।
3: वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबर जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
5: क्या मां मंत्र का

0: कामना पूरी की जा सकती है? क्या मंत्र केवल दो अक्षर के होते हैं? क्या मंत्र जप करने में सावधानियों की आवश्यकता भी होती है? क्या है मंत्रों का रहस्य और इनका विज्ञान? जानिए मेरे साथ सिर्फ।
1: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet match every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
2: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: क्या मंत्र का जप करने से कोई भी कामना पूरी की जा सकती है? क्या मंत्र केवल दो अक्षर के होते हैं? क्या मंत्र जप करने में सावधानियों की आवश्यकता भी होती है? क्या है मंत्रों का रहस्य और इनका विज्ञान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।
3: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
4: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
3: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

राम मंदिर के चंदा गबन मामले में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ी। छापेमारी में जेवरात, जमीन के पेपर बरामद। आज कोर्ट में पेशी, वकीलों का केस लड़ने से इनकार। बंगाल विधानसभा में शुभेंदु सरकार पेश करेगी यूसीसी सहित 5 अहम विधेयक। बीजेपी ने कहा ऐतिहासिक होगा आज का दिन। टीएमसी के बागी विधायकों का रुख पर हो गई नजर। पंजाब में आज अकाल तख्त के सामने पेश होंगे आपके सभी सिख विधायक और मंत्री। बेअदबी कानून पर मांगा गया है जवाब। भगवंत मान ने की पुष्टि, वायरल वीडियो पर खुद को निर्दोष बताया। सेशल्स की संसद में गूंजा नमो मंत्र। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा हिंद महासागर हमें बांटता नहीं, जोड़ता है। प्रधानमंत्री को मिला पर्यावरण संरक्षण पर खास सम्मान। और मूसलाधार बारिश में फिर डूबी मुंबई। निचले इलाकों में भरा पानी, अंधेरी सबवे में ट्रैफिक पूरी तरह से बंद।

आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं आशुतोष मिश्रा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में इन दिनों कुदरत का कहर बरप रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद राज्य के कई हिस्सों में अचानक आई बाढ़, भीषण भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। जानकारी के अनुसार राज्य के करीब 9 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों के टूटने, पुलों के दरकने से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। पूरे राज्य में गंभीर स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मलबे उफनती नदियों के बीच मुस्तैदी से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भी भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले दिनों में चुनौतियां और बढ़ने की संभावना तेज हो गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में, खासकर अरुणाचल और सिक्किम में लगातार भारी बारिश हो रही है और उसी के चलते देखिए तबाही की तस्वीर अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। बाढ़, बारिश, भूस्खलन के ट्रिपल अटैक की मार झेल रहा है अरुणाचल प्रदेश और लगातार वहां पर जो तमाम एजेंसियां हैं राहत बचाव कार्य कर रही हैं, और ऐसे में भारी बारिश और मूसलाधार बारिश से मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के बगहा में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर चले, दो पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेकर इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है। मामले में तुरंत कार्रवाई की गई है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड से रिहा होकर पंजाब लौटे निहंग सिखों के स्वागत समारोह के दौरान रविवार को मोहाली के गुरुद्वारे में हंगामा हो गया। समारोह के बीच एक व्यक्ति ने निहंग बाबा जसदीप सिंह पर हमला करने की कोशिश की। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग मामले में गिरफ्तार किए गए निहंग सिंह हाल ही में अदालत से जमानत मिलने के बाद पंजाब लौटे। उनकी रिहाई पर मोहाली के गुरुद्वारा में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद निहंग सिख और समर्थकों ने उसे पकड़ लिया। खबर उत्तर प्रदेश से। झांसी में 60 से 70 लोगों ने गुंडई दिखाते हुए जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया और इस प्रयास में एक दुकान को आधी रात के बाद बुलडोजर से तोड़ दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप यहां तक है कि दबंगों ने दुकान को तोड़ने से पहले दुकानदार को घर के अंदर कैद कर लिया और सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए, जिसके बाद परिवार दहशत में है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को घर के बाहर लगाया गया और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बुलडोजर लेकर के सीधे उसके घर जाकर के आतंक मचाने की कोशिश, बुलडोजर चला दिया गया। कहां तो यूपी में सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था पटरी पर है, कोई दबंगई नहीं है, कोई गुंडे नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं स्थिति क्या है। इधर गाजियाबाद में अवैध निर्माणों पर प्रशासन का सख्त रुख लगातार जारी है। गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी के सेक्टर C8 में रविवार को प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। एक अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ADM और DCP ग्रामीण के निर्देशन में कार्रवाई की गई। ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान UPSIDA के अधिकारी मौजूद रहे और उसके बाद इस अवैध मजार को बुलडोजर से हटा दिया गया।

0: हाल के दिनों में वेनेजुएला में आए भूकंप और उसके बाद के झटकों की एक श्रृंखला के बाद ला गुआयरा राज्य का तटीय शहर मुक्टो अब पूरी तरह से तबाह हो गया है। भूकंप से पहले और बाद में ली गई सैटेलाइट इमेज में दिखाई देता है कि कैसे वेनेजुएला पूरी तरह प्रभावित हुआ है और ला गुआयरा जो प्रोविंस है उसका जो कोस्टल सिटी है मुक्टो में भारी तबाही का भयानक मंजर दिखाई दे रहा है। वेनेजुएला के अधिकारियों के अनुसार श्रमिकों ने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र ला गुआयरा में 60% बिजली आपूर्ति बहाल कर दी है। भीषण प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या 1400 के पार हो गई है, लेकिन आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ये ला गुआयरा की तस्वीरें जो आ रही हैं और ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में आपको पता चलेगा कि कितना भयानक मंजर था। सदी का सबसे खतरनाक भूकंप जिसने वेनेजुएला को तबाह कर दिया। खबर राजस्थान से, जहां बीजेपी सरकार के एक मंत्री सरकारी सब्सिडी को लेकर चर्चा का विषय बने हैं। विपक्ष मंत्री पर गंभीर आरोप लगा रहा है, जबकि मंत्री भागीरथ चौधरी आरोपों को खारिज करते हुए पूरी प्रक्रिया को निर्धारित मापदंडों सरकारी नियमों के तहत बता रहे हैं।
1: क्या एक मंत्री अपनी ही मंत्रालय की योजना से सब्सिडी ले सकता है? क्या नियम सभी के लिए बराबर है या पद और प्रभाव से बदल जाते हैं? केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारत सरकार के एक मंत्री ने सरकार से करीब 99 लाख की सब्सिडी प्राप्त की है। खीरे टमाटर शिमला मिर्च की खेती के लिए मंत्री जी ने अपने ही कृषि मंत्रालय से सब्सिडी ले ली। मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस पर सत्ता का गलत प्रयोग बताया है। सचिन पायलट ने लिखा, कृषि मंत्री पर 99 लाख सब्सिडी का आरोप, अपनी ही योजना से लाभ लेने का मामला, पद के दुरुपयोग पर विवाद, पारदर्शिता और जांच की मांग। इस बीच आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
2: मोदी सरकार के मंत्री खुद अपने ही विभाग में खीरा किसानों की सब्सिडी खा गए, तो चारों तरफ लूट पे लूट चले जा रही है, तो इस लूट वाली सरकार को हटाना पड़ेगा। लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लूट सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी।
1: वहीं मंत्री भागीरथ चौधरी ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया सरकारी नियमों और निर्धारित मापदंडों के तहत की गई है।
3: और 2018 से मैं इस आवेदन के लिए मैं लगा हुआ हूँ इसमें, तो कोई मैंने कोई प्रक्रिया के तहत मैंने काम किया। दूसरा, हम 2 MS हैं, MOSM है हम, और उसमें एक रामनाथ जी ठाकुर है और एक मैं हूँ। ये जो सब्सिडी वाला है, ये जो कुछ है, तो वो राज्य मंत्री और रामनाथ जी ठाकुर है।
1: फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। विपक्ष जहां इसे पद के दुरुपयोग का मामला बता रहा है, वहीं सरकार इसे नियमों के तहत हुई प्रक्रिया बता रही है। आज तक ब्यूरो।
0: खबर मुंबई से, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान एक खौफनाक मामला सामने आया। एक आरोपी द्वारा जहरीले पदार्थ को पेन किलर बताकर बांटने की कोशिश की गई। सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, तुरंत सख्त कार्रवाई की और स्थिति को नियंत्रित किया।
4: मुहर्रम पर बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन मुहर्रम के जुलूस से ठीक पहले उस साजिश का खुलासा हो गया। एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर मुंबई सहम गई है, पूरा महाराष्ट्र भी सहमा है और देश भी हैरान है। ये साजिश थी हजारों लोगों की जान लेने की, जहर देकर उन्हें मारने की। मुंबई में मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों को वो जहरीला कैप्सूल बांटा जा रहा था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इस बड़ी और खौफनाक साजिश का राज फाश कर दिया। एक आरोपी फैयाज प्रेमजी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे 14,900 कैप्सूल बरामद किए। जांच में सामने आया है कि आरोपी फैयाज BBA कर चुका है और वो पुणे में पेंट का बिजनेस करता है। उसने 30,000 खाली कैप्सूल के ऑर्डर किए थे, साथ ही 50 किलो फास्फोरस भी मंगवाए थे।
5: एक संशयित व्यक्ति मुंबई पुलिस की टीम को मिला, जो कि वहाँ पे कैप्सूल बांट रहा था। उसके पास कोई परमिशन नहीं थी, तो मुंबई पुलिस ने उसको टोक के पूछताछ शुरू करी, तो और डाउट बढ़ा। तो उसके बाद उसके पास से जितनी भी कैप्सूल्स का जो स्टॉक था वो जब्त किया गया।
4: पुलिस की माने तो गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कबूला कि वो पेनकिलर कैप्सूल बताकर मुहर्रम के जुलूस में उसे बांट रहा था। आरोपी से जो कैप्सूल बरामद हुए उसमें जिंक फॉस्फाइड पाया गया। गिरफ्तार फैयाज प्रेमजी ने कई लोगों को उसने कैप्सूल दिए थे। कैप्सूल खाने से एक युवक की तबीयत भी बिगड़ी। जिंक फॉस्फाइड ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से तेज उल्टी और पेट में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना और बेहोशी, ब्लड प्रेशर तेजी से गिरना, दिल की धड़कन अनियमित होना, लीवर और किडनी फेल होने का खतरा रहता है। पुलिस अब जांच में जुटी है कि कहीं इस वारदात का आतंकी कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि आरोपी फैयाज पहले ईरान और इराक जा चुका है। आरोपी के विदेशी संपर्कों की पड़ताल भी जारी है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: और अब बात सड़क हादसों की। सहारनपुर में सड़क हादसे का दहला देने वाला वीडियो सामने आया। इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दूसरा मामला हिट एंड रन का है, जहां अहमदाबाद में कार सवार ने बाइक को टक्कर मार दी।
6: ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। एक कार को पीछे से दूसरी कार ने भयानक टक्कर मारी। तस्वीरें सहारनपुर में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र की हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर कट पार कर आगे निकल गया था और निर्माणाधीन हाईवे की ओर लौटने के लिए कार बैक कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर कई मीटर तक घिसटती चली गई, जबकि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चार लोगों की जान चली गई, जबकि तीन बुरी तरह घायल। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार कार ने यहां बाइक सवार को टक्कर मार दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शहर के व्यास वाड़ी चार रास्ता पर यह तेज रफ्तार सफेद कार इधर से आती है। सामने से एक बाइक पर तीन युवक आ रहे हैं। अचानक कार ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर मारकर कार सवार फरार हो गया, जबकि तीनों युवकों की हालत गंभीर है। आज तक ब्यूरो।
0: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से एक भयानक हादसे की तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। कुछ दोस्त मौसम का मजा लेते हुए पूल पार्टी कर रहे थे। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जश्न मातम में बदल गया।
6: इन तस्वीरों को देखकर पहली नजर में यही लगेगा कि कुछ दोस्त मौसम का मजा ले रहे हैं। ये शानदार म्यूजिक में पूल पार्टी कर रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं और गाने की धुन पर थिरक रहे हैं। इन्हीं दोस्तों में से एक ये शख्स यहाँ ऊंचाई से सिर के बल पूल में छलांग लगाता है, बाकी के दोस्त इस छलांग पर जश्न मनाते हैं। ये आदमी पानी में सिर के बल कूदा। अब तक इसके दोस्तों को नहीं पता कि कितना बड़ा हादसा हो गया। ये अभी भी नाच रहे हैं, लेकिन पानी में कूदने के बाद ये शख्स पानी से बाहर नहीं आया, बल्कि इसका शव उतराने लगा। तस्वीरें सिंधुदुर्ग के मालवण के वायरी में मालवणी पाहुड़ चार रिसोर्ट की हैं। दरअसल ये पूल 4 फीट गहरा था और ऊंचाई से छलांग लगाने की वजह से इस शख्स का सिर पूल के फ्लोर से टकराया और इसकी जान चली गई। मृतक का नाम श्रेणी मिलिंद टाकले है, ये कोल्हापुर का रहने वाला था। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि हादसे बता के नहीं होते। किसे पता था कि चंद मिनट पहले जो दोस्त एंजॉय कर रहे थे, चंद मिनट में ही एक हादसे ने जश्न को मातम में बदल दिया। भरत केसरकर, सिंधुदुर्ग आज तक।
0: उधर अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे में चोरी का मामला भी लगातार गहराता जा रहा है। जांच के दायरे में अब सिर्फ आरोपी ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े लोग, उनकी आर्थिक गतिविधियां भी आ गई हैं। अयोध्या पुलिस ने इस मामले में नामजद कई आरोपियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की और उनके संपर्क गतिविधियों की जानकारी भी जुटाई।

0: रामलला के चढ़ावे से चोरी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद जहां राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों के इस्तीफे सामने आए, वहीं अब पुलिस भी कार्रवाई तेज करती नजर आ रही है। अयोध्या पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। मैं इस समय पर अयोध्या में ही रह रहे रमाशंकर मिश्रा, जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। उनके परिजनों से, उसकी भाभी, बहन, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा का घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे और इनको जुडिशियल कस्टडी में सोमवार तक के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अब कल सोमवार को दोबारा जुडिशियल कस्टडी पर सुनवाई होनी है। उससे पहले पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, इन सभी जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कब आते थे, कैसे आते थे, क्या क्या खरीदा गया।
0: अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घरों पर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने आरोपियों के घर आने जाने, उनके संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई। आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या के एक मंदिर में पुजारी हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की
2: जाँच के लिए, और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो है तो हम बताए कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, दो ढाई साल से यहाँ रहते नहीं हैं, आना जाना भी यहाँ का नहीं है, एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पांव नहीं रखते हैं।
1: कब से नहीं आया?
2: दो ढाई साल हो गए यहाँ नहीं आया। हाँ, दो साल।
1: राम मंदिर में कब से काम कर रहा था, क्या काम करता था रमाशंकर?
2: 5-6 साल हो गए, तब वहाँ पैसा गाने में बताओ गाना कर्मचारी।
1: अच्छा, हाँ। अभी पैसा वैसा ज्यादा देखा आपने रमाशंकर के पास? बहुत
2: कभी नहीं, पैसा तो मांगा तो रहा, तो पैसा पाई नहीं है? पैसा मांग लिया तरह के दे दियो, कहीं जरूर लगे।
1: पुलिस तो कह रही है कि सब मिलके 80 लाख रुपया चोरी कर लिए चढ़ावे से।
2: कुछ ये कि नया पैसा यहाँ कहूँ देखे ना आया हुआ।
0: रमाशंकर मिश्रा के परिजनों का कहना है कि वो लंबे समय से घर नहीं आया है और किराए के मकान में रह रहा था।
3: हमको ना वो करे हैं ना हमको दिया है, कभी हमसे उनसे बनता ही नहीं था, कभी वो 10 रुपया हमको दिए ही नहीं थे। मुझको मेरे पति का सहारा है, बस कोई का सहारा नहीं है।
1: तो यहाँ रमाशंकर के बारे में और क्या, घर से कुछ पैसा वैसा ले गए, कुछ बरामदगी दिखाई है, घर से मिला है?
3: कुछ नहीं मिला है सर, केवल कागजात मिला है, वही लेकर गए हैं, आधार नंबर, खाता नंबर।
0: पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है, इनमें से करीब 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से मिलने की बात सामने आई है।
1: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए।
0: इस मामले में गिरफ्तार किए गए अनुकल्प मिश्रा पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। पुलिस के अनुसार वो नोटों की गिनती की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है। 2 साल पहले खरीदे गए उसके मकान पर भी आज तक की टीम पहुंची।
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, मेरी मुझ में ही है, वही से शादी हुई थी, चाचा की 10 साल से इनका तेज चल रहा है, उनका महत्व चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर CCTV कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और BJP पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि CCTV बंद करके चोरी को अंजाम दिया गया, साथ ही ये भी कहा कि BJP की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है।
5: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
6: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है।
0: रामलला के चढ़ावे में गबन के इस मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बड़ी रकम बरामद होने का दावा किया गया है और आरोपियों से जुड़े आर्थिक पहलुओं की भी जांच की जा रही है। साथ ही मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ऐसे में सभी की नजर अब पुलिस जाँच पर, आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
7: पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी जांच की। आरोपी नंबर एक और केतन के मंगेतर सिया को पुलिस लोहागढ़ किले में लेकर उस जगह पहुंची और जांच पड़ताल की, जहां केतन को धक्का दिया गया, उसकी मौत हो गई थी।
0: सिया ने कैसे चेतन के साथ मिलकर केतन को मारा, कैसे उसने कत्ल के लिए लोहगढ़ का किला चुना, कैसे वो केतन को लेकर लोहगढ़ के किले तक पहुंची, कैसे उसने चेतन को कत्ल का इशारा किया, कैसे केतन चेतन और सिया की साजिश नहीं समझ पाया, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए ये कवायद हो रही है। जिसका चेहरा ढका हुआ है वो है सिया, और ये वही लोहगढ़ का किला है जहां सिया को लेकर पुलिस पहुंची है।

0: लोहगढ़ किले में 18 जून को जो कुछ हुआ था उसी को दोहराने की कोशिश आज पुणे पुलिस ने की है। पहाड़ी पर स्थित किले के उसी जगह पर पुलिस की पड़ताल चल रही है। ये तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन देश को सन्न कर देने वाली साजिश की तस्वीर साफ करने के लिए पुलिस ने यह अहम कदम उठाया है। इन धुंधली तस्वीरों में सिया गोयल है, पुणे पुलिस की टीम है और साथ में है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाले एक्सपर्ट। केतन अग्रवाल हत्याकांड की पड़ताल का ये अहम पड़ाव था। कई दिनों से माना जा रहा था कि पुणे पुलिस लोहगढ़ के किले में पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। तमाम कयासबाजी के बाद पुणे पुलिस की टीम सुबह 6:30 बजे ही लोहगढ़ किले में आज दस्तक दे दिया। पुलिस सिया को लेकर किले पहुंची। किला का गेट बंद कर दिया गया, पर्यटकों को रोक दिया गया, हर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सुबह 6:30 बजे सिया को लेकर पुलिस ने किले में चढ़ाई शुरू की। करीब घंटे भर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई। जांच दल के साथ चेतन की कदकाठी का एक डमी भी था। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सिया से कई सवाल किए। 18 जून को क्या क्या हुआ था, केतन और चेतन कहां थे, किसने धक्का दिया, कैसे तीनों यहां तक पहुंचे? ऐसे एक एक सवाल के जवाब पुलिस ने सिया से पूछे और उसके जवाबों के मुताबिक ही क्राइम सीन की बारीकी से जांच पड़ताल की। फिर जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया था पुलिस ने उस जगह से सिया के बयानों के हिसाब से क्राइम सीन रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उसी स्थान से एक डमी को नीचे धक्का देकर पूरी घटना को दोहराया जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था। इस प्रक्रिया का मकसद घटना के क्रम, हालात और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान करना था ताकि जाँच को और मजबूत किया जा सके।
1: ये लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है। किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी उसको रिक्रिएट।
2: आयरलैंड ने गेंदबाजों के दम पर रोमांचक मुकाबले में भारत को 1 रन से हराया। आयरलैंड ने इस तरह T20 के विश्व चैंपियन भारत को 2 मैच सीरीज में 2-0 से हराया। आयरलैंड ने पहली बार भारत से सीरीज अपने नाम की है। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की पहली सीरीज थी और भारत का प्रदर्शन इसमें बेहद निराशाजनक रहा।
3: Tim Tector.
4: Oh, gets lucky, gets very lucky. It's beautifully cut away, little race to the boundary. It was the slower delivery, but it didn't land. Goes for the long hike.
3: Combine for the 9th wickets.
5: Ireland ne racha itihas. मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत से जीती सीरीज। आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए पहली बार मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत को किसी T20 सीरीज में हरा दिया है। बेलफास्ट में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में आयरलैंड ने भारत को सिर्फ 1 रन से मात देकर 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। 3 साल बाद भारतीय टीम को किसी T20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। बेलफास्ट में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए। टीम की ओर से हैरी टेक्टर ने शानदार 53 रन पाए। भारत के लिए डेब्यू कर रहे प्रिंस यादव ने प्रभावित करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। 155 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई। तिलक वर्मा ने 55 रन की जुझारू पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन बाकी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सके। भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 153 रन ही बना सकी और मुकाबला 1 रन से हार गया। आयरलैंड की ओर से जय मुंद्रा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लगातार दूसरे मैच में भी डेब्यू का मौका नहीं मिला। इस जीत के साथ आयरलैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ T20 सीरीज जीतने का इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय टीम को 2023 में वेस्टइंडीज के बाद पहली बार किसी T20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। अब इस हार के बाद टीम इंडिया के प्रदर्शन और टीम चयन पर सवाल उठना तय माना जा रहा है।
2: टी20 में भारत के इस निराशाजनक प्रदर्शन पर पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर से बात की हमारे सहयोगी विक्रांत गुप्ता ने।
6: अरे भाई, ये नहीं समझ आया कि इंडिया 20 ओवर खेल गया। मैं मानता हूं कि ऊपर से इंडिया की चार विकेट गिर गई, सनी भाई इंडिया पूरे 20 ओवर खेला है और 20 ओवर में आप खेलकर भी 154 चेज नहीं कर पाए।
7: जी ये जो हुआ है ना, ये जो पहली ओवर में जो दो विकेट गई उसी की वजह से हुआ है। क्योंकि देखिए, ओपनिंग जो होती है पहले छह ओवर के जो पावर प्ले में जो टीम अगर विकेट नहीं लेती तो उनके लिए रन रोकना मुश्किल होता है
6: जी।
7: और एक अच्छी शुरुआत करती है भले, मतलब छह ओवर में 70-80 रन नहीं जैसे हम आईपीएल में देख रहे थे, पर पहले छह ओवर में जब आप 150-154 चेस कर रहे हैं तो वहां पे भी आपकी अगर 45 या 50 की शुरुआत होती तो फिर आगे के जो 14 ओवर है वहां पे वो रन बनाना आसान बनता है। तो सिचुएशन से जो खेलना था वो भारतीय बल्लेबाजों ने सिचुएशन से खेला नहीं। अगर आपकी पहली बॉल पर विकेट गई है तो ये जरूरी होता है कि आप थोड़ी सी जिम्मेवारी उठाए और अपना फुटक करके ये ना मारे जहां पे आपकी दूसरी विकेट भी इस एक ही ओवर में जाती है, दोनों ओपनर आउट होते हैं। ये मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय क्रिकेट का हमने देखा है कि हमारी इमेज क्या है, हम तो मारने वाले हैं। अरे भाई, मारने वाले ठीक है, आप सिचुएशंस के हिसाब से भी मार सकते हैं ना, ये जरूरी नहीं कि आपको पहले ही गेंद कोई छक्का मारना है। तो इसी की वजह से जो शुरुआत नहीं मिली यही कारण है कि हम 154 रन चेज नहीं कर पाए।
6: सर, आपने बड़ी अच्छी बात की जी, मैं पहली गेंद पर आउट हो गया, मेरे सामने वाला बल्लेबाज ये तो समझेगा कि यार आयरलैंड से खेल रहे हैं, ये पिचेस थोड़ी अलहदा हैं, थोड़ी डिफरेंट हैं, लेकिन नहीं, मैं तो इसी तरह से खेलता हूं, ट्रक आ गया तो ट्रक आ गया, मैं भी आउट हो गया। फिर अगला बैट्समैन कहता है जी दो आउट हो गए तो क्या हुआ, आगे कुआं है तो छलांग तो मैं मारूंगा ही मारूंगा क्योंकि हम तो ऐसे ही खेलते हैं। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि एक हार के बाद क्या इंडिया ने सबक नहीं लिया था?
7: वही तो दिख रहा है ना, वही तो दिख रहा है कि जिस तरह से हमारे पहले छह ओवर में विकेटें गए, जब आपकी दो विकेटें जाती है तो ये तो 20 ओवर की मैच है। आपकी आस्किंग रेट क्या थी, 8 शुरुआत की तो 8 से कम की आस्किंग रेट थी, तो मतलब कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी। अगर आपको आपके पहले छह ओवर में आपने 40 रन करके दो विकेटें भी जाती आपकी तो भी आपको दिक्कत नहीं होती अगले 14 ओवर में 110 रन करने के लिए। पर यही तो मतलब एक ये जो सोचे कि T20 में हम ऐसे ही खेलेंगे, ये नहीं बनता। आप अलोंग द ग्राउंड चौके मार सकते हैं, 4 और चक्के में 2 रन का फर्क होता है, पर जो जोखिम की जो परसेंटेज होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है।
2: और एक छोटे से ब्रेक का है, खबर जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: क्या मंत्र का जप करने से कोई भी कामना पूरी की जा सकती है? क्या मंत्र केवल 2 अक्षर के होते हैं? क्या मंत्र जप करने में सावधानियों की आवश्यकता भी होती है? क्या है मंत्रों का रहस्य और इनका विज्ञान, जानिए मेरे साथ सिर्फ।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राम मंदिर के चंदा गबन मामले में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ी। छापेमारी में जेवरात, जमीन के पेपर बरामद। आज कोर्ट में पेशी, वकीलों का केस लड़ने से इनकार। बंगाल विधानसभा में शुभेंदु सरकार पेश करेगी यूसीसी सहित 5 अहम विधेयक। बीजेपी ने कहा ऐतिहासिक होगा आज का दिन। टीएमसी के बागी विधायकों का रुख पर होगी नजर। पंजाब में आज अकाल तख्त के सामने पेश होंगे आपके सभी सिख विधायक और मंत्री। बेअदबी कानून पर मांगा गया है जवाब। भगवंत मान ने की पुष्टि, वायरल वीडियो पर खुद को निर्दोष बताया। सेशल्स की संसद में गूंजा नमो मंत्र। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा हिंद महासागर हमें बांटता नहीं जोड़ता है। प्रधानमंत्री को मिला पर्यावरण संरक्षण पर खास सम्मान। और मूसलाधार बारिश में फिर डूबी मुंबई। निचले इलाकों में भरा पानी, अंधेरी सबवे में ट्रैफिक पूरी तरह से बंद।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए हम मंत्रों का जप करते हैं। मंत्र कैसे काम करते हैं और मंत्रों का कैसे प्रयोग करना चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 जून 2026 दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज मंत्रों के विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मंत्र होते क्या हैं। देखिए, मंत्र कुछ विशेष प्रकार के शब्दों या अक्षरों की एक संरचना है। इनका विधि पूर्वक अगर जप किया जाए तो सृष्टि की समस्त उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। यहां तक कि जो सिद्ध मंत्र हैं, अगर उनका जप तरीके से किया जाए तो मुक्ति और मोक्ष तक प्राप्त किया जा सकता है। मंत्र वास्तव में 2 अक्षरों के होते हैं जो श्वास और प्रश्वास पर चलते हैं, जैसे राम, शिव, राधा, ये आपके सांस आने और जाने पर सेट हो जाते हैं। बाकी जिनको हम मंत्र समझते हैं वो या तो ऋचाएं हैं या श्लोक हैं। जब बीज मंत्रों के साथ ऋचाएं प्रयोग की जाती हैं या श्लोक प्रयोग किए जाते हैं तो ये पर्याप्त लाभकारी होते हैं। जैसे ओम हं हनुमते नमः, हं बीज मंत्र है। मंत्र 2 तरह के होते हैं। एक वो मंत्र हैं जिनको कोई भी जप सकता है, कोई भी उसका लाभ उठा सकता है, और दूसरे वो मंत्र हैं जो व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अलग अलग व्यक्ति के संस्कारों को देखकर उसके हिसाब से जो मंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो विशेष मंत्र होते हैं। मंत्रों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है,
आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, खूब व्यस्तता बनी रहेगी, नौकरी में उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, करियर में लापरवाही ना करें, संतान की चिंता हो सकती है, रिश्तों में समस्या आ सकती है। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, निपटा लीजिए। नौकरी में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब ये जानते हैं कि मंत्र कैसे काम करते हैं और आपके जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। हर शब्द के अंदर, हर अक्षर के अंदर एक रंग और विशेष तरंग होती है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति का भी रंग और तरंग होता है। जब ये शब्द, ये अक्षर व्यक्ति के रंग और तरंग से मेल खा जाते हैं तो काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मंत्र आपके शरीर पर असर डालते हैं, फिर आपके मन पर असर डालते हैं और तब आत्मा पर असर डालते हैं। मंत्रों का असर पड़ता है जो आपके शरीर में चक्र हैं उनके माध्यम से। आपके मन का रंग समझ करके अगर उस मन के रंग के हिसाब से आपको मंत्र बताया जाए तो मंत्र का प्रयोग करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। और अगर मंत्र आपके मन के अपोजिट बता दिया जाए तो मंत्र का जप करने से आपको मुश्किलें हो सकती हैं। मंत्रों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, धन का लाभ होगा,
अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। सिंह राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, धन का लाभ होगा, काम की अधिकता बनी रहेगी, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न विजय लक्ष्मी जी ने हमें लिखा है, उज्जैन से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 7 अक्टूबर 2004, जन्म का समय रात में 11 बजे और जन्म का स्थान है उज्जैन। ये पूछ रही हैं कि मेरा पुत्र सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, क्या मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिलेगी? विजय लक्ष्मी जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से मैं कहूंगा कि आप उनको मैनेजमेंट की, अकाउंट की, फाइनेंस की कोई पढ़ाई करवाइए। मैनेजमेंट, फाइनेंस या अकाउंटिंग के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, लेकिन इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब में जाने की संभावना कमजोर है। इनको किसी अच्छे संस्थान से MBA करवाइए, अच्छा रहेगा। पढ़ाई इनकी ठीक चले और ये इधर उधर ना भटकें, उसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो हम आज बात कर रहे हैं मंत्रों के ऊपर। अब ये समझते हैं कि मंत्रों का विज्ञान क्या है, मंत्रों की टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए, मंत्र में जिन अक्षरों का, जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसमें एक विशेष तरह की रंग और तरंग होती है। आपके शरीर के रंग और तरंग के साथ जब इस रंग और तरंग का तालमेल बैठता है तभी आपको मंत्र लाभ पहुंचाते हैं। अगर तालमेल नहीं बैठता तो इनका जप करने से नुकसान हो सकता है और इसका बुरा प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर, आपकी मनोदशा पर पड़ सकता है। अपने मन से बिना बताए हुए मंत्र का जप किताब पढ़कर मत करिए। हमेशा अपने मनोदशा
और अपने मन के तत्वों को देखकर ही मंत्र का चुनाव करना चाहिए। कुंडली का पंचम भाव, पंचम भाव का स्वामी और चंद्रमा, इनको देख करके अगर मंत्रों का चुनाव किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होगा। कभी भी किसी मंत्र का प्रयोग बुरी भावना से मत करें। किसी को चोट लग जाए, किसी को दुर्घटना हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, इस कामना से मंत्र का प्रयोग ना करें। नहीं तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की वजह से जो बोएंगे वो काटेंगे। ऐसे मंत्र का प्रयोग करने पर आपको भयंकर नुकसान होगा। आप अपने कल्याण के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए मंत्र जपिए, लेकिन किसी को नुकसान हो, दुर्घटना हो, किसी की जान चली जाए, इस उद्देश्य से मंत्र का जप मत करिएगा। मंत्रों के जप पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। वृश्चिक राशि,

कीटों से बचाव करें, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब जानते हैं कि मंत्रों के जप करने के नियम क्या हैं और इसकी सावधानियां क्या हैं। देखिए, मंत्र जप करने के लिए स्थान, समय और आसन एक होना चाहिए। कोशिश करें कि एक ही समय पर, एक ही आसन पर मंत्र जप करें। कहीं बाहर गए हैं तो आसन अपने साथ ले जाइए और उसी आसन पर मंत्र का जप करिएगा। अगर आप मंत्र जप की शुरुआत कर रहे हैं, कोई विशेष मंत्र है, तो इसकी शुरुआत किसी भी पूर्णिमा से या अमावस्या से आपको करनी चाहिए। जो आसन आप रखें वो सफेद या काले रंग का होना चाहिए, मोटी दरी का आसन या कंबल का या ऊन का आसन होना चाहिए। वैसे विशेष उद्देश्य के लिए अलग अलग रंग के आसन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लाल आसन का या पीले आसन का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आसन जमीन से थोड़ा ऊंचा हो तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ पाते, कुर्सी पर बैठकर भी मंत्र जप कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि मंत्र जप करते समय रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। मंत्र जप करने के लिए चंदन या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। आप चाहें तो अंगुलियों से भी मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र जप के बाद 15 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मंत्र जप किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, केवल शरीर का स्वच्छ रहना जरूरी है। भगवान का नाम जप हर स्थान पर, हर स्थिति परिस्थिति में किया जा सकता है। आप भगवान के नाम का जप करते हैं, अगर आप बाथरूम में हैं तो वहां भी जपिए, प्राण कहां निकल जाएं ये पता नहीं है। इसीलिए हर समय हर स्थिति में, बीमार हैं, मासिक धर्म है, कोई भी स्थिति है, भगवान के नाम का जप निरंतर करते रहना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें, वाद विवाद से बचाव करें, बड़ों की सलाह से सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, नौकरी में बेहतरी होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।

करियर में नई शुरुआत होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंत्र जप करने के बाद जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों? देखिए, जब आप मंत्र का जप करते हैं तो आपके शरीर में मंत्रों की ऊर्जा आ जाती है और हाथ की अंगुलियों में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। अगर आप मंत्र का जप करने के बाद जल का स्पर्श करेंगे तो सारी ऊर्जा जल में चली जाएगी, आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए जब तक शरीर में पूरी तरह से ऊर्जा मंत्र की ना आ जाए, यानी मंत्र जपने के 10-15 मिनट तक आपको जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मंत्र का जप करके आशीर्वाद देने से उस मंत्र की ऊर्जा का फायदा उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, पारिवारिक समस्या हल होगी। नंबर 5, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न संजय जी ने हमें लिखा है और संजय जी हमें अहमदाबाद गुजरात से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 जनवरी 1976। जन्म का समय दोपहर में 3 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी में बदलाव के लिए काफी समय से प्रयास कर रहा हूं लेकिन मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है, तो आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। संजय जी, आपकी नौकरी बदलने का समय अगस्त 2026 से शुरू होगा। साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में
आपकी नौकरी बदलने की संभावना दिखाई दे रही है और नौकरी बदलेंगे तो आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। नौकरी बदलना, स्थान परिवर्तन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। रोज सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक ओपल लगभग 10-12 रत्ती का चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करिए, लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो नमः शिवाय का जप करिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

होगा धनु राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि को, बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज पूर्णिमा तिथि है, आज चंद्र देव को अर्घ दीजिए, जल चढ़ाइए और आज जल का और सफेद वस्तुओं का दान करिए, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

मुंबई में कुछ दिनों की राहत के बाद मॉनसून ने एक बार फिर जोरदार वापसी की है। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव। भारी जलभराव के कारण अंधेरी सबवे को बंद किया गया। अप्रिय घटना या हादसे को रोकने के लिए सबवे के बाहर पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इन इलाकों में मध्यम से तेज बारिश और जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा है। 100 से ज्यादा परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सीएम हेमंता ने राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए। लगातार हो रही बारिश ने ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक शिवसागर में रिसांग नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग में लैंडस्लाइड से नदी का बहाव पूरी तरह रुका। लेंडन गांव का पुल भी ढह गया। केई पेन्योर में लगातार बारिश की वजह से भीषण भूस्खलन हुआ है। पोटनपोसा रोड पर आवाजाही भी बाधित हुई है। कोलकाता में मौसम ने करवट ली। तेज बारिश के चलते मौसम खुशगवार हुआ। रेड रोड इलाके में सामने तस्वीरें आई बारिश। पश्चिम बंगाल में बाढ़ बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। जयगांव में कई इलाके जलमग्न हुए। बाढ़ के कारण मुख्य मार्ग से संपर्क भी टूटा। रियासी में भारी बारिश के कारण सलाल डैम में पानी भर गया। पानी का बहाव बढ़ने से सलाल बांध के कई गेट खोले गए। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 5-6 दिनों में खत्म हो सकता है मानसून का इंतजार। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कई राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून अब आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल। मैदानी इलाकों को गर्मी से राहत पाने के लिए हिमाचल के हिल स्टेशन पर पर्यटकों की तादाद बढ़ने लगी है। लाहौल घाटी में होटल और होमस्टे अब पूरी तरह भरे हुए हैं। लाहौल घाटी के सुंदर नजारे देखकर पर्यटकों के चेहरे भी खिले। खूबसूरत वादियों में वाटरफॉल और झील ने उत्साह बढ़ाया पर्यटकों का। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। शिमला, कांगड़ा, मंडी जिलों में तेज हवा के साथ मौसम का मिजाज बदल गया। हिमाचल प्रदेश में 4 जुलाई तक बारिश का दौर चलने का अनुमान है। 2 जुलाई से उत्तर पश्चिम भारत पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ असर डाल सकता है। अयोध्या चढ़ावा मामले में गिरफ्तार 8 लोगों की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। आगे की पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला लिया है। आज बार एसोसिएशन की होने वाली आम सभा में इस पर अंतिम फैसला भी लिया जा सकता है। राम मंदिर चोरी मामले में नई जानकारी सामने आई है। मामला सार्वजनिक होने से पहले ही ट्रस्ट को इसकी जानकारी थी। चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन भी तेज हो गया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों के घर छापेमारी की गई। टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला के घरों से तलाशी ली गई। आरोपियों के घर छापे में संपत्ति के पेपर मिले, दस्तावेजों का सत्यापन कराई गई पुलिस। कुछ लोगों के घरों से जेवरात मिलने की भी जानकारी। चोरी के मामले में सीसीटीवी से बड़ा खुलासा हुआ है। 5 जून को आरोपी अविनाश के हाथ में दिखाई दे रहा है काला बैग। चढ़ावा चोरी पर अखिलेश ने बीजेपी सरकार को घेरा। कहा सीसीटीवी बंद करके चोरी की गई, इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा एसपी सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चली, इनके पास विकास का एजेंडा नहीं। अखिलेश को सीएम योगी ने दी चुनौती। कहा अगर हिम्मत है तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बोलकर दिखाएं। राम मंदिर से जुड़े विवादों के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तेज नारायण पांडे ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले जात फैलाए जाते थे दंगे, अब मुहर्रम में सड़कों पर बवाल नहीं होता। पेपर लीक को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। कहा बीजेपी राज्य में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी मुख्यालय के घेराव की कोशिश। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। मुंबई में स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे के घर के बाहर यूथ कांग्रेस ने हल्ला बोल किया। महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिवेंदू सरकार आज विधानसभा में पेश कर सकती है यूसीसी बिल। मुख्यमंत्री पहले ही दे चुके हैं धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने का संदेश। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। कहा विश्व कल्याण के लिए सुनी जानी चाहिए भारत की बात। भारतीय ज्ञान परंपरा शिक्षा व्यवस्था को मानव कल्याण के हित में बताते हुए कहा कि दुनिया को पूर्णता प्रदान करना भारत की भूमिका है। आज अकाल तख्त के सामने पेश होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। कहा हमारे लिए अकाल तख्त सर्वोपरि, सभी मंत्री और विधायक साथ रहेंगे। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव का हमला, बताया कठपुतली मुख्यमंत्री। कहा दिल्ली से जो कहा जाता है वही करते हैं। तेलंगाना में बीजेपी का चुनावी बिगुल, नितिन नवीन ने की डबल इंजन सरकार बनाने की अपील। सशस्त्र की संसद में पीएम मोदी ने कहा हिंद महासागर में बांटता नहीं जोड़ता है, ये हमारा साझा घर है। आजादी के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने सशस्त्र को दी बधाई। पैट्रिक के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत, यूपीआई लागू करने के लिए दोनों देशों में समझौता। सशस्त्र ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पीएम मोदी को दिया खास सम्मान।
इस सम्मान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सतत विकास में भारत रोल मॉडल। सेशंस की आजादी के 50 साल पूरे होने पर शानदार समारोह हुआ। रोश कैमन स्थित स्टैडल स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। परेड में सुरक्षा बलों ने दी सलामी। समारोह में भारत और सेशल्स के बीच गहरे रक्षा संबंधों की झलक दिखाई दी। गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में जांबाजों ने कर्तव्य दिखाए। पैराशूट के जरिए आसमान से छलांग लगाई। नेशनल डे समारोह में सैन्य बैंड की धुनों ने जोश भर दिया। असम में कृषि मंत्री पीयूष हजारिका का खेतों में किसानों के बीच अनोखा अंदाज दिखा। पटना साइंस कॉलेज में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के काफिले के सामने एक छात्र खड़ा हो गया। केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच तेज हो गई है। लोहगढ़ में घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ। कैलाश मानसरोवर यात्रियों को विदेश मंत्रालय की सलाह, बिना चीन के परमिट के यात्रा न करें। पटना में भीषण गर्मी से 30 जून तक 8वीं के तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ से पहले आज प्रथम पूजा। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ होना है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पवित्र छड़ी मुबारक के दिन समापन होगा। इस बार यात्रा 57 दिनों तक चलेगी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल सैकड़ों हजारों संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अमरनाथ यात्रा 2 प्रमुख मार्गों पहलगाम और बालटाल से शुरू होगी। बेस कैंप पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक। अहमदाबाद में हिट एंड रन में एक की मौत, सीसीटीवी में सड़क हादसा कैद। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के सब इंस्पेक्टर ने यात्री के साथ बेरहमी से मारपीट। नशे में धुत पिस्टल दिखाकर ट्रेन में यात्रियों को डरा धमका रहा था शख्स, कोडरमा रेलवे स्टेशन पर दबोचा गया। मोतिहारी में चोर गिरोह का एक और कारनामा, दुकान से 10,000 रुपए लेकर फरार हुए। मुजफ्फरनगर गंगा स्नान के दौरान 3 दुखद हादसों में एक बालिका सहित 3 श्रद्धालुओं की मौत। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के बैंकेट हॉल में बच्चे से कराई गई लाखों के शगुन और गहनों से भरे बैग की चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। गाजियाबाद के अवैध मजार पर बुलडोजर चला, 1 करोड़ की सरकारी संपत्ति कब्जा मुक्त की गई। झांसी में शादी के 4 महीने बाद ही नवविवाहिता के संदिग्ध में परिजनों ने ससुराल पर मारने का आरोप लगाया। फरीदाबाद में कारोबारी ने दुकान में खुदकुशी की वीडियो में पत्नी ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा रही है। सहारनपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया, मौके पर ही व्यक्ति की मौत। पटना में ज्वेलरी शॉप के मालिक से लूटपाट हुई, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बगहा में देर रात बवाल हुआ, 2 पक्षों में पथराव हुआ, 2 पुलिसकर्मी समेत 6 घायल। जालना में देव दर्शन के लिए निकले दोस्तों की कार का भीषण हादसा हुआ, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। मुंबई के माही में मामूली धक्का लगने पर रेलवे स्टेशन के पास एक युवक को चाकू मारा गया। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पर 2 दिन पहले हादसे का वीडियो सामने आया। अहमदाबाद में तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर हुई, 3 युवक घायल, मौके से फरार। जालना में नशे की गोलियों की बिक्री करने वाले रैकेट का पर्दाफाश। गोंडा में लड़की से मिलने पहुंचे युवक की चाकू मारकर हत्या। वाराणसी में पुलिस पर फायरिंग करने वाला अपराधी गिरफ्तार, घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्वालियर में रहस्यमय आग के खौफ में 5 घर अचानक जलने लगता है सामान, पुलिस ने मोर्चा संभाला। दूसरे T20 में भी आयरलैंड ने वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया। मेजबान टीम का सीरीज पर 2-0 से कब्जा। पहले खेलते हुए आयरलैंड ने 8 विकेट पर बनाए 154 रन, भारत 9 विकेट खोकर सिर्फ 153 रन बना सका। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन 0 पर आउट हुए। महिला T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हुई टीम इंडिया। भारत की महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने दिया था 171 रनों का लक्ष्य, कप्तान हरमनप्रीत ने बनाए 56 रन। ईरान ने अमेरिका को दी खुली चेतावनी, कहा दोबारा हमला हुआ तो अंजाम और बुरा होगा। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने इराक के विदेश मंत्री से मुलाकात की, इराक के विदेश मंत्री ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की अपील। यूक्रेन के जापोरिजिया में रूसी सेना ने भीषण हमला किया, गाइडेड बमों से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। जवाब में यूक्रेन ने पलटवार करते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया, यूक्रेन ने रूस के 2 तेल रिफाइनरियों को उड़ाया। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने से इनकार कर दिया है। और
सुरक्षा के मोर्चे पर पहली बार दक्षिण कोरिया और जापान एक साथ आए, सोल में कोरिया और जापान के रक्षा मंत्रियों ने बैठे। डिजिटल टैक्स को लेकर के ट्रंप ने धमकी दी, कहा यूरोपीय संघ ने कहा कि हम दबाव में नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स का पर्यावरण संरक्षण सर्वोच्च सम्मान मिला। फ्रांस के टॉम्बलिन में बड़ा विमान हादसा हुआ, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश हो गया। वेनेजुएला में भूकंप से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है, मलबे में फंसे लोगों शवों की तलाश जारी है।

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1973।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू। विमल, बोलो जुबां केसरी।
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
4: युद्ध विराम के बेहद करीब जा पहुंचे अमेरिका और ईरान एक बार फिर रणभूमि में आमने सामने आ गए। अमेरिका ने 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान के ठिकानों पर जमकर बमबारी की है। इस बार अमेरिका ने दक्षिणी शहर सिरिक को अपना निशाना बनाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि इस बार ईरान के मिलिट्री सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस साइट और ड्रोन स्टोरेज समेत कुल 10 ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। दरअसल अमेरिका इस बार हॉर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर हमले से गुस्साया हुआ है। उसका आरोप है कि पनामा के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर ईरान ने हमला कर सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये जहाज करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर रवाना हुआ था और ईरानी हमले का शिकार बन गया। ईरान लगातार हॉर्मुज में अपना नियंत्रण साबित करने की कोशिश में हमलावर हो रहा है। अब जब अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की तो बदले में ईरान ने खाड़ी देशों में उसके सैन्य बेस पर हमला कर दिया। IRGC का दावा है कि कुवैत में अमेरिकी एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी सेना के मुख्यालय पर ये हमले किए गए, लेकिन इन बदलते हालातों से ट्रंप बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान ने सीज फायर का सम्मान नहीं किया तो अमेरिका के विमानों ने उनके मिसाइल और ड्रोन स्टोर करने की जगहों और तटीय रडार साइटों पर हमला किया है। मुझे नहीं लगता कि वे सबक सीखेंगे। हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए जब हमें उस काम को सैन्य तरीके से पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़े जिसे हमने बहुत सफलतापूर्वक शुरू किया था। अगर ऐसा होता है तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इससे पहले अमेरिका ने शुक्रवार को भी ईरान पर करीब एक घंटे तक ताबड़तोड़ हमले किए थे। अमेरिकी फौज ने ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से मिसाइलों और ड्रोन को रखा जाता था और लॉन्च किया जाता था। इनके साथ साथ समंदर के किनारे की कई रडार साइट्स भी बर्बाद कर दी गई हैं। ट्रंप ने दो दिन पहले ही मीडिया के सामने ऐलान कर दिया था कि ईरान को हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को रोकने और उन पर बिना किसी वजह के हमला करने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप भी सुनिए रिपोर्टर और ट्रंप के बीच हुई बातचीत।
5: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually, four. We knocked down three at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship, and it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
6: Will the U.S. respond? What is your message to
5: Iran?
6: Will
5: they respond? You're going to find out.
4: उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी ईरान के हमले से बुरी तरह भड़के हुए हैं। उन्होंने तो सोशल मीडिया पर साफ साफ कह दिया कि हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा और इस तरह के हमले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मुखिया इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका ने एक बार फिर युद्ध विराम के बीच में हमला किया। नाकाम अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिखाया है कि सीज फायर के उसूल उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। युद्ध विराम का उल्लंघन हमेशा की तरह पीछे हटने और पछतावे की वजह बनेगा। ईरान के समंदर की सरहदों पर एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। वार पलटवार ने सीज फायर पर सवाल उठा दिए हैं और ट्रंप की सख्त चेतावनी ने माहौल एक बार फिर गर्मा दिया है। आज तक ब्यूरो।

इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली।

0: राम लला की घर डकैती डालने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे हुए तो वहीं अब पुलिस भी एक्शन मोड में दिख रही है। अयोध्या पुलिस ने उन आरोपियों के घर धावा बोला जो अयोध्या में रहते हैं। अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रामाशंकर मिश्रा के घर छापा मारा। उनके घर वालों से पूछताछ की। जी आरोपी घर पर कब आते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, ये सारी जानकारियां पुलिस ने इकट्ठा की हैं। आरोपी रामाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या में ही एक मंदिर में पुजारी हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की। रामाशंकर के परिवार वाले कह रहे हैं कि वो यहाँ आता ही नहीं, सालों से घर आया नहीं, किराए का मकान लेकर वहीं रहता है। चढ़ावा चोरी के आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी हो गई है। 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
1: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर दो कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर हैं, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहाँ लाया गया। और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज, जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है, जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था, जहां आज तक की टीम पहुंची।
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, कोई से शादी हुई थी चाचा की, 10 साल से इनका तेज चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में CCTV कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां टिन्नू यादव की तरह UP पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के RMO अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल RMO को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
3: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़। इनकी चतुराई है, चालबाजी है और CCTV फुटेज है कि कितनी बार CCTV बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं, तब और क्या बताया जाए।
4: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।

राम मंदिर चंदा गबन मामले में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ी। छापेमारी में जेवरात, जमीन के पेपर बरामद। आज कोर्ट में पेशी, वकीलों का केस लड़ने से इनकार। बंगाल विधानसभा में शुभेंदु सरकार पेश करेगी यूसीसी सहित 5 अहम विधेयक। बीजेपी ने कहा ऐतिहासिक होगा आज का दिन। टीएमसी के बागी विधायकों के रुख पर होगी नजर। पंजाब में आज अकाल तख्त के सामने पेश होंगे आम आदमी पार्टी के सभी सिख विधायक और मंत्री। बेअदबी कानून पर मांगा गया है जवाब। भगवंत मान ने की पुष्टि, वायरल वीडियो पर खुद को बताया निर्दोष। सेशल्स की संसद में गूंजा नमो मंत्र। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा हिंद महासागर हमें बांटता नहीं, जोड़ता है। प्रधानमंत्री को मिला पर्यावरण संरक्षण पर खास सम्मान। मूसलाधार प्रहार से पूर्वोत्तर भारत में हाहाकार। अरुणाचल प्रदेश में भारी तबाही। असम में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। मॉनसून ने रोकी मुंबई की रफ्तार।

0: इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपको बताएंगे जिनका जिक्र करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे डूबने लगी है मुंबई नगरी, इसकी पूरी खबर आपको दिखाएंगे। बात बंगाल की भी होगी, बाढ़ से हाहाकार वहां पर भी मचा हुआ है। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे अरुणाचल की नदी में जिंदगी अटकी हुई है। खबर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की भी आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, बताएंगे कि उसमें क्या बड़ा खुलासा हुआ। वहीं बंगाल की सियासत में यूसीसी को लेकर जारी हलचल पर भी अपडेट आपको देंगे। बात पेपर लीक की भी करेंगे जिस पर सियासी बवाल जारी है। साथ ही जिक्र पुणे में केतन हत्याकांड का भी होगा, बताएंगे सिया ने पुलिस से क्या कुछ कहा है। और साथ ही आपको भी दिखाएंगे कि यूपी में एक्सप्रेसवे पर मौत वाली भीषण टक्कर आखिर कैसे हुई है। सबसे पहले खबर मुंबई की, जहां पर बीती रात जमकर बारिश हुई। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई। अंधेरी का जो सबवे है उसमें पूरी तरह से पानी भर गया, लेकिन अब हालात में सुधार है। फिलहाल बारिश भी बंद है और जिन इलाकों में जलभराव हुआ था वहां भी स्थिति बेहतर हुई है। देर रात भारी बारिश के बाद एहतियातन अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया। साथ ही सबवे के बाहर पुलिस की भी तैनाती कर दी गई। जोरदार बारिश से उमस और गर्मी से थोड़ी राहत मुंबई वालों को जरूर मिली है, लेकिन मुंबई में सड़कों पर अलग अलग जगह पर पानी का सैलाब आता नजर आया और कड़ी मशक्कत करते हुए उसी पानी के बीच से लोग गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए विले पार्ले, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, अंधेरी सबवे जो देर रात तक भर गया जिसको बंद करना पड़ा। और अब खबर बाढ़ से बिगड़े हालात की। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम के कई हिस्सों में संकट गहराया हुआ है। बंगाल में भारी बारिश से स्थिति गंभीर हुई है, वहीं अरुणाचल में मूसलाधार बारिश और फ्लैश फ्लड से बड़ी तबाही हुई। असम के धिमाजी में तो कई गांवों में पानी भरने के कारण मुसीबत बढ़ गई है।
1: बाढ़ से बंगाल के कुछ हिस्से बेहिसाब संकट का सामना कर रहे हैं। अलीपुरद्वार के जयगांव से आई ये तस्वीर देखिए। सड़क पर ऐसा सैलाब आया है कि वहां से गुजर रहे लोग भी तेज धार में बहने लगे। बाइक सवार दो लोग उस सैलाब में गिर पड़े, उसके बाद वो खुद की जान बचाते नजर आए, लेकिन डरावनी लहरें बाइक बचा रहे शख्स को बहा ले गईं। अब तक उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में मूसलाधार बारिश के बाद हालात तेजी से बिगड़े हैं। शनिवार रात से ही यहां भारी बारिश हुई है, इसका गंभीर असर जनजीवन पर दिख रहा है। अरुणाचल से आई इन तस्वीरों को देखिए। लोअर सियांग जिले में जब लैंडस्लाइड हुआ तो हड़कंप मच गया। सीजी नदी के किनारों पर बेहिसाब खतरा बढ़ गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जान पर बनाई है। लैंडस्लाइड की वजह से नदी पर मानो डैम बन गया। अब आशंका जताई जा रही है कि अगर ये मलबा बहा तो फ्लैश फ्लड से भारी तबाही आ सकती है। प्रशासन ने इस इलाके के गंभीर हालात को देखते हुए लोगों को आगाह किया है और कहा है कि वो नदी के किनारों से दूर रहें, नदी में जाने से बचें। 24 जून को केई पन्योर जिले में बादल फटे थे, वहां भारी तबाही हुई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, अब तक कई लोग गायब हैं। तब से अब तक वहां राहत और बचाव का काम जारी है। उधर असम में भी बाढ़ की वजह से तेजी से हालात बिगड़े हैं। धीमाजी इलाके में करीब 70 गांवों में बेहिसाब संकट बढ़ा है, इससे 15,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। धीमाजी के बदतर हालात का अंदाजा वहां की तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। घरों में पानी भर चुका है, कमर भर पानी में डूबकर लोग आने जाने को मजबूर हैं, सड़कों पर जल जमाव है। ऐसे हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने रविवार को हालात की जानकारी ली और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: तो चलिए अब आपको दिखाते हैं अरुणाचल प्रदेश से आई एक और हैरान करने वाली तस्वीर। वहां पर डम्बुक इलाके में सिरसरी नदी में चल रहे राहत और बचाव अभियान के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। 4 फंसे हुए लोगों को बचाने गए 7 राफ्टर्स की नाव तेज बहाव की चपेट में आकर पलट गई। इस घटना में कुल 11 लोग फंस गए। राहत की बात यह रही कि 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 3 लोग अभी भी नदी के बीच बने अलग अलग टापू पर फंसे हुए हैं। फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ के 30 जवान, राज्य पुलिस और आईटीबीपी की टीमें सुबह से ही लगातार बचाव अभियान चला रही हैं। अभी भी 3 लोग यहां पर फंसे हुए हैं। और चलिए अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर के रियासी का, जहां पर लगातार हो रही बारिश के बाद सलाल बांध में पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया है। बढ़ते जलस्तर और तेज जल प्रवाह को देखते हुए एहतियातन सलाल बांध के कई गेट खोल दिए गए। बांध से बड़ी मात्रा में पानी भी छोड़ा जा रहा है। वहीं प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने, साथ ही प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। तो चुभती जलती गर्मी से बेहाल दिल्ली और यूपी को अभी राहत नहीं मिलने वाली। दरअसल मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 से 6 दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे, उसके बाद ही राहत की उम्मीद है। 5 से 6 दिन में मानसून दस्तक दे सकता है। इस वक्त दक्षिण पश्चिमी मानसून आगे बढ़ने के लिए मौसम अनुकूल है। मानसून में देरी की वजह से दिल्ली में रविवार को पिछले 2 सालों में सबसे गर्म सुबह रही। स्काईमेट एजेंसी के मुताबिक 4 जुलाई को मानसून दिल्ली पहुंचने की संभावना है, यानी कुछ दिनों में दिल्ली में जो गर्मी की मार दिल्लीवासी झेल रहे हैं उससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। बात कर लेते हैं यूरोप की। यूरोप में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, भारत नहीं यूरोपीय देश में भी प्रचंड गर्मी का मार लोग झेल रहे हैं। खासतौर से पश्चिमी यूरोप में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी की वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी में सबसे ज्यादा असर पड़ा।
1: यूरोप इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव की चपेट में है। फ्रांस के हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। देश के 54 विभागों में रेड अलर्ट जारी है और कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। फ्रांस की स्वास्थ्य एजेंसी ने खुलासा किया है कि भीषण गर्मी के चलते अब तक 1000 से अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई गई है। जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य और ऑस्ट्रिया में भी तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भीषण गर्मी से बिजली उत्पादन, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। जर्मनी में तो गर्मी से बचने के लिए सड़कों पर पानी की बौछार की जा रही है। आमतौर पर दुनिया का सबसे ठंडा इलाका माने जाने वाला यूरोप ने कभी ऐसी गर्मी देखी ही नहीं थी। दशकों तक कभी तापमान 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री के पार गया ही नहीं था, लेकिन इस बार ग्लोबल वार्मिंग का असर भूमध्य सागर के ऊपर गर्म हवाओं के चलते यूरोप उबल रहा है। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, ये तमाम वो इलाके हैं जो इस समय गर्मी के प्रकोप झेल रहे हैं। आमतौर पर ये पूरा वो इलाका होता है जो ठंडा रहता है, लोग ठंडियों में यूरोप की यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन इस समय यूरोप में हाहाकार है। तापमान 40 डिग्री के पार है और अब इसका असर धीरे धीरे पूर्वी यूरोप को भी अपनी चपेट में ले रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसी खतरनाक हीट वेव अब लगभग हर साल देखने को मिल रही है। आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो वही राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों की 3 दिन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें 8 लोगों के नाम हैं जिन्हें पुलिस 3 दिन पहले गिरफ्तार कर चुकी थी। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने संकेत दिए हैं कि वो आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे। इस पूरे मामले में बार एसोसिएशन की आज होने वाली आम सभा में इस पर अंतिम फैसला भी लिया जाएगा। इस बीच जो आरोपी हैं, आरोपियों के घर पर भी छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक कुछ आरोपियों के घर से पुलिस को जेवरात मिले हैं, साथ ही प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इन दस्तावेजों का वेरिफिकेशन अभी आगे कराया जाएगा। तो कोर्ट में आज पेशी है, लेकिन सभी वकीलों ने मना कर दिया है। अब कौन इसकी पैरवी करेगा ये देखने वाली बात होगी। तो राम मंदिर के चढ़ावे में गबन को लेकर अखिलेश और सीएम योगी आदित्यनाथ आमने सामने हैं। अखिलेश ने कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादियों के राज में राम भक्तों के साथ हुए सलूक को लेकर सीधा वार किया।
2: राम मंदिर दान घोटाले को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर में सीसीटीवी कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीटीवी बंद करके चंदे की चोरी को अंजाम दिया गया।
3: इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं, तब और क्या बताया जाए।
2: अखिलेश यादव ने राम मंदिर में हुए चंदा घोटाले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की प्राथमिकता देश नहीं बल्कि चंदा है। अखिलेश यादव सत्ता में आने के बाद अयोध्या को बेमिसाल धार्मिक नगरी बनाने का दावा कर रहे हैं। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और पूछा कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले अयोध्या निर्माण कैसे करेंगे।
4: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
2: रामलला के चढ़ावे में गबन के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन जांच को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसे में सभी की नजर अब पुलिस जांच और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी है। अयोध्या से संतोष शर्मा आज तक।
0: सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का खुलकर समर्थन करने की चुनौती भी दी है। योगी ने कहा है कि अखिलेश यादव खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं।
4: मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है।
0: तो वही बंगाल विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में शुभेंदु सरकार कई अहम विधेयक पेश करने जा रही है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बिल को लेकर है वो है यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता विधेयक, जिसे आज सदन के पटल पर रखा जा सकता है। एक दिन पहले ही बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने कहा है कि बीजेपी हमेशा इसकी बात करती रही है और राज्य सरकार तय समय पर इसे लागू कर रहेगी। पश्चिम बंगाल में यूसीसी को लागू करेंगे या नहीं, आज इस पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं देश भर में पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया, बीजेपी दफ्तर के घेराव की कोशिश भी की गई। तो वहीं महाराष्ट्र में हुए टेट पेपर लीक के खिलाफ मुंबई कांग्रेस की ओर से शिक्षा मंत्री दादा भूसे के मंत्रालय के सामने सिद्ध आवास पर काली स्याही फेंक कर तीव्र विरोध प्रदर्शन किया गया और इस्तीफे की मांग भी की गई है। कांग्रेस ने पेपर लीक के खिलाफ गूंज नाम से अभियान शुरू किया। 40 दिन तक चलने वाले इस अभियान में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो अगली खबर महाराष्ट्र के पुणे से। दरअसल लोहगढ़ किले में हुए केतन अग्रवाल हत्याकांड आपको याद होगा, इस मामले में अब गिरफ्तार सिया और चेतन की हिरासत का आज आखिरी दिन है। दोनों को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले रविवार को पुलिस ने सिया की मौजूदगी में किले में जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया।
1: केतन अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसकी यादें शेष हैं। परिजन और करीबी गम में डूबे हैं। उसकी याद में एक दिन पहले ही श्रद्धांजलि सभा रखी गई। इस मामले में पुणे पुलिस लगातार जांच में जुटी है। एक दिन पहले ही जांच टीम लोहागढ़ किले में सिया के साथ क्राइम सीन पर पहुंची। इस दौरान पुलिस वाले सिया से एक एक सवाल पूछते रहे और उसके जवाब के आधार पर क्राइम सीन रिक्रिएट करते रहे। पुलिस ने उसी स्थान से एक डमी को खाई में धक्का देकर पूरे घटनाक्रम को दोहराया।
5: लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी, उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है। किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी, उसको रिक्रिएट जा रहा किया गया, उसमें एक्यूज ने बता दिया है।
1: सिया के साथ प्री वेडिंग शूट के लिए बाली रवाना होने से पहले केतन का पासपोर्ट अचानक ही नहीं गायब हुआ था, बल्कि उसे गायब किया गया था। तमाम सवालों के बीच आज सिया और चेतन की पुलिस कस्टडी का आखिरी दिन है। दोनों को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। श्रीकृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, लोहागढ़ आज तक।
0: और चलिए अब बात कर लेते हैं सड़क हादसों की। सहारनपुर में सड़क हादसे का दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस पूरे हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दूसरा मामला हिट एंड रन का है, जहां पर अहमदाबाद में एक कार सवार ने बाइक को टक्कर मार दी। देखिए,
6: ये तस्वीरें दहला देने वाली है। एक कार को पीछे से दूसरी कार ने भयानक टक्कर मारी। तस्वीरें सहारनपुर में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र की हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर कट पार कर आगे निकल गया था और निर्माणाधीन हाईवे की ओर लौटने के लिए कार बैक कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर कई मीटर तक घिसटते चली गई, जबकि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चार लोगों की जान चली गई, जबकि तीन बुरी तरह घायल। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार कार ने यहां बाइक सवार को टक्कर मार दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शहर के व्यास वाड़ी चार रास्ता पर यह तेज रफ्तार सफेद कार इधर से आती है, सामने से एक बाइक पर तीन युवक आ रहे हैं। अचानक कार ने बाइक को टक्कर मारी, टक्कर मारकर कार सवार फरार हो गया, जबकि तीनों युवकों की हालत गंभीर है। आज तक ब्यूरो।
0: तो वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट में हमले के बाद ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर हमले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों ने फिलहाल एक दूसरे पर हमले बंद करने का फैसला किया है। एक समाचार एजेंसी एक्सियोस के मुताबिक दोनों देश हमले रोककर फिर से बातचीत करने की तैयारी में है। इसी हफ्ते ये बात हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल दोनों देश एक दूसरे पर हमला बंद करें। तो वहीं आयरलैंड ने गेंदबाजों के दम पर रोमांचक मुकाबले में भारत को एक रन से हराया। आयरलैंड ने इस तरह ही T20 की विश्व चैंपियन भारत को दो मैच सीरीज में 2-0 से हराया। आयरलैंड ने पहली बार भारत से सीरीज अपने नाम की है और पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए और जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। ऐसे में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की यह पहली सीरीज थी और भारत का प्रदर्शन इसमें निराशजनक रहा।
2: आयरलैंड ने रचा इतिहास, मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत से जीती सीरीज। आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए पहली बार मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत को किसी T20 सीरीज में हरा दिया है। बेलफास्ट में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में आयरलैंड ने भारत को सिर्फ एक रन से मात देकर 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। 3 साल बाद भारतीय टीम को किसी T20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। बेलफास्ट में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए। टीम की ओर से हैरी टेक्टर ने शानदार 53 रन की पारी। भारत के लिए डेब्यू कर रहे प्रिंस यादव ने प्रभावित करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए।

0: ভালোই রে পোর্টবান ভক্তকে এক ছোট সে ব্রেক কা আপকা হি মত জায়েগা দেখতে রহি আজ
1: প্রেজেন্টেড বাই पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
5: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी ये आपके लिए।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
10: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
11: हमने तब भी सवाल किया था।
12: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
11: हम आज भी सवाल करते हैं।
12: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
11: ऑपरेशन अग्नि,
12: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
11: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
13: In association with
14: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
15: वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था।
16: हाँ सर, बहुत खुश हैं सर, और आपको भी प्रणाम करते हैं सर। वैभव के लिए आप जो बोलते हैं का स्पोर्ट्स तक की क्या पर्स
15: जी, जी,
16: हम पूरा सर आपका देखते रहते हैं, तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा और हम लोग बहुत खुश हैं सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: राम मंदिर चंदा गबन मामले में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ी। छापेमारी में जेवरात जमीन के पेपर बरामद। आज कोर्ट में पेशी, वकीलों का केस लड़ने से इनका। काल विधानसभा में शुभेंदु सरकार पेश करेगी यूसीसी सहित 5 अहम विधेयक। बीजेपी ने कहा ऐतिहासिक होगा आज का दिन। टीएमसी के बागी विधायकों के रुख पर होगी नजर। सेशेल्स की संसद में गूंजा नमो मंत्र। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा हिंद महासागर हमें बांटता नहीं जोड़ता है। प्रधानमंत्री को मिला पर्यावरण संरक्षण पर खास सम्मान। मूसलाधार प्रहार से पूर्वोत्तर भारत में हाहाकार। अरुणाचल प्रदेश में भारी तबाही। असम में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। मॉनसून ने रोकी मुंबई की रफ्तार। 4 जुलाई के बाद दिल्ली को राहत। पुणे के केतन मर्डर केस में आज मंगेतर, सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी। लोहगढ़ किले में क्राइम सीन हुआ रिक्रिएट। पूछताछ में खुलासा जानबूझकर गायब किया गया था केतन का पासपोर्ट।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
0: मुंबई में कुछ दिनों की राहत के बाद मॉनसून ने एक बार फिर से जोरदार वापसी की। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव। भारी जलभराव के कारण अंधेरी सब्वे को किया गया बंद। अप्रिय घटना या हादसे को रोकने के लिए सब्वे के बाहर पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट एमडी ने जारी किया। इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना। असम में बाढ़ से हाहाकार। 100 से ज्यादा परिवार बुरी तरह से प्रभावित। सीएम हेमंत ने दिए राहत बचाव के निर्देश। लगातार हो रही बारिश ने ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक शिवसागर में दिसांग नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग में लैंडस्लाइड। सिजी नदी का बहाव पूरी तरह से रुका। लेडुंग गांव का पुल भी ढहा। अरुणाचल के कई पेन्योर में लगातार बारिश की वजह से भीषण भूस्खलन। पोटिन पोसा रोड पर आवाजाही बाधित। कोलकाता में मौसम ने ली भारी करवट। तेज बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। रेड रोड इलाके में सामने आई बारिश की तस्वीर। पश्चिम बंगाल में बाढ़ बारिश से आम जनजीवन प्रभावित। जयगांव के कई घर जलमग्न हुए। बाढ़ के कारण मुख्य मार्ग से टूटा संपर्क। रियासी में भारी बारिश के कारण सलाल डैम में भरा पानी। पानी का बहाव बढ़ने के कारण सलाल बांध के कई गेट खोले गए। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 5 से 6 दिनों में खत्म हो सकता है मानसून का इंतजार। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर के कई राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल। मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत पाने के लिए हिमाचल के हिल स्टेशन पर बढ़ी पर्यटकों की तादाद। लाहौल घाटी में होटल और होम स्टे लगभग पूरी तरह भरे। लाहौल घाटी में सुंदर नजारे देखकर खिले पर्यटकों के चेहरे। खूबसूरत वादियों में वाटरफॉल और झील ने बढ़ाया उत्साह। हिमाचल प्रदेश के कच्चे इलाकों में हल्की बारिश हुई। शिमला, कांगड़ा और मंडी जिलों में तेज हवा के साथ बदला मौसम। हिमाचल प्रदेश में 4 जुलाई तक बारिश का दौर चलने का अनुमान। 2 जुलाई से उत्तर पश्चिम भारत पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ डाल सकता है असर। अयोध्या चढ़ावा मामले में गिरफ्तार 8 लोगों की आज न्यायिक हिरासत खत्म। आगे की पूछताछ के लिए पुलिस कर सकती है कस्टडी की मांग। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला लेने की बात कही। आज बार एसोसिएशन की होने वाली आमसभा में इस पर अंतिम फैसला होगा। राम मंदिर चोरी मामले में नई जानकारी सामने आई है। मामला सार्वजनिक होने से पहले ही ट्रस्ट इसकी जानकारी दी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन तेज हुआ। गिरफ्तार सभी आरोपियों के घर छापेमारी। टिन्नू यादव और अविनाश शुक्ला के घरों की ली गई तलाशी। आरोपियों के घर छापे में मिले संपत्ति के पेपर दस्तावेजों का सत्यापन कराएगी पुलिस। कुछ लोगों के घरों से जेवरात मिलने की भी जानकारी। राम मंदिर चोरी मामले में सीसीटीवी से बड़ा खुलासा। 5 जून को आरोपी अविनाश के हाथ में दिखाई दे रहा है काला बैग। चढ़ावा चोरी पर अखिलेश ने बीजेपी सरकार को फिर से घेरा। कहा सीसीटीवी बंद कर की गई चोरी। इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा एसपी सरकार में राम भक्तों पर चली गोलियां। इनके पास विकास का एजेंडा नहीं। अखिलेश को सीएम योगी ने दी चुनौती, कहा अगर हिम्मत है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोलकर दिखाएं। राम मंदिर से जुड़े विवादों के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तेज नारायण पांडे ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर निशाना, कहा पहले फैलाए जाते थे दंगे, अब मुहर्रम में सड़कों पर नहीं होता है बवाल। पेपर लीक को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, कहा बीजेपी राज में लगातार लीक हो रहे हैं प्रश्न पत्र, युवाओं के भविष्य के खिलवाड़। पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी मुख्यालय के घेराव की कोशिश, मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मुंबई में भी स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल, महाराष्ट्र में टेट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन। शुभेंदु सरकार आज विधानसभा में पेश कर सकती है यूसीसी बिल, मुख्यमंत्री पहले ही दे चुके हैं धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने का संदेश। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान, कहा विश्व कल्याण के लिए सुनी जानी चाहिए भारत की बात, भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा व्यवस्था को मानव कल्याण के हित में बताते हुए कहा दुनिया को पूर्णता प्रदान करना भारत की भूमिका। आज अकाल तख्त के सामने पेश होंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान, कहा हमारे लिए अकाल तख्त सर्वोपरि, सभी मंत्री और विधायक भी रहेंगे साथ। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव का हमला, बताया कठपुतली मुख्यमंत्री, कहा दिल्ली से जो कहा जाता है वही करते हैं। तेलंगाना में बीजेपी का चुनावी बिगुल, नितिन नवीन ने की डबल इंजन सरकार बनाने की अपील। सेशल्स की संसद में पीएम मोदी का संबोधन, कहा हिंद महासागर हमें बांटता नहीं जोड़ता है, ये है हमारा साझा घर। आजादी के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने सेशल्स को दी बधाई, कहा दोनों देशों में सम्मान का रिश्ता लगातार मजबूत हो रहा है हमारा संबंध। राष्ट्रपति पैट्रिक के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत, यूपीआई लागू करने के लिए दोनों देशों में समझौता। सेशल्स ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पीएम मोदी को दिया खास सम्मान, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड मिलने पर जताया आभार। पीएम मोदी को खास सम्मान मिलने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा सतत विकास में भारत रोल मॉडल के तौर पर बढ़ रहा है आगे। सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने पर शानदार समारोह हुआ, गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने मुख्य अतिथि। सेशल्स के रोश कैमन स्थित स्टेड लिनेटेड स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, परेड में सुरक्षा बलों ने दी सलामी। समारोह में भारत और सेशल्स के बीच गहरे रक्षा संबंधों की दिखी झलक, भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों ने भी किया कदमताल, भारतीय नौसेना के दो जहाज भी शामिल हुए। गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में जाबाजों ने दिखाए करतब, पैराशूट के जरिए आसमान से लगाई छलांग। नेशनल डे समारोह में सैन्य बैंड की धुन ने भरा जोश, भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए भारी तादाद में पहुंचे लोग। असम में कृषि मंत्री पीयूष हजारिका का खेतों में किसानों के बीच दिखा अनोखा अंदाज, धान रोपाई में शामिल होकर किसानों को आधुनिक खेती की पद्धति के लिए प्रोत्साहित किया। पटना साइंस कॉलेज में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के काफिले के सामने खड़ा हुआ एक छात्र, मुख्यमंत्री ने गाड़ी रोक कर की स्टूडेंट से बात। केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच तेज, लोहगढ़ में घटनास्थल पर आरोपियों के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रियों को विदेश मंत्रालय की सलाह, बिना चीन के परमिट के यात्रा नहीं करने का निर्देश। पटना में भीषण गर्मी से 30 जून तक 8वीं तक के स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार होने वाला है खत्म, अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ से पहले आज प्रथम पूजा का आयोजन। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का होगा शुभारंभ, 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पवित्र छड़े मुबारक के अमरनाथ गुफा पहुंचने के साथ होगा समापन। इस बार अमरनाथ यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल देश विदेश से बड़ी संख्या में आते हैं श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा दो प्रमुख मार्ग पहलगाम और बालटाल से होती है शुरू, रजिस्ट्रेशन, हेल्थ सर्टिफिकेट, यात्रा परमिट, आरएफआईडी कार्ड अनिवार्य होगा। बालटाल बेस कैंप पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, अमरनाथ यात्रा तैयारियों की समीक्षा बैठक की, यात्रा व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा। अहमदाबाद में हिट एंड रन से एक की मौत हुई, सीसीटीवी में सड़क हादसा कैद, कार की टक्कर के कारण मोटरबाइक सवार हवा में उछला। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के सब इंस्पेक्टर ने यात्री के साथ की बेरहमी से मारपीट, बाल पकड़कर पीटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नशे में धुत पिस्टल दिखाकर ट्रेन में यात्रियों को डरा धमका रहा था शख्स, कोडरमा रेलवे स्टेशन पर दबोचा गया आरोपी। मोतिहारी में चोर गिरोह का एक और कारनामा, दुकान से 10,000 रूपये लेकर हुआ फरार, बच्चों को अकेला देख दो बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर गंगा स्नान के दौरान 3 दुखद हादसों में एक बालिका सहित 3 श्रद्धालुओं की मौत हुई। गाजियाबाद के इंद्रपुरम के बैंक्वेट हॉल में बच्चे से कराई लाखों के शगुन और गहनों से भरे बैग की चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। गाजियाबाद में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, 1 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त। झांसी में शादी के 4 महीने बाद की ही नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाए मारने के आरोप। फरीदाबाद में कारोबारी ने दुकान में की खुदकुशी, वीडियो में पत्नी ससुराल पक्ष पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। सहारनपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर ही व्यक्ति की मौत हुई। पटना में ज्वेलरी शॉप के मालिक से लूटपाट, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बगहा में देर रात बवाल, 2 पक्षों में पथराव, 2 पुलिसकर्मी समेत 6 घायल। जालना में देव दर्शन के लिए निकले दोस्तों की कार का भीषण हादसा हुआ, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। मुंबई के माहिम में मामूली धक्का लगने के कारण रेलवे स्टेशन के पास युवक को मारा चाकू, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटा। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 2 दिन पहले हुए हादसे का वीडियो आया सामने, रिवर्स लेते ही कार को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, 4 की मौत। अहमदाबाद में तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर, 3 युवक घायल, मौके से फरार कार चालक। जालना में नशे की गोलियों की बिक्री करने वाले रैकेट का पर्दाफाश, आतंकवाद विरोधी दस्ते ने 1,080 बटन गोलियों के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा। गोंडा में लड़की से मिलने पहुंचे युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित। वाराणसी में पुलिस पर फायरिंग करने वाला अपराधी गिरफ्तार, घटना का वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल। ग्वालियर में रहस्यमय आग के खौफ में 5 घर, अचानक से जलने लगता है सामान, पुलिस ने संभाला मोर्चा। दूसरे T20 में भी आयरलैंड ने वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया, मेजबान टीम का सीरीज पर 2-0 से कब्जा। पहले खेलते हुए आयरलैंड ने 8 विकेट पर बनाए 154 रन, भारत 9 विकेट खोकर सिर्फ 153 रन ही बना सका। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन 0 पर आउट हुए, बेकार गई तिलक वर्मा के अर्धशतकीय पारी। महिला T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हुई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराया। भारत की महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने दिया था 171 रन का लक्ष्य, कप्तान हरमनप्रीत ने बनाए 56 रन। ईरान सेना की अमेरिका को खुली चेतावनी, कहा दोबारा हमला हुआ तो अंजाम और बुरा होगा। अमेरिका ने कहा ईरान ने तोड़ा समझौता। ईरान के विदेश मंत्री अराग्ची ने इराक के विदेश मंत्री से की मुलाकात, इराक के विदेश मंत्री ने हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने की अपील की। यूक्रेन के ज़पोरोजिया में रूसी सेना का भीषण हमला, गाइडेड बमों से रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना, घरों पर गिरी मिसाइल, हमले में 1 की मौत, 14 घायल। रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन का पलटवार, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया दावा, यूक्रेन ने रूस के 2 तेल रिफाइनरी को उड़ाया। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने से किया इनकार, स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको ने किया ऐलान। सुरक्षा के मोर्चे पर एक साथ आए दक्षिण कोरिया और जापान, राजधानी सोल में दक्षिण कोरिया और जापान के रक्षा मंत्रियों ने की बैठक। डिजिटल टैक्स को लेकर ट्रंप की धमकी पर यूरोपीय संघ का जवाब, कहा हम दबाव में नहीं आएंगे। पीएम मोदी को मिला सेशल्स का पर्यावरण संरक्षण सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी ने सेशल्स की संसद को किया संबोधित, कहा हिंद महासागर हमें बांटता नहीं जोड़ता है।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 जून 2026 दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, खूब व्यस्तता बनी रहेगी, नौकरी में उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, करियर में लापरवाही ना करें, संतान की चिंता हो सकती है, रिश्तों में समस्या आ सकती है, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, निपटा लीजिए। नौकरी में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, धन का लाभ होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। सिंह राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, धन का लाभ होगा, काम की अधिकता बनी रहेगी, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।
कन्या राशि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। तुला राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। वृश्चिक राशि, ऑफिस की स्थितियां बेहतर होंगी, संपत्ति का लाभ होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कारोबार में लाभ होगा, पदोन्नति का योग बन रहा है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

मकर राशि, महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें, वाद विवाद से बचाव करें, बड़ों की सलाह से सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, नौकरी में बेहतरी होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, करियर में नई शुरुआत होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी आपके लिए।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी या फिर चंद मोहरों को बलि का बकरा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी?
1: ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें कड़ी सजा मिले।
2: हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपक राय पाक साफ साबित हो जाते हैं?
3: तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखाधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी की शह से ही हो रहा है।
0: हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं।
4: कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
5: जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है, उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते।
0: एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।
6: प्रधानमंत्री कार्यालय ने चंपत राय से उनके रिकॉर्ड मांगे, हिसाब किताब मांगा, चंपत राय ने मना कर दिया देने से। सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंपत राय से रिकॉर्ड मांगे और चंपत राय ने मना कर दिया। इस देश में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मोदी जी को मना भी कर सकता है? वो मोदी जी ने मान लिया, रिमाइंडर भी नहीं भेजा, मान भी लिया। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि तार कहां तक है। चंपत राय के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके सामने मोदी जी भी बेबस हैं? एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया, उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है, चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। सब लोगों की यही मांग है। ये महापाप है, चंदा चोरी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़, ये महापाप है और इस महापाप को करने वाले सभी राक्षसों को इनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी, जेवरात और जमीन के पेपर बरामद, आज कोर्ट में होगी पेशी, वकीलों का केस लड़ने से इनकार। सेशेल्स की संसद में गूंजा नमो मंत्र संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, हिंद महासागर हमें बांटता नहीं जोड़ता है, प्रधानमंत्री को मिला पर्यावरण संरक्षण पर खास सम्मान। मूसलाधार प्रहार से पूर्वोत्तर भारत में हाहाकार, अरुणाचल प्रदेश में भारी तबाही, असम में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, मॉनसून ने रोकी मुंबई की रफ्तार, 4 जुलाई के बाद दिल्ली को मिलेगी राहत। पुणे के केतन मर्डर केस में आज मंगेतर सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी, खत्म हो रही है पुलिस की रिमांड, पूछताछ में खुलासा, जानबूझकर गायब किया गया था केतन का पासपोर्ट।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हफ्ते का पहला दिन, नया दिन, नई शुरुआत, आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट न्यूज शो के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से भी, लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को चढ़ावा, चोरी का पता था, सीसीटीवी ने खोले कौन से राज, आज की बड़ी खबर आपको बताएंगे अब से कुछ ही देर बाद। केतन मर्डर मामले पर भी बताएंगे ताजा अपडेट, आज खत्म हो रही है सिया की रिमांड। क्रिकेट की बात करेंगे जहां पर भारत को दोहरा झटका मिला है, महिला और पुरुष दोनों टीम्स के हिस्से हार आई है। और ठीक आधे घंटे बाद दिन की सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के साथ, जिसमें 5 जून का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला को पुलिस ले जाती हुई दिख रही है। आज तक मिली जानकारी के मुताबिक अविनाश शुक्ला के पास से पुलिस ने 5 जून को 5 लाख रुपए बरामद किए थे। चंपत राय के निर्देश पर ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे थे, यानी 5 जून को ही मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका था, लेकिन इसे ना तो पुलिस ने और ना ट्रस्ट ने सार्वजनिक किया। 5 जून को कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, लेकिन सीसीटीवी फुटेज 5 जून का है, जिसमें अनौपचारिक तरीके से केस को निपटाने की कोशिश की जा रही थी, ये भी अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 7 जून को पहली बार चढ़ावा चोरी का ये मामला सामने आया है।

0: इस सीसीटीवी वीडियो को गौर से देखिए। 5 जून रात 8:13 का ये वीडियो है और ये वीडियो गवाही दे रहा है कि किस तरह अयोध्या के राम मंदिर में हुए चढ़ावे की चोरी के मामले को दबाने की कोशिश की गई। वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है वो चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला है। सीसीटीवी में सफेद रंग की कार में बैंक कर्मी और पुलिस के साथ अविनाश शुक्ला गाड़ी में बैठते दिखाई पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट को मंदिर से चढ़ावा चोरी की जानकारी मिलने के बाद से अविनाश शुक्ला के पास से पुलिस ने 5,00,000 रुपए बरामद किए थे। सीसीटीवी में पुलिस अविनाश शुक्ला को पकड़कर ले जाती दिख रही है। जो काला बैग दिख रहा है उसमें बरामद कैश भरा है। इस वीडियो के मायने समझिए। 5 जून का ये वीडियो है। 7 जून को चढ़ावा चोरी की बात पहली बार सामने आई, यानी आरोप लगने से पहले ही श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट को इसकी भनक लग गई थी। आज तक को सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे थे, यानी 5 जून को ही मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका था। छापेमारी के दौरान अविनाश शुक्ला के ठिकाने से नकदी भी बरामद हुई थी। हालांकि उस समय ट्रस्ट की ओर से पुलिस को कोई औपचारिक शिकायत नहीं दी गई। सूत्रों का दावा है कि 5 जून को पुलिस की कार्यवाही आधिकारिक FIR के आधार पर नहीं बल्कि अनौपचारिक स्तर पर हुई थी। यानी बदनामी के डर से ट्रस्ट इतने बड़े मामले को सार्वजनिक करने से बच रहा था, लेकिन 2 दिन बाद ही पूरा मामला खुल गया। इस बीच चढ़ावा चोरी केस में पुलिस की कार्यवाही तेज है। अयोध्या पुलिस ने कल नामजद आरोपियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से पूछताछ की।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। मैं इस समय पर अयोध्या में ही रह रहे रमाशंकर मिश्रा, जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजे गए, रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। उनके परिजनों से, उसकी भाभी, बहन, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा का घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था।
0: अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घरों पर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने आरोपियों के घर आने जाने, उनके संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई। आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या में एक मंदिर में पुजारी हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की। रमाशंकर के परिवार के मुताबिक वो लंबे समय से घर ही नहीं आया।
2: कमरा पे अलग लिए रहते हैं, दो ढाई साल से यहाँ रहते नहीं है। आना जाना भी यहाँ का नहीं है। एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पाँव नहीं रखते हैं।
1: कब से नहीं आया?
2: 2-2.5 साल हो गए यहाँ नहीं आया। हाँ, 2 साल।
0: पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में करीब 80,00,000 रुपए की बरामदगी की जा चुकी है। इनमें से करीब 20,00,000 रुपए टिन्नू यादव के पास से मिलने की बात सामने आई है। चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की आज रिमांड खत्म हो रही है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भगवान के घर चोरी के इन आरोपियों के बचाव में क्या कोई वकील सामने आएगा? आज इस पर भी फैसला होना है। सिमर चावला के साथ संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
3: संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। संतोष, 5 जून को सीसीटीवी फुटेज से साफ हो रहा है कि ये मामला सामने आ चुका था, लेकिन इसे अपने स्तर पर ट्रस्ट ने छुपाया। इसकी बड़ी वजह बदनामी थी या फिर बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट था?
1: देखिए, बिल्कुल, राम मंदिर ट्रस्ट को पहले ही, जब 5 जून के सीसीटीवी से इस बात की पुष्टि तो हो चुकी है कि ट्रस्ट को पहले ही जानकारी हो चुकी थी कि चोरी हो रही है, और ये अविनाश शुक्ला का जो सीसीटीवी आया ये इस बात की पुष्टि करता है कि इसके घर से जो रिकवरी हुई और जो चोरी का जो नकदी बरामद हुई ये ट्रस्ट की जानकारी में था। उसके बाद भी ट्रस्ट ने कोई FIR नहीं दर्ज कराई, और यही वजह है कि सभी आरोपियों से पूछताछ तो ट्रस्ट के द्वारा की गई, लेकिन FIR दर्ज कराने में देरी हुई। और देरी क्या हुई? SIT की रिपोर्ट के बाद ये FIR हुई, तो पूरी किरकिरी हो गई। जितना राम मंदिर ट्रस्ट चाहता था कि बदनामी ना हो, उतनी ज्यादा किरकिरी हो गई। BJP, राम मंदिर ट्रस्ट, तमाम लोग विपक्षियों के निशाने पर आ गए, और उसके बाद जब SIT की सिफारिश पर FIR दर्ज हुई है, तो ये कहा जाए कि ट्रस्ट को पहले से जानकारी थी, और जानकारी होने के बावजूद वो अपने स्तर पर इस पूरे मामले को की लीपापोती करने की कोशिश में कर रहा था। और उसके बाद जब बड़े स्तर पर जब ये देखा गया कि पॉलिटिकल मामला होता जा रहा है, मामला खुल चुका है, तब जाकर SIT के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ये FIR दर्ज हुई है। तो ये इस बात की पुष्टि कर रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को चोरी की पहले से जानकारी थी। ये जो चोरी में आरोपी पकड़े गए, इनको पुलिस की मदद से पकड़ा गया, इनके घरों से बरामदगी की गई, लेकिन ट्रस्ट के द्वारा FIR दर्ज कराने में देरी की गई। ये एक मामला ऐसा है जिसकी वजह से आरोपियों को भी मदद मिलेगी, क्योंकि ये CCTV ऐसा नहीं, बचाव पक्ष भी अपने लिए कोर्ट में लगाएगा, और FIR की देरी, ये तमाम चीजें राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से की गई देरी आरोपियों की मददगार साबित हो सकती है। ये एक बड़ी चूक है लीगली अगर देखा जाए, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट जितना इसको छिपाने की कोशिश कर रहा था उतना ही ज्यादा ये बड़ा मामला हो गया, और FIR दर्ज होने के बाद तब ये कार्रवाई का दौर शुरू हुआ।
3: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों के बचाव में कोई वकील सामने आएगा या नहीं, इस पर आज फैसला होना है। इन आरोपियों की आज 3 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। आज सुबह 11 बजे फैजाबाद बार एसोसिएशन की एक अहम बैठक होगी, जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि बार के वकील आरोपियों का बचाव करेंगे या नहीं। बार एसोसिएशन के सदस्यों से आरोपियों की ओर से पेश ना होने का प्रस्ताव रखने वाला एक प्रस्ताव जनरल बॉडी के सामने रखा जाएगा। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो बार एसोसिएशन सर्वसम्मति से यह तय करेगा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में किसी भी आरोपी का बचाव नहीं किया जाएगा। और इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों को पुलिस हिरासत में ना लेने पर सवाल उठाए।
4: उनकी पुलिस रिमांड भी नहीं ली, कोई पुलिस पूछताछ नहीं हुई। भाई जिन 8 लोगों को पकड़ा उनसे पूछना तो चाहिए था, कितनी चोरी करी तुमने, किसके पास पहुंचाया, कहां छुपाया, पूछताछ होती है ना पुलिस, वो भी नहीं करी। उनको पुलिस रिमांड ही नहीं ली, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तो ये साफ जाहिर है 2-4 दिन में इनकी बेल करा देंगे। तो ये पूरा का पूरा जो चल रहा है ये छिपाने की कोशिश है, इस पे लीपापोती करने की कोशिश है, इसको ढकने की कोशिश है।
3: संतोष मेरे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। संतोष, अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस हिरासत में इन आरोपियों को क्यों नहीं लिया गया। आप लगातार इस केस को फॉलो कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है कि ऐसा किया गया, क्यों लोगों को मौका देना है इस तरह से उंगली उठाने का?
1: देखिए, अरविंद केजरीवाल राजनीतिक जो भी बयान दे रहे हैं उस पर तो नहीं, लेकिन लीगल एक्शन में बात करें तो ये प्रोसेस ही है। पहले वो जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे, जो शुक्रवार को मुहर्रम की छुट्टी थी तो रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। आज जुडिशियल कस्टडी के लिए फिर से इनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की स्पेशल कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा, वहां जुडिशियल कस्टडी बनेगी। पहले न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, न्यायालय अपनी कस्टडी में लेगा, यानी कि जेल जाएंगे। उसके बाद जब पुलिस इनकी रिमांड मांगेगी, पुलिस कस्टडी रिमांड होती है पूछताछ के लिए, जब रिमांड मांगेगी तब इनकी पुलिस इनको रिमांड मिलेगी, तब ये पूछताछ शुरू होगी। तो लीगल प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जो बयान दे रहे हैं वो राजनीतिक तौर पर है, लेकिन कानूनी तौर पर ये प्रोसेस का फॉलो है कि जुडिशियल कस्टडी पहले होती है, उसके बाद जब पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी उस पर कोर्ट में पेश किया जाएगा कि इन लोगों को आरोपियों से पूछताछ करना बाकी है, पूछताछ करना जरूरी है केस के लिए, एविडेंस इकट्ठा करने हैं, तमाम चीजें बरामद करनी है, तब इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर होगी और उसके बाद तब पुलिस की कस्टडी में आएंगे।
3: ठीक है, मैं रोकूंगी आपको। इस बीच एक बड़ी खबर इस चढ़ावा चोरी मामले में कि नियुक्तियों को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जितने भी रिश्तेदार थे, जान पहचान के लोग थे, वो ट्रस्ट में नियुक्त किए गए। ये सिफारिशी नियुक्तियां थी जिसको लेकर अब सवाल किए जा रहे हैं, और ऐसा अब साबित भी हो चुका है। जो तमाम लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो आपस में रिश्तेदार हैं, जुड़े हुए हैं, और इनकी नियुक्तियां सिफारिशी तौर पर हुई थी। रिश्तेदारी सिफारिशी नियुक्तों पर एक्शन संभव हो सकता है। और इस बीच चढ़ावा चोरी मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है। SP चीफ अखिलेश यादव हमलावर हैं, तो वहीं CM योगी भी जोरदार तरीके से जवाब दे रहे हैं।
5: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर है। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है, और CCTV फुटेज है कि कितनी बार CCTV बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं, तब और क्या बताया जाए।
6: आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो, ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
3: तो उत्तरप्रदेश में धर्म पर बवाल, तो वहीं पंजाब में बेअदबी कानून को लेकर आज अकाल तख्त में बड़ी पेशी हुई है। बेअदबी कानून के मुद्दे पर आपके सभी सिख विधायक और सिख मंत्री आज अकाल तख्त के सामने पेश होंगे। सीएम भगवंत मान हालांकि पेश नहीं होने वाले, उन्होंने कहा है कि उन्हें तलब नहीं किया गया। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने 15 जून को सभी दलों के सिख विधायकों और सिख मंत्रियों को अकाल तख्त के समक्ष उपस्थित होने के लिए तलब किया था। पिछले दिनों धार्मिक ग्रंथ के अपमान के खिलाफ बने कानून को लेकर सिख संस्थाओं की आपत्ति के बाद अकाल तख्त ने विधायकों और मंत्रियों को तलब किया। उनका कहना है कि यह कानून सिख पंथ से परामर्श किए बिना बनाया गया है। असीम बसी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। असीम, आज सबको पेश होने के लिए कहा गया है, कौन कौन जाने वाला है?
7: जी हाँ, जो अकाल तख्त साहब का आदेश था 15 जून को आया था कि जितने भी सिख एमएलए हैं पूरी पंजाब विधानसभा में, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टीज को, सभी को आज 11 बजे पेश होने के लिए बुलाया गया है। जहेदार कुलदीप सिंह गड़गज जो हैं खुद वहां मौजूद रहेंगे। और बेसिकली ऑब्जेक्शन यही था कि एंटी सेक्रेटरी लॉ जो बना बेअदबी के खिलाफ, जो इन्होंने अमेंडमेंट लेकर आए थे 13 अप्रैल को, उसमें अकाल तख्त साहब का कहना है कि अकाल तख्त साहब को, एसजीपीसी को या सिख जथेबंदियां को जो है कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उनसे पूछा नहीं गया और अपने तौर पे इन्होंने एक अमेंडमेंट करके कानून जो है गवर्नर साहब से पास करा लिया। अब आज इम्पोर्टेंट होगा कि क्या कहते हैं जहेदार साहब अकाल तख्त के, इनको क्या निर्देश देते हैं। आज हालांकि क्लेरिफिकेशन होगी, इन सबको अपनी रिटर्न क्लेरिफिकेशन देनी होगी या वर्बल कुछ चीजें पूछते हैं वो देनी होगी। सिख एमएलए सिख मिनिस्टर जो हैं वो यहां पर आज पेश होंगे। और भगवंत मान क्यों इसलिए नहीं आ रहे, क्योंकि 15 जून को निर्देश हुआ था, क्योंकि जो अलेज्ड वायरल वीडियो चल रहा है उसके चक्कर में उसके आरोपों में अकाल तख्त साहब के जथेदार ने पहले ही सिख कौम को आदेश किया है कि भगवंत सिंह मान को जो है उसका सोशल वर्कआउट उनका किया जाए, इसलिए उनको ना बुलाया गया है ना वो आएंगे। लेकिन सिख एमएलए सिख मंत्री जो हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और जो नॉन सिख हैं वो रिटर्न में अपना रिप्लाई जो है भेज देंगे। सो बड़ी डेवलपमेंट है, 11 बजे यहां पर ये अकाल तख्त साहब के सामने जो पेशी होगी सेक्रेटेरिएट में ही होगी। एक हॉल रखा गया है जहां पर सभी एमएलए को जो है बिठाया जाएगा और वहां पर अकाल तख्त साहब के जथेदार जो है उनसे बात करेंगे। जी हां,
3: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। यहां पर अटकलें तेज हो गई हैं कि आज ही पश्चिम बंगाल विधानसभा समान नागरिक संहिता से जुड़ा बिल वहां पर पेश हो सकता है, लेकिन अब तक इस पर सस्पेंस है क्योंकि विपक्ष के विधायकों का यह दावा है कि उन्हें बिल की कॉपी नहीं मिली है। ऐसे बिल आज पेश हो गए नहीं, एक बड़ा सवाल है। आज तक ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री शंकर घोष से बातचीत की है।
8: देखिए, यूसीसी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है और साथ में हमारे सीएम साहब ने इस बारे में जिक्र किया है कि यूसीसी हम लोग जरूर पश्चिम बंगाल में पारित करेंगे और इसके लिए जो प्रोसीड्योर है उसी प्रोसीड्योर के हिसाब से यूसीसी हमारे सदन में उसको प्लेस किया जाएगा और उसके बाद डिस्कशन और वो बिल पास किया जाएगा। तो उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बहुत सारे राज्य में किसी में पास हुआ है और किसी में टेबल्ड हुआ है, तो यूसीसी हर जगह में लागू होगा, ये तैयार है।
9: पश्चिम बंगाल के राज्य में यूसीसी कितना जरूरी है?
8: देखिए, हर राज्य के अंदर ही यूसीसी जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज टू स्ट्रेंथन द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री, तो इसीलिए यूसीसी का जरूरत सबसे ज्यादा है। उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी है और इस बारे में कमिटी भी है, वो कमिटी भी अपना ओपिनियन देता है।
9: क्या लगता है, इस तरह हुमायूं कबीर भी है, नौशाद सिद्दीकी भी है, मत विरोध कितना होगा?
8: देखिए, विरोध की बात नहीं है, हम तो सोचते हैं कि यूसीसी को सभी सपोर्ट करेगा।
3: उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि बिल के बारे में वो विपक्ष को कुछ भी नहीं बताया गया।
10: जब कोई सरकार में होता है उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सबका साथ बात करके कोई बिल को प्लेस करना। ये भाजपा सरकार यूसीसी लेके इनका जो स्टैंड है, मैं एक ही चीज बोल सकता हूं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये अच्छा है ना बुरा है, इसमें पूरा डिस्कशन होना चाहिए।
3: इंद्रजीत कुंडू मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। इंद्रजीत, पश्चिम बंगाल में यूसीसी का क्या भविष्य दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि हमें बिल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, कुछ बताया नहीं गया।
11: जी हाँ बिल्कुल, देखिए इन प्रिंसिपल पश्चिम बंगाल में नया बीजेपी सरकार यूसीसी को लागू करना चाहती है। ये एक प्री पोल प्रॉमिस है जो मैनिफेस्टो में भी था और ये साफ कर दिया है सरकार ने कि वो ला रही है। पिछले हफ्ते चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने खुद बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पश्चिम बंगाल में लागू होगा, लेकिन जो नया बिल है जो असेंबली में लाया जाएगा वो कब लाया जाएगा इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। कहा जा रहा था

0: सिया और चेतन ने दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी। इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था। और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है, लेकिन आज पर्यटकों के लिए और जितने विजिटर्स हैं उन सभी के लिए इसे बंद किया गया था। लेकिन यही सीढ़ियाँ हैं, इसी सीढ़ियों से तीनों ऊपर गए थे। चेतन चौधरी गया था, उसके बाद सिया और केतन अग्रवाल भी गया था, और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।
1: सिया और केतन कुछ ही महीनों बाद साथ फेरे लेने वाले थे, लेकिन 18 जून को एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। इस बीच सिया के साथ कत्ल के आरोपी चेतन के कई वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में दोनों क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते दिखे हैं। खुलासा ये भी हुआ है कि हत्या से पहले सिया ने लोहगढ़ किले का वीडियो यूट्यूब पर सर्च किया था और वहां के लोकेशन को कैफे में मुलाकात के दौरान चेतन के साथ साझा किया था। बात यहीं तक नहीं रुकी, सिया का बड़ा भाई साहिल गोयल भी चेतन को जानता था, दोनों ने साथ साथ क्रिकेट खेले थे, उससे जुड़ा भी वीडियो सामने आया।
2: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे,
3: और इसी क्रिकेट ग्राउंड में सिया भी आती थी और उसकी वजह से जो है चेतन और सिया एक दूसरे को पहचानने लगे थे।
2: यह भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम हर तरीके से ये जारी है, उस हिसाब से हम आगे बताएंगे आपको।
3: मित्तल परिवार की जो है कितने घंटों तक पूछताछ की गई?
2: मित्तल परिवार की हमने इंक्वायरी की है और उनको अभी भी कुछ और हमारे जो डाउट्स है वो भी हम उनसे पूछने वाले।
3: कितने घंटे तक उनकी पूछताछ की गई थी?
2: नहीं, कल भी की है, अभी आगे भी करनी पड़ेगी।
1: पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बाबले, लोहगढ़ आज तक।
4: और अब बात बाढ़ से बिगड़े हालात की, क्योंकि पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम के तमाम हिस्सों में संकट गहरा गया है बाढ़ की वजह से। बंगाल में भारी बारिश से स्थिति गंभीर बनी हुई है, अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और फ्लैश फ्लड से बड़ी तबाही हुई है, वहीं असम के धीमाजी में कई गांव पानी भरने से मुसीबत में पड़ गए हैं।

0: बाढ़ से बंगाल के कुछ हिस्से बेहिसाब संकट का सामना कर रहे हैं। अलीपुरद्वार के जयगांव से आई ये तस्वीर देखिए। सड़क पर ऐसा सैलाब आया है कि वहां से गुजर रहे लोग भी तेज धार में बहने लगे। बाइक सवार दो लोग उस सैलाब में गिर पड़े, उसके बाद वो खुद की जान बचाते नजर आए, लेकिन डरावनी लहरें बाइक बचा रहे शख्स को बहा ले गईं। अब तक उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में मूसलाधार बारिश के बाद हालात तेजी से बिगड़े हैं। शनिवार रात से ही यहां भारी बारिश हुई है, इसका गंभीर असर जनजीवन पर दिख रहा है। अरुणाचल से आई इन तस्वीरों को देखिए। लोअर सियांग जिले में जब लैंडस्लाइड हुआ तो हड़कंप मच गया।
1: देख सकते हैं आप NH-13 जो 7 डिस्ट्रिक्ट को लगता है, जून 24 को एक क्लाउड बस्ट हुआ, बादल फटा, उसके बाद पूसा के निपको कॉलोनी में डैमेज हुए, 5 लोग मिसिंग हुए, एक डेड बॉडी को रिकवर किया गया। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पर ईटानगर से अगर आप आएंगे तो ये NH-13 नेशनल हाईवे 13 आपको कनेक्ट करता है, आगे जाके पूसा 14 को कनेक्ट करता है। लेकिन इस हाईवे की कंडीशन आप देखिए, जगह जगह लैंडस्लाइड, क्लाउड बस्ट के बाद 24 जून के बाद रिकवरी और जो रिस्टोरेशन का वर्क है जारी। हमने डिप्टी कमिश्नर पापुम परे से भी जाना, लेकिन उन्होंने कहा ये रोड कम्प्लीटली ब्लॉक रही।
0: सीजी नदी के किनारों पर बेहिसाब खतरा बढ़ गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जान पर बनाई है। लैंडस्लाइड की वजह से नदी पर मानो डैम बन गया। अब आशंका जताई जा रही है कि अगर ये मलबा बहा तो फ्लैश फ्लड से भारी तबाही आ सकती है। प्रशासन ने इस इलाके के गंभीर हालात को देखते हुए लोगों को आगाह किया है और कहा है कि वो नदी के किनारों से दूर रहें, नदी में जाने से बचें। 24 जून को केई पन्योर जिले में बादल फटे थे, वहां भारी तबाही हुई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, अब तक कई लोग गायब हैं। तब से अब तक वहां राहत और बचाव का काम जारी है।
1: अरुणाचल प्रदेश में जो बादल फटा था 24 जून को, आज एडवाइजरी जारी की, एक ही रास्ता खुला जो राजधानी ईटानगर की ओर जाता है। आपको हम रास्ते की हालत दिखाएंगे। ये देखिए इस वक्त अगर आप आते हैं, बारिश काफी ज्यादा आ रही है, ये रास्ते की कंडीशन है। वो आगे गाड़ियां फंस रही हैं, और ये देखिए ये रास्ते की

0: हालत है।
1: उधर असम में भी बाढ़ की वजह से तेजी से हालात बिगड़े हैं। धेमाजी इलाके में करीब 70 गांव में बेहिसाब संकट बढ़ा है। इससे 15,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। धेमाजी के बदतर हालात का अंदाजा वहां की तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। घरों में पानी भर चुका है, कमर भर पानी में डूबकर लोग आने जाने को मजबूर हैं, सड़कों पर जल जमाव है। ऐसे हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने रविवार को हालात की जानकारी ली और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। आज तक ब्यूरो।
2: और अब बात क्रिकेट की। क्रिकेट में भारतीय टीम को दोहरा झटका लगा है। एक तरफ आयरलैंड ने सीरीज जीत ली तो वहीं दूसरी तरफ T20 के महिला विश्व कप से भारतीय टीम बाहर हो गई है। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की। T20 वर्ल्ड कप जीते ज्यादा दिन नहीं बीते हैं और टीम इंडिया आयरलैंड जैसी कमजोर टीम से सीरीज गंवा बैठी है। कल के मैच में तिलक वर्मा को छोड़कर सारे बल्लेबाज नाकाम रहे। आयरलैंड से हुई है शर्मनाक हार। एक रन से आयरलैंड जीत गया और इसके साथ ही भारत ने सीरीज भी गंवा दी है। जो बड़े नाम हैं ये भी विफल रहे।
3: आयरलैंड ने रचा इतिहास। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत से जीती सीरीज। आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए पहली बार मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत को किसी T20 सीरीज में हरा दिया है। बेलफास्ट में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में आयरलैंड ने भारत को सिर्फ एक रन से मात देकर 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। 3 साल बाद भारतीय टीम को किसी T20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। बेलफास्ट में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए। टीम की ओर से हैरी टेक्टर ने शानदार 53 रन की पारी। भारत के लिए डेब्यू कर रहे प्रिंस यादव ने प्रभावित करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। 155 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई। तिलक वर्मा ने 55 रन की जुझारू पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन बाकी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सके। भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 153 रन ही बना सकी और मुकाबला 1 रन से हार गया। आयरलैंड की ओर से जय मुंद्रा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लगातार दूसरे मैच में भी डेब्यू का मौका नहीं मिला। इस जीत के साथ आयरलैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ T20 सीरीज जीतने का इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय टीम को 2023 में वेस्टइंडीज के बाद पहली बार किसी T20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। अब इस हार के बाद टीम इंडिया के प्रदर्शन और टीम चयन पर सवाल उठना तय माना जा रहा है।
2: और वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम का T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना कल चकनाचूर हो गया। लॉर्ड्स में कल करो या मरो के महामुकाबले में गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का सफर वर्ल्ड कप में खत्म हो गया। हरमनप्रीत के आतिशी अर्धशतक की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 170 रन का स्कोर खड़ा किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 6 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: ट्रस्ट में रदोंगी सभी सिफारिशी नियुक्तियां, चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी, जेवरात तजमीन के पेपर बरामद, आज कोर्ट में होगी पेशी। 2027 साधने में जुटी बीजेपी, समाजवादी पार्टी को योगी का सीधा चैलेंज, कहा हिम्मत है तो कृष्ण जन्मभूमि पर बोलकर दिखाएं अखिलेश, लोहिया के परिजनों से मिले पंकज चौधरी। सेशेल्स की संसद में गूंजा नमो मंत्र, संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हिंद महासागर हमें बांटता नहीं जोड़ता है, प्रधानमंत्री को मिला पर्यावरण संरक्षण पर खास सम्मान। मूसलाधार प्रहार से पूर्वोत्तर भारत में हाहाकार, अरुणाचल प्रदेश में भारी तबाही, असम में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, मानसून ने रोकी मुंबई की रफ्तार, 4 जुलाई के बाद दिल्ली को मिलेगी राहत। पुणे के केतन मर्डर केस में आज मंगेतर सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी, खत्म हो रही है पुलिस रिमांड, पूछताछ में खुलासा, जानबूझकर गायब किया गया था केतन का पासपोर्ट। और अब रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का। अरुणाचल में बारिश का कहर, चीन सीमा से लगे 7 जिलों का संपर्क टूटा, क्लाउड बर्स के चलते नेशनल हाईवे 13 बंद, हाईवे बहाल करने में लग सकते हैं 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त। अरुणाचल प्रदेश में आई हैरान करने वाली तस्वीर, डम्बुक इलाके में सिसरी नदी में चल रहे राहत और बचाव अभियान के दौरान बड़ा हादसा, 4 लोगों के फंसे होने की आशंका, 7 राफ्टर्स की नाव तेज बहाव में पलटी, 8 लोगों को बचा लिया गया है, 3 लोग अब भी टापू पर फंसे हुए हैं। फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ के 30 जवान जुटे हुए हैं, राज्य पुलिस और आईटीबीपी की टीमें सुबह से लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार 8 लोगों की आज न्यायिक हिरासत खत्म, आगे की पूछताछ के लिए पुलिस कर सकती है कस्टडी की मांग। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला लेने की बात कही, आज बार एसोसिएशन में होने वाली आम सभा में इस पर अंतिम फैसला। राम मंदिर चोरी मामले में नई जानकारी आई सामने, मामला सार्वजनिक होने से पहले ही ट्रस्ट को इसकी जानकारी थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन तेज, गिरफ्तार सभी आरोपियों के घर छापेमारी, टिन्नू यादव और अविनाश शुक्ला के घर की ली गई तलाशी, आरोपियों के घर छापे मिली संपत्ति के पेपर, दस्तावेजों का सत्यापन कराएगी पुलिस, कुछ लोगों के घर से जेवरात मिलने की जानकारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सीसीटीवी से बड़ा खुलासा, 5 जून को आरोपी अविनाश के हाथ में दिखाई दे रहा है काला बैग, चढ़ावा चोरी पर अखिलेश बीजेपी सरकार को घेरा, कहा सीसीटीवी बंद करके की गई चोरी, इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट है। अखिलेश के बयान पर सीएम का पलटवार, कहा इसकी सरकार राम भक्तों पर चली गोलियां, इनके पास विकास का एजेंडा नहीं है। अखिलेश ने सीएम योगी को दी चुनौती, का अगर हिम्मत है तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बोलकर दिखाएं। राम मंदिर से जुड़े विवादों के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तेज नारायण पांडे ने चंपतराय मिश्रा के इस्तीफों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम सम्राट चौधरी, नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात, बिहार से 15,000 करोड़ की सड़क और पुल परियोजनाओं पर होगी चर्चा, डुमराव विक्रमगंज सफिया सराय और जहानाबाद में नए आरोपी प्रस्तावित, केंद्र से वित्तीय स्वीकृति और राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध करेंगे सीएम सम्राट चौधरी, बिहार के आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में ये बैठक, राबड़ी देवी के सरकारी आवास खाली करने की आज आखिरी मोहलत, तेजस्वी के घर शिफ्ट होने की चर्चा तेज, पटना फायरिंग मामले में फैजल खान के दोनों दांत अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहे थे राइफल, लाइसेंस रद्द करने की तैयारी। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर निशाना, कहा पहले फैलाए जाते थे दंगे, अब मुहर्रम में सड़कों पर नहीं होता है बवाल, पेपर लीक मामले में अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, कहा बीजेपी राज में लगातार लीक हो रहे हैं प्रश्न पत्र, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़, पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी मुख्यालय के घेराव की कोशिश, मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मुंबई में स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे के घर से बाहर यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल, महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन, शुभेंदु सरकार आज विधानसभा में पेश कर सकती है यूसीसी बिल, मुख्यमंत्री पहले ही दे चुके हैं धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने का निर्देश। बेंगलुरु में कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान, कहा विश्व कल्याण के लिए सुनी जानी चाहिए भारत की बात, भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा व्यवस्था को मानव कल्याण के हित में बताते हुए कहा दुनिया को पूर्णता प्रदान करता है भारत की भूमिका, आज अकाल तख्त के सामने पेश होंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान, कहा हमारे लिए अकाल तख्त सर्वोपरि। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव का हमला, बताकर पुतली मुख्यमंत्री, कहा दिल्ली को जो कहा जाता है वो वही करते हैं, तेलंगाना में बीजेपी का चुनावी बिगुल, नितिन नवीन ने डबल इंजन सरकार बनाने की अपील की, राजस्थान हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना पर आज लगेगी मोहर, 32 साल पुरानी यमुना जल विवाद पर आज होगा ऐतिहासिक समझौता, अमित शाह की मौजूदगी में होगा एमओए, शेखावटी को मिलेगा यमुना का पानी, आगरा। 295 किलोमीटर पाइपलाइन से राजस्थान पहुंचेगा यमुना का पानी। सीकर, चुरू और झुंझुनू को मिलेगी ऐतिहासिक राहत। मध्य प्रदेश के सागर में सरकारी अस्पताल में लापरवाही, 19 महीने के मासूम की गई आंख की रोशनी। सर्दी इन्फेक्शन के इलाज में मासूम की आंख की रोशनी खत्म होने का आरोप, पुलिस में शिकायत, जांच के लिए समिति गठित। पटना के दीदारगंज में डालडा गोदाम में आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर। आसमान की चूती दिखी आंख की लपटे, धुएं से घना हुआ वहां का आसमान। बीती रात लगी भीषण आग को काबू पाने की कोशिश जारी। अहमदाबाद में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, दो घायल, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। गोमती नगर में देर रात फायरिंग, दो गुटों में भिड़ा, चाय की दुकान पर विवाद के बाद चली गोलियां। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के सब इंस्पेक्टर ने यात्री के साथ बेरहमी से की मारपीट, बाल पकड़कर घसीटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नशे में धुत पिस्टल दिखाकर ट्रेन में यात्रियों को डरा धमका रहा था शख्स, कोडरमा रेलवे स्टेशन पर दबोचा गया आरोपी। मोतिहारी में चोर गिरोह का एक और कारनामा, दुकान से 10,000 रुपए लेकर हुए फरार, बच्चों को अकेला देखकर दो बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर गंगा स्नान के दौरान तीन दुखद हादसों में एक बालिका सहित तीन श्रद्धालुओं की मौत। गाजियाबाद के इंद्रपुरम में बैंकेट हॉल में बच्चे से कराई गई लाखों के शगुन और गहनों से भरे बैग की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गाजियाबाद में वैध मजार पर चला बुलडोजर, 1 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त। झांसी में शादी के 4 महीने बाद ही नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया मारने का आरोप। फरीदाबाद में कारोबारी दुकान में की खुदकुशी, वीडियो में पत्नी, ससुराल पक्ष पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। सहारनपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर व्यक्ति की मौत। पटना में ज्वेलरी शॉप के मालिक से लूटपाट, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बगहा में देर रात बवाल, दो पक्षों में पथराव, दो पुलिसकर्मी समेत 6 घायल। जालना में देर दर्शन के लिए निकले दोस्तों की कार का भीषण हादसा, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। मुंबई के माहे में मामूली धक्का लगने पर रेलवे स्टेशन के पास युवक को मारा गया चाकू, आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर 2 दिन पहले हुए हादसे का वीडियो आया सामने, रिवर्स लेती कार को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, 4 की मौत। अहमदाबाद में तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर, 3 युवक घायल, मौके से फरार चालक। जालना में नशे की गोलियों की बिक्री करने वाले रैकेट का पर्दाफाश, आतंकवाद विरोधी दस्ते ने 1,080 बटन गोलियों के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा। गोंडा में लड़की से मिलने पहुंचे युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित। वाराणसी में पुलिस पर फायरिंग करने वाला अपराधी गिरफ्तार, घटना का वीडियो हो रहा है वायरल। ग्वालियर में रेस में आग के खौफ में 5 घर अचानक जलने लगता है सामान, पुलिस ने संभाला मोर्चा। बाबा इरफान के भक्तों का इंतजार होने वाला खत्म, अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ से पहले आज प्रथम पूजा का आयोजन। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का होगा शुभारंभ, 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पवित्र छड़ी मुबारक के अमरनाथ गुफा पहुंचने के साथ होगा समापन। अमरनाथ यात्रा कुल 57 दिन चलेगी। बाबा बर्फान के दर्शन के लिए हर साल देश भर से जुड़ते हैं श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा 2 प्रमुख मार्गों पहलगाम और बालताल से होकर शुरू। रजिस्ट्रेशन, हेल्थ सर्टिफिकेट, यात्रा परमिट, RFID कार्ड अनिवार्य। बालताल बेस कैंप पहुंचे LG मनोज सिन्हा, अमरनाथ यात्रा तैयारियों की समीक्षा बैठक, आज व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा। दूसरे T20 में आयरलैंड ने वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया, मेजबान टीम का सीरीज पर 2-0 से कब्जा। पहले खेलते हुए आयरलैंड ने 8 विकेट फिर बनाए 154 रन, भारत ने 9 विकेट खोकर 153 रन पर गंवा दिया मैच। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन 0 पर आउट, बेकार गई तिलक वर्मा की अर्धशतकीय पारी। महिला T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराया। भारत की महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने दिया 178 रन का लक्ष्य, कप्तान हरमनप्रीत ने बनाए 56 रन। ईरानी सेना के अमेरिका को खुली चेतावनी, कहा दोबारा हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा, अमेरिका ने कहा ईरान ने तोड़ा समझौता। ईरान के विदेश मंत्री अराक्षी ने इराक के विदेश मंत्री से की मुलाकात, इराक के विदेश मंत्री ने हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने की अपील की। ज़ापोरिज्या में रूसी सेना का भीषण हमला, गाइडेड बमों से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, घरों पर गिरी मिसाइल, हमले में की मौत, 14 लोग घायल। रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन का पलटवार, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया दावा, यूक्रेन ने रूस को 2 तेल रिफाइनरी में उड़ा दिया। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने से किया इनकार, स्लोवाकिया के PM रॉबर्ट फिको ने किया ऐलान। सुरक्षा के मोर्चे पर एक साफ नजर आया दक्षिण कोरिया जापान, राजधानी सोल में दक्षिण कोरिया जापान रक्षा मंत्रियों की बैठक। डिजिटल टैक्स को लेकर ट्रंप की धमकी पर यूरोपीय संघ का जवाब, काम दबाव में नहीं आएंगे। PM मोदी को मिली सेशेल्स के पर्यावरण सुरक्षा सर्वोच्च सम्मान, मोदी ने सेशेल्स की संसद को किया संबोधित। फ्रांस के टॉम्बलेन शहर में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, हादसे में पायलट समेत 11 की मौत, 5 छात्र मृतकों में शामिल। वेनेजुएला में भूकंप से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी, मलबे में फंसे लोगों और शवों की तलाश जारी, दुनिया भर में टीम्स रेस्क्यू और मदद में जुटी हुई। और अब खबर बाढ़ से जुड़े बिगड़े हालात की। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम के कई हिस्सों में संकट गहरा गया है। बंगाल में भारी बारिश से स्थिति गंभीर बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और फ्लैश फ्लड से बड़ी तबाही हुई है। वहीं असम के धीमाजी में कई गांव में पानी भरने से मुसीबत बढ़ गई है।
1: बाढ़ से बंगाल के कुछ हिस्से बेहिसाब संकट का सामना कर रहे हैं। अलीपुरद्वार के जयगांव से आई ये तस्वीर देखिए। सड़क पर ऐसा सैलाब आया है कि वहां से गुजर रहे लोग भी तेज धार में बहने लगे। बाइक सवार दो लोग उस सैलाब में गिर पड़े, उसके बाद वो खुद की जान बचाते नजर आए, लेकिन डरावनी लहरें बाइक बचा रहे शख्स को बहा ले गईं। अब तक उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में मूसलाधार बारिश के बाद हालात तेजी से बिगड़े हैं। शनिवार रात से ही यहां भारी बारिश हुई है। इसका गंभीर असर जनजीवन पर दिख रहा है। अरुणाचल से आई इन तस्वीरों को देखिए। लोअर सियांग जिले में जब लैंडस्लाइड हुआ तो हड़कंप मच गया। सीजी नदी के किनारों पर बेहिसाब खतरा बढ़ गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जान पर बनाई है। लैंडस्लाइड की वजह से नदी पर मानो डैम बन गया। अब आशंका जताई जा रही है कि अगर ये मलबा बहा तो फ्लैश फ्लड से भारी तबाही आ सकती है। प्रशासन ने इस इलाके के गंभीर हालात को देखते हुए लोगों को आगाह किया है और कहा है कि वो नदी के किनारों से दूर रहें, नदी में जाने से बचें। 24 जून को केई पन्योर जिले में बादल फटे थे, वहां भारी तबाही हुई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। अब तक कई लोग गायब हैं। तब से अब तक वहां राहत और बचाव का काम जारी है। उधर असम में भी बाढ़ की वजह से तेजी से हालात बिगड़े हैं। धीमाजी इलाके में करीब 70 गांव में बेहिसाब संकट बढ़ा है। इससे 15,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। धीमाजी के बदतर हालात का अंदाजा वहां की तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। घरों में पानी भर चुका है, कमर भर पानी में डूबकर लोग आने जाने को मजबूर हैं, सड़कों पर जल जमाव है। ऐसे हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने रविवार को हालात की जानकारी ली और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। आज तक ब्यूरो
2: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet match every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
3: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
4: I have no idea how this election is going to play out,
3: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: आगे आगे
5: उधर
4: करेक्ट करेक्ट
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
9: कुछ तो बात है इस दिल में।
10: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस

0: इन एसोसिएशन विद हिंट बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू विमल बोलो जुबा केसरी कूल स्टाइलिश फैंस एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
1: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
2: देखिए बिल्कुल मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था और ये बहुत छोटा सा कोचिंग सेंटर था जहां पर लोग फंसे थे और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया और 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार आज तक।
3: युद्ध विराम के बेहद करीब जा पहुंचे अमेरिका और ईरान एक बार फिर रणभूमि में आमने सामने आ गए। अमेरिका ने 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान के ठिकानों पर जमकर बमबारी की है। इस बार अमेरिका ने दक्षिणी शहर सिरिक को अपना निशाना बनाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि इस बार ईरान के मिलिट्री सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन सिस्टम एयर डिफेंस साइट और ड्रोन स्टोरेज समेत कुल 10 ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। दरअसल अमेरिका इस बार हॉर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर हमले से गुस्साया हुआ है। उसका आरोप है कि पनामा के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर ईरान ने हमला कर सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये जहाज करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर रवाना हुआ था और ईरानी हमले का शिकार बन गया। ईरान लगातार हॉर्मुज में अपना नियंत्रण साबित करने की कोशिश में हमलावर हो रहा है। अब जब अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की तो बदले में ईरान ने खाड़ी देशों में उसके सैन्य बेस पर हमला कर दिया। IRGC का दावा है कि कुवैत में अमेरिकी एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी सेना के मुख्यालय पर ये हमले किए गए, लेकिन इन बदलते हालातों से ट्रंप बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान ने सीज फायर का सम्मान नहीं किया तो अमेरिका के विमानों ने उनके मिसाइल और ड्रोन स्टोर करने की जगहों और तटीय रडार साइटों पर हमला किया है। मुझे नहीं लगता कि वे सबक सीखेंगे। हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए जब हमें उस काम को सैन्य तरीके से पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़े जिसे हमने बहुत सफलतापूर्वक शुरू किया था। अगर ऐसा होता है तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इससे पहले अमेरिका ने शुक्रवार को भी ईरान पर करीब 1 घंटे तक ताबड़तोड़ हमले किए थे। अमेरिकी फौज ने ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से मिसाइलों और ड्रोन को रखा जाता था और लॉन्च किया जाता था। इनके साथ साथ समंदर के किनारे की कई रडार साइट्स भी बर्बाद कर दी गई हैं। ट्रंप ने 2 दिन पहले ही मीडिया के सामने ऐलान कर दिया था कि ईरान को हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को रोकने और उन पर बिना किसी वजह के हमला करने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप भी सुनिए रिपोर्टर और ट्रंप के बीच हुई बातचीत।
4: Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship, and it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
5: Will the U.S. respond? What is your message to Iran?
4: Will they respond? You're going to find out.
3: उपराष्ट्रपति J.D. वेंस भी ईरान के हमले से बुरी तरह भड़के हुए हैं। उन्होंने तो सोशल मीडिया पर साफ साफ कह दिया कि हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा और इस तरह के हमले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मुखिया इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका ने एक बार फिर युद्ध विराम के बीच में हमला किया। नाकाम अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिखाया है कि सीज फायर के उसूल उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। युद्ध विराम का उल्लंघन हमेशा की तरह पीछे हटने और पछतावे की वजह बनेगा। ईरान के समंदर की सरहदों पर एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। वार पलटवार ने सीज फायर पर सवाल उठा दिए हैं और ट्रंप की सख्त चेतावनी ने माहौल एक बार फिर गर्मा दिया है। आज तक ब्यूरो।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: इस बीच बड़ी खबर नोएडा के सेक्टर 119 की, जहां पर भीषण आग लगी है। अरण्य सोसाइटी में आग लगी है, 22वें फ्लोर पर यह आग लगी हुई बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 22वां फ्लोर और इस फ्लोर के कई फ्लैट्स आग की चपेट में दिखाई दे रहे हैं। फायर यूनिट की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि एसी में ब्लास्ट की वजह से आग लगी है। बेहद भीषण और गंभीर यह आग लगातार फैलती जा रही है। एसी में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद यह आग लग गई। 22वां फ्लोर इस सोसाइटी का आग की चपेट में। हालांकि इतने ऊंचाई पर दमकल कर्मियों के लिए पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती होगी, और ऐसे में लगातार ये आग फैलती जा रही है। 9 बज गए, मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: राम लला के घर डकैती डालने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे हुए, तो वहीं अब पुलिस भी एक्शन मोड में दिख रही है। अयोध्या पुलिस ने उन आरोपियों के घर धावा बोला जो अयोध्या में रहते हैं। अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रामाशंकर मिश्रा के घर छापा मारा, उनके घर वालों से पूछताछ की। जी आरोपी घर पर कब आते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, ये सारी जानकारियां पुलिस ने इकट्ठा की हैं। आरोपी रामाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या में ही एक मंदिर में पुजारी हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की। रामाशंकर के परिवार वाले कह रहे हैं कि वो यहाँ आता ही नहीं, सालों से घर आया नहीं, किराए का मकान लेकर वहीं रहता है। चढ़ावा चोरी के आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी हो गई है। 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
1: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर दो कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर हैं, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहाँ लाया गया। और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है, जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था, जहां आज तक की टीम पहुंची।
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, इनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में CCTV कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां टिन्नू यादव की तरह UP पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के RMO अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल RMO को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
3: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़। इनकी चतुराई है, चालबाजी है, और CCTV फुटेज है कि कितनी बार CCTV बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं, तब और क्या बताया जाए।
4: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव TV को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

सभी सिफारिशी नियुक्तियां। चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी। जेवरात और जमीन के पेपर बरामद, आज कोर्ट में होगी पेशी। 2027 साधने में जुटी बीजेपी, समाजवादी पार्टी को योगी का सीधा चैलेंज, कहा हिम्मत है तो कृष्ण जन्मभूमि पर बोलकर दिखाएं अखिलेश। लोहिया के परिजनों से मिले पंकज चौधरी। नोएडा के सेक्टर 119 की बहुमंजिला रिहायशी बिल्डिंग में लगी आग, लपटों में घिरी अरण्य सोसाइटी की 22वीं मंजिल, आग बुझाने की कोशिशें जारी। मध्य प्रदेश के सागर में गलत इलाज से गई 19 महीने के बच्चे की दोनों आंखों की रोशनी, सिविल अस्पताल के डॉक्टर पर आरोप, दवा और इंजेक्शन के बाद कर दिया रेफर। मूसलाधार प्रहार से पूर्वोत्तर भारत में हाहाकार, अरुणाचल प्रदेश में भारी तबाही, असम में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, मॉनसून ने रोकी मुंबई की रफ्तार, 4 जुलाई के बाद दिल्ली को राहत।

0: सुबह में आपका स्वागत है 10 बजे के बुलेटिन में। बात दो बड़ी खबरों की। पहली खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई है, जिसके आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। इसके साथ नजर पश्चिम बंगाल विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र पर भी हमारी रहेगी, क्योंकि इस दौरान विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि विपक्षी विधायकों का दावा है कि उन्हें बिल की कॉपी नहीं मिली है। ऐसे में बिल आज पेश होगा या नहीं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं बड़ी खबर, जो कि नोएडा से आ रही है। नोएडा के सेक्टर 119 की अरण्य सोसाइटी के 22वें फ्लोर पर भीषण आग लगी है। एसी में ब्लास्ट की वजह से बताया जा रहा है कि ये आग लगी हो सकती है। ये तस्वीरें आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम उसी सोसाइटी की, जिसके 22वें मंजिल पर आप ये देख रहे हैं तस्वीरें भीषण आग की। तो पिछले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर के इलाकों में देखा गया है कि इस तरह से आग की घटनाएं सामने आ रही है। भीषण गर्मी थी कल भीषण गर्मी थी, आज भीषण गर्मी है, चार दिन तक कोई राहत नहीं है। ऐसे में एसी की खपत, बिजली की खपत बढ़ जाती है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं आग लगने की, इसमें भी यही आशंका है कि हो सकता है एसी में ब्लास्ट हुआ हो। बहुमंजिला इमारत आग लग गई 22वीं मंजिल पर। इस वक्त वहां 6 दमकल की गाड़ियां भी मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या पता चल रहा है इस आग के बारे में?
1: देखिए, जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक जो एसी ब्लास्ट है उसकी वजह से आग लगी हो सकती है, ऐसा जानकारी मिल रहा है। ये अरण्य सोसाइटी है सेक्टर 119 में, इसमें आग लगने की सूचना जब मिली उसके बाद फायर चीफ खुद मौके पर पहुंचे तो देखे कि जो 21वां फ्लोर है उसमें एक फ्लैट है जिसमें आग लगी, और देखते ही देखते जो आग है उसने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। फिलहाल नोएडा पुलिस की टीम, फायर डिपार्टमेंट की टीम और खुद जो चीफ फायर ऑफिसर है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, आग बुझाने का काम जारी है। राहत की बात अंजलि ये है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, फ्लैट में कोई फंसा नहीं हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।
0: जी, शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई खबर। सूत्रों के हवाले से अब बड़ी खबर आ रही है, चंपत राय का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है। खबर है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने दर्ज किया है ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अन्य सदस्यों से भी पूछताछ हो सकती है। खबर आ रही है कि उनका बयान दर्ज कर दिया गया है, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी संतोष शर्मा, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। संतोष, चंपत राय का जो बयान है वो भी दर्ज कर लिया गया, ये बड़ी खबर है, क्या पता चल रहा है इस बयान में, उनसे क्या क्या पूछा गया और उन्होंने क्या कहा है?
2: देखिए, इस बयान में एफआईआर दर्ज होने के बाद ही पुलिस ने सबसे पहले जो शिकायतकर्ता है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ट्रस्टी कृष्ण मोहन, उनका बयान दर्ज किया, और चूंकि चंपत राय इस ट्रस्ट के महासचिव हैं तो चंपत राय का भी शुरुआती बयान दर्ज कर लिया गया है। और ये एफआईआर दर्ज होने के बाद ही दर्ज कर लिए गए दोनों ही ट्रस्टीज के, महासचिव चंपत राय और शिकायतकर्ता के बयान, उसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की है। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में अब पुलिस को आगे जरूरत पड़ेगी तो चंपत राय का दोबारा डिटेल में बयान दर्ज होगा, जरूरत पड़ेगी, और बाकी अन्य जो ट्रस्टी हैं चाहे वो अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, इनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। अभी ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन शुरुआत चंपत राय के बयान से हो चुकी है कि आखिर चंपत राय से पूछा गया कि आखिर ये पूरी जो डोनेशन था, जो दान आता था, उसकी गिनने की प्रक्रिया क्या थी, क्या एसओपी उनकी तरफ से निर्धारित की गई थी, क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और क्या पालन हो रहा था, उनकी तरफ से क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, जो लड़के थे इनको कैसे हायर किया गया, ये तमाम बयान दर्ज किए गए हैं। तमाम जानकारियां चंपत राय से ले ली गई हैं कि जो चंदा चोरी के मामले में, जो चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी हैं, इनका कैसे कामकाज था, कौन कौन जिम्मेदार था, किस एजेंसी को ये ठेका दिया गया था इनको नोट गिनवाने का, उसके बाद बैंक में जमा करने के लिए किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई थी, बैंक में क्या एमओयू के टर्म्स एंड कंडीशंस थे अगर एसबीआई के साथ जिम्मेदारी दी गई थी, ये तमाम बयान चंपत राय से जानकारी के बाद दर्ज कर लिए गए हैं। चंपत राय का बयान दर्ज हो गया है, पुलिस को आगे इन्वेस्टिगेशन में जरूरत होगी तो चंपत राय के साथ साथ अनिल मिश्रा, गोपाल राव के भी बयान दर्ज होंगे, और बाकी जो कैरेक्टर हैं सभी 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनको भी आज जुडिशियल कस्टडी में पेश पेश किया जाएगा। तो कहा जाए कि अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन तेज हो रहा है और चंपत राय के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और उसके बाद अब अनिल मिश्रा और गोपाल राव के बीच जरूरत पड़ने पर बयान दर्ज होंगे। जी अंजलि
0: बिल्कुल संतोष, और बयान बेहद अहम हो जाते हैं इस मामले में। और साथ में खबरें ये भी आई थी कि इस मामले की जानकारी ट्रस्ट को पहले से थी, 5 जून से इस मामले की जानकारी उनको थी, लेकिन पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया था।
2: देखिए बिल्कुल, एक जो सीसीटीवी अविनाश शुक्ला का सामने आया है वो 5 जून का है। इसका मतलब 5 जून या 5 जून से पहले से ट्रस्ट को इसकी जानकारी थी और यही वजह है ये सीसीटीवी जो 23 सेकंड का है ये साफ करता है कि जिसमें अविनाश शुक्ला पुलिस कर्मियों के साथ सफेद रंग की गाड़ी में बैठता है। तो ये बता रहा है कि पुलिस के साथ अविनाश शुक्ला और तमाम अन्य आरोपी भी इनकी गिरफ्त में थे, इनसे पूछताछ की जा रही थी, बरामदगियां की जा रही थी, यानी कि ट्रस्ट ने FIR दर्ज कराने में बेहद देरी की।
0: संतोष आप हमारे साथ बने रहे, एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से ही जुड़ी हुई, इसमें गिरफ्तार आरोपियों की 3 दिन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। सभी आरोपियों को आज अदालत के सामने पेश किया जाएगा। इस बीच फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने संकेत दे दिए हैं कि वो आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे। इस मामले में बार एसोसिएशन की आज होने वाली आम सभा में अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस बीच एक दिन पहले आरोपियों के घर छापेमारी हुई। सूत्रों के मुताबिक कुछ आरोपियों के घर से पुलिस को जेवरात और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। अब इन दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराने की तैयारी है। चढ़ावा चोरी मामले में गठित SIT रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और 3 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी भी की गई थी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करा सकती है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की सुरक्षा को देखते हुए अयोध्या पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की तैयारी कर रही है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी संतोष शर्मा का। संतोष, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी आखिर क्यों?
2: देखिए, जो अयोध्या के वकील है, जो अभी एक जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई गई है, उसमें निर्णय होगा कि इन आरोपियों की तरफ से कोई वकील पेश होगा या नहीं। इसी विरोध को देखते हुए, जनाक्रोश को देखते हुए कि कहीं कोई मिसहैंडलिंग ना हो जाए, इसको देखते हुए पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी की तैयारी कर ली है। अब उसके बाद दोनों ऑप्शन है कि उनको फिजिकली सभी 8 आरोपियों को अयोध्या जेल से निकालकर कोर्ट में पेश किया जाए, अयोध्या की जो भ्रष्टाचार अधिनियम की स्पेशल कोर्ट है उसमें पेश किया जाए, या फिर सुरक्षा की दृष्टि से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सभी 8 आरोपियों की पेशी होगी। ये अभी पुलिस ने तैयारी कर ली है, दोनों ऑप्शन उसके बाद खुले हैं। और उधर दूसरी तरफ अयोध्या के वकीलों की तरफ से जो जनरल बॉडी की मीटिंग है बार एसोसिएशन की, उस मीटिंग में निर्णय होगा कि वकील इनकी तरफ से कोई वकालतनामा लगाएगा, इनकी तरफ से कोर्ट में पैरवी करेगा कि नहीं। तो ये जनाक्रोश को देखते हुए, वकीलों के विरोध को देखते हुए, गुस्से को देखते हुए पुलिस ने ये तैयारी भी की है कि जरूरत पड़ेगी तो सीसीटीवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेशी करवाई जा सके।
0: जी संतोष, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी केस में 5 जून का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला को पुलिस ले जाती हुई नजर आ रही है। आज तक मिली जानकारी के मुताबिक अविनाश शुक्ला के पास से पुलिस ने 5 जून को 5 लाख रुपए बरामद किए थे। चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे थे, यानी कि 5 जून को ही मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका था, लेकिन इसे ना तो पुलिस ने और ना ट्रस्ट ने सार्वजनिक किया था। तो ये तस्वीरें हम आपको 5 जून की दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई ये तस्वीरें, जब पुलिस और ट्रस्ट के लोग पहुंचे अविनाश शुक्ला के पास और उसे साथ ले गए। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्यों नहीं दर्ज की गई थी उसी वक्त FIR, क्यों नहीं इस मामले के बारे में लोगों को बताया गया, क्यों नहीं इस चढ़ावा चोरी को सार्वजनिक किया गया और क्यों नहीं इसका कोई केस दर्ज किया गया। तो राम मंदिर के चढ़ावे में गबन को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमने सामने हैं। अखिलेश ने कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादियों के राज में राम भक्तों के ऊपर के साथ हुए सलूक को लेकर सीधा वार किया।
3: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर है। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़। इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं, तब और क्या बताया जाए।
4: अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का खुलकर समर्थन करने की चुनौती दी है। सीएम योगी ने कहा है कि अखिलेश यादव
4: मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है।
0: इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चढ़ावा चोरी के आरोपियों को पुलिस हिरासत में न लेने पर सवाल उठाए हैं।
5: उनकी पुलिस रिमांड भी नहीं ली, कोई पुलिस पूछताछ नहीं हुई। भाई जिन आठ लोगों को पकड़ा उनसे पूछना तो चाहिए था कितनी चोरी करी तुमने, किसके पास पहुंचाया, कहां छुपाया, पूछताछ होती है ना पुलिस, वो भी नहीं करी। उनको पुलिस रिमांड ही नहीं ली, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तो ये साफ जाहिर है दो चार दिन में इनकी बेल करा देंगे। तो ये पूरा का पूरा जो चल रहा है ये छिपाने की कोशिश है, इस पे लीपापोती करने की कोशिश है, इसको ढकने की कोशिश है।
0: उत्तर प्रदेश में धर्म का बवाल है तो पंजाब में बेअदबी कानून को लेकर आज अकाल तख्त में बड़ी पेशी है। बेअदबी कानून के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सभी सिख विधायक और सिख मंत्री आज अकाल तख्त के समक्ष पेश होंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान हालांकि पेश नहीं होंगे, उन्होंने कहा कि उन्हें तलब नहीं किया गया है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने 15 जून को सभी दलों के सिख विधायकों और सिख मंत्रियों को अकाल तख्त के सामने उपस्थित होने के लिए तलब किया था। पिछले दिनों धार्मिक ग्रंथों के अपमान के खिलाफ बना एक कानून, इसको लेकर सिख संस्थाओं की आपत्ति के बाद अकाल तख्त ने विधायकों और मंत्रियों को तलब किया है। उनका कहना है कि ये कानून सिख पंथ से परामर्श किए बिना ही बनाया गया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला तब सामने आया जब मुख्यमंत्री पहले से ही दूसरे विवादों में भी घिरे हुए हैं, उनके एक वीडियो को लेकर जो कि बेअदबी का सबूत माना जा रहा है उनके विपक्षियों के द्वारा। और ऐसे में ये जो बेअदबी का कानून जो सरकार ने बनाया था उस पे भी नाराजगी दिख रही है सिख पंथियों के द्वारा। और मध्य प्रदेश के सागर के एक सरकारी अस्पताल में गंभीर लापरवाही की खबर आ रही है। एमपी के सागर में बंडा सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही के चलते 19 महीने के बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई है। जानकारी के मुताबिक इंद्रराज विश्वकर्मा नाम का शख्स अपने 19 महीने के बच्चे को सर्दी और आंखों में इन्फेक्शन का इलाज कराने के लिए अस्पताल ले गया था। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने बच्चे को आई ड्रॉप, पैरासिटामोल सिरप, इंजेक्शन और कुछ और दवाएं दी। परिवार वालों का आरोप है कि दवा देने के बाद बच्चे की तबीयत बेहद बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने एम्स भोपाल भेज दिया। पीड़ित पिता का दावा है कि एम्स भोपाल में जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि गलत इलाज और लापरवाही की वजह से ही बच्चे की दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई है। परिवार वालों ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। वहीं सीएमएचओ ने जांच के लिए एक समिति भी गठित कर दी है।
6: बच्चे की आंखें लाल हुई थी तो हम बंदा सा कैसा लेके आए थे, तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा, उसको मोटर लगाई, एक पैसठ उम्र सी सी थी, एक ड्रॉप दे दी, उससे इन्फेक्शन बन गया, आप दोनों ऑपरेशन चली गया।
5: आपने और कहाँ दिखाया?
6: हम भोपाल भी ले गए थे एम्स में, उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन हो गया है, दवा से इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि पहले एफ आई आर कर दो, तो हम यहाँ पे एफ आई आर के लिए आज कुछ सुने बैठे बैठे थे, कल भी आए थे आज भी आए।
7: पर्ची में मैंने देखा है कि उसमें जो बच्चे की कंडीशन थी, बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए उस बच्चे को तुरंत हायर सेंटर पे रेफर कर दिया गया था, और बच्चे को उसमें जो ड्रॉप लिखा था और जो दिया गया, जो वायरल पिक्चर में जो दिया गया ड्रॉप वो अलग है, तो इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि कौन क्या वो ड्रॉप दिया गया, लेकिन जो लिखा गया है उससे अलग ड्रॉप दिया गया।
8: मैं CMHO कार्यालय से जांच कमेटी गठित की गई है, जांच कमेटी जांच करने के उपरांत रिपोर्ट देगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये जांच में पता चलेगा कि ड्रॉप क्या लिखा था और क्या दिया गया है, जांच में जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।
0: और हमारे सहयोगी रवीश पाल हमारे साथ भोपाल

0: में बाढ़ के हालात को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से बात की है। किस तरह के वहां पे हालात है, राहत और बचाव का कार्य किस तरह से चल रहा है, इस सब का संज्ञान लिया जा रहा है। और असम में कुछ इलाकों में बाढ़ के हालात पर इस वक्त गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से बात की है और जायजा लिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।
10: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
11: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
11: कुछ तो बात है इस दिल में।
13: B-Mark, the mustard specialist since 1933.
14: हमने तब भी सवाल किया था।
15: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
14: हम आज भी सवाल करते हैं।
15: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
14: ऑपरेशन अग्नि,
15: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
14: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
16: In association with
17: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: हमने तब भी सवाल किया था।
15: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
14: हम आज भी सवाल करते हैं।
15: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
14: ऑपरेशन अग्नि,
15: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
14: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
16: इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
20: अरुणाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग वैली से एक वीडियो सामने आया है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लैंडस्लाइड में एक शख्स बाल बाल बच जाता है, पूरी जमीन खिसक गई इस लैंडस्लाइड में। आप देख सकते हैं किस तरीके से मिट्टी मलबा पूरा नीचे धसकता जा रहा है और एक शख्स बाल बाल इस पूरी वारदात के दौरान आप देख सकते कैसे बचता हुआ नजर आ रहा है।

0: बाढ़ और बारिश से परेशान लोग और उसके बीच में इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं जो जान पर गंभीर स्थिति पैदा कर देती हैं। और ये शख्स आप देख सकते हैं कैसे मिट्टी के बीच में फंसा, लेकिन आखिर में किसी तरह उसकी जान बच गई। तस्वीरों में नजर आता है कि ये शख्स किसी तरीके से धसकती हुई जमीन में बच जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

चढ़ावा चोरी केस में दर्ज हुआ चंपत राय का बयान। आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी में जेवरात और जमीन के पेपर बरामद। आज कोर्ट में पेशी। ट्रस्ट में रद्द होंगी सिफारिशी नियुक्तियां। 2027 साधने में जुटी बीजेपी। समाजवादी पार्टी को योगी का सीधा चैलेंज। कहा हिम्मत है तो कृष्ण जन्मभूमि पर बोलकर दिखाएं अखिलेश। लोहिया के परिजनों से मिले पंकज चौधरी। नोएडा के सेक्टर 119 की बहुमंजिला रिहायशी बिल्डिंग में लगी आग। लपटों में घिरी अरण्या सोसाइटी की 22वीं मंजिल। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू। मध्य प्रदेश के सागर में गलत इलाज से गई 19 महीने के बच्चे की दोनों आंखों की रोशनी। सिविल अस्पताल के डॉक्टर पर आरोप। दवा और इंजेक्शन के बाद कर दिया रेफर। मूसलाधार प्रहार से पूर्वोत्तर भारत में हाहाकार। अरुणाचल प्रदेश में भारी तबाही। असम में बाढ़ जैसे हालात। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंता से की बात। मुंबई में भी आफत की बारिश।

0: महाराष्ट्र के पुणे के लोहगढ़ किले में हुई केतन अग्रवाल हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार सिया और चेतन की हिरासत का आज आखिरी दिन है। दोनों को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले रविवार को पुलिस ने सिया की मौजूदगी में किले में जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया है। और बड़ी खबर यह है कि आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूछताछ की गई है उनको क्राइम सीन के रिक्रिएशन के लिए भी ले जाया गया था और आज उनकी रिमांड का आखिरी दिन है। ऐसे में उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाना तय है। केतन हत्याकांड में आरोपी है सिया और चेतन। पुणे पुलिस के सामने आई कई अहम सवाल। अब तक गिरफ्तार सिया और चेतन के आरोपों को लेकर पुलिस घर वालों से बात कर जानकारी जुटा चुकी है और आखिर इस क्राइम फाइल की सबसे अहम कड़ी रिक्रिएशन को भी पूरा कर लिया गया है। इस दौरान किले में पुलिस ने सिया को मौजूद रखा था। वो पुलिस के तमाम सवालों का जवाब भी दे रही थी और पुलिस उसके बयान के आधार पर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही थी।
1: सिया ने कैसे चेतन के साथ मिलकर केतन को मारा, कैसे उसने कत्ल के लिए लोहगढ़ का किला चुना, कैसे वो केतन को लेकर लोहगढ़ के किले तक पहुंची, कैसे उसने चेतन को कत्ल का इशारा किया, कैसे केतन चेतन और सिया की साजिश नहीं समझ पाया, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए ये कवायद हो रही है। जिसका चेहरा ढका हुआ है वो है सिया और ये वही लोहगढ़ का किला है जहां सिया को लेकर पुलिस पहुंची।

0: लोहगढ़ किले में 18 जून को जो कुछ हुआ था उसी को दोहराने की कोशिश पुणे पुलिस ने की। पहाड़ी पर स्थित किले में ठीक उसी जगह पर रविवार को पुलिस की पड़ताल चली। ये तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन देश को सन्न कर देने वाली साजिश की तस्वीर साफ करने के लिए पुलिस ने यह अहम कदम उठाया। इन धुंधली तस्वीरों में सिया गोयल है, पुणे पुलिस की टीम है और साथ में है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाले एक्सपर्ट। केतन अग्रवाल हत्याकांड की पड़ताल का यह अहम पड़ाव था। कई दिनों से माना जा रहा था कि पुणे पुलिस लोहगढ़ के किले में पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। तमाम कयासबाजी के पुणे पुलिस की टीम ने रविवार की सुबह 6:30 पर लोहगढ़ किले में दस्तक दे दिया। पुलिस सिया को लेकर किला पहुंची थी। किले का गेट बंद कर दिया गया, पर्यटकों को रोक दिया गया, हर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सिया को लेकर पुलिस ने किले में चढ़ाई शुरू की। करीब घंटे भर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई। जांच दल के साथ चेतन की कद काठी का एक डमी भी था। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सिया से कई सवाल किए। 18 जून को क्या हुआ था, केतन और चेतन कहां थे, किसने धक्का दिया, कैसे तीनों यहां तक पहुंचे, ऐसे एक एक सवाल के जवाब पुलिस ने सिया से पूछे और उसके जवाबों के मुताबिक ही क्राइम सीन की बारीकी से जांच पड़ताल की। फिर जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया था पुलिस ने उस जगह से सिया के बयानों के हिसाब से क्राइम सीन रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उसी स्थान से एक डमी को नीचे धक्का देकर पूरी घटना को दोहराया, जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था। इस प्रक्रिया का मकसद घटना के क्रम, हालात और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान करना था ताकि जांच को और मजबूत किया जा सके।
1: ये लोहगढ़ किले के ऊपर जहां पे वो घटना हुई थी, उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहां पे एक्यूज को ले जाया गया है, किस रूट से जाके कहां बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी उसको रिक्रिएट जा रहा किया गया, उसमें एक्यूज ने बता दिया।
0: केतन हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस 28 जून को हुए रिक्रिएशन को काफी अहम मान रही है।
2: सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ?
3: आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी जैसे हुआ था, वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया।
2: दोनों आरोपियों को आप लेके आए थे?
3: सिया थी,
2: चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना है मैं, क्योंकि जिस मतलब जहां से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना वो भी बाकी।
3: अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, वो सीन रिक्रिएशन हमने, क्योंकि आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने कभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: इस जांच पड़ताल के बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि सिया और चेतन ने केतन को मारने का रिहर्सल भी किया था।
2: रिक्रिएशन वो सिर्फ सिया को लाए थे, अभी चेतन चौधरी का रिक्रिएशन होना बाकी है। लोहगढ़ किले के यहाँ हम बाहर खड़े हैं जहाँ थोड़ी देर पहले सीन रिक्रिएशन पूरा हुआ, फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद थी। सबसे अहम बात यह है कि सिया और चेतन ने दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है, लेकिन आज पर्यटकों के लिए और जितने विजिटर्स हैं उन सभी के लिए इसे बंद किया गया था। लेकिन यही सीढ़ियां हैं, इसी सीढ़ियों से तीनों ऊपर गए थे, चेतन चौधरी गया था, उसके बाद सिया और केतन अग्रवाल भी गया था और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।
0: हालांकि ऐसे तमाम दावों पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, सभी तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है।
2: किसने किया था, चेतन ने किया था, फिजिया ने?
3: देखिए, आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने कभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
2: देखो, इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दोनों ने रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी कहीं ना कहीं और फिर आके इसे अंजाम दिया गया। तो क्या सिया ये अभी कह रही है कि वो प्रैक्टिस किस तरीके से हुई थी और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया,
3: वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आज का तो सीन रिक्रिएशन होगा।
0: इस हत्याकांड में सिया और चेतन के सामने आए नए नए वीडियो और केतन के परिजनों के आरोपों के बाद ट्विस्ट और बढ़ गया है। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, लोहगढ़ आज तक।
4: आखिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया, क्या वो शादी के लिए मना नहीं कर सकती थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी को भी हजम नहीं हो रहे हैं। लिहाजा पुणे पुलिस सिया के साथ साथ उसके घर वालों से भी लगातार पूछताछ कर रही है। एक दिन पहले पुलिस ने उसके माता पिता से करीब 12 घंटे की मैराथन पूछताछ की, तो भाई से भी 2 दिन तक सवाल जवाब किए गए हैं।

0: सिया और केतन बस कुछ ही महीने बाद दोनों साथ फेरे लेने वाले थे, दोनों एक रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे, लेकिन 18 जून को एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। लोहगढ़ के किले में ठीक इसी जगह पर केतन करीब 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। उस घटना के 5 दिन बाद यानी 23 जून को सिया की गिरफ्तारी हो जाती है और वहां से तब तक हादसा लगने वाला मामला पूरी तरह से अलग ट्रैक पर चला जाता है। कत्ल का आरोप लगता है, आरोप ये कि सिया ने अपने मंगेतर को मार डाला। इस गुनाह में सिया का साथ दिया उसके दोस्त चेतन चौधरी ने, वही चेतन जिसका सिया के साथ कई वीडियो सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में दोनों क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते दिखे हैं और सबसे अहम तो ये कि सिया और चेतन ने केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को ही पुणे के कैफे में मुलाकात की थी। दोनों शाम करीब 4:30 बजे मिले थे। माना जा रहा है कि दोनों ने उसी कैफे में हत्या की फाइनल साजिश रची और उसे अंजाम देने पर करीब घंटे भर बात की थी। खुलासा ये भी हुआ है कि हत्या के पहले सिया ने लोहगढ़ किले का वीडियो YouTube पर सर्च किया था और वहां के लोकेशन को कैफे में मुलाकात के दौरान चेतन के साथ साझा किया था। बात यहीं तक नहीं रुकी, सिया का बड़ा भाई साहिल गोयल भी चेतन को जानता था, दोनों ने साथ साथ क्रिकेट खेले थे, उससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है।
1: इस मामले में जो भी लोग जुड़े हुए उन सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं।
2: कल साहिल से जो है 10 घंटे तक पूछताछ की गई है, लेकिन जो चेतन था और साहिल है, इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई और कहां से शुरू हो गई, कहां से मुलाकात हुई और उनके बीच बातचीत शुरू हो गई थी?
1: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे
2: और इसी क्रिकेट ग्राउंड में सिया भी आती थी और उसकी वजह से जो है चेतन और सिया एक दूसरे को पहचानने लगे थे।
1: यह भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम हर तरीके से ये जारी है, उसी हिसाब से हम आगे बताएंगे।
0: चेतन के साथ तमाम वीडियो और कनेक्शन सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया, सिया के परिजनों को रडार पर लिया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। 27 जून को पुलिस ने सिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया, दोनों से करीब 12 घंटे तक सवाल जवाब किए। पुलिस ने परिवार से कई अहम सवाल पूछे जिनके जवाब अब जांच का अहम हिस्सा बन गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से पुलिस ने पूछा कि क्या सिया ने आपको चेतन के साथ अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया था, क्या आपको इसकी जानकारी थी? परिजनों ने जवाब दिया कि सिया ने हमें अपने प्रेम संबंध के बारे में कभी नहीं बताया था, हमें इसकी जानकारी अब हुई है। पुलिस ने पूछा कि क्या आपने सिया पर केतन के साथ शादी करने का दबाव बनाया था, तो उन्होंने कहा कि हमने सिया पर शादी के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला था। 27 जून को हुई पूछताछ के दौरान अपने माता पिता के साथ सिया का भाई साहिल भी मौजूद था। साहिल से 26 जून को ही पुलिस ने केतन हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब किए थे। शुक्रवार को साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में जांच से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थी। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने सिया का सीन रिक्रिएट किया, अभी चेतन का सीन भी रिक्रिएट किया जा सकता है। जानकारी जुटाई जाएगी कि इतने बड़े अपराध को इन दोनों ने इतना सरल कैसे समझ लिया, कैसे इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि केतन को मार डालना विकल्प नहीं था, कैसे ये नहीं समझ पाए कि केतन के कत्ल के बाद इनका अंजाम क्या होगा। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बावले, लोहगढ़, पुणे, आज तक।
3: केतन अग्रवाल का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उसके माता पिता की मांग पर फडणवीस सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करने की मांग मान ली है। उज्जवल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया है, लेकिन इंसाफ की यह लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है क्योंकि अभी पुलिस लगातार बयान दर्ज करने में जुटी हुई है। उसके बाद तमाम कड़ियों को जोड़ना है और उसे अंजाम तक पहुंचाना एक अहम चुनौती है।
4: सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था।
0: केतन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हैं। उसकी यादों में आंसू हैं, गम है, गुस्सा है। नाराजगी सिर्फ अग्रवाल परिवार में ही नहीं है, पुणे शहर में हर कोई सवाल हत्याकांड को लेकर उठा रहा है और कह रहा है कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
4: केतन की चाची लगती हूँ और सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। वो मुझे इतना ट्रस्ट था वो लड़की पे, उसने जो किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए और इसके आगे उसके एज की या फिर कोई भी एज की लड़की ये सब चीजें करने से पहले 100 बार डरनी चाहिए। ऐसा जस्टिस मिलना चाहिए हमारे केतन को। दिस इज ओनली व्हाट ऑल आई वांट।
5: अब चाहती हो किशन की बचपन से उसे देखा होगा, कुछ यादें साझा करना चाहिए।
4: सेकंड स्टैंडर्ड से ही देख रही हूँ मैं वो बच्चे को, इतना मासूम, इतना प्यारा लड़का। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि उसका मतलब रिश्ता पक्का हो गया, बट वो लड़की ने जो किया दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और जो स्टूपिड रीजंस उसने दिए है कि बाल्ड है और तोतला बोलता है, वो सब बातें तो जब रिश्ता पक्का हुआ था तो वो सब क्लियर हो गई थी, और वो ये सब हरकतें कर रही है, ये सब झूठ बोल रही है। दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एवरीबडी इन द फैमिली।
0: केतन के पिता विशाल अग्रवाल अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे के इंसाफ के लिए 18 जून को जो लोग लोहगढ़ किले में मौजूद थे वो गवाही के लिए आगे आएं। विशाल अग्रवाल बता रहे हैं कि वारदात वाले दिन कई लोगों ने उन्हें फोन किया था।
6: सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।
0: अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को पता लगाना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारी सामने आ सकती है, जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर की प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई। जांच ने तब नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की अब फोरेंसिक एनालिसिस के जरिए जाँच की जा रही है। शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई बल्कि उसे अपने डिवाइस के रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फोरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई है।
3: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: वेलकम बैक टू या दैट्स अ पेपर थिंग। फर्स्ट अप वी गॉट हैरिसन रैपिंग हिज डॉक्टर पेपर इन अ टाइनी क्विल्ट सो इट फील्स एट होम। Oh, how tender. That's a pepper thing. And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
10: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
9: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing. Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing.
11: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
12: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
13: Money, money, money, money, every month.
14: Soch batlo aur bank bhi.
15: प्रधानमंत्री कार्यालय ने चंपत राय से उनके रिकॉर्ड मांगे, हिसाब किताब मांगा, चंपत राय ने मना कर दिया देने से। सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंपत राय से रिकॉर्ड मांगे और चंपत राय ने मना कर दिया। इस देश में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मोदी जी को मना भी कर सकता है। वो मोदी जी ने मान लिया, रिमाइंडर भी नहीं भेजा, मान भी लिया। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि तार कहां तक हैं। चंपत राय के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके सामने मोदी जी भी बेबस हैं। एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया, उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है, चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। सब लोगों की यही मांग है। ये महापाप है, चंदा चोरी, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़, ये महापाप है और इस महापाप को करने वाले सभी राक्षसों को, इनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए।

0: क्या एक मंत्री अपनी ही मंत्रालय की योजना से सब्सिडी ले सकता है? क्या नियम सभी के लिए बराबर हैं या पद और प्रभाव से बदल जाते हैं? केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारत सरकार के एक मंत्री ने सरकार से करीब 99 लाख की सब्सिडी प्राप्त की है। खीरे, टमाटर, शिमला मिर्च की खेती के लिए मंत्री जी ने अपने ही कृषि मंत्रालय से सब्सिडी ले ली। मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस पर सत्ता का गलत प्रयोग बताया है। सचिन पायलट ने लिखा, कृषि मंत्री पर 99 लाख सब्सिडी का आरोप, अपनी ही योजना से लाभ लेने का मामला, पद के दुरुपयोग पर विवाद, पारदर्शिता और जांच की मांग। इस बीच आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
1: मोदी सरकार के मंत्री खुद अपने ही विभाग में खीरा किसानों की सब्सिडी खा गए, तो चारों तरफ लूट पे लूट चली जा रही है। तो इस लूट वाली सरकार को हटाना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लूट सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी।
0: वही मंत्री भागीरथ चौधरी ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया सरकारी नियमों और निर्धारित मापदंडों के तहत की गई है।
2: और 2018 से मैं इस आवेदन के लिए मैं लगा हुआ हूँ उसमें, तो कोई मैंने कोई प्रक्रिया के तहत मैंने काम किया। दूसरा, हम दो MS हैं, MOS हैं हम, और उसमें एक रामनाथ जी ठाकुर है और एक मैं हूँ। ये जो सब्सिडी वाला है, ये जो कुछ है, तो वो राज्य मंत्री और रामनाथ जी ठाकुर है।
0: फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। विपक्ष जहां इसे पद के दुरुपयोग का मामला बता रहा है, वहीं सरकार इसे नियमों के तहत हुई प्रक्रिया बता रही है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: कोर्ट में पेशी, ट्रस्ट में रद्द होंगी सिफारिशी नियुक्तियां।
1: दो हजार 2027 साधने में जुटी बीजेपी समाजवादी पार्टी को योगी का सीधा चैलेंज, कहा हिम्मत है तो कृष्ण जन्मभूमि पर बोलकर दिखाएं अखिलेश। लोहिया के परिजनों से मिले पंकज चौधरी।
0: नोएडा के सेक्टर 119 की बहुमंजिला रिहायशी बिल्डिंग में फिर लगी आग, लपटों में घिरी अरण्या सोसाइटी की 22वीं मंजिल, आग बुझाने की कोशिश जारी।
1: मध्य प्रदेश के सागर में गलत इलाज से गए 19 महीने की बच्चे की दोनों ही आंखों की रोशनी, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर पर आरोप, दवा और इंजेक्शन के बाद कर दिया रेफर।
0: मूसलाधार प्रहार से पूर्वोत्तर भारत में हाहाकार, अरुणाचल प्रदेश में भारी तबाही, असम में बाढ़ जैसे हालात, गृहमंत्री अमित शाह से सीएम हेमंता ने की बात, मुंबई में भी आफत की बारिश।

0: जान मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का बयान, पुलिस ने किया दर्ज, जांच में बड़ा अपडेट। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से जांच तेज, अन्य ट्रस्ट पदाधिकारियों से पूछताछ की भी संभावना। अयोध्या राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई करने से इनकार, याचिका बाद में सूचीबद्ध करने के आदेश भी। सीबीआई जांच और सीएजी ऑडिट की मांग भी, मंदिर में दान प्रबंधन पर गंभीर सवाल। स्पेशल कोर्ट में आरोपियों की पेशी की तैयारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर विचार, सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी व्यवस्था। अयोध्या चढ़ावा मामले में गिरफ्तार 8 लोगों की न्यायिक हिरासत आज हो रही खत्म, आगे की पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी की कर सकती है मांग। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला लेने की बात कही, आज बार एसोसिएशन की होने वाली आम सभा में इस पर अंतिम फैसला। राम मंदिर चोरी मामले में नई जानकारियां सामने, मामला सार्वजनिक होने से पहले ही ट्रस्ट को इसकी जानकारी थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एक्शन भी तेज, गिरफ्तार सभी आरोपियों के घर पर छापेमारी, टिन्नू यादव और अविनाश शुक्ला के घरों पर तलाशी ली गई। आरोपियों के घर छापे में मिले संपत्ति के पेपर, दस्तावेजों का सत्यापन कराई गई पुलिस, कुछ लोगों के घरों से जेवरात मिलने की भी जानकारी।
1: राम मंदिर चोरी मामले में सीसीटीवी से बड़ा खुलासा, 5 जून का आरोपी अविनाश के हाथ में दिखाई दे रहा है काला बैग। चढ़ावा चोरी पर अखिलेश ने बीजेपी सरकार को घेरा, खास सीसीटीवी बंद करके की गई चोरी, इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट है। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का वार, कहा एसपी सरकार में राम भक्तों पर चली गोलियां, इनके पास विकास का एजेंडा नहीं है। अखिलेश और सीएम योगी ने दी चुनौती का, अगर हिम्मत है तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बोलकर दिखाएं। राम मंदिर से जुड़े विवादों के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तेज नारायण पांडे ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। यूपी 2027 विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग पर बोले यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी का पलटवार। समाजवादी पार्टी बोली अखिलेश यादव सभी सहयोगियों को बराबर सम्मान देते हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को सलाह, कहा कांग्रेस नेताओं को सीट बंटवारे पर बयानबाजी से बचना चाहिए। लखनऊ में 2027 लेकर बीजेपी का मंडल कमंडल का दांव, लोहिया परिवार से मुलाकात और मथुरा पर सियासी घमासान। यूपी बीजेपी चीफ के लोहिया परिवार से मुलाकात पर सियासी घमासान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा लोहिया परिवार के घर जाने से कोई राजनीतिक बदलाव नहीं होता है।
0: संभल में 101 करोड़ की सरकारी जमीन पर 60 साल पुराना फर्जी पट्टा रद्द, राज्य सरकार के नाम पर दर्ज कर कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही। दिल्ली के दौरे पर सीएम सम्राट चौधरी नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात, बिहार से जुड़े हुए 15,000 करोड़ की सड़क और पुल पर योजनाओं पर होगी चर्चा। केंद्र से वित्तीय स्वीकृति और राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध करेंगे सम्राट चौधरी, बिहार के आधारभूत संरचना को मजबूत कराने की दिशा में महत्वपूर्ण बैठक। राबड़ी देवी के सरकारी आवास खाली करने की बात आज आखिरी मोहलत है, तेजस्वी के घर शिफ्ट होने की भी चर्चाएं थी। पटना फायरिंग कांड में फैजल खान के दोनों ही गार्ड अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहे थे राइफल, अवैध रूप से, लाइसेंस रद्द करने की तैयारी। राजस्थान हरियाणा के बीच में यमुना जल परियोजना पर आज लगेगी मोहर, 32 साल पुराने यमुना जल विवाद पर आज ऐतिहासिक समझौता। अमित शाह की मौजूदगी में होगा एमओए और शेखावटी को यमुना का पानी मिला। 295 किलोमीटर पाइपलाइन से राजस्थान पहुंचेगा यमुना का पानी, सीकर चूरू और झुंझुनू को पेयजल राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश के सागर में सरकारी हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही, 19 महीने की मासूम की आंखों की रोशनी चली गई। सर्दी इंफेक्शन के इलाज के लिए मासूम की आंखों की रोशनी खत्म होने का बेहद गंभीर आरोप है, पुलिस में शिकायत है और एक जांच समिति गठित की गई।
1: अरुणाचल में बारिश का कहर, चीन सीमा से लगे 7 जिलों का संपर्क टूटा। क्लाउड बर्स के बाद नेशनल हाईवे 13 बंद, हाईवे बहाली में लग सकता है 1 हफ्ते से ज्यादा का समय। अरुणाचल प्रदेश से आई हैरान करने वाली तस्वीर, डम्बुक इलाके में सिरसरी नदी में चल रही राहत और बचाव अभियान के दौरान हुआ बड़ा हादसा, 4 फंसे लोगों को बचाने में 7 राफ्टर्स की नाव तेज बहाव में पलटी, 8 लोगों को बचा लिया गया है, 3 लोग अभी भी टापू पर फंसे हुए हैं। फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ के 30 जवान, राज्य पुलिस और आईटीबीपी की टीमें सुबह से लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। जोरहाट के जुनाई में बाढ़ का कहर, डिकारी नदी से उफान में 15 से अधिक लोग टापू पर फंसे, राहत और बचाव काम जारी। जोरहाट के केमी नदी पर 300 मीटर लंबा लोहे का पुल बहा, जुनाई की कनेक्टिविटी ठप। गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री से राजकोष में कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पर बातचीत की है। बाढ़ में बाढ़ का पानी खेतों में घुसा, किसानों की फसलें बर्बाद, मदद नहीं मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी। धार में 100 साल पुराना चंबल पुल नियंत्रित ब्लास्ट से ध्वस्त, 27 करोड़ की लागत से बनेगा नया फोर लेन पुल।
0: नोएडा सेक्टर 119 के अरुणय सोसाइटी में भीषण आग, 22वीं मंजिल पर आग की लपटें दिखाई दी। एसी यूनिट में ब्लास्ट से आग लगने की आशंका है। अरुणय सोसाइटी में अफरा तफरी में मची, फायर यूनिट और पुलिस मौके पर जरूर पहुंची। छत्तीसगढ़ के गोरेला में बेकाबू कार ने कई बाइकों को मारी जबरदस्त टक्कर, घटना सीसीटीवी में कैद। नोएडा सेक्टर 9 में 2 झुग्गियों में लगी भीषण आग, दमकल की टीमें मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम जारी। दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर पर एक शख्स ने यमुना में छलांग लगा दी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, एनडीआरएफ और दमकल की टीम मौके पर। पटना के दीदारगंज में डालडा गोदाम में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर। आसमान को छूती आग की लपटें दिखाई दी, धुएं का घना गुबार भी फैला, बीती रात लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। अहमदाबाद में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ के गोमती नगर में देर रात फायरिंग, 2 गुटों में भिड़न, चाय की दुकान पर विवाद के बाद चली गोलियां, रेस्टोरेंट कर्मचारी घायल।
1: गाजियाबाद के इंद्रपुरम में बैंक्वेट हॉल में बच्चे से कराई गई, लाखों के शगुन और गहनों से भरे बैग की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गाजियाबाद में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, 1 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त। झांसी में शादी के 4 महीने बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाए मारने के आरोप। फरीदाबाद में कारोबारी ने दुकान में की खुदकुशी, वीडियो में पत्नी ससुराल पक्ष पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। सहारनपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर मौत। पटना में ज्वेलरी शॉप में मालिक से लूटपाट, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बघा में देर रात बवाल, 2 पक्षों में पथराव, पुलिसकर्मी समेत 6 घायल। जालना में देर दर्शन के लिए दोस्तों की कार का भीषण हादसा, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। मुंबई के माहिम में मामले धक्का मुक्की से रेलवे स्टेशन के पास युवक को मारा गया चाकू, पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 2 दिन पहले हुए भीषण हादसे का वीडियो आया सामने, रिवर्स लेते ही कार को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, 4 की मौके पर मौत।
0: अहमदाबाद में तेज रफ्तार कार और बाइक के जबरदस्त टक्कर, 3 युवक घायल, मौके से चालक फरार। जालना में नशे की गोलियों की बिक्री करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश, आतंकवाद विरोधी दस्ते ने 1,080 बटन गोलियों के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा। गोंडा में लड़के से मिलने पहुंचे युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब 4 टीमें गठित की गई। वाराणसी में पुलिस पर फायरिंग करने वाला अपराधी गिरफ्तार, घटना का वीडियो वायरल। ग्वालियर में रहस्यमय आग में खौफ में लोग हैं और 5 घर अचानक वहां जले, पुलिस ने संभाला मोर्चा। बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार अब होने वाला खत्म, अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ से पहले आज प्रथम पूजा का आयोजन। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ, 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पवित्र छड़ी अमरनाथ गुफा पहुंचने के साथ समापन। इस बार अमरनाथ यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी और दर्शनों के लिए हर साल की तरह विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। अमरनाथ यात्रा 2 प्रमुख मार्गों पहलगाम और बालटाल से होती है शुरू, रजिस्ट्रेशन, हेल्थ सर्टिफिकेट, यात्रा परमिट, RFID कार्ड अनिवार्य है। बालटाल बेस कैंप पहुंचे LG मनोज सिन्हा, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की।
1: पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा की तैयारियां पूरी, आज देव स्नान पूर्णिमा पर स्नान यात्रा का होगा आयोजन। पुरी में स्नान यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर में भव्य तैयारी, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का होगा पवित्र जल से स्नान। स्नान पूर्णिमा पर गजानन वेश में किया जाएगा श्रृंगार, 108 कलश पवित्र जल से कराया जाएगा पवित्र स्नान। एकांतवास के बाद 16 जुलाई को निकलेगी यात्रा, 15 दिन तक एकांतवास में रहेंगे भगवान। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा पर मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, मंदिर में टेका मत्था लिया आशीर्वाद। दूसरे T20 में आयरलैंड ने वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया, मेजबान टीम का सीरीज पर 2-0 से कब्जा। पहले खेलते हुए आयरलैंड ने 8 विकेट पर बनाए 154 रन, भारत ने 9 विकेट खोकर 153 रन पर सिमटी। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन शून्य पर हुए आउट, बेकार गई तिलक वर्मा की अर्धशतकीय पारी। महिला T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराया। भारत की महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने दिया था 171 रन का लक्ष्य, कप्तान हरमनप्रीत ने बनाए 56 रन।
0: ईरान सेना की अमेरिका को खुली चेतावनी, कहा कि दोबारा हमला हुआ तो अंजाम और बुरा होगा। अमेरिका ने कहा कि ईरान ने तोड़ा समझौता। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने इराक के विदेश मंत्री से की मुलाकात, इराक के विदेश मंत्री ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दोबारा खोलने की अपील की। यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में रूसी सेना का भीषण हमला, गाइडेड बमों से रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। रूसी हमलों के जवाब में यूक्रेन का पलटवार, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया दावा, यूक्रेन ने 2 तेल रिफाइनरी को उड़ाया। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने से किया इनकार, स्लोवाकिया के पीएम ने यह बड़ा ऐलान किया। सुरक्षा के मोर्चे पर एक साथ आए दक्षिण कोरिया और जापान, राजधानी सोल में दक्षिण कोरिया और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक। डिजिटल टैक्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर यूरोपीय संघ का जवाब, हम दबाव में नहीं आएंगे। फ्रांस के टॉम्बलिन शहर में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, हादसे में पायलट समेत 11 लोगों की मौत, मृतकों में 5 छात्र भी शामिल। वेनेजुएला में भूकंप से बड़ी तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे में फंसे लोगों और शवों की तलाश जारी।

0: अरे बात पंजाब की, जहां बेअदबी कानून को लेकर अकाल तख्त में बड़ी पेशी आज होनी है। बेअदबी कानून के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सभी सिख विधायक और सिख मंत्री आज अकाल तख्त के समक्ष पेश होने के लिए पहुंच गए हैं। सीएम भगवंत मान हालांकि पेश नहीं होंगे, उन्होंने कहा कि उन्हें तलब नहीं किया गया है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने 15 जून को सभी दलों के सिख विधायकों और सिख मंत्रियों को अकाल तख्त के समक्ष उपलब्ध होने के लिए तलब किया। पिछले दिनों धार्मिक ग्रंथों के अपमान खिलाफ बने कानून को लेकर सिख संस्थाओं की आपत्ति के बाद अकाल तख्त के विधायकों और मंत्रियों को तलब किया। उनका कहना है कि कानून सिख पंथ से परामर्श के बिना बनाया गया है।
1: एंटी सेक्रेटरी लॉ को लेकर अकाल तख्त साहब ने सभी सिख एमएलए और मंत्रियों को बुलाया था और आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं पहुंच रहे हैं और इस तरफ जो है आप देख सकते हैं कि इस तरफ अंदर हॉल में जो है मीटिंग होगी और वहां पे जो जथेदार हैं ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज जो हैं वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि अकाल तख्त ने ऑब्जेक्शन जताया था, डायरेक्शन दी थी कि सभी को पेश होने के लिए कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो ये लॉ बनाया गया है एंटी सेक्रेटरी लॉ उसके लिए उसको जो बनाया तो ना अकाल तख्त साहब को ना एसजीपीसी को ना सिख ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, तो सभी सिख एमएलए और सिख मंत्रियों को जो है क्रॉस पार्टी लाइन अकाल तख्त साहब ने बुलाया। मीटिंग जो है कुछ टाइम में शुरू होगी। कांग्रेस श्रोमणी अकाली दल के एमएलए पहले आ गए थे, अब आम आदमी पार्टी के एमएलए जो है पहुंच गए हैं और स्पीकर कुलतार सिंह संधवा भी यहां पर पहुंचे हैं। अमृतसर से कैमरा पर्सन अमन के साथ असीम बसी आज तक।
2: हमने बवाल भी देखा, अब हमारे साथ हमारे संवाददाता असीम बसी से लाइव जुड़ भी गए। असीम, कौन कौन पहुंचा है?
1: जी हम आपको बता दूं, क्योंकि सभी सिख एमएलए और सिख मिनिस्टर्स को बोला गया था अकाल तख्त की तरह कि यहां पर पेश होंगे, तो अभी आम आदमी पार्टी के एमएलए जो पहुंच गए हैं, कांग्रेस के एमएलए पहुंच गए और श्रोमणी अकाली दल के जो एमएलए हैं वो भी पहुंचे हैं यहां पर, क्योंकि असेंबली में जो है मेजोरिटी आम आदमी पार्टी के, तो अधिकतर जो एमएलए हैं टेम्पो ट्रेवल में बैठ गए हैं आम आदमी पार्टी के जो एमएलए थे, तो मीटिंग जो है अब शुरू हो रही है। ये बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग रहेगी क्योंकि क्लोजली वॉच्ड है, क्योंकि अकाल तख्त साहब ने जो है ऑब्जेक्शन रेज किया था कि जो एंटी सेक्रेटरी लॉ जो बनाया गया है उसके लिए अकाल तख्त साहब को सिख पंथ को या एसजीपीसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, सरकार ने पूछा तक नहीं, तो इसलिए ऑब्जेक्शन रेज किए थे और आज सबको बुलाया कि आपने जो हम लोगों को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया, तो अब सरकार जो है अपना पक्ष रखेगी और एमएलए जो है वो अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि जो पता लग रहा है जो आम आदमी पार्टी ने पक्ष यही रखा है कि 2008 में जो एक जो एक्ट पास हुआ था उसी को अमेंड किया गया है और ये उसका एम यही है कि जो लोग बेअदबी करते हैं उनको जो है स्ट्रिक्टर पनिशमेंट जो है वो दी जाए, और उन्होंने ये भी अपील की है कि अगर किसी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं है तो सभी सेंटिमेंट्स को जो है ध्यान में रखा जाए। लेकिन अब अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज जो है वो क्या उनसे बात करते हैं, क्या निर्देश देते हैं, वो देखना होगा, लेकिन अभी जो है फिलहाल अकाल तख्त सेक्रेटरी के सामने एक हॉल है, वहां पर मीटिंग जो है वो शुरू हुई है। जी हां,
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बाढ़ की बात करेंगे, बिगड़ गए हालात पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम के कई इलाकों में। बंगाल में भारी बारिश से स्थिति गंभीर हो गई है।
2: वहीं अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और फ्लैश फ्लड के चलते बड़ी तबाही हुई है। असम के धीमाजी में कई गांवों में पानी भर गया और मुसीबतें बढ़ गई।
3: बाढ़ से बंगाल के कुछ हिस्से बेहिसाब संकट का सामना कर रहे हैं। अलीपुरद्वार के जयगांव से आइए तस्वीर देखिए। सड़क पर ऐसा सैलाब आया है कि वहां से गुजर रहे लोग भी तेज धार में बहने लगे। बाइक सवार दो लोग उस सैलाब में गिर पड़े, उसके बाद वो खुद की जान बचाते नजर आए, लेकिन डरावनी लहरें बाइक बचा रहे शख्स को बहा ले गईं। अब तक उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में मूसलाधार बारिश के बाद हालात तेजी से बिगड़े हैं। शनिवार रात से ही यहां भारी बारिश हुई है, इसका गंभीर असर जनजीवन पर दिख रहा है। अरुणाचल से आई इन तस्वीरों को देखिए। लोअर सियांग जिले में जब लैंडस्लाइड हुआ तो हड़कंप मच गया। सीजी नदी के किनारों पर बेहिसाब खतरा बढ़ गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जान पर बनाई है। लैंडस्लाइड की वजह से नदी पर मानो डैम बन गया। अब आशंका जताई जा रही है कि अगर ये मलबा बहा तो फ्लैश फ्लड से भारी तबाही आ सकती है। प्रशासन ने इस इलाके के गंभीर हालात को देखते हुए लोगों को आगाह किया है और कहा है कि वो नदी के किनारों से दूर रहें, नदी में जाने से बचें। 24 जून को केई पन्योर जिले में बादल फटे थे, वहां भारी तबाही हुई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, अब तक कई लोग गायब हैं। तब से अब तक वहां राहत और बचाव का काम जारी है। उधर असम में भी बाढ़ की वजह से तेजी से हालात बिगड़े हैं। धीमाजी इलाके में करीब 70 गांवों में बेहिसाब संकट बढ़ा है, इससे 15,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। धीमाजी के बदतर हालात का अंदाजा वहां की तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। घरों में पानी भर चुका है, कमर भर पानी में डूबकर लोग आने जाने को मजबूर हैं, सड़कों पर जल जमाव है। ऐसे हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने रविवार को हालात की जानकारी ली और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ के हालात को लेकर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा से बातचीत की है।
2: तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हमने हालात बताए और मुश्किलें लगातार आम लोगों की बढ़ती चली जा रही है। इस बीच में असम के जब कुछ हिस्सों में बाढ़ का संकट है तो गृहमंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से बातचीत की है और साथ ही साथ केंद्र सरकार पूरी तरह से उनके साथ ही आश्वासन भी दिया है। और अब असम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। असम के धेमाजी के केमी और युआन को जोड़ने वाले केमी नदी पर बना हुआ 300 मीटर लंबा लोहे का पुल रविवार को बह गया।
0: पुल के ढह जाने से केमी पुराना जोलोम क्षेत्र और जनाई सदर के बीच संपर्क टूट गया है। इसके कारण हजारों ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो गया है। दैनिक जीवन पर इसका गंभीर असर पड़ा है।
2: अब प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से यातायात बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पुल के टूटने से स्थानीय लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
0: और बात अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर बाढ़ और बारिश से हाहाकार है। यहां पर लोअर सियांग वैली से एक वीडियो आया है जिसमें लैंडस्लाइड से एक शख्स बाल बाल बचा दिख रहा है। पूरी जमीन दरअसल खिसक गई और इससे पहले कि ये पूरा मलबा उसके ऊपर आता बाल बाल बच गया। लैंडस्लाइड की बेहद भयानक और डरा देने वाली तस्वीरें आप सियांग से देख रहे हैं।
2: सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है कि पहाड़ का एक इतना बड़ा हिस्सा, आप नीचे देखेंगे नदी, वो बड़ा हिस्सा टूट कर गिरा। लेकिन इसमें राहत की बात है कि भर भरा कर मिट्टी नीचे नहीं गिरी, और वरना ये शख्स इसी मिट्टी में कहीं दब जाता। लेकिन उसे इतना समय मिल गया कि वहां से दौड़कर जो उसके पैरों के नीचे जमीन थी वो स्टेबल रही, स्थिर रही और वो बिखरी नहीं, तो वो शख्स बच गया।
0: और बात यूरोप में पड़ रही प्रचंड गर्मी की, क्योंकि भारत नहीं यूरोपीय देश भी इस वक्त गर्मी से जूझ रहे हैं। खासतौर पर पश्चिमी यूरोप में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है।
2: भीषण गर्मी है और इस गर्मी की वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी में सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा।
3: यूरोप इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव की चपेट में है। फ्रांस के हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। देश के 54 विभागों में रेड अलर्ट जारी है और कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। फ्रांस की स्वास्थ्य एजेंसी ने खुलासा किया है कि भीषण गर्मी के चलते अब तक 1000 से अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई गई है। जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य और ऑस्ट्रिया में भी तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भीषण गर्मी से बिजली उत्पादन, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। जर्मनी में तो गर्मी से बचने के लिए सड़कों पर पानी की बौछार की जा रही है। आमतौर पर दुनिया का सबसे ठंडा इलाका माने जाने वाला यूरोप ने कभी ऐसी गर्मी देखी ही नहीं थी। दशकों तक कभी तापमान 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री के पार गया ही नहीं था। लेकिन इस बार ग्लोबल वार्मिंग का असर भूमध्य सागर के ऊपर गर्म हवाओं के चलते यूरोप उबल रहा है। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, ये तमाम वो इलाके हैं जो इस समय गर्मी के प्रकोप झेल रहे हैं। आमतौर पर ये पूरा वो इलाका होता है जो ठंडा रहता है। लोग ठंडियों में यूरोप की यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन इस समय यूरोप में हाहाकार है। तापमान 40 डिग्री के पार है और अब इसका असर धीरे धीरे पूर्वी यूरोप को भी अपनी चपेट में ले रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसी खतरनाक हीट वेव अब लगभग हर साल देखने को मिल रही है। आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उछला आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक।
5: वेलकम बैक टू या दैट्स अ पेपर थिंग। First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
6: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
5: She swears it makes it taste better.

0: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
3: सरसों से सरसों।
4: स्मार्टफोन पर उंगलियां घुमाते हुए शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं है। घर बैठे मनपसंद सामान मिल जाए तो दिन बन जाता है। हमारी इसी चाहत का फायदा उठाकर ऑनलाइन कंपनियां चुपके से जेब पर डाका डाल रही हैं। इसके लिए कंपनियां डार्क पैटर्न नाम से एक मायाजाल का सहारा ले रही हैं। ये डिजिटल दुनिया की ऐसी चालाकी है जिसके जरिए ग्राहकों को झांसा देकर जबरन ज्यादा पैसे खर्च कराए जाते हैं। हाल ही में आई डार्क पैटर्न इन इंडिया की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट कंपनियों की भ्रामक ट्रिक से भारतीय ग्राहकों को सालाना 25 से 28 हजार करोड़ रुपए की भारी चपत लग रही है। देश में करीब 30 लाख 40 हजार करोड़ ऑनलाइन खरीदारों में से 88% लोग इस चालाकी का शिकार बने हैं। इस जाल में फंसकर हर प्रभावित ग्राहक हर महीने औसतन 78 से 87 रुपए फालतू गंवा रहा है। ये पूरा खेल बेहद शातिर तरीके से खेला जाता है। जब आप सामान पसंद कर रहे होते हैं तो स्क्रीन पर नकली टाइमर चलने लगता है कि स्टॉक खत्म होने वाला है। हड़बड़ी में जैसे ही आप पेमेंट की तरफ बढ़ते हैं कंपनी अपना असली रूप दिखाती है। डेटा के मुताबिक 63% डिजिटल पेमेंट करने वाले खरीदारों को अंतिम फेज में अचानक छिपे हुए चार्ज का सामना करना पड़ता है। 2024 में ये आंकड़ा 52% था, जो साफ दिखाता है कि कंपनियों की ये लूट लगातार बढ़ रही है। वहीं करीब 73% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को अनचाहे विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है। इस खेल की सबसे हैरान करने वाली वजह कंपनियों का शातिर इंटरफेस डिजाइन है। लोग समझते हैं कि वो समझदार हैं, लेकिन डिजिटल चालबाजी के आगे उनकी एक नहीं चलती। आंकड़े बताते हैं कि 81% ग्राहक इन ट्रिक्स को पहचानते हैं, फिर भी असलियत में खरीदारी करते समय 85% लोग इस जाल में फंस ही जाते हैं। नुकसान होने पर 53% लोग प्लेटफॉर्म पर शिकायत भी करते हैं, लेकिन उनमें से केवल 23% को ही सही समाधान मिल पाता है। अलग अलग सेक्टर्स में कंपनियों का तरीका भी एकदम जुदा है। क्विक कॉमर्स यानी चंद मिनटों में सामान पहुंचाने वाली प्लेटफॉर्म पर जल्दी खरीदने का नकली दबाव सबसे ज्यादा बनाया जाता है। ऑनलाइन ट्रेवल सेक्टर में टिकट बुक करते वक्त टैक्स और दूसरे चार्ज बिल्कुल आखिरी स्टेप पर दिखाकर धोखा दिया जाता है। इस धोखे की वजह से 36 से 45% ग्राहकों ने इन प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा कम करके शॉपिंग घटा दी है या ऐप डिलीट कर दिया है। कंपनियों की शॉर्टकट वाली कमाई डिजिटल इकोनॉमी के भरोसे को कमजोर कर रही है। ग्राहकों की जेब की सुरक्षा के लिए अब इन छुपे हुए शुल्कों पर पूरी पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी हो गया है। कंपनियां भले ही ट्रिक्स अपनाकर अपना फायदा देख रही हों, लेकिन ग्राहकों का टूटता भरोसा भविष्य में ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बहुत बड़ा घाटा साबित हो सकता है। आदित्य किराणा, आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज हुआ चंपत राय का बयान, आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी में जेवरात और जमीन के पेपर बरामद, आज कोर्ट में पेशी, ट्रस्ट में रद्द होंगी सिफारिशी नियुक्तियां।
1: दो हजार 2047 साधने में जुटी बीजेपी समाजवादी पार्टी को योगी का चैलेंज, कहा हिम्मत है तो कृष्ण जन्मभूमि पर बोलकर दिखाएं अखिलेश, लोहिया के परिजनों से मिले पंकज चौधरी।
0: नोएडा के सेक्टर 119 की बहुमंजिला रिहायशी बिल्डिंग में फिर लगी आग, लपटों में घिरी अरण्या सोसाइटी की 22वीं मंजिल।
1: मध्य प्रदेश के सागर में गलत इलाज से गई 19 महीने के बच्चे की दोनों ही आंखों की रोशनी, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप, दवा और इंजेक्शन के बाद कर दिया रेफर।
0: मूसलाधार प्रहार से पूर्वोत्तर भारत में हाहाकार, अरुणाचल प्रदेश में भारी तबाही, असम में बाढ़ जैसे हालात, गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत से की बात, मुंबई में आफत की बारिश।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
0: अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे की चोरी के जिस मामले पर आज राम भक्तों का आक्रोश है, क्या उस चोरी की भनक श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि आरोपियों में से एक के घर पुलिस ने 5 जून को ही छापेमारी कर ली थी।
1: अब इस मामले में पुलिस को घर से कैश भी मिला, इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रस्ट ने जानते हुए बूझते हुए सब कुछ जानते हुए भी इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की, क्या ये सब बदनामी और अपमान के डर से किया गया?

0: क्या चढ़ावे की चोरी होती रही, ट्रस्ट देखता रहा। क्या ट्रस्ट को पता था चढ़ावे में चोरी की हकीकत? आरोपी के घर मिली कैश तो क्यों नहीं कराई एफआईआर? राम भक्त स्तब्ध है, बेचैन है ये जानकर कि आस्था से चढ़ाए उनके चढ़ावे की चोरी होती रही, उनके विश्वास से खिलवाड़ होता रहा। और अब एक नया खुलासा हुआ है जो और ही विचलित कर देने वाला है। इस खुलासे की बुनियाद ये सीसीटीवी फुटेज है। इस सीसीटीवी फुटेज में जिस शख्स को देख रहे हैं उसका नाम है अविनाश शुक्ला, चंदा चोरी गैंग का अहम मेंबर, लूट कांड का अहम किरदार। जो काली बैग आप देख रहे हैं उसमें रखी है चोरी की वो रकम जो सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे की ढेर से उड़ाई गई है। सूत्रों की माने तो 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे थे। छापेमारी के दौरान अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5 लाख नकदी बरामद हुई। इस बैग में वही 5 लाख कैश रखी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब 5 जून को ट्रस्ट और पुलिस दोनों को चढ़ावा चोरी की जानकारी थी और पुख्ता सबूत मिल गए थे तो फिर फौरन एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई? मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश क्यों हुई?
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला का 5 जून का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को इस चढ़ावा चोरी की जानकारी पहले से थी और इसकी एफआईआर दर्ज कराने में ट्रस्ट ने देरी की। यानी अविनाश शुक्ला समेत सभी आरोपी लगभग ट्रस्ट की निगाह में आ गए थे और अविनाश शुक्ला का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि कैसे एक सफेद गाड़ी में पुलिसकर्मी व अन्य लोगों की मदद से अविनाश शुक्ला को बैठाया जा रहा है और इनके पास से एक काले बैग में कहा गया कि 5 लाख रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई। लेकिन दर्ज हुई एफआईआर देर से हुई और कानून के जानकार कहते हैं कि यह एफआईआर में देरी आरोपियों के लिए मददगार साबित हो सकती है।
0: चढ़ावा चोरी के खुलासे से एफआईआर दर्ज होने तक इस पूरे मामले की टाइमलाइन पर गौर करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसे ठंडे बस्ते में डालने की जमकर कोशिशें हुई। 5 जून को ट्रस्ट को धांधली की जानकारी मिल गई, सबूत भी मिल गए, इसके वीडियो सबूत हैं। लेकिन इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई 20 दिन बाद यानी 25 जून को। 25 जून को ही पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। यानी 20 दिन तक आरोपी को खुलकर आजादी दी गई कि वो सबूतों से छेड़छाड़ करते रहे, उनका नामो निशान मिटाते रहे। इस बीच सब कुछ हुआ, राजनीति भी खूब हुई, बयानबाजी भी जबरदस्त हुई जो अब तक खत्म नहीं हुई है।
2: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है।
3: ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
0: चढ़ावा चोरी के इस मामले में चौतरफा थू-थू होने के बाद ही सारे एक्शन हुए हैं। किरकिरी होने के बाद ही एसआईटी का गठन हुआ, जांच हुई, मामला दर्ज हुआ। अब खबर ये भी आ रही कि राम मंदिर ट्रस्ट सिफारिश के आधार पर हुई नियुक्तियों पर सख्त कार्रवाई करेगा। श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उन कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया है जिन्हें तय भर्ती प्रक्रिया के बजाय सिफारिश के आधार पर नियुक्त किया गया था। ट्रस्ट ऐसी सभी नियुक्तियों की समीक्षा कर रहा है और कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। साफ है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बड़ी देर कर दी। ट्रस्ट की नींद खुलते खुलते राम भक्त इतने आहत हो चुके हैं कि उनके घाव जल्द नहीं भरने वाले और न ही ट्रस्ट के दामन पर लगे दाग धुलने वाले हैं। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
4: जिस अविनाश शुक्ला के घर पुलिस को 5 लाख की नकदी मिली, उसने चंदा चोरी के पैसे से किसी जायदाद कितनी जायदाद बनाई है, इस पर ये रिपोर्ट देखिए।
5: इस वक्त मौजूद है राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला के अयोध्या वाले घर पे, जहां पर पुलिस फोर्स पहुंची है। आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करने के लिए और जानकारी जुटाने के लिए। पीछे आप मेरे देखेंगे तो ये पुलिस फोर्स है, सुबह से ही छापेमारी सभी आरोपियों के घर पर चल रही है। उसी क्रम में अविनाश शुक्ला के घर पर यहाँ पर पुलिस पहुंची थी। जानकारी में सामने आया है कि अविनाश शुक्ला, जो कि प्रतापगढ़ का परमानेंट निवासी है, यहाँ पे ऊपर घर में कई सालों से किराए पर रह रहा था। फिलहाल जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पाया कि गेट पर ताला लगा हुआ है, और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ ही महीनों पहले यहां से अविनाश घर छोड़ के जा चुका है। विजुअल्स में आप देखेंगे तो यहां पर पुलिस की पूरी टीम मौजूद है, हर एक लोकेशन पर एक इंस्पेक्टर लेवल का जो ऑफिसर है वो यहां पर मौजूद है। यहां पर नीचे आप देखेंगे तो एक दुकान भी है, पुलिस ने यहां पर आके पूछताछ की और स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए। कोशिश करेंगे जानने की, क्या नाम है आपका?
6: राहुल कुमार सर।
5: ये बताइए कि यहाँ पर अविनाश शुक्ला के घर पे जो पुलिस छापेमारी करी, यहीं रहते थे?
6: हाँ, मतलब यहाँ पे भी रहते थे और घर पे भी, अपने घर से भी अप डाउन करते थे
5: यहाँ। और यहाँ पर अकेले रहते थे, किसी के साथ रहते थे?
6: नहीं, हम तो अकेले ही जानते हैं उनको।
5: इस तरीके से पुलिस सभी आरोपियों के घर के आसपास जाके पड़ोसियों से और दुकान वालों से पूछताछ कर रही है ताकि जानकारी जुटाई जा सके। कोर्ट में दोबारा आरोपियों को पेश किया जाएगा तो पुलिस के पास पुख्ता जानकारी होनी चाहिए, जिसकी वजह से ही आज सभी आरोपियों के घर पे छापेमारी की जा रही है ताकि जब शाम को कुछ साक्ष्य या फिर जानकारी उनके पास हो तो वैसे कोर्ट में रखने पाए। फिलहाल जो पता लगा है कि कुछ ही महीनों पहले यहां पर जो रेंट पे जो घर था उसे छोड़ के यहां पे जाया जा चुका है। अकेले जो है अविनाश शुक्ला यहां पे रहता था, कभी कभार अपने घर से आता था, और तमाम जो आरोप उस पर लगे हैं कि वो चढ़ावा चोरी में शामिल था, उसके बाद ये छापेमारी उसी क्रम में की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, अयोध्या आज तक। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सिमर भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। सिमर, ट्रस्ट को पहले जानकारी थी, 5 तारीख को सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रस्ट की तरफ से कोई औपचारिक शिकायत नहीं करवाई गई, कोई एफआईआर नहीं करवाई गई, तो अब तो ट्रस्ट के एक नहीं सारे के सारे सदस्य सवालों के घेरे में।
7: बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो एक्सपोज करता है ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों को। ये जानकारी सामने आई है कि 4 जून को ही ट्रस्ट के पदाधिकारियों को इस चोरी के बारे में पता चला और 5 जून को कई आरोपियों के घर से अनौपचारिक तौर पर जाकर छापेमारी करके रकम बरामद की गई। इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस सीसीटीवी में देख सकते हैं कि ट्रस्ट के मेंबर्स हैं और पुलिस की मौजूदगी में जो रकम है वो अविनाश शुक्ला के घर से बरामद की जा रही है, लेकिन ये सब बिना औपचारिक शिकायत के हो रहा है, बिना किसी एफआईआर रजिस्टर करने से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पुलिस को भी और ट्रस्ट के लोगों को भी इसके बारे में पता था। ये लगातार कार्रवाई की गई, छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन 8 जून को जो चंपत राय का बयान आया वो हम सबने देखा, उन्होंने कैसे इन सभी आरोपों से इनकार कर दिया। 7 जून को जब अपोजिशन ने इस मुद्दे को उठाया तभी ये पूरा मामला सामने आया, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ट्रस्ट द्वारा जानकारी होने के बावजूद इस पूरे मामले को छुपाने की भरपूर कोशिश की गई। जो सीसीटीवी फुटेज आज तक के पास मौजूद है वो एक्सपोज करता है इन सभी क्लेम्स को और ये बताता है कि कैसे ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को सब कुछ पता था लेकिन ना औपचारिक शिकायत दी गई, उसके 20 दिन बाद एफआईआर रजिस्टर कराई गई। 4 जून को ये जानकारी ट्रस्ट को मिल जाती है लेकिन 20 दिन का इंतजार करना पड़ता है एफआईआर के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए, वो भी तब जब लगातार मीडिया, लगातार अपोजिशन इस मुद्दे को उठाती है, उसके बाद जाके ये कार्रवाई होती है और एसआईटी के गठन के बाद। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट की वर्किंग पे, ट्रस्ट के पदाधिकारियों की मंशा पर ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं राजीव, और इसका जवाब अब देखना है कि वो किस रूप में देते हैं।
4: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चढ़ावा चोरी मामले की जांच के घेरे में एसबीआई के 2 कर्मचारी, अयोध्या पुलिस की टीम जांच के लिए स्टेट बैंक पहुंच गई।
8: अयोध्या के नया घाट एसबीआई ब्रांच पुलिस पहुंची है राम मंदिर चढ़ावा से जुड़े हुए मामले में। अब एसबीआई तक ये जांच की आज पहुंची है, पुलिस ने पूछताछ की भी है, उनके बयान भी दर्ज किए हैं।
4: संतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, अब किस मामले की पूछताछ के लिए पुलिस पहुंची है?
1: देखिए, इस पूरे मामले में एसबीआई के उस बैंक में और एसबीआई के अलावा 2 अन्य बैंकों में पुलिस पहुंची है और सिर्फ इस बात की जानकारी जुटा रही है कि जो आरोपी थे उन्होंने किस किस बैंक में खाते खुलवाए और उनके बैंक खातों में कब कितनी रकम जमा हुई और कैसे जमा हुई, कैश जमा हुआ या किसी दूसरे खाते से ट्रांसफर हुए। क्योंकि कल जो छापेमारी की गई 7 आरोपियों के घर में, खास करके रामशंकर यादव, टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, ये 4 कैरेक्टर सबसे अहम हैं, और इसके साथ ही जो 3 अन्य आरोपी हैं उन सभी के बैंक खाते आज खंगाल रही है अयोध्या पुलिस। पुलिस डिटेल ले रही है बैंकों में जाकर के कि किसके खाते में कितनी रकम आई है, ताकि पता चलाया जा सके कितनी किसके खाते में कितनी बड़ी रकम जमा हुई है बीते कुछ दिनों के अंदर, और तभी इस बात की पुष्टि भी हो पाएगी कि इनके द्वारा जो चोरी की गई रकम कहां खपाई गई थी। जी
8: संतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चढ़ावा चोरी की पड़ताल में लगी जांच एजेंसियां अब सच तलाशने में लगी हुई हैं। आरोपियों के घरों पर दबिश दी जा रही, सबूत तलाशे जा रहे हैं।
4: खबर यह भी आ रही है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान दर्ज कर लिया गया है, उनके हाथ में ट्रस्ट की कमान थी, इसलिए इस मामले में चंपत राय का बयान अहम है।
8: तो चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय से पुलिस ने पूछताछ की है, चंपत राय इस्तीफा भी दे चुके हैं, इस्तीफा भी ट्रस्ट ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन पूरा का पूरा ट्रस्ट सवालों में, क्योंकि जानकारी पहले थी उसके बावजूद भी एफआईआर नहीं करवाई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जिसमें ऐलान कर दिया गया कि राज्य सरकार से एसआईटी जांच की मांग करें, आपने एफआईआर नहीं करवाई, ट्रस्ट का हर सदस्य सवालों के घेरे में है, वहां लूट मची हुई थी, अभी तक सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ाए गए, गंभीर आरोप लग रहे हैं कि ट्रस्ट के किसी सदस्य अभी तक सिर्फ उनसे पूछताछ ही हो रही है, ना एफआईआर में किसी का नाम, जो 8 गिरफ्तारियां भी हुई हैं उसमें कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन ट्रस्ट के क्या बिना ट्रस्ट के किसी सदस्यों को ऐसी जानकारी नहीं थी, एसओपी का पालन नहीं हो रहा था, ऑडिट में तमाम तरह की खामियां सामने आई, सीसीटीवी फुटेज में सारी चीजें थी उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं।

0: इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है।
1: इनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं वो तो खुलेआम घूम रहे हैं।
2: जमपत राय ने स्वीकार कर लिया कि हम चोर हैं, हमने चोरी किया है और हम चोरी में शामिल, इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया।
3: चंपत राय राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव। जब से चढ़ावे में चोरी का खुलासा हुआ है, चंपत राय सवालों के घेरे में है, उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है, उनकी जिम्मेदारी और उनकी नैतिकता सवालों के घेरे में है। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि चंपत राय का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है। जरूरत पड़ी तो पुलिस अनिल मिश्रा और ट्रस्ट के दूसरे पदाधिकारियों के बयान भी दर्ज करेगी।
4: राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की आज जहां अयोध्या कोर्ट में जुडिशियल कस्टडी के लिए पेशी होनी है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश को तेज करते हुए FIR दर्ज कराने वाले ट्रस्टी के साथ साथ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का भी बयान दर्ज कर लिया है। और इस बयान के जरिए पुलिस के सामने साफ हो चुका है कि मंदिर में चढ़ावा की जो रकम आती थी उसको गिनने, बैंक में जमा करने की पूरी प्रक्रिया क्या तय हुई थी और किसकी लापरवाही से ये चोरी हो रही थी। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ेगी तो पुलिस आने वाले वक्त में चंपत राय के साथ साथ दूसरे ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी पूछताछ कर सकती है।
3: चढ़ावा चोरी के इस मामले में अब पुलिस जांच में तेजी लाती दिख रही है। आरोपियों के घरों की तलाशी हो रही है, उन्हें जानने वालों से पूछताछ हो रही है। कल यानी रविवार को अयोध्या में पुलिस एक के बाद एक आरोपियों के घर दबिश देती रही।
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। मैं इस समय पर अयोध्या में ही रह रहे रमाशंकर मिश्रा, जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। उनके परिजनों से, उसकी भाभी, बहन, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है। ये रमाशंकर मिश्रा घर है जो राम मंदिर में नोट गिनने के काम में जुड़ा हुआ था। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने इन सभी आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे और इनको जुडिशियल कस्टडी में सोमवार तक के लिए भेज दिया गया था। लेकिन अब कल सोमवार को दोबारा जुडिशियल कस्टडी पर सुनवाई होनी है, उससे पहले पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। इन सभी जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कब आते थे, कैसे आते थे, क्या क्या खरीदा गया।
3: अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, मनीष यादव समेत सभी 7 आरोपियों के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। करीब 1.5 से 2.5 घंटे तक टीमें घर में रही, पूछताछ की गई, लिखा पढ़ी की गई। परिजन कह रहे हैं उन्हें इस लूट कांड की भनक नहीं थी।
5: जांच के लिए और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो हैं, तो हम बताए कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, 2 से 2.5 साल से यहाँ रहते नहीं हैं, आना जाना भी यहाँ का नहीं है, एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पांव नहीं रखते हैं।
4: कब से नहीं आया?
5: 2.5 साल हो गए यहाँ नहीं आया। हाँ, 2 साल।
4: राम मंदिर में कब से काम कर रहा था, क्या काम करता था रमाशंकर?
5: 5-6 साल हो गए, तब वहाँ पैसा गाने में बताता है, गाना कर्मचारी।
4: अच्छा, हाँ। कभी पैसा वैसा ज्यादा देखा आपने रमाशंकर के पास? बहुत
5: कभी नहीं, पैसा तो मांगा रहा तो पैसा पाई नहीं, पैसा मांग लेता है कि देगी कहीं जरूरत लगे।
4: पुलिस तो कह रही है कि सब मिलके 80 लाख रुपए चोरी कर लिए चढ़ावे से।
5: कुछ ये कि नया पैसा यहाँ कहूँ देखे न आया हुआ।
3: रमाशंकर मिश्रा के परिजनों का कहना है कि वह लंबे समय से घर नहीं आया है और किराए के मकान में रह रहा था।
6: हमको ना वो करे हैं ना हमको दिया है, कभी हमसे उनसे बनता ही नहीं था, कभी वो 10 रुपया हमको दिए ही नहीं थे, मुझको मेरे पति का सहारा है, बस कोई का सहारा नहीं है।
4: तो यहाँ रमाशंकर के बारे में और क्या, घर से कुछ पैसा वैसा ले गए, कुछ बरामदगी दिखाई है, घर से मिला है
6: कुछ? नहीं मिला है सर, केवल कागजात मिला है, वही लेकर गए हैं, आधार नंबर, खाता नंबर।
3: पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है, इनमें से करीब 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से मिलने की बात सामने आई है।
4: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो तीनों यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद जब गुरुवार देर रात तीनों यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए तीनों यादव के पास से बरामद हुए।
3: इस मामले में गिरफ्तार किए गए अनुकल्प मिश्रा पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। पुलिस के अनुसार वह नोटों की गिनती की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेन देन की भी पड़ताल की जा रही है। 2 साल पहले खरीदे गए उसके मकान पर भी आज तक की टीम पहुंची।
7: इस वक्त मैं मौजूद हूं अनुकल्प मिश्रा के घर के बाहर। ये वही घर है जो 2 साल पहले उनके द्वारा खरीदा गया था। यहां पे अगर आप देखेंगे तो पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। सुबह से ही लगभग 6 टीमें अयोध्या पुलिस की अलग अलग आरोपियों के घर में छापेमारी करने का काम कर रही है। यहां पे आप देखेंगे तो इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर हर एक लोकेशन पे यहां पर मौजूद है। ये अनुकल्प मिश्रा का घर है, वही जिनके पास ये जिम्मेदारी थी कि चढ़ावे की रकम को गिना जाए, बैंक में जमा कराया जाए। वहां अंदर इनकी बहन से और इनकी माँ से जो है वो पूछताछ की जा रही है।
3: संतोष शर्मा के साथ सिमर चावला, अयोध्या आज तक।
8: इस बीच चढ़ावा चोरी मामले में सीएम योगी अखिलेश विवार पलटवार की स्थिति जारी है।
9: आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है।
0: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है।
10: और अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशन।
12: फॉरगेट एवरीथिंग यू हैड प्लान्ड फॉर दिस वीकेंड बिकॉज़ यू आर सिटिंग ऑन योर कॉउच एंड विनिंग फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर ओन होम। आई एम हियर विद स्पिनक्वेस्ट वेयर यू कैन प्ले हंड्रेड्स ऑफ स्लॉट गेम्स, ऑल द टेबल गेम्स यू लव, एंड यू कैन इवन विन रियल कैश प्राइजेस। न्यू यूजर्स $30 कॉइन पैक्स आर ऑन सेल फॉर $10 एट spinquest.com.
13: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
11: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: राम लला की घर डकैती डालने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे हुए, तो वहीं अब पुलिस भी एक्शन मोड में दिख रही है। अयोध्या पुलिस ने उन आरोपियों के घर धावा बोला जो अयोध्या में रहते हैं। अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और रामाशंकर मिश्रा के घर छापा मारा, उनके घर वालों से पूछताछ की। जी आरोपी घर पर कब आते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, ये सारी जानकारियां पुलिस ने इकट्ठा की हैं। आरोपी रामाशंकर मिश्रा के पिता अयोध्या में ही एक मंदिर में पुजारी हैं। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की। रामाशंकर के परिवार वाले कह रहे हैं कि वो यहाँ आता ही नहीं, सालों से घर आया नहीं, किराए का मकान लेकर वहीं रहता है। चढ़ावा चोरी के आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी हो गई है। 20 लाख रुपए चिन्नी यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
1: चिन्नी यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर दो कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर हैं, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहाँ लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है, जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था, जहां आज तक की टीम पहुंची।
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, इनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में CCTV कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां टिन्नू यादव की तरह UP पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के RMO अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल RMO को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: चढ़ावा चोरी केस में दर्ज हुआ चंपत राय का बयान। आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी में जेवरात और जमीन के पेपर बरामद। आज कोर्ट में पेशी, ट्रस्ट में रद्द होंगी सिफारिशी नियुक्तियां। 2027 सात में मिल जुटी बीजेपी समाजवादी पार्टी को योगी का सीधा चैलेंज, कहा हिम्मत है तो कृष्ण जन्मभूमि पर बोल कर दिखाया अखिलेश। लोहिया के परिजनों से मिले पंकज चौधरी। बेअदबी मामले में बढ़ती जा रही सीएम भगवंत मान की मुश्किलें। अकाल तख्त में पेश हुए आम आदमी पार्टी के सिख विधायक और मंत्री, मान मामले में पूछताछ हुई। छत्तीस साल बाद कश्मीर के नर्स सरला भट्ट हत्याकांड में जगह इंसाफ की उम्मीद। श्रीनगर की अदालत में पेश होगी चार्जशीट। पांच आरोपियों में जेकेएलएफ के यासीन मलिक भी शामिल। मूसलाधार प्रहार से पूर्वोत्तर भारत में हाहाकार। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही। असम में बाढ़ जैसे हालात। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत से की बात। मुंबई में भी आफत की बारिश।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, 12:12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करते हैं। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी केस में आज नए खुलासे हुए हैं। 5 जून का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला को पुलिस इस वीडियो में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप इसकी तारीख पर जरूर गौर करिएगा। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सबसे पहले 4 जून को दान चोरी की आशंका की सूचना मिल गई थी। आंतरिक सत्यापन के बाद ट्रस्ट के अधिकारी पुलिस के साथ 5 जून को आरोपी के घर पहुंच भी गए थे, जहां से लगभग 58 लाख रुपए बरामद किए गए। सूत्रों का दावा है कि आरोपियों ने 8 जून तक अपने बैंक खातों के माध्यम से जो बाकी शेष राशि थी वो भी लौटा दी थी। इससे ये साफ होता है कि ट्रस्ट को चढ़ावा चोरी की खबर तो बहुत पहले लग गई थी, लेकिन ट्रस्ट ने औपचारिक शिकायत दर्ज ही नहीं करवाई और गबन की राशि को वसूल करना शुरू कर दिया, यानी कि कोई एफआईआर नहीं करवाई। तो ट्रस्ट पाक साफ कैसे है, बड़ा सवाल।
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो ये साबित करता है कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को चोरी के बारे में पहले से मालूम था और उसके बाद भी उनके द्वारा किसी भी तरीके की आधिकारिक शिकायत नहीं दी गई। जानकारी के मुताबिक 4 जून को ट्रस्ट को चोरी के बारे में पता चला, जिसके बाद 5 जून को आरोपियों के घर से बड़ी नकदी बरामद की गई। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला के घर से ट्रस्ट के लोग पुलिस की मौजूदगी में एक बैग में नकदी बरामद कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्यों 7 जून का इंतजार किया गया, जब यह पूरा मामला सार्वजनिक हुआ और ट्रस्ट को पता होने के बाद भी कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई गई और इस पूरे मामले को दबा के रखा गया।
0: चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रहे हैं और आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज तक मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी करवाने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज जुडिशियल कस्टडी के लिए भी अयोध्या की भ्रष्टाचार अधिनियम स्पेशल कोर्ट में पेशी होनी है। सुरक्षा की दृष्टि से आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की तैयारी में है अयोध्या पुलिस।
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला का 5 जून का एक सीसीटीवी सामने आया, जिसमें वो पुलिस व अन्य कर्मियों के साथ एक गाड़ी में बैठते हुए नजर आ रहा है और उसके पास से एक बैग भी दिखाई पड़ा, जिसमें कहा जा रहा है कि अविनाश शुक्ला के पास से 5 लाख रुपए बरामद किए गए थे। यह सीसीटीवी साफ बताता है कि राम मंदिर ट्रस्ट को इस चढ़ावा चोरी की जानकारी पहले से थी और उसने एफआईआर दर्ज कराने में देरी की, यानी कि शुरुआत से ही राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इस चढ़ावा चोरी की मामले को दबाने की, छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन एसआईटी गठित हुई और एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई।
0: 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट पंजाब से, जहां पर बेअदबी कानून को लेकर आज अकाल तख्त में बड़ी पेशी चल रही है। बेअदबी कानून के मुद्दे पर पंजाब के सिख विधायक और सिख मंत्री अकाल तख्त के सामने पेश हुए हैं। पिछले दिनों धार्मिक ग्रंथों के अपमान के खिलाफ बने कानून को लेकर सिख संस्थाओं की आपत्ति के बाद अकाल तख्त ने विधायकों और मंत्रियों को तलब किया था। उनका कहना है कि यह कानून सिख पंथ से परामर्श किए बिना ही बना दिया गया।
3: पंजाब विधानसभा में पिछले दिनों बेअदबी के खिलाफ जो है वो कानून लाया गया था और उसको बिल पास करने के बाद गवर्नर से जो है असेंट लिया गया था, लेकिन अकाल तख्त साहब ने उस पर ऑब्जेक्शन जताई थी। उन्होंने कहा था कि ना अकाल तख्त साहब को, ना सिख पंथ को, ना एसजीपीसी को कॉन्फिडेंस में लिया गया ये बिल पास करने से पहले। तो आज सभी सिख एमएलएस को और सभी सिख मिनिस्टर्स को अक्रॉस पार्टी लाइन अकाल तख्त साहब के जहेदार कुलदीप सिंह गिरगज ने बुलाया था। मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है, वो अपीयर हो रहे हैं अकाल तख्त जहेदार के सामने सेक्रेटेरिएट में। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि क्या निर्देश होता है, क्या अकाल तख्त साहब कहते हैं कि रिकमेंडेशन करो, किस तरह की जो डायरेक्शन होती है वो देखने वाले होगा। लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट है कि अकाल तख्त साहब ने जो है सभी सिख एमएलए सिख मिनिस्टर्स को जो है तलब किया है और उनसे सफाई मांगी जाएगी कि ये जो एंटी सेक्रेटरी जो बिल पास किया गया वो बिना अकाल तख्त साहब, एसजीपीसी और सिख पंथ को जो है बिना कॉन्फिडेंस में लिए क्यों किया गया।
0: अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया इस पर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुना दें।
4: ऐसे है कि हमने जो श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब का और जो सिख संप्रदावा का और सिख संगत का जो फैसला था कि ये जो एक्ट है ये पास करने से पहले सबको कॉन्फिडेंस में लिए जाए।
0: अब अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से, जहां पर बड़ा सिविल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लापरवाही हुई और 19 महीने के बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई। जानकारी के मुताबिक इंद्रराज विश्वकर्मा नाम का शख्स अपने 19 महीने के बच्चे को सर्दी और आंखों में कुछ इन्फेक्शन था इलाज करवाने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने बच्चे को आई ड्रॉप, पैरासिटामोल सिरप, इंजेक्शन और कुछ और दवाएं दी। परिवार वालों का आरोप है कि दवा देने के बाद से बच्चे की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी और इसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर्स ने एम्स भोपाल भेजा। पीड़ित पिता का दावा है कि एम्स भोपाल में जांच के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि गलत इलाज हुआ, लापरवाही हुई, जिसके चलते बच्चे की दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। परिवार वालों ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं सीएमएचओ ने जांच के लिए समिति भी गठित कर दी।
5: पंडा सिविल अस्पताल में हुई इस घटना ने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि आई ड्रॉप डालने के बाद 19 महीने के बच्चे की आंखों की रोशनी चली जाती है। अब इस मामले में सीएमएचओ ने एक जांच दल का गठन तो कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर इस घटना ने कई गंभीर सवाल इसलिए भी खड़े कर दिए हैं क्योंकि इसी मध्य प्रदेश के सतना के सिविल अस्पताल में कुछ समय पहले ही बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ा दिया गया था। इसी मध्य प्रदेश के इंदौर में नवजातों को चूहों ने कुतर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी और अब गलत आई ड्रॉप की वजह से बच्चे की आंख की रोशनी चली जाती है। देखना यह है कि जिस जांच दल का गठन सीएमएचओ की तरफ से किया गया है, क्या इसमें जांच के आगे बात बढ़ती है और क्या दोषी डॉक्टर के खिलाफ इसमें कोई कार्रवाई होती है या नहीं।
0: अब इन आरोपों पर बीएमओ और डॉक्टर्स का पक्ष क्या है वो भी आपको दिखाते हैं।
6: पर्ची में मैंने देखा है कि उसमें जो बच्चे की कंडीशन थी, बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए उस बच्चे को तुरंत हायर सेंटर पे रेफर कर दिया गया था और बच्चे को उसमें जो ड्रॉप लिखा था और जो दिया गया, जो वायरल पिक्चर में जो दिया गया ड्रॉप वो अलग है। तो इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि कौन क्या वो ड्रॉप दिया गया, लेकिन जो लिखा गया है उससे अलग ड्रॉप दिया गया।
7: मैं सीएमएचओ कार्यालय से जांच कमेटी गठित की गई है, जांच कमेटी जांच करने के उपरांत रिपोर्ट देगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये जांच में पता चलेगा कि ड्रॉप क्या लिखा था और क्या दिया गया है, जांच में जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।
0: अब बात देश को हिला देने वाले केतन अग्रवाल मर्डर केस की करते हैं। कल पुलिस ने आरोपी सिया को लोहागढ़ किले में ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और इस बीच में आज सिया और चेतन की रिमांड खत्म हो रही है। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज तक मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस 7 दिन की रिमांड और बढ़ाने की मांग करेगी।
8: सात दिन की पुलिस हिरासत के बाद आज सिया गोयल और चेतन चौधरी की फिर से पुणे के वड़गांव मावल के कोर्ट में पेशी होगी। इसके बाद पुलिस 7 दिन की और कस्टडी मांगने की कोशिश करेगी। सबसे अहम बात यह है कि कल सिया को लोहगढ़ के उसी किले के क्राइम सीन पर लेके गए थे जहां इस पूरे सीन का रिक्रिएशन किया गया। उसने और चेतन चौधरी ने मिलकर किस तरीके से केतन अग्रवाल को धक्का दिया, वो नीचे गिर गया और उसमें मौत हो गई, इसी की जानकारी लेने के लिए पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। कल सिर्फ सिया गोयल इसमें मौजूद थी और आने वाले वक्त में जब यह कस्टडी एक्सटेंड होगी तब चेतन चौधरी की भी इसी तरीके से रिक्रिएशन किया जाएगा, जिसमें यह सामने आएगा कि एग्जैक्टली धक्का किसने मारा था, किस तरीके से उसका डेड बॉडी पर इंपैक्ट हुआ, ये सब पुख्ता बातें हैं वो सामने आएगी। अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन यही कह रहा है कि सिया गोयल इस पूरे वारदात की मेन कॉन्स्पिरेटर है और चेतन चौधरी पीछे खड़ा रहकर उसने केतन अग्रवाल को धक्का दिया था। आज कोर्ट में क्या होगा देखना अहम पूर्ण रहेगा।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के इतिहास के काले अध्याय के रूप में दर्ज केस को जिसने देश को झकझोर दिया, सरला भट्ट मर्डर केस, इस केस में आज चार्जशीट दाखिल करने वाली एसआई। और 26 साल पहले 14 अप्रैल 1990 को मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से किडनैप किया गया था सरला को और भयंकर शारीरिक यातना देकर गोली मारकर मर्डर कर दिया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसआईए को यासीन मलिक और चार अन्य के खिलाफ इस हत्याकांड में शामिल होने के सबूत मिले हैं।
9: जम्मू कश्मीर की जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने सरला भट्ट हत्या मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है और अब वो जल्द ही टाडा अदालत में एक चार्जशीट फाइल करने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिली है उसके अनुसार ये बात सामने आई है कि इस चार्जशीट में जेकेएलएफ के 5 आतंकवादियों का नाम है जिनमें यासीन मलिक भी शामिल है। दरअसल जो सरला भट्ट है वो एक नर्स के तौर पर कार्य कर रही थी कश्मीर घाटी में श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में और 18 अप्रैल 1990 को जेकेएलएफ के आतंकवादियों ने उनका अपहरण किया और बाद में उनकी निर्मम हत्या की गई और उनका जो शव है फिर डाउनटाउन श्रीनगर में फेंका गया था। कुछ ही महीने पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने यह आश्वासन दिया था कि आतंकवाद संबंधित सभी मामलों की दोबारा से जांच होगी और सरला भट्ट हत्या मामले में भी दोबारा जांच हुई और अब एसआईए ने अपनी जांच पूरी कर ली है और जल्द ही अब श्रीनगर की टाडा अदालत में इस मामले में चार्जशीट जो है वो फाइल की जाएगी।
0: अब बात बिहार के जहां पर भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच में एनकाउंटर में शामिल शाहपुर के निलंबित एसएचओ राजेश मालाकर और एसटीएफ जवान अक्षय कुमार के सर्विस पिस्टल समेत 3 हथियारों की फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोर्ट की अनुमति के बाद तीनों ही पिस्टल और खोखे पटना स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए। तीनों ही पिस्टल में से एक एनकाउंटर के बाद भरत भूषण तिवारी के पास से बरामद किया गया था।
10: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है और ये जांच अब फॉरेंसिक लैब तक पहुंच गया है। कोर्ट से अनुमति लेने के बाद शाहपुर के निलंबित एसएचओ, एसटीएफ जवान और भरत तिवारी से बरामद पिस्तौल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल से बरामद खोखों और कारतूस का भी मिलान किया जाएगा। जांच में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर भरत तिवारी को जो गोली लगी थी वो किस हथियार से चलाई गई थी। अब सबकी नज़रें एफएसएल की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है।
0: अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और फ्लैश फ्लड के चलते बड़ी तबाही हुई है और वहां पर हालात क्या है बता रहे आज तक संवाददाता युवराज मेहता।
11: हम इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले में हैं और ये NH-13 का ये जो हाईवे की हालत आप देखिए, होद से पुटिन जो यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था 24 जून को कई पाने डिस्ट्रिक्ट में, अभी तक इस रोड को खोला नहीं गया, काफी ज्यादा खराब कंडीशन है। बहुत सैलाब आया 24 को, काफी ज्यादा जो कॉलोनी है निपको की कॉलोनी है 18 से ज्यादा क्वार्टर्स बह गए थे, 5 लोग मिसिंग थे, 1 डेड बॉडी रिकवर की गई। हमारे साथ पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर है जो बताएंगे सर कंडीशन क्या है यहाँ पे।
12: कंडीशन देखिए जैसे आप देख रहे हैं पूरा स्ट्रेच में लैंडस्लाइड्स है, इसके बाद पानी अभी भी है, बारिश भी कंटिन्यू हो रही है, तो रोड को रेस्टोर होने में कई दिन और लगेंगे।
11: अरुणाचल प्रदेश में जो बादल फटा था 24 जून को, आज एडवाइजरी जारी की, एक ही रास्ता खुला जो राजधानी ईटानगर की ओर जाता है। आपको हम रास्ते की हालत दिखाएंगे, ये देखिए इस वक्त अगर आप आते हैं बारिश काफी ज्यादा आ रही है, ये रास्ते की कंडीशन है, वो आगे गाड़ियां फंस रही हैं और ये देखिए ये रास्ते की हालत है। ये तो
13: आगे काफी ज्यादा ब्लॉक है।
0: और अब बात करेंगे मौसम की। दिल्ली में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। मानसून तय समय पर राजधानी पहुंच ही नहीं सका, लेकिन अब दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर है। मानसून का इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 से 6 दिनों में राजधानी में मानसून दस्तक दे सकता है। अगर मौसम अनुकूल रहा तो 4 जुलाई तक दिल्ली में बारिश की शुरुआत होने की संभावना भी है।
14: दिल्ली NCR में उमस भरी गर्मी और तपती गर्मी से राहत 5-6 दिनों बाद ही मिलेगी। मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम में जो तब्दीली दिल्ली NCR और उत्तर भारत के तमाम जिलों में होने वाली है वो 5-6 दिनों के बाद ही दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है उसकी वजह से अभी भी कई इलाकों में दिल्ली के इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। वो करीब 41.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान चला जाता है, जो कि ऐसा महसूस होता है उमस की वजह से कि ये तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों बाद दिल्ली में बारिश हो सकती है, यहां पर मानसून आ सकता है, लेकिन अभी ऐसे ही तापमान कई इलाकों में रहेगा।
0: अब बात करते हैं यूरोप में पड़ रही प्रचंड गर्मी की। भारत ही नहीं, यूरोपीय देश जो कि ठंड के लिए जाने जाते हैं वहां प्रचंड गर्मी की मार है। खासतौर पर पश्चिमी यूरोप में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी की वजह से 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है। फ्रांस में हालात बेहद गंभीर है। देश के 54 विभागों में रेड अलर्ट जारी किया गया। कई इलाकों में टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। फ्रांस की स्वास्थ्य एजेंसी ने खुलासा किया है कि भीषण गर्मी के चलते अब तक 1,000 से ज्यादा मौत हो गई है।
15: आमतौर पर दुनिया का सबसे ठंडा इलाका माने जाने वाला यूरोप ने कभी ऐसी गर्मी देखी ही नहीं थी। दशकों तक कभी तापमान 30 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री के पार गया ही नहीं था, लेकिन इस बार ग्लोबल वार्मिंग का असर भूमध्य सागर के ऊपर गर्म हवाओं के चलते यूरोप उबल रहा है। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, ये तमाम वो इलाके हैं जो इस समय गर्मी के प्रकोप झेल रहे हैं। आमतौर पर ये पूरा वो इलाका होता है जो ठंडा रहता है, लोग ठंडियों में यूरोप की यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन इस समय यूरोप में हाहाकार है। तापमान 40 डिग्री के पार है और अब इसका असर धीरे धीरे पूर्वी यूरोप को भी अपनी चपेट में ले रहा है।
0: अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई। 3 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले आज पवित्र गुफा में प्रथम पूजा संपन्न हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा बर्फानी का आशीर्वाद दिया और देशभर के श्रद्धालुओं से यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। 57 दिनों की यह पवित्र यात्रा 3 जुलाई से पहलगाम और मालटाल दोनों मार्गों से शुरू होकर 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी।
16: ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर आज अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा हुई। प्रथम पूजा में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं शामिल हुए। उसके साथ ही अब कहीं ना कहीं इस साल की अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल 3 जुलाई से इस साल की अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, जिसके लिए सभी तरह के चाक चौबंद इंतजाम पहले ही पूरे हो चुके हैं। अब की बार अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की संख्या 4 लाख से भी ज्यादा हो गई है। उस बीच अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यही कारण है कि अमरनाथ गुफा के सभी रास्तों के साथ साथ अमरनाथ यात्रा से जुड़े सुरक्षा कर्मियों ने अलग अलग स्थानों पर मॉक ड्रिल करके इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं।
0: अब बात करेंगे क्रिकेट के। क्रिकेट में भारतीय टीम को दोहरा झटका लगा। एक तरफ आयरलैंड ने सीरीज जीत ली, दूसरी तरफ T20 के महिला वर्ल्ड कप से भारतीय टीम बाहर हो गए। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की। T20 वर्ल्ड कप जीते हुए ज्यादा दिन नहीं बीते और टीम इंडिया आयरलैंड जैसे कमजोर उसकी भी बी टीम खेल रही थी, उससे सीरीज हार गई। कल के मैच में तिलक वर्मा ने टुक-टुक बल्लेबाजी की और तिलक वर्मा के अलावा बाकी सारे बल्लेबाज नाकाम रहे।
17: रविवार का दिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बेहद निराशाजनक रहा। जहां एक तरफ मेंस टीम को हार मिली तो वहीं दूसरी तरफ विमेंस टीम भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। अगर बात पहले मुकाबले की करें तो दूसरा T20 मुकाबला खेलने उतरी थी भारत की टीम आयरलैंड के खिलाफ, जहां भारत के ऊपर दबाव था इस सीरीज को बचाने का, लेकिन हुआ बिल्कुल अलग। आयरलैंड ने भारत को कम से कम 150 रन का लक्ष्य दिया और जिसके जवाब में भारतीय टीम बिल्कुल बिखर सी गई और नतीजा ये हुआ कि पहली बार आयरलैंड से हार कर भारतीय टीम अब घर लौटेगी। वहीं दूसरी तरफ T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में क्रूशियल नॉकआउट मैच था ये, जहां ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम को हराना था ताकि वो सेमीफाइनल की सीट बुक कर सके, लेकिन हुआ वहां भी बिल्कुल उल्टा। और वहां से भी बैड न्यूज ही आई क्योंकि भारतीय टीम इस मैच को हार कर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। ऑस्ट्रेलिया अब पहुंचेगी सीधा सेमीफाइनल और वो इस रेस में आगे भी है क्योंकि अपने ग्रुप की टॉप टीम है।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर।
13: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
18: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश।
0: महाराष्ट्र में डीटी पेपर लीक मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये पता चला है कि महाराष्ट्र पेपर लीक का मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता है। अब ये वही विजेंद्र गुप्ता है जिसका स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने किया था। आज तक के कैमरे में विजेंद्र गुप्ता पहले भी ये कहते हुए कैद हो चुका है कि पेपर लीक कराना उसका धंधा है।

0: रहा, लेकिन उसके बाद से कोई गिरफ्तारी नहीं है और अब छापेमारियां हो रही हैं, अलग अलग जगह अलर्ट जारी किया गया है इसको पकड़ने के लिए।
1: लेकिन देखिए, इस बार जो खुलासा है वो खुलासा खुद महाराष्ट्र पुलिस ने किया था, क्योंकि जब ये पेपर लीक कराया था और डीलिंग करने की कोशिश मुंबई में कर रहा था, तब महाराष्ट्र पुलिस को जानकारी मिली और उसके बाद जाल बिछाकर पकड़ा गया, इसके पास से पेपर मिला और उससे खुलासा हुआ कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। 2024 में आज तक ने विजेंद्र गुप्ता का बिहार में जाके स्टिंग ऑपरेशन किया था, उस वक्त जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, तो हमने जानने की कोशिश की थी कि ये रैकेट पूरा कैसे चलता है और इसी के तहत विजेंद्र गुप्ता से हमारी मुलाकात हुई थी और उसने उस दौरान भी कैमरे पर बोला था कि जेल जाएंगे, बेल मिलेगा और खेल लगातार जारी रहेगा। और फिर वही हुआ, 2024 में जिसका स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने किया, 2026 में वो महाराष्ट्र टीईटी पेपर का मास्टरमाइंड निकला। इसको गिरफ्तार करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस की टीम पटना में रेड कर रही है, समस्तीपुर में रेड कर रही है, उसके अलावा दिल्ली और हरियाणा में भी इस रैकेट के तार जुड़े हुए। राजीव
0: अरविंद, देखिए 25 साल से ये काम कर रहा है इस धंधे में, जिसको धंधा कह रहा था वो।
1: बिल्कुल, 25 साल से इस धंधे में पेशे में है और कई पेपर लीक में ये शामिल रहा है, जेल भी गया हुआ है, चाहे उड़ीसा की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, जो कई बड़े एग्जाम होते हैं उसका जो पेपर लीक होता है उसका वन ऑफ द मास्टर माइंड ये रहा है। लेकिन उसके बाद काफी दिनों तक ये अंडरग्राउंड हो गया था, इसका दावा था कि यह पेपर लीक में शामिल नहीं है। लेकिन इसी बीच 2 साल के गैप पर 2026 में टीटी का जो महाराष्ट्र में एग्जाम होना था उसका जो पेपर है वो लीक हुआ था और खुलासा खुद महाराष्ट्र पुलिस ने किया था, किसी और ने नहीं। तीन इसके गुर्गों को पकड़ के, उन गुर्गों ने नाम लिया विजेंद्र गुप्ता का। उसके बाद फिर महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी तहकीकात की। इधर जो आज तक को ये पता चला कि जिसका स्टिंग हमने 2024 में किया था वही टीईटी एग्जाम पेपर लीक,
0: फिर उसने पेपर लीक करवा दिया और इतने सालों से न जाने कितने इसने पेपर लीक करवाए होंगे और अब पुलिस बकायदा टीम बनाकर इसको ढूंढ रहे हैं। अब रुकने, छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
1: La Que Buena.
0: ESPN Radio.
2: We know LeBron has to be the best player on the planet to
0: get The Daily.
3: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
5: Money every month.
6: Soch batlo aur bank bhi.
7: Aapka parcel phir se hamare ghar pe aaya hai.
8: Kuch to baat hai is dil mein.
9: Maa bhi hamesha apni maak mustard oil mein khana banati thi. Ye aapke liye.
10: We mark the mustard specialist since 1933.
11: हमने तब भी सवाल किया था।
12: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
11: हम आज भी सवाल करते हैं।
12: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
11: ऑपरेशन अग्नि।
12: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
11: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
13: In association with
14: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

ड्रामा दे चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का बयान पुलिस ने किया दर्ज, जांच में बड़ा अपडेट। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच हुई तेज, अन्य ट्रस्ट पदाधिकारियों से भी पूछताछ की संभावना। अयोध्या राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, याचिका बाद में सूचीबद्ध करने का आदेश। सीबीआई जांच और सीएजी ऑडिट की भी मांग, मंदिर में दान प्रबंधन पर गंभीर सवाल। स्पेशल कोर्ट में आरोपियों के पेशी की तैयारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर विचार, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की कड़ी व्यवस्था। अयोध्या चढ़ावा मामले में गिरफ्तार 8 लोगों की न्यायिक हिरासत आज हो रही खत्म, आगे की पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला लेने के बाद कही, आज बार एसोसिएशन की होने वाली आम सभा में अंतिम फैसला होगा। राम मंदिर चोरी मामले में जानकारी आई सामने, मामला सार्वजनिक होने से पहले ही ट्रस्ट को सारी जानकारी थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एक्शन तेज, गिरफ्तार सभी आरोपियों के घर पर छापेमारी, टिन्नू यादव अविनाश शुक्ला के घरों की तलाशी ली गई। आरोपियों के घर पर छापे में संपत्ति के पेपर मिले, दस्तावेजों का सत्यापन कराएगी पुलिस और जेवरात मिलने की भी जानकारी। राम मंदिर चोरी मामले में सीसीटीवी से खुलासा, 5 जून को आरोपी अविनाश के हाथ में एक काला बैग दिखाई दिया। चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा, कहा कि सीसीटीवी बंद करके चोरी की गई, इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, कहा कि एसपी सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चले, इनके पास विकास के एजेंडा नहीं। अखिलेश को सीएम योगी ने दी चुनौती, कहा कि अगर हिम्मत है तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बोलकर दिखाएं अखिलेश। राम मंदिर से जुड़े विचारों के बीच में इन विवादों के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तेज नारायण पांडे ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। यूपी 2027 विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग पर बोले यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी का पलटवार भी आ गया। सपा बोली अखिलेश यादव सभी सहयोगियों को बराबर का सम्मान देते हैं। सपा की ओर से कांग्रेस को सलाह, कांग्रेस नेताओं को सीट बंटवारे पर बयानबाजी से बचना चाहिए। लखनऊ में 2027 को लेकर बीजेपी का मंडल प्लस कमंडल दांव, लोहिया परिवार से मुलाकात और मथुरा पर सियासी घमासान। यूपी बीजेपी चीफ के लोहिया परिवार से मुलाकात पर सियासी घमासान, सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा लोहिया परिवार के घर जाने से कोई राजनीतिक बदलाव नहीं हो जाता। यूपी के मंत्री संजय निषाद का सपा पर और कांग्रेस पर तंज, बोले कि दोनों बिना दूल्हे की बारात है। पीलीभीत में सीएम योगी ने दी सौगात, 569 करोड़ की 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, कई योजनाओं का लाभार्थियों को वितरण। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर यूपी में सियासी घमासान, एआईएमआईएम ने सीएम योगी और बीजेपी और सपा को घेरा। सीएम योगी के बयान पर एआईएमआईएम का पलटवार, कहा कि धार्मिक मुद्दों से भटक रही है यूपी की राजनीति। शादाब चौहान ने कहा कि सीएम योगी राज धर्म का पालन करें,

0: अयोध्या के चढ़ावा चोरी कांड में अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। अयोध्या पुलिस की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक को नोटिस भेजा है। पुलिस इन बैंकों में आरोपियों के लॉकर्स और खातों की जांच करना चाहती है। थोड़ी देर पहले पुलिस की जांच टीम अयोध्या में नया घाट SBI ब्रांच में पूछताछ करने के लिए भी आपको बता दें कि पहुंचे थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2 कर्मचारियों के अलावा 6 ठेके के कर्मचारी इस मामले में संदेह के घेरे में। पुलिस ने रत्नेश और गगनदीप नाम के 2 बैंक कर्मियों की भूमिका की सघन जांच शुरू कर दी है। इन दोनों से आज पूछताछ हुई है। इसके अलावा मंदिर से बैंक तक दान की रकम लाने वाले 6 आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों के बयान का भी मिलान हो रहा है। अब इस तरह SIT की अंतरिम रिपोर्ट के हवाले से जब से पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ है तब से पुलिस ने सभी आरोपियों संदिग्धों के बयान लेना शुरू कर दिया है। इसमें ट्रस्ट के चंपत राय जैसे पदाधिकारी से लेकर बैंक कर्मचारी तक शामिल है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सिमर चावला भी इस खबर पर जुड़ गए हैं। पुलिस ने अब तक किन किन लोगों के बयान दर्ज किए हैं, क्या कोई गिरफ्तारी हुई है नहीं? सिमर आप बताएं, क्या आज आरोपियों जो है पुलिस क्या इंटरेस्टेड है कि आरोपियों की पुलिस रिमांड मांग सकती है ले?
1: बिल्कुल राजीव, इस वक्त मैं न्यायालय के बाहर ही खड़ा हूं और फिलहाल कुछ ही देर में ये बताया जा रहा है कि आरोपियों को पेश किया जाएगा। अब क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया जाता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या फिर मैनुअली पेश किया जाता है, पुलिस इस पे जो है फिलहाल अपना फैसला अभी ले रही है। बात करें रिमांड की तो फिलहाल जुडिशियल रिमांड 3 दिन की खत्म हो रही है और पुलिस को ये तय करना है कि क्या वो आज रिमांड लेती है कि नहीं। अगर बात करें सूत्रों की तो फिलहाल पुलिस जो रिमांड है वो शायद नहीं लेगी और जुडिशियल कस्टडी में ही इनको भेजा जाएगा। फिलहाल एक इन्वेस्टिगेशन जो है पैरेलली चल रही है। हमने आज देखा कि कैसे बैंक के पदाधिकारियों से पूछताछ पुलिस ने की, पहुंचकर कई लोगों को नोटिस भी भिजवाया जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा
0: सिमर अगर पुलिस रिमांड की मांग आप बता रहे हैं कि नहीं करना चाहती है तो पुलिस के पास क्या सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की हो गई है, पूछताछ में पुलिस को सब जानकारियां मिल गई हैं?
1: राजीव आपको बता दें कि हमारी पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात हो रही थी, उनका कहना था कि पुलिस कस्टडी तो जरूर ली जाएगी क्योंकि बेहद क्वेश्चनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई साक्ष्यों का उनसे मिलान करना है, उनको कन्फ्रंट करना है, उनसे बैंक खातों के बारे में पूछताछ करनी है, लेकिन आज क्या वो लिया जाएगा या नहीं इस पे पुलिस अपना डिसीजन लेगी। आज अगर जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज भी दिया जाता है तो पुलिस के पास ये ऑप्शन होता है कि 1 से 2 दिन बाद जब भी पुलिस चाहे तो पुलिस एक एप्लीकेशन रिमांड कोर्ट में यहाँ पर मूव कर सकती है और रिमांड के लिए पुलिस कस्टडी के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। तो जरूरी नहीं है कि आज ही वो ली जाए, जब अगर आज से वो जेल चले भी जाते हैं
0: ठीक है पुलिस के पास ये ऑप्शन। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या कोई और भी इस मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं? किसी पर लटक रही है तलवार गिरफ्तारी की?
1: देखिए राजीव, पूछताछ तो कई लोगों से की जा रही है। अगर आज की बात करी जाए तो बैंक के 2 अधिकारियों का इसमें कर्मचारियों का नाम आया है जिसमें रत्नेश और गगनदीप नाम के कर्मचारी हैं। इनका इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो बैंक में नोट जमा होते थे ट्रस्ट की तरफ से उसकी देखरेख ये दोनों करते थे। इन लोगों का नाम स्क्रूटनी इनके ऊपर बढ़ गई है। अब इनके बैंक खातों की भी जाँच हो रही है और इनके जो प्रॉपर्टी अगर इन्होंने कोई बनाई है उस पर पुलिस का फोकस है, जिसके क्रम में आज पुलिस ने जाकर पूछताछ भी की गई। कई ऐसे लोग हैं जो बैंक से जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछताछ जो है वो करने की पुलिस फिराक में है। चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोगों को पुलिस जो है समन करने वाली है, ये पुलिस ने कंफर्म किया है। कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि नोटिस इशू होगा,
0: देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस किस की गिरफ्तारी होती है। सिमर शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चढ़ावा चोरी मामले में अब धीरे धीरे ट्रस्ट के काम काज पर संगीन सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि आरोप यह है कि ट्रस्ट ने चोरी की खबर पता लगने के बावजूद इसकी लीपापोती करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि पहली बार गुनाह के सबूत मिल जाने के 3 हफ्तों के बाद मुकदमा दर्ज हो सका।

0: राम भक्त स्तब्ध है, बेचैन है, ये जानकर कि आस्था से चढ़ाए उनके चढ़ावे की चोरी होती रही, उनके विश्वास से खिलवाड़ होता रहा। और अब एक नया खुलासा हुआ है जो और ही विचलित कर देने वाला है। इस खुलासे की बुनियाद ये सीसीटीवी फुटेज है। इस सीसीटीवी फुटेज में जिस शख्स को देख रहे हैं उसका नाम है अविनाश शुक्ला, चंदा चोरी गैंग का अहम मेंबर, लूट कांड का अहम किरदार। जो काली बैग आप देख रहे हैं उसमें रखी है चोरी की वो रकम जो सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे की ढेर से उड़ाई गई है। सूत्रों की माने तो 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे थे। छापेमारी के दौरान अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5 लाख नकदी बरामद हुई। इस बैग में वही 5 लाख कैश रखी है।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला का 5 जून का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को इस चढ़ावा चोरी की जानकारी पहले से थी और इसकी FIR दर्ज कराने में ट्रस्ट ने देरी की। यानी अविनाश शुक्ला समेत सभी आरोपी लगभग ट्रस्ट की निगाह में आ गए थे और अविनाश शुक्ला का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि कैसे एक सफेद गाड़ी में पुलिस कर्मी व अन्य लोगों की मदद से अविनाश शुक्ला को बैठाया जा रहा है और इनके पास से एक काले बैग में कहा गया कि 5 लाख रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई। लेकिन दर्ज हुई FIR देर से हुई और कानून के जानकार कहते हैं कि यह FIR में देरी आरोपियों के लिए मददगार साबित हो सकती है।
0: चढ़ावा चोरी के खुलासे से FIR दर्ज होने तक इस पूरे मामले की टाइमलाइन पर गौर करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसे ठंडे बस्ते में डालने की जमकर कोशिशें हुई। 5 जून को ट्रस्ट को धांधली की जानकारी मिल गई, सबूत भी मिल गए, इसके वीडियो सबूत हैं, लेकिन इस मामले में FIR दर्ज हुई 20 दिन बाद यानी 25 जून को। 25 जून को ही पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। यानी 20 दिन तक आरोपी को खुलकर आजादी दी गई कि वो सबूतों से छेड़छाड़ करते रहे, उनका नामो निशान मिटाते रहे। चौतरफा थू-थू होने के बाद ही सारे एक्शन हुए हैं, किरकिरी होने के बाद ही SIT का गठन हुआ, जांच हुई, मामला दर्ज हुआ। अब खबर ये भी आ रही कि राम मंदिर ट्रस्ट सिफारिश के आधार पर हुई नियुक्तियों पर सख्त कार्रवाई करेगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उन कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया है जिन्हें तय भर्ती प्रक्रिया के बजाय सिफारिश के आधार पर नियुक्त किया गया था। ट्रस्ट ऐसी सभी नियुक्तियों की समीक्षा कर रहा है और कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। साफ है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बड़ी देर कर दी। ट्रस्ट की नींद खुलते खुलते राम भक्त इतने आहत हो चुके हैं कि उनके घाव जल्द नहीं भरने वाले और न ही ट्रस्ट के दामन पर लगे दाग धुलने वाले हैं। संतोष शर्मा, अयोध्या, आज तक।
2: अयोध्या से उठी रामधन की चोरी की चिंगारी ने यूपी की सियासत कुछ ऐसी सुलगाई है कि एक तरफ सत्ता के लिए धर्म के सौदे के सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ धर्म के लिए सत्ता की चुनौती दी जा रही है। सीएम योगी ने एक दिन पहले अखिलेश यादव को मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन पर बोलने की खुली चुनौती दी है।
3: जब पूरा देश, पूरी दुनिया रामलला के पैसों की चोरी पर सवाल खड़े कर रही है, तब कान्हा की भक्ति को चुनौती देते हुए सियासत भी सेंधमारी कर रही है। नई चुनौती यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अखिलेश यादव को दी गई है।
4: अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए।
3: बीजेपी कहती है राम की चिंता छोड़ कृष्ण की चिंता करनी चाहिए। अखिलेश कहते हैं डोनेशन से पहले नेशन फर्स्ट होना चाहिए।
5: जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट। समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म के आड़ में गोरख धंधा।
3: जब सीएम योगी अयोध्या के चढ़ावा चोरी कांड को छोड़ मथुरा की बात छेड़ते हैं तब विपक्ष उन आरोपों का राग छेड़ देता है, जहां मथुरा में भी आस्था भक्ति के नाम पर दान चढ़ावे फंड में घोटाले के आरोप लग रहे हैं।
6: अयोध्या उज्जैन तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है, वहां भी लूटने का इंतजाम है, वहां भी कॉरिडोर बन रहा है।
3: राम से कृष्ण तक मजहबी सियासत के चाहे जितने धाम चले जाएं, लेकिन बुनियादी राजनीति ये है कि बीजेपी 2027 की चुनावी राजनीति का फोकस अवध से हटाकर मथुरा करने की तैयारी में जुट चुकी है।
7: मथुरा को लेकर बीजेपी की तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी ब्रज क्षेत्र और पश्चिम के लगभग 12 मंत्री कैबिनेट में शामिल हैं। इसके अलावा जब संगठन की बात आई तो 9 चेहरे ब्रज से शामिल किए गए हैं, ब्रज और पश्चिम से शामिल किए गए हैं, और 12 जुलाई को मथुरा में पार्टी की एक बड़ी बैठक भी होने वाली है।
3: बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है। ये तैयारी यूं ही नहीं है, यूं ही सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर नहीं जा चुके हैं। यूपी की राजनीति में ब्रज क्षेत्र का वजन बढ़ रहा है। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं, प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री मंत्री तक आने वाले नेता ब्रज क्षेत्र से हैं। पूरन लाल लोधी क्षेत्रीय अध्यक्ष, शंकर लोधी को प्रदेश महामंत्री, किरण लोधी को मंत्री बनाया गया है, तो जाट बोर्ड के लिए राजेश चौधरी महामंत्री बने हैं और मोहित बेनीवाल प्रदेश उपाध्यक्ष। ब्राह्मण ठाकुरों में ब्रज बहादुर प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो अभिजात मिश्रा महामंत्री, राम प्रताप चौहान महामंत्री हैं, तो विजय शिवहरे और सुहासिनी जायसवाल मंत्री। दरअसल बीजेपी चाहे भले ही मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को सियासी मुलम्मे के साथ पेश करे, लेकिन चुनावी इंजीनियरिंग बीजेपी भी जात के साथ साधती है। और जिस तरह सीएम योगी ने चुनावी सियासत की धार अयोध्या से मथुरा की ओर मोड़ी है, उसमें हिंदुत्व के वोट के संग पीढ़ियों की सियासत को तंग करने की पूरी प्लानिंग नजर आती है। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
2: अब सवाल है कि जब अयोध्या के चढ़ावा चोरी कांड को लेकर पूरा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, राम मंदिर में दान चोरी का मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहा है, ऐसे में बीजेपी अयोध्या की सियासी आग की धार को मथुरा की ओर मोड़ने की कोशिशें क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे चुनावी जीत हार के वो आंकड़े हैं जिसमें बीजेपी की सियासत छिपी हुई है। दरअसल 2022 के नतीजों पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि ब्रज क्षेत्र बीजेपी का सबसे मजबूत किला था। इस इलाके की 65 में से 53 सीटें बीजेपी का इन पर दबदबा था, जबकि अखिलेश यादव को सिर्फ इसमें से 12 सीटें मिली थी। लेकिन 2024 के चुनावों के बाद इस क्षेत्र की हवा भी बदली बदली से नजर आ रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यह ट्रेंड बदल गया। बीजेपी 53 की जगह से 42 विधानसभा सीटों पर आगे रही, समाजवादी पार्टी 12 की जगह 23 विधानसभा सीटों पर आगे आ गई। और ये और बात है कि बीजेपी के नेता हर मन से अब ये दुहाई देते हैं कि 2024 में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने संविधान पर खतरे की अफवाह उड़ाई, उस अफवाह को उड़ाकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। इस बार बीजेपी उस अफवाह का मुकाबला करने के लिए पहले से अपने आप को तैयार बता रहे हैं। मुकाबले के तौर पर अखिलेश यादव के सामने सीएम योगी का ये मथुरा वाला चैलेंज का पहला कार्ड वो माना जा रहा है। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो बीजेपी इस बार के चुनाव में मंडल और कमंडल दोनों को साथ में लेकर चल रही है, वरना एक तरफ यूपी की राजनीति में अयोध्या और मथुरा की गूंज है, चढ़ावा चोरी को लेकर कान्हा भक्ति तक के चैलेंज गूंज रहे हैं। ऐसे में यूपी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी का समाजवादी आंदोलन के जननायक राम मनोहर लोहिया के घर पर पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है।
8: मोदी जी के 12 साल पूरा होने पे जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा, जो विशेष जनसंपर्क अभियान, उसके साथ आज मेरा सौभाग्य कि लोहिया जी के परपोतों से, उनके बेटों से मेरी मुलाकात हुई और पूरा एक पारिवारिक बैठना हुआ, सबसे बहुत अच्छा लगा।
2: हालांकि पंकज चौधरी कहते हैं कि राम मनोहर लोहिया के परिवार वालों से मिलना, उनके परपोते और परिवार का सम्मान करना बीजेपी के उस विशेष जनसंपर्क अभियान का हिस्सा है जिसमें पीएम मोदी के शासन के 12 साल की कामयाबियों का प्रचार हो रहा है। लेकिन ये मुलाकात बस जनसंपर्क नहीं था, क्योंकि जिस मंडल की बुनियाद पर समाजवादी पार्टी सियासत फली फूली, समाजवादी सियासत आगे बढ़ी, उसके पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम जो है, नाम भर जो है इसमें रटा जाता रहा है। अब चुनावों से एन पहले जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उन्हें राम मनोहर लोहिया के परिवार में जाकर स्वागत सत्कार करते हैं, पीएम मोदी के कामकाज करते हैं, तो इसे समाजवादी विचारधारा और वोट बैंक में बीजेपी की सेंधमारी के तौर पर देखा जा रहा है।
4: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को चकनाचूर करने का काम किसी ने किया? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। ये लोग हमेशा यही करते रहे हैं, इन्होंने यही कार्य किया जो सामाजिक न्याय के प्रतिकूल हो। अंबेडकर जी के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं का अपमान करना ये लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं।
9: हम लोगों को खुशी है कि जो बीजेपी नफरत की बात करती थी, बंटवारे की बात करती थी, पिछड़े और दलितों को हीन भावना से देखती थी, दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करती, उसको आखिर समाजवादियों के चौखट पे जाना पड़ा। क्योंकि इस देश को अगर आप सच में खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, पूरे समाज को एक करके अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो समाजवाद के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। यही बात डॉक्टर लोहिया ने कही, यही बात गांधी जी ने कही, यही बात आदरणीय श्रद्धेय नेताजी लगातार इस बात को कहते रहे।
2: हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, इन मुलाकातों के अब मायने क्या है? क्या समाजवादी वोट बैंक में सेंधमारी है या कोई और वजह? क्या इसके सियासी मायने मुलाकात के?
7: देखिए राजीव, निश्चित तौर पर बेशक इसे प्रदेश अध्यक्ष अपने जनसंपर्क का कारण बता रहे हो कि जनसंपर्क के लिए गए हैं, पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी को अगर पिछले कुछ समय से देखेंगे तो बीजेपी सिर्फ अपनी कमंडल की राजनीति पर नहीं रहना चाहती। अगर आप देखें तो जिस तरीके से उन्होंने पिछड़ों दलितों को अपने संगठन में जगह दी है, जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार जो किया उसमें पिछड़ों दलितों का बोलबाला है, तो ऐसी स्थिति में जो कमंडल का, जिसे आप मसीहा कह लीजिए, जो प्रणेता थे समाजवाद के, उनके घर जाकर के बीजेपी ने ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि उसे सिर्फ धार्मिक या सिर्फ कमंडल की पॉलिटिक्स का ही ना माना जाए, सिर्फ राम और कृष्ण का या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण।
2: जी कुमार अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। पीलीभीत भी आपके लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है,
4: चाहे वह सांबली या मुरादाबाद की तरफ जाना है, वह इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको आसान रास्ता कर देगा, आसान रास्ता। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी। याद रखना, प्रगति का आधार गति पर है, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, और वह इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम दे रहे हैं। हमने पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करवाया था। गंगा एक्सप्रेसवे, बहनों और भाइयों, गंगा एक्सप्रेसवे भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। आज जो भी गंगा एक्सप्रेसवे से जाता है, पहले गाजियाबाद से या मेरठ से लखनऊ की दूरी तय करने में समय लगता था 8 घंटे, 6-6.5 घंटे, अब मात्र 4 घंटे में मेरठ से लखनऊ लोग आ जा रहे हैं, मात्र 5 घंटे में मेरठ से प्रयागराज पहुंच जा रहे हैं। ये है गति, और यही गति जब इस प्रकार के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ती है, तो वही गति प्रगति के साथ जुड़ जाती है। और जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी रोडें नहीं होती हैं, अच्छे एयरपोर्ट नहीं होते हैं, रेलवे की अच्छी सुविधा नहीं होती है, तो तब अर्थव्यवस्था की दुर्गति होती है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार है, ये स्पीड डबल स्पीड के साथ चलती है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती है, विकास भी लाती है, वरासत को भी सम्मान देती है, हर व्यक्ति को, क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, इन सब के उत्थान के लिए भी कार्य करती है। और उसी को ध्यान में रखकर के डबल इंजन सरकार कार्य कर रही है। मैं पीलीभीत जनपद वासियों को बधाई देता हूं।
2: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हासिल, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
11: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
12: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
10: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
13: Order for Jennifer C.
14: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
13: Yeah. Can you handle that much caffeine?
14: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
13: Oh, really? That's great.
14: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
13: Yeah, you just said that.
14: Did you say I just said that?
13: Yeah, I'm cutting you off.
14: I can't have any more? Why not?
15: You earn, we match. Discover Cashback Match. See terms at discover.com/creditcard.
16: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
17: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
16: Smartless.
18: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
16: Marketplace.
19: Big three on the program today, or you know, the big three of
16: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या एक मंत्री अपनी ही मंत्रालय की योजना से सब्सिडी ले सकता है? क्या नियम सभी के लिए बराबर हैं या पद और प्रभाव से बदल जाते हैं? केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारत सरकार के एक मंत्री ने सरकार से करीब 99 लाख की सब्सिडी प्राप्त की है। खीरे, टमाटर, शिमला मिर्च की खेती के लिए मंत्री जी ने अपने ही कृषि मंत्रालय से सब्सिडी ले ली। मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस पर सत्ता का गलत प्रयोग बताया है। सचिन पायलट ने लिखा, कृषि मंत्री पर 99 लाख सब्सिडी का आरोप, अपनी ही योजना से लाभ लेने का मामला, पद के दुरुपयोग पर विवाद, पारदर्शिता और जांच की मांग। इस बीच आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
1: मोदी सरकार के मंत्री खुद अपने ही विभाग में खीरा किसानों की सब्सिडी खा गए, तो चारों तरफ लूट पे लूट चले जा रही है। तो इस लूट वाली सरकार को हटाना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लूट सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी।
0: वहीं मंत्री भागीरथ चौधरी ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया सरकारी नियमों और निर्धारित मापदंडों के तहत की गई है।
2: और 2018 से मैं इस आवेदन के लिए मैं लगा हुआ हूँ, उसमें तो कोई मैंने कोई प्रक्रिया के तहत मैंने काम किया। दूसरा, हम दो MS हैं, MOSM है हम, और उसमें एक रामनाथ जी ठाकुर है और एक मैं हूँ। ये जो सब्सिडी वाला है, ये जो कुछ है, तो वो राज्य मंत्री और रामनाथ जी ठाकुर है।
0: फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। विपक्ष जहां इसे पद के दुरुपयोग का मामला बता रहा है, वहीं सरकार इसे नियमों के तहत हुई प्रक्रिया बता रही है। आज तक ब्यूरो।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज हुआ चंपत राय का बयान। आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी में जेवरात और जमीन के पेपर बरामद। आज कोर्ट में पेशी, ट्रस्ट में रद्द होगी सिफारिशी नियुक्तियां। सेशेल्स में हिंदुओं के एकमात्र मंदिर में पीएम मोदी की पूजा अर्चना। गर्भगृह में भगवान गणेश की मूर्ति। भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात। सेशेल्स की संसद में गूंजा नमो मंत्र। बेअदबी मामले में बढ़ते जा रहे हैं सीएम भगवंत मान की मुश्किलें। आपके सिख विधायकों और मंत्रियों को अकाल तख्त का आदेश। एक महीने में दूर करें सभी आपत्तियां।

पांच आरोपियों में जेकेएलएफ के यासीन मलिक भी शामिल। मूसलाधार प्रहार से पूर्वोत्तर भारत में हाहाकार, अरुणाचल प्रदेश में भारी तबाही, असम में बाढ़ जैसे हालात। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत से की बात, मुंबई में आफत की बारिश।

महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की तलाश में पुलिस की कई राज्यों में छापेमारी जारी। सूत्रों के मुताबिक बिहार के रहने वाला विजेंद्र गुप्ता ही टीटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड। आज तक 2024 से पटना में किया था विजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन। 25 साल से पेपर लीक का काम कर रहा है विजेंद्र गुप्ता। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में भंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों आकाश, राजीव और धीरज को किया गिरफ्तार। उनके पास से पेपर हुआ बरामद। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का बयान पुलिस ने दर्ज किया। जांच में बड़ा अपडेट। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज। अन्य ट्रस्ट पदाधिकारियों से पूछताछ की संभावना। अयोध्या राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार। याचिका के बाद सूचीबद्ध करने का आदेश। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज। SBI बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक को पुलिस ने जारी किया नोटिस। स्पेशल कोर्ट में आरोपियों की पेशी की तैयारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर विचार। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने कड़ी व्यवस्था की। अयोध्या चढ़ावा मामले में गिरफ्तार 8 लोगों की न्यायिक हिरासत आज खत्म। आगे की पूछताछ के लिए पुलिस कर सकती है कस्टडी की मांग। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला लेने की बात कही। आज बार एसोसिएशन की होने वाली आम सभा में इस पर अंतिम फैसला होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नई जानकारी आई सामने। मामला सार्वजनिक होने से पहले ट्रस्ट को इसकी जानकारी थी। चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन तेज। गिरफ्तार सभी आरोपियों के घर पर छापेमारी। टिंदू यादव, अविनाश शुक्ला के घर की ली गई तलाशी। आरोपियों के घर छापेमारी में लिए संपत्ति के पेपर, दस्तावेजों का सत्यापन कराएगी पुलिस। कुछ लोगों के घर से जेवरात मिलने की जानकारी। राम मंदिर चोरी मामले में CCTV से बड़ा खुलासा। 5 जून को आरोपी अविनाश के हाथ में दिखाई दे रहा है काला बैग। चढ़ावा चोरी पर अखिलेश ने बीजेपी सरकार को घेरा। कहा CCTV बंद करके की गई चोरी, इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट है। अखिलेश के बयान पर CM योगी का पलटवार। कहा SP सरकार में राम भक्तों पर चली गोलियां, इनके पास विकास का कोई एजेंडा ही नहीं है। अखिलेश को CM योगी ने दी चुनौती का, अगर हिम्मत है तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बोलकर दिखाएं। राम मंदिर से जुड़े विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तेज नारायण पांडे ने चप्पल राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। यूपी 2027 विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग पर बोले यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी बोली अखिलेश यादव सभी सहयोगों को बराबर सम्मान देते हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को सलाह। कहा कांग्रेस नेताओं को सीट बंटवारे पर बयानबाजी से बचना चाहिए। लखनऊ में 2027 को लेकर बीजेपी का मंडल कमंडल का दांव। लोहिया परिवार से मुलाकात और मथुरा पर सियासी घमासान। यूपी बीजेपी चीफ के लोहिया परिवार से मुलाकात पर सियासी घमासान। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा लोहिया परिवार के घर जाने से कोई राजनीतिक बदलाव नहीं होता। यूपी मंत्री संजय निषाद का समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर तंज, दोनों बिना दूल्हे की बारात है। पीलीभीत पे CM योगी ने दी सौगात। 569 करोड़ की 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीलीभीत जनसभा में CM योगी का कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर हमला। विभाजन, पाकिस्तान निर्माण और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर लगाए गंभीर आरोप। कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर यूपी में सियासी घमासान। AIMM ने CM योगी और बीजेपी समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। CM योगी के बयान पर AIMM का पलटवार। धार्मिक मुद्दों से भटक रही यूपी की राजनीति। संभल में 101 करोड़ की सरकारी जमीन पर 7 साल पुराना फर्जी पट्टा रद्द। राज्य सरकार के नाम दर्ज कर कब्जा हटाने की कार्रवाई जारी। दिल्ली दौरे पर CM सम्राट चौधरी, नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात। बिहार से जुड़ी 15,000 करोड़ रुपए की सड़क और पुल परियोजनाओं पर होगी चर्चा। केंद्र से वित्तीय स्वीकृति और राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध करेंगे CM सम्राट चौधरी। राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली करने की आज आखिरी मोहलत। तेजस्वी के घर शिफ्ट होने की चर्चा तेज। पटना फायरिंग कांड में फैजल खान के दोनों गार्ड अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहे थे राइफल। लाइसेंस रद्द करने की तैयारी। राजस्थान हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना पर आज लगेगी मोहर। 32 साल पुराने यमुना जल विवाद पर आज होगा ऐतिहासिक समझौता। अमित शाह की मौजूदगी में होगा MOA। शेखावटी को मिलेगा यमुना का पानी राहत। किलोमीटर पाइपलाइन से पहुंचेगा राजस्थान यमुना का पानी। सीकर, चुरू और झुंझुनू को मिलेगी पेयजल संकट से राहत। मध्य प्रदेश के सागर के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही। 19 महीने के मासूम की गई आंखों की रोशनी। सर्दी इन्फेक्शन के इलाज के बाद मासूम की आंखों की रोशनी खत्म होने का आरोप। पुलिस में शिकायत, जांच के लिए समिति गठित। अकाल तख्त जत्थेदार का सख्त आदेश, 1 महीने में आपत्तियां दूर करें। एंटी सैक्रिलेज कानून पर रोक लगाने की मांग।
विधायकों और मंत्रियों को निर्देश, अकाल तख्त ने कहा विधायी प्रक्रिया में सुधार कर सभी आपत्तियों का समाधान करें। कर्नाटक महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में एसआर प्रक्रिया शुरू, 5 अगस्त को ड्राफ्ट और 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची तय। दिल्ली हाईकोर्ट में महिला वायुसेना शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों की याचिका, परमानेंट कमीशन न देने के फैसले को चुनौती। कलकत्ता हाईकोर्ट ने विषय बयान की विदेश यात्रा की अनुमति मामले में तत्काल सुनवाई से किया इनकार, जुलाई में होगी नियमित सुनवाई। बंगाल विधानसभा में शुभेंदु सरकार पेश करेगी 5 अहम विधेयक, दंगे तोड़फोड़ और सामाजिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई, साथ ही संपत्ति जब्ती का प्रावधान प्रस्तावित। बीजेपी ने कहा ऐतिहासिक होगा आज का दिन, टीएमसी के बागी विधायकों के रुख पर होगी नजर। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने यूसीसी को लेकर बयान देते हुए कहा बंगाल बीजेपी की सरकार बनी है इसलिए साफ है कि यूसीसी लागू होगा। एसी यूनिट में नोएडा सेक्टर 119 की अरण्य सोसाइटी में लगी भीषण आग, 22वीं मंजिल तक फैली आग की लपटें। एसी यूनिट में लगी ब्लास्ट से आग की आशंका, अरण्य सोसाइटी में मची अफरा तफरी, फायर यूनिट और पुलिस मौके पर तैनात। छत्तीसगढ़ के गुरेला में बेकाबू कार ने कई बाइक्स को मारी टक्कर, सीसी में कैद हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा। नोएडा सेक्टर 9 में 2 झुग्गियों में लगी आग, दमकल की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली के डीएनडी फ्लाईवे से शख्स ने लगाई यमुना में छलांग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर। पटना के दीदारगंज में डालडा गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर, आसमान को छूती दिखी आग की लपटें, धुएं का घना गुबार। बीती रात लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। अहमदाबाद तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 घायल, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। लखनऊ के गोमती नगर में देर रात फायरिंग, 2 गुटों में भिड़त, चाय की दुकान पर विवाद के बाद चली गोलियां। गाजियाबाद के इंद्रापुरम के बैंकवेट हॉल में बच्चे से कराई गई लाखों के शगुन और गहनों से भरे बैग की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गाजियाबाद में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, 1 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त। झांसी में शादी के 4 महीने बाद नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया मारने का आरोप। फरीदाबाद में कारोबारी ने दुकान में की खुदकुशी, वीडियो में पत्नी, ससुराल पक्ष पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। सहारनपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर व्यक्ति की मौत। पटना में ज्वेलरी शॉप के मालिक से लूटपाट, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बगहा में देर रात बवाल, 2 पक्षों में पथराव, पुलिसकर्मी समेत 6 घायल। जालना में देर दर्शन के निकले दोस्तों की कार का भीषण हादसा, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। मुंबई के माहिम में मामूली धक्का लगने पर रेलवे स्टेशन के पास युवक को मारा चाकू, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 2 दिन पहले हुए हादसे का वीडियो आया सामने, स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, हादसे में 4 की मौत। अरुणाचल में बारिश का कहर, चीन सीमा से लगे 7 जिलों का संपर्क टूटा। क्लाउडबर्स के बाद नेशनल हाईवे 13 बंद, हाईवे बहाली में लग सकता है 1 हफ्ते से ज्यादा का समय। अरुणाचल प्रदेश से आई हैरान करने वाली तस्वीर, डम्बुक इलाके में सिसरी नदी में चल रहे राहत और बचाव अभियान के दौरान बड़ा हादसा, 4 फंसे लोगों को बचाने गए 7 राफ्टर्स की तेज बहाव में मौत, तेज बहाव में नाव पलटी, 6 लोगों को बचा लिया गया है, 3 लोगों का रेस्क्यू जारी। फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ के 30 जवान तैनात, राज्य पुलिस और आईटीबीपी की टीमें भी सुबह से लगातार बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई। जोरहाट के जुनाई में बाढ़ का कहर, डिकारी नदी के उफान से 15 से अधिक लोग टापू पर फंसे, राहत का काम जारी। जोरहाट की केमी नदी पर 300 मीटर लंबे लोहे का पुल बहा, जुनाई की कनेक्टिविटी ठप। गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री से राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पर बातचीत की। शोपियां में मूसलाधार बारिश से तबाही, मुगल रोड पर भूस्खलन, कई वाहन फंसे। धार में 100 साल पुराना चंबल पुल नियंत्रित ब्लास्ट से ध्वस्त, 27 करोड़ की लागत से बनेगा नया 4-लेन पुल। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र गुफा में भगवान शंकर की प्रथम पूजा की, एलजी मनोज सिन्हा ने भी बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू पहुंचे तीर्थयात्री, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह, बम बम भोले और हर हर महादेव का जयकारा। कुलगाम में अमरनाथ यात्रा से पहले नेशनल हाईवे पर जवानों का मॉक ड्रिल, यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया अभ्यास। अभ्यास में आतंकी हमले, आईडी विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों का किया गया पूर्वाभ्यास। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा की तैयारियां, देव स्नान पर पूर्णिमा और यात्रा का आयोजन होगा। पुरी में स्नान यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर में भव्य दिव्य तैयारी, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का होगा पवित्र जल से स्नान। स्नान पूर्णिमा पर गजानन वेश में किया जाएगा श्रृंगार, 108 कलश पवित्र जल से कराया जाएगा पवित्र स्नान। एकांतवास के बाद 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा, 15 दिन तक एकांतवास में रहेंगे भगवान। जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा पर मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, मंदिर में टेका मत्था, भगवान का लिया आशीर्वाद।
श्रद्धा कपूर की मच अवेटेड फिल्म ईटा का टीजर लॉन्च 28 अगस्त को सिनेमाघर में आएगी। वेलकम टू द जंगल का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 3 दिन में 65 करोड़ से ज्यादा की कमाई। 3 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म अल्फा। फिल्म में आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। थिएटर में फिल्म देखने पहुंची शर्वरी और वेदांग रैना, मैं वापस आऊंगा पर एक्ट्रेस लिखा इमोशनल नोट। एक्टर जैकी श्रॉफ ने खाने के लिए पान के पत्ते पर कत्था लगाते हुए आए नजर, सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर।

0: इस बीच अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर आ रही है। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने चढ़ावा चोरी में पकड़े गए आरोपियों की पैरवी ना करने का फैसला लिया है। चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज तक मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी करेगी, लेकिन आज जुडिशियल कस्टडी के लिए अयोध्या की भ्रष्टाचार अधिनियम स्पेशल कोर्ट में पेशी होनी है। सुरक्षा की दृष्टि से आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की तैयारी में अयोध्या पुलिस जुट गई।
1: आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया है कि क्या कोई रिप्रेजेंट करेगा?
2: क्या है कि वकील लोग डिफेंस की ओर से वकील नहीं होंगे, अगर होंगे तो संघ में परमिशन लेंगे और 5 लाख रुपए वो पर हेड जमा करेंगे मोकिलों से लेके अपने और वकालत करेंगे। उस पैसे से प्रोसिक्यूशन की पैरवी होगी और उस प्रोसिक्यूशन की पैरवी में मुकदमा इन तीनों लोगों के खिलाफ दर्ज कराने की पूरी कोशिश की जाएगी।
1: ये तमाम बातें कही जा रही हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेशन का हक तो सबको होता है, तो इस मामले में ऐसा क्या है कि इन लोगों को, क्योंकि ये अभी गिल्टी प्रूफ नहीं हुए हैं तो इनको अपना हक है अपनी बात रखने का,
2: लेकिन अगर मान ली किसी के खिलाफ मुकदमा या चार्ज किसी के खिलाफ आरोप रखा जा रहा है, ये जनता रख रही है। ग्राम आप मोबाइल को देखिए, सारे लोग बैठे बैठे कहते हैं कि अब ये दान नहीं करेंगे, चल करके कहीं ऐसी जगह पे देंगे जो राम मंदिर और अच्छा सा हो, जहाँ पे लोग ढंग के हों, ईमानदार हों। तो आखिर वो उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम लोग उनकी आवाज को यहाँ उठा रहे हैं।
1: आप लोग न्याय के लिए लड़ते हैं, सबको उम्मीद आप पे होती है। हमने देखा कि कसाब को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन दिया गया, आप लोग को लगता है कहीं ना कहीं कि इसमें
2: ये कहते हैं अगर मान लीजिए तीनों लोग दोषी नहीं है तो क्या हमारे कह देने से वो आरोपी हो जाएंगे? आरोपी तो हो सकते हैं लेकिन गिल्टी नहीं होंगे। अगर उनका कहीं रोल नहीं है तो वो इसमें नहीं आएंगे, वो किसी दशा में नहीं आएंगे। और सीबीआई जांच करेगी तो बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन सीबीआई अगर जांच करेगी तो निश्चित ही आएंगे और इस तरह से आएंगे कि उसमें एक दो और भी आ जाएंगे जो बचेंगे नहीं।
0: संतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, इस मामले में कानून क्या कहता है, क्योंकि अगर बार एसोसिएशन ने ही मना कर दिया कि आप उनकी पैरवी नहीं करेंगे तो अब सरकारी वकील कैसे मुहैया कराया जाएगा जो कि हर व्यक्ति का अधिकार है?
3: देखिए, कानून क्या कहता है कि अगर किसी आरोपी को कोई वकील बैकआउट करते हैं कि उसकी पैरवी नहीं करेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अयोध्या बार एसोसिएशन की एक जो कमेटी बनाई गई इन आरोपियों की पैरवी के खिलाफत करने के लिए, तो उसमें सौरभ मिश्रा हमारे साथ हैं। ऐसे आप लोग किसी भी जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि आप हर आदमी की पैरवी होनी चाहिए, तो फिर उनका कानून क्या कहता है, उनको न्याय कैसे मिलेगा?
4: उनको न्याय दिलाने के लिए न्याय मित्र हैं, कई चीजें हैं जिसको गवर्नमेंट उनको दे सकती है। हमारे संघ ने आज इस विषय पर मीटिंग किया, अधिवक्ता संघ फैजाबाद ने इसको माना कि ये सनातन आस्थाओं से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है। हमारे संघ ने, अधिवक्ता संघ ने क्या कहते हैं इसके जन्मभूमि आंदोलन के लिए भी बहुत पैरवी की थी, तो कहीं ना कहीं सबकी अब भावनाएं आहत हो गई हैं। तो वैसे भी नैतिकता के आधार पर ऐसे अभियुक्तों की पैरवी नहीं करनी चाहिए, तो संघ का हक ने हमारे निर्णय लिया और सबसे अपील की है कि नैतिकता के आधार पर आप इनके पक्ष में वकालत न करें।
3: अगर कोई वकालतनामा लगाता है तो?
4: वकालतनामा लगाता है तो जनरल बॉडी उसके खिलाफ जो भी करना होगा करेगी, एक निर्णय लेगी, हमारे अध्यक्ष जी के संज्ञान में लाएंगे।
3: 5 लाख रुपए की भी बात रखी गई है,
4: ये एक आप कह सकते हैं कि जो अध्यक्ष जी ने हमारे कहा है, ये एक है चीजें कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो हम ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अभी इसका कोई वैसी चीज नहीं है कि कोई आ ही रहा है, हमको अध्यक्ष जी को और पूरे संघ को विश्वास है कि जो है हमारे आह्वान के बाद कोई भी अधियोक्ता पैरवी नहीं।
3: किसी आरोपी को न्याय कैसे मिलेगा? ये छोटे लोग हैं आप लोग कह रहे हैं और बड़े लोग इसमें शामिल हैं, तो ये अगर आप लोग पैरवी नहीं करेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? अभी तो आरोपी है, दोषी तो हुए नहीं।
4: ठीक है, जिन आरोपियों को पुलिस ने आरोपी बनाया उसके अलावा जो लोग हैं जिनको आप लोग बड़े लोग कह रहे हैं, उनको जो हम लोगों को जो ये लग रहा है कि एसआईटी से पुलिस से जो संघ का हमारे प्रस्ताव है उनको जो बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: बड़ी खबर यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। आज पीलीभीत से सीएम योगी ने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर हमला बोला। योगी ने कहा कि यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा होगा। यूपी की जनता ने साइकिल पंक्चर कर दी है। तुष्टीकरण को लेकर योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा।
5: और कांग्रेस के हमरा समाजवादी पार्टी को भी कहां फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी, क्योंकि इनको तो तुष्टीकरण से जब फुर्सत हो तब गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, वंचितों के बारे में सोचते, इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी केवल और केवल मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, सिखों की चिंता नहीं थी, बौद्धों की चिंता नहीं थी, जैनियों की चिंता नहीं थी उनको। अरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों, बेश्रमी के साथ डूब मरो। जिन लोगों को आज आवासीय पट्टा और उनके जमीन के मूल कागजात उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है, ये ज्यादातर लोग दलित हैं, वंचित हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं।
6: वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी, गुंडागिर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना आराम कर देगी, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करना, जहां आज गौशालाएं बन रही हैं, ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाही ने कब्जा की होंगी जरूर। और जब सरकार आई और हम लोगों ने पहले दिन ही घोषणा की थी कि अगर जमीन कब्जा किए हो तो खाली कर दो, नहीं तो अगले 48 घंटे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो 7 पीढ़ियों का भुक्तभोगी होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसी समय सिलेंडर कर दिया था कि नहीं साहब आप जमीन ले लीजिए, बकस दो।
0: और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशेल्स दौरे की। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया के स्थानीय मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की और मंदिर के बाहर खड़ी भीड़ और भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का जमकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी के नाम के नारे भी लगाए।

0: और बाद बाढ़ से बिगड़े हालात की पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम के कई हिस्सों में संकट गहरा गया है। बंगाल में भारी बारिश से स्थिति गंभीर है, वहीं अरुणाचल में मूसलाधार बारिश और फ्लैश फ्लड से हालात बिगड़ गए हैं। असम के धीमाजी में कई गांव में पानी भरने की खबरें सामने आई।
1: बाढ़ से बंगाल के कुछ हिस्से बेहिसाब संकट का सामना कर रहे हैं। अलीपुरद्वार के जयगांव से आई ये तस्वीर देखिए। सड़क पर ऐसा सैलाब आया है कि वहां से गुजर रहे लोग भी तेज धार में बहने लगे। बाइक सवार दो लोग उस सैलाब में गिर पड़े, उसके बाद वो खुद की जान बचाते नजर आए, लेकिन डरावनी लहरें बाइक बचा रहे शख्स को बहा ले गईं। अब तक उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: आगे आगे
9: उधर उधर
8: करेक्ट करेक्ट
10: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: In association with Hind, बड़े आराम से Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
12: Vimal, bolo zubaan kesri.
11: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank, bharose ka prateek.
13: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
14: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560006546 पर कॉल करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज हुआ चंपत राय का बयान, आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी में जेवरात और जमीन के पेपर बरामद, आज कोर्ट में पेशी, ट्रस्ट में रद्द होगी सिफारिशी नियुक्तियां। इंदू के एकमात्र मंदिर में पीएम मोदी की पूजा अर्चना, गर्भगृह में भगवान गणेश की मूर्ति, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात, सेशेल्स की संसद में गूंजा नमो मंत्र। बेअदबी मामले में बढ़ती जा रही है सीएम भगवंत मान की मुश्किलें, आपके सिख विधायकों और मंत्रियों का काल तख्त का आदेश, एक महीने में दूर करें सभी आपत्तियां। 30 साल बाद कश्मीर के नर्स सरला भट्ट हत्याकांड में जागी इंसाफ की उम्मीद, श्रीनगर की अदालत में पेश होगी चार्जशीट। मूसलाधार प्रहार से पूर्वोत्तर भारत में हाहाकार, अरुणाचल प्रदेश में भारी तबाही, असम में बाढ़ जैसे हालात, गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत से की बात।

नमस्कार, इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसे सुनकर और देखकर देश हैरान रह गया। 25 साल के युवक केतन अग्रवाल को गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला गया। आरोप उसकी मंगेतर और मंगेतर के दोस्त पर लगा। साजिश गंभीर, लेकिन सवाल कई जिनका जवाब तलाशना पुणे पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। सवाल ये कि केतन को क्यों मारा ये नहीं पता, हत्या की असल वजह क्या रही अब तक इस पर भी सस्पेंस है। साथ ही सवाल ये भी कि हत्या के क्या सबूत हैं। पुलिस कह रही है कि जांच जारी है।

और अब से कुछ देर बाद पुणे की अदालत में सिया और चेतन चौधरी को पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद ये पेशी हो रही है, लेकिन इससे पहले पुलिस ने सिया के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। उसे लेकर कई अहम खुलासे हुए, लेकिन रिपोर्ट के जरिए क्या कुछ पुलिस ने अपनी तफ्तीश में पाया।

0: लोह गढ़ का ये किला और इस किले की वो गहरी खाई जहां कीर्तन अग्रवाल की जान चली गई। वहां पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया तो केतन को धक्का देने वाले सवालों पर और इस साजिश के अलग अलग सवालों का क्या जवाब मिला, पुणे पुलिस को मौके से क्या साक्ष्य मिले। पुलिस रविवार को खाई के पास पुतला लेकर पहुंची थी तो क्या क्या हुआ था, 18 जून को कैसे केतन को खाई में धक्का दिया गया था, कैसे केतन 340 फीट गहरी खाई में गिरा होगा, खाई में गिरने के बाद जब केतन तड़प रहा था, जिंदगी की भीख मांग रहा था, तब उसकी मंगेतर सिया क्या कर रही थी, जब चेतन ने केतन को धक्का दिया था उसके बाद सिया और चेतन ने क्या किया था। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए पुणे पुलिस अथक प्रयास कर रही है। 18 जून को हुई वारदात की जांच का सबसे अहम पड़ाव था लोहगढ़ किले का ये इलाका। ये वही हिस्सा है जहां कीर्तन को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया गया। वो 340 फीट गहरी खाई में गिरा और दम तोड़ दिया था। उलझाऊ और सस्पेंस भरे सवालों के साथ पुलिस 28 जून को ठीक उसी खाई के पास पहुंची। पुलिस के साथ केतन के वजन जितने भार वाला डमी भी था। अब आपको क्राइम सीन को रिक्रिएट किए जाने की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। रविवार की सुबह 7:30 बजे 10 से 15 पुलिस वाले किले में उस जगह पहुंचते हैं। मास्क से चेहरा ढके सिया भी उसके साथ होती है। पुलिस वालों के साथ में एक डमी था, बिल्कुल केतन की कद काठी का, उसके जितना ही लंबाई वाला और उतने ही वजन का। सिया की बताए जगह पर पुलिस जाती है। फिर शुरू होता है उससे सवाल जवाब का सिलसिला। पुलिस ने सिया से एक एक सवाल करती है और उसी के मुताबिक रिक्रिएशन की प्रक्रिया शुरू होती है। पुलिस ने सिया से जाना कि 18 जून को इस खाई के पास और कौन कौन था, चेतन के साथ उसकी क्या बातें हुई, क्या दोनों में किसी बात को लेकर नाराजगी थी, चेतन को सिया ने मौके पर कितनी देर पहले बुलाया था। ऐसे कई सवाल सिया से किए गए और इसी बीच आता है अब तक का सबसे अहम सस्पेंस। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट करते हुए सिया से कहा कि वो पुतले को खाई में धक्का दे। सिया ने ही पुतले को खाई में धकेला।
1: जो पुतला बनाया गया था वो केतन अग्रवाल के जैसा था, उसी के वजन का था, ताकि वो नीचे जाने के बाद ये पता चले और ये फाइनलाइज हो सके कि किस तरीके का इम्पैक्ट था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या थे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इम्पैक्ट के बाद पुतले के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो देखना पुलिस चाह रही थी और उसी की जांच फाइनलाइज हो गई। सबसे अहम यह है कि उसके बाद कुछ फॉरेंसिक के डिटेल्स थे वो कलेक्ट किए गए और सिया को लगभग 10 से 10:30 बजे तक किले को उतरने की शुरुआत हुई और उसी के बाद उसे वापस इसी लॉकअप में लाया गया।
0: खुलासे के मुताबिक सिया और चेतन ने हत्या की गहरी साजिश रची। उसी दौरान तय हुआ था कि किले में ऊंचाई पर पहुंचकर सिया अचानक बैठेगी। ये संकेत होगा कि अब केतन को खाई में धक्का देना है। 18 जून को कुछ ऐसा ही हुआ। सिया बैठी, इशारा मिलते ही चेतन ने तय प्लान के मुताबिक केतन को खाई में धक्का दे दिया। ऐसे में रिक्रिएशन के दौरान सिया ने पुतले को धक्का दिया।
2: उसमें एक्यूज को
3: सिया के भाई साहिल गोयल से इस वक्त में सहयोगी बातचीत कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे।
4: I was a bit sleepy, तो मैंने स्टारबक्स में कॉफी ऑर्डर की थी। I know only about that much, sir.
1: तो ये बाली का प्लान आपका फाइनल था लेकिन?
4: हाँ जी,
1: फाइनल था। वो पासपोर्ट की वजह से कैंसिल हो गया।
4: हाँ जी।
1: बस और एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, अब ये सब कुछ होने के बाद क्या आपकी बहन के साथ बात हुई?
4: नहीं सर।
1: और आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया है इस पूरे मामले में, वो एग्जैक्टली क्या उसमें आपका कहना है, थोड़ा ब्रीफ दीजिए।
4: व्हाट स्टेटमेंट सर?
1: स्टेटमेंट जो आपने रिकॉर्ड किया है उसमें एग्जैक्टली क्या आपने ब्रीफिंग दिया है?
4: वो मैंने पुलिस को बता दिया सर, आज वो पुलिस आपको कोर्ट ऑफ लॉ में बता देंगी सर। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू। साहिल गोयल थे हमारे साथ, सिया के भाई है। उनका कहना है कि बाली के प्लान में वो शामिल थे, बस इतना ही नहीं बल्कि ये सब कुछ जब हो रहा था तभी वो उनके साथ थे, लेकिन शुरू में जब सिया की शादी के बाद जब सिया उस पर राजी नहीं थी तो क्या साहिल थे जो उन्होंने आपके फैमिली के साथ बात की? वो भी कुछ बातें ऐसी हैं जो साझा नहीं करना चाहते क्योंकि वो भी कोर्ट की तरफ निकल चुके हैं। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ हम करवा ले आज तक पुणे।
3: थ्रिलर और सस्पेंस भरी इस वारदात से हर कोई हैरान है। सिया और चेतन ने हत्या की साजिश रची, 18 जून को उसे अंजाम दिया गया, दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन क्या दोनों के गुनाहों को पुलिस कोर्ट में साबित कर पाएगी, ये सवाल बेहद अहम।
2: अठारह जून को किले में वो तीन किरदार मौजूद थे, उनमें से एक केतन झटके में खाई में गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। लोहगढ़ किले में वारदात वाली जगह दोनों आरोपी भी थे, एक सिया गोयल और दूसरा चेतन चौधरी। यही तीन इस दिन लोहगढ़ किले में उस खाई के पास पहुंचे थे। तो उस मर्डर मिस्ट्री का सच कौन बताएगा? ऐसा कोई था जो सिया और चेतन के गुनाहों का साक्षी बना? माना जा रहा है कि क्राइम वाली जगह पर उस वक्त कोई और मौजूद नहीं था, यानी मौके पर सिर्फ इन तीनों का होना पुणे पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती है। 23 जून को सिया और चेतन गिरफ्तार हुए थे, तब दोनों को कोर्ट में पेश करते हुए पुणे पुलिस ने इसे हत्या की सुनियोजित साजिश बताया था, क्राइम सीन रिक्रिएट करने की बात कही थी, सिया चेतन से पूछताछ कर सुराग जुटाने का हवाला दिया था और रिमांड ले ली थी। लेकिन हासिल क्या हुआ? बीते 5 दिनों की तफ्तीश में पुलिस को क्या मिला? अहम सवाल ये कि जो कुछ जांच मिला उसकी बदौलत क्या पुलिस सिया और चेतन को सजा दिला पाएगी? इन सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि 5 दिनों की पड़ताल में पुलिस ने क्या क्या किए हैं। पुलिस ने कई सीसीटीवी जांचे हैं, सिया और चेतन के मोबाइल की जांच की है, मोबाइल से मिले कई अहम वीडियो की जांच की है, सिया और चेतन से लंबी पूछताछ की है, पूछताछ के आधार पर जांच पड़ताल की है, सिया के माता पिता और भाई से लंबी पूछताछ की है, और सबसे अहम ये कि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। लेकिन अब तक पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोई ऐसा ठोस सुराघात नहीं लगा है जिसकी बदौलत अधिकारी ये पुख्ता तौर पर कह सके कि सिया और चेतन ने ही कत्ल किया और उनका बचना नामुमकिन है। सवाल है कि एक लाश की गवाही कैसे होगी, उस हत्याकांड का सच कैसे सामने आएगा? पुणे पुलिस का रिक्रिएशन जांच प्रक्रिया की एक अहम कड़ी है, लेकिन क्या इस रिक्रिएशन से पता चलेगा कि सिया गोयल और चेतन ने ही हत्या की साजिश की? पुणे पुलिस को क्राइम सीन रिक्रिएट करने का कितना फायदा मिला? क्या इस रिक्रिएशन के दौरान मिले सुराग या पता चले तथ्य सिया और चेतन को सजा दिलाने के लिए काफी है?
1: सीसीटीवी फुटेज के अलावा लोहगढ़ से अभी तक कोई भी सबूत पुलिस को बरामद नहीं हुए है। अहम बात यह है कि फॉरेंसिक टीम पहुंची थी, उसके बाद रिक्रिएशन किया गया, लेकिन मौका वारदात पर कोई ऐसा एविडेंस पुलिस ढूंढ रहे है जिसने इस पूरे घटना को अंजाम देते हुए देखा होगा या फिर किसी ने रिकॉर्ड किया होगा। अहम बात यह है फॉरेंसिक की डिटेल्स पुलिस ने उठा ली है, उसके अलावा रिक्रिएशन भी हो चुका है, लेकिन और एविडेंसेस जुटाने की कोशिश अब शुरू हो चुकी है ताकि इस केस को वाटर टाइट कर सके।
2: आखिर कैसे पुलिस ये साबित करेगी कि सिया और चेतन ही असली मुजरिम है? किन सबूतों और साक्ष्यों की बदौलत कोर्ट दोनों को दोषी मुकर्रर करेगा? कोर्ट पुख्ता सबूत मांगेगा, हत्या से जुड़े हर सवालों के जवाब मांगेगा, सिया चेतन पर लगे आरोपों को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्यों की दरकार होगी। लेकिन इस हत्याकांड का कोई चश्मदीद अब तक सामने नहीं आया है, हत्या में किसी हथियार का इस्तेमाल भी नहीं हुआ। ऐसे में अब इस केस में परिस्थिति जन्य साक्ष्य अहम हो गए हैं, मसलन डिजिटल और तकनीकी साक्ष्य, फोन कॉल डिटेल्स का वेरिफिकेशन, आरोपियों के तमाम लोकेशन, सीसीटीवी तस्वीरें, घर वालों से सवाल जवाब के साथ साथ कुछ ऐसे और भी साक्ष्यों की अहम भूमिका होगी।
5: मर्डर केस में जो अभी सामने आया है वो ये है कि जब ये क्राइम कमिट हुआ था तो उस समय कोई आई विटनेस उस क्राइम का नहीं है, तो क्या ये संभवता है कि उस महिला को जिसने अपने होने वाले पति का मर्डर किया है क्या वो इससे बच सकती है इस क्राइम से? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आई विटनेस अगर नहीं भी है तब भी वो क्राइम तो कमिट हुआ है, और ये जब मामला कोर्ट में आएगा तो कोर्ट इस चीज़ का संज्ञान लेगा, जो मटीरियल विटनेस है और जो एविडेंसेस उस साइट से कलेक्ट हुए हैं क्या वो सफिशिएंट है इस चीज को प्रूव करने के लिए कि उस लड़की ने ही ये क्राइम कमिट किया है।
2: लेकिन आरोपियों के बदलते बयानों के बीच पुणे पुलिस के लिए कोर्ट में अपनी दलील को साबित कर पाना आसान नहीं होगा। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ओंकार वाबले, पुणे आज तक।
3: और उससे कुछ ही देर पहले ओंकार मेरे सहयोगी ने बातचीत की है सिया के भाई से, सुनिए।
1: 7 दिन की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद आज सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों की कोर्ट में पेशी होगी। थोड़ी देर में ही 7 दिन का इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद अब पुलिस उन्हें कोर्ट में लेके जाएगी और 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांग सकते हैं। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिवली हमारे साथ है साहिल गोयल, जो सिया के सगे भाई है। इस पूरे मामले में साहिल गोयल ने परसों अपना बयान भी दिया था, आज कोर्ट में पेशी है, क्या कहेंगे?
4: जो भी कोर्ट बोलेगा सर उसका हम पालन करेंगे सर, जो भी कोर्ट का डिसीजन रहेगा उसका हम देखेंगे सर।
1: आपके लॉयर को लेकर कुछ इशू चल रहा है आपने कहा?
4: मेरे लॉयर को लेकर इशू है जो आशुतोष श्रीवास्तव है, उनको हमने कभी भी हायर नहीं किया है, वो हमारे साथ कभी भी कोऑर्डिनेशन में कभी भी कांटेक्ट में नहीं आए हैं, हम विपुल डिशिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बात हमने जब उनको भी बताई तो वो हमको थ्रेट कर रहे हैं।
1: क्या आपको लॉयर थ्रेट कर रहे हैं?
4: हाँ जी।
1: तो कुछ पुलिस वुलिस से बात हुई आपकी?
4: इस टाइम पे अभी तक बात नहीं हुई है सर।
1: पुलिस से बात नहीं हुई?
4: अभी तक बात नहीं हुई सर।
1: तो ये जो मीडिया में आशुतोष श्रीवास्तव आप बोल रहे हो, जो अभी आपके बिहाफ ऑफ यू वो बाइट्स दे रहे हैं, मीडिया के साथ बात कर रहे हैं, क्या वो आपके लॉयर नहीं है?
4: हमारे लॉयर नहीं है, हमने विपुल दुशिंग को हायर किया है, उनकी सर्विसेज के लिए हमने उनको अप्रोच किया है, हम उनके साथ चार दिन से इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं सर।
1: ओके, लेकिन मैंने उनसे बात की थी परसों, तो उनका ये कहना था कि सिया ने इसमें उन्हें दस्तखत दी है।
4: ये उन्होंने फोर्सफुली कुछ किया है कुछ नहीं है मुझे मालूम नहीं है सर, ये उन्होंने लॉकअप में उसका सिग्नेचर लिया है, हमको कुछ इस चीज के बारे में उन्होंने इन्फॉर्म किया नहीं है, हमको कॉन्टेक्ट किया नहीं, हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन रखा नहीं है इस चीज के ऊपर से सर। इस चीज के ऊपर हम लोगों ने आज कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि हमारे जो प्रोसीडिंग लॉयर है इसके आगे वो विपुल दिशिंग रहेंगे।
1: सो आपका एफिडेविट अब फाइल हो चुका है, क्योंकि एक घंटे में तो आपको बहन को कोर्ट में लाया जाएगा।
4: फाइल हो चुका है सर।
1: फाइल हो चुका है, उसकी दस्तखत भी है उस
4: पर। किसकी? वो पेंडिंग प्रोसेस है सर।
1: ओके, वो पेंडिंग प्रोसेस है। तो मुझे आप ये बताएं थोड़ा शुरू से, क्योंकि आप इस पूरे मामले में थे शुरू से, आपकी बहन है जिसने सब कुछ किया है। शुरू में जब शादी का फाइनल हुआ था, जब एंगेजमेंट हो रही थी, तो क्या आपको इस सब बात का अंदाजा था?
4: सर ये मैंने पुलिस स्टेटमेंट में पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में उनको मैंने बताया है, आगे आपको कोर्ट हियरिंग में ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू सर।
1: और बस एक दो बातें हैं, आप भी निकल रहे थे बाली के लिए?
4: हाँ जी।
1: तो ये हमने ड्राइवर से बात की, तो ड्राइवर का कहना था कि आपकी बहन वापस आई थी और उसने कुछ पासपोर्ट वहाँ से निकाला, एंड शी टोर दैट पासपोर्ट। तो क्या आपको याद है कि एग्जैक्टली किस तरीके से वो सीक्वेंस हुआ था?
4: हम लोग उतरे थे सर, उसके बाद मैं वॉशरूम गया था, वी वेंट टू स्टारबक्स, मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा था, इट वॉज लेट एट नाइट, उसकी वजह से आई वॉज अ बिट स्लीपी, तो मैंने स्टारबक्स में कॉफी ऑर्डर की थी। आई नो ओनली अबाउट दैट मच सर।
1: तो ये बाली का प्लान आपका फाइनल था लेकिन?
4: हाँ जी
1: फाइनल था, वो पासपोर्ट की वजह से कैंसिल हो गया।
4: हाँ जी।
1: ओके, बस और एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, अब ये सब कुछ होने के बाद क्या आपकी बहन के साथ बात हुई?
4: नहीं सर।
1: और आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया इस पूरे मामले में, वो एग्जैक्टली क्या उसमें आपका कहना है, थोड़ा ब्रीफ दीजिए।
4: व्हाट स्टेटमेंट सर?
1: स्टेटमेंट जो आपने रिकॉर्ड किया है उसमें एग्जैक्टली क्या आपने ब्रीफिंग दिया है?
4: वो मैंने पुलिस को बता दिया सर, आज वो पुलिस आपको कोर्ट ऑफ लॉ में बता देंगी सर। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू। साहिल गोयल थे हमारे साथ, सिया के भाई है, उनका कहना है कि बाली के प्लान में वो शामिल थे, बस इतना ही नहीं बल्कि ये सब कुछ जब हो रहा था तभी वो उनके साथ थे, लेकिन शुरू में जब सिया की शादी के बाद जब सिया उस पर राजी नहीं थी, तो क्या साहिल थे जो उन्होंने आपके फैमिली के साथ बात की? वो भी कुछ बातें ऐसी हैं जो साझा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो भी कोर्ट की तरफ निकल चुके हैं। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओम करवाल, आज तक पुणे।
3: केतन हत्याकांड के 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। घर वालों को भरोसा है कि पुलिस की तफ्तीश और फास्ट ट्रैक कोर्ट मामले की सुनवाई के बाद
6: खूब चांगल्या प्रकारे झाला ह्या केस मध्ये, त्याच्याबरोबर क्रॉस एक्झामिनेशन होता ते पण डिटेल मध्ये कोर्टात झालेला आहे। या केस मध्ये 16 दिवसात 55 विटनेस तपासणे, त्यासाठी माननीय कोर्टाला आणि
7: केतन के घर वाले आंसुओं में डूबे हैं। श्रद्धांजलि सभा में उसे याद किया जा रहा है। 25 साल के जवान बेटे की जिंदगी अब नहीं रही, लेकिन उसकी याद में परिजन टूट गए हैं। तो दूसरी ओर गिरफ्तार आरोपी सिया के घर वाले चुप्पी साधे हुए हैं। इस वारदात पर वो बोलने को तैयार नहीं।
8: साहिल यू नीड टू स्पीक टू अस प्लीज। साहिल आप बताएंगे क्या हुआ था, क्या वजह क्या थी?
9: वजह क्या थी साहिल?
8: साहिल वजह क्या थी साहिल प्लीज।
7: सिया का भाई साहिल जो अब चेहरा छिपाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन तमाम हत्या से जुड़े तमाम सवालों को टालकर आगे बढ़ गया।
8: मैं थी सिया पता था क्या आपको? साहिल आपको पता था? साहिल यू नीड टू स्पीक टू अस प्लीज। साहिल आप बताएंगे क्या हुआ था, क्या वजह क्या थी?
9: वजह क्या थी साहिल?
8: साहिल वजह क्या थी साहिल प्लीज।
7: अब तक की जांच के मुताबिक सिया ने केतन की हत्या की साजिश रची, चेतन ने सिया के कहने पर उसे खाई में धक्का दे दिया। सवाल है कि सिया ने नवंबर में तय शादी से पहले इतना बड़ा और खौफनाक कदम क्यों उठाया, उसका मकसद क्या था, आखिर क्यों मारा। इस सवाल पर बस इतना सा जवाब आया है कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि सिया ने शादी से इनकार क्यों नहीं कर दिया। पुलिस इसी सवाल के इर्द गिर्द दो दिनों में सिया के भाई साहिल और उसके माँ बाप से सवाल जवाब कर चुकी है। पुणे पुलिस ने जिस दिन सिया के साथ क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया, उसी दिन एक टीम ने दूसरे गिरफ्तार आरोपी चेतन से करीब 7-8 घंटे तक सवाल जवाब भी किए हैं।
10: सिया और चेतन को यहाँ पे लाया गया था, खुद यहाँ पे खड़े थे, उनसे पूछताछ कर रहे थे, 4-5 घंटे हो गए पूछताछ कर रहे थे। क्या मतलब पूछताछ हुई है?
11: पूछताछ में जो गोष्ठियां अभी निष्पन्न हुआ है वो अभी आपको नहीं बता सकता, उस पे कमेंट करने पर प्रगति है तपास में, इतना बोल सकते हैं।
7: पुलिस की पड़ताल जारी है, लेकिन अग्रवाल परिवार के आंसू सूख नहीं रहे। केतन के परिजन, पड़ोसी और रिश्तेदार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस हत्या का इंसाफ होगा।
12: अभी सरकार से यही है कि उसको जल्द से जल्द न्याय मिले और
13: समाज
12: और मैं जो इंसाफ केतन के लिए हो जाए, सिर्फ हमारी यही अभी सरकार से है।
14: उसके साथ ये होना बोले तो बहुत गलत बात हुई है।
10: सरकार से क्या?
14: सरकार से एक ही विनती है कि केतन को जस्टिस मिले, न्यायपालिका जो भी है उसको जस्टिस दे।
7: आज जिया और चेतन की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश करने वाली है, लेकिन इंसाफ की ये लड़ाई अभी लंबी है।
1: केतन अग्रवाल की हत्या को 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी विशाल अग्रवाल, उसके पिता और उसकी पूरी फैमिली इंसाफ के लिए जूझ रही है। पुणे में कैंडल मार्च हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विशाल अग्रवाल मिले, उन्होंने स्पेशल प्रोसिक्यूटर इस पूरे मामले में उज्जवल निकम हो इसकी मांग की, लेकिन ये सब होने के बाद भी 11 दिन बीत चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन तो शुरू है, लेकिन इंसाफ कब होगा, इस सवाल का जवाब उसकी फैमिली ढूंढ रही है।
7: अब सभी की नजरें पुलिस की आगे चलने वाली जांच पड़ताल और कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
3: और इस बीच बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद सिया और उसके करीबी चेतन चौधरी की कोर्ट में पेशी होनी है, क्योंकि केतन हत्याकांड में दोनों मुख्य आरोपी हैं, उनकी पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। आगे रिमांड बढ़ाने की बात को लेकर ही ये पेशी होने जा रही है। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद अब से कुछ ही देर बाद पेशी होगी, जिसमें रिमांड एक्सटेंड करने की बात कही जाएगी। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, इसी के चलते और रिमांड पुलिस द्वारा मांगी जाएगी। पहले रिमांड मांगी गई थी, उसकी मियाद आज खत्म हो रही है। वक्त एक ब्रेक का, उछला बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
17: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला। That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
18: As world soccer hits the big stage, Fanatic Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatic Sportsbook app.
15: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
13: इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
15: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशन
17: नीड बेटर इंटरनेट Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
15: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
13: इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
15: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included.
3: Oh yeah!
2: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
6: ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। एक कार को पीछे से दूसरी कार ने भयानक टक्कर मारी। तस्वीरें सहारनपुर में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र की हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर कट पार कर आगे निकल गया था और निर्माणाधीन हाईवे की ओर लौटने के लिए कार बैक कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर कई मीटर तक घिसटते चली गई, जबकि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 बुरी तरह घायल। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार कार ने यहां बाइक सवार को टक्कर मार दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शहर के व्यास वाड़ी 4 रास्ता पर यह तेज रफ्तार सफेद कार इधर से आती है, सामने से एक बाइक पर 3 युवक आ रहे हैं। अचानक कार ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर मारकर कार सवार फरार हो गया, जबकि 3 युवकों की हालत गंभीर है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

केस में दर्ज हुआ चंपत राय का बयान, आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी में जेवरात और जमीन के पेपर भी बरामद किए गए। आज कोर्ट में होगी पेशी, ट्रस्ट में रद्द होगी सिफारिश नियुक्तियां। सेशल्स में हिंदुओं के एकमात्र मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की पूजा अर्चना, गर्भगृह में है भगवान गणेश की मूर्ति, भारतीय समुदाय के लोगों से भी की मुलाकात, सेशल्स की संसद में गूंजा नमो नमो। बेअदबी मामले में बढ़ती जा रही है सीएम भगवंत मान की मुश्किलें, आपके सिख विधायक और मंत्रियों को अकाल तख्त का आदेश, एक महीने में दूर करे सभी आपत्तियां। छत्तीस साल बाद कश्मीर की नर्स सरला भट्ट हत्याकांड में जगी इंसाफ की उम्मीद, श्रीनगर की अदालत में पेश होगी चार्जशीट, पांच आरोपियों में जेकेएलएफ के यासीन मलिक भी शामिल। मूसलाधार प्रहार से पूर्वोत्तर भारत के में हाहाकार, अरुणाचल प्रदेश में भारी तबाही, असम में बाढ़ जैसे हालात, गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंता से की बात, मुंबई में भी आफत की बारिश।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत।
2: नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौम्य चौधरी। न्यूज रूम लाइव जिसमें हम आपको दोपहर की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, और आज तीन बड़ी खबर जिसपे सबसे ज्यादा हमारी निगाहें रहेंगी, जिसका विश्लेषण हम करेंगे। सबसे पहली खबर होगी, खासतौर पर आपको बताएंगे कि कैसे अब चंपत राय ने अपने बयान दर्ज करा लिए हैं, और उनके बयानों को लेकर भी बड़ी खबरें बताएंगे। पेपर लीक की, महाराष्ट्र के पेपर लीक की खबरें भी आपको बताएंगे कि कैसे उसका कनेक्शन बिहार से जोड़ा गया, और जम्मू कश्मीर से यानी कश्मीर से 36 साल बाद एक इंसाफ की उम्मीद जगी है। 36 साल बाद कोर्ट अपना एक बड़ा फैसला सुनाने वाला है, लेकिन चंपत राय के बारे में भी हम अगली खबर आपको बताएंगे कि कैसे चंपत राय को लेकर उन्होंने अपने बयान दर्ज कर लिए हैं, पुलिस में अपने बयान दर्ज किए, और कई लोगों को उन्होंने पुलिस ने नोटिस जारी किया। इसके बाद हम आपको सरला भट्ट पर एक बड़ी खबर भी बताएंगे कि 36 साल बाद लगातार इंसाफ की उम्मीद जागी, इसको लेकर भी विश्लेषण करेंगे, और 2:30 बजे हम आपको बताएंगे कि कैसे बाढ़ को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन सबसे पहले खबर लगातार आपको बताते हैं वो बड़ी खबर जो इस समय जौनपुर से आ रही है। आपको बता दें कि जौनपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक कह सकते हैं हैवानियत की खबरें अपडेट मिल रहा है। हैवानियत की खबरों को लेकर एक बड़ा खबर आपको बता रहे हैं कि कैसे जौनपुर से लगातार एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। जौनपुर के अंदर आपको बता दें कि एक बच्चे के साथ खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया, एक मासूम के साथ दरिंदगी की हद पार कर दी गई। 4 साल की बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि अपनी मां के साथ रिश्तेदारों के एक बड़े शादी में समारोह में गई थी बच्ची, और उसी बाद वो गायब हो गई। पुलिस ने करीबन घर के पास 300 मीटर पास जंगल से उसको बरामद किया। उसकी बॉडी को खून में लथपथ उसकी बॉडी मिली, और 4 साल की बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। यूपी के जौनपुर में खौफनाक वारदात सामने आई है। इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव भी जुड़े हैं। समर, देखिए ये पूरा मामला क्या है, और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस बिना पे कर रही है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है इन्वेस्टिगेशन?
3: देखिए सुमित, यूपी के जौनपुर से एक चौंका देने वाला, डरा देने वाला मामला सामने आया है, जहां 4 वर्षीय जो लड़की है उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है, और उसकी जो है उसका मर्डर किया गया है, और उसके खून से लथपथ बॉडी उस गांव से बरामद हुई है। डायल 112 की तरफ से टीम्स वहां पहुंची, और जब वहां पहुंची, क्योंकि पहले गुमशुदगी रिपोर्ट कराई गई, एक रात पहले वो अपने रिलेटिव के यहाँ अपनी माँ के साथ गई थी, जहाँ एक फैमिली फंक्शन था, वहां वो पहुंची, और वहां पर जो भी समारोह था वो हुआ। उसके बाद जो वो लड़की घर नहीं पहुंची, तो लोगों को लगा कि शायद वो अपने ही रिलेटिव के यहाँ सो गई होगी, लेकिन जब सुबह हुई तब तक जब बच्ची घर न पहुंची, तब वो परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचे, जहां एक रिपोर्ट लिखाई गई, और फिर यूपी 112 की टीमों ने गश्त करना शुरू किया। जब गश्त किया तो घर से कुछ मीटर दूरी पर ही उसकी मासूम की लाश बरामद हुई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, हालांकि अभी तक आरोपी का अरेस्टिंग नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि पंचनामे के बाद कई टीमें लगा दी गई हैं, कई टीमें गठित कर दी गई हैं, और लगातार धरपकड़ जारी है जिससे आरोपी को पकड़ा जा सके। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि जिले में कहीं ना कहीं इस घटना के बाद माहौल उस गांव का इस वक्त गमगीन भी है, और गांव वाले आक्रोशित भी हैं। मात्र 4 वर्षीय लड़की का मर्डर हुआ है, और आरोप लग रहे हैं बलात्कार के। जी
2: बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समर श्रीवास्तव, हमारे सहयोगी। देखिए मैं बता रहे थे कि कैसे लगातार अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। इस बड़ी खबर पर हम अपने संवाददाता से रिपोर्ट लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अब अगली खबर का रुख करते हैं, जो जयपुर से आ रही है। जयपुर के आमेर इलाके के अंदर कहा जा रहा है एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से वहां पर कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, और लगातार वहां पर 3 मजदूरों की मौत का अपडेट भी मिल रहा है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन या फिर उनको निकालने का काम, बाकी मजदूरों को निकालने का काम भी जारी है। हादसे में 3 मजदूरों की लगातार मारे जाने की खबरें मिल रही है, और कई और भी मजदूर उसमें दबे हो सकते हैं, और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद कुमार भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। शरद का रुख करते हैं। शरद, ये पूरी इमारत बन रही थी, इसमें मजदूर काम कर रहे थे, अभी वहां के ताजा हालात क्या, कितने मजदूर और हैं जिसमें उनके दबे होने की आशंका है?
4: देखिए, सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि नाला डाला जा रहा था, और ये नाले की खुदाई चल रही थी, बड़ा नाला था सीवरेज का, जिसकी वजह से वहां पर 15 से 20 मजदूर काम कर रहे थे, जो दीवार थी वहां पर होटल की, वो दीवार पीछे की तरफ गिर गई है, जिसमें बड़ी दीवार गिरी है जिसकी वजह से उसमें मजदूर दब गए हैं। तीन लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, मगर कहा जा रहा है कि वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो बता रहे हैं कि संख्या इससे ज्यादा है। ये जयपुर से आमेर तहसील है, आमेर तहसील में ताला मोड़ की घटना है चांदबाजी से ठीक पहले, जहां पर एक होटल के पीछे निर्माणाधीन जो बड़ा नाला था वो तैयार हो रहा था, जिसकी वजह से मजदूर बड़ी संख्या में थे। फिलहाल वहां पर एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम पहुंच रही है। जो घायल है उनमें से आसपास के आमेर के अस्पताल में उन्हें पहुंचाया गया है। बड़ी मशीनरी नहीं है, रेस्क्यू का काम अभी वहां पर स्थानीय लोग चला रहे हैं। जैसे जैसे मलबा हटेगा उसमें पता चल पाएगा कि कितने लोग एग्जैक्ट उसमें थे, लेकिन वहां जो मौजूद है लोग बता रहे थे कि 15 से 20 की संख्या इनकी हो सकती है, और मरने वालों की संख्या वहां पर बढ़ सकती है ऐसा बताया जा रहा है। अभी लापरवाही इस तरह से कही जा सकती है, कितना गहरा नाला खोदा जा रहा था और दीवार जो है उसके नहीं गिरे, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, तो ये लापरवाही किस इंजीनियर की है, स्थानीय प्रशासन की है, ये तो जांच का विषय है। मगर फिलहाल वहां पर पहली प्राथमिकता है कि जो दबे हुए हैं उन्हें निकाला जाए, उन्हें बचाया जाए। कुछ लोग मरे हैं,
2: बिल्कुल
4: इसकी पुष्टि वहां पर मुझ लोगों ने की है। जी
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, लगातार हमारे सहयोगी शरद बता रहे थे। देखिए एक होटल के पीछे एक नाले की दीवार बन रही थी जब यह हादसा हुआ, और इसमें लापरवाही क्या है इसको लेकर भी जांच आगे की जाएगी। लेकिन अगली खबर का रुख करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शरद। अगली बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर जो सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज अकाल तख्त के सामने पेश हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार ये उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी, अकाल तख्त के जत्थेदारों के साथ बैठक भी खत्म हो गई है। आपको बता दें कि आपके विधायकों और मंत्रियों की बैठक खत्म हो गई है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आपके विधायक और उनके जो नेता हैं उनकी मुलाकात हुई है। आपत्तियों को दूर करने के लिए एक महीने का वक्त दिया गया है। आपको बता दें अकाल तख्त के जत्थेदारों के साथ बैठक खत्म हो गई है, और इस बैठक की तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अकाल तख्त के जत्थेदारों ने एक महीने का वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्रियों को दिया है, ताकि इन आपत्तियों को खत्म किया जा सके या इनको को रिजॉल्व किया जा सके। आपको बता दें कि इस पूरी बैठक के अंदर ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि दूसरी पार्टियों के सिख नेताओं को भी बुलाया गया था, और उन्हीं के साथ अकाल तख्त की बड़ी बैठक जिसमें एक महीने की आपत्तियों को दूर करने के लिए एक महीने की मोहलत दी गई है। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जो अब महाराष्ट्र से टीईटी पेपर लीक को लेकर आ रही है। इसका मुख्य आरोपी जो है विजेंद्र गुप्ता, उसको लेकर उसका बिहार कनेक्शन भी सामने आया। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही आज तक ने इसका एक्सक्लूसिव, आप कह सकते हैं कि इसका एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें इसके इन्वॉल्वमेंट को लेकर, इसके पूरे के पूरे नेटवर्क को लेकर बड़े खुलासे किए गए, जिसमें खुल्लम खुला ये बात कहता हुआ कबूल करता हुआ है कि इसका काम है, इसका बिजनेस है। और इसी के बाद अब इस महाराष्ट्र के टीईटी पेपर लीक मामले पर भी इसके सीधे इन्वॉल्वमेंट, इसके नेटवर्क की सीधे इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि 25 साल से पेपर लीक के धंधे में विजेंद्र गुप्ता की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है। कहा जा रहा है कि 25 साल से ये इस काम को कर रहा है। महाराष्ट्र के टीटी पेपर लीक में एक बड़ा खुलासा हुआ है, और आपको बता दें कि 25 साल से लगातार ये काम कर। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इसके इन्वॉल्वमेंट में कहां कहां पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड का नेटवर्क फैला हुआ, ये भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। पेपर लीक माफिया की तलाश कई राज्यों में की जा रही है, इसको लेकर रेड भी की जा रही है, पुलिस की अलग अलग टीम काम इस पे कर रही है। महाराष्ट्र के टीटी पेपर लीक के मास्टरमाइंड की तलाश लगातार अब भी की जा रही है, और खास बात ये भी कि बिहार के पटना समस्तीपुर में महाराष्ट्र पुलिस की तलाश अब भी जारी है, अब भी इसके बारे में जानकारियां हासिल की जा रही है। और बिहार के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी है, और इस यहां पर भी लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो गश्त कर रही हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल कर रही हैं। और देखिए हम आपको बता रहे हैं बिहार के अलावा कई राज्यों में पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार इसकी तलाश में है, और इसका जो नेटवर्क है 25 साल से वो इसी धंधे में, इसी बिजनेस में लगातार काम कर रहा है। इससे पहले भी विजेंद्र, आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता का कुछ दिनों पहले आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, कई बड़े खुलासे किए थे, आपको वो भी दिखाते हैं।
1: जेल जाने का था, जेल कर गए, फिर परसों से यही खेल करेंगे।
5: आप कैसे यूपीएससी वाला किए थे, वो कौन सी कंपनी?
1: एमपीपीएससी।
5: हाँ,
1: इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होगा।
5: किसका नाम?
1: बेदीराम जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे, विद्यार्थी लायक था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गया, साथ में धरा गया, जेल चल गया। कई बार जेल जाने का था, जेल कर गए, फिर परसों से यही खेल करेंगे।
5: आप कैसे यूपीएससी वाला किए थे, वो कौन सी कंपनी?
1: एमपीपीएससी।
5: हाँ,
1: इस देश के सबसे बड़े पेपर माफिया बेदी राम।
2: और अगली खबर अयोध्या से, जहां पर चंपत राय ने पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज किए। बताया जा रहा है कि देखिए, चंपत राय के इस्तीफे देने के बाद ही पुलिस ने उनको बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया। और पुलिस लगातार जो एसआईटी की टीम है वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इसके अलावा जो अयोध्या पुलिस है वो भी अपनी तरफ से तफ्तीश इसमें कर रही है। इस मामले में आपको बता दें, चढ़ावा शुरू हो गया है, जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले पर चंपत राय के बयान दर्ज किए गए हैं, और जो टीमें हैं वो लगातार उन बैंक को भी नोटिस दिया गया है, जहां पर अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत 70 से 80 लोगों को नोटिस किया गया है। चढ़ावा चोरी केस में जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। कई लोगों को नोटिस दिए गए हैं। आपको बता दें कि अनिल मिश्रा समेत कई लोगों को इस मामले पर नोटिस जारी किए गए हैं। चढ़ावा चोरी केस में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। कई लोगों को फ्रेश नोटिस जारी किए गए हैं। गोपाल राव पर भी समेत 70 से 80 लोगों को नोटिस दिए गए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सिमर चावला भी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हैं। सिमर, देखिए, कई लोगों के कहा जा रहा है कि 70 से 80 लोगों को नोटिस जारी किया गया, इसमें लोग कौन कौन से शामिल है? क्या सिर्फ कमेटी ट्रस्ट के लोग हैं या फिर बाहरी लोग भी इसमें शामिल है?
3: सुमित, आपको बता दूं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो लगभग 70 से 80 जो नोटिस हैं वो सर्व कर दिए गए हैं, जिसमें से बैंक अधिकारी मौजूद हैं। बैंक ऑफिशियल्स जो हैं वो, जो लगता है पुलिस को कि जिनकी जिम्मेदारी थी नोट की गिनती से लेकर या जमा कराने में लेकर, वो भी इसमें शामिल हैं। चंपत राय से पूछताछ पुलिस पहले ही कर चुकी है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है। और ट्रस्ट के जो सीनियर मेंबर्स हैं, जिसमें गोपाल राव और अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं, इनको भी नोटिस इशू कर दिया गया है और जाँच को ज्वाइन करने के लिए इनको नोटिस दिया गया है। आपको बता दूँ कि ये आरोप कई सामने आए हैं। पुलिस की माने तो कई ऐसे जो आरोपी हैं जो फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उन्होंने अपने फोन से जो चैट्स हैं वो डिलीट कर दी है, जिसके लिए उन सभी आठ लोग आरोपियों का जो फोन है वो FSL भेजा जा रहा है फॉरेंसिक टीम में, ताकि उन चैट्स को रिकवर करा जा सके और ये देखा जा सके ये किस तरीके की चैट्स थी, किससे हुई थी और क्या क्या इसमें पूरा जो मामला था वो सामने आया है। आपको बता दूं कि 7 जो है लगभग बैंक, उनको जो है नोटिस इशू किया गया है, जिसमें स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक तमाम बैंक शामिल है। इसके साथ ही इसमें ट्रस्ट के मेंबर्स है जो इसमें शामिल है। ऐसे कई लोग जिनका ये दावा था कि उन्होंने चढ़ावा दिया, लेकिन उस चढ़ावे को उनको रसीद नहीं मिली, उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। कई लोगों ने टिन्नू यादव समेत कई अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी है, उन सभी को इसमें नोटिस जारी किया गया है और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की जो बात है वो की जा रही है। तो एक बड़ा अपने आप में जो पुलिस ने वो अपनी तेजी लाई है इन्वेस्टिगेशन के क्रम में। अब देखना यह है कि और क्या नए फैक्ट जो है इस पूरे मामले में आते हैं। ऐसे समय में जब जुडिशियल कस्टडी जो है आज वो एक्सटेंड करी जाएगी, पुलिस की ये कोशिश रहेगी कि जुडिशियल कस्टडी के लिए जो है एप्लीकेशन लगाई जाए और जो तथ्य कल की डेट में सामने आए थे उनको कोर्ट में रखा जाए। सूत्रों ने यह भी बताया कि आज पुलिस कस्टडी नहीं ली जाएगी, कुछ दिनों बाद जब पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य होंगे जिनको वो कन्फ्रंट करना चाहेगी या रिकवरी के लिए जाना चाहेगी, तब पुलिस कस्टडी मांगी जाएगी। फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है पेशी हो रही है, अब देखना यह है कि क्या निकलकर सामने आता है।
2: बिल्कुल सिमर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। सिमर चावला में बता रहे थे कि देखिए, कई लोगों को नोटिस जारी किए गए, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये देखा जाएगा कि आखिरकार जब सबकी स्टेटमेंट को मिलाया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिरकार कोई जो बड़ा डिफरेंस आता है तो फिर उसको दोबारा से बुलाया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर अब तक का अपडेट क्या है, ये भी आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि चढ़ावा चोरी मामले पर चंपत राय का बयान दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि उनके बयानों को दर्ज कर लिया गया, उनसे लगातार स्टेटमेंट दी गई उनके इस्तीफे के बाद, अब उनके बयान दर्ज किए गए। 3 बैंक को नोटिस भी भेजा गया। आपको बता दें कि 3 बैंक अधिकारियों को, उनके बैंक के लोगों को नोटिस भी भेजा गया, ताकि इस पूरे मामले पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। तीसरे बड़े अपडेट यह है कि खाते और लॉकरों की जाँच की जा रही है, उसकी जाँच भी की जाएगी। और फिर तीसरा बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, इन बैंक में मौजूद खाते और उनके लॉकरों की जांच भी की जाएगी। ये भी जांच के दायरे में आएगा कि आखिरकार किस किस के बैंक अकाउंट में कितने पैसे गए और बैंक कर्मियों से पूछताछ हुई है। देखिए, बैंक कर्मियों से इन्वॉल्वमेंट को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि बैंक के लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी था और इसी वजह से बैंक के कई अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है। 4 बड़े अपडेट हमने आपको बताया कि चंदा चोरी को लेकर क्या बड़े अपडेट है। 5वां बड़ा अपडेट था कि वकील नहीं लड़ेंगे केस। वकीलों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो इन आरोपियों के केस नहीं लड़ेंगे और किसी को केस लड़ने भी नहीं देंगे। आपको बता दें कि ये भी एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि आज इन सभी आरोपियों की पेशी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी पेशी होगी। लेकिन वकीलों की तरफ से क्या विरोध किया गया, क्यों लगातार इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम ये केस नहीं लड़ेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं।
6: क्या हमारे साथ एसोसिएशन के महामंत्री जसवाल जी हैं? सर, सबसे पहले तो क्या निर्णय लिया गया, क्या ये एक अचानक से बैठक बुलानी पड़ी आपको?
7: देखिए, अचानक से बैठक नहीं बुलाई गई है, ये तो कई दिन से चल रहा था मामला। जब से यहाँ पर SIT जांच हुई है, SIT जांच केवल बड़े अभियुक्तों को बचाने के लिए किया गया है। सदन ने आज निर्णय लिया कि जो भी अभियुक्त बनाए गए हैं, हम लोग उनके पक्ष में पैरवी नहीं करेंगे, उनके खिलाफ पैरवी करेंगे, उनको सजा दिलाने के लिए करेंगे। और हम लोग CBI जांच की भी मांग करेंगे, जिसके लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को और भी जहां लगेगा वहां पत्र लिखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी रिट दाखिल करेंगे।
6: इस मामले में मतलब कि अयोध्या का कोई भी वकील आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा?
7: सदन ने आज इस तरह से निर्णय लिया है कि यहां पर कोई भी अधिवक्ता जो है केस नहीं लड़ेगा। कोई अधिवक्ता केस लड़ता है तो वो 5,00,000 रुपया हमारे यहां वो जमा करेगा स्वेच्छा स्वरूप, और उसको अभी हम लोग उनको निकाल भी देंगे अपने सदन से। बाकी जो प्रभु राम की इच्छा, जो जैसा होगा।
6: अगर कोई बाहर का वकील आकर वकालतनामा लगाता है तो
7: उसके खिलाफ तत्काल निर्णय लिया जाएगा, जो इसे सोचा समझा जाएगा। हमारा अयोध्या तो नाम इसलिए बदनाम है, तो हम लोग अपना निर्णय जो है तत्काल समय लेंगे, लेकिन उनको भी हम प्रयास करेंगे कि यहाँ फैजाबाद में वकालत नहीं करने देंगे।
6: इतना जरूर है कि अयोध्या के वकील आरोपियों की तरफ से वकालतनामा उनकी पैरवी नहीं करेंगे?
7: बिल्कुल नहीं करेंगे, और करेंगे तो हमारा संघ उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा।
8: अधिवक्ता अभियुक्तों की ओर से वकालत नहीं करेगा। अगर अधिवक्ता वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5,00,000 रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपक राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 CRPC की कार्यवाही की जाएगी।
2: और चलिए अब आपको बताते हैं कि पीलीभीत ने एक बार फिर से सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़े हमले किए। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी हमले किए। उन्होंने देखिए साफ तौर पर कहा कि अगर साइकिल चलेगी तो दंगे होंगे। पीलीभीत में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, साइकिल चलती रहती तो दंगे होते रहते। ये सीएम योगी ने बड़े हमले एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर किए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम योगी कई बार समाजवादी पार्टी पर इस तरीके के स्टेटमेंट या हमले कर चुके हैं। और यूपी में हमने माफिया मुक्त किया है, तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। आइए उन्होंने क्या कुछ और कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
9: वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी, गुंडागिर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना आराम कर देगी, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करना, जहां आज गौशालाएं बन रही हैं, ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाही ने कब्जा की होंगी जरूर। और जब सरकार आई और हम लोगों ने पहले दिन ही घोषणा की थी कि अगर जमीन कब्जा किए हो तो खाली कर दो, नहीं तो अगले 48 घंटे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो 7 पीढ़ियों का भुक्तभोगी होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसी समय सिलेंडर कर दिया था कि नहीं साहब आप जमीन ले लीजिए, बकस दो। विस्थापित हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से विस्थापित है, आप याद करिए दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था। आज जो ये सर्टिफिकेट वितरित हो रहे हैं, इसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। यानी इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी, यही पाप जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा।
2: और अगली खबर प्रधानमंत्री मोदी के सेशल्स दौरे को लेकर है। दरअसल 3 दिन के सेशल्स दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर एकमात्र हिंदू मंदिर का दर्शन भी किया और वहां पर पूजा अर्चना भी की। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जो वहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि भारतीय समुदाय को उन्होंने संबोधित किया, इसके अलावा वहां पर उन्होंने हिंदू मंदिर में दर्शन भी किए। आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के सेशल्स दौरे पर है जहां पर उनका यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। कल भी उन्होंने वहां की संसद को संबोधित किया था और आज वहां पर जो हिंदू मंदिर है उसमें दर्शन और पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री मोदी ने की।

0: और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जो कश्मीर से। दरअसल 36 साल बाद सरला भट्ट के मामले पर अब इंसाफ की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल 36 साल बाद कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल की करेगी जो वहां की स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, और कहा जा रहा है कि सरला भट्ट को लेकर बड़े फैसला कोर्ट सुना सकते। सरला भट्ट मर्डर केस के अंदर आपको बता दें कि 1990 के दौरान सरला भट्ट एक नर्स थी जिनकी हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि उनको पहले टॉर्चर किया गया, उनको पहले अगवा किया गया, उनको टॉर्चर किया और उसके बाद उनकी बॉडी को श्रीनगर में डाला गया, और जिसके बाद उन पर एक मुखबरी या फिर एक तरीके से इन्फॉर्मर का आरोप लगाते हुए आतंकवादियों ने यह अंजाम दिया था। और करीबन
1: जम्मू कश्मीर की जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने सरला भट्ट हत्या मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है और अब वो जल्द ही टाडा अदालत में एक चार्जशीट फाइल करने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिली है उसके अनुसार ये बात सामने आई है कि इस चार्जशीट में JKLF के 5 आतंकवादियों का नाम है जिनमें यासीन मलिक भी शामिल है। दरअसल जो सरला भट्ट है वो एक नर्स के तौर पर कार्य कर रही थी कश्मीर घाटी में, श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और 18 अप्रैल 1990 को JKLF के आतंकवादियों ने उनका अपहरण किया और बाद में उनकी निर्मम हत्या की गई और उनका जो शव है फिर डाउनटाउन श्रीनगर में फेंका गया था। कुछ ही महीने पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने यह आश्वासन दिया था कि आतंकवाद संबंधित सभी मामलों की दोबारा से जांच होगी, और सरला भट्ट हत्या मामले में भी दोबारा जांच हुई और अब SIA ने अपनी जाँच पूरी कर ली है और जल्द ही अब श्रीनगर की टाडा अदालत में इस मामले में चार्जशीट जो है वो फाइल की जाएगी।
0: और चलिए न्यूज रूम लाइव में एक वक्त तक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी
4: नीड बेटर इंटरनेट। Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.

0: order for Jennifer C?
1: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
0: Yeah. Can you handle that much caffeine?
1: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Oh, really? That's great.
1: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Yeah, you just said that.
1: Did you say I just said that?
0: Yeah, I'm cutting you off.
1: I can't have any more? Why not?
2: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
3: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
5: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
10: B-Mark, the mustard specialist since 1933.
11: हमने तब भी सवाल किया था।
12: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
11: हम आज भी सवाल करते हैं।
12: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
11: ऑपरेशन अग्नि,
12: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
11: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
13: In association with
14: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: www.gmail.com.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का बयान पुलिस ने दर्ज किया, जांच में बड़ा अपडेट। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज, अन्य ट्रस्ट पदाधिकारियों से पूछताछ की भी संभावना। अयोध्या राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार किया, याचिका बाद में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया। सीबीआई जांच और सीएजी ऑडिट की भी मांग, मंदिर में दान प्रबंधन पर उठे गंभीर सवाल। स्पेशल कोर्ट में आरोपियों की पेशी की तैयारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर विचार, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने कड़ी व्यवस्था की। अयोध्या चढ़ावा मामले पर गिरफ्तार 8 लोगों की आज न्यायिक हिरासत खत्म, आगे की पूछताछ के लिए पुलिस कर सकती है कस्टडी की मांग। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला लेने की बात कही, आज बार एसोसिएशन की होने वाली आम सभा में इस पर अंतिम फैसला। राम मंदिर चोरी मामले पर नई जानकारी सामने आई है, मामला सार्वजनिक होने से पहले ही ट्रस्ट को इसकी जानकारी थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन तेज हो गया, गिरफ्तार अब सभी आरोपियों के घर पर छापेमारी की गई, टिनू यादव और अविनाश शुक्ला के घर पर भी ली गई है तलाशी। आरोपियों के घर छापे में मिले संपत्ति के पेपर, दस्तावेजों का सत्यापन कराएगी पुलिस, कुछ लोगों के घरों से जेवरात मिलने की भी जानकारी मिली है। राम मंदिर चोरी मामले पर सीसीटीवी में बड़ा खुलासा, 5 जून को आरोपी अविनाश के घर के हाथ में दिखाई दे रहा है काला बैग। चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को फिर से घेरा, कहा कि सीसीटीवी बंद करने की गई है चोरी, इसके लिए नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट है। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, कहा कि समाजवादी सरकार में राम भक्तों पर चली गोलियां, इनके पास विकास का एजेंडा नहीं। अखिलेश को सीएम योगी ने दी चुनौती, कहा कि अगर हिम्मत है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोलकर दिखाएं। राम मंदिर से जुड़े विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तेज नारायण पांडे ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। यूपी 2027 विधानसभा चुनावों के सीट शेयरिंग पर बोले यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी का पलटवार। समाजवादी पार्टी बोले अखिलेश यादव सभी सहयोगियों को बराबर सम्मान देते हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को सलाह, कहा कांग्रेस नेताओं को सीट बंटवारे पर बयान और मथुरा पर सियासी घमासान। यूपी बीजेपी चीफ के लोहिया परिवार से मुलाकात पर सियासी घमासान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि लोहिया परिवार के घर जाने से कोई राजनीतिक बदलाव नहीं होता। यूपी के मंत्री संजय निषाद का समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर तंज, बोले कि दोनों बिना दूल्हे की बारात हैं। पीलीभीत में सीएम योगी ने दी सौगात, 559 करोड़ रुपए की 66 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, कई योजनाओं का लाभार्थियों को वितरण भी किया गया। पीलीभीत जनसभा में सीएम योगी का कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर हमला, विभाजन, कांग्रेस निर्माण, पाकिस्तान निर्माण और तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर लगाया आरोप। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर यूपी में सियासी घमासान, एआईएम के सीएम योगी और बीजेपी समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। सीएम योगी के बयान पर एआईएमआईएम का पलटवार, कहा कि धार्मिक मुद्दों से भटका रही है यूपी की राजनीति।

0: और चलिए न्यूज रूम लाइव में वक्त एक बार फिर से आप हमारी खास पेशकश का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मानसून की एक दहाड़ से कैसे दरकने लग गए हैं पहाड़ और कैसे अब अफरा तफरी या फिर एक बड़े आप कह सकते हैं परेशानियों का सबब बनता जा रहा है ये मानसून। आपको अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारी बारिश और लैंडस्लाइड में अरुणाचल प्रदेश में कैसे आफत आ गई इसकी तस्वीरें, हाईवे बर्बाद हो गए कई जगहों पर लैंडस्लाइड के बाद, अब पूरी की पूरी सड़कें ही उस इलाके में गायब हो गई हैं, कई जगहों पर तेज बारिश की वजह से सड़कें कट गई हैं, आवाजाही ठप हो गई है और 7 जिलों में संघर्ष जारी है। आपको दे संपर्क टूट चुका है। इसके अलावा कई जगहों पर आपको बताया कि चट्टानों से रास्ता खराब हो चुका है, 4 दिन की मूसलाधार बारिश के बाद ये हालात बने हुए हैं।
1: मॉनसून की शुरुआत ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में किस तरह की आफत लेकर आई है वो बताने के लिए अरुणाचल प्रदेश से आई ये खौफनाक तस्वीरें ही काफी हैं। लोअर सियांग जिले में भारी बारिश की वजह से पूरा रास्ता तबाह हो गया है, रास्ते की मिट्टी मलबा बन गई है जो तेजी से नदी की ओर दरकती जा रही है और कुदरत की साफता के बीच अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि जिस वक्त रास्ता मलबा बनकर बहना शुरू हुआ ठीक उसी वक्त एक बाइक सवार रास्ता पार कर रहा था, उसे सतर्क करने के लिए लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके पास जरा भी समय नहीं था, लिहाजा वो लैंडस्लाइड के बीच मिट्टी के साथ बहता चला गया। हालांकि गनीमत रही कि वो मलबे की चपेट में नहीं आया जिससे उसकी जान बच गई। लगातार हो रही बारिश के बीच अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों का हाल ऐसा ही है। ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 13 की। अरुणाचल प्रदेश में हाईवे का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है, सड़कें टूटी हुई हैं, रास्तों पर चट्टान बिखरे पड़े हैं, दूर दूर तक तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। रास्ते पर पेड़ गिरे हुए हैं, कहीं पानी भरा है, कहीं मलबा बिखरा पड़ा है। हालात इतनी खराब है कि इस रास्ते पर आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है। 24 जून को यहां बादल फटने के बाद भारी तबाही मची थी। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, अब तक कई लोग गायब हैं। तब से अब तक वहां राहत और बचाव का काम जारी है। हर ओर बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये रास्ता अरुणाचल प्रदेश के 7 जिलों को जोड़ता है, लेकिन भारी बारिश की मार के बीच हाईवे पूरी तरह ठप हो गया है।
2: देख सकते हैं आप NH-13 जो 7 डिस्ट्रिक्ट को लगता है, जून 24 को एक क्लाउड बस्ट हुआ, बादल फटा, उसके बाद पूसा के निपको कॉलोनी में डैमेज हुए, 5 लोग मिसिंग हुए, एक डेड बॉडी को रिकवर किया गया। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पर ईटानगर से अगर आप आएंगे तो ये NH-13 नेशनल हाईवे 13 आपको कनेक्ट करता है, आगे जाके पूसा 14 को कनेक्ट करता है। लेकिन इस हाईवे की कंडीशन आप देखिए, जगह जगह लैंडस्लाइड, क्लाउड बस्ट के बाद 24 जून के बाद रिकवरी और जो रिस्टोरेशन का वर्क है जारी है। हमने डिप्टी कमिश्नर पापुम परे से भी जाना, लेकिन उन्होंने कहा ये रोड कम्प्लीटली ब्लॉक रहेगी, सगाली पारंग रूट से लोग जा रहे हैं पापुम परे के, अगर जिनको जीरो जाना है ईटानगर, अरुणाचल की राजधानी है ईटानगर, और एक रूट है किमिन का, वो भी बंद है आसाम से किमिन होते हुए। तो आप ये कंडीशन देखिए रोड की, नेशनल हाईवे की, और आपको और भी हम कंडीशन दिखाएंगे।
1: बादल फटने के बाद से रास्ते से मलबा पत्थर हटाने की कोशिशें जारी है ताकि किसी तरह आवाजाही शुरू की जा सके।
3: आप देख रहे हैं पूरा स्ट्रेच में लैंडस्लाइड्स है, इसके बाद पानी अभी भी है, बारिश भी कंटिन्यू हो रही है, तो रोड को रेस्टोर होने में कई दिन और लगेंगे। इधर से हम आधा किलोमीटर आगे ही जा सकते हैं, तो वहाँ पे अभी फिलहाल क्या है कि बारिश और बढ़ रही थी, मैंने उन लोगों को काम भी रोका दिया क्योंकि मशीनरी, मैन पावर, इक्विपमेंट सबको सेफ्टी का जरूरी है। तो जैसे मौसम ठीक होंगे वो काम चलता रहेगा, लेकिन इधर से 5 किलोमीटर सॉरी आधा किलोमीटर तक काफी जाम है, वहाँ पे पानी है, तो क्लाउड बस्ट है, वहाँ पे काफी ओरिजिनल रोड का फॉर्मेशन भी नहीं है, तो इसके आगे फिर काला मिट्टी, उधर से 4 किलोमीटर और है, तो वहाँ तक अभी चल के जाने में भी काफी दिक्कत है।
1: प्रशासन भले ही कुछ दिनों में रास्ता ठीक करने का दावा कर रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर इतना आसान नहीं लग रहा है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि स्थिति काफी खराब है, उन्होंने पहले यहाँ कुदरत की ऐसी तबाही नहीं देखी।
4: पर और पी पंजम डिस्ट्रिक्ट का बीच में एक झरना है, वो पूरा उसका नीचे लेवल ही पूरा दहल गया, पूरा खत्म है, वो कम से कम 5-6 महीना लग जाएगा उसको बनाने के लिए।
5: गाड़ी ये रोड मतलब बंद ही रहेगा,
4: ये बंद ही रहेगा।
5: पारंग से जो जा रहे हैं ठीक है,
4: पारंग का तो पारंग से तो ठीक है, हाँ उधर से सगाली तो क्लियर है, सगाली ब्लॉक नहीं है, यहाँ से गाड़ी जा रहा है,
5: फिर बारिश आ रहा है, फिर डर लग रहा है आप लोग को,
4: क्या बोलेगा, ये तो नेचुरली उसका उन लोग का काम है, तो क्या करेगा हम लोग को, हाँ कुदरत का काम है, हम लोग तो मालूम ही नहीं था ऐसा होगा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग का सपना जैसा ही हो गया।
1: क्लोर सियांग जिले में लैंडस्लाइड से हड़कंप मचा हुआ है। सीजी नदी के किनारों पर बेहिसाब खतरा बढ़ गया है, हालात ऐसे हो गए कि जान पर बन आई। लैंडस्लाइड की वजह से नदी पर मानो डैम बन गया। अब आशंका जताई जा रही है कि अगर ये मलबा बहा तो फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हो सकती है। प्रशासन ने इस इलाके के गंभीर हालात को देखते हुए लोगों को आगाह किया है और कहा है कि वो नदी के किनारों से दूर रहे। अरुणाचल प्रदेश में कुदरत का कहर बरप रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश के बाद राज्य के कई हिस्सों में अचानक आई बाढ़ और भारी भूस्खलन से तबाही मची हुई है। जानकारी के मुताबिक राज्य के करीब 9 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों के टूटने और पुलों के दरकने से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है।
6: दिल से लेके आपका ये पुल तक तो रास्ता बहुत रोड कंडीशन खराब है, उनका जगह जगह तो वन हाईवे है ना, देखिए काम तो करने में कर रहे लेकिन ना जगह जगह रोड भी चला गया, हाँ जगह जगह में ना बहुत, अभी उसमें मेंटेनेंस तो बहुत समय लगेगा।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अभी 4 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में तेज बारिश की वजह से यहाँ हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग से युवराज मेहता के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अरुणाचल प्रदेश से लगातार कई खबरें मिल रही है, लेकिन अब आपको अरुणाचल प्रदेश के दम्बुक से भी एक तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल दम्बुक के एक इलाके में यहाँ पर राफ्टिंग करने गए कुछ सैलानियों की राफ्ट वहाँ पे पलट गई और उसके बाद वो उस तेज बहाव नदी में फंस गए। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने उनको वहां से निकालने की कोशिश की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दम्बुक की तस्वीर है जहां पर इस नदी में राफ्टिंग करने गए लोग वहां पर फंस गए थे। आपको वहां की अफरा तफरी और वहां की सीधी तस्वीरें भी दिखाते हैं।
7: एक यहां जो आप थोड़ा बड़ा घाट दिखाई दे रहा है वहीं पे है, नेक्स्ट जो वहां से आपको लगभग 500 मीटर दूरी पे है, तो तीनों अभी महफूज है। तो अभी मोहनबारी में रेडी है चौपाल जो है चेकअप करने के लिए।
0: सैलानी जो थे कई लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन कुछ लोग वहां पर मौजूद छोटे छोटे आइलैंड या छोटे छोटे जो आप कह सकते हैं कि पत्थर थे बड़े, उन पर जाकर अपना बैठ गए और अपने आप को बचाने की कोशिश की। हालांकि देखिए एनडीआरएफ की टीम लगातार इन लोगों को वहां से रेस्क्यू कराने की कोशिश अब भी कर रही है। एनडीआरएफ के साथ साथ वहां की जिला प्रशासन और वहां पर जो स्थानीय पुलिस बल है वो भी वहां पर तैनात है। इसके अलावा आईटीबीपी की टीम की भी मदद ली गई। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आखिरकार पानी का तेज बहाव आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मानसून की आप कैसे दस्तक के बाद ही वहां पर किस तरीके का आलम है, किस तरीके की दहशत है, ये भी आप देखें कि सैलानियों से कि एक राफ्ट जब पानी में राफ्टिंग करने गई थी वो पलट गई और तेज बहाव के अंदर वो सभी सैलानी फंस गए। हालांकि कुछ सैलानियों को बचा लिया गया, लेकिन अब भी करीबन 2 से 3 सैलानी ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू कराने का काम अब भी जारी है। अरुणाचल प्रदेश के बाद अब बात करते हैं असम की। असम में भी इस बारिश से या फिर आप कह सकते हैं मॉनसून के बाद हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर पानी बहुत तेज़ी से बढ़ गया और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में भी बारिश और ज़्यादा हो सकती है, जिससे लगातार वहाँ पर जो खतरा है वो बढ़ गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये असम की तस्वीरें जहाँ पर लगातार तेज़ बारिश और बाढ़ के बाद ये परिस्थितियाँ बन गई है। कई जिलों के अंदर इस तरीके के हालात बने हुए हैं और माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर और तेज़ बारिश हो सकती है। आपको बताएं कि गृहमंत्री अमित शाह ने खुद जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं हेमंता के साथ बातचीत की और वहाँ की परिस्थितियों के बारे में जायज़ा भी लिया, जानकारी भी हासिल की।
1: तेज बारिश के बीच नदी में सैलाब बढ़ा, उफनती नदी की लहरें पुल तक पहुंची और देखते ही देखते लोहे के पुल को साथ बहा ले गई। पुल पहले बीच से बहा, फिर देखते ही देखते पूरा पुल ही नदी में समाता चला गया। भारी बारिश और बाढ़ की आफत के बीच ये तस्वीरें असम के धीमाजी जिले की। यहाँ कुछ लोग लोहे के पुल के सहारे उफनती नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही दूसरी छोर पर खड़े लोगों ने उन्हें रोक दिया। कुछ देर शोर शराबा हुआ और फिर पुल नदी की लहरों के साथ बहता चला गया। असम में भी बाढ़ की वजह से तेजी से हालात बिगड़ गए। धीमाजी इलाके में करीब 70 गांवों में बेहिसाब संकट बढ़ा है, जिससे 15,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। धीमाजी के बदतर हालात का अंदाजा वहां की तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। घरों में पानी भर चुका है, कमर भर पानी में डूबकर लोग आने जाने को मजबूर हैं। सड़कों पर जलजमाव है, सैलाब का संकट बढ़ता जा रहा है। अब असम के जोरहाट जिले की तस्वीरें देखिए। लगातार हो रही बारिश के चलते पुल एक ओर से ढस गया है। जोरहाट के शहरी इलाका भी सैलाब के बीच घिरा नजर आ रहा है। मुश्किल भरे हालात के बीच अब प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया। बाढ़ प्रभावित इलाके से लोगों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
8: तो हमको आज अराउंड मुरादाबाद में और उसके अंदर नदी का किनारे में एक तमुट।
0: और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर जो दिल्ली की सीएम है वो ईवी पॉलिसी को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
9: हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह जी को, हमारे पावर मिनिस्टर आशीष सूद जी को और एनवायरमेंट मिनिस्टर मजिंदर सिंह सिरसा जी को, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ एक एक पक्ष पे इस पे काम किया और साथ ही स्टेक होल्डर्स के साथ बारंबार मीटिंग्स करी। हर स्टेक होल्डर का जो कहना था, जो उसके सुझाव थे, इसमें इनबिल्ट किए गए और हर लेवल पे चर्चा करने के बाद इस ड्राफ्ट को हम तैयार कर पाए हैं और जिसे आज हमने कैबिनेट में अप्रूव किया। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद ये माननीय एलजी महोदय को आज भेजी जाएगी और 1 जुलाई से ये लागू होने के बाद हर व्यक्ति दिल्ली का जो है वो दिल्ली में ही खरीदी गई गाड़ी के ऊपर इसका लाभ ले पाएगा। मैं निहारिका जी को कहूंगी कि एक बार पूरा डिटेलिंग हमारे सभी साथियों को बताएं।
10: इससे पहले निहारिका जी आपसे संबोधित करें, मैं भूल सुधार करता हूं। इस पत्रकार वार्ता में हमारे कैबिनेट के सहयोगी श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया, उनके विभाग का इसमें योगदान था और नोडल विभाग के नाते ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री भाई माननीय पंकज सिंह जी भी उपस्थित है। मैं शुरू में ईवी पॉलिसी की घोषणा जल्द से हो इस खुशी में उनका परिचय आप सबके समक्ष बोलना भूल गया था, वे भी इस पत्रकार वार्ता में।
11: धन्यवाद मैम। जैसे कि मैम ने कहा कि दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 1 जुलाई 2026 से लागू करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने अभी एलजी साहब को आज भेजी है और हम उम्मीद है कल तक वापस आ जाएगी। इसमें टेरी की जो स्टडी थी 2018 की, इसके अनुसार दिल्ली में जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है उसमें से 33% व्हीकुलर पॉल्यूशन कमर्शियल गुड व्हीकल से होता है और 46% टू व्हीलर और थ्री व्हीलर से होता है। और जो कमर्शियल गुड व्हीकल है उसमें से 80% जो दिल्ली में है वो N1 है, जिसको हम 3.5 टन तक का छोटा हाथी या छोटा ट्रक कहते हैं। तो इस पॉलिसी में इन 3 कैटेगरीज पे स्पेशली फोकस किया गया है कि इसकी पुरानी फ्लीट को कन्वर्ट करके प्योर ईवी में हम इसको प्रोत्साहित करें। इसके लिए हमने इस पॉलिसी में टू व्हीलर्स पे 30,000 तक का परचेज इंसेंटिव पहले साल में, दूसरे साल में 20,000 और तीसरे साल में 10,000 परचेज इंसेंटिव पब्लिक के लिए इसमें ऑफर किया है। थ्री व्हीलर्स के लिए यही 50,000, 40,000 और 30,000 है, थ्री व्हीलर ओनली पैसेंजर जिसको हम ऑटो बोलते हैं। और N1 ट्रक्स जो हैं, जो हमारे 3.5 टन तक के ट्रक हैं, उसके लिए 1 लाख तक की सब्सिडी पहले साल में दी जाएगी। ये हमारा परचेज इंसेंटिव का इसमें प्रस्ताव है। इसके अलावा स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिया जाएगा। अगर आप अपनी BS4 या उससे नीचे स्तर की अगर एमिशन नॉर्म वाली आप टू व्हीलर लाते हैं तो आपको इसमें स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी 10,000 रूपये का अलग से दिया जाएगा। थ्री व्हीलर के लिए 25,000 और अगर N1 ट्रक के लिए 50,000।
0: चलिए न्यूज रूम लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
13: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ
14: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
15: Tune in to How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
16: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
17: Sanitary Solutions.
18: प्रधानमंत्री कार्यालय ने चंपत राय से उनके रिकॉर्ड मांगे, हिसाब किताब मांगा, चंपत राय ने मना कर दिया देने से। सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंपत राय से रिकॉर्ड मांगे और चंपत राय ने मना कर दिया। इस देश में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मोदी जी को मना भी कर सकता है। वो मोदी जी ने मान लिया, रिमाइंडर भी नहीं भेजा, मान भी लिया। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि तार कहां तक हैं। चंपत राय के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके सामने मोदी जी भी बेबस हैं। एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया, उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है, चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। सब लोगों की यही मांग है। ये महापाप है, चंदा चोरी, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़, ये महापाप है और इस महापाप को करने वाले सभी राक्षसों को, इनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए।
19: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
20: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
21: Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
0: खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां पर एक सरकारी अस्पताल में इलाज को लेकर गंभीर लापरवाही के आरोप सामने आए और बड़ा सिविल अस्पताल में इलाज के बाद 19 महीने के एक मासूम की आंखों की रोशनी चली जाने का मामला सामने आया। परिजनों ने आरोप लगाया कि सर्दी और आंखों में संक्रमण की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे थे और बच्चे को डॉक्टर ने आई ड्रॉप, इंजेक्शन और अन्य दवाएं दी, जिसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। पहले उसे जिला अस्पताल और फिर एम्स भोपाल में रेफर किया गया। पीड़ित परिवार का पिता का दावा है कि एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि गलत इलाज या चिकित्सा की लापरवाही के कारण बच्चे की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि सीएमएचओ ने पूरे मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी है। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
21: हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है।
1: जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं वो तो खुलेआम घूम रहे हैं।
2: जमपत राय ने स्वीकार कर लिया कि हम चोर हैं, हमने चोरी किया है और हम चोरी में शामिल, इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया।
3: चंपत राय राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव। जब से चढ़ावे में चोरी का खुलासा हुआ है, चंपत राय सवालों के घेरे में है। उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है, उनकी जिम्मेदारी और उनकी नैतिकता सवालों के घेरे में है। अब चढ़ावा चोरी के इस मामले में अब पुलिस जांच में तेजी लाती दिख रही है। आरोपियों के घरों की तलाशी हो रही है, उन्हें जानने वालों से पूछताछ हो रही है। कल यानी रविवार को अयोध्या में पुलिस एक के बाद एक आरोपियों के घर दबिश देती रही। अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रमा शंकर मिश्रा, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, मनीष यादव समेत सभी 7 आरोपियों के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। करीब 1.5 से 2.5 घंटे तक टीमें घर में रही, पूछताछ की गई, लिखा पढ़ी की गई। परिजन कह रहे हैं उन्हें इस लूट कांड की भनक नहीं थी। रमा शंकर मिश्रा के परिजनों का कहना है कि वह लंबे समय से घर नहीं आया है और किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है। इनमें से करीब 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से मिलने की बात सामने आई है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए अनुकल्प मिश्रा पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। पुलिस के अनुसार वह नोटों की गिनती की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेन देन की भी पड़ताल की जा रही है। 2 साल पहले खरीदे गए उसके मकान पर भी आज तक की टीम पहुंची।
4: इस वक्त मैं मौजूद हूं अनुकल्प मिश्रा के घर के बाहर। ये वही घर है जो 2 साल पहले उनके द्वारा खरीदा गया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। सुबह से ही लगभग 6 टीमें अयोध्या पुलिस की अलग अलग आरोपियों के घर में छापेमारी करने का काम कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर हर एक लोकेशन पे यहाँ पर मौजूद है। ये अनुकल्प मिश्रा का घर है, वही जिनके पास ये जिम्मेदारी थी कि चढ़ावे की रकम को गिना जाए, बैंक में जमा कराया जाए। वहां अंदर इनकी बहन से और इनकी माँ से जो है वो पूछताछ की जा रही है।
3: संतोष शर्मा के साथ सिमर चावला, अयोध्या आज तक।

0: चढ़ावा चोरी केस की जांच के दायरे में अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 80 लोग, चंपत राय का बयान दर्ज, कोई वकील नहीं लड़ेगा आरोपियों का केस, फोन से निकलेगी सबकी कुंडली। सेशल्स में हिंदुओं के एकमात्र मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की पूजा और अर्चना, गर्भगृह में है भगवान गणेश की मूर्ति, भारतीय समुदाय के लोगों से भी की मुलाकात, सेशल की संसद में गूंजा नमो मंत्र। बेअदबी मामले पर बढ़ती जा रही है सीएम भगवंत मान की मुश्किलें, पंजाब के 6 विधायकों और मंत्रियों को अकाल तख्त का आदेश, 1 महीने में दूर करे सभी आपत्तियां। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड निकला विजेंद्र गुप्ता, आज तक टेस्टिंग ऑपरेशन में पहले ही हुआ था कैप्चर, दबोचने के लिए बिहार समेत कई राज्यों में दबिश। अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, अमित शाह ने की मुख्यमंत्रियों से बात, मॉनसून की दहाड़ से दरकने लगे हैं पहाड़, पूर्वोत्तर भारत में अभी भयंकर बारिश की आशंका।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: अरुणाचल प्रदेश में बारिश का कहर, सीमा से लगे 7 जिलों का संपर्क टूटा। टाउन बस के बाद नेशनल हाईवे 13 बंद, हाईवे बहाली में लगे लग सकता है 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त। अरुणाचल प्रदेश में आई एक और हैरान करने वाली तस्वीर, डम्बुक इलाके में सिसरी नदी पर चल रहे राहत और बचाव अभियान के दौरान बड़ा हादसा, 4 फंसे लोगों को बचाने गए 7 राफ्टर की नाव तेज बहाव में पलटी, 8 लोगों को बचा लिया गया है, 3 लोग अभी टापू पर फंसे हैं। अरुणाचल प्रदेश के सियांग में भी सामने आई है खौफनाक तस्वीर, भारी बारिश के बाद बड़ी बह गई है सड़क, चपेट में आया बाइक सवार। जोरहाट के चोनाई में भी बाढ़ का कहर, टिकारी नदी में उफान पे 15 से अधिक लोग टापू पर फंसे, राहत बचाव कार्य जारी। जोरहाट के केमी नदी में 300 मीटर लंबा लोहे का पुल बहा, चोनाई की कनेक्टिविटी ठप हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री से राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पर बातचीत की है। शोपियां में मूसलाधार बारिश से तबाही, मुगल रोड पर भूस्खलन, कई वाहन फंसे हैं, यातायात बहाली की कोशिशें अब भी जारी है। बिहार में 100 साल पुराना चंबल पुल नियंत्रित ब्लास्ट से ध्वस्त किया गया, 27 करोड़ की लागत में बनेगा नया पुल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर चंपत राय का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया, जांच में बड़ा अपडेट, आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज कर दी गई है, अन्य ट्रस्ट पदाधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है। अयोध्या राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इंकार, याचिका बाद में सूचीबद्ध तरीके से पेश करने का आदेश दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर जांच तेज कर दी गई है, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक को पुलिस ने जारी किया नोटिस। स्पेशल कोर्ट में आरोपियों की पेशी की तैयारी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर विचार और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने कड़ी व्यवस्था की है। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले पर गिरफ्तार 8 लोगों की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो गया, आगे की पूछताछ के लिए पुलिस कर सकती है कस्टडी की मांग। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला लेने की बात कही है, आज बार एसोसिएशन की होने वाली आम सभा में इस पर अंतिम फैसला होगा। राम मंदिर चोरी मामले पर नई जानकारी सामने आई है, मामला सार्वजनिक होने से पहले ही ट्रस्ट को इसकी जानकारी दी गई थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन तेज कर दिया गया, गिरफ्तार सभी आरोपियों के घर पर छापेमारी की गई, टीनू यादव और अविनाश शुक्ला के घरों की ली गई है तलाशी। आरोपियों के घर पर छापे से मिले हैं संपत्ति के पेपर, दस्तावेज का सत्यापन कराएगी पुलिस, कुछ लोगों के घरों पे जेवरात की बरामदगी भी की गई है। राम मंदिर चोरी मामले पर CCTV में बड़ा खुलासा, 5 जून को आरोपी अविनाश के हाथ में दिखाई दे रहा है काला बैग। चढ़ावा चोरी पर अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर फिर से घेरा है, कहा है कि CCTV बंद करके की गई है चोरी, इनके लिए नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट है। अखिलेश यादव ने बयान पर सीएम योगी का पलटवार, कहा कि SP सरकार में राम भक्तों पर चली गोलियां, इनके पास विकास का एजेंडा नहीं है। अखिलेश यादव को सीएम योगी ने दिया चुनौती, कहा कि अगर हिम्मत है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोलकर दिखाए। राम मंदिर से जुड़े विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तेज नारायण पांडे ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। यूपी 2027 के विधानसभा चुनावों की सीट शेयरिंग पर बोले सीएम यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी का पलटवार भी आया था। समाजवादी पार्टी बोली है कि अखिलेश यादव सभी सहयोगियों को बराबर सम्मान देते हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को सलाह दी गई है, कहा कि कांग्रेस नेताओं को सीट बंटवारे पर बयानबाजी से बचना चाहिए। लखनऊ में 2027 को लेकर बीजेपी का कमंडल दाव, लोहिया परिवार की मुलाकात और मथुरा पर सियासी घमासान। यूपी बीजेपी चीफ ने लोहिया परिवार से मुलाकात पर सियासी घमासान हो गया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरे ने कहा कि लोहिया परिवार के घर जाने से कोई राजनीतिक बदलाव नहीं होता। यूपी मंत्री संजय निषाद का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तंज, बोले हैं कि दोनों बिना दूल्हे की बारात है। पीलीभीत में सीएम योगी ने दी है सौगात, 569 करोड़ रुपए की 66 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। पीलीभीत जनसभा में सीएम योगी का कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर हमला, विभाजन, पाकिस्तान निर्माण और तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर लगाया आरोप। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मुद्दे पर यूपी में सियासी घमासान, AIMM ने सीएम योगी और बीजेपी समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। सीएम योगी के बयान पर AIM का पलटवार, कहा कि धार्मिक मुद्दों से भटका रही है यूपी की राजनीति। संभल में 101 करोड़ की सरकारी जमीन पर 60 साल पुराना फर्जी पट्टा रद्द, राज्य सरकार के नाम दर्ज, कब्जा हटाने की कार्रवाई जारी। दिल्ली दौरे पर सीएम सम्राट चौधरी नितिन गडकरी से मुलाकात की, बिहार से जुड़ी 15,000 करोड़ रुपए की सड़क और पुल परियोजनाओं पर होगी चर्चा। केंद्र से वित्तीय स्वीकृति और राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध करने सीएम सम्राट चौधरी, बिहार के अंधा की सुचारू रूप से दिशा देने की महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही। राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर खाली करने की आज आखिरी मोहलत है, तेजस्वी के घर शिफ्ट होने की चर्चा तेज हो गई है। पटना फायरिंग कांड में फैजल खान के दोनों गार्ड्स को अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहे थे राइफल, लाइसेंस रद्द करने की तैयारी है। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले पर बड़ा खुलासा हुआ, मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की तलाश में पुलिस ने कई राज्यों में छापेमारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक बिहार का रहने वाला विजेंद्र गुप्ता की टीईटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आज तक ने 2024 में पटना में किया था विजेंद्र गुप्ता का स्ट्रिंग ऑपरेशन, 25 सालों से पेपर लीक का काम कर रहा है विजेंद्र गुप्ता। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले पर भिवंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को और आकाश, राजीव और धीरज को किया गिरफ्तार। राजस्थान हरियाणा के यमुना जल परियोजना पर आज लगेगी मोहर, 32 साल पुराने यमुना जल विवाद पर आज ऐतिहासिक समझौता होगा। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगा MOU, शेखावटी को मिलेगा यमुना का पानी। 95 किलोमीटर पाइपलाइन से राजस्थान पहुंचेगा यमुना का पानी, सीकर, चुरू और झुंझुनू में मिलेगी पेयजल की राहत। मध्य प्रदेश के सागर में सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, 19 महीने के मासूम की गई आंखों की रोशनी। सर्दी और इन्फेक्शन के इलाज के लिए मासूम की आंखों की रोशनी खत्म होने का आरोप है, पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है, जांच के लिए समिति गठित की गई है। अकाल तक जथेदारों का सख्त आदेश, 1 महीने में आपत्तियों को दूर करें, एंटी सिक्लेंज कानून पर रोक लगाने की मांग की गई। विधायक और मंत्रियों को निर्देश दिए गए, अकाल तख्त ने कहा है कि विधायी प्रक्रिया के सुधार की सभी आपत्तियों को समाधान करें। कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में SIR प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, 5 अगस्त को ड्राफ्ट और 7 अक्टूबर को अंतिम मतदान सूची तय की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट में महिला वायुसेना शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों की याचिका, परमानेंट कमीशन न देने पर फैसले को दी गई है चुनौती। कोलकाता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति मामले में तत्काल सुनवाई से कर दिया इंकार, जुलाई में होगी नियमित सुनवाई। बंगाल विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी पेश करेंगे 5 अहम विधेयक, दंगा, तोड़फोड़ और असामाजिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई। बीजेपी ने कहा कि ऐतिहासिक होगा आज का दिन, TMC के बागी विधायकों के रुख पर होगी नजर। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने यूसीसी को लेकर बयान देते हुए कहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, इसलिए यहां यह साफ है कि यूसीसी लागू होगा। 36 साल बाद कश्मीर में नर्स सरला भट्ट हत्याकांड में जगी इंसाफ की उम्मीद। श्रीनगर की अदालत ने पेश हुई चार्जशीट, 5 आरोपियों में जेकेएलएफ के यासिन मलिक भी शामिल। नोएडा 119 में अरियन सोसाइटी में भीषण आग है, 22वीं मंजिल पर लगी फैली है आग। एसी यूनिट में ब्लास्ट है, आग लगने की आशंका है। अरण्य सोसाइटी में मची अफरा तफरी, फायर यूनिट और पुलिस मौके पर तैनात। छत्तीसगढ़ के बोरेला में बेकाबू कार में कई बाइकों को जोरदार टक्कर मारी, सीसीटीवी में कैद हुआ है पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाला है हादसा। नोएडा सेक्टर 9 में 2 झोंकियों में लगी आग, दमकल मौके पर पहुंची है, आग बुझाने का काम जारी है। दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर पर शख्स ने लगाई यमुना में छलांग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ और दमकल की टीम तलाश में जुटी हुई है। पटना के दीदारगंज में डालडा गोदाम में भीषण आग लगी है, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आसमान को छूती दिखी आग की लपटे, धुएं का खनक को बार भी देखा, बीती रात लगी भीषण आग। अहमदाबाद में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। लखनऊ के गोमती नगर में देर रात फायरिंग, 2 गर्लों की भिड़ंत, चाय की दुकान पर विवाद के बाद चली है गोलियां, रेस्टोरेंट कर्मचारी घायल हुआ है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड में श्रेष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र गुफा में भगवान शंकर की हुई है प्रथम पूजा, एलजी मनोज सिन्हा ने भी बाबा भोलेनाथ की पूजा की है। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्री, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, बम बम बोले और हर हर महादेव जयकारों से गूंज उठा जम्मू। कुलगांव में अमरनाथ यात्रा को से पहले नेशनल हाईवे पर जवानों ने किया मॉक ड्रिल, यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा अभ्यास। अभ्यास में आतंकी हमले, आईडी विस्फोट और गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों पर किया जा रहा है पूर्ण अभ्यास। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, आज देव स्नान पूर्णिमा का पर स्नान यात्रा का होगा आयोजन। पुरी में स्नान यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर में भव्य दिव्य तैयारियां की गई, जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा का होगा पवित्र जल से स्नान। स्नान पूर्णिमा पर गजानन विशेष में किया जा रहा है श्रृंगार, 108 कलश पवित्र जल से कराया जा रहा है पवित्र स्नान। एकादवास के बाद 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा, 15 दिनों तक एकादवास में रहेंगे भगवान। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा पर मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, मंदिर में टीका अपना माथा, भगवान का लिया आशीर्वाद। श्रद्धा कपूर की मच अवेटेड फिल्म ईटा का टीजर हुआ रिलीज, 28 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। वेलकम टू जंगल का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 3 दिनों में 65 करोड़ की ज्यादातर कमाई की है। 3 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म अल्फा, फिल्म में आलिया भट्ट, शर्वरी और अनिल कपूर और बॉबी देओल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे शर्वरी और वेदांग रैना, मैं वापस आऊंगा पर एक्ट्रेस ने लिखा इमोशनल नोट, कहा कि दर्शकों ने फिल्म को अपनाया है। एक्टर जैकी श्रॉफ ने खाने के लिए पान के पत्ते पर कत्था लगाते हुए आए नजर, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल।

0: और खबरों को सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की बात करते हैं जिसने सुनकर और देखकर देश हैरान है। 25 साल के युवक केतन अग्रवाल को गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला गया। आरोपी उसकी मंगेतर और मंगेतर के दोस्त लगातार साजिश इसके दायरे में, और लेकिन सवाल यह है कि जिनका जवाब तलाशने पुणे पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। सवाल यह है कि केतन को क्यों मारा गया, इसका पता अब तक नहीं लग पाया। हत्या की असल वजह क्या है और अब तक इस पर सस्पेंस जारी है। सवाल है और सवाल के साथ नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या सबूत हैं कि पुलिस कह रही है कि जांच आगे बढ़ेगी। पुलिस जांच पर लगातार की जा रही है। सीन की रिक्रिएट भी किया गया। इस मामले में सिया के भाई साहिल गोयल से भी पूछताछ की गई। आज तक ने साहिल गोयल से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। आइए आपको सुनाते हैं।
1: 7 दिन की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद आज सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों की कोर्ट में पेशी होगी। थोड़ी देर में ही 7 दिन का इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद अब पुलिस उन्हें कोर्ट में लेके जाएगी और 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांग सकते हैं। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिवली हमारे साथ है साहिल गोयल, जो सिया के सगे भाई है। इस पूरे मामले में साहिल गोयल ने परसों अपना बयान भी दिया था, आज कोर्ट में पेशी है। क्या कहेंगे?
2: जो भी कोर्ट बोलेगा सर उसका हम पालन करेंगे सर, जो भी कोर्ट का डिसीजन रहेगा उसका हम देखेंगे सर।
1: आपके लॉयर को लेकर कुछ इश्यू चल रहा है आपने कहा?
2: मेरे लॉयर को लेकर इशू है जो आशुतोष श्रीवास्तव है, उनको हमने कभी भी हायर नहीं किया है, वो हमारे साथ कभी भी कोऑर्डिनेशन में कभी भी कांटेक्ट में नहीं आए हैं। हम विपुल डिस्टिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बात हमने जब उनको भी बताई तो वो हमको थ्रेट कर रहे हैं।
1: क्या आपको लॉयर थ्रेट कर रहे?
2: हाँ जी।
1: तो कुछ पुलिस वुलिस से बात हुई आपकी?
2: इस टाइम पे अभी तक बात नहीं हुई है सर।
1: पुलिस से बात नहीं हुई?
2: अभी तक बात नहीं हुई सर।
1: तो ये जो मीडिया में आशुतोष श्रीवास्तव आप बोल रहे हो, जो अभी आपके बिहाफ ऑफ यू वो बाइट्स दे रहे हैं, मीडिया के साथ बात कर रहे हैं, क्या वो आपके लॉयर नहीं है?
2: हमारे लॉयर नहीं है, हमने विपुल डिस्टिंग को हायर किया है, उनकी सर्विसेज के लिए हमने उनको अप्रोच किया है, हम उनके साथ 4 दिन से इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं सर।
1: ओके, लेकिन मैंने उनसे बात की थी परसों, तो उनका ये कहना था कि सिया ने इसमें उन्हें दस्तखत दी है।
2: ये उन्होंने फोर्सफुली कुछ किया है कुछ नहीं है मुझे मालूम नहीं है सर, ये उन्होंने लॉकअप में उनका सिग्नेचर लिया है, हमको कुछ इस चीज के बारे में उन्होंने इन्फॉर्म किया नहीं है, हमको कॉन्टेक्ट किया नहीं, हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन रखा नहीं है इस चीज के ऊपर से सर। इस चीज के ऊपर हम लोगों ने आज कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि हमारे जो प्रोसीडिंग लॉयर है इसके आगे वो विपुल डिशिंग रहेंगे।
1: सो आपका एफिडेविट अब फाइल हो चुका है, क्योंकि 1 घंटे में तो आपको बहन को कोर्ट में लाया जाएगा।
2: फाइल हो चुका है सर।
1: फाइल हो चुका है, उसकी दस्तखत भी है उस
2: पर। किसकी? वो पेंडिंग प्रोसेस है सर।
1: ओके, वो पेंडिंग प्रोसेस है। तो मुझे आप ये बताएं थोड़ा शुरू से, क्योंकि आप इस पूरे मामले में थे शुरू से, आपकी बहन है जिसने सब कुछ किया है। शुरू में जब शादी का फाइनल हुआ था, जब एंगेजमेंट हो रही थी, तो क्या आपको इस सब बात का अंदाजा था?
2: सर ये मैंने पुलिस स्टेटमेंट में पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में उनको मैंने बताया है, आगे आपको कोर्ट हियरिंग में ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू सर।
1: और बस एक दो बातें हैं, आप भी निकल रहे थे बाली के लिए?
2: हाँ जी।
1: तो ये हमने ड्राइवर से बात की, तो ड्राइवर का कहना था कि आपकी बहन वापस आई थी और उसने कुछ पासपोर्ट वहाँ से निकाला, एंड शी टोर दैट पासपोर्ट। तो क्या आपको याद है कि एग्जैक्टली किस तरीके से वो सीक्वेंस हुआ था?
2: हम लोग उतरे थे सर, उसके बाद मैं वॉशरूम गया था, वी वेंट टू स्टारबक्स, मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा था, इट वॉज लेट एट नाइट, उसकी वजह से आई वॉज अ बिट स्लीपी, तो मैंने स्टारबक्स में कॉफी ऑर्डर की थी। आई नो ओनली अबाउट दैट मच सर।
1: तो ये बाली का प्लान आपका फाइनल था लेकिन?
2: हाँ जी
1: फाइनल था, वो पासपोर्ट की वजह से कैंसिल हो गया।
2: हाँ जी।
1: ओके, बस और एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, अब ये सब कुछ होने के बाद क्या आपकी बहन के साथ बात हुई?
2: नहीं सर।
1: और आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया इस पूरे मामले में, वो एग्जैक्टली क्या उसमें आपका कहना है, थोड़ा ब्रीफ दीजिए।
2: व्हाट स्टेटमेंट सर?
1: स्टेटमेंट जो आपने रिकॉर्ड किया है उसमें एग्जैक्टली क्या आपने ब्रीफिंग दिया है?
2: वो मैंने पुलिस को बता दिया सर, आज वो पुलिस आपको कोर्ट ऑफ लॉ में बता देंगी सर। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू। साहिल गोयल थे हमारे साथ, सिया के भाई है, उनका कहना है कि बाली के प्लान में वो शामिल थे, बस इतना ही नहीं बल्कि ये सब कुछ जब हो रहा था तभी वो उनके साथ थे, लेकिन शुरू में जब सिया की शादी के बाद जब सिया उस पर राजी नहीं थी, तो क्या साहिल थे जो उन्होंने आपके फैमिली के साथ बात की? वो भी कुछ बातें ऐसी हैं जो साझा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो भी कोर्ट की तरफ निकल चुके हैं। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओम करवा आज तक पुणे।
0: और एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी। अब कुछ ही देर बाद पुणे की अदालत में सिया और चेतन चौधरी की कोर्ट में पेशी होनी है। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद ये पेशी हो रही है, लेकिन इससे पहले पुलिस ने सिया के साथ क्राइम सीन पर जाकर उसे रिक्रिएट किया था, उसे लेकर कई अहम खुलासे भी हुए। देखिए इस रिपोर्ट में।

0: लोहगढ़ का ये किला और इस किले की वो गहरी खाई जहां केतन अग्रवाल की जान चली गई। वहां पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया तो केतन को धक्का देने वाले सवालों पर और इस साजिश के अलग अलग सवालों का क्या जवाब मिला, पुणे पुलिस को मौके से क्या साक्ष्य मिले। पुलिस रविवार को खाई के पास पुतला लेकर पहुंची थी तो क्या क्या हुआ था, 18 जून को कैसे केतन को खाई में धक्का दिया गया था, कैसे केतन 340 फीट गहरी खाई में गिरा होगा, खाई में गिरने के बाद जब केतन तड़प रहा था, जिंदगी की भीख मांग रहा था, तब उसकी मंगेतर सिया क्या कर रही थी, जब चेतन ने केतन को धक्का दिया था उसके बाद सिया और चेतन ने क्या किया था, ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए पुणे पुलिस अथक प्रयास कर रही है। 18 जून को ही वारदात की जांच का सबसे अहम पड़ाव था लोहगढ़ किले का ये इलाका। ये वही हिस्सा है जहां केतन को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया गया। वो 340 फीट गहरी खाई में गिरा और दम तोड़ दिया था। उलझाऊ और सस्पेंस भरे सवालों के साथ पुलिस 28 जून को ठीक उसी खाई के पास पहुंची। पुलिस के साथ केतन के वजन जितने भार वाला डमी भी था। अब आपको क्राइम सीन को रिक्रिएट किए जाने की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। रविवार की सुबह 7:30 बजे 10 से 15 पुलिस वाले किले में उस जगह पहुंचते हैं। मास्क से चेहरा ढके सिया भी उसके साथ होती है। पुलिस वालों के साथ में एक डमी था, बिल्कुल केतन की कद काठी का, उसके जितना ही लंबाई वाला और उतने ही वजन का। सिया की बताए जगह पर पुलिस जाती है। फिर शुरू होता है उससे सवाल जवाब का सिलसिला। पुलिस ने सिया से एक एक सवाल करती है और उसी के मुताबिक रिक्रिएशन की प्रक्रिया शुरू होती है। पुलिस ने सिया से जाना कि 18 जून को इस खाई के पास और कौन कौन था, चेतन के साथ उसकी क्या बातें हुई, क्या दोनों में किसी बात को लेकर नाराजगी थी, चेतन को सिया ने मौके पर कितनी देर पहले बुलाया था, ऐसे कई सवाल सिया से किए गए। और इसी बीच आता है अब तक का सबसे अहम सस्पेंस। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट करते हुए सिया से कहा कि वो पुतले को खाई में धक्का दे। सिया ने ही पुतले को खाई में धकेला।
1: जो पुतला बनाया गया था वो केतन अग्रवाल के जैसा था, उसी के वजन का था, ताकि वो नीचे जाने के बाद ये पता चले और ये फाइनलाइज हो सके कि किस तरीके का इम्पैक्ट था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इम्पैक्ट के बाद पुतले के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो देखना पुलिस चाह रही थी और उसी की जांच फाइनलाइज हो गई। सबसे अहम यह है कि उसके बाद कुछ फॉरेंसिक के डिटेल्स थे वो कलेक्ट किए गए और सिया को लगभग 10 से 10:30 बजे तक किले को उतरने की शुरुआत हुई और उसी के बाद उसे वापस इसी लॉकअप में लाया गया।
0: खुलासे के मुताबिक सिया और चेतन ने हत्या की गहरी साजिश रची। उसी दौरान तय हुआ था कि किले में ऊंचाई पर पहुंचकर सिया अचानक बैठेगी। ये संकेत होगा कि अब केतन को खाई में धक्का देना है। 18 जून को कुछ ऐसा ही हुआ। सिया बैठी, इशारा मिलते ही चेतन ने तय प्लान के मुताबिक केतन को खाई में धक्का दे दिया। ऐसे में रिक्रिएशन के दौरान सिया ने पुतले को धक्का दिया।
2: उसमें कि उसको वहां पे ले जाके घटना कैसे घड़ी है, क्या एक्चुअली हुआ वहां पे, उसको कवर किया गया है और उसके साथ आगे जो इंट्रोगेशन या जवाब जवाब हो रहे हैं उसमें जो जो गोष्टियां अभी हमारे सामने निष्पन्न हो रही हैं वो इन्वेस्टिगेशन के चलते उनको कॉन्फिडेंशियल रख के मैं इतना बोल सकता हूं कि इसमें ये जो केस है इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रगति पर है।
0: अब पुलिस की तैयारी है कि क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाए और अब की बार पुलिस चेतन से पुतले को धक्का देने को कहेगी। पूरे पुलिस की कोशिश है कि सिया और चेतन के गुनाहों से जुड़े सुराग रिक्रिएशन के जरिए हासिल किए जाए, उसे वेरीफाई किया जाए और मामले को अंजाम तक पहुंचाया जाए। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
3: चलो इस वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू? विमल, बोलो जुबा केसरी।
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

0: किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था।
1: केतन के घर वाले आंसुओं में डूबे हैं। श्रद्धांजलि सभा में उसे याद किया जा रहा है। 25 साल के जवान बेटे की जिंदगी अब नहीं रही, लेकिन उसकी याद में परिजन टूट गए हैं। तो दूसरी ओर गिरफ्तार आरोपी सिया के घर वाले चुप्पी साधे हुए हैं। इस वारदात पर वो बोलने को तैयार नहीं। सिया का भाई साहिल जो अब चेहरा छिपाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन तमाम हत्या से जुड़े तमाम सवालों को टालकर आगे बढ़ गया। अब तक की जांच के मुताबिक सिया ने केतन की हत्या की साजिश रची। चेतन ने सिया के कहने पर उसे खाई में धक्का दे दिया। सवाल है कि सिया ने नवंबर में तय शादी से पहले इतना बड़ा और खौफनाक कदम क्यों उठाया? उसका मकसद क्या था? आखिर क्यों मारा? इस सवाल पर बस इतना सा जवाब आया है कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि सिया ने शादी से इनकार क्यों नहीं कर दिया? पुलिस इसी सवाल के इर्द गिर्द दो दिनों में सिया के भाई साहिल और उसके माँ बाप से सवाल जवाब कर चुकी है। पुणे पुलिस ने जिस दिन सिया के साथ क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया, उसी दिन एक टीम ने दूसरे गिरफ्तार आरोपी चेतन से करीब 7-8 घंटे तक सवाल जवाब भी किए हैं। पुलिस की पड़ताल जारी है, लेकिन अग्रवाल परिवार के आंसू सूख नहीं रहे। केतन के परिजन, पड़ोसी और रिश्तेदार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस हत्या का इंसाफ होगा। आज जिया और चेतन की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश करने वाली है, लेकिन इंसाफ की ये लड़ाई अभी लंबी है। अब सभी की नजरें पुलिस की आगे चलने वाली जांच पड़ताल और कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
2: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

चढ़ावा केस की जांच के दायरे में अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत करीब 80 लोग, चंपत राय का बयान दर्ज, कोई वकील नहीं लड़ेगा आरोपियों का केस, फोन से निकलेगी सबकी कुंडली। सेशल्स में हिंदुओं के एकमात्र मंदिर में पीएम मोदी की पूजा अर्चना, गर्भगृह में है भगवान गणेश की मूर्ति, भारतीय समुदाय के लोगों से भी भेंट, सेशल्स की संसद में गूंजा नमो मंत्र। बेअदबी मामले में बढ़ती जा रही है सीएम भगवंत मान की मुश्किलें, पंजाब के सिख विधायकों और मंत्रियों को अकाल तख्त का आदेश, एक महीने में दूर करें सभी आपत्तियां। महाराष्ट्र स्टेट पेपर लीक का मास्टरमाइंड निकला बिजेंद्र गुप्ता, आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में पहले ही हुआ था कैप्चर, दबोचने के लिए बिहार समेत कई राज्यों में दबिश।

0: 1000 करोड़ का होगा निवेश, रेखा गुप्ता सरकार की महत्वाकांक्षी नीति।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत की।
0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा विवाद जो है उसकी जांच की, जिसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 70-80 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। उधर जांचकर्ताओं का कहना है कि आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन से चैट डिलीट कर दी थी, डिलीट किया गया डेटा रिकवर करने के लिए अब डिवाइस FSL भेजे जाएंगे। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे विवाद में जिस मामले पर आज राम भक्तों का आक्रोश उबल रहा है, क्या उस चोरी की भनक श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को थी? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि आरोपियों में से एक के घर पुलिस ने 5 जून को ही छापेमारी कर ली थी। इस मामले में पुलिस को घर से कैश भी मिला, इसीलिए अब सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रस्ट ने जानते बूझते समझते इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की? क्या ये सब बदनामी और अपमान के डर से किया गया?
2: क्या चढ़ावे की चोरी होती रही, ट्रस्ट देखता रहा? क्या ट्रस्ट को पता था चढ़ावे में चोरी की हकीकत? आरोपी के घर मिली कैश तो क्यों नहीं कराई FIR? राम भक्त स्तब्ध है, बेचैन है, ये जानकर कि आस्था से चढ़ाए उनके चढ़ावे की चोरी होती रही, उनके विश्वास से खिलवाड़ होता रहा। और अब एक नया खुलासा हुआ है जो और ही विचलित कर देने वाला है। इस खुलासे की बुनियाद ये CCTV फुटेज है। इस CCTV फुटेज में जिस शख्स को देख रहे हैं उसका नाम है अविनाश शुक्ला, चंदा चोरी गैंग का अहम मेंबर, लूट कांड का अहम किरदार। जो काली बैग आप देख रहे हैं उसमें रखी है चोरी की वो रकम जो सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे की ढेर से उड़ाई गई है। सूत्रों की माने तो 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे थे। छापेमारी के दौरान अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5 लाख नकदी बरामद हुई। इस बैग में वही 5 लाख कैश रखी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब 5 जून को ट्रस्ट और पुलिस दोनों को चढ़ावा चोरी की जानकारी थी और पुख्ता सबूत मिल गए थे तो फिर फौरन FIR क्यों नहीं दर्ज कराई गई? मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश क्यों हुई?
3: अविनाश शुक्ला का यह CCTV साफ बता रहा है कि कैसे एक सफेद गाड़ी में पुलिसकर्मी व अन्य लोगों की मदद से अविनाश शुक्ला को बैठाया जा रहा है और इनके पास से एक काले बैग में कहा गया कि 5 लाख रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई। लेकिन दर्ज हुई FIR देर से हुई और कानून के जानकार कहते हैं कि यह FIR में देरी आरोपियों के लिए मददगार साबित हो सकती है।
2: चढ़ावा चोरी के खुलासे से FIR दर्ज होने तक इस पूरे मामले की टाइमलाइन पर गौर करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसे ठंडे बस्ते में डालने की जमकर कोशिशें हुई। 5 जून को ट्रस्ट को धांधली की जानकारी मिल गई, सबूत भी मिल गए, इसके वीडियो सबूत हैं। लेकिन इस मामले में FIR दर्ज हुई 20 दिन बाद यानी 25 जून को। 25 जून को ही पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, यानी 20 दिन तक आरोपी को खुलकर आजादी दी गई कि वो सबूतों से छेड़छाड़ करते रहे, उनका नामो निशान मिटाते रहे। इस बीच सब कुछ हुआ, राजनीति भी खूब हुई, बयानबाजी भी जबरदस्त हुई जो अब तक खत्म नहीं हुई है। चढ़ावा चोरी के इस मामले में चौतरफा थू-थू होने के बाद ही सारे एक्शन हुए हैं, किरकिरी होने के बाद ही SIT का गठन हुआ, जांच हुई, मामला दर्ज हुआ। अब खबर ये भी आ रही कि राम मंदिर ट्रस्ट सिफारिश के आधार पर हुई नियुक्तियों पर सख्त कार्रवाई करेगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उन कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया है जिन्हें तय भर्ती प्रक्रिया के बजाय सिफारिश के आधार पर नियुक्त किया गया था। ट्रस्ट ऐसी सभी नियुक्तियों की समीक्षा कर रहा है और कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। साफ है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बड़ी देर कर दी। ट्रस्ट की नींद खुलते खुलते राम भक्त इतने आहत हो चुके हैं कि उनके घाव जल्द नहीं भरने वाले और न ही ट्रस्ट के दामन पर लगे दाग धुलने वाले हैं। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
0: जिस अविनाश शुक्ला के घर से पुलिस को 5 लाख की नकदी मिली, उसने चंदा मामले के पैसे से कैसे जायदाद बनाई, इस पर एक रिपोर्ट देखिए।
4: इस वक्त मौजूद हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला के अयोध्या वाले घर पे, जहां पर पुलिस फोर्स पहुंची है आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करने के लिए और जानकारी जुटाने के लिए। पीछे आप मेरे देखेंगे तो ये पुलिस फोर्स है। सुबह से ही छापेमारी सभी आरोपियों के घर पे चल रही है, उसी क्रम में अविनाश शुक्ला के घर पर यहाँ पर पुलिस पहुंची थी। जानकारी में सामने आया है कि अविनाश शुक्ला, जो कि प्रतापगढ़ का परमानेंट निवासी है, यहाँ पे ऊपर घर में कई सालों से किराए पर रह रहा था। फिलहाल जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पाया कि गेट पर ताला लगा हुआ है, और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ ही महीनों पहले यहां से अविनाश घर छोड़ के जा चुका है। विजुअल्स में आप देखेंगे तो यहां पर पुलिस की पूरी टीम मौजूद है, हर एक लोकेशन पर एक इंस्पेक्टर लेवल का जो ऑफिसर है वो यहां पर मौजूद है। यहां पर नीचे आप देखेंगे तो एक दुकान भी है, पुलिस ने यहां पर आके पूछताछ की और स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए। कोशिश करेंगे जानने की, क्या नाम है आपका?
5: राहुल कुमार सर।
4: ये बताइए कि यहाँ पर अविनाश शुक्ला के घर पे जो पुलिस छापेमारी करी, यहीं रहते थे?
5: हाँ, मतलब यहाँ पे भी रहते थे और घर पे भी, अपने घर से भी अप डाउन करते थे
4: यहाँ। और यहाँ पर अकेले रहते थे, किसी के साथ रहते थे?
5: नहीं, हम तो अकेले ही जानते हैं उनको।
4: इस तरीके से पुलिस सभी आरोपियों के घर के आसपास जाके पड़ोसियों से और दुकान वालों से पूछताछ कर रही है ताकि जानकारी जुटाई जा सके। कोर्ट में दोबारा आरोपियों को पेश किया जाएगा तो पुलिस के पास पुख्ता जानकारी होनी चाहिए, जिसकी वजह से ही आज सभी आरोपियों के घर पे छापेमारी की जा रही है, ताकि जब शाम को कुछ साक्ष्य या फिर जानकारी उनके पास हो तो वह ऐसे कोर्ट में रखने पाए। फिलहाल जो पता लगा है कि कुछ ही महीनों पहले यहाँ पर जो रेंट पे जो घर था उसे छोड़ के यहाँ पे जाया जा चुका है। अकेले जो है अविनाश शुक्ला यहाँ पे रहता था, कभी कभार अपने घर से आता था, और तमाम जो आरोप उस पर लगे हैं कि वो चढ़ावा चोरी में शामिल था, उसके बाद ये छापेमारी उसी क्रम में की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, अयोध्या आज तक।
0: अयोध्या पर आज कई घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़े। सबसे अहम बात तो ये कि चंपत राय से पुलिस ने पूछताछ की, बयान दर्ज हुआ, अयोध्या पुलिस का भी एक्शन हुआ। अयोध्या पुलिस ने SBI जाकर पूछताछ की है, और इसके साथ ही तीन बैंकों को पुलिस ने नोटिस जारी किया है और कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। उधर अयोध्या के वकीलों ने तय किया है कि वो चढ़ावा मामले के आरोपियों का मुकदमा नहीं लड़ेंगे, न ही बाहर के वकील को केस लड़ने देंगे।
3: क्या हमारे साथ एसोसिएशन के महामंत्री जसवाल जी हैं? सर, सबसे पहले तो क्या निर्णय लिया गया, क्या ये एक अचानक से बैठक बुलानी पड़ी आपको?
6: देखिए, अचानक से बैठक नहीं बुलाई गई है, ये तो कई दिन से चल रहा था मामला। जब से यहाँ पर SIT जांच हुई है, SIT जांच केवल बड़े अभियुक्तों को बचाने के लिए किया गया है। सदन ने आज निर्णय लिया कि जो भी अभियुक्त बनाए गए हैं, हम लोग उनके पक्ष में पैरवी नहीं करेंगे, उनके खिलाफ पैरवी करेंगे, उनको सजा दिलाने के लिए करेंगे। और हम लोग CBI जांच की भी मांग करेंगे, जिसके लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को और भी जहां लगेगा वहां पत्र लिखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी रिट दाखिल करेंगे।
3: इस मामले में मतलब कि अयोध्या का कोई भी वकील आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा?
6: सदन ने आज इस तरह से निर्णय लिया है कि यहाँ पर कोई भी अधिवक्ता जो है केस नहीं लड़ेगा। कोई अधिवक्ता केस लड़ता है तो वो 5 लाख रुपया हमारे यहाँ वो जमा करेगा स्वेच्छा स्वरूप, और उसको अभी हम लोग उनको निकाल भी देंगे अपने सदन से, बाकी जो प्रभु राम की इच्छा जो जैसा होगा।
3: अगर कोई बाहर का वकील आकर वकालतनामा लगाता है तो
6: उसके खिलाफ तत्काल निर्णय लिया जाएगा, जो इसे सोचा समझा जाएगा। हमारा अयोध्या तो नाम इस लिए बदनाम है, तो हम लोग अपना निर्णय जो है तत्काल समय लेंगे, लेकिन उनको भी हम प्रयास करेंगे कि यहाँ फैजाबाद में वकालत नहीं करने देंगे।
3: इतना जरूर है कि अयोध्या के वकील आरोपियों की तरफ से वकालतनामा उनकी पैरवी नहीं करेंगे?
6: बिल्कुल नहीं करेंगे, और करेंगे तो हमारा संघ उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा।
7: अधिवक्ता अभियुक्तों की ओर से वकालत नहीं करेगा, अगर अधिवक्ता वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है, ये चंपक राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 CRPC की कार्यवाही की जाएगी।
0: इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि जो सभी आरोपी हैं इस मामले में, सबको 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। चढ़ावा केस में समय की बड़ी खबर है ये, सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 13 जुलाई तक यानी कि न्यायिक हिरासत में ये रहेंगे। दरअसल अब तक जो पूछताछ हुई है, SIT की जो कार्रवाई हुई है, SIT की जो जांच हुई है, उसके बाद अब न्यायिक हिरासत में इन सभी आरोपियों को 14 दिन के लिए भेज दिया गया है। चढ़ावा मामले की पड़ताल में लगी जांच एजेंसियां अब सच तलाशने में लगी हैं। आरोपियों के घरों पर दबिश दी जा रही है, सबूत तलाशे जा रहे हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। चंपत राय के हाथों में ही ट्रस्ट की कमान रही, इसीलिए इस मामले में चंपत राय का बयान बहुत अहम है।
8: इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है।
9: इनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं वो तो खुलेआम घूम रहे हैं।
10: चंपत राय ने स्वीकार कर लिया कि हम चोर हैं, हमने चोरी किया है और हम चोरी में शामिल, इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया।
11: चंपत राय राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव। जब से चढ़ावे में चोरी का खुलासा हुआ है, चंपत राय सवालों के घेरे में है। उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है, उनकी जिम्मेदारी और उनकी नैतिकता सवालों के घेरे में है। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि चंपत राय का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है। जरूरत पड़ी तो पुलिस अनिल मिश्रा और ट्रस्ट के दूसरे पदाधिकारियों के बयान भी दर्ज करेगी। चढ़ावा चोरी के इस मामले में अब पुलिस जांच में तेजी लाती दिख रही है। आरोपियों के घरों की तलाशी हो रही है, उन्हें जानने वालों से पूछताछ हो रही है। कल यानी रविवार को अयोध्या में पुलिस एक के बाद एक आरोपियों के घर दबिश देती रही। अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, मनीष यादव समेत सभी सात आरोपियों के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। करीब 1.5 से 2.5 घंटे तक टीमें घर में रही, पूछताछ की गई, लिखा पढ़ी की गई। परिजन कह रहे हैं उन्हें इस लूट कांड की भनक नहीं थी।
12: जांच के लिए और वो यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ वो है तो हम बताए कि कमरा पे अलग लिए रहते हैं, दो ढाई साल से यहाँ रहते नहीं हैं, आना जाना भी यहाँ का नहीं है, एक दिन कभी इस मंदिर के अंदर पांव नहीं रखते हैं।
11: रमाशंकर मिश्रा के परिजनों का कहना है कि वह लंबे समय से घर नहीं आया है और किराए के मकान में रह रहा था।
13: हमको ना वो करे हैं ना हमको दिया है, कभी हमसे उनसे बनता ही नहीं था, कभी वो 10 रुपया हमको दिए ही नहीं थे। मुझको मेरे पति का सहारा है, बस कोई का सहारा नहीं है।
14: तो यहाँ रमाशंकर के बारे में और क्या, घर से कुछ पैसा वैसा ले गए, कुछ बरामदगी दिखाई है, घर से मिला है
13: कुछ नहीं मिला है सर, केवल कागजात मिला है वही लेकर गए हैं, आधार नंबर, खाता नंबर।
11: पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है। इनमें से करीब 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से मिलने की बात सामने आई है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए अनुकल्प मिश्रा पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। पुलिस के अनुसार वह नोटों की गिनती की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेन देन की भी पड़ताल की जा रही है। 2 साल पहले खरीदे गए उसके मकान पर भी आज तक की टीम पहुंची। संतोष शर्मा के साथ सिमर चावला, अयोध्या आज तक।
0: अयोध्या से उठी रामधन की चोरी की चिंगारी ने यूपी की सियासत कुछ ऐसी सुलगाई है कि एक तरफ सत्ता के लिए धर्म के सौदे के सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ धर्म के लिए सत्ता की चुनौती दी जा रही है। सीएम योगी ने एक दिन पहले ही अखिलेश यादव को मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि आंदोलन पर बोलने की चुनौती दी है।
11: जब पूरा देश, पूरी दुनिया रामलला के पैसों की चोरी पर सवाल खड़े कर रही है, तब कान्हा की भक्ति को चुनौती देते हुए सियासत भी सेंधमारी कर रही है। नई चुनौती यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अखिलेश यादव को दी गई है।
15: अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए।
11: बीजेपी कहती है राम की चिंता छोड़ कृष्ण की चिंता करनी चाहिए। अखिलेश कहते हैं डोनेशन से पहले नेशन फर्स्ट होना चाहिए।
16: जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट। समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म के आड़ में गोरख धंधा।
17: जब सीएम योगी अयोध्या के चढ़ावा चोरी कांड को छोड़ मथुरा की बात छेड़ते हैं, तब विपक्ष उन आरोपों का राग छेड़ देता है, जहां मथुरा में भी आस्था भक्ति के नाम पर दान चढ़ावे फंड में घोटाले के आरोप लग रहे हैं।
18: अयोध्या उज्जैन तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। वहां भी लूटने का इंतजाम है, वहां भी कॉरिडोर बन रहा है।
17: राम से कृष्ण तक मजहबी सियासत के चाहे जितने दाम चले जाएं, लेकिन बुनियादी राजनीति ये है कि बीजेपी 2027 की चुनावी राजनीति का फोकस अवध से हटाकर मथुरा करने की तैयारी में जुट चुकी है।
19: मथुरा को लेकर बीजेपी की तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी ब्रज क्षेत्र और पश्चिम के लगभग 12 मंत्री कैबिनेट में शामिल हैं। इसके अलावा जब संगठन की बात आई तो 9 चेहरे ब्रज से शामिल किए गए हैं, ब्रज और पश्चिम से शामिल किए गए हैं। और 12 जुलाई को मथुरा में पार्टी की एक बड़ी बैठक भी होने वाली है।
17: बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है। ये तैयारी यूं ही नहीं है। यूं ही सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर नहीं जा चुके हैं। यूपी की राजनीति में ब्रज क्षेत्र का वजन बढ़ रहा है। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री मंत्री तक आने वाले नेता ब्रज क्षेत्र से हैं। पूरन लाल लोधी क्षेत्रीय अध्यक्ष, शंकर लोधी को प्रदेश महामंत्री, किरण लोधी को मंत्री बनाया गया है, तो जाट वोट के लिए राजेश चौधरी महामंत्री बने हैं और मोहित बेनीवाल प्रदेश उपाध्यक्ष। ब्राह्मण ठाकुरों में ब्रज बहादुर प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो अभिजात मिश्रा महामंत्री, राम प्रताप चौहान महामंत्री हैं, तो विजय शिवहरे और सुहासिनी जायसवाल मंत्री। दरअसल बीजेपी चाहे भले ही मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को सियासी मुलम्मे के साथ पेश करे, लेकिन चुनावी इंजीनियरिंग बीजेपी भी जात के साथ साधती है। और जिस तरह सीएम योगी ने चुनावी सियासत की धार अयोध्या से मथुरा की ओर मोड़ी है, उसमें हिंदुत्व के वोट के संग पीढ़ियों की सियासत को तंग करने की पूरी प्लानिंग नजर आती है। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: इस बीच यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। आज पीलीभीत से सीएम योगी ने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा होगा, यूपी की जनता ने साइकिल पंचर कर दी। तुष्टिकरण को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा।
20: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी, गुंडागर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना आराम कर देगी, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करना, जहां आज गौशालाएं बन रही हैं, ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाही ने कब्जा की होंगी जरूर। और जब सरकार आई और हम लोगों ने पहले दिन ही घोषणा की थी कि अगर जमीन कब्जा किए हो तो खाली कर दो, नहीं तो अगले 48 घंटे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो 7 पीढ़ियों का भुक्तभोगी होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसी समय सिलेंडर कर दिया था कि नहीं साहब, आप जमीन ले लीजिए, बकस दो। विस्थापित हिंदू, बौद्धों, जैनियों, सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से विस्थापित है, आप याद करिए, दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था। आज जो इस सर्टिफिकेट वितरित हो रहे हैं, इसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। यानी इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी, यही पाप जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा।
0: और अब बात मौसम की। मॉनसून की शुरुआत ही कई राज्यों में आफत लेकर आई है। सबसे बुरा हाल पूर्वोत्तर के राज्यों का है। भारी बरसात के चलते असम, अरुणाचल प्रदेश में नदियां उफान पर हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, रास्ते बंद हैं, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों अरुणाचल प्रदेश के करीब 9 जिले मौसम की मार झेल रहे हैं। कई जगहों पर हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा है, सड़कों का मलबा बिखरा पड़ा है। कई रास्ते बंद होने की वजह से लोगों का भारी मुश्किलों से सामना हो रहा है। भयावह तस्वीरें, किस तरीके से लैंडस्लाइड होता है, बाइक पर जाता हुआ व्यक्ति किस तरीके से उस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है। पहाड़ों की इस ताकत के सामने किसी की कोई बिसात नहीं होती। लोग बस चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए, लेकिन पल भर में कैसे एक सैलाब सब कुछ लेकर बहाता चला गया। अब आपको अरुणाचल प्रदेश के दम्बुक की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां कुछ लोग नदी के बहाव के बीच फंस गए। घटना रविवार की है। सिसरी नदी में राफ्टिंग करने गए 7 लोग तेज लहरों में फंस गए। एनडीआरएफ ने नदी में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया।
1: ये हमारा दाम्बू रेमी का जीवी है, मिस्टर गेराम नगर, और बाकी ये नदी है, और बाकी दो और स्ट्रेंथेड है। एक यहाँ जो आप थोड़ा बड़ा घाट दिखाई दे रहा है वहीं पे है, नेक्स्ट जो है वहाँ से आपका लगभग।
0: वक्त हो चला है एक ब्रेक का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
23: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

जांच के दायरे में अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत करीब 80 लोग, चंपत राय का बयान दर्ज, गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत।

गणेश की मूर्ति, भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात, सेशेल्स की संसद में गूंजा नमो मंत्र। कल शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक, कई अहम सुधारों पर होगी चर्चा।

0: ti.
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। आज दहलेगा रावलपिंडी का वो जनरल और कांपेगा तिहाड़ जेल में बंद वो खूंखार आतंकवादी जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का गुनाहगार है। जी हां, आज करेंगे हम बात पाकिस्तान के आसिम मुनीर की, जो पाकिस्तान में गाजा के बच्चों पर तो घड़ियाली आंसू बहाता है। उसी पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान के मासूम मुसलमान बच्चों पर डबल टैप बमबारी करवा दी बीती रात। आप गयान की बात करें, समकानी की बात करेंगे, मनोगई की बात करें, अफगान बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों पर बारूद बरसाकर 35 से ज्यादा बेकसूरों का कत्लेआम कर दिया पाकिस्तान की फौज ने। कराची ब्लास्ट में अपने रेंजर्स के मारे जाने से बौखलाए पाकिस्तान का ये जो जघन्य युद्ध अपराध है, आज ये दुनिया के सामने है। हम विस्तार से बात करेंगे आसिम मुनीर के पाले आतंकवादियों के साथी यासीन मलिक की, जो इस समय जेल में बंद है, लेकिन वहां भी उसकी रूह कांप उठेगी और उन सब की रूह कांपेगी जिन्हें लगा था कि कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की वो हत्या कर सकते हैं और कभी इंसाफ नहीं होगा। वो मस्जिदों से रलिव गलिव या सलिव ये नारे दे सकते हैं कि हिंदू छोड़ दो कश्मीर को, अपनी महिलाओं को छोड़ दो, हमारे लिए चले जाओ, यहां पर अपना धर्म परिवर्तन कर लो। आज 35 वर्ष चाहे लगे हो, लेकिन धीरे धीरे करके इंसाफ होगा। दरअसल कश्मीरी पंडितों के साथ हुए क्रूरतम अन्याय के खिलाफ वो जो घड़ी है ना, 36 साल बाद आकर न्याय की दहलीज पर पहुंची है। जम्मू और कश्मीर में जांच चल रही है, SIA जो वहां पर इंटेलिजेंस यूनिट है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कश्मीरी पंडित नर्स और मैं आपको सरला भट्ट जिनका अपहरण हुआ, लोगों ने मिलकर उनका बलात्कार किया, गैंगरेप हुआ और फिर उनकी नृशंस हत्या कर दी। 700 से ज्यादा पन्नों की जो चार्जशीट है ना, वो अब तैयार है। तिहाड़ जेल में बंद यासीन मलिक उस आतंकवादी के अपराध के ताबूत में एक और कील साबित होगी। 1990 में जिस JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट अपने आप को कहते थे आतंकवादी, घाटी में कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर इन्होंने मारा था, नरसंहार किया था, विस्थापना का खूनी खेल खेला था, उस पाकिस्तान के आदेश पर उसके एक एक गुनाह का हिसाब होगा और हिसाब अदालतों में होगा, न्याय की सीढ़ी दहलीज पर होगा वो न्याय। सबसे पहले लेकिन हम बात करेंगे अफगानिस्तान पर, अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने भीषण बमबारी की है, भीषण और बर्बर हमले किए। बड़ी खबर यह कि अफगानिस्तान ने अपने नागरिकों पर बमबारी की घटना के बाद पाकिस्तान के राजनयिक को तलब किया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने काबुल में पाकिस्तान के कार्यवाहक राजदूत को बुलाया और कड़ी फटकार लगाई। अफगानिस्तान की वायु सीमा का उल्लंघन हुआ, कुनार हो, पक्तिया हो या पक्तिका हो, यह अलग अलग प्रांत है, वहां पर पाकिस्तान की वायुसेना ने भारी बमबारी की, नागरिकों के घरों पर बमबारी की और अफगानिस्तान ने इसका कड़ा विरोध किया है। पाकिस्तान के हमले में 36 अफगान नागरिक मारे गए हैं, 160 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो दुनिया भर में तो पीस मेकर का चोला ओढ़ के घूमते हैं और ये दुनिया भी देख ले पीस मेकर का असली चेहरा कि आसिम मुनीर के हाथ बेगुनाहों के खून से कैसे रंगे हैं। आतंक से लड़ने के नाम पर बच्चों को, अफगान बेगुनाह बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों की किस तरह से हत्या हुई।

0: जो गाजा में बच्चों की मौत पर घड़ियाली आंसू बहाता है, वो अफगानिस्तान में बच्चों को बमबारी से मारता है, जो पाकिस्तान मुस्लिम देशों का रहनुमा बनने के सपने देखता है, वो अफगानिस्तान में मुसलमानों का नरसंहार करता है, जो ईरान युद्ध में शांति के नाम पर दलाली करता है, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान में मौत का कोहराम मचाता है, कराची ब्लास्ट में अपने रेंजर्स की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बीती रात भीषण बमबारी की, पक्तिका प्रांत के गयान जिले, पक्तिया प्रांत के समकानी जिले और कुनार प्रांत के मगुनई जिले में नागरिक इलाकों पर हवाई हमले किए गए। अफगानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिक मारे गए, जिनमें कई छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। अपनी जमीन पर आतंकी पाल रहा पाकिस्तान एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर अफगानी बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं पर बम बरसा रहा है। क्या आसिम मुनीर की नजर में ये लड़का टीटीपी का आतंकी है? क्या ये दुधमुही बच्ची दहशतगर्द है? क्या ये घायल लड़की कराची ब्लास्ट की मास्टरमाइंड है? और क्या ये लहूलुहान बच्चियां, बुजुर्ग और महिलाएं आतंकी नजर आती हैं? अगर नहीं तो ये साफ है कि पाकिस्तान युद्ध अपराध कर रहा है, और इस अपराध का जिम्मेदार आसिम मुनीर नहीं तो और कौन है, जिसने 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिकों को मार डाला? पाकिस्तान गाजा पर इजरायली बमबारी के बाद छाती पीटने लगता है, मगर कल रात उसने सोची समझी सैन्य बर्बरता दिखाते हुए कुख्यात डबल टैप रणनीति का इस्तेमाल किया। इसके तहत पहली बमबारी रात 12:30 बजे की, जब ग्रामीण मलबे में फंसी महिलाओं और चीखते चिल्लाते बच्चों को बाहर निकालने के लिए दौड़े, तो पाकिस्तानी जेट रात 12:55 पर वापस आए और निहत्ते बचाव कर्मियों पर बमों की दूसरी खेप गिरा दी। जानबूझकर किए गए इस दूसरे हमले के कारण मरने वालों की संख्या तेजी से 35 के पार पहुंच गई। वहीं अस्पतालों में घायलों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई। ये वीडियो पक्तिया के जमकानाय जिले का है। इसमें पाकिस्तानी सेना के हमलों का शिकार बने बिस्मिल्लाह के एक रिश्तेदार ने पाकिस्तान पर सोची समझी बर्बरता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बमबारी के बाद लोग बचाव के लिए आए, तभी पाकिस्तानी जेट्स ने उन पर बमबारी कर दी। हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने गुमराह करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हमले में 25 आतंकवादी मारे गए, लेकिन अफगान विदेश मंत्रालय ने तस्वीरें जारी कर पाकिस्तान की आक्रामकता और अपराध की पोल खोल दी। अस्पतालों की दिल दहला देने वाली तस्वीरों और मलबे में तब्दील हुए घरों की तस्वीरें भी पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर रही हैं। अस्पताल में स्ट्रेचर पर खून से लथपथ बच्चे और बुजुर्ग पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। दरअसल शनिवार रात कराची के एक रेंजर कैंप पर भीषण आतंकी हमला हुआ था। गुलिस्ताने जौहर नाम के इलाके में पाकिस्तानी रेंजर कैंप को निशाना बनाया गया। विस्फोटक से लदी गाड़ी को टकराकर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान 4 पाकिस्तानी रेंजर्स और 6 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान ने भारत पर हाथ होने का आरोप लगाया, जिसके बाद भारत ने उसे गिरबा में झांकने की नसीहत दे दी। विदेश मंत्रालय ने कहा, दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वो अपने भीतर झांके, अपने यहाँ मौजूद आतंकी ढांचों के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करे। लेकिन ओसामा से लेकर हाफिज सईद और मसूद अजहर से लेकर सलाउद्दीन को पालने वाले पाकिस्तान से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। और जब उसके ही पाले आतंकी सांप उसे डसते हैं, तो वो बौखला कर कभी भारत को कोसता है तो कभी अफगानिस्तान में बेगुनाहों का खून बहाता है। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और आइए अब हम आपको विस्तार से दिखाते हैं कि आखिर क्यों अफगानिस्तान खुलकर यह कह रहा है कि पाकिस्तान ने वॉर क्राइम किया है, जघन्य युद्ध अपराध किया है। मैं आपको एक एक तस्वीर भी दिखाऊंगा, उस जगह के बारे में बताऊंगा, अफगानिस्तान पर नापाक हमले का वो खूनी सच, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल ये जो अटैक और काउंटर अटैक हो रहे हैं, इनका सिलसिला, इन हमलों का सिलसिला अक्टूबर 2025 में शुरू हो गया था। ये ऑपरेशन खैबर स्टॉर्म से शुरू हुआ था। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के लीडर नूर वली महसूद को मार दिया है, ऐसा उसने दावा किया। अफगानिस्तान ने दावा किया कि केवल बेकसूर नागरिक मारे गए हैं, नरसंहार हुआ है, और कहां नंगरहार पक्तिया, ये 21-22 फरवरी 2026 को नंगरहार में हुआ, पक्तिका में हुआ। इसमें 13 नागरिक मारे गए, ये पहली बार। देखिए अक्टूबर और फिर जनवरी और फरवरी 13 नागरिक मारे गए, लेकिन उससे भी ज्यादा भीषण हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ। 16 मार्च को एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर पर हमला किया। पाकिस्तान ने दावा किया कि वो आतंकवादियों पर हमला कर रहा है, लेकिन बेचारे ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में 400, जी हां, एक या दो या तीन नहीं, 400 से ज्यादा अफगानियों की उस अटैक में मृत्यु हो गई, पाकिस्तान की भीषण बमबारी में। अप्रैल में कुनार प्रोविंस में पाकिस्तान ने फिर एयर स्ट्राइक की, उसमें 7 लोग मारे गए। 10 जून को पाकिस्तान ने एक बार फिर खोस्त और कुनार, ये पूरा अगर आप ये बेल्ट देखें, ये अफगानिस्तान का वो जो पाकिस्तान की सीमा से लगा और फिर उसके उत्तर का जो इलाका है वहां अगर आप देखें तो एक के बाद एक भीषण बमबारी, कभी खोस्त में, कभी कुनार में, कभी पक्तिया में, कभी पक्तिका में, 13 नागरिक यहां मारे गए। तो अगर आप इन सब का आकलन और देखें और सब मौतों को जोड़ें तो केवल 9 महीने में, पूरा साल भी नहीं, 9 महीनों में 570 से ज्यादा अफगान नागरिक पाकिस्तान ने मार दिए। पाकिस्तान बार बार एक स्वतंत्र अफगानिस्तान, एक संप्रभु देश की हवाई सीमा का उल्लंघन करता है और फिर वहां पर हमले करता है। सच्चाई यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद पाकिस्तान का प्रभाव, जो पाकिस्तान ने पहले दावा किया था, DGISI अफगानिस्तान के होटल पहुंचे थे और वहां पर कॉफी पीते हुए कह रहे थे ऑल इज गुड और अफगानिस्तान में पाकिस्तान का दबदबा बढ़ेगा, और पाकिस्तान के पिछलग्गू जो भारत में है वो पिछलग्गू कह रहे थे वाह वाह पाकिस्तान की क्या विदेश नीति है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका के जाने के बाद पाकिस्तान का वहां वर्चस्व होगा, वो पिछलग्गू देख ले हम, ये सच्चाई है। प्रॉक्सी वॉर जोन बन गया इस समय अफगानिस्तान। अच्छा, भारत जो है, भारत का निरंतर प्रयास है कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ और भारत की जो मित्रता है वो मित्रता आगे और बनी रहे, क्योंकि यही अफगानिस्तान की विनती थी। भारत एक विकसित और स्थिर अफगानिस्तान चाहता है, लेकिन पाकिस्तान चीन और अमेरिका की रस्साकशी में बफर जोन और प्रॉक्सी वॉर का मैदान बन गया है। अफगानिस्तान ने चेतावनी दी है कि अगर अफगानिस्तान को अस्थिर किया गया तो ISIS यानी इस्लामिक स्टेट, ISIS के खुरासान, ये जैसे खूंखार आतंकी संगठन है, पैर जमाने और सिर उठाने का उन्हें मौका मिल जाएगा और ये पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा। इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा है ये लगभग 2600 किलोमीटर लंबी ड्यूरेंट लाइन है। इस ड्यूरेंट लाइन पर इस समय आग लगी हुई है और पाकिस्तान, उसके नागरिक और उसकी सेना, वो अफगानिस्तान में बेगुनाहों को मार रहे हैं और नागरिक यहां भी पछता रहे हैं। अब हम रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। हम बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की। 36 साल बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर, गैंगरेप और हत्या के मामले को सुलझा लेने का दावा किया है। उसने श्रीनगर के टाडा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह चार्जशीट 700 से अधिक पन्नों की है। सूत्रों के मुताबिक इस चार्जशीट में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन JKLF के तत्कालीन चीफ यासीन मलिक समेत 5 आतंकवादियों को आरोपी बनाया है। इनमें से 3 की तो मौत हो चुकी है, 1 फरार है। कुल मिलाकर यासीन मलिक पर शिकंजा अब कसता जा रहा है।

0: 90 के दशक में हम आपको कुछ तस्वीरें भी अभी दिखाएंगे। खैर ये तो इस समय तस्वीर आप उस आतंकवादी यासीन मलिक की देख रहे हैं, लेकिन 90 के दशक में कश्मीर एक कठिन दौर से, जम्मू और कश्मीर दोनों एक कठिन दौर से गुजर रहा था। वहां पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जिस तरह से लोगों को बरगलाया, जो लोकल कश्मीरी कुछ लोग थे उनको भी बरगलाया, और अपने ही सदियों से साथ रहने वाले कश्मीरी हिंदुओं को उन्होंने मारना शुरू किया, और सरला भट्ट उनमें से एक। ये पूरा केस क्या है मैं आपको विस्तार से बताता हूं। बात अप्रैल 1990 की है। यह मामला कश्मीर में आतंकवाद के शुरुआती दौर में किए गए सबसे बर्बर और सबसे खौफनाक मामलों में से, अपराधों में से एक है। जी हां, वो सरला भट्ट है। एक नर्स थी वो, क्या करती थी, अस्पताल जाके लोगों का इलाज करती थी, उनकी सेवा करती थी। 18 अप्रैल 1990 को श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्किम्स परिसर में JKLF के आतंकवादियों ने स्टाफ नर्स सरला भट्ट का अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद उन्हें बंधक बनाकर रखा, बेरहमी से प्रताड़ित किया। आरोप इस आदमी पर है, यासीन मलिक। शारीरिक हमला उन पर किया गया सरला भट्ट पर। क्या रिपोर्ट बताती है? उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी। श्रीनगर की उमर कॉलोनी यानी मालबाग में ऑटोमेटिक राइफल, अशोल्ट राइफल से उनको ताबड़तोड़ गोली मारी, उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। डाउनटाउन श्रीनगर में क्षत विक्षत उनकी लाश को फेंक दिया गया। यह बाकी हिंदुओं को एक संदेश दिया जा रहा था, जो एक के साथ कर सकते हैं किसी के साथ कर सकते हैं। आतंकवादियों ने शव के पास बकायदा एक नोट छोड़ा था जिसमें सरला भट्ट पर सुरक्षा बलों का मुखबिर यानी इन्फॉर्मर होने का झूठा आरोप लगाया गया था और इसी को हत्या की वजह बताया था। घाटी में आतंकवाद उस समय चरम पर था। डर, धमकियां, गवाहों को भयभीत करने के कारण यह मामला 3.5 दशकों तक फाइलों में दबा रहा। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई लोग तो यासीन मलिक को मतलब देश के बड़े बड़े नेताओं से, प्रधानमंत्री तक से मिलवा रहे थे। फिर जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर DGP ने जांच के आदेश एक बार फिर 18 मार्च 2024 को दिए। यह केस स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA को सौंपा गया। एजेंसी ने 36 साल बाद फॉरेंसिक, बैलिस्टिक, मौखिक, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को काफी बारीकी से जोड़ा और इन घटनाओं के क्रम को दोबारा तैयार किया। कैसे जानकारी मिली सरला भट्ट का अपहरण? और सरला भट्ट इकलौती इस तरह की का मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जो एक के बाद एक खुलेंगे। कश्मीरी हिंदुओं को जिस तरह से पकड़ पकड़ के मारा था, जिस तरह से मस्जिदों से वहां नारे लगाए जाते थे, रलिव गलिव या सलिव, एक एक का धीरे धीरे करके न्याय होगा। आइए अब हम आपका बताते हैं इस आदमी की क्या भूमिका थी। यासीन मलिक, बेहद गंभीर आरोप यासीन मलिक पर है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच में साफ हुआ है कि यह हत्या एक इकलौता मामला नहीं था। मतलब एक नर्स को आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रूप में देखते हैं ना, कि अगर आपको तकलीफ हो रही हो तो वो आपका इलाज करने में आपको सुकून मिले, वो आपकी मदद करती हैं। ये तो नर्स को ये लोग मार रहे थे, और इकलौती एक नर्स नहीं है। मैं आपको और मामले बताऊंगा। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क के तहत रची गई थी एक सोची समझी आतंकी साजिश। JKLF का तत्कालीन चीफ कमांडर मोहम्मद यासीन मलिक इस पूरी साजिश का मुख्य सूत्रधार था। फिलहाल एक टेरर फंडिंग और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के जघन्य मामले में यह उम्र कैद की सजा काट रहा है, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। मामले का एक और आरोपी है खुर्शीद अहमद। खुर्शीद अहमद चलाकू फिलहाल फरार है। उसने ही सरला भट्ट पर गोली चलाई थी। उसके पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी POJK में छिपे होने की आशंका है, संभवतः वहां भी न्याय होगा। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया शुरू हो गई है। साजिश में शामिल जो 3 अन्य आतंकी थे, अब्दुल हामिद, शेख मोहम्मद यूसुफ सूफी उर्फ इदरीस और गुलाम मोहम्मद टपलू, उन तीनों की मौत हो चुकी है। अपराधियों की तत्काल दंड संहिता, मतलब जो तत्कालीन दंड संहिता उस समय जो थी, धारा 302, 364, 120B, 120B, टाडा एक्ट के तहत, इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए थे। सरला भट्ट को क्यों चुना गया? कौन थी सरला भट्ट? कैसे ये जो केस था ये कश्मीरी पंडितों की प्रताड़ना का एक एक तरह से एक मिसाल बन गया था। कौन थी सरला भट्ट? सरला भट्ट कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में रहने वाली एक साधारण कश्मीरी पंडित महिला थी, कश्मीरी हिंदू महिला। वो श्रीनगर के प्रतिष्ठित शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में स्टाफ नर्स के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही थी। वो घाटी में मानवता की सेवा कर रही थी, लेकिन ये जो कट्टर आतंकवादी थे जो पाकिस्तान के इशारे पे लोगों को मार रहे थे, उन्होंने अपने क्रूर मंसूबों का उन्हें निशाना बनाया, उनको शिकार बनाया। सरला भट्ट का मामला केवल एक नर्स की हत्या का मामला नहीं है, बल्कि 80 के अंत और 90 के शुरुआत के दशक में कश्मीरी हिंदुओं पर, कश्मीरी पंडितों पर ढाए गए जुल्मों और उनके जबरन विस्थापन, मास एक्सोडस जो हुआ, हिंदू कश्मीर छोड़कर बेचारे जाने पर मजबूर हो गए। बड़ी बड़ी कोठियां थी, सब छोड़ छोड़कर वहां से निकले जान बचाने के लिए, उसकी एक मिसाल है, विभत्स मिसाल है। दरिंदगी की हद तो यह थी कि आतंकवादियों ने सरला भट्ट के परिवार को उनकी मौत का ठीक से शोक तक नहीं मनाने दिया। उनके परिवार, उनका परिवार जब सदमे में था, शोक मना रहा था, श्रीनगर में उनके घर पर ग्रेनेड अटैक कर दिया गया ताकि कोई आवाज ना उठा सके। इस भयानक खौफ के कारण सरला भट्ट, उनका पूर्व वो तो मारी जा चुकी थी, उनका जो पूरा परिवार था, रिश्तेदार था, वो अपनी जान बचाकर रातों रात घाटी छोड़कर भाग गए। एसआईए के मुताबिक इस जघन्य हत्याकांड का जो मुख्य मकसद था वो कश्मीरी पंडित समुदाय के भीतर, कश्मीरी हिंदुओं के भीतर दहशत पैदा करना था ताकि वो घाटी छोड़ने पर मजबूर हो जाए और आतंकवादी अलगाव का अपना एजेंडा आगे बढ़ा सके। ये पाकिस्तान की साजिश थी। साजिश क्या थी उनकी? कि हिंदू कश्मीर छोड़ दें और फिर वो कश्मीर का पाकिस्तान में विलय करा देंगे। ये थी पाकिस्तान की साजिश। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, न्याय की उम्मीद 36 वर्ष बाद चार्जशीट में इस आदमी के खिलाफ क्या क्या सबूत है यासीन मलिक के खिलाफ?
1: जी बिल्कुल गौरव, जैसे आपने विस्तार से इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दी, मैं इसमें एक और बिंदु जोड़ना चाहता हूं। एसआईए की जांच पर बात करने से पहले, जैसे कि आपने कहा कि जब सरला भट्ट की निर्मम हत्या की गई, पहले तो उसको बंधक बनाए रखा, उसका अपहरण हुआ, उसको बंधक बनाए रखा, उसको प्रताड़ना की गई और बाद में उसका शव जो है उसको डाउनटाउन श्रीनगर में फेंक दिया गया था, और बाद में जब उसका शव परिवार को मिला और परिवार फिर अनंतनाग जिले में, क्योंकि सरला भट्ट अनंतनाग जिले की रहने वाली थी, बाद में जब उसका शव उसके घर ले जाया गया तो जब अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद परिवार के लोग शोक मना रहे थे, जैसे कि आपने कहा कि ग्रेनेड से उनके घर के सामने हमला किया गया उनको और डराने के लिए। और यही तक नहीं गौरव, बाद में जब उसके परिवार के लोग 2-3 दिन बाद अस्थियां लेने गए, अस्थियां लेकर जब वो आ रहे थे तो एक समूह था लोगों का, उन्होंने धमकाया उसके परिवार को और वो अस्थियां छीनने का भी प्रयास किया। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आतंक का माहौल था और ये कितनी प्रताड़ना हुई न केवल सरला भट्ट को बल्कि उसके पूरे परिवार को। और आज भी जब हम उनके परिवार से बात करते हैं तो वो आज भी सहमे हुए हैं। आप जरा कल्पना कीजिए गौरव, के कैमरे पर आने पर भी वो घबरा जाते हैं, इतनी घबराहट और इतना भय उनमें है। जहां तक कि एसआईए की जांच का सवाल है, 36 वर्ष बीत चुके हैं गौरव, जरा कल्पना कीजिए 36 वर्ष कोई छोटा मोटा जो है टाइम पीरियड नहीं होता है, बहुत बड़ा अरसा होता है, लेकिन देर से ही सही आशा की किरण अब नजर आई है। एसआईए ने बड़ी ही बेहतरीन जांच की है। आप समझ सकते हैं कि 36 वर्ष बीतने के बावजूद कितनी मुश्किल हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद आई विटनेसेस को ढूंढना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ढूंढना, सारे जो साक्ष्य हैं उनको जमा करना और फिर
0: अच्छा उसमें इंडिया टुडे की भी भूमिका है। सुनील जी, मैं चाहता हूं आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इंडिया टुडे न्यूज ट्रैक की क्या भूमिका रही।
1: जी बिल्कुल गौरव, मैं उसी बिंदु पर आ रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जो है कोर्ट में पेश किया गया और चार्जशीट में भी उसका जिक्र किया गया है। दरअसल 1990 का वो दौर था जब प्रशासन पूरी तरह पैरालाइज हो गया था कश्मीर में और सुरक्षा एजेंसियां भी काफी मुश्किल दौर से गुजर रही थी क्योंकि आतंकवाद अपने चरम पर था। उस समय इंडिया टुडे का जो न्यूज ट्रैक है बड़ी बहादुरी के साथ ग्राउंड पे मौजूद था और उस समय हमने जो है पूरे जो उस समय वहां घटनाएं घटित हो रही थी, आतंकी घटनाएं हो रही थी, उनको कवर किया दिखाया गया, उस समय जो आई विटनेसेस थे उनको दिखाया गया, और जो मॉब फ्रेंजी थी, जो कट्टरपंथी संगठन से जुड़े हुए लोग सड़कों पर आते थे, कट्टरपंथी नारे लगाते थे, वो तमाम वीडियो फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है। दूसरी बात, जो JKLF का एक और खूंखार आतंकवादी है फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, उसने इंडिया टुडे के न्यूज ट्रैक के तब के जो पत्रकार थे मनोज रघुवंशी उनके साथ इंटरव्यू में साफ तौर पर ये कबूला था कि उसने कम से कम 20 कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या की और उसके बाद उसे याद ही नहीं कि उसने कितने कश्मीरी पंडितों को मारा। तो ये भी एविडेंस जो है साक्ष्य कोर्ट में पेश किया गया ये बताने के लिए कि JKLF नाम का एक खूंखार आतंकी संगठन उस समय मौजूद था और उनका मॉडस ऑपरेंडे क्या होता था, किस प्रकार से JKLF के आतंकवादी जो मासूम कश्मीरी पंडित है, अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं, उनके उनके साथ कैसा उनको यातनाएं देते थे और उनकी कैसी निर्मम हत्याएं की गई थी। और गौरव, जैसे आपने कहा कि केवल सरला भट्ट का केस नहीं, और ऐसे कई सैकड़ों मामले हैं जिन पर अभी तक पूरी तरह से सुनवाई नहीं हो पाई है। गिरजा तिक्कू का मामला देखिए, जिसके साथ जिसको कि बंधक बनाया गया, उसका सामूहिक बलात्कार किया गया और लकड़ी चीरने की मशीन से उसको चीर दिया गया। जरा कल्पना कीजिए, रूह कांप उठती है इस चीज को दोहराने
2: मामले को उठाया जाएगा,
1: परिवार पर क्या बीती होगी।
2: आज भी ये जो परिवार, एक एक मामले को उठाया जाएगा, एक एक मामले में न्याय होगा ऐसी उम्मीद है। देर भले ही हुई लेकिन अंधेर ना हो, आज तक ये खबरें लगातार उठाता रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर।
4: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला। That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
5: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
6: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
5: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
6: They score!
5: Search ESPN Radio or tear your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
7: Your own.

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
1: पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: हमने तब भी सवाल किया था।
6: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
5: हम आज भी सवाल करते हैं।
6: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
5: ऑपरेशन अग्नि,
6: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
5: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
7: In association with
8: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
5: हमने तब भी सवाल किया था।
6: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
5: हम आज भी सवाल करते हैं।
6: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
5: ऑपरेशन अग्नि,
6: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
5: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

चढ़ावा चोरी केस की जांच के दायरे में अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 80 लोग, चंपत राय का बयान दर्ज, गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री ने कहा यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव कर्फ्यू और गुंडागर्दी से लोगों का जीना होगा हराम। बेअदबी मामले में बढ़ती जा रही है सीएम भगवंत मान की मुश्किलें, पंजाब के सिख विधायकों और मंत्रियों को अकाल तख्त का आदेश, एक

महीने में दूर करे सभी आपत्तियां। सीबीएसई की नई तीन भाषा नीति से दसवीं के छात्रों को बड़ी राहत। मौजूदा बैच में नहीं होगा लागू नया नियम। पॉलिसी को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी। दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होगी नई ईवी पॉलिसी। 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश। रेखा गुप्ता सरकार की महत्वाकांक्षी नीति।

0: यूरोप में गर्मी का उबाल, हीट वेव से मचा हाहाकार, तेरह सौ से ज्यादा की गई जान, फ्रांस में सबसे ज्यादा त्राहिमाम, सड़कें पिघल रही हैं, रातें उबल रही हैं, रेड अलर्ट जारी, जिंदगी पर 40 डिग्री भारी, गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रहा, जानलेवा दौर बन गया है, खास तौर पर उन देशों के लिए जहां 40 डिग्री एक आपातकाल है। फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोप के कई देश इस आपातकाल में उबल रहे हैं। धधकते मौसम की वजह से हर दिन सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। कैसे हैं पिघलते और उबलते यूरोप के हाहाकारी हालात और क्या है इसकी वजह, आपको बताएंगे इस खास पेशकश में।
1: ये एक अलग रण है, रण 40 डिग्री पारे से यूरोप का रण चल रहा है। जहां 25 डिग्री पारा पार करता है तो वहां के लोग, उनको लगता है कैसे जिएंगे, ना पंखे हैं घरों में ना एसी है, क्योंकि वहां तो घर को कैसे गर्म रखा जाए यही सबसे बड़ी चुनौती रहती है। मैं हूं गौरव सावंत, आपको विस्तार से बताएंगे इस अलग रण के बारे में। धरती से आग की लपटें मानो निकल रही हो, लोग उबल रहे हैं, सड़कें पिघल रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूरोप की इस साल की गर्मी की। 40 डिग्री की गर्मी अब जानलेवा बन गई है, एक दो, 100 या 200 नहीं, 1300। जी हाँ, 1300 से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। आशंका यह जताई जा रही है, ये जो आंकड़ा है, अगर जल्द तापमान नहीं गिरा तो यह आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर 40 डिग्री की गर्मी में भारत के शहरों के लिए तो यह आम बात है, वहां पर तापमान जानलेवा यूरोप में क्यों हो रहा है। दरअसल जो पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर देश है वहां तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतनी गर्मी को सहन करने वाला बना ही नहीं है। लोग घर की से जो घर है उनके वो गर्मी को और अंदर समेट कर रखते हैं, गर्मी की सहनशीलता वाले नहीं है। हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। फिलहाल यूरोप में हालात इस समय इतना हाहाकारी है, जर्मनी में तो कई जगह ट्राम की जो पटरियां हैं उसके आसपास सड़क पिघलने लगी है, ट्राम का रास्ता बंद करना पड़ा है। करीब 12 देशों में अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या इंसान, क्या जानवर, क्या पक्षी, सभी परेशान है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बिजली संकट गहराने लगा है और लोगों को जहां पानी दिख रहा है गर्मी से राहत के लिए वो उसी दिशा में जा रहे हैं। यूरोप में फिलहाल जो हालात है, आने वाले 10 दिनों में मौसम विभाग के मुताबिक ये और ज्यादा बुरे हो सकते हैं। जी हां, जो ईसी MWF जैसी इंटरनेशनल एजेंसियां हैं उनकी माने तो जुलाई के पहले हफ्ते में यूरोप में एक और हीट वेव आ सकती है, और खतरनाक हीट वेव, जो इस समय हीट वेव है यानी 40 डिग्री तापमान, उससे और ज्यादा होगी ये हीट वेव। मौजूदा गर्मी से धरती को पहले ही, यूरोप की धरती एक तरह से सूखने लगी है। स्पेन और पुर्तगाल की बात करें तो 46 डिग्री तक तापमान जा सकता है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। फ्रांस में 45 डिग्री हो सकता है। यूरोप में इस वक्त गर्मी से 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और अब तापमान कम से कम 3 से 5 डिग्री शहरों में और बढ़ेगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो यूरोप की मुश्किलों को बयां कर रही हैं। वहां की वेदर रिपोर्ट क्या है, हम आपको वहां की ये वेदर रिपोर्ट दिखाएंगे। लोगों ने और खासतौर पर पुरुषों ने तो अपने टी शर्ट्स को उतारना शुरू कर दिया है क्योंकि वो किसी भी तरह इस गर्मी को झेल ही नहीं पा रहे हैं। हाथ के पंखे, छाते, आमतौर पर यूरोप का हर देश, गर्मियों में तो भारत से बहुत लोग जाते हैं कि बड़ा सुहाना मौसम है। गर्मी के दिनों में दुनिया भर से सैलानी यूरोप का मजा लेने जाते हैं, लेकिन इस साल की गर्मियां बिल्कुल अलग है। इस साल यूरोप उबल रहा है, गर्मी जानलेवा होती जा रही है। लोग घरों में एसी लगाने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पंखे और एसी की आवश्यकता है कि बाजार में एसी और पंखे गायब हो रहे हैं। मतलब मॉल में आते हैं, दुकानों में आते हैं और एकाएक गायब हो जाते हैं, लोग उसकी प्री बुकिंग कर रहे हैं। कई इलाकों में इसी वजह से बिजली का संकट भी बढ़ने लगा है। देखिए ये रिपोर्ट।

0: सात दिन से यूरोप में गर्मी का कोहराम, 40 डिग्री से ज्यादा तापमान, 1300 से ज्यादा लोगों की गई जान। देखने में आपको ये तस्वीरें समर वेकेशंस की लग रही होंगी, ठंडी फुहारों में मस्ती करते बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग। लेकिन ये मस्ती नहीं, मजबूरी है। यूरोप के ज्यादातर देशों में गर्मी से हालात इतने जानलेवा हो गए हैं कि जिसे पानी में जाने का जहां मौका मिल रहा है वो जा रहा है, समंदर से लेकर नदी और फव्वारे से लेकर तालाब तक लोगों से भरे हुए हैं। दिन हो या रात, गर्मी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सड़कों पर पानी का छिड़काव करने वाले वाहन घूम रहे हैं, लोग सड़क किनारे लगे वाटर स्प्रिंकलर से राहत का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन हर कोशिश, हर इंतजाम नाकाफी साबित हो रहा है और हर दिन सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। यूरोप के 20 से ज्यादा देश हीट वेव की चपेट में आ चुके हैं। 42 डिग्री तापमान से गर्मी जानलेवा हो रही है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन समेत 12 देशों में रेड अलर्ट जारी हो गए हैं। अकेले फ्रांस में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे शरीर गर्म रहने से हार्ट अटैक, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। मृतकों में करीब 80% लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं। बिजली संकट बढ़ गया है, हजारों घरों में बिजली नहीं है और फसलों को भी नुकसान हो रहा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि एयर कंडीशनर के बिना कई साल गुजार देने वाले लोग दुकान खोलते ही एसी खरीदने के लिए उमड़े जा रहे हैं और दुकानों से लूटपाट जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। ये तस्वीर पेरिस की है, जहां एसी के लिए उमड़े लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। फ्रांस में एक बस हादसे का शिकार सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि बस में एसी नहीं था और ड्राइवर बेतहाशा गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था। झुलसा देने वाली गर्मी में बिना किसी गैस के इस तरह अंडे फ्राई करने के वीडियो भी खूब वायरल हो रहे हैं। अब एक और तस्वीर जर्मनी की दिखाते हैं। ये लिप्ज़िग शहर है, जहां गर्मी की वजह से पटरियों के आसपास की जगह पिघली जा रही है। मजबूरी में प्रशासन को कई इलाकों में ट्राम की आवाजाही ही रोक देनी पड़ी है। फ्रांस के साथ साथ जर्मनी में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। आग की भट्टी की तरह दिन तो उबल ही रहा है और रातें भी गर्म हैं।
1: सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो घर है सारे वो इंसुलेटेड है, वो जो इतनी बर्फ वाली विंटर होती है उसके लिए बने, और इसमें अगर 40 डिग्री हो जाता है तो आप समझे कि ये ऐसा है कि जैसे कि गर्मी में जैकेट पहनने जैसा है। तो मतलब सारे टाइम जिसमें ना तो कोई एसी है, ना तो कोई फैन है, उसमें आप अगर इतनी गर्मी में रह रहे हैं तो वो एक तरीके से हीट चैम्बर जैसा है। और इस स्थिति में काम करना या फिर इस स्थिति में सोना या अपनी दिनचर्या करना बहुत ही मुश्किल था।
0: लोग अपने घरों को आग की भट्टी जैसा न बनने देने के लिए कई तरह के जुगाड़ कर रहे हैं। यही हाल हंगरी का भी है।
2: उसके कारण लोग उनका रहना मुश्किल हो चुका है। मैं बुडापेस्ट में 11 साल से रह रहा हूँ, पहली बार ऐसा हीट वेव्स हमने देखा है। बुडापेस्ट के हिस्ट्री में 42 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर पहली बार रिकॉर्ड हो चुका है।
0: दिक्कत यह है कि यूरोप आमतौर पर ठंडे इलाकों में माना जाता है और वहाँ का रहन सहन 40 डिग्री तापमान में रहने लायक नहीं है। अब इतनी गर्मी ने पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया है और एक के बाद एक लोगों का शरीर जवाब दे रहा है।
3: आमतौर पर यूरोप में जब गर्मी महसूस होती है तो अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री पहुंचता है और उसके बाद हमने देखा है कि चाहे स्पेन हो, जर्मनी हो, कुछ साल पहले वहां नदियां सूख जाती हैं। लेकिन इस बार जब पारा 40 के पार जाता दिखाई देता है तब संख्या आती है WHO की, 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। एक बड़ी वजह यह भी है कि यूरोप में ज्यादातर सर्दियां होती हैं और इसीलिए जो घर बनाए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह थर्मोडायनेमिक होता है कि तापमान बाहर ना निकले। अब आप सोचिए कि जिस घर पहले ही गर्म होते हैं वहां 40 के पार पारा है तो गर्मी निकल नहीं सकते, और इसीलिए आपने लोगों को देखा है कि चाहे वो हीट रिफ्लेक्टर लगा रहे हों, सड़कों पर यहां वहां घूम रहे हों, उनकी सड़कें पिघल जाती हैं। यूरोप इस तरह के एक्सट्रीम वेदर के लिए तैयार था नहीं, हालांकि ये लगातार वैज्ञानिक चेतावनी देते रहे कि यूरोप अब दुनिया का वो कोना है जो सबसे तेजी से गर्म हो रहा है और इसीलिए जरूरत है पेरिस एग्रीमेंट के तहत 1.5 डिग्री के उस तापमान को कम करने की ओर पूरी दुनिया एक साथ कवायद करे, वरना बहुत देर हो जाएगी। इस बार यूरोप ने शुरुआत देखी है, आने वाले सालों में ये स्थिति और विकराल हो सकती है।
0: आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: फ्रांस में तो लोगों ने त्राहिमाम कहना शुरू कर दिया है। अगर आप अभी की स्थिति देखें यूरोप की, तो 1300 से ज्यादा लोग दुर्भाग्यवश मारे जा चुके हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि यह समस्या कितनी गंभीर है, पिछले हफ्ता भर का जो औसतन तापमान है अलग अलग शहरों में कितना है। अब यह भारत का नहीं, यूरोप का है। अगर आप जर्मनी की स्थिति देखें तो बर्लिन में 32 और फ्रैंकफर्ट में 37 डिग्री तापमान, और यहां लोग बेहद परेशान हैं। लंदन 36 डिग्री है, पेरिस 41 डिग्री, और यहीं पर लोग ज्यादा उनकी जान की जाने की खबर है। बोर्दो की अगर बात करें तो 43 डिग्री हो गया, टुलूज 40 डिग्री हो गया। स्पेन की अगर हम बात करें तो मैड्रिड में 39 डिग्री है, ज्यूरिख की अगर हम बात करें तो 34 डिग्री है, म्यूनिख की एक बार हम आपको फिर ले चलते जर्मनी, वहां 33 डिग्री है। अगर आपको बुडापेस्ट ले चलें तो हम आपको देखिए पूर्वी यूरोप की स्थिति और पश्चिमी यूरोप की स्थिति लगभग एक सी है। बुडापेस्ट में फिर भी तापमान थोड़ा कम है पूर्वी यूरोप में 32 डिग्री, लेकिन पश्चिम में जैसे जैसे आप आते रहते हैं तापमान बढ़ता जा रहा है, और यह सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पश्चिमी देश जो है, पश्चिमी यूरोप के देश है, उनके जो घर इस तरह से बने हैं या बिल्डिंग्स इस तरह से बनी हैं कि वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं और गर्म रहती हैं। अब ठंडा किया जाए तो कैसे, एयर कंडीशनर्स की आवश्यकता है। बड़ी संख्या में लोग एयर कंडीशनर्स और पंखों के आदेश भी दे रहे हैं खरीदने के लिए, लेकिन मिलने में समय आ रही है। अच्छा, ये पिछले एक हफ्ते का तापमान है। आने वाले समय में, यानी आने वाले एक हफ्ते में, मौसम विभाग का आकलन ये है कि हर जगह 3 से 4 डिग्री तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। तो हर जगह अगर 3 से 4 डिग्री तापमान बढ़ेगा, उसकी वजह क्या है हम आपको वो भी बताते हैं। जो मौसम विभाग है उसका कहना है, जो ओमेगा ब्लॉक है, ओमेगा ब्लॉक क्या है आप जानना चाहेंगे, हवा का जो बहाव है वो उचित तरीके से, ठीक ढंग से इस समय नहीं है। गर्म हवा को जमीन के ऊपर ये बनाए रखता है, जिस तरह से ठंडी हवाओं की वो अपेक्षा कर सकते हैं वो हो नहीं पा रहा है। भीषण गर्मी का असर कई जगहों पर नजर आ रहा है। ओमेगा ब्लॉक की जब आप बात करते हैं तो उत्तरी अफ्रीका, जो सहारा रेगिस्तान है, वहां से गर्म हवा को यूरोप, गर्म हवा, और कुछ समय तो ऐसा भी आता है कि जब अंधड़ भी आने लगता है पूरे मेडिटेरेनियन को पार करके, तो अभी तापमान इतना ज्यादा उसकी वजह से बढ़ता जा रहा है कि मेडिटेरेनियन सागर, भूमध्य सागर के ऊपर भी वो हवाएं ठंडी नहीं हो पा रही हैं। ग्रीन हाउस गैसों से तेजी से हो रहा है जलवायु परिवर्तन, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उम्मीद यही कि सभी देश प्रयास करेंगे कंक्रीट और कांच, ये जो इमारतें हैं, अगर और आपने यूरोप में देखा होगा विकास के नाम पर बहुत तेजी से इमारतें बनाते हैं, कांच ही की दीवार बना देते हैं, केवल कंक्रीट और कांच की, वो हीट को और ट्रैप करती हैं। रातें गर्म होने से शरीर को ठंडा होने में का वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। दिन तो गर्म है ही सूरज की वजह से, रात को भी गर्मी बेहद ज्यादा है। यूरोप की जो बूढ़ी आबादी है, सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को और बूढ़ों को होता है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस वैसे ही कम हो जाता है। इटली में जो पो नदी है उसका जलस्तर कम हो रहा है, समुद्र के पानी भी कई किलोमीटर समुद्र का पानी भी पीछे खिसकता जा रहा है। लोग आमतौर पर यह सोचते कि चलो सुबह शाम सागर किनारे जाके बैठ जाएंगे, वहां भी समस्या हो रही है। हंगरी में जो पॉक्स न्यूक्लियर प्लांट है, नदी के गर्म पानी की वजह से उसकी भी क्षमता अब कम कर दी गई है, क्योंकि अगर आप परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे तो उन रिएक्टर्स को भी आपको ठंडा करना होगा, नदी का पानी भी बढ़ रहा है। अच्छा, इस पर विशेषज्ञों का क्या कहना है, क्योंकि समस्या यह है कि स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो ग्लेशियर पर भी इसका गंभीर असर दिखाई दे रहा है, उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए।
5: पिछले 8-10 सालों में ये जो हीट वेव का जो इफेक्ट है वो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत बड़ा है, और उसका मेन कारण जो है वो ग्रीन हाउस गैस का जो तापमान, जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्रीन हाउस गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत बढ़ रहा है, और उसका जो इफेक्ट है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड में आपको दिख रहा है। इसमें 2-3 बातें आपको समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि जो मल्टीपल फैक्टर्स इसमें है, पहला तो ये कि ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरा कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, और जो वैश्विक तापमान है वो तो खुद ही बढ़ रहा है, अभी हम 1.5 डिग्री वार्मर हैं, फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल एज। तो इसके कारण सब ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके कारण आप भी देख रहे हैं कि हीट वेव का एक स्थिति यूरोपियन कंट्रीज में आ रही है, और पिछले 8 से 10 सालों में इसका जो है कंपाउंडिंग इफेक्ट हुआ है। जो हमने पहले सोचा था कि ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये कंपाउंडिंग रेट में बढ़ता है। इसके कारण अभी आप देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में हीट वेव की समस्या आ रही है।
4: स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि इस भीषण गर्मी का असर अब स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर पर भी नजर आने लगा है। इस खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
7: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar, plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
6: Hexa Organic.

0: क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी या फिर चंद मोहरों को बलि का बकरा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी?
1: ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें कड़ी सजा मिले।
2: हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपक राय पाक साफ साबित हो जाते हैं?
3: तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखाधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी की शह से ही हो रहा है।
0: हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं।
4: कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
5: जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है, उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते।
0: SIT की जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: यूरोप इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव की चपेट में है। फ्रांस में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। देश के 54 विभागों ने रेड अलर्ट जारी किया है और कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के अनुमान है। फ्रांस की स्वास्थ्य एजेंसी ने खुलासा किया है कि भीषण गर्मी के चलते अब तक 1000 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई गई है। जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य और ऑस्ट्रिया में भी तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भीषण गर्मी से बिजली उत्पादन, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। जर्मनी में तो गर्मी से बचने के लिए सड़कों पर पानी की बौछार की जा रही है। न्यूज एजेंसी AFP के अनुमान के मुताबिक रविवार को यूरोप के करीब 19.1 करोड़ लोगों को 35 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान का सामना करना पड़ा। कहीं सड़कें पिघल रही हैं, कहीं स्कूल बंद करने पड़े हैं, तो कहीं जंगलों में भीषण आग भड़क उठी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोप का तापमान दुनिया के औसत तापमान की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। भविष्य में ऐसी गर्मी की लहरें और अधिक बार आएंगी, ज्यादा समय तक रहेंगी। पूरे ब्रिटेन में 1000 से अधिक स्कूलों को बंद करना पड़ा है। कंक्रीट और पुरानी तकनीक से बनी क्लासरूम की इमारतें इतनी गर्म हो गई हैं कि बच्चों और शिक्षकों का वहां बैठना मुश्किल हो गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसी खतरनाक हीट वेव अब लगभग हर साल देखने को मिल रही है।
1: आमतौर पर दुनिया का सबसे ठंडा इलाका माने जाने वाला यूरोप ने कभी ऐसी गर्मी देखी ही नहीं थी। दशकों तक कभी तापमान 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री के पार गया ही नहीं था। लेकिन इस बार ग्लोबल वार्मिंग का असर, भूमध्य सागर के ऊपर गर्म हवाओं के चलते यूरोप उबल रहा है। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, ये तमाम वो इलाके हैं जो इस समय गर्मी के प्रकोप झेल रहे हैं। आमतौर पर ये पूरा वो इलाका होता है जो ठंडा रहता है, लोग ठंडियों में यूरोप की यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन इस समय यूरोप में हाहाकार है, तापमान 40 डिग्री के पार है और अब इसका असर धीरे धीरे पूर्वी यूरोप को भी अपनी चपेट में ले रहा है।

0: चढ़ावा चोरी केस की जांच के दायरे में अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत करीब 80 लोग, चंपत राय का बयान दर्ज, गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी, कहा यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव कर्फ्यू और गुंडागर्दी से लोगों का जीना होगा हराम। बेअदबी मामले में बढ़ती जा रही है सीएम भगवंत मान की मुश्किलें, पंजाब के सिख विधायकों और मंत्रियों को अकाल तख्त का आदेश, 1 महीने में दूर करें सभी आपत्तियां। सीबीएसई की नई 3 भाषा नीति से 10वीं के छात्रों को बड़ी राहत, मौजूदा बैच पर नहीं लागू होगा नया नियम, पॉलिसी को लेकर नई गाइडलाइन जारी। दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होगी नई ईवी पॉलिसी, 4 साल में 15,000 करोड़ का होगा निवेश, रेखा गुप्ता सरकार की महत्वाकांक्षी नीति।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल उत्तर प्रदेश में चल रही चोरी और सियासत चोरी पर है। चोरी अयोध्या में राम मंदिर के अंदर हुई है और सियासत चोरी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर हो रही है। काना भक्ति के कंधे पर सवार सियासी कहानी की चर्चा करें तो उससे पहले हम आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में खुलासे के 3 हफ्ते के बाद आज क्या हुआ है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, यानी आज भी पुलिस ने पुलिस हिरासत नहीं मांगी। पुलिस ने ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान दर्ज कर लिया है। बाकी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत करीब 70 से 80 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। चोरी में संदिग्ध स्टेट बैंक के 2 कर्मचारियों की भूमिका की जांच हुई है। आरोपियों के बैंक खातों, लॉकरों की पड़ताल के लिए 3 बैंकों को नोटिस भेजे गए हैं। राम मंदिर में चोरी, आरोपियों की संपत्ति खरीद के कई खुलासे अब सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा खबर आई है कि अयोध्या बार एसोसिएशन कह रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के भीतर अयोध्या छोड़ दे। सीएम योगी भी कहते हैं कि अयोध्या की फिक्र छोड़े, हिम्मत है तो अखिलेश यादव मथुरा पर अब बोल कर दिखाए, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की आवाज उठाए। कांग्रेस तंज कर रही है कि हाँ, उज्जैन और अयोध्या तो बस झांकी है, लूट के लिए मथुरा अब बाकी है। तो बीजेपी के हिंदुत्व की सियासत के मुकाबले विपक्ष भ्रष्टाचार के मोर्चे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी जब राम, अयोध्या, राम मंदिर की बात करती है तो विपक्ष दान, चंदा और चढ़ावा चोरी से लेकर जमीन घोटाले तक की बात कर रहा है। बीजेपी विकास, सुशासन, रोजगार के दावे कर रहा है तो विपक्ष छूट, भ्रष्टाचार, पेपर लीक की बातें कर रहा है। ऐसे में यूपी की चुनावी सियासत दिलचस्प होती जा रही है। अयोध्या से निकली सियासत मथुरा तक अब पहुंच चुकी है। अभी आगे का दौर कैसा रहने वाला है, इन्हीं मुद्दों पर दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: जब पूरा देश, पूरी दुनिया रामलला के पैसों की चोरी पर सवाल खड़े कर रही है, तब कान्हा की भक्ति को चुनौती देते हुए सियासत भी सेंधमारी कर रही है। नई चुनौती यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अखिलेश यादव को दी गई है।
2: अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए।
1: बीजेपी कहती है कि राम की चिंता छोड़ कृष्ण की चिंता करनी चाहिए। अखिलेश कहते हैं डोनेशन से पहले नेशन फर्स्ट होना चाहिए।
3: जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट। समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म के आड़ में गोरख धंधा।
4: भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टियों का एजेंडा एक है कि हम असली हिंदुत्व का रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
1: राम से कृष्ण तक मजहबी सियासत के चाहे जितने दांव चले जाएं, लेकिन बुनियादी राजनीति यह है कि बीजेपी 2027 की चुनावी राजनीति का फोकस अवध से हटाकर मथुरा करने की तैयारी में जुट चुकी है।
5: अयोध्या, उज्जैन तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है, वहां भी लूटने का इंतजाम है, वहां भी कॉरिडोर बन रहा है।
1: बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है। ये तैयारी यूं ही नहीं है। यूं ही सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर नहीं जा चुके हैं। यूपी की राजनीति में ब्रज क्षेत्र का वजन बढ़ रहा है। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री, मंत्री तक आने वाले नेता ब्रज क्षेत्र से हैं। इतना ही नहीं, आने वाली 12 जुलाई को बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी मथुरा में ही आयोजित की जा रही है, क्योंकि 2027 के रण में बीजेपी अपने सबसे मजबूत ब्रज के किले से ही विजय का शरसंधान करना चाहती है। कारण ये है कि 2022 चुनाव में बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र की 65 में से 53 सीटें जीती थी, जबकि अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, वो भी 82 से 85% यादव वोटों की बदौलत। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद इस क्षेत्र की हवा भी बदली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 53 की जगह सिर्फ 42 विधानसभा सीटों पर आगे रही, जबकि समाजवादी पार्टी 12 की जगह 23 विधानसभा सीटों पर आगे आ गई और अखिलेश को मिलने वाले यादव वोट प्रतिशत भी 87 से 89% तक पहुँचे। अब मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि का मामला छोड़कर सीएम योगी ने यदुवंश की विरासत और पीटीए की सियासत का दावा करने वाले अखिलेश के सामने दुविधा खड़ी करने की कोशिश की है। दरअसल बीजेपी चाहे भले मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को सियासी मुलम्मे के साथ पेश करे, लेकिन चुनावी इंजीनियरिंग बीजेपी भी जात के साथ साधती है और जिस तरह सीएम योगी ने चुनावी सियासत की धार अयोध्या से मथुरा की ओर मोड़ी है, उसमें हिंदुत्व के वोट के संग पीडीए की सियासत को तंग करने की पूरी प्लानिंग नजर आती है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तब एक घोषणा काफी लोकप्रिय हुई थी कि या तो अयोध्या सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो मथुरा का मुद्दा निकल कर आया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ये राजनीतिक प्रतिबद्धता है या जो राजनीतिक नुकसान हो रहा है उससे भरपाई करने की कोशिश हो रही है। तमाम मुद्दे इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल होंगे। पूछेंगे उनसे कि क्या सचमुच में अब राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद मथुरा के आंदोलन को समर्थन दिया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। विनोद बंसल राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर सतीश प्रकाश पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनसे भी पूछेंगे कि आखिरकार ये यदुवंश की राजनीति अचानक कहां से उभर रही है उत्तर प्रदेश के भीतर। तमाम मुद्दे हैं लेकिन तीन सवाल सबसे पहले मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, अखिलेश को मथुरा जन्मभूमि पर बोलने की चुनौती क्यों दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ? दूसरा सवाल, अयोध्या में भ्रष्टाचार पर घिरी बीजेपी अब मथुरा में हिंदुत्व की लहर से बचेगी क्या? क्योंकि एक तरफ अगर पारदर्शिता पर नुकसान हो रहा है तो हिंदुत्व की अपनी राजनीति को लाकर लहर से बचने की कोशिश करने की चल रही है क्या भारतीय जनता पार्टी की कोशिश? तीसरा सवाल, क्या राम मंदिर में चोरी कांड से बीजेपी को सबसे ज्यादा चुनावी नुकसान होगा? क्योंकि बार बार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार के प्रतिनिधि इस राम जन्मभूमि ट्रस्ट में क्या कर रहे थे जब वहां पर खुलेआम चोरी हो रही थी जो पुलिस की जांच में भी उभर कर सामने आ रहा है। तीन सवालों के साथ दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जो बात मैंने उठाई थी, मथुरा का आंदोलन कोई नया नहीं है, लेकिन आज जब मथुरा के आंदोलन की चुनौती दी जा रही है, जब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ है, क्या यह राजनीतिक निरंतरता के तौर पर देखा जाए या जो नुकसान हो रहा है उसके भरपाई के रूप में देखा जाना चाहिए?
6: साहिल जी, श्रीमान अखिलेश यादव स्वयं को यदुकुल वंश का ही कहते हैं ना, और यदुकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण, उनकी जन्मभूमि का मामला, जो नए नए राम भक्त बने हैं, जिनकी सनातन में नई नई आस्था जागृत हुई है, जो बाबरवादी से रामवादी हुए हैं, जो औरंगा की बजाय जो है भगवान श्री कृष्ण में जिनकी आस्था पनपना प्रारंभ हुई है, वो कृपा करके बताएं ना कि कृष्ण जन्मभूमि को मुक्ति कराने के संग्राम में वो योगदान करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, और नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते? कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न अगर उनसे पूछा जाए तो सनातन के मानने वालों के मन का जो प्रश्न है, जो सनातन के नए नए झंडा बरदार बनने का जो है दावा कर रहे हैं, क्या उनसे ये प्रश्न पूछना गलत है? ये इसमें कोई राजनीति नहीं है, दूर दूर तक राजनीति नहीं है, ये विशुद्ध सनातन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। काशी मथुरा और अयोध्या वो किसी राजनीतिक दल के केंद्र नहीं थे, उसको औरंगा ने इसलिए नहीं गिराया था किसी राजनीतिक दल से वास्ता था, बल्कि सनातन का प्रतीक होने के नाते कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को गिराने का दुष्कर्म औरंगा ने इसलिए किया था क्योंकि वो सनातन का प्रमुख केंद्र था। काशी विश्वेश्वर को औरंगा ने इसलिए गिराया था कि काशी विश्वेश्वर का मंदिर शिव भक्तों के लिए, सनातन धर्मियों के लिए प्रमुख केंद्र था। श्री रामलला के मंदिर को बाबर ने इसलिए ढाया था क्योंकि सनातन की का शंखनाद उस अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर से होता था। तो जब सनातन के प्रहार करने वाले अड्डों को ध्वस्त करने का काम मुगलों ने किया और उन मुगलों की राजनीतिक चाकरी करने पर जो लोग आमादा रहते हैं, आज अगर वो सनातनी अपने आप को कहना प्रारंभ कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनसे प्रश्न होगा कि भाई आपका श्री रामलला में तो आस्था आपकी, चूंकि राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया, भव्य दिव्य हो गया, उसका शिखर जो है वो गगनचुंबी हो गया, आज आपको श्री रामलला में आस्था प्रकट करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं है, तो कृपा करके बता दीजिए कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आप आंदोलन में हिस्सेदारी कब करने वाले हैं। तो इसमें क्या
0: अनुराग भदौरिया
6: साहिल जी,
0: योगी आदित्यनाथ सवाल पूछ रहे हैं, अगर धार्मिक बन रहे हैं तो कृष्ण जन्मभूमि का भी सवाल उठा लीजिएगा। सबसे पहले तो ये बता दीजिए इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, क्या कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर आपका समर्थन रहेगा?
7: देखिए सबसे पहले तो जब मुगल काल चल रहा था तो समाजवादी पार्टी नहीं थी, और जब समाजवादी पार्टी है तो मंदिर में चोरी हो रही है तो समाजवादियों ने पकड़ा है, और चोरी करने वाले कौन है? जो प्रभु की बहुत बात करते थे, प्रभु के नाम पर राजनीति करते थे, राम के नाम पर राजनीति करने वाले ही राम के मंदिर में डाका डाल रहे थे। इनके सरकार में सोचो मंदिर में चोरी, पेपर में चोरी, जमीन चोरी, जंगल चोरी, सरकारें चोरी, MP MLA चोरी, विश्वास चोरी, ट्रस्ट में ट्रस्ट नहीं रहा, सोचो आप जनता का विश्वास चुरा रहे हैं, और तो और आजकल खबर भी चोरी करते हैं, खबर भी चोरी हो रही है, सोचो कुछ खबरें आती हैं कुछ खबरें नहीं आती हैं, ऐसी सरकार आपने कभी देखा है? कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पर चोरी ना हो रही हो, जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये फंस चुकी है, उस पर बात करेंगे कैसे? इनका चेहरा एकदम जनता के सामने आ चुका है, और कृष्ण की बात करते हैं, अरे कृष्ण के कर्मों पे, कृष्ण के जो आदर्श हैं, कृष्ण के जो आचरण है उसी पे तो अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, तभी तो उन्होंने ये पकड़ा आपको, तभी तो आपको यहां पे जिस तरह से दान पात्र में चोरी हो रही थी तभी तो पकड़ा आपको, उनके आदर्श आचरण पे नहीं चल रहे होते, उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे होते, वो अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते, वो सत्य के लिए नहीं लड़ रहे होते, तभी तो आपको पकड़ा ना कि चोरी हो रही थी, उन्होंने पकड़ लिया, असत्य हो रहा था उन्होंने पकड़ लिया, तो श्री कृष्ण के तो यही आदर्श थे, तो श्री कृष्ण की भूमिका को निभाते हुए, उनके आदर्श आचरण को अपनाते हुए ये काम कर रहे हैं, और आप यहां सिर्फ बातें करते हैं, इसलिए सही कहते हैं कि आप प्रभु के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन प्रभु के लिए आपके अंदर में भावनाएं नहीं है, हम लोग उनके आदर्श आचरण पे चलने वाले लोग हैं, धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है, हम कभी भी इस पर राजनीति नहीं करते, हम इतना भव्य केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं कि हम उस पर राजनीति करते हैं,
0: बीजेपी ये कह रही है
7: कितना बड़ा मंदिर हो रहा है, हम कभी उसके लिए किसी से कुछ कहते हैं?
0: योगी जी ने आज कहा नहीं, योगी आदित्यनाथ ने आज कहा, मुख्यमंत्री आज ये कह रहे थे कि आप अभी धार्मिक बन गए हो, पहले तो आप धार्मिक थे नहीं, अभी आप धार्मिक बन गए हो, तो राम जन्मभूमि के बारे में आपके मन में जो आस्था पैदा हुई है, क्या कृष्ण जन्मभूमि के बारे में भी आपके मन में आस्था है या नहीं है? ये एक नए मोड पर आपको ले जा रहे हैं, नए पिच पर आपको खेलने के लिए ले जा रहे हैं, तो क्या उस पिच पर आप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे?
7: कोई पिच, देखिए सबसे पहली बात है कि ये बताएं कि अयोध्या में राम के मंदिर में चपत किसने लगाई है, ये कौन है मास्टरमाइंड, पहले तो उसका बताएं, उससे बताने से सब भाग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। दूसरी बात, हम देश के संविधान और कानून पर चलने वाले लोग हैं, एक तरफ हम आस्था का सम्मान का आस्था, एक तरफ धर्म मेरा आस्था का विषय है, दूसरी तरफ राष्ट्र जो देश है वो संविधान और न्यायपालिका से चलता है, हम दोनों को मानते हैं, संविधान और न्यायपालिका जो फैसला देता है उसको मजबूती से उसके साथ खड़े होते हैं, और जो हमारा जो मेरा धर्म है वो मेरा आस्था का विषय होता है, तो जहां धर्म के ऊपर अन्याय होता है, जहां धर्म में चोरी डाका डालने की बात होती है, सनातन के विश्वास
0: नहीं, तो राम मंदिर का मुद्दा आस्था का है कि पारदर्शिता का है? राम मंदिर के ट्रस्ट में जो हुआ है वो आस्था का मुद्दा है या पारदर्शिता का मुद्दा है, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है कि या राम जन्मभूमि के बारे में आस्था का मुद्दा है, ये जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा।
7: देखिए एकदम क्लैरिफाई कर रहा हूं, एक तो सबसे बड़ी बात, हमारे सनातनियों के लिए आस्था का विषय है, उस पर विश्वास पे चोट है, हम प्रभु के यहां दान दे के आ रहे हैं, प्रभु के यहां दान पात्र में, और मेरा दान चोरी हो जा रहा है, ये मेरा दान चोरी कर रहे हैं, तो जब दान चोरी कर रहे हैं तो हम उसे भ्रष्टाचार लेके आते हैं, हम दोनों बातें कर रहे हैं, हमारे धर्म में जो हमारा सनातन है, सनातन की आस्था पे चोट का भी मामला है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था की चोट का मामला है, और उसमें पारदर्शिता इसलिए है क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो लोगों को बचाया जा रहा है ऐसा लग रहा है, उनको क्यों बचाया जा रहा है?
8: तो चैलेंज दे रहे हैं ना कि आपको सनातन के बारे में जो अचानक आस्था पैदा हुई है, जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात अखिलेश यादव आजकल करने लगे हैं, जो कह रहे हैं कि अयोध्या के भीतर वो एक ऐसी नगरी बनाएंगे, धार्मिक नगरी, तो क्या उसी तरीके से इसीलिए तो चैलेंज दिया जा रहा है कि कृष्ण नगरी के बारे में भी बात करिएगा, यदुवंशियों के बारे में भी बात करिएगा? तो यही तो चैलेंज आपको दिया जा रहा है। चैलेंज एक्सेप्टेड या चैलेंज डिनाई?
7: चैलेंज हम कर रहे हैं।
8: चैलेंज एक्सेप्टेड या चैलेंज डिनाई?
7: वही तो चैलेंज हम, अरे सुन, अरे हम तो वही चैलेंज कर रहे हैं कि हम देश के संविधान और न्यायपालिका को भी मानते हैं, और धर्म रास्ता का विषय राजनीतिक विषय नहीं है। वो मंच से राजनीतिक बात कर रहे हैं, हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। प्रभु मेरे आस्था का विषय, जब चोरी हो रही थी तब क्यों नहीं पकड़ा किसी ने? तब क्यों नहीं आवाज उठाई भारतीय जनता पार्टी ने? दान पत्र में चोरी हो रही तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने आवाज उठाई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आवाज उठाई। तब तो कोई बीजेपी का नेता नहीं बोला कि यहां पे दान पत्र में चोरी हो रही है। तब बोलते चूंकि उस समय चोरी हो रही थी, वो मेरे आस्था का विषय था, इसलिए हमने
8: प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे, बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले सतीश प्रकाश, आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो सवाल प्रेम शुक्ला जी से मैंने पूछना शुरू किया, राजनीतिक पारदर्शिता का विषय है, राजनीतिक। आपको आपको ही उत्तर देने का मौका मिलेगा। सतीश प्रकाश जी बात करेंगे, उसके बाद आपके पास, प्रेम शुक्ला जी आपके पास। अरे मैं दूंगा आपको उत्तर देने का मौका। सतीश प्रकाश जी बात करेंगे, उसके पास आपके पास।
6: इसलिए
8: नहीं, बिल्कुल नहीं हटेगा। इसी मुद्दे पर है हम इसी मुद्दे पर है, हम इसी मुद्दे पर है, हम इसी मुद्दे पर है, हम इसी मुद्दे पर है। मैं आपके पास आऊंगा सतीश प्रकाश जी, आप जरा सवाल सुन लीजिएगा एक बार जरा इसका। सतीश प्रकाश जी, क्या यह राजनीतिक प्रतिबद्धता दिख रही है योगी आदित्यनाथ जो बयान दे रहे हैं उसके उसमें आपको, या फिर जो राजनीतिक नुकसान हो रहा है राम मंदिर के में चोरी के वजह से उत्तर प्रदेश सरकार पर भी उंगलियां उठ रही है, उसको कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश है, मामला कहीं और ले जाने की?
9: नहीं, निश्चित रूप से जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में इस घटना के बाद में, आम जनमानस के बीच में एक सवाल है, सरकार घेरे में है। और इसमें अगर आप ट्रस्ट को देखेंगे तो 9 लोगों के बीच में साधु संत 9 लोग हैं, 6 लोग सरकार के द्वारा चुने हुए लोग हैं, सरकार के लोग शामिल हैं, सरकार के अफसर शामिल हैं, सरकार का एक बहुत बड़ा सेक्रेटरी उसमें शामिल है। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं सरकार मुद्दे को भटका रही है। दूसरी बात, प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे थे कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, हाँ बाहर से आने वाले बहुत सारे जो लोग आए उन्होंने मंदिरों को इसलिए टूटा कि उनका एक उद्देश्य यह भी था कि मंदिरों के अंदर बहुत सारा सोना पैसा रखा हुआ था, उनका एक उद्देश्य यह भी था कि उस धन को लूटना। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि राम मंदिर के बीच में जहां जाकर के इतनी बड़ी लूट हुई है, इतनी बड़ी लूट होने के बाद भी, और उत्तर मैं तो बड़ा भौंकच चक्का हूं कि आज न्यायिक हिरासत में चले गए 14 दिन की और पुलिस ने कस्टडी रिमांड मांगी
8: नहीं। लेकिन जो मथुरा चैलेंज दिया है, मथुरा चैलेंज जो दिया गया है उसको लेकर आपको क्या लगता है? क्योंकि अब मथुरा का चैलेंज दिया गया, वो कह रहे हैं कि अभी सभी लोग धार्मिक हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सनातन का विश्वास कर रही है, समाजवादी पार्टी सनातन के बारे में बात करिए तो कृष्ण जन्मभूमि पर भी बात करिएगा, क्योंकि मामला तो राजनीतिक उधर भी बनेगा। तो ये मथुरा चैलेंज को लेकर आपको क्या लगता है?
9: नहीं नहीं, आप देखिए आदरणीय योगी जी, एक योगी पुरुष है, एक धार्मिक पुरुष है, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं उठाई है। लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो गोल चेंज कर रहे हैं, वो राम मंदिर से मुद्दे को हटा करके कहीं ना कहीं मथुरा की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, इस मुद्दे से दिमाग हटाना चाहते हैं। अभी कितने ट्रस्टी लोगों से बातचीत की है? और दूसरी बात, आप मुझे बताइए, अगर आप ट्रस्ट के लॉ को पढ़ोगे तो किसी भी ट्रस्ट के अंदर कोई घोटाला होगा तो सबसे पहली जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती है। क्या किसी जो गिरिजी महाराज है,
8: प्रेम शुक्ला जी, गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश?
9: बिल्कुल 100%
8: गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश, सवाल यह उठाया जा रहा है कि गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश है?
6: बिल्कुल गोल पोस्ट चेंज नहीं हो रहा है। आपने पूरा 6 मिनट का समय आदरणीय अनुराग भदौरिया जी को दिया, लेकिन वह स्पष्टता से यह कह नहीं पाए कि कृष्ण जन्मभूमि पर उनका स्टैंड क्या है। अब राम मंदिर पर उनका स्टैंड समझ लीजिए, राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन में आगे बढ़कर थी और समाजवादी पार्टी बाबरीवादियों के साथ थी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में मोहम्मद आजम खां, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आज भी हैं, बकरी चोरी के केस के बाद भी हैं, वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदस्य थे। जफर याब जिलानी, जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार के समय एडिशनल एडवोकेट जनरल के पद पर थे, वो जफर याब जिलानी उसी समय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील भी थे। यानी सरकारी वकील रहते हुए भी उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की वकालत करना नहीं छोड़ा था। और श्री मुलायम सिंह यादव ने 2017 के चुनाव के समय स्पष्टता से कहा था कि मैंने मुसलमानों के लिए 16 कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी, यानी सरयू के जल को लाल हमने किया था। और मुझे याद है 1990 की कार सेवाओं में स्वयं शामिल रहा, उस कार सेवा के समय उत्तर प्रदेश में रामदाना का नाम बदलकर मुलायम दाना कर दिया गया था। जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई थी, जिस तरह का उत्पीड़न और अत्याचार हुआ था, वो कोई नहीं भूला है। तो आज हम यही पूछ रहे हैं कि आपने तो राम मंदिर में बाबर का समर्थन किया, आप कृष्ण जन्मभूमि पे औरंगा आज भी औरंगा के समर्थन में है, तब तो भाई समाजवादी पार्टी का जन्म हो गया था ना। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय मुलायम सिंह यादव सत्ता में थे,
8: लेकिन गोलपोस्ट चेंज आंदोलन के लोग तो ये देख रहे हैं ना। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर सर्वे होता है, सी वोटर के सर्वे में दिखता है कि सी वोटर के सर्वे में दिखता है कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की चोरी का मुद्दा गूंज उठेगा।
6: सनातन है
8: उत्तर प्रदेश के चुनाव में, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब प्रचार होगा तब यह राम मंदिर के भीतर दान चोरी का मुद्दा गूंज उठेगा। उससे ध्यान भटकाने के लिए तो ये कोशिश नहीं हो रही, अचानक मथुरा की बात की जा रही है। मथुरा की बात तो पहले से हो रही
6: थी। नहीं, कृपा करके इस मुद्दे को भी समझ लीजिए साहिल जी। इस मामले में सबसे पहले चढ़ावा चोरी का सबसे पहला जो मामला है, इसके शिकायतकर्ता भी, विसल ब्लोअर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ये दूसरा विसल ब्लोअर जो है
8: पवन पांडे क्या कर रहे थे फिर?
6: वो कार्यसेवक है।
8: तो कहते हैं कि समाजवादी भगवान राम उनके सपने में आए तब जाकर यह मामला उजागर हुआ है।
6: हाँ, तो वो तो
8: पवन पांडे का बयान सुना कि नहीं आपने?
10: जवाब
6: नहीं उसमें, और
10: जवाब,
6: लेकिन पवन पांडे विसल ब्लोअर नहीं है। विसल ब्लोअर पवन पांडे नहीं है। पवन पांडे मुझे बताइए ना, पवन पांडे ने कितना दान जो है अयोध्या में दिया जरा पूछिएगा। अखिलेश यादव ने कितना दान दिया जरा पूछिएगा। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के लिए कौन सा अभियान चलाया जरा पूछिएगा।
8: असलियत ये है कि जब प्रेस को पता चला था, प्रेस छुपा रही थी, तब जाके पवन पांडे ने बाहर आकर बात करना शुरू किया था।
6: नहीं बिल्कुल,
8: ये बात भी तो सही है ना।
6: पवन पांडे कोई लेन देन नहीं,
8: ये बात भी तो सही है ना। प्रेस ने छुपाने की कोशिश की।
6: पवन पांडे को
8: जब पता चला कि अप्रैल महीने से दान के भीतर चोरी हो रही है, तब प्रेस ने उसको छुपाने की कोशिश की थी।
6: आप साहिल जी आप पवन पांडे को नहीं जानते। पवन पांडे एक हिस्ट्री शीटर अयोध्या के अपराधी है। आप अपराधी कहां से विसल ब्लोअर बनेगा? अपराधी है वो, हिस्ट्री शीटर है।
8: उत्तर प्रदेश में मामा को निकालेंगे तो
6: ठगी का मामला है,
8: लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी। सतीश प्रकाश जी से मैं पूछ लूंगा उसके बारे में। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिएगा। पुरानी बात है हमारी,
10: देखिए
8: और उसी पर हम लोग लगे हुए।
10: जैसे ही ये कह रहे थे तो मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं ना, आज समाजवादी पार्टी है ना, जन्म है ना समाजवादी पार्टी का। मंदिर में चोरी हो रही थी तो समाजवादियों ने पकड़ा, और आप 20 दिन तक 15 दिन तक गायब थे। आप तो बोलने को तैयार नहीं थे, टीवी पे आने को तैयार नहीं थे। आज जो डंके की चोट पे बोल रहे हो ना यहाँ पे कि हमारे कार्यकर्ता ने उठाया, तब तो आप टीवी पे नहीं आ रहे थे। समाजवादी अपनी आवाज उठा रही थी तो आप पता नहीं बिल में घुस गए थे, किस बिल में घुसे हुए थे भारतीय जनता पार्टी। जब समाजवादी पार्टी कह रही थी मंदिर में चोरी हो रही है, तब डिबेट में आने को तैयार नहीं थे, नजर से नजर मिलाने को तैयार नहीं थे, भागे भागे घूम रहे थे। जब प्रूफ हो गया समाजवादियों के सामने, प्रूफ हो गया, एसआईटी ने प्रूफ कर दिया कि वहां पे चोरी हुई है, तब जाके आप सामने आए हो, बिल से निकल के आए हो। हम तो पहले से कह रहे थे, हम तो आवाज उठा रहे थे, तब है करने लग गए। एक बार भी नहीं आए, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं आई। तो ये सोच लो कैसी नियत है आपकी, कैसी नियत है प्रति आपकी, भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं है आपकी, प्रति भगवान के नाम पे राजनीति करने की। आप धन के चक्कर में रहते हो, आपको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर धर्म से लेना देना होता तो आप समाजवादियों के साथ आवाज मिलाते हो, कहते कि चोरी हो रही है, वहाँ चोरी हो रही है, आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हो, अब अयोध्या में पकड़े गए हो तो आप भाग रहे हो वहाँ पे।
8: विनोद बंसल जी,
10: मथुरा भाग रहे हो, मथुरा में भी घेरेंगे, मथुरा में
8: चोरी करोगे। विनोद बंसल जी,
10: जैसे अयोध्या में पकड़े,
8: विनोद बंसल जी,
10: हम लोग अच्छे से,
8: ये तो घोषणा बदल गई है अभी।
10: जहाँ चोरी होगी
8: वहाँ कांग्रेस पार्टी अब घोषणा ये दे रही है, विपक्ष घोषणा ये दे रहा है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, नहीं है। उज्जैन और अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और किस परिपेक्ष में यह घोषणा दी जा रही है आपको पता है। तो क्या आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप किस मुंह से जाएंगे, कहेंगे कि हमको काशी मथुरा भी दे दीजिएगा करके, जिस तरीके से अयोध्या में हमने किया हुआ है? यह तो सवाल रहेगा ना कहीं ना कहीं।
11: साहिल जी, डिबेट के अंतिम चरण में मेरे पास आए, मैं चुपचाप सुन रहा था। मुझे लगता है कि आप भी मुझे सुनेंगे ठीक से और सुनने देंगे लोगों को। मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि मैं राजनीतिक दल का कोई कार्यकर्ता नहीं हूं, प्रवक्ता नहीं हूं, मुझे इसकी सोच नहीं है कि आगे चुनावों में क्या होगा, वो मेरा एनालिसिस भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए जिस तरह से भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर कीचड़ उछाली जा रही थी और बजाय इसके कि FIR दर्ज करके कोर्ट में जाकर के उन सब चीजों का रिड्रेस किया जाता, SIT में आज तक इन्होंने कोई एविडेंस नहीं दी और सिर्फ भक्तों की भावनाओं का आहत कर रहे हैं। और पूजनी योगी जी ने जो कहा है, देखिए मथुरा के बारे में, हालांकि मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी जिसको लोग सामान्य तौर पर समाजवादी पार्टी के नाम से जानते हैं कि जो योगी जी ने कहा है एक अच्छा अवसर है, अच्छा अवसर है। देखो बीच में ना बोला यार, देखो साहिल जी जरा रोकना पड़ेगा,
10: यहाँ कैसे चोरी हो गई
11: साहिल जी,
10: बताइए।
8: ठीक है,
10: नहीं रोकना क्यों पड़ेगा,
8: है आप मधुरा जी सुन लीजिए ना, उनको बहुत देर के बाद मौका मिला, उनकी बात भी सुन लेते हैं। अनुराग जी आपके पास आऊंगा ना मैं, अगर आपके बारे में बोला गया है तो आपको बोलने का मौका मिलेगा, जिस तरीके से प्रेम शुक्ला जी को भी 6 मिनट पूरे मिले थे। ठीक है अनुराग जी प्लीज, उनको बात खत्म करने दीजिए ना, उनको बात खत्म करने,
10: अगर मुझे आप अकेले बोल, नहीं प्रेम शुक्ला जी मेरे बीच में बोले तो आप ये अलाउ कीजिए मैं प्रेम शुक्ला के बीच में बोलूंगा, वो पूरे समय बोलते रहे, मैंने उनको बोलने का मौका दिया,
8: हो गया वो सब, हो गया
10: वो प्रभु राम के वहाँ चोरी नहीं बचा पाए। और अब
8: विनोद बंसल जी आपकी बात खत्म करिए, अनुराग जी प्लीज जरा डिबेट के रूल फॉलो करते हैं, बाकी जगह पे तो होते नहीं है, कम से कम इस डिबेट के रूल फॉलो करते हैं। चलिए विनोद बंसल जी आपकी बात, हाँ हो गया हो गया हो गया
11: साहिल जी, विनोद साहिल जी मैं कहना चाहता हूँ, देखिए एक बड़ा
10: बिल्कुल बिल्कुल बोलने दीजिए,
11: पूजनीय योगी जी ने बड़ा गोल्डन चांस दिया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि कम से कम अभी जो मथुरा वाला काशी वाला मुद्दा है ना जी, वो कोर्ट के द्वारा जल्दी निर्णय होने वाला है और पॉजिटिव भी है। और मैं चाहूंगा कि देखिए इसको राजनीतिक मानसिकता छोड़ करके इनको साथ में आना चाहिए, अच्छा रहेगा। मैं निवेदन कर रहा हूं और एक निमंत्रण भी दे रहा हूं, देखिए क्यों क्यों सारा का सारा क्रेडिट आप भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हो, आप स्वयं जान करके सिर्फ उनको इस्लामिक जिहादियों को खुश करने के लिए आप अपनी जन्मभूमि की मुक्ति के लिए एक बार भी दर्शन करने भी नहीं जाओगे क्या? मैं कहता हूँ राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आप राम जन्मभूमि के लिए दर्शन करने नहीं गए, वहां के भले ही कारसेवकों को आपने गोली से लहूलुहान किया, कोई बात नहीं वो पुरानी बात हो गई। अब मैं कहता हूँ कम से कम कृष्ण जन्मभूमि के लिए

0: में कह दूंगा आपको मैं, अभी देखिए 27 के चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ लोग ये काम कर रहे थे, अयोध्या पर अटैक कर रहे थे, लेकिन कर कोई बात नहीं। मैं अब कह रहा हूं कि अब कम से कम जन्मभूमि को और भगवान भोले की नगरी को, अभी चूंकि कोर्ट से निर्णय आने वाला है, आप क्यों उसका सारा सारा क्रेडिट बीजेपी को देना चाहते हो? कुछ आप भी ले लो ना, कुछ साहस करो, भगवान राम और भगवान शिव के साथ खड़े हो जाओ।
1: जी आप
0: हो सकता है आपके आपकी बेहतरी पार हो जाए। मैं तो बड़े सहृदय के साथ
1: हिंदू परिषद से,
0: मैं सहृदय के साथ कह रहा हूँ,
1: विश्व हिंदू परिषद से खुला आमंत्रण आपको दिया जा रहा है कि बीजेपी को क्रेडिट मत दीजिएगा, आप भी आइए।
2: सवाल है वो हमें सुनिए, वो हमें आमंत्रण दे रहे हैं जो चोरी के सक्के दायरे में है, बताइए वो हमें निमंत्रण दे रहे हैं जिनकी निगरानी में चोरी हो गई प्रभु के घर में, वो हमें निमंत्रण दे रहे हैं। पहले अपने आप को साफ सुथरा करो, पहले अपने आप को संभालो कि आपके संरक्षण में, आपके देख रेख में, प्रभु के मंदिर के पात्र में चोरी होती रही और आप देखते रहे, आप क्यों देखते रहे? सवाल ये है, बड़बड़ाइए मत, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसमें जवाब दीजिए, बड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा। ये बताइए आपके देख रेख में वहाँ काम हो रहा था, आपके देख रेख में दान पात्र में वहाँ पे पैसे गिने जाते थे, सारी व्यवस्था देख रेख में होती थी, वहाँ चोरी कैसे हो गई? विश्व हिंदू परिषद बताइए चोरी कैसे हो गई? इसका जवाब नहीं दे रहे हो तो आवाज बंद हो जाती है, आवाज बंद हो जाती है, मुझे पता है कितना आवाज बंद जाती है। वहाँ पे किसने चपत लगाई है उस मंदिर में, सबको पता है चपत लगाने वाले कौन है, अपने नाम बता दो ना, चपत लगाने वाले जिन्होंने हमें नमस्कार कीजिए, इसलिए नमस्कार कीजिए कि सच्चे सनातनी है समाजवादी, जिन्होंने आवाज उठाई है कि प्रभु की यहाँ चोरी होने से और ज्यादा चोरी होने से रोका ना, पता नहीं कब से चोरी कर रहे थे और कितना चोरी कर ले जाते, पता नहीं क्या क्या चोरी कर ले जाते आप लोग, आप लोग आस्था तो चोरी कर ही रहे थे और पता नहीं क्या चोरी करते। अच्छा हुआ कि हमने आपको पकड़ लिया, कि आप पकड़ में आ गए तो आपकी आवाज आज गिड़गिड़ाने लगी है, ये आवाज गिड़गिड़ा जो रही है ना, ये अंदर में आपके चोर है जो चोरी करने से निकला है। कमाल की बात कर रहे हो आप, सब आप बोल खुल गई तो बड़बड़ा रहे हो, मैं तो आपके पीछे बोला नहीं
0: बोलेंगे,
2: अभी डिबेट का कानून सिखा रहे थे
1: विरोध बंसल जी, मुद्दा तो आप ही लोगों ने दिलवाया ना, अगर ट्रस्ट का काम ठीक से चल रहा होता, अगर नहीं विनोद बंसल जी आप बीच में मत बोलिएगा, लेकिन मुद्दा तो आप ही ने दिलवाया, अगर ट्रस्ट का काम ठीक से चल रहा होता, ट्रस्टी अगर बराबर से ध्यान रख रहे होते तो आज ये मुद्दा चर्चा के लिए लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
2: मेरी बात हो जाए,
1: मुद्दा तो आप ही ने दिलवाया ना विनोद बंसल जी, आप समाजवादी पार्टी को दोषी ठहरा रहे हैं, बाकी लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं।
2: साहिल जी
0: नहीं नहीं साहिल जी,
2: साहिल जी जो ज्ञान मुझे दे रहे हैं ये वो ज्ञान दे रहे हैं जो खुद ही चोरी के दायरे में,
0: ये ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट ने तो खोला था मुद्दा,
2: प्रभु के बारे में
0: गठन किया,
2: प्रभु के दास ने
1: तो आज बोला, विनोद बंसल जी क्या बात कर रहे हैं, बता दो जब मुद्दा आया कम से कम आज ये कहने की जरूरत नहीं है, आज ये कहने की जरूरत नहीं है, आज ये कहने की जरूरत नहीं है और आज हम इस पर बहस नहीं कर रहे हैं, आज मुद्दा राजनीतिक है, आज मुद्दा इस बात का है कि राम जन्मभूमि के भीतर जो चोरी पकड़ी गई है उसके बाद क्या अब मथुरा की बारी लाकर राजनीतिक बहस को कहीं और ले जाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? सतीश प्रकाश जी, आम तौर पर उत्तर प्रदेश में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी उस पिच पर अच्छे से खेल सकती है कि जहां पर धार्मिक भावनाएं आस्था पहचान की राजनीति जब होती है तब भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्या आज की स्थिति में सतीश प्रकाश जी जो स्थिति यहां पर नजर आ रही है उससे क्या आपको लगता है? क्योंकि देखिए हमारे सर्वे में भी इस बात का जिक्र हुआ था, जो सी वोटर का सर्वे था उसमें भी यह बात साफ खुलकर नजर आ रही थी कि किस तरीके से ट्रस्ट की जो नींद खुली है उसको लेकर जब पूछा था कि आरोप सिद्ध होते हैं तो यूपी सरकार के बारे में आपकी राय क्या बिगड़ेगी, 50% लोग कह रहे थे कि हाँ बिगड़ सकती है, 50% लोग। और इसीलिए सवाल उठता है कि आज की स्थिति में विपक्षी दल धार्मिक संस्थाओं और आस्थाओं के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कितने पुख्ता तरीके से खड़े हो सकते हैं, और निष्पक्ष जांच को लेकर भी पूछा गया था कितना भरोसा है, 40% से ज्यादा लोग कहते हैं कि हमें भरोसा नहीं है उस बात को लेकर। इसीलिए सवाल उठ रहा है, क्या इसीलिए मथुरा निकाली जा रही है कि बात निकाली जा रही है?
3: जी नहीं, देखिए साहिल जी बाकायदा जो बीजेपी ने अयोध्या को एक धार्मिक पिच के रूप में पॉलिटिकल पिच बनाई थी, लेकिन आज वो पॉलिटिकल पिच कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार हुआ है उससे गीली हो चुकी है, वहां गेंद टर्न लेगी बहुत ज्यादा, वहां बीजेपी का निश्चित रूप से वो उसके आउट होने के चांस है, इसलिए बीजेपी जानबूझ करके अब मथुरा के ऊपर एक नई पिच खड़ा करना चाहती है और वो पिच भी कहीं ना कहीं धार्मिक होगी। तमाम उत्तर प्रदेश के दलों को ये से मेरा निवेदन है कि बीजेपी की धार्मिक पिच उत्तर

0: प्रदेश के अंदर ना तैयार होने दे। उत्तर प्रदेश की समस्या बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख पद खाली पड़े हैं, एक एक डिपार्टमेंट खाली पड़ा है। अगर बिजली विभाग में देखेंगे, पिछले जब से योगी जी की सरकार बनी है अभी कोई भर्ती नहीं है। 20,000 लोग जो कॉन्ट्रैक्ट बेस अपॉइंटमेंट थे उनको भी निकाल दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम के ऊपर है, पुलिस के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। अभी हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने मालूम है क्या कहा कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो संविधान को नहीं मानती है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक आकाओं के अधीन काम कर रही है। तो ये सवाल है, मेरा
1: प्रेम
0: मानना
1: शुक्ला
0: ये है
1: जी,
0: कि योगी जी
1: जवाब
0: जी
1: दीजिएगा।
0: जी जी
1: पिच गिली हो गई है, राम
0: जी
1: मंदिर की आस्था की पिच गिली
0: कीचड़
1: हो
0: है
1: गई
0: वहां
1: है,
0: पे।
1: क्योंकि
0: क्योंकि
1: वहां पर भ्रष्टाचार के वजह से पानी फैर गया है,
2: नहीं,
1: और
2: बिल्कुल
1: इसीलिए
2: गिली नहीं हो
1: बाउंसर
2: सकती
1: आएंगे तो
2: है।
1: खेल नहीं पाएंगे, इसीलिए दूसरे पिच पर खेलने की
2: देखिए उस
1: तैयारी।
2: भ्रष्टा
1: सतीश प्रकाश जी कह रहे हैं,
2: देखिए साहिल जी, उस भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद का कोई कार्यकर्ता दूर दूर तक शामिल नहीं है, एक बात। और उसी के बगल में जो बहराइच में सालार गाजी नाम का कोई अपराधी किस्म का आक्रांत था, उसकी दरगाह है, उस दरगाह में चोरी करने में सपा के पदाधिकारी बाकायदा पकड़े गए हैं। तो चोर कौन है लोग जानते हैं? सालार गाजी की दरगाह में चोरी करने में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी बाकायदा गिरफ्तार हुए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता दूर दूर तक वहां राम जन्मभूमि में किसी भी प्रकार के चढ़ावे की चोरी में दूर दूर तक संलिप्त पाए जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।
1: सतीश
2: अब कौन
1: प्रकाश
2: भाई राम
1: जवाब
2: जन्मभूमि
1: दीजिए,
2: पर बात कर रहा है? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने
3: जवाब दीजिए,
2: वाले,
3: 10 सेकंड का जवाब है।
2: आतंकी
3: नहीं
2: हमला
3: नहीं
2: करने
3: नहीं नहीं
2: वालों
3: 10 सेकंड
2: को
3: का जवाब
2: मजाक
3: है साहिल
2: पूछकर
3: जी, साहिल
2: जो
3: जी मेरे
2: अखिलेश
3: सवाल
2: यादव छोड़
3: पूछता
2: दे
3: हूँ,
2: रहे थे
3: साहिल जी
2: वो
3: मेरे
2: अब
3: मुझे
2: जो है
3: सवाल
2: राम
3: है,
2: जन्मभूमि
3: साहिल
2: के
3: जी
2: जो है
3: सवाल है,
2: हिंदू
3: जवाब
2: बन
3: है
2: गए,
1: सतीश प्रकाश
2: जो
1: जवाब दीजिए।
2: मुख्तार अंसारी के दरगाह पर जाओ, मुख्तार अंसारी
3: प्रेम जी,
2: कब्र पर जाकर मातिया
3: प्रेम
2: पढ़ते हैं
3: जी,
2: और
3: एक
2: राम
3: सवाल
2: लला
3: है,
2: का
3: एक
2: दर्शन
3: सवाल है,
2: करने से
3: एक
2: संकोच
3: सवाल है सर,
1: ठीक है प्रेम
3: वो राम
1: शुक्ला जी,
3: लला
1: सतीश
3: जी
1: प्रकाश
3: हिंदू
1: कुछ
3: बन
1: ऐड
3: गए
1: करना चाह रहे
2: हैं।
3: प्रेम
2: भाई
3: जी एक सवाल,
2: अब मैं
3: प्रेम जी
2: सतीश
3: एक
2: प्रकाश जी का भी
3: सवाल,
2: जवाब देना चाहता हूँ, मैं
3: सर
2: सतीश
3: आप
2: प्रकाश जी का जवाब देना
1: पहले सतीश
3: पहले
1: प्रकाश आपका जवाब
3: सवाल
1: देना चाह रहे हैं,
3: पहले पहले पहले
1: पहले
3: पहले
1: सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए,
2: नहीं
1: सवाल सुन लीजिएगा,
3: प्रेम जी
1: सवाल सुन लीजिएगा,
2: उसको तो दे दूं,
1: मुझे लगा आप जवाब ही दे रहे थे देर से। सतीश प्रकाश जी पूछिए सवाल, पूछिए पूछिए सतीश प्रकाश,
0: एक सवाल है उसके साथ आप मुझे जवाब दें, मुझे एक मिनट में पूछना है। देखिए प्रेम जी, राम एक वास्तव में एक आस्था का विषय है, और आप कहीं ना कहीं निश्चित रूप से धार्मिक व्यक्ति है। मेरा मानना यह है कि हर गलती कुछ ना कुछ देखे जाती है। आपको अगर राम राम ने आपको सरकार भी बनाई, आपको व्यवस्था बनाई, आपकी पार्टी को केंद्र में भी दिया, अब आप राम को क्या देंगे? एक राम भक्त होने के नाते आपको वहां श्राइन बोर्ड जैसा वहां एक आईएएस बैठाना चाहिए। कहीं ना कहीं व्यवस्था में बहुत खामियां हैं, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी तय हो। राम मंदिर के अंदर अब ट्रस्ट से काम नहीं चलने वाला, वहां धार्मिक लोगों को रख करके कोषाध्यक्ष से कोई पूछा नहीं। मेरा मानना यह है कि हर घटना के साथ सरकार को एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि श्राइन बोर्ड की तर्ज पर वहां ऐसा ही
1: हाथ खड़े करने से नहीं होगा, सारे अपॉइंटी तो सरकार के ही थे।
2: देखिए बिल्कुल
1: शुक्ला जी, उसके बाद
2: हम हाथ खड़ा ही नहीं करते
1: ठीक है।
2: वहां पर जो है निश्चित तौर पर वहां के ट्रस्ट में सुधार होगा, जो सुधार की गुंजाइशें हैं वो पूरी तरह से सुधार होगा, सुधार पूरी तरह से होगा, पारदर्शिता होगी। लेकिन कृपा करके मुझे, आप बेरोजगारी भी बात कर रहे थे सतीश प्रकाश जी, आपको ये पता है कि 2012 से 2017 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब बेरोजगारी दर थी 6.8%, आज है 3.3%। तो हमने बेरोजगारी दूर की है, उसमें कांस्टेबलों की भर्ती में यादव परिवार ने 4 जिलों के यादवों की भर्ती की थी, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर उन भर्तियों को रद्द किया था। तब पीसीएस की परीक्षाओं में सिर्फ एक जाति के लोग पास हो रहे थे, उन पीसीएस की परीक्षाओं को भी पूरी तरह से बंद करने का काम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ। तब थानों में जो है, नहीं मैं एकदम आपको
3: जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं
2: केंद्र सरकार के
3: आदेश
2: दे रहे हैं,
3: आप नौकरी कैसे दे रहे हैं?
1: सतीश प्रकाश जी एक एक मिनट, सतीश प्रकाश एक मिनट, सतीश प्रकाश एक मिनट,
2: केंद्र सरकार
1: एक एक मिनट, सभी लोग साथ में बात बात करिए। अनुराग भदौरिया कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सतीश प्रकाश एक मिनट, सतीश प्रकाश एक मिनट, सतीश प्रकाश एक मिनट, अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है प्रेम शुक्ला जी ओके,
3: समाजवादी को गाली दे रहे हैं,
1: सतीश प्रकाश जी बाद में, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया,
3: देखिए कमाल की बात है, आज आज देखिए भारतीय जनता
2: गाली नहीं
3: पार्टी
2: देते, गाली आप देते हैं,
3: बाबर मुझे बचाओ, औरंगजेब मुझे बचाओ, अब बाबर औरंगजेब को याद
2: बाबर आपके आपके आपके वैचारी कप्पा
3: आप बचाओ मुझे
2: बाबा आपके नहीं
3: बचोगे नहीं बचोगे प्रभु के बिल्कुल आपके आप उनकी आर में छुप के बचना चाहते हो बाबर की आर में औरंगजेब की आर में इतिहास की आर में छुप के बचना चाहते हो आप नहीं चाहते प्रभु
2: नहीं कर पाएंगे हिम्मत नहीं है
3: बात करो
2: औरंगजेब की दाढ़ी में मक्कल लगाना यही आपकी राजनीति है
3: बोलने को तैयार
2: बाबर की दाढ़ी में मक्कल लगाना यही आपकी राजनीति है संभल के कहिए कि बाबर ने जो हरकतें की उसको जो है आप
3: विचार कर रहे हैं कि मेरे लिए भी कुछ होता
2: है हम नहीं छुपते आप छिपे पड़े हो बाबर आपका वैचारिक कप्पा है औरंगजेब आपका वैचारिक वालिद
3: है कब आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे कब मेडिकल कॉलेज बनाओगे कब यूनिवर्सिटी बनाओगे जिससे समाज का विकास हो पाए समाज के विकास की कोई बात नहीं बाबर औरंगजेब इतिहास की आड़ में छुप के अपने आप को बचाने वाले प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं उनका तीर ऐसा तीर चलेगा
2: इतिहास का वर्तमान है
3: ऐसा तीर चलेगा कि आपको पूरी भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रहा है कि प्रभु के घर में चोरी करने वाले को क्या सजा मिलती है प्रभु सजा देंगे प्रभु सजा देंगे आपको प्रभु सजा देंगे आपको प्रभु सजा देंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही करते रहोगे लेकिन यूथ नीट का पर्चा लीक हो जाता है मरने वाले हिंदू थे या मुस्लिम थे नीट के पर्चे में बच्चों ने सुसाइड किया कौन लोग थे आज तक के जो बच्चे मर गए यहाँ पे लखनऊ के अंदर में वो बच्चे कौन थे हिंदू थे मुस्लिम थे दिल्ली के अंदर मुस्लिम होती है यहाँ लगातार
1: 21वीं सदी में लौट कर आते
3: हैं
1: अनुराग जी अनुराग जी
3: यहाँ पे
1: दोबारा जहाँ से चर्चा की शुरुआत हुई थी
3: और आप यहाँ हिंदू मुस्लिम खोज रहे
2: छूट गया उनका उनका उनका उनका अब जो है
1: मेरे ख्याल से आस्था का विषय अब नहीं रह गया अब विषय पारदर्शिता का हो गया प्रेम शुक्ला जी ठीक है अनुराग भदुर नहीं ठीक है कोई कोई मैं कोई सब लोग एक दूसरे के बीच में बात करें विषय ऐसा है कि एक दूसरे के बीच में बात किए बिना बात आगे बढ़ती नहीं है
3: अनुराग जी
1: एक बार फिर नहीं नहीं कोई बात नहीं अनुराग जी एक बार फिर प्रेम शुक्ला जी प्लीज प्लीज प्लीज प्रेम शुक्ला जी एक बार फिर मैं जहां से ये चर्चा शुरू हुई थी वहां पर आकर मैं आपको इस बारे में इस चर्चा को ले आना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर फैसला आने वाला है तो भूमिका कब तय होगी उससे पहले या बाद में क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पर तो मामला भ्रष्टाचार पर चल रहा है और उस पर चर्चा होती रहेगी और होती होनी भी चाहिए
3: देखिए
1: अनुराग जी
3: बिल्कुल होनी चाहिए और हम लोग तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं मैंने आपको एक ही शब्द बोला था समाजवादी लोग देश के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं हम देश के संविधान बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं लेकिन जब मेरी आस्था पे चोट पहुंचती है जो कोई आस्था के नाम पे राजनीति करना चाहता है धर्म के नाम पे राजनीति करता है तो हम उनको आईना दिखाते हैं क्योंकि वो आईना तो साफ करते हैं लेकिन धूल तो उनके चेहरे पे लगी हुई है ना चेहरे की धूल हटाओ मुद्दा मत कन्वर्ट डाइवर्ट करो आप रामलला के यहाँ पे चोरी गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं अरे जहां जहां चोरी करोगे प्रभु के यहाँ
1: चाहे मथुरा अभी बाकी है ये बात तो खुलकर सामने आ चुकी है लेकिन फिर भी सवाल ये रहता है खास करके राम मंदिर के ट्रस्ट के भीतर जो दान चोरी का मामला सामने आया है उसके बाद ये सवाल एक बार फिर होता है कि इस बार का चुनाव पारदर्शिता सुशासन और जनता के विश्वास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा या कोई नया पिच ढूंढा जाएगा इसलिए इस पर नजर बनाए रखेंगे एक ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी देखते रहिए आजकल

0: jazz fans, rejoice. Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से।
1: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
0: विमल, बोलो जुबा केसरी।
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें। 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
4: देखिए, बिल्कुल मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था, और ये बहुत छोटा सा कोचिंग सेंटर था जहां पर लोग फंसे थे, और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया और 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।

0: जब पूरा देश पूरी दुनिया रामलला के पैसों की चोरी पर सवाल खड़े कर रही है, तब कान्हा की भक्ति को चुनौती देते हुए सियासत भी सेंधमारी कर रही है। नई चुनौती यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अखिलेश यादव को दी गई है।
1: अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए।
0: बीजेपी कहती है राम की चिंता छोड़ कृष्ण की चिंता करनी चाहिए। अखिलेश कहते हैं डोनेशन से पहले नेशन फर्स्ट होना चाहिए।
2: जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट। समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म के आड़ में गोरख धंधा ना।
0: जब सीएम योगी अयोध्या के चढ़ावा चोरी कांड को छोड़ मथुरा की बात छेड़ते हैं, तब विपक्ष उन आरोपों का राग छेड़ देता है, जहां मथुरा में भी आस्था भक्ति के नाम पर दान चढ़ावे फंड में घोटाले के आरोप लग रहे हैं।
3: अयोध्या उज्जैन तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है, वहां भी लूटने का इंतजाम है, वहां भी कॉरिडोर बन रहा है।
0: राम से कृष्ण तक मजहबी सियासत के चाहे जितने दाम चले जाएं, लेकिन बुनियादी राजनीति ये है कि बीजेपी 2027 की चुनावी राजनीति का फोकस अवध से हटाकर मथुरा करने की तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है। ये तैयारी यूं ही नहीं है, यूं ही सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर नहीं जा चुके हैं। यूपी की राजनीति में ब्रज क्षेत्र का वजन बढ़ रहा है। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री मंत्री तक आने वाले नेता ब्रज क्षेत्र से हैं। पूरन लाल लोधी क्षेत्रीय अध्यक्ष, शंकर लोधी को प्रदेश महामंत्री, किरण लोधी को मंत्री बनाया गया है, तो जाट बोर्ड के लिए राजेश चौधरी महामंत्री बने हैं और मोहित बेनीवाल प्रदेश उपाध्यक्ष। ब्राह्मण ठाकुरों में ब्रज बहादुर प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो अभिजात मिश्रा महामंत्री, राम प्रताप चौहान महामंत्री हैं, तो विजय शिवहरे और सुहासिनी जायसवाल मंत्री। दरअसल बीजेपी चाहे भले ही मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को सियासी मुलम्मे के साथ पेश करे, लेकिन चुनावी इंजीनियरिंग बीजेपी भी जात के साथ साधती है। और जिस तरह सीएम योगी ने चुनावी सियासत की धार अयोध्या से मथुरा की ओर मोड़ी है, उसमें हिंदुत्व के वोट के संग पीढ़ियों की सियासत को तंग करने की पूरी प्लानिंग नजर आती है। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

पूरी दुनिया रामलला के पैसों की चोरी पर सवाल खड़े कर रही है, तब कान्हा की भक्ति को चुनौती देते हुए सियासत भी सेंधमारी कर रही है। नई चुनौती यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अखिलेश यादव को दी गई है। बीजेपी कहती है कि राम की चिंता छोड़ कृष्ण की चिंता करनी चाहिए। अखिलेश कहते हैं डोनेशन से पहले नेशन फर्स्ट होना चाहिए। राम से कृष्ण तक मजहबी सियासत के चाहे जितने दांव चले जाएं, लेकिन बुनियादी राजनीति ये है कि बीजेपी 2027 की चुनावी राजनीति का फोकस अवध से हटाकर मथुरा करने की तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है। ये तैयारी यूं ही नहीं है। यूं ही सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर नहीं जा चुके हैं। यूपी की राजनीति में ब्रज क्षेत्र का वजन बढ़ रहा है। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री मंत्री तक आने वाले नेता ब्रज क्षेत्र से हैं। इतना ही नहीं, आने वाली 12 जुलाई को बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी मथुरा में ही आयोजित की जा रही है, क्योंकि 2027 के रण में बीजेपी अपने सबसे मजबूत ब्रज के किले से ही विजय का शरसंधान करना चाहती है। कारण ये है कि 2022 चुनाव में बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र की 65 में से 53 सीटें जीती थी, जबकि अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, वो भी 82-85% यादव वोटों की बदौलत। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद इस क्षेत्र की हवा भी बदली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 53 की जगह सिर्फ 42 विधानसभा सीटों पर आगे रही, जबकि समाजवादी पार्टी 12 की जगह 23 विधानसभा सीटों पर आगे आ गई और अखिलेश को मिलने वाले यादव वोट प्रतिशत भी 87-89% तक पहुँचे। अब मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि का मामला छोड़कर सीएम योगी ने यदुवंश की विरासत और पीटीए की सियासत का दावा करने वाले अखिलेश के सामने दुविधा खड़ी करने की कोशिश की है। दरअसल बीजेपी चाहे भले मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को सियासी मुलम्बे के साथ पेश करे, लेकिन चुनावी इंजीनियरिंग बीजेपी भी जात के साथ साधती है और जिस तरह सीएम योगी ने चुनावी सियासत की धार अयोध्या से मथुरा की ओर मोड़ी है, उसमें हिंदुत्व के वोट के संग पीडीए की सियासत को तंग करने की पूरी प्लानिंग नजर आती है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।

0: राम भक्त स्तब्ध है, बेचैन है, ये जानकर कि आस्था से चढ़ाए उनके चढ़ावे की चोरी होती रही, उनके विश्वास से खिलवाड़ होता रहा। और अब एक नया खुलासा हुआ है जो और ही विचलित कर देने वाला है। इस खुलासे की बुनियाद ये सीसीटीवी फुटेज है। इस सीसीटीवी फुटेज में जिस शख्स को देख रहे हैं उसका नाम है अविनाश शुक्ला, चंदा चोरी गैंग का अहम मेंबर, लूट कांड का अहम किरदार। जो काली बैग आप देख रहे हैं उसमें रखी है चोरी की वो रकम जो सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे की ढेर से उड़ाई गई है। सूत्रों की माने तो 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे थे। छापेमारी के दौरान अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5 लाख नकदी बरामद हुई। इस बैग में वही 5 लाख कैश रखी है।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला का 5 जून का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को इस चढ़ावा चोरी की जानकारी पहले से थी और इसकी FIR दर्ज कराने में ट्रस्ट ने देरी की। यानी अविनाश शुक्ला समेत सभी आरोपी लगभग ट्रस्ट की निगाह में आ गए थे और अविनाश शुक्ला का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि कैसे एक सफेद गाड़ी में पुलिसकर्मी व अन्य लोगों की मदद से अविनाश शुक्ला को बैठाया जा रहा है। उनके पास से एक काले बैग में कहा गया कि 5 लाख रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई, लेकिन दर्ज हुई FIR देर से हुई और कानून के जानकार कहते हैं कि यह FIR में देरी आरोपियों के लिए मददगार साबित हो सकती है।
0: चढ़ावा चोरी के खुलासे से FIR दर्ज होने तक इस पूरे मामले की टाइमलाइन पर गौर करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसे ठंडे बस्ते में डालने की जमकर कोशिशें हुई। 5 जून को ट्रस्ट को धांधली की जानकारी मिल गई, सबूत भी मिल गए, इसके वीडियो सबूत हैं, लेकिन इस मामले में FIR दर्ज हुई 20 दिन बाद यानी 25 जून को। 25 जून को ही पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, यानी 20 दिन तक आरोपी को खुलकर आजादी दी गई कि वो सबूतों से छेड़छाड़ करते रहे, उनका नामो निशान मिटाते रहे। चौतरफा थू-थू होने के बाद ही सारे एक्शन हुए हैं, किरकिरी होने के बाद ही SIT का गठन हुआ, जांच हुई, मामला दर्ज हुआ। अब खबर ये भी आ रही कि राम मंदिर ट्रस्ट सिफारिश के आधार पर हुई नियुक्तियों पर सख्त कार्रवाई करेगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उन कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया है जिन्हें तय भर्ती प्रक्रिया के बजाय सिफारिश के आधार पर नियुक्त किया गया था। ट्रस्ट ऐसी सभी नियुक्तियों की समीक्षा कर रहा है और कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। साफ है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बड़ी देर कर दी। ट्रस्ट की नींद खुलते खुलते राम भक्त इतने आहत हो चुके हैं कि उनके घाव जल्द नहीं भरने वाले और न ही ट्रस्ट के दामन पर लगे दाग धुलने वाले हैं। संतोष शर्मा, अयोध्या, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
1: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: चढ़ावा चोरी केस की जांच के दायरे में अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत करीब 80 लोग। चंपत राय का बयान दर्ज, गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा उत्तर प्रदेश में साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी। उपद्रव, कर्फ्यू और गुंडागर्दी से लोगों का जीना होगा हराम। कल शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, कई अहम सुधारों पर होगी चर्चा। केतन मर्डर केस में आरोपियों की कस्टडी 3 जुलाई तक बढ़ी, शिया चेतन ने डिलीट किया डिजिटल डेटा, केतन के गायब पासपोर्ट पर अब शिया से सवाल जवाब। बढ़ते सैन्य टकराव के बीच अमेरिका ईरान में फिर सहमति, अब एक दूसरे पर नहीं करेंगे हमले, ट्रंप बोले ईरान के अनुरोध पर कल दोहा में होगी दोनों देशों की बैठक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
2: मेरा सौभाग्य कि लोहिया जी के पत्रों से, उनके बेटों से मेरी मुलाकात हुई।
3: किसी के घर जाने से कुछ नहीं होता है, आपको अपनी नीत और विचार बदलने की जरूरत है।
4: बहुत अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे संज्ञान में लिए हैं।
5: जो बीजेपी नफरत की बात करती थी, बंटवारे की बात करती थी, उसको आखिर समाजवादियों के चौखट पे जाना पड़ा।
6: और साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी।

0: नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं और हल्ला बोल में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव की लड़ाई अब विचारधारा पर कब्जे की जंग बनती जा रही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में राम मनोहर लोहिया जी के परिवार से मुलाकात की और इसी के बाद से ये चर्चा तेज हो गई कि क्या अब बीजेपी अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में लोहिया वाला दांव खेलने वाली है। मुद्दा बड़ा इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा से खुद को लोहिया की विचारधारा और अखिलेश यादव ही क्यों समाजवादी पार्टी लोहिया की विचारधारा का सबसे बड़ा पैरोकार बताती है। ऐसे में लोहिया के परिवार से बीजेपी नेताओं का मिलना कहीं ये तो नहीं बता रहा है कि बीजेपी अब ओबीसी समाज को अपने पक्ष में करने की एक और बड़ी कोशिश कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि लोहिया जी के घर जाने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे यूपी की चुनावी बिसात में एक ट्विस्ट तो आ ही गया है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ क्या ये कास्ट पॉलिटिक्स को ही साधने की कोशिश है सिर्फ, या फिर दूसरे मोर्चे पर जहां पर योगी आदित्यनाथ जबरदस्त हमला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर साइकिल फिर से आ गई तो फिर से दंगे होंगे। तो कास्ट से क्राइम तक हर मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ हमलावर हैं इस वक्त, और क्या है समाजवादी पार्टी का जवाब, पहले ये रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा की शुरुआत।
1: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिनकी विचारधारा पर हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के संकल्पों के, उनके आदर्शों पे, उनकी बताई हुई नीतियों पे
2: समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे।
1: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं।
0: ना जाने कितनी बार अखिलेश यादव ने खुद को और अपनी समाजवादी पार्टी को राम मनोहर लोहिया और उनकी विचारधारा से जोड़ा है, बार बार लोहिया के विचारों से स्वयं को प्रेरित बताया है। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में अब साल से भी कम का वक्त बचा है और इस अंतराल में लोहिया नाम की गूंज यूपी में और तेज होने वाली है। जी हां, और यूपी की इसी चुनावी बिसात में अब बीजेपी ने एक नया दांव खेलकर समाजवादी पार्टी को चौंका दिया है। एक तरफ अखिलेश राम मंदिर में छड़वा चोरी पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राम मनोहर लोहिया के परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात कर रही है। चुनावी साल में बीजेपी ने मंडल और कमंडल को एक साथ साधना शुरू कर दिया है। मंडल के मसीहा कहें या पिछड़ों के सबसे बड़े विचारक राम मनोहर लोहिया के घर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। इस दौरे का संकेत और संदेश सीधे सीधे अखिलेश तक है कि अब विचारधारा के तौर पर भी सेंधमारी की तैयारी है।
3: मोदी जी के 12 साल पूरा होने पे जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, जो विशेष जनसंपर्क अभियान, उसके साथ आज मेरा सौभाग्य कि लोहिया जी के परपोतों से, उनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई और पूरा एक पारिवारिक बैठना हुआ, सबसे बहुत अच्छा लगा।
4: सुना है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोहिया जी के घर गए थे, वो पार्टी जो जिसके विचार और नीत नफरतवादी है, जो समाज के अंदर में नफरत की बात करते हैं, समाज को डिवाइड करने की बात करते हैं। पहले अपने विचार बदलिए, समाजवादी पार्टी लोहिया जी के आदर्श आचरण को अपनाती है, लोहिया जी के बचाए हुए रास्ते पे चलती है, समाज को जोड़ने की बात करती है। किसी के घर जाने से कुछ नहीं होता है, आपको अपनी नीति और विचार बदलने की जरूरत है।
0: एक तरफ प्रयागराज में सीएम योगी समाजवादी पार्टी को अयोध्या और मथुरा पर ललकार रहे थे, तो दूसरी ओर पंकज चौधरी लखनऊ में लोहिया के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे। चर्चा तो ये भी चल निकली कि बीजेपी कहीं राम मनोहर लोहिया के परिवार वालों को चुनावी राजनीति में लाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, कहीं बीजेपी अखिलेश के उस हथियार को ही कुंद तो नहीं करना चाहती है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। अखिलेश को परेशानी इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि राम मनोहर लोहिया का परिवार पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी कर रहा है।
5: ले जी के विरुद्ध में तो कुछ नहीं कहना है, जो आदमी अपना जैसे करते हैं अपने अपने हिसाब से हर आदमी करता है, लेकिन पंकज चौधरी जी आए, उनकी देखिए माननीय प्रधानमंत्री के कहने से आए, उन्होंने व्यक्तिगत काल किया था, तो हम लोगों को अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों को बरसों से प्राप्त है, और जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी थे तब भी हमारी उनकी पारिवारिक संबंध थे, और जब से वो पीएम बने हैं उनमें खूबियां हैं।
0: राम मनोहर लोहिया मारवाड़ी वैश्य यानी ओबीसी वर्ग से थे, और बीजेपी भी जानती है कि बिना ओबीसी समाज को साधे बगैर 2027 चुनाव में उनका कल्याण होने वाला नहीं है। इससे पहले यूपी चुनाव के लिए बनी विशेष टीम में ओबीसी को तरजीह दी और अब लोहिया परिवार से मुलाकात।
6: प्रदेश अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मिलने पहुंच गए। ये सब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई ऐसी एक दूसरे में उलझ गई है कि दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी हैं। कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों को उनके वैचारिक प्रणेताओं के जरिए साधने की कोशिश कर रही है।
0: बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पर ही जोर नहीं दिया है, बल्कि क्राइम रेट को लेकर भी एसपी कार्यकाल को घेरना भी शुरू कर दिया है।
7: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी।
0: 2027 को लेकर बीजेपी सिर्फ राम भरोसे नहीं है, उसे मालूम है कि धर्म का मुलम्मा समाज के सभी तबकों का वोट नहीं दिला सकता, इसीलिए अब बीजेपी समाजवादी पार्टी की तथा कथित विचारधारा में भी सेंधमारी करने में जुट गई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी एमपी राज्यसभा के और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सिंह साजन साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। रोहित सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं और आशुतोष जी भी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, ये आरोप विपक्ष बार बार लगाता है कि आपके अपने ऐसे आदर्श पुरुष नहीं है, आप दूसरी पार्टियों के जो आदर्श पुरुष हैं उनको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं और उसी कड़ी में राम मनोहर लोहिया जी के परिवार वालों से मिलकर आप कास्ट कार्ड खेल रहे हैं, कास्ट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तो इतने वर्षों से आपकी सरकार है, अभी भी क्राइम के मुद्दे पर आप समाजवादी पार्टी की साइकिल से डराइएगा? दोनों पर आपका जवाब।
8: देखिए, आपने कहा कि अपने आदर्श की बजाय दूसरों के आदर्श। अंजना जी, आज वास्तविकता यह हो गई है कि आदर्श सिर्फ बचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में बचे हैं, दूसरे कहीं पर कोई बचे नहीं है। इसलिए किसी भी आदर्श के विचार के संवाहक जिस भी विचारधारा में होंगे, वो गांधीवाद हो या लोहियावाद, वो अपनी अपनी पार्टियों को देखकर स्तब्ध हो जाते होंगे, उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती होगी। इसलिए उन्हें यदि कुछ नजर आता होगा, वो संभावना तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नजर आती होगी। राम मनोहर लोहिया जी को लेकर जो कास्ट कार्ड की बात है, यहां पर मैं थोड़ा आप लोगों ने जो कहा उसमें संशोधन करना चाहूंगा। अंजना जी, मुलायम सिंह जी सीएम थे तब लखनऊ के रविंद्रालय में वैश्य सम्मेलन हुआ था, तो पहली बार राम मनोहर लोहिया जी का नाम राम मनोहर अग्रवाल ब्रैकेट में लोहिया लिखा गया। पूरी विनम्रता दृढ़ता से कहता हूं, जांच कर लें इसको, इसमें कोई कास्ट कार्ड की बात नहीं है। अग्रवाल वैश्य होते हैं और अग्रवाल तो आप लोग पुराने जमाने से कहते थे कि भाजपा ब्राह्मण बनिया पार्टी है, तो इसमें कोई कास्ट एंगल नहीं है, इसमें विचार का एंगल है। और आज लोहिया जी का परिवार नहीं, लोहिया जी के विचार परिवार के जो लोग होंगे आज, वो अगर आज देखते होंगे तो उन्हें नजर आता होगा कि यदि कोई भी जो आदर्श थे लोहिया जी के, वो तो तिरोहित हो चुके हैं। और आज से नहीं, 1969 में जब एसवीडी गवर्नमेंट्स बनी थी, संयुक्त विधायक दल की सरकारें, तब दीनदयाल जी ने लोहिया जी के लिए कहा था कि वो समाजवादी हैं पर वो राष्ट्रवादी समाजवादी हैं, क्योंकि वो रामकृष्ण शिव की बात भी करते थे और उन्होंने ही अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत की थी। तो विचार तब था और आज विचार समाप्त है। और मैं अंजना जी एक और बात कह दूं, आज से नहीं समाप्त हुआ है, अरे 30-40 साल पहले से समाजवाद समाप्त हो चुका है। चाहे बिहार के समाजवादी कवि गोरख पांडे रहे हों या उत्तर प्रदेश के आदम गोंड भी, मैं याद दिलाना चाहता हूं गोरख पांडे क्या लिखे थे, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, फिर आगे क्या लिखा, गांधी से आई आंधी से आई और मड़ैया ले जाके उड़ाई और बिरला के घर में जाके समाई, ये गोरख पांडे तब लिख गए थे। और आदम गोंड भी उत्तर प्रदेश में तब लिख गए थे कि काजू भुना है पेट में और विस्की प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यूं विधायक निवास में और पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, ये उनके शब्द हैं। और कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो मुझे लगता है समाजवाद का जो क्रमिक पराभव हुआ है, आज सोचिए जब एक तरफ दीनदयाल जी की विचारधारा पे आज पूरे भारत को एकाकार करके मोदी जी के नेतृत्व में हम कहां खड़े हैं और लोहिया जी की विचारधारा के लोग खंड खंड होकर व्यक्तिगत स्वार्थ, जातिवाद, अपराधीकरण, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में भयंकर टूटकर आज पूरे भारत में खंड खंड पड़े हैं। तो मुझे लगता है लोहिया जी के विचारों को यदि कोई संभावना नजर आ रही होगी तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में नजर आए। और अगर समाजवाद की बात कहें तो चाहे लोगों को उज्ज्वला योजना देनी हो, चाहे लोगों को प्रधानमंत्री आवास देना हो, चाहे ये जनधन खाते देने हो, चाहे सशक्तिकरण करना हो, यदि वास्तविक समाजवाद को धरती पर उतारा है, जिसे अब ये लोग लाभार्थी वोट बैंक कहने लगे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उतारा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, यथार्थ में देखेंगे तो कुछ भी अचरज नजर नहीं आएगा, पर चश्मा लगा के देखेंगे तो राजनीति नजर आएगी।
0: सुनील सिंह साजन जी, मैं देख रही थी, कभी आप मुस्कुरा रहे थे, कभी आप थोड़ा गुस्से में आ रहे थे, कह रहे हैं कि समाजवाद की जो वो स्थिति थी वो वैसे ही अब खत्म हो चुकी है, और समाजवाद आई बबुआ हाथी पाई घोड़ा पाई से लेते लेते वो कहां पर पहुंच चुका है ये दुनिया को देखने के लिए। अब इस पर आपका जवाब, जो उनकी बात उन्होंने कही है।
9: देखिए अंजना जी, मैं सुधांशु जी को बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति मानता हूं। उन्होंने समाजवाद थोड़ा कम पढ़ा है, उनको और पढ़ने की जरूरत है। और समाजवाद अगर पढ़ना है तो जरूरी नहीं आप डॉक्टर लोहिया या गांधी को पढ़ें। मुझे लगता है अगर भगवान राम का पूरा जीवन आप पढ़ लें, समझ लें, जान लें, तो वहीं से समाजवाद निकला है। भगवान राम के जीवन से समाजवाद निकला है। भाई जो गांधी का समाजवाद है, उसमें गांधी जी ने कहा ना हे राम, उस हे राम में समाजवाद है। और डॉक्टर लोहिया भी भगवान राम की बात करते थे, कृष्ण की बात करते थे, शिव की बात करते थे। और आपने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने अयोध्या से शुरू किया था, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, डॉक्टर लोहिया ने चित्रकूट से शुरू किया था रामायण मेला 1960 में। तो हम समाजवादी लोग भगवान राम से और समाजवादी विचारधारा से तो हमेशा से जुड़े हैं। और समाजवाद की बात आज जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं अंजना जी आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, हम समाजवादी छोटे कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि समाजवाद ही एक रास्ता है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि समाजवादी व्यवस्था से ही गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचितों को हक अधिकार मिल सकता है। हमारे श्रद्धेय नेताजी हमेशा कहते थे कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर अगर कोई मुस्कान ला सकता है तो सिर्फ समाजवादी व्यवस्था ला सकती है। अच्छा, समाजवाद क्या कहता है, समाजवाद की लड़ाई क्या है? अंजना जी, हम लोग लगातार अगर समाजवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम बराबरी चाहते हैं। बराबरी किस में चाहते हैं? हम चाहते हैं आर्थिक बराबरी, हम चाहते हैं शैक्षिक बराबरी, हम चाहते हैं सामाजिक बराबरी, हम चाहते हैं राजनीतिक बराबरी। क्या भारतीय जनता पार्टी दे सकती है? ये बीजेपी जिसने उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन लिया, ये हक हकूक की बात कर रहे हैं? और किस तरीके की बात कर रहे हैं? अभी आपने कहा योगी जी ने क्या क्या कहा, योगी जी ने कहा उपद्रव, उपद्रव के मुकदमे खुद योगी जी पर थे। उन्होंने कहा दंगा, दंगा के खुद मुकदमे योगी जी पर थे। माननीय अखिलेश यादव जी पर तो कोई मुकदमा है नहीं। आपने कहा बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगे, उत्तर प्रदेश में जितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं उन बलात्कारियों को अगर एड़ी चोटी का जोर लगा करके किसी ने बचाया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बचाया है। और सुधांशु जी कह रहे हैं हमारे आदर्श क्या है। भाई आपके आदर्श प्रभु भगवान राम के मंदिर में डाका डाल लेना, ये आपके आदर्श हैं? अभी भी आप लोगों की आंखों में मतलब कुछ लिहाज बचा है कि नहीं, आंख का पानी अभी है कि नहीं है? भगवान राम के नाम पर वोट चोरी, भगवान राम के नाम पर नोट चोरी, और आदर्श की बात, समाजवाद की बात अच्छी नहीं लग रही।
0: ठीक है सुधांशु,
9: अगर आपको समाजवाद लाना ही है तो आप घर मत जाइए, डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत पर चलिए ना। ये लोग अंजना जी गांधी जी के परपोत्र को भी लेकर के आए थे, लेकिन गांधी जी की विचारधारा को नहीं मानेंगे। आप डॉक्टर लोहिया के परिजनों के पास चलेगा अच्छी बात है, लेकिन आप क्या उनके बताए रास्ते पर चलेंगे? क्या पिछड़ों को जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि 100 में पावें 60, आप देंगे हक, देंगे नौकरी, देंगे अधिकार, देंगे आरक्षण पिछड़ों को 100 में 60? 27 के ऊपर मध्य प्रदेश में देने की बात आती है तो पूरी भाजपा पूरी आरएसएस चिल्लाने लगती है, माथा फोड़ने लगती है, अपना कपड़ा फाड़ने लगती है, कैसे दे देंगे?
0: ठीक है,
9: आप डॉक्टर लोहिया की बात कर रहे हैं।
0: छोटा सा जवाब दे दे, फिर आशुतोष जी और रोहित जी के पास चलेंगे। सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब,
8: एक लाइन में। वो लोहिया जी से भागकर दलित और पिछड़ों के आरक्षण पर आ गए तो मैं याद देना चाहता हूं, भाई साहब 100 में 60 का नारा, और भैया एएमयू में 100 में साफ, SC ST ओबीसी का आरक्षण 0। आइए भाई साहब जामिया मिलिया इस्लामिया में 100 में साफ, कश्मीर मुस्लिम स्टेट हो गई 100 में साफ। और आपके लोगों ने सरकार में रहते हुए जिन जिन शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया वहां में 100 में 60 नहीं 100 में साफ। गजब है साहब, क्या समाजवाद है, क्या पिछड़ों दलितों के प्रति आपका आकर्षण है, और इतना ही नहीं पिछड़े पिछले दरवाजे से सारे मुस्लिम समाज को ओबीसी में ले आओ, यही तो कर रही थी बंगाल की सरकार कि 84 में 77 मुस्लिम, अभी तमिलनाडु हाईकोर्ट ने जोर लगाया है सीधे डाका ओबीसी के ऊपर, और सच्चर कमेटी में क्या कर रहे थे कि एससी के भी ऊपर वो मुस्लिम एससी में भी शामिल हो जाएंगे। और फिर मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किस सरकार ने खत्म किया था? सपा की सरकार ने बैकडेट से खत्म किया था। हजारों दलित जो थे इंप्लॉइज जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के प्रमोट हो गए थे वो डिमोट हो गए थे। और फिर कई बार बोल चुका हूं आपके सामने सुनील जी, ये नारा उत्तर प्रदेश में किसने लगाया था? चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, हमने नहीं लगाया था, ये दलितों ने लगाया था नारा। इसलिए जब बोलिए तो फैक्ट और यथार्थ पे बोलिए, आपके लिए दलित तो पिछड़ा मुखौटा है, एम वाई में एम बड़ा है, इसीलिए जो एम बोलता है एम की धमक इतनी गहरी होती है कि फिर एससी एसटी ओबीसी सब गहरी खाई में फेंक दिए जाते हैं।
0: छोटा सा जवाब, लेकिन इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि यही आरक्षण की बात एएमयू या जामिया में इन पिछड़ी जातियों के लिए वहां पर आप लोग चुप हो जाते हैं, वहां पर नहीं?
9: मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। हाँ। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं अंजना जी, हम कह रहे हैं 12 साल से अधिक की सरकार आपकी हो गई है, सवाल हम लोगों से पूछ रहे हैं, लग रहा हम लोग सरकार में हैं, आपको किसी ने रोका है, किसी ने पकड़ा है? और हमको ईमानदारी से, आपने जिस मंदिर को लूटा है उसी भगवान राम की शपथ है, आप बताइए उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों का आरक्षण योगी आदित्यनाथ खा गए कि नहीं खा गए? आज मत झूठ बोलिएगा, आपको भगवान प्रभु राम की कसम है, बताइए खा गए कि नहीं खा गए?
0: सुधांशु जी बस एक लाइन का जवाब इस पर। सुधांशु जी
9: रहने दीजिए, कसम खा लिए हैं तो झूठ कैसे बोलेंगे?
8: अंजना जी, भगवान राम की कसम वो खाने की बात कहते जो ये कहते थे कि राम भक्त कार्य सेवकों को मैंने 16 मरवा दिए थे, 40 मर जाते तो गम नहीं था। शर्म तो आपको आनी चाहिए जिसके जमाने में राम घाट में और
9: पिछड़े दलितों का आरक्षण योगी आदित्यनाथ जी ने या नहीं?
8: अरे भाई आपने राम की कसम कही, आप सुनिए, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ, मैंने सीधा सवाल पूछा है,
0: इधर उधर
8: बताइए रिजर्वेशन इन पूरा, इधर उधर नहीं, सीधा जवाब दीजिए, दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया? सपा ने, हाँ या ना बोलो?
9: किसी ने नहीं।
8: फिर हमें जवाब
9: किसी ने नहीं,
8: बोलो हाँ या ना?
9: किसी ने नहीं।
8: समाजवादी पार्टी की सरकार ने? क्या बात यार,
9: नहीं
8: इतना खड़े खड़े झूठ बोलने लगते हैं।
9: अरे अरे थोड़ा पढ़ लिख करके आया करिए।
8: अच्छा चलो,
9: नहीं खत्म किया,
8: सुनो, दलितों की पहली सरकार के ऊपर कातिलाना हमला किसने किया? सपा ने, हाँ या ना? और कहो तो काशीराम जी का लेटर दिखाऊं अभी 31 मई 1995 का, कि दलितों पे हो रहे निरंतर अत्याचार,
9: बीजेपी को लेकर के भी बता देना,
8: और कोई सुनवाई ना होने के कारण हम मुलायम सिंह की सरकार से, बोलो हाँ या ना? कहो तो अभी दिखाएं तुमको लेटर, इसलिए बोलिए सही सही बात करिए।
9: अच्छा हम तो अंजना जी बोलने को तैयार है, इन्होंने हाँ ना नहीं बताया
8: है, फिर
9: हम तो बोलने को तैयार है, हम भाग नहीं रहे,
0: आशुतोष जी
8: है जिनके
9: हम भाग नहीं रहे।
8: सुनिए सर पूरी बात सुन लीजिए, एक लाइन और कह दूं।
9: अरे आपको शपथ भगवान राम की है ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी ने पिछड़े दलितों का आरक्षण उत्तर प्रदेश में छीना या नहीं? हाँ या ना?
8: किसी का आरक्षण नहीं खाया,
9: लिहाज रख लीजिए,
8: योगी आदित्यनाथ जी ने किसी का आरक्षण नहीं खाया है, बल्कि हमारी सरकार ने मोदी जी के जमाने में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है, वरना आप सारा आरक्षण पिछड़ों का खाकर मुस्लिमों को दे दिए होते।
9: अंजना जी अब मुझे इनसे उम्मीद नहीं, आपसे उम्मीद है।
0: आशुतोष जी आपके, आज बड़ा सवाल ये है, मैं लौट रही हूँ आपके पास आशुतोष जी, आज बड़ा सवाल ये है कि राम मनोहर लोहिया जी के परिवार के पास जाकर बीजेपी कुछ गलत कर रही है या चुनाव के मद्देनजर सही करने की कोशिश कर रही है?
10: देखिए मैं तो अभी, मैंने राम मनोहर लोहिया का राम और कृष्ण के ऊपर और शिव के ऊपर जो उन्होंने एक अद्भुत लेख लिखा था, मैं तो गुजारिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को और खासतौर पर भारतीय जनता के प्रवक्ताओं को पढ़ना चाहिए, और क्या वो इस बात से सहमत है जो उन्होंने कृष्ण के बारे में बातें कही हैं? अगर सहमत हैं तो फिर ये अद्भुत अपने आप में बड़ी क्रांतिकारी बात होगी। मुझे उम्मीद है कि सुधांशु जी इस बात से पूरी तरीके से असहमत होंगे जो राम मनोहर लोहिया ने कहा। दरअसल राम मनोहर लोहिया भारतीय राजनीति के एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने दरअसल एक भारतीय जीवन का जो चिंतन है उससे जोड़कर समाजवाद की स्थापना करने की कोशिश की है। और मुझे यह बिल्कुल आश्चर्यजनक लगता है कि इधर अयोध्या में जिस तरीके से राम के चढ़ावे में चोरी के फौरन बाद राम मनोहर लोहिया के यहां जाने की कोशिश की गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म छोड़ के अब सोशलिज्म के रास्ते पर चल पड़ी, इस पर भी सफाई देनी चाहिए, क्योंकि क्या अब उस इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की या राम की क्या वो दुहाई दे सकते हैं? क्या उस पूरे मसले पर अभी तक कोई सफाई ना तो केंद्र सरकार की तरफ से आई है, ना ही राज्य सरकार की तरफ से आई है, ना ही आरएसएस की तरफ से आई है। तो जब तक उस पर सफाई नहीं होगी, जब तक इस देश के आराध्य पुरुष पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को स्पष्ट नहीं करेगी, और इस बीच में अगर वो राम मनोहर लोहिया के पास जाने की कोशिश करेगी, तो मुझे लगता है कि ये एक मैं तो ये तो नहीं कहूंगा हताशा में उठाया हुआ कदम है, लेकिन इससे कोई फायदा लाभ होने वाला नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि राम मनोहर लोहिया के घर पे जाके करेंगे, तब उनको कास्ट सेंसस करवाना पड़ेगा, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसके साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात आप ना करें और सिर्फ हिंदुत्व की बात करते चल के, तो हिंदुत्व और सामाजिक न्याय की लड़ाई दोनों एक दूसरे के पर होती है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और संघ को शुरुआत से लेके कास्ट सेंसस को लेके हमेशा आपत्ति रही है, और जब जब इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात शुरू हुई है उसके जवाब में दरअसल हिंदुत्व को खड़ा करने की कोशिश की गई है। और ये इत्तफाक नहीं कि मंडल कमीशन के फौरन बाद राकेश अडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले थे।
0: रोहित जी एक जवाब आपका इस बात पर, इसके बाद मैं आ रही हूँ सुधांशु जी, इसके बाद आप जवाब दे दीजिए। अच्छा दे दीजिए, बोलिए बोलिए सुधांशु जी।
8: देखिए आशुतोष जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे मैं इस प्रकार की हल्की बात की अपेक्षा नहीं करता था। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई मुंबई में 1980 में, जिसमें अटल जी ने प्रसिद्ध वाक्य बोला था अंधेरा छटेगा, वो तो उसमें हमारे रिजोल्यूशन में है गांधीवादी समाजवाद, और आप ऐसी बचकानी बात कर रहे हैं कि मंडल कमीशन आया और उसके जवाब में अडवाणी जी निकले। मंडल कमीशन किस डेट को आया बताइए आशुतोष जी, फिर मैं आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे। 7 अगस्त 1990 को, और श्रीराम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ 9 नवंबर 1989 को, अयोध्या में संकल्प की रैली हुई अप्रैल 1987 में, और आप ही अपने मुंह से बोल चुके हैं भाई साहब राम मंदिर निर्माण के संकल्प की रैली लखनऊ के बेगम हजरतगंज पार्क में 9 अक्टूबर 1984 को हुई। भाई साहब हंसने से काम नहीं चलेगा, एक साल पहले वो हो चुका था, और मंडल कोई सामाजिक न्याय के लिए नहीं लाया गया था। ये कंचा इलैया ने अपनी किताब में, जिसमें कि शरद यादव जी ने खुद एक चैप्टर लिखा है, देवीलाल की 10 अगस्त को रैली थी, अन्यथा 15 अगस्त को अनाउंस करना चाहिए था, इसलिए किया गया क्योंकि देवीलाल की रैली में जनता दल की टूट बचानी थी। उस समय जाट समाज ओबीसी में कहीं भी नहीं आता था, तो जाट बनाम यादव कुर्मी की लड़ाई करके वीपी से, और यह खुद लिखा है किसने, शरद यादव ने, किसकी किताब में, कंचा इलैया की किताब शूद्राज अ न्यू पाथ अहेड, जिसको अभी राहुल गांधी ने तालकटोरा स्टेडियम में बैठ के किया था। तो भाई साहब आप ठीक है, सुनील साजन जी बोलेंगे, आपके जैसे व्यक्ति को इस ढंग की, मैंने डेट सहित कोट किया है, इस प्रकार की बात करने से
0: आशुतोष जी छोटा सा रिबटल।
10: नहीं नहीं, अच्छा अच्छा लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशलिज्म की बात, बिल्कुल सही बात है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के पहले गांधीयन सोशलिज्म की बात की थी, लेकिन देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं किया, 2 सीट पे लाके पटक दिया, क्योंकि भारत की जनता यह जानती थी कि आरएसएस का और हिंदुत्व का और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लोगों का सामाजिक न्याय की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए भारत के संविधान में जब समाजवाद और सेकुलरिज्म की बात की गई, तो सबसे धुर विरोध जो करते हैं आज यही लोग करते हैं। अगर समाजवाद को एक्सेप्ट करना होता तो कभी ये भारतीय संविधान के अंदर समाजवाद को लाने की का विरोध नहीं करते। और दूसरी बात, कांचा लैया के बारे में बात करते हैं, कांचा लैया की किताब, वाह वाह वाह सुधांशु जी, आपको कांचा लैया से बड़ा प्रेम हो गया। कांचा लैया ने जो राम के बारे में कहा, कृष्ण के बारे में कहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या आप उससे, अगर सहमत है तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो उन्होंने ब्राह्मणवाद के बारे में कहा है, जो उन्होंने ब्राह्मणवाद के बारे में कहा, जो उन्होंने राम के बारे में कहा, जो कृष्ण के बारे में कहा, शिव के बारे में कहा, अगर कांचा इलैया की बात से आप सहमत हैं तो मैं आज से आपके साथ हूं।
0: सुधांशु जी
8: डेट 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास, 7 अगस्त 1990 को मंडल, डेट तो ऐसा झूठ मत बोलिए ना कि मंडल के काउंटर में मंदिर आया, ऐसा झूठ मत बोलिए, डेट कोट की है मैंने, हवा में बात नहीं की है।
0: रोहित जी, लेकिन क्या इस पहुंच से, क्योंकि हम एक बार वोट शेयर भी दिखा दीजिए, हम दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओबीसी वोट शेयर का जो बड़ा तबका बीजेपी की तरफ गया, जिसमें जिस वैश्य समाज से वो आते थे, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, 71% 2017 के चुनाव में विधानसभा में वो बीजेपी की तरफ गया। ऐसे ही आप अन्य ओबीसी भी देखें, कुर्मी भी देखें, मतलब 71-62-63 यादव वोट एक तरफा जाता रहा समाजवादी पार्टी को, जो एसपी प्लस कह रहे हैं हम कांग्रेस। यही आप 22 में देखिए, 83% ओबीसी का उस तरफ जाना, वैश्य समाज का 66% अन्य ओबीसी और कुर्मी का भी 66%, वहीं यादव वोट 83% जाना समाजवादी पार्टी प्लस की तरफ। क्या बीजेपी उसी वोट बैंक को और अगले चुनाव में ये देखते हुए कि भाई अभी हम हमारे दो बार तो यहां पर सत्ता हम मिल चुकी है, जनता पलट ना जाए, उस वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए मंडल प्लस कमंडल की पॉलिटिक्स कर रही है? रोजी
11: अंजना जी, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में और देश में आज जो सामाजिक न्याय विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में पूरी मुस्तैदी और जागरूकता के साथ खड़े हैं। समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े अगुआ बल्कि सामाजिक न्याय आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को तो पूरा परिवार को भूल गई समाजवादी पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी ने जाकर उनके परिवार के लोगों से उनका कुशलक्षेम जानकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। आप सोचिए, स्वर्गीय राजनारायण, जिन्होंने इस देश में समाजवादी आंदोलन के पांव को मजबूत किया, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को बरगद के वृक्ष की तरह खड़ा किया, उनके परिवार के लोग कहां हैं? शायद इस बात की जानकारी समाजवादी पार्टी के सदर को नहीं होगी, न समाजवादी पार्टी के लोग उनकी सुधि लेने जाते हैं। याद कीजिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को, बिहार की धरती से निकलकर देश भर में और दुनिया भर में समाजवादी आंदोलन को उन्होंने खड़ा किया। उनकी भगनी सुधा श्रीवास्तव जी नीतीश कुमार जी की कैबिनेट में मंत्री रही, लालू जी के कैबिनेट में कुछ वर्षों के लिए रही, लेकिन लालू के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस्तीफा देकर बाहर आ गई। क्या समाजवादी आंदोलन को इस देश में खड़ा करने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों की चिंता समाजवादी आंदोलन में शामिल मुलायम सिंह यादव, लालू यादव के खरखंदान के लोग ले रहे हैं? समाजवादी आंदोलन परिवारवाद के खिलाफ था, लेकिन इस देश में समाजवादी आंदोलन के नाम में राजनीति में पदार्पण करने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, श्रीमान लालू प्रसाद जी, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने समाजवाद की जगह खानदानवाद को बढ़ावा दिया और समाजवादी आंदोलन के पुरोधाओं की मिट्टी को खत्म करने का काम किया। भाई आप जो पिछड़े वोट बैंक की चर्चा कर रही थी, देखिए इस देश में जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो सामाजिक रूप से आर्थिक आधार पर विपन्न है, कमजोर है, चाहे वो किसी भी जाति और मजहब का हो, आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। क्योंकि सोशलिज्म का जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, देश के एक जनता के रूप में मैं अपने मत को आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं।

0: आते हैं। वो कह रहे हैं, रोहित जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े ध्वजावाहक हैं समाजवाद के। तो क्या समाजवाद ये कहता है कि एक तरफ 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दो और दूसरी तरफ अपने मित्र अडानी को पूरा देश दे दो, ये तो समाजवाद नहीं है? ये कौन सी परिभाषा आपने समाजवाद की पढ़ ली? आपको, आपने डॉक्टर लोहिया को नहीं पढ़ा क्या? आपने गांधी को नहीं पढ़ा क्या? आप नाम ले रहे थे, आप जनायन जी को पढ़ लेते, जयप्रकाश जी को पढ़ लेते, जनेश्वर मिश्रा जी को पढ़ लेते, आप पढ़ते तो। आपको केवल ये चिढ़ है कि भाई पिछड़े दलितों पीडीए की अगर कोई बात कर रहा तो वो समाजवादी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकते समाजवादी? क्या गांधी जी समाजवादी नहीं थे? नेहरू जी समाजवादी नहीं थे? अगर कोई संपन्न व्यक्ति क्या समाजवादी नहीं हो सकता? अंजना जी, इन लोगों को यह लगता है आज भी, सुधांशु जी हो या भाजपा का कोई समर्थक, उनको लगता है समाजवादी का मतलब फटे पुराने कपड़े, एक झोला डाल के, चप्पल पहन के और लैया चना खाता रहे, वही समाजवादी है। मतलब अगर समाजवाद पूरे देश में तरक्की और खुशहाली ला रहा है तो उससे इनको बड़ी तकलीफ है। मैं फिर कह रहा हूँ,
1: रोहित जी से दो लाइन का एक जवाब
0: करते हैं,
1: इन लोगों
0: के सीने में सांप लौटने लगता है।
1: मतलब आप लोग अभी भी वही सोचते हैं कि समाजवादी अगर है तो फिर वो दम कपड़े और ऐसे घूमे।
2: अंजना जी,
1: बोलिए।
2: अंजना जी थोड़ा समय दीजिएगा, देश में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से बड़ा समाजवादी कोई नहीं हुआ। बाली के संहार के बाद किस किंदा पर झंडा गाड़ा, राजा किसको मनाया? सुग्रीव को। जब आगे लंका में गए और सोने की लंका पर न्याय का झंडा गाड़ा तो राजा किसको बनाया? विभीषण को। आज अगर समाजवादी पार्टी के सदर को सैफई में ग्राम प्रधान बनाना होगा तो अपने खानदान के लोगों को बनाएंगे। क्या ये लोग समाजवाद का पाठ पढ़ाएंगे देश को? समाजवाद का मतलब है नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री यादव का बेटा मोहन यादव, बिहार का मुख्यमंत्री कोयली समाज से आने वाला बेटा सम्राट चौधरी। क्या समाजवाद का पाठ पढ़ाएंगे छद्म समाजवादी, परिवारवादी, डेवलपमेंट अलायंस के नेता अखिलेश यादव? कुछ नहीं पता है इन लोगों को। समाजवादी राम थे और राम के बाद समाजवादी कोई है तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी।
0: अंजना जी,
2: परिवार के नाम पर लूटने वाले लोग समाजवाद का पाठ पढ़ाएंगे?
0: केवल 10
1: सेकंड।
0: समाजवाद, रोहित जी, रोहित जी, आपने कम से कम एक अच्छी बात कही कि भगवान राम के जीवन से समाजवाद निकला है। हम लोग मानते हैं, कहते हैं, हमने शुरुआत में कहा, ये बात भाजपाइयों को भी समझा दीजिएगा। और इतना चापलूसी मत करिए कि भगवान राम के बाद अगर कोई समाजवादी है तो मोदी जी हैं। आप ये भी कह सकते हो कि भगवान राम के ही अवतार हैं मोदी जी। मतलब इतना मत करिए नेशनल टीवी पर बैठ करके। अरे कैसी बात कर रहे हो, मोदी समाजवादी हैं? मोदी समाजवादी होते तो देश की अर्थव्यवस्था ऐसी होती? मोदी समाजवादी होते तो देश का किसान ऐसा होता? मोदी समाजवादी होते तो देश का नौजवान बर्बाद हो जाता? कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं?
1: सुधांशु जी,
0: समाजवाद,
1: सुधांशु जी,
0: थोड़ा समाजवाद पढ़िए।
1: सुधांशु जी,
0: चापलूसी
1: इतनी। क्या ये 27 के चुनाव के मद्देनजर है? जिस जिस राज्य में चुनाव होता है वहां पर आपका आउटरीच इस तरह का प्रतीत होता है अब कि आप जो कास्ट है उसको आप चाह रहे हैं कि उसको आप समेटे किसी तरह से अपने फेवर में, उसी कड़ी में जुड़ता दिख रहा है।
3: देखिए देखिए, ये एक बहुत विचित्र तर्क है जो सुनील जी ने दिया कि उद्योगपतियों का विरोध मतलब समाजवाद। तो ये बताइए भाई साहब, जब 2003 में मुलायम सिंह जी शपथ लिए थे और विजय जुलूस निकला था तो उसमें उनके भी गाड़ी के आगे खुली जीप में कौन चल रहा था? स्वर्गीय सुरबत राय सहारा, जो उस समय उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े उद्योगपति थे। पूरी बात सुनिए, अभी अभी नहीं, बहुत सारा सर झुकाने का मौका आएगा भाई साहब। उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों का की काउंसिल किसने बनाई और सबको सरकारी खर्चे के ऊपर कहा? यूपी डेवलपमेंट काउंसिल चेयर्ड बाय अमर सिंह। दूसरी बात बताइए, उत्तर प्रदेश में पहली बार इतने बड़े उद्योगपति को राज्यसभा में किसने भेजा? अनिल अंबानी को किसने भेजा? समाजवादी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए ऐसा मत बोलिए भाई साहब, ये जो आप कहने का प्रयास करते हैं, आज आपको लग रहा है, मैंने तो पहले सुना दिया कि गांधी से आई, आंधी से आई और टूटी मड़ैया ले जाए उड़ाई और बिरला के घर में जाके समाई, ये तो गोरख पांडे पहले ही लिख गए थे। इसलिए ये जो आप कहने का प्रयास करते हैं, और मैं फिर कहना चाहता हूं, आपको भारत के हर वित्तीय संस्थान से, भारत की हर कंपनी से, सरकारी हो या प्राइवेट, इतनी नफरत क्यों है भाई? LIC बर्बाद हो गई, HCL बर्बाद हो गया, SBI बर्बाद हो गई, सब प्रॉफिट में है। फिर इसके बाद लेके और हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ आपका गठबंधन, एंडरसन के साथ 1984 में खड़ा हुआ यूनियन कार्बाइड।

0: राइट के साथ, तो हॉविट्सर के साथ, बोफोर्स के साथ, बीबीसी के साथ, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ, ये मुझे समझ में नहीं आता भाई साहब। ये हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ और भारत की चाहे सरकारी हो निजी क्षेत्र उसके खिलाफ, जबकि सबसे ज्यादा अगर पूरे लखनऊ में पता है कि मुलायम सिंह जी सबसे ज्यादा विजिट करते थे अपने घर के अलावा कहीं, तो सहारा शहर में जाते थे और आपके सहारा के साथ कितने अच्छे संबंध थे, एवरीबडी नोज इट। तो इसलिए जब ये बात बोलिए तो तथ्यात्मक बोलना चाहिए। हाँ, जो आपने कहा अंजना जी आउटरीच की बात, तो हम तो ईमानदारी की बात है, हम सब में आउटरीच करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन भारत विकसित भारत बनेगा उस दिन दो तिहाई भारतीय भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होंगे। और मैं सुनील जी को यह भी बता दूं, 80 करोड़ लोग राशन ले रहे तो समझ में आता है भाई साहब, 85 करोड़ के पास स्मार्टफोन है ये नहीं समझ में आता है, 94 करोड़ लोगों के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है समझ में नहीं आता है, भारत में 1 अरब 10 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है ये भी समझ में आया, ये समाजवाद कि 84 करोड़ लोगों तक स्मार्टफोन पहुंचा दिया।
1: सुधांशु जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि आप लोग हमेशा आप उनकी तरक्की से चिढ़ते हैं, आप चाहते हैं आज भी कि समाजवादी वैसे ही फटी हुई झोली फटे हुए लिबास में घूमे तभी वो समाजवादी कहलाएगा।
0: नहीं, हम बिल्कुल बताना चाहते हैं। देखिए, एक उदाहरण देना चाहता हूं, सेफई में ये सेफई का विकास करे, इटावा एटा इटावा मैनपुरी फरुखाबाद का विकास करे कोई समझ, सेफई में आप एयरपोर्ट बनाते और शानदार रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट बनाते समझ में आता सबके लिए समाज, वहां एयर स्ट्रिप बनी है और बेहतरीन एयर स्ट्रिप बनी है जिसमें बड़े से बड़ा जहाज उतर सकता है, तो वहां तो कोई सरकारी जहाज तो आता नहीं कि आम आदमी चले, ये चार्टर्ड फ्लाइट लेके जो लैंड कर सकते हैं यानी लाखों रुपए घंटे का किराया देके, तो वो तो समाजवाद नहीं हुआ ना भाई साहब। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आते थे और वो आके वहां कार्यक्रम देते थे जिनकी लाखों रुपए की फीस होती है पर घंटे की, वो लोग आते थे। तो मैं ये बता दीजिए कि आप अगर समाजवाद चाहते थे तो आपने एयरपोर्ट क्यों नहीं बनवाया सफेई में, वो एयर स्ट्रिप ही क्यों बनाई जिसमें सिर्फ चार्टर्ड प्लेन उतर सकता है, जिसमें रिच नहीं अल्ट्रा रिच ही चल सकते हैं।
1: ठीक है, पॉइंटेड सवाल है सर, सुनील जी पॉइंटेड सवाल है सर, पॉइंटेड जवाब दीजिएगा।
2: देखिए हाँ अंजना जी, हम इधर उधर नहीं भागेंगे और हम तो सुधांशु जी से उम्मीद करते हैं कि किसी भी सवाल का जवाब देते आप एक भी सवाल का जवाब, कम से कम हमारे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया है। हम फिर कह रहे हैं कि अगर समाजवादी सरकार में सैफई का विकास हुआ है तो उसके साथ साथ हर उस गांव का भी विकास हुआ है, लोहिया गांव के माध्यम से हुआ हो, लोहिया विकास के माध्यम से हुआ हो, लेकिन सबका हुआ है, ऐसा नहीं है। हम लोग उद्योगपतियों से चिढ़ते नहीं हैं, बस पूरी व्यवस्था उद्योगपतियों की जेब में नहीं डालते हैं। उद्योगपतियों का सम्मान है, इस देश की तरक्की बिना उनके भी नहीं हो सकती, लेकिन पूरा देश ही उन्हीं को दे दीजिए, पूरे एयरपोर्ट दे दीजिए, रेलवे दे दीजिए, सारे संस्थान दे दीजिए, सारे वेयर हाउस दे दीजिए, पोर्ट दे दीजिए, तो आपके अपने पास क्या बचेगा, क्या करेंगे? तो इतना कमजोर मत बनाइए किसी अपने मित्र को बड़ा बनाने के लिए। और फिर मैं कह रहा हूं आपके, आप इधर उधर घूमते रहे, आप पिछड़ों के बारे में नहीं बोले, दलितों के बारे में नहीं बोले, उनके आरक्षण के बारे में नहीं बोले, उनके हक अधिकार के बारे में नहीं बोले, उनके सम्मान के बारे में नहीं बोले। अरे समाजवाद आपको स्वीकार, हम तो अंजना जी नहीं सुधांशु जी को सुनते थे, ये कहते थे नहीं संविधान में समाजवाद पहले दिन से नहीं लिखा है, ये गलत है। तो आज फिर हम स्वागत करते हैं आपको कि आप समाजवादी चौखट पे आए, आपका स्वागत है। अपना मन बदलिए, सोच बदलिए और देश में समाजवाद लाइए।
1: ठीक है, छोटा सा इसका रिपोर्टल। सुधांशु जी, आप कहते थे कि समाजवाद बाद में ये शब्द जोड़ा गया, आज समाजवाद के रास्ते आप आए हैं वो स्वागत कर रहे हैं।
0: बिल्कुल भाई, देखिए फिर मैं जब भी कहता था फैक्ट कहता था और सुनील जी ने एक फैक्ट का उत्तर नहीं दिया और फिर फैक्ट में गलत बोले। जब ये समाजवाद लाया गया आपने कहा हमने विरोध किया था, सुनील जी इतना बड़ा झूठ तो मत बोलिए, मुलायम सिंह जी भी विरोध में थे और जेल में थे भाई, लोकतंत्र की हत्या करके सारे विपक्ष को संसद से बाहर करके नहीं जेल में लाकर यह संविधान संशोधन किया गया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उस समय तो हम और आप साथ थे, मगर क्या करें आज आप इनके साथ हो गए, अभी 25 जून गुजरी है, इमरजेंसी के ऊपर
2: अब समाजवाद से सहमत
0: है, ऐसी संगत का असर जाके कांग्रेस के साथ बैठा कि आपके लिए, सुनिए ना, आपका समाजवाद गांधी जी के, मतलब गांधीवाद तो छोड़िए, आज के राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के वाद में इस कदर आकर चरणों में नतमस्तक हो गया कि आपके लिए एक ही पंक्ति कहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं।
1: चलिए आशुतोष जी को एक बार दिखा दीजिए और रोहित जी को। आशुतोष जी देखिए, चर्चा दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि तरह तरह से अब निकल रहा है समाजवाद इनका समाजवाद उनका समाजवाद, लेकिन एक ये भी सच्चाई है इस देश की कि इनका उद्योगपति उनका उद्योगपति, हर पार्टी के साथ ऐसी करीबियां उद्योगपतियों की रही हैं तमाम पार्टियों की।
3: देखिए अंजना जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया हूं क्योंकि मैं तो अभी तक नरेंद्र मोदी जी को हिंदुत्ववादी समझता था, अब आपके चैनल पर उनको समाजवादी बता दिया गया है, तो अब मुझे भी अपनी परिभाषा बदलनी पड़ेगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चढ़ावा चोरी के बाद से हिंदुत्व का रास्ता छोड़ने की कोशिश कर रही है, समाजवाद की तरफ जा रही है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को राम के बाद सबसे बड़ा समाजवादी बताया जा रहा। अगर ये विचारधारा से हटने की कोशिश है तो भाई ये तो भारत की राजनीति में एक बड़ा कदम हो जाएगा, वाकई इसमें मुझे कोई दो राय नहीं। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई विचारधारा को लेके कोई कंफ्यूजन पैदा हो रहा, क्योंकि इसी तरीके का कंफ्यूजन 1975 के बाद शुरू हुआ था और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी समाजवादी जनता पार्टी में, और ये बात सही है कि मुलायम सिंह यादव के साथ बैठ गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी को सूट किया तो मुलायम सिंह यादव के साथ बैठ गए, 1980 में प्रभावित होकर गांधीयन सोशलिज्म पे चले गए, और वो जो कंफ्यूजन पैदा हुआ उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी दो सीट पर आ गई। अगर आज नरेंद्र मोदी जी को हिंदुत्ववादी ना कह के उनको समाजवादी कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या फिर भारतीय जनता पार्टी 1985 की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है? क्या वो आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन में आ गई है क्या? अगर कंफ्यूजन में आ गई है, ये फिर भारत की राजनीति में बड़ा कदम होगा।
1: आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन में आ गई है क्या? बहुत बड़ा शिफ्ट है ये राष्ट्रवाद से समाजवाद की तरफ। आशुतोष जी कैसा कहना है?
0: फिर मैं बताना चाहता हूँ। देखिए पहली बात आशुतोष जी ने आज क्या बढ़िया रास्ता उद्घाटन किया कि यदि कोई पार्टी समाजवाद के साथ आएगी तो वो ध्वस्त हो जाएगी। उन्होंने कहा भाजपा इसलिए दो सीटों पे आ गई, और सही बात है, समाजवादी पार्टी ने समाजवाद छोड़कर अपराधवाद जातिवाद परिवारवाद सारे वाद कर लिए। और जहां तक हिंदुत्व की बात है आशुतोष जी, हिंदुत्व में ही असली समाजवाद है। भगवान राम के लिए तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है कि मणि माणिक महंगे किए सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। अर्थात जो बड़े धनी मानी लोग थे उनके ऊपर टैक्स ज्यादा किया, मणि माणिक महंगे किए, और सहजे तृण जल नाज तुलसी सोई जानिए राम। अब भाई साहब आप प्रबुद्ध हैं, इसलिए आप अपनी बौद्धिकता का प्रयोग, ये बुद्ध विलास का प्रयोग इस ढंग के अपराधीकरण वाले जातिवादी और जिसे मैं कहना चाहूंगा मुख्तार अंसारी अतीक अहमद जैसे लोगों के बारे का संरक्षण देने वाले लोगों के लिए बौद्धिक बचाव मच करिए, वो कोई समाजवाद नहीं रह गया है भाई साहब। इसलिए मुझे लगता है आप ज्यादा तटस्थ होके करिए तो समाजवाद दिखेगा तो सिर्फ भगवान राम के करेक्टर में दिखेगा, भगवान कृष्ण के करेक्टर में दिखेगा, हिंदुत्व में दिखेगा, जहां आज भी मंदिरों में भंडारा चलता है, सबको फ्री का भोजन मिलता है, दिखाओ भाई चर्चों मस्जिद में कहां भंडारा चलता है बताओ, दुनिया का एक देश बताओ जहां फ्री का लंच मिलता हो सबको, हमारे यहां सबको फ्री।
3: देखिए सुनील जी सुधांशु जी की बात,
0: मंदिरों के अलावा बताओ भाई कहां फ्री मिलता है?
3: भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस समाजवाद के रास्ते पर चल पड़ा है, हिंदुत्व उन्होंने छोड़ दिया है, अब वो राम को भी समाजवादी घोषित कर रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए। अंततः भारतीय जनता पार्टी लोहिया के रास्ते पर जाने को तैयार हो गई है। ये भारत की राजनीति में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है।
1: एक काउंटर क्वेश्चन है, क्या हिंदुत्व और समाजवाद किसी एक पार्टी का उसको नहीं करके जो जनरल समाजवाद क्या होता है कि सब में बराबर का, एक सेकेंड, वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है?
3: हिंदुत्व और समाजवाद कभी एक साथ हो ही नहीं सकता।
1: ठीक है रोहित जी इसका जवाब दीजिए।
3: हिंदुत्ववाद जो है वो समाजवाद का धुर विरोधी है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी
2: ये आइडियोलॉजिकल
1: कंफ्यूजन, आशुतोष जी कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए रोहित जी, उसके आधार इंसान रोहित जी
4: सुनिए, देश की जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं है, देश की जनता ने फाइनल कंक्लूजन दे दिया है, और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी समाजवादी थे, इसका सर्टिफिकेट समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव नहीं देंगे, जनता देगी, और जनता ने राम जी को समाजवादी माना क्योंकि उनके चरित्र में उनके नीति में उनके सिद्धांत में जनभावनाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति थी। और आज ठीक उसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री जाति और धर्म के विभेद से ऊपर उठकर देश के जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। और दूसरा प्रमुख बात अंजना जी, इस देश में चंद्रशेखर जी हो, राजनारायण जी हो, लोहिया जी हो, जयप्रकाश नारायण हो, रामानंद तिवारी हो, कपिल देव सिंह हो, या बेगूसराय के रामजीवन सिंह हो, देवरिया के मोहन सिंह हो, इन सब लोगों ने मिलजुल करके इस देश में अपने घर के खेत खलिहान को बेचकर समाजवादी आंदोलन को खड़ा किया, और आज जो समाजवादी आंदोलन का मजा चख रहे हैं, फल पा रहे हैं परिवारवादी लोग, आज ये जात के आधार पर उन वरिष्ठ लोगों के कुर्बानी को कमतर करके आंकते हैं। उनकी जाति पूछिए वो कौन थे, अगर उन लोगों ने जाति देखकर समाजवादी आंदोलन को इस देश में खड़ा किया होता तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, लालू यादव जैसे लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंच पाते। आज उनके आंदोलन को, उनके त्याग को जाति के आधार पर कमतर करके आंकने का काम ये पारिवारिक डेवलपमेंट अलायंस के लोग करते हैं। ये नकली समाजवादी हैं, क्योंकि इनको अपना भाई भतीजा बेटा बेटी पत्नी दामाद बहू साला सरहज दिखता है, और राम मनोहर लोहिया और राज नारायण को देश दिखता था। अंतर यह है, और आज राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश की चिंता कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई नेता कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ देश की समाजवादी शक्ति खड़ी है जनता के रूप में, पार्टियां खड़ी हो या ना हो, जनता समाजवादी है, और जनता का सर्टिफिकेट 14 में 19 में 24 में और आने वाले हर चुनाव में नरेंद्र मोदी को मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई मतांतर नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, यही जनता का कंक्लूजन है।
1: ठीक है आशुतोष जी, छोटा सा।
3: नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि इतिहास में एक देवकांत बरुआ थे, अब पता नहीं नए नए लोग आ गए तो मुझे नहीं मालूम इस बारे में, लेकिन एक बात मैं कंफर्म हो गया हूं कि आज पूरी इस बातचीत में कहीं हिंदुत्व का जिक्र नहीं हो रहा है, सिर्फ समाजवाद यानी भारतीय जनता पार्टी का कायांतरण निश्चित हो गया है, अब वो समाजवाद के रास्ते पर है। और सुनील जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इसके लिए।
1: सुनील जी मुबारकबाद कीजिए आशुतोष जी का।
2: नहीं ठीक है, आशुतोष जी हमने तो अंजना जी से भी कहा, हमने तो बीजेपी के प्रवक्ता से कहा कि आपका स्वागत है, लेकिन जो आदर्श की बात की जा रही है, अगर आपकी सरकार है तो यही JPNIC जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था बर्बाद हो रहा है। बर्बाद कौन कर रहा है? बीजेपी वाले लोग। यही जनेश्वर मिश्र पार्क आपने बर्बाद कर दिया, किसने किया? बीजेपी वाले लोगों ने। आप समाजवादियों को याद तो कर रहे हो, उनके बताए रास्ते पर उनके स्मारक, उनके संस्थान और उनके पार्क सब बर्बाद कर रहे हैं, तो ये दोहरा चरित मत रखिए, असली चेहरा रखिए। या तो कहिए हम समाजवादी हैं, या कहिए कि हम समाजवाद के विरोध में हैं, क्योंकि आप जैसे कहोगे कि विरोध में हैं,
1: अब जल्दी से जवाब दीजिए,
2: तो आपको ठीक कर दे।
1: सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर राम मनोहर लोहिया तक बीजेपी चाहती क्या है? संकेतों में सिर्फ खेल रही है या वाकई हृदय परिवर्तन?
0: हर वो व्यक्ति जो राष्ट्रवादी था, चाहे हमारा कितने भी विरोध में रहे, वो हमारे साथ है। और आशुतोष जी से फिर मैं कहता हूं, कृपया कान खोल के सुनिए। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने लिखा कि उनकी जिंदगी में जब वो दौर आया जब उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, यदि या तो खाना यूज करें या मकान का किराया लें, तो उनको लगा कि मुफ्त का खाना कहां मिलेगा, तो इस्कॉन मंदिर से कुछ दूरी के ऊपर उन्होंने अपना एक कमरा लिया जहां दिन में 2 बार फ्री का भोजन मिलता था। ये उन्होंने खुद लिखा है। तो ये हिंदुत्व से ही, मंदिर से उनको वह समाजवाद की धारा निकलती है जो ऐसे
1: दानशु जी वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज रात 9 बजे हम ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाएंगे तमाम बड़े मुद्दों पर इन डेप्थ एनालिसिस। तो रात 9 बजे जरूर रहिएगा मेरे साथ। एक ब्रेक के लिए रुक रहे, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
9: कुछ तो बात है इस दिल में।
10: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
9: कुछ तो बात है इस दिल में।
11: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
12: हमने तब भी सवाल किया था।
13: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
12: हम आज भी सवाल करते हैं।
13: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
12: ऑपरेशन अग्नि,
13: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
12: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
14: In association with
15: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
17: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, One stop solution for your brand, regional or hyper local reach. Har shahar, har kasbe tak advertise karne ke liye email karein.
18: 25 saalon se jahan tiki hai desh ki nazar, mere saath phir se shuru ho raha hai wahi safar. Ye hai khabrein saath tak, dekhte rahiye aaj tak.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली।
3: डॉक्टर रामन लोहिया, जिनकी विचारधारा पर हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है,
4: डॉक्टर राम लोहिया जी के संकल्पों के, उनके आदर्शों पे, उनकी बताई हुई नीतियों पे
5: समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे।
4: डॉक्टर राम लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं।
6: ना जाने कितनी बार अखिलेश यादव ने खुद को और अपनी समाजवादी पार्टी को राम मनोहर लोहिया और उनकी विचारधारा से जोड़ा है। बार बार लोहिया के विचारों से स्वयं को प्रेरित बताया है। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में अब साल से भी कम का वक्त बचा है और इस अंतराल में लोहिया नाम की गूंज यूपी में और तेज होने वाली है। जी हाँ, और यूपी की इसी चुनावी बिसात में अब बीजेपी ने एक नया दांव खेलकर समाजवादी पार्टी को चौंका दिया है। एक तरफ अखिलेश राम मंदिर में छड़वा चोरी पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राम मनोहर लोहिया के परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात कर रही है। चुनावी साल में बीजेपी ने मंडल और कमंडल को एक साथ साधना शुरू कर दिया है। मंडल के मसीहा कहें या पिछड़ों के सबसे बड़े विचारक राम मनोहर लोहिया के घर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। इस दौरे का संकेत और संदेश सीधे सीधे अखिलेश तक है कि अब विचारधारा के तौर पर भी सेंधमारी की तैयारी है। एक तरफ प्रयागराज में सीएम योगी समाजवादी पार्टी को अयोध्या और मथुरा पर ललकार रहे थे, तो दूसरी ओर पंकज चौधरी लखनऊ में लोहिया के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे। चर्चा तो ये भी चल निकली कि बीजेपी कहीं राम मनोहर लोहिया के परिवार वालों को चुनावी राजनीति में लाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, कहीं बीजेपी अखिलेश के उस हथियार को ही कुन तो नहीं करना चाहती है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। अखिलेश को परेशानी इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि राम मनोहर लोहिया का परिवार पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी कर रहा है। राम मनोहर लोहिया मारवाड़ी वैश्य यानी ओबीसी वर्ग से थे और बीजेपी भी जानती है कि बिना ओबीसी समाज को साधे बगैर 2027 चुनाव में उनका कल्याण होने वाला नहीं है। इससे पहले यूपी चुनाव के लिए बनी विशेष टीम में ओबीसी को तरजीह दी और अब लोहिया परिवार से मुलाकात।
7: प्रदेश अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मिलने पहुंच गए। ये सब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई ऐसी एक दूसरे में उलझ गई है कि दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी हैं। कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों को उनके वैचारिक प्रणेताओं के जरिए साधने की कोशिश कर रही है।
6: बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पर ही जोर नहीं दिया है बल्कि क्राइम रेट को लेकर भी एसपी कार्यकाल को घेरना भी शुरू कर दिया है। 2027 को लेकर बीजेपी सिर्फ राम भरोसे नहीं है, उसे मालूम है कि धर्म का मुलम्मा समाज के सभी तबकों का वोट नहीं दिला सकता, इसीलिए अब बीजेपी समाजवादी पार्टी की तथा कथित विचारधारा में भी सेंधमारी करने में जुट गई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
1: पिछड़ों का वोट लोहिया भरोसे चोट, इसी पर आज आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, हम ब्रेक नहीं ले रहे, अब देखिए सात तक मारिया के साथ।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: नमस्कार, मैं हूँ मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उसके पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चढ़ावा चोरी केस की जांच के दायरे में अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत करीब 80 लोग। चंपत राय का बयान दर्ज, गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी, कहा यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा होगा, कर्फ्यू और गुंडागर्दी से लोगों का जीना होगा हरारा। बंगाल में यूसीसी लागू करने की तैयारी, 2 जुलाई को शुभेंदु कैबिनेट में ड्राफ्ट को मिलेगी मंजूरी, सीएम ने कहा अगस्त में लाएंगे यूसीसी बिल। केतन मर्डर केस में आरोपियों की कस्टडी 3 जुलाई तक बढ़ी, सिया चेतन ने डिलीट किया डिजिटल डेटा, केतन के गायब पासपोर्ट पर अब सिया से सवाल जवाब। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, बारिश से चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत, पटना शिमला और मुंबई में भी बरसात। सबसे पहली खबर अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच की, जिसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 70 से 80 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा आज गिरफ्तार 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
1: इस सीसीटीवी फुटेज में जिस शख्स को आप बैग लिए देख रहे हैं, उसका नाम है अविनाश शुक्ला, चंदा चोरी गैंग का अहम मेंबर। और इसके हाथ में जो काला बैग आप देख रहे हैं, उसमें रखी है चोरी की वो रकम जो सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे के ढेर से उड़ाई गई है। सूत्रों की माने तो 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे थे। छापेमारी के दौरान अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5 लाख की नकदी बरामद हुई। इस बैग में वही 5 लाख कैश रखा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब 5 जून को ट्रस्ट और पुलिस दोनों को चढ़ावा चोरी की जानकारी और पुख्ता सबूत मिल गए थे, तो फिर फौरन FIR क्यों नहीं दर्ज कराई गई?
2: दर्ज हुई FIR देर से हुई, और कानून के जानकार कहते हैं कि यह FIR में देरी आरोपियों के लिए मददगार साबित हो सकती है।
1: इस पूरे मामले की टाइमलाइन पर गौर करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसे ठंडे बस्ते में डालने की जमकर कोशिशें हुई। 5 जून को ट्रस्ट को धांधली की जानकारी मिल गई, सबूत भी मिल गए, इसके वीडियो सबूत हैं। लेकिन इस मामले में FIR दर्ज हुई 20 दिन बाद, यानी 25 जून को। 25 जून को ही पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब पुलिस ने चंपत राय का बयान भी रिकॉर्ड किया है, साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट सिफारिश के आधार पर हुई नियुक्तियों पर सख्त कार्रवाई करेगा। साफ है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बड़ी देर कर दी। ट्रस्ट की नींद खुलते खुलते राम भक्त इतने आहत हो चुके हैं कि उनके घाव जल्द नहीं भरने वाले और न ही ट्रस्ट के दामन पर लगे दाग धुलने वाले हैं। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
0: अयोध्या से उठी रामधन की चोरी की चिंगारी ने यूपी की सियासत कुछ ऐसी सुलगाई है कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा पर महाभारत शुरू हो गई है। सीएम योगी ने एक दिन पहले ही अखिलेश यादव को मथुरा के श्रीकृष्ण राम जन्मभूमि आंदोलन पर बोलने की चुनौती दी है।
3: जब पूरा देश, पूरी दुनिया रामलला के पैसों की चोरी पर सवाल खड़े कर रही है, तब कान्हा की भक्ति को चुनौती देते हुए सियासत भी सेंधमारी कर रही है। नई चुनौती यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अखिलेश यादव को दी गई है।
4: अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए, और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए।
3: बीजेपी कहती है राम की चिंता छोड़ कृष्ण की चिंता करनी चाहिए। अखिलेश कहते हैं डोनेशन से पहले नेशन फर्स्ट होना चाहिए।
5: जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट।
3: इस राजनीति में ओवैसी का दल भी तीर तुक्के लगा रहा है।
6: भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों का एजेंडा एक है कि हम असली हिंदुत्व का रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
3: राम से कृष्ण तक मजहबी सियासत के चाहे जितने दांव चले जाएं, लेकिन बुनियादी राजनीति ये है कि बीजेपी 2027 की चुनावी राजनीति का फोकस अवध से हटाकर मथुरा करने की तैयारी में जुट चुकी है।
7: अयोध्या उज्जैन तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है।
8: वहां भी लूटने का इंतजाम है, वहां भी कॉरिडोर बन रहा है।
3: बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है। ये तैयारी यूं ही नहीं है। यूं ही नहीं, सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर जा चुके हैं। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री, मंत्री तक आने वाले नेता ब्रज क्षेत्र से हैं। इतना ही नहीं, आने वाली 12 जुलाई को बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी मथुरा में ही आयोजित की जा रही है। अब मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि का मामला छेड़कर सीएम योगी ने यदुवंश की विरासत और पीडीए की सियासत का दावा करने वाले अखिलेश के सामने दुविधा खड़ी करने की कोशिश की है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: अब बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी सियासी हलचल है। शिवेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री ने उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2 जुलाई को कैबिनेट में यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। अगस्त में टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर बिल लाया जाएगा। सरकार का दावा है कि राज्य में धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं होंगे। हालांकि आदिवासी समुदाय को इस बिल के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
9: आगामी 2 तारीखे कैबिनेटे এই বিলের খসড়া অনুমোদনের জন্য আনতে চলেছি। আমরা এই বিলে সোর্স বেস এন্ড রিডিং অ্যাপ্রোচ, গুজরাট ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল 2026, দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড আসাম 2026, দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড অব উত্তরাখণ্ড 2024, একে বেস করে আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল আনতে চলেছি, যেখানে এই রাজ্যে একটা আইন চলবে, ধর্মের ভিত্তিতে দুটো বিল চলবে না।
0: बीजेपी 2027 के चुनाव में मंडल और कमंडल दोनों को साथ लेकर चल रही है, क्योंकि एक तरफ यूपी की राजनीति में अयोध्या और मथुरा की गूंज है। ऐसे में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समाजवादी आंदोलन के जन नायक राम मनोहर लोहिया के घर पहुंच गए। अब इस पर भी जबरदस्त सियासत है।
10: ये तस्वीरें खास है, क्योंकि जिस राम मनोहर लोहिया पर समाजवादी पार्टी का दमदार दावा रहता है, उन्हीं लोहिया के घर पहुंचे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी।
11: मोदी जी के 12 साल पूरा होने पे जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा, जो विशेष जनसंपर्क अभियान, उसके साथ आज मेरा सौभाग्य कि लोहिया जी के परपोतों से, उनके बेटों से मेरी मुलाकात हुई और पूरा एक पारिवारिक बैठना हुआ, सबसे बहुत अच्छा लगा।
10: पंकज चौधरी, लाख कहें कि लोहिया के परिवार वालों से मिलना, उनके परपोते और परिवार का सम्मान करना बीजेपी के उस विशेष जनसंपर्क अभियान का हिस्सा है, जिसमें मोदी के शासन के 12 साल की कामयाबियों का प्रचार हो रहा है। लेकिन ये मुलाकात बस जनसंपर्क नहीं कही जा सकती, क्योंकि जिस मंडल की बुनियाद पर समाजवादी सियासत फली फूली, उसके पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ही थे। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि घूम फिर कर बीजेपी को समाजवादियों की चौखट पर ही आना है।
12: जो बीजेपी नफरत की बात करती थी, बंटवारे की बात करती थी, पिछड़े और दलितों को हीन भावना से देखती थी, दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करती, उसको आखिर समाजवादियों के चौखट पे जाना पड़ा।
10: अब चुनाव से एन पहले जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं राम मनोहर लोहिया के परिवार में जाकर स्वागत सत्कार करते हैं, पीएम मोदी के कामकाज का जिक्र करते हैं, तो इसे समाजवादी विचारधारा और वोट बैंक में बीजेपी की सेंधमारी के तौर पर देखा जा सकता है। वैसे बीजेपी की सेंधमारी की कोशिश तो दलित वोटों पर भी हो रही है।
13: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को चकनाचूर करने का काम किसी ने किया,
4: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया।
10: 27 के समर में समय है, लेकिन समीकरण अभी से साधने शुरू कर दिए गए हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: महाराष्ट्र में टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक का मामला अब एक बड़े और सुनियोजित इंटरस्टेट सिंडिकेट के रूप में सामने आया है। पुलिस ने बिहार के एक व्यक्ति को इसका मास्टरमाइंड माना है और इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए बिहार, यूपी, दिल्ली और हरियाणा में टीमें भेजी गई हैं।
3: महाराष्ट्र में टीईटी के पेपर लीक का मास्टरमाइंड है ये। इसका नाम है विजेंद्र गुप्ता। इसी ने टीईटी का पेपर लीक कराया। ये वही विजेंद्र गुप्ता है जिसका स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने किया था। आज तक के कैमरे में विजेंद्र गुप्ता पहले भी ये कहते कैद हो चुका है कि पेपर लीक कराना उसका धंधा है और जेल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं
14: जाने का था, जेल फिर परसों से खेल करेंगे।
3: हैरानी की बात ये है कि इतना खुल्लम खुल्ला अपने गुनाह का ढिंढोरा पीटने के बाद भी विजेंद्र गुप्ता पर कोई खास एक्शन नहीं हुआ और फिर वही महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड निकला। अब इसको पकड़ने के लिए बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। अब महाराष्ट्र की राजनीति पेपर लीक पर सुलगी हुई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एनडीए सरकार जब पेपर लीक नहीं रोक पा रही है तो महाराष्ट्र के लोगों की सुरक्षा कैसे करेगी।
15: तो ये सरकार की औकात नहीं है कि ये 6 लाख बच्चों टीचर लोगों का एग्जाम नहीं ले सकते, वहाँ पे भी पेपर लीक हो रहा है, तो वहाँ 14 करोड़ लोगों के सुरक्षा की जवाबदारी ये सरकार नहीं ले सकती।
16: एवरी टेस्ट पेपर इज लीक्ड एंड यू नो वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, व्हाट द एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग, व्हाट द अथॉरिटीज आर डूइंग।
3: पेपर लीक सरकार के लिए सरदर्द बन गया है। पहले नीट का री एग्जाम और अब महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक। सवाल ये है कि सरकारें इस पेपर लीक को रोक क्यों नहीं पा रही हैं? आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात कश्मीरी पंडितों की, जिन्हें 36 साल बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा दिया है और श्रीनगर के टाडा कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है।
1: छत्तीस बरस बाद जागी है इंसाफ की उम्मीद। 36 बरस बाद कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। जी हां, जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है। टाडा कोर्ट में 700 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट दायर कर दी गई है।
17: कोर्ट में जो है ट्रायल होना है, यानी कि कोर्ट में अब ट्रायल होगा, उसके बाद ही जो है निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया है इस चार्जशीट में, जिसमें JKLF का खूंखार आतंकी कमांडर यासीन मलिक भी शामिल है और SIA ने साफ तौर पर कहा है कि यासीन मलिक ही इसमें मुख्य अभियुक्त है। और जो इस पूरे मामले में जो 5 अभियुक्तों के नाम रखे गए हैं, उनमें से 3 जो है उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। एक आतंकी जो है वो एब्सकॉन्डिंग है, यानी कि वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर भाग गया था, वो वहीं पर छिपा हुआ है। और यासीन मलिक जो है इस समय तिहाड़ जेल में है।
1: 18 अप्रैल 1990 को श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी स्किम्स परिसर के पास से JKLF के आतंकवादियों ने स्टाफ नर्स सरला भट्ट का अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद सरला से मारपीट और गैंग रेप किया गया। इसके बाद श्रीनगर की उमर कॉलोनी यानी मालबाग में ऑटोमेटिक राइफल से गोली मारकर सरला की हत्या कर दी गई। डाउनटाउन श्रीनगर में उनकी क्षत विक्षत लाश मिली थी।
17: SIA ने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी पेश किया, और वो क्या था, वो था इंडिया टुडे आज तक ग्रुप का जो न्यूज ट्रैक था 1990 में, जो उस समय न्यूज ट्रैक के पत्रकारों ने जो रिपोर्टिंग की उसका एविडेंस सामने रखा गया। और खासतौर पर जो JKLF का तब का जो आतंकी कमांडर था फारूक अहमद डार उर्फ बिटा कराटे, उसका जो इंटरव्यू न्यूज ट्रैक ने किया था वो वीडियो भी अदालत में पेश किया गया है। और इस वीडियो में फारूक अहमद डार ने साफ तौर पर कबूला था कि उसने 20 कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या की थी। अब कश्मीरी पंडित समुदाय की मांग है कि एक व्यापक तौर पर सभी मामलों में जांच होनी चाहिए, ताकि वो तमाम दोषी जो है जिन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के ऊपर अत्याचार किया उनको सजा मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।
0: अब बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के सेशल्स दौरे की। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया के स्थानीय मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। मंदिर के बाहर बड़ी तादाद में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया और मोदी मोदी के नारे लगाए। अब बात शेयर बाजार की। आपको दिखाते हैं कि क्या रहा आज बाजार का हाल, आज शेयर बाजार गिरावट के साथ क्यों बंद हुआ और क्या है सोने चांदी का हाल।

0: कारोबार के दौरान बिकवाली के दबाव के बीच घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 372 अंक कमजोर होकर 76,728 और निफ्टी 110 अंक टूटकर 23,946 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में गिरावट की वजह मुनाफा वसूली और वैश्विक संकेतों से मिला दबाव रहा। शेयर बाजार की गिरावट के बीच रुपए पर भी प्रेशर बना रहा और डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे कमजोर होकर 94.54 के स्तर पर पहुंच गया। रुपए में कमजोरी की वजह विदेशी पूंजी निकासी और डॉलर की मजबूती रही। वहीं सराफा बाजार में आज तेजी का रुख रहा और सोना 2,038 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 1,41,911 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी 5,059 रुपए बढ़कर 2,21,600 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। सोने चांदी में ये तेजी वैश्विक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने के चलते देखने को मिली। आज तक ब्यूरो।
1: आयरलैंड से शर्मनाक हार के जिम्मेदार वो खिलाड़ी तो हैं ही जिन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कुछ नहीं किया, वो टीम मैनेजमेंट भी है जिसकी जिद ने हार की पटकथा टॉस से पहले ही लिख दी थी। पुराने कोच और नए कप्तान की वैभव सूर्यवंशी को ना खिलाने की जिद कई सवाल खड़े कर रही है।

0: वैभव बने टीम मैनेजमेंट की जिद का शिकार। आयरलैंड के हाथों वर्ल्ड चैंपियन की साख तार तार। हद होती है जिद की, नहीं खिलाया तो नहीं ही खिलाया वैभव सूर्यवंशी को। वर्ल्ड चैंपियन टीम एक द्वयम दर्जे की टीम से पिटती चली गई और टीम मैनेजमेंट वैभव को ना खिलाने की जिद पर अड़ा रहा। कमाल है, कहने को इस सीरीज को वैभव सूर्यवंशी के नाम पर बेचा गया था और कुछ ही घंटों में स्टेडियम की सीटें तक फुल हो गई थी, लेकिन T20 के इस सबसे तूफानी बल्लेबाज को दोनों मैच बेंच पर बैठकर ही देखने पड़े। माफ कीजिएगा, T20 क्रिकेट ऐसे नहीं खेली जाती जैसी टीम इंडिया के बड़े बड़ों ने आयरलैंड में खेली है। दो मैचों में सिर्फ 5 रन बनाए हैं संजू सैमसन ने, नाक कटवाकर रख दी आयरलैंड के सामने, और जिसके बल्ले ने गदर काटना था वो नाकाम बल्लेबाजों को पानी पिलाता रह गया।
1: वैभव सूर्यवंशी का फॉर्म था तो उसको दोनों मैचेस में खिलाया जा सकता था, क्योंकि एक मैच में आप अभिषेक शर्मा को लेते और सूर्य के साथ ओपनिंग करने के लिए, और दूसरे मैच में आप अभिषेक को ड्रॉप करते या नीचे करके सैमसन को लेते।
0: अब जो गलती हो गई उसे सुधारने का वक्त है। कैसे सुधारना है अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो कम से कम टीम मैनेजमेंट उस शख्स की सलाह ही मान ले जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है।
1: अभी पहले मैच में उनको खिलाना होगा, बस बात सीधी सी है कि जो आपके फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज है उनको बाहर रखिए और वैभव सूर्यवंशी को खिलाए, बस बिल्कुल। या तो ओपन करके जो आपके ओपनर्स है वहां आप उनको एक दो पे खिलाइए, नंबर 3 पर वैभव सूर्यवंशी को खिलाइए, पर आपको वैभव सूर्यवंशी को पहले मैच में खिलाना होगा।
0: वैभव जैसा खिलाड़ी किसी टीम को दशकों में एक बार मिलता है, ये हीरा निखर रहा है, इसे चमकने का मौका दीजिए और वक्त पर दीजिए। आज तक ब्यूरो।
2: कराची ब्लास्ट में अपने रेंजर्स की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बीती रात भीषण बमबारी की। रिहायशी इलाके में की गई इस बमबारी में औरतों, बुजुर्गों और बच्चों समेत 25 लोगों की जान चली गई।
3: ये फूल से बच्चे पाकिस्तान की कायराना हरकत के शिकार हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में इन बच्चों, बुजुर्गों और औरतों पर बम बरसाए हैं। पक्तिता प्रांत के गयान जिले, पक्तिता प्रांत के समकानी जिले और कुनार प्रांत के मनुगई जिले में नागरिक इलाकों पर हवाई हमले किए। अफगानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिक मारे गए, जिनमें कई छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। अपनी जमीन पर आतंकी पाल रहा पाकिस्तान एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर अफगानी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर बम बरसा रहा है। क्या आसिम मुनीर की नजर में ये लड़का TTP का आतंकी है? क्या ये दुदमुही बच्ची दहशतगर्द है? क्या ये घायल लड़की कराची ब्लास्ट की मास्टरमाइंड है? और क्या ये लहूलुहान बच्चियां, बुजुर्ग और महिलाएं आतंकी नजर आती हैं? अगर नहीं तो ये साफ है कि पाकिस्तान युद्ध अपराध कर रहा है, और इस अपराध का जिम्मेदार आसिम मुनीर नहीं तो और कौन है, जिसने 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिकों को मार डाला। पाकिस्तान गाजा पर इजरायली बमबारी के बाद छाती पीटने लगता है, मगर कल रात उसने सोची समझी सैन्य बर्बरता दिखाते हुए कुख्यात डबल टैप रणनीति का इस्तेमाल किया और 35 बेकसूरों को मार डाला। आज तक देरो।
2: ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएट हेक्सा प्रेजेंटेड बाय

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
6: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
5: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
1: आगे आगे,
2: अरे उधर उधर,
1: करेक्ट करेक्ट।
3: मिल गया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
10: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
11: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
12: In association with Hint, बड़े आराम से Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
13: Vimal, बोलो जुबां केसरी।
14: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
15: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
16: शेयर बाजार, जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिस्तक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिस्तक पर।
17: हमने तब भी सवाल किया था,
18: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
17: हम आज भी सवाल करते हैं,
18: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
17: ऑपरेशन अग्नि,
18: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
17: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।

राम भक्त स्तब्ध है, बेचैन है, ये जानकर कि आस्था से चढ़ाए उनके चढ़ावे की चोरी होती रही, उनके विश्वास से खिलवाड़ होता रहा। और अब एक नया खुलासा हुआ है जो और ही विचलित कर देने वाला है। इस खुलासे की बुनियाद ये सीसीटीवी फुटेज है। इस सीसीटीवी फुटेज में जिस शख्स को देख रहे हैं उसका नाम है अविनाश शुक्ला, चंदा चोरी गैंग का अहम मेंबर।

0: चढ़ावा चोरी केस की जांच के दायरे में अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत करीब 80 लोग, चंपत राय का बयान दर्ज, गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी, कहा यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा होगा, कर्फ्यू और गुंडागर्दी से लोगों का जीना होगा हराम। बंगाल में यूसीसी लागू करने की तैयारी, 2 जुलाई को शुभेंदु कैबिनेट में ड्राफ्ट को मिलेगी मंजूरी, सीएम ने कहा अगस्त में लाएंगे यूसीसी बिल। केतन मर्डर केस में आरोपियों की कस्टडी 3 जुलाई तक बढ़ी, सिया चेतन ने डिलीट किया डिजिटल डेटा, केतन के गायब पासपोर्ट पर अब सिया से सवाल जवाब। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, बारिश से चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत, पटना शिमला और मुंबई में भी बरसात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक।
0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूँ मारिया शकील। हिंदुस्तान से लेकर यूरोप तक गर्मी का कहर बरपा हुआ है, जून खत्म होने वाला है, जुलाई आने वाला है, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में अभी मॉनसून का कोई नामो निशान नहीं है, मॉनसून की कोई आहट नहीं मिल रही। आंकड़े आ रहे हैं कि इस बार बारिश 40% कम होगी, यानी हालात सूखे जैसे बने हुए हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में बारिश की हल्की फुल्की बारिश दिखी, लेकिन इसे तो प्री मॉनसून बारिश भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उत्तर भारतीय अभी तक झमाझम बारिश के लिए तरस रहे हैं।

0: जून का मॉनसून जुलाई में खिसका, क्या आने वाला है बहुत बड़ा सूखा। नॉर्थ ईस्ट में सड़कें मलबे में समाई, बाढ़ बारिश से भारी तबाही। जलवायु परिवर्तन भरपूर, सर्द रहने वाला यूरोप बन गया तंदूर। यही है जलवायु परिवर्तन, गर्मी भीषण है, जून के महीने में होती ही है, लेकिन जब तापमान सिर्फ 40 डिग्री हो और वेदर वाली ऐप दिखा रही हो फील लाइक 51, तो समझ लीजिए कि हालत खराब है। जब हमेशा ठंडे रहने वाले यूरोप के देशों में भयंकर गर्मी पड़ने लगी है, लोग मारे जाने लगे। अभी तक यूरोप में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यूरोप वालों ने ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी। यही है क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। और सवाल तो ये भी है कि अभी तक उत्तर भारत में मॉनसून क्यों नहीं आया। एमपी, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर मॉनसून की पहली बारिश के लिए तरस रहे हैं और मौसम विभाग कह रहा है कि अभी और इंतजार करो। मौसम विभाग कह रहा है कि यूपी, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में आने वाले 2 दिनों तक ऐसे ही लू के हालात रहेंगे। मौसम विभाग दिल्ली एनसीआर में 30 जून के बाद बारिश की संभावना जता रहा है। देरी से आ रहा मॉनसून अगले 2 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पहुंच जाएगा। लेकिन अभी भी पूरे उत्तर भारत में मॉनसून आने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं।
1: जून कभी इतना सूखा रहा है नहीं। अमूमन अगर देखें तो कितने सालों बाद हमने इस तरह का जून देखा जहां पर बिल्कुल बारिश नहीं है या इस तरह की स्थिति नहीं बनी है। और अगर आमतौर पर फिर मॉनसून की एक्सपेक्टेशन होगी, उसके लिए कोई एस्टिमेट तारीख है उसकी रफ्तार पर?
2: देखिए, जहां तक मॉनसून की बात है तो मॉनसून जो है रेगुलरली एडवांस कर रहा है अभी, हालांकि जो नॉर्मल डेट्स है उससे

0: थोड़ा सा अभी ये पीछे चल रहा है। हमारा अनुमान ये है कि अगले 2 दिनों के दौरान ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र, उत्तराखंड का कवर कर सकता है। इसके बाद की उसके आने वाले जो 3 दिन रहेंगे, 2 से 3 दिन यानी अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है, ये फिर जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्र को कवर कर सकता है।
1: दिल्ली के लिए कोई तारीख दी जा सकती है?
0: मानसून का एडवांसमेंट जो हम डे टू डे मॉनिटर करते हैं ना, तो इसका एडवांसमेंट कई फैक्टर्स डिपेंड करता है, जिसमें ईस्टर्ली विंड्स हो गई, बारिश भी हो गई है, तो उसको हम लगातार देख करके जैसे जैसे सिचुएशन फेवरेबल बन रही होती है उसको हम इन्फॉर्म करते हैं।
2: आमतौर पर पूरे उत्तर भारत में 25 जून तक मानसून आ जाता है, खूब बारिश होती है, लेकिन इस बार मानसून बहुत लेट हो गया और जो मानसून है भी वो बहुत कमजोर है। अभी तक मानसून में करीब 40% कम बारिश हुई है और उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके तो अभी तक पहली बारिश के लिए तरस रहे हैं। ये मौसम और फसलों के लिहाज से अच्छे संकेत नहीं है।
1: ये जलवायु परिवर्तन का ही असर है कि आमतौर पर जून के अंत तक दिल्ली में दस्तक देने वाला मानसून इस बार जुलाई का इंतजार करवा रहा है और ये भी उसकी रफ्तार पहले से कम है। मानसून कमजोर है, सीधा असर खेती पर पड़ेगा, फसलों पर पड़ेगा और इसी का असर हम देख रहे हैं कि कहीं स्विट्जरलैंड में अगर उनकी जो सबसे मशहूर जो ग्लेशियर्स हैं वो अगर पिघल जा रहे हैं तो भारत में अभी तक नदियों का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, अगर बांध जो है उनका रिजर्वायर का लेवल कम हो रहा है और ऐसी स्थिति में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा इंतजार कर रही है। कहीं सूखा, कहीं फ्लैश फ्लॉड हम देख रहे हैं, पूर्वोत्तर में कहीं पर भारी बारिश के चलते बाढ़ है, लैंडस्लाइड है, तो अभी भी उत्तर भारत सूखे पर है।
2: उत्तर भारत में भयंकर लू चल रही है, हालांकि तापमान बहुत ज्यादा नहीं है। आमतौर पर उत्तर भारत में माना जाता है कि 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब तापमान होता है तो लू चलती है, जैसा कि मई के महीने में हुआ था, लेकिन यहां हालात कुछ और है। तापमान 40 से 41 डिग्री ही है लेकिन वो 50 डिग्री जैसा लग रहा है। मौसम विभाग का मानना है कि ये नमी की वजह से हो रहा है, वातावरण में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से तापमान बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है।
0: तो तापमान जब नॉर्मल से ज्यादा होते हैं तो उसका इफेक्ट हमें फील होता है, साथ साथ में ह्यूमिडिटी भी थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से जो मानव शरीर होता है उसका जो कूलिंग मैकेनिज्म होता है वो बहुत हद तक स्वेटिंग पर डिपेंड करता है, पसीने पर डिपेंड करता है। जब पसीना निकलता है और वो उसका इवेपोरेशन होता है तो शरीर को ठंडक महसूस होती है, लेकिन अगर जो हवा है उसमें नमी ज्यादा है तो जो ये पसीने का इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लेस एफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पसीना है वो बहुत ज्यादा इवेपोरेट नहीं होता है, स्वेटिंग इवेपोरेट नहीं होती और जो कूलनेस जो फील होनी चाहिए वो नहीं होती, जिसकी वजह से जो तापमान चल रहा है उससे भी प्रतीत होता है कि तापमान शायद उससे भी कहीं ज्यादा है। तो यही सिचुएशन दिल्ली में आपको देखने को मिली, जिसकी वजह से दिल्ली में जो तापमान है वो नॉर्मल से ज्यादा चल रहे हैं। कल हीटवेव भी रियलाइज हुई है, 42 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड कुछ स्थानों पर तापमान गए हैं, जो 4.5 डिग्री 5 डिग्री अब नॉर्मल रहे हैं, जिसके हीटवेव कंडीशन भी थी, ह्यूमिड भी था मौसम, जिसके से ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ।
2: कुल मिलाकर अभी तक तो इस भीषण गर्मी और लू से राहत मिलती नहीं दिख रही और मानसून भी लेट हो रहा है। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: आग की लपटें हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि आम तौर पर सर्द माने जाने वाले यूरोप में भी निकल रही हैं। वहां तो माहौल तंदूर की भट्टी बना हुआ है। यूरोप में 40 डिग्री की गर्मी जानलेवा बन गई है, 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में ये सुनने में अजीब लग रहा होगा क्योंकि तापमान 35 से 40 डिग्री यहां आम है, लेकिन यूरोप में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उन लोगों को गर्मी की बिल्कुल आदत नहीं है। वो तो गर्मियों में भी 20 से 22 डिग्री के तापमान में रहने के आदी हैं और ऐसे में जब अचानक से तापमान दोगुना हो गया तो लोगों की मौत हो गई है।
2: यूरोप में क्लाइमेट चेंज का अंजाम, 7 दिन से गर्मी का कोहरा, 40 डिग्री से ज्यादा तापमान, 1300 से ज्यादा लोगों की गई जान। देखने में आपको ये तस्वीरें समर वेकेशंस की लग रही होंगी, ठंडी फुहारों में मस्ती करते बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, लेकिन ये मस्ती नहीं मजबूरी है। यूरोप के ज्यादातर देशों में गर्मी से हालात इतने जानलेवा हो गए हैं कि जिसे पानी में जाने का जहां मौका मिल रहा है वो जा रहा है। समंदर से लेकर नदी और फव्वारे से लेकर तालाब तक लोगों से भरे हुए हैं। दिन हो या रात, गर्मी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। सड़कों पर पानी का छिड़काव करने वाले वाहन घूम रहे हैं, लोग सड़क किनारे लगे वाटर स्प्रिंकलर से राहत का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश, हर इंतजाम नाकाफी साबित हो रहा है और हर दिन सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। के 20 से ज्यादा देश हीटवेव की चपेट में आ चुके हैं। 38 से 42 डिग्री तापमान से गर्मी जानलेवा हो रही है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन समेत 12 देशों में रेड अलर्ट जारी हो गया है। अकेले फ्रांस में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे शरीर गर्म रहने से हार्ट अटैक और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। मृतकों में 80% लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं। बिजली का संकट बढ़ गया है। हजारों घरों में बिजली नहीं है और फसलों को भी नुकसान हो रहा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि एयर कंडीशनर के बिना कई साल गुजार देने वाले लोग दुकान खुलते ही एसी खरीदने के लिए उमड़े जा रहे हैं और दुकानों में लूटपाट जैसे हालात पैदा हो गए। ये तस्वीर पेरिस की है, जहां एसी के लिए उमड़े लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। फ्रांस में एक बस हादसे का शिकार सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि बस में एसी नहीं था और ड्राइवर बेतहाशा गर्मी की वजह से बेहोश हो गया। झुलसा देने वाली गर्मी में बिना किसी गैस के इस तरह अंडे फ्राई करने का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। अब एक और तस्वीर जर्मनी की दिखाते हैं। ये लिप्ज़िग शहर है, जहां गर्मी की वजह से पटरियों के आसपास की जगह पिघली जा रही है। मजबूरी में प्रशासन को कई इलाकों में ट्रॉम की आवाजाही पर ही रोक लगा देनी पड़ी है।

0: ये ईस्ट यूरोप का एक और देश है लिथुआनिया, जहां रविवार को भयंकर हीटवेव का कहर आया, दर्जनों लोगों की मौत हो गई। यहां तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसने पिछले साल जून का रिकॉर्ड तोड़ा है। यूरोप गर्मी के लिए बना ही नहीं है, इसलिए सरकारों को भी समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या है। ये यूरोप के प्राग शहर की तस्वीरें हैं, जहां तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बताया जा रहा है कि चेक रिपब्लिक में गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ गई है। लोगों के ऊपर ऐसी ही पानी का स्प्रे किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के टूरिस्ट इन देशों में गर्मियां बिताने जाते हैं, क्योंकि ये शहर ठंडे रहते हैं, और अब यहां भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। ये पोलैंड की राजधानी वॉर्सो है, जहां रविवार को अब तक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से दर्जनों लोगों की मौत हो गई। यहां 40.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया, जिसने अभी तक का 39.5 डिग्री का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है, जो 2013 में बना था। जर्मनी के बर्लिन में तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के लिए इस्तेमाल होने वाली वाटर कैनन आम लोगों के लिए खोल दी है, ताकि उन्हें इस भीषण गर्मी में थोड़ी राहत दी जाए। यहां भी तापमान अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जर्मनी की राजधानी में 38 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। यूरोप के जो शहर ठंडे रहते थे, गर्मियों में जहां तापमान 20 से 22 डिग्री के ऊपर नहीं जाता था, वहां 38 से 40 डिग्री तापमान जाने का मतलब है कि मौसम में दोगुनी गर्मी है। जर्मनी में हालात बेकाबू हो रहे हैं। आग की भट्टी की तरह दिन तो उबल ही रहे हैं, रातें भी गर्म है।
1: सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो घर है सारे वो इंसुलेटेड है, वो जो इतनी बर्फ वाली विंटर होती है उसके लिए बने, और इसमें अगर 40 डिग्री हो जाता है तो आप समझे कि ये ऐसा है कि जैसे कि गर्मी में जैकेट पहनने जैसा है। तो मतलब सारे टाइम जिसमें ना तो कोई एसी है, ना तो कोई फैन है, उसमें आप अगर इतनी गर्मी में रह रहे हैं तो वो एक तरीके से हीट चैम्बर जैसा है, और इस स्थिति में काम करना या फिर इस स्थिति में सोना या अपनी दिनचर्या करना बहुत ही मुश्किल था।
0: लोग अपने घरों को आग की भट्टी जैसा न बनने देने के लिए कई तरह के जुगाड़ कर रहे हैं। यही हाल हंगरी का भी है।
2: इसके कारण लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है। मैं बुडापेस्ट में 11 साल से रह रहा हूँ, पहली बार ऐसा हीट वेव्स हमने देखा है। बुडापेस्ट के हिस्ट्री में 42 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर पहली बार रिकॉर्ड हो चुका है।
0: दिक्कत यह है कि यूरोप आम तौर पर ठंडे इलाकों में माना जाता है, और वहाँ रहन सहन 40 डिग्री तापमान में रहने के लायक नहीं है। अब इतनी गर्मी ने पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया है, और एक के बाद एक लोगों का शरीर जवाब दे रहा है।
3: आमतौर पर यूरोप में जब गर्मी महसूस होती है तो अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री पहुंचता है, और उसके बाद हमने देखा है कि चाहे स्पेन हो, जर्मनी हो, कुछ साल पहले वहां नदियां सूख जाती हैं, लेकिन इस बार जब पारा 40 के पार जाता दिखाई देता है तब संख्या आती है WHO की, 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। एक बड़ी वजह यह भी है कि यूरोप में ज्यादातर सर्दियां होती हैं, और इसीलिए जो घर बनाए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह थर्मोडायनेमिक होता है कि तापमान बाहर ना निकले। अब आप सोचिए कि जिस घर पहले ही गर्म होते हैं वहां 40 के पार पारा है तो गर्मी निकल नहीं सकते, और इसीलिए आपने लोगों को देखा है कि चाहे वो हीट रिफ्लेक्टर लगा रहे हों, सड़कों पर यहां वहां घूम रहे हों, उनकी सड़कें पिघल जाती हैं। यूरोप इस तरह के एक्सट्रीम वेदर के लिए तैयार था नहीं, हालांकि ये लगातार वैज्ञानिक चेतावनी देते रहे कि यूरोप अब दुनिया का वो कोना है जो सबसे तेजी से गर्म हो रहा है, और इसीलिए जरूरत है पेरिस एग्रीमेंट के तहत 1.5 डिग्री के उस तापमान को कम करने की, और पूरी दुनिया एक साथ कवायद करे, वरना बहुत देर हो जाएगी। इस बार यूरोप ने शुरुआत देखी है, आने वाले सालों में ये स्थिति और विकराल हो सकती है।
0: आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: विशेष में वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
5: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
6: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
5: smart list.
6: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
5: Marketplace.
7: Big three on the program today, or, you know, the big three of the
5: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
6: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
5: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
10: कुछ तो बात है इस दिल में।
11: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस

सात दिन से यूरोप में गर्मी का कोहराम, 40 डिग्री से ज्यादा तापमान, 1300 से ज्यादा लोगों की गई जान। देखने में आपको ये तस्वीरें समर वेकेशन की लग रही होंगी, ठंडी फुहारों में मस्ती करते बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग। लेकिन ये मस्ती नहीं, मजबूरी है। यूरोप के ज्यादातर देशों में गर्मी से हालात इतने जानलेवा हो गए हैं कि जिसे पानी में जाने का जहां मौका मिल रहा है वो जा रहा है। समंदर से लेकर नदी और फव्वारे से लेकर तालाब तक लोगों से भरे हुए हैं। दिन हो या रात, गर्मी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सड़कों पर पानी का छिड़काव करने वाले वाहन घूम रहे हैं। लोग सड़क किनारे लगे वाटर स्प्रिंकलर से राहत का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन हर कोशिश, हर इंतजाम नाकाफी साबित हो रहा है और हर दिन सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। यूरोप के 20 से ज्यादा देश हीट वेव की चपेट में आ चुके हैं। 48 से 42 डिग्री तापमान से गर्मी जानलेवा हो रही है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन समेत 12 देशों में रेड अलर्ट जारी हो गए हैं। अकेले फ्रांस में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे शरीर गर्म रहने से हार्ट अटैक, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। मृतकों में करीब 80% लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं। बिजली संकट बढ़ गया है, हजारों घरों में बिजली नहीं है और फसलों को भी नुकसान हो रहा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि एयर कंडीशनर के बिना कई साल गुजार देने वाले लोग दुकान खोलते ही एसी खरीदने के लिए उमड़े जा रहे हैं और दुकानों से लूटपाट जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। ये तस्वीर पेरिस की है, जहां एसी के लिए उमड़े लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। फ्रांस में एक बस हादसे का शिकार सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि बस में एसी नहीं था और ड्राइवर बेतहाशा गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था। झुलसा देने वाली गर्मी में बिना किसी गैस के इस तरह अंडे फ्राई करने के वीडियो भी खूब वायरल हो रहे हैं। अब एक और तस्वीर जर्मनी की दिखाते हैं। ये लिप्ज़िग शहर है, जहां गर्मी की वजह से पटरियों के आसपास की जगह पिघली जा रही है। मजबूरी में प्रशासन को कई इलाकों में ट्राम की आवाजाही ही रोक देनी पड़ी है। फ्रांस के साथ साथ जर्मनी में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। आग की भट्टी की तरह दिन तो उबल ही रहा है और रातें भी गर्म हैं। लोग अपने घरों को आग की भट्टी जैसा न बनने देने के लिए कई तरह के जुगाड़ कर रहे हैं। यही हाल हंगरी का भी है। दिक्कत यह है कि यूरोप आमतौर पर ठंडे इलाकों में माना जाता है और वहां का रहन सहन 40 डिग्री तापमान में रहने लायक नहीं है। अब इतनी गर्मी ने पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया है और एक के बाद एक लोगों का शरीर जवाब दे रहा है। आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

रामलला के पैसों की चोरी पर सवाल खड़े कर रही है, तब कान्हा की भक्ति को चुनौती देते हुए सियासत भी सेंधमारी कर रही है। नई चुनौती यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अखिलेश यादव को दी गई है। बीजेपी कहती है कि राम की चिंता छोड़ कृष्ण की चिंता करनी चाहिए। अखिलेश कहते हैं डोनेशन से पहले नेशन फर्स्ट होना चाहिए। राम से कृष्ण तक मजहबी सियासत के चाहे जितने दांव चले जाएं, लेकिन बुनियादी राजनीति ये है कि बीजेपी 2027 की चुनावी राजनीति का फोकस अवध से हटाकर मथुरा करने की तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है। ये तैयारी यूं ही नहीं है। यूं ही सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर नहीं जा चुके हैं। यूपी की राजनीति में ब्रज क्षेत्र का वजन बढ़ रहा है। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री मंत्री तक आने वाले नेता ब्रज क्षेत्र से हैं। इतना ही नहीं, आने वाली 12 जुलाई को बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी मथुरा में ही आयोजित की जा रही है, क्योंकि 2027 के रण में बीजेपी अपने सबसे मजबूत ब्रज के किले से ही विजय का शरसंधान करना चाहती है। कारण ये है कि 2022 चुनाव में बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र की 65 में से 53 सीटें जीती थी, जबकि अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, वो भी 82-85% यादव वोटों की बदौलत। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद इस क्षेत्र की हवा भी बदली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 53 की जगह सिर्फ 42 विधानसभा सीटों पर आगे रही, जबकि समाजवादी पार्टी 12 की जगह 23 विधानसभा सीटों पर आगे आ गई और अखिलेश को मिलने वाले यादव वोट प्रतिशत भी 87-89% तक पहुँचे। अब मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि का मामला छोड़कर सीएम योगी ने यदुवंश की विरासत और पीडीए की सियासत का दावा करने वाले अखिलेश के सामने दुविधा खड़ी करने की कोशिश की है। दरअसल बीजेपी चाहे भले मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को सियासी मुलम्मे के साथ पेश करे, लेकिन चुनावी इंजीनियरिंग बीजेपी भी जात के साथ साधती है और जिस तरह सीएम योगी ने चुनावी सियासत की धार अयोध्या से मथुरा की ओर मोड़ी है, उसमें हिंदुत्व के वोट के संग पीडीए की सियासत को तंग करने की पूरी प्लानिंग नजर आती है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: विशेष में बस इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
3: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस. हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.

0: केस की जांच के दायरे में अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत करीब 80 लोग, चंपत राय का बयान दर्ज, गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ, पीलीभीत में कहा यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा होगा, कर्फ्यू और गुंडागर्दी से लोगों का जीना होगा मुहाल। कल शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने की कोशिशों के बीच नौकरशाही की प्रक्रिया में बदलाव के भी संकेत। बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, 2 जुलाई को शुभेंदु कैबिनेट में ड्राफ्ट को मिलेगी मंजूरी, सीएम ने कहा अगस्त में लाएंगे यूसीसी बिल। यूपी के कासगंज में ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश, महिला पायलट घायल, डीजीसीए ने शुरू की हादसे की जांच।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
4: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशेल्स दौरे से लौट आए। अब सबकी नजर इस खबर पर लगी है कि मोदी 3.0 यानी नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। आज तक के पास खबर है कि सब कुछ तय हो चुका है, कौन मंत्री बनेगा, किसका पत्ता कटेगा, किसका प्रमोशन होगा, किसका केवल विभाग बदलकर फिर से मौका मिलेगा, किस फॉर्मूले से सीट पक्की होगी, किस पैटर्न से कुर्सी खिसकेगी, ये सब कुछ तय हो चुका है। मोदी मंत्रिमंडल में कई की छुट्टी होने वाली है, जिनके पास कई विभाग हैं, कुछ के विभाग कम होने वाले हैं, महिलाओं को प्राथमिकता, पिछड़ों पर जोर रहने वाला है और खबर है कि नए चेहरे मंत्रिमंडल में एंट्री लेकर चौंकाने वाले हैं।
1: नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल में किसकी सीट पक्की है, किसकी कुर्सी जाएगी, कितने नए चेहरों का प्रवेश होगा, कितने पुराने चेहरों की विदाई होगी, किस किस मंत्री का विभाग अब की बदला जा सकता है, पिछड़ों और महिलाओं को क्या बंपर सीट मंत्रिमंडल में मिलेगी, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की तारीख क्या है, चुनावी राज्य वाला एंगल मंत्रिमंडल विस्तार में कितना दिखेगा। खूब पतंग नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख से लेकर मंत्रिमंडल के चेहरों तक पर उड़ाई जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग सियासी गलियारों में सब सूत्रों की पतंग उड़ा रहे हैं। पहला सवाल, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्या तारीख आ चुकी है। 3 दिन का दौरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल से लौटे। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें फिर तेज हो गई हैं। 30 जून और 1 जुलाई को राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। 1 जुलाई से 3 जुलाई जापान की पीएम का भारत दौरा रहना है। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री का राजस्थान दौरा है। 5 जुलाई का दिन जरूर खाली है। 6 जुलाई से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर पीएम मोदी निकल जाएंगे। 11 जुलाई तक वो दौरे पर रहेंगे।
2: 11 जुलाई को विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं, या फिर 5 जुलाई को जो एक विंडो खाली है उसमें कैबिनेट विस्तार को अमली जामा पहनाया जा सकता है। इतना जरूर है कि अब जल्द से जल्द मोदी सरकार के अंदर कैबिनेट विस्तार देखने को मिलेगा।
1: अब सवाल नंबर 2 आता है, क्या मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जबकि सदन में मंत्रियों को कई सवालों के जवाब तैयारी करके देने होते हैं।
2: संसद का सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू हो सकता है। संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में क्या कैबिनेट में विस्तार हो सकता है? जी हां, हो सकता है। इससे पहले 2021 में 7 जुलाई को कैबिनेट में विस्तार हुआ था और 14 जुलाई से संसद का सत्र था। तब रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक जैसे बड़े नेताओं को कैबिनेट से हटाया गया था। ये पहले भी हुआ है और अब भी हो सकता है।
1: सवाल नंबर 3, कितने नए मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितने मंत्री हटाए जाएंगे, कितने मंत्रियों की पोस्ट खाली हो रही है। जैसे पंकज चौधरी अभी वित्त राज्य मंत्री, अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष बन चुके हैं। एक व्यक्ति एक पद के चलते इनकी मंत्री पद वाली सीट खाली हो सकती है, ताकि पूरा फोकस 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में संगठन पर रख सके। रवनीत सिंह बिट्टू रेल राज्य मंत्री हैं। 21 जून को इनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। राज्यसभा की नई सीटों के चुनाव में इन्हें जगह नहीं मिली। पंजाब चुनाव में पूर्व सीएम बेन सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू पूरा ध्यान लगा सके, इसलिए हो सकता है कि इनकी मंत्री पद वाली कुर्सी खाली रहेगी। हर्ष मल्होत्रा सहकारिता राज्य मंत्री रहे। मई महीने में इन्हें दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। एक व्यक्ति एक पद की नीति के चलते इनकी मंत्री पद वाली कुर्सी खाली हो सकती है। जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं। 23 जून को ये इस्तीफा दे चुके हैं।
2: पंकज चौधरी, हर्ष मल्होत्रा प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र सरकार में भी मंत्री बने रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इससे पहले जी किशन रेड्डी, विजय सापला, सर्वानंद सोनेवाल प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र सरकार में मंत्री बने रहे, क्योंकि उन राज्यों में विधानसभा चुनाव थे। क्या इसी फार्मूले के तहत पंकज चौधरी भी मंत्री बने रहेंगे, या फिर एक व्यक्ति एक पद वाला फार्मूला ही चलेगा? कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: 12 साल में मोदी मंत्रिमंडल में 4 बड़े बदलाव देखे गए हैं। नवंबर 2014 जब 4 कैबिनेट 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 14 राज्य मंत्री के साथ कुल 21 नए मंत्री जुड़ने से मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 45 से बढ़कर 66 हो गई थी। पहले कार्यकाल में दूसरा विस्तार जुलाई 2016 में पीएम ने किया जब 19 नए चेहरे शामिल हुए और 5 मंत्रियों को हटाया गया। सितंबर 2017 में पहले कार्यकाल के दौरान तीसरा विस्तार हुआ, 6 मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, 9 नए राज्य मंत्री जोड़े गए, 4 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। जुलाई 2021 में दूसरे कार्यकाल का पहला और अब तक का चौथा विस्तार मोदी मंत्रिमंडल में हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल रहा। तब 36 नए चेहरे शामिल हुए, 12 सीनियर मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, 7 तत्कालीन राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। क्या अब रिफॉर्म और परफॉर्म की बात पर फोकस करने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल विस्तार में रिफॉर्म करके परफॉर्म वाले पैमाने पर ध्यान देंगे?
1: नए चेहरों को चुनने, पुरानों की विदाई का कौन सा फॉर्मूला प्रधानमंत्री ने निकाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी दौर में बीजेपी में मुख्यमंत्री चुनना हो या पार्टी अध्यक्ष का चुनाव हो, चेहरे जो चुने जाते हैं सबको चौंकाते हैं। क्या यही नितिन नवीन की यानी बीजेपी की नेशनल टीम में नजर आएगा, जिसका ऐलान नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले हो सकता है? तो टीम में क्या दिखेगा, इसका एक सैंपल आप यूपी की बीजेपी टीम से समझिए, जहां 47% सीट पिछड़ों को दी गई, 13% पद SC/ST को दिए गए, 20% पद महिलाओं को मिले। बताया जा रहा है किसी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में महिलाओं और युवाओं को तरजीह मिलेगी। चुनावी साल के हिसाब से जहां अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, तो इनका भी ध्यान रखा जाएगा।
2: बात 21 मई की है। पीएम मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक में सुधारों को लेकर बड़े विस्तार से चर्चा की थी। क्या यही मंत्र अब पीएम मोदी की नई कैबिनेट की टीम में देखने को मिलेगा, जहां पिछड़ों, महिलाओं और युवाओं को और ज्यादा मौके मिलेंगे?
1: खबर है कि मोदी मंत्रिमंडल से 75 साल की उम्र के जो करीब मंत्री हैं, उनमें से कुछ की विदाई की जा सकती है। नए मंत्रियों को शामिल करने में सबसे ज्यादा 2 बातों पर फोकस रहना है, पिछड़ा वर्ग और महिला। ये 2 फैक्टर मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे अहम बताए जा रहे हैं। चुनावी राज्यों की इंजीनियरिंग पर भी ध्यान दिया जाना है।
2: 2021 में पीएम मोदी ने कैबिनेट का सबसे बड़ा फेरबदल किया था, तब यूपी के 6, गुजरात के 3 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, क्योंकि इन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव थे। इस बार भी मंत्रिमंडल विस्तार में इन राज्यों को ज्यादा से ज्यादा जगह मिलेगी, क्योंकि अगले साल यूपी, पंजाब, हिमाचल, गुजरात, गोवा, मणिपुर जैसे राज्यों के अंदर जो है वो विधानसभा चुनाव है।
1: अब सवाल है कि परफॉर्मेंस पर खुद फोकस करने वाले प्रधानमंत्री किस पर परफॉर्मेंस के नजरिए से नजरें टेढ़ी करेंगे और किस पर नए परफॉर्मेंस के लिए भरोसा करेंगे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: चलिए और जानकारी के लिए सीधा हिमांशु मिश्रा के पास ही चलते हैं। हिमांशु, एक बात तो समझ में आती है कि चुनावी राज्य जो हैं उनके लिए कोई ना कोई फॉर्मूला यहां पर रहेगा, और उसमें भी अगर हम उत्तर प्रदेश को खास करके देख लें और पंजाब को, अब इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि पहले और दूसरे कार्यकाल की तरह इस बार बीजेपी को अपने सहयोगियों की ज्यादा जरूरत है। तो हम किस प्रकार का एक विस्तार देखेंगे, ऐसा विस्तार जो पिछली बार, यानी कि जो सबसे बड़ा विस्तार हम कह रहे हैं, जो एक तरीके से सारे के सारे बदल दूंगा और पूरा एक रीस्ट्रक्चरिंग के रूप में दिख गया था, या फिर थोड़ा सा मॉडेस्ट पिछली बार की तुलना में?
3: देखिए श्वेता, बिल्कुल मिला जुला जो है वो बदलाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ा बदलाव होगा। आज कई बड़े मंत्रियों की छुट्टी होगी, कई को नई जगह मिलेगी। 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव है अगले साल में, और यूपी जिसमें सबसे बड़ा राज्य है, गुजरात है, पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा है, मणिपुर है, इन राज्यों के अंदर जो है चुनाव होने हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये जरूर मानकर चल रही है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में अभी तक विस्तार नहीं हुआ है। तो ये सही है कि पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, युवाओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी, और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए मंत्री परिषद में जो है नए मंत्रियों को जगह मिलेगी। लेकिन परफॉर्मेंस और रिफॉर्म के आधार पर भी जो है वो एक रिपोर्ट कार्ड तैयार हुई है। उस रिपोर्ट कार्ड पे सभी मंत्रियों की जो परफॉर्मेंस है उसका भी एक ब्यौरा जो है वो यहाँ पर सबके सामने हुआ है और इस आधार पर कौन मंत्री रहेगा नहीं रहेगा ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जल्द से जल्द अपनी कैबिनेट में विस्तार भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो नए अध्यक्ष हैं नितिन नवीन उनकी भी टीम की घोषणा जो है वो जल्द से जल्द होगी।
0: हिमांशु, पीएम कल सभी जो विभाग है उनके सचिवों की बैठक भी बुला चुके हैं, तो इस रिव्यू मीटिंग से भी क्या मंत्रियों की परफॉर्मेंस तय होगी?
3: देखिए, इससे पहले 21 मई को जो है मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सुधार कहिए, सुधारों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई थी और ये कहा गया था सभी मंत्रालयों के अंदर जो है वो काम की गति को तेज करना होगा, आपको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, आपको ये नहीं देखना ये आपके मंत्रालय का काम है और इसीलिए इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको सबको साथ मिलकर काम करना होगा। गति शक्ति जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम करने का स्टाइल है, जो एक पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत आपको काम करना है और उसमें कल सचिवों की बैठक है, तो ये जाहिर तौर पर होगा कि सभी मंत्रालयों की रिपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही मंगाया था, उनकी अचीवमेंट्स क्या है सभी मंत्रालयों की, अपने अपने मंत्रालयों की 2 साल की अचीवमेंट्स को मंगाया गया था, सभी मंत्रियों से कहा गया था, अब सेक्रेटरीज के की जो सचिवों की बैठक है उसमें ये पूछा जाएगा आपके मंत्रालय में ये काम जो पॉलिसी है ये कहाँ तक पहुंची और नहीं पहुंची, तो उसका क्या कारण है, जो अचीवमेंट है वो क्या है और अभी तक जो चीज आप अचीव करना चाहते थे वो क्यों नहीं हुआ, इन सब को लेकर सवाल जवाब होंगे। और उसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 से 6 जुलाई से जो है 11 तक न्यूजीलैंड और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे हैं, 5 तारीख का एक विंडो बसता है जिसमें शायद कैबिनेट रिशफल देखने को मिले जिस तरीके की खबरें मिल रही है, लेकिन ये भी है कि
0: हिमांशु जो महिला आरक्षण की जो कोशिशें सरकार की तरफ से थी जब वो सफल नहीं हो पाई थी, अब क्या हम ये समझ सकते हैं कि सरकार वहां पर जो मुद्दा बना रही थी और विपक्ष के विरुद्ध जो वो जनता तक गई थी, तो कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी वो बढ़ाए और पीएम संदेश दें इससे?
3: देखिए, बिल्कुल कैबिनेट में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ जो नितिन नवीन की टीम होगी उसमें भी महिलाओं की भागीदारी को जो है वो बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर एक पूरा खाका जो है भारतीय जनता पार्टी ने संगठन स्तर पर और सरकार के स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार किया है। मैंने आपको पहले ही बताया उन्होंने सभी मंत्रालयों की एक रिपोर्ट कार्ड पहले ही मंगा ली है, क्या क्या आपकी अचीवमेंट है और क्यों आपने कोई अचीवमेंट जो आप सोचते चले थे वो नहीं हुई है, तो ये सारे जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है एक रिपोर्ट कार्ड है वो प्रधानमंत्री के पास जो है वो है। अब वो उसमें जो भी चीजें हैं जातिगत समीकरण, सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो करेंगे, जिसमें सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जो एनडीए का विस्तार हुआ है वो भी हुआ है, टीएमसी से आए 20 सांसदों का एक गुट है जिसको अभी मान्यता नहीं मिली है, उसका भी इंतजार जो है वो किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो है एकनाथ शिंदे ग्रुप की जो शिवसेना है उसकी ताकत बढ़ी है, यूबीटी उद्धव ठाकरे ग्रुप के 6 सांसद जो है वो यूबीटी छोड़कर जो है एकनाथ शिंदे के साथ आए, तो तमाम अगर इस तरीके की देखेंगे तो एनडीए भी जरूर चाहेगा कि वो सहयोगी दल चाहेंगे कि उनके ज्यादा से ज्यादा।
0: हिमांशु मिश्रा, इस पूरी जानकारी के लिए अब ये देखना होगा कि कब मंत्रिमंडल का यह विस्तार होता है, मोदी मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा रोल दिखेगा, वो उत्तर प्रदेश जहां राम मंदिर चढ़ावा विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, अयोध्या में SBI समेत 6-7 बैंकों को नोटिस भेजा गया है, इन बैंकों के कर्मचारियों की भूमिका भी सवालों में है, यानी अब ये भी जांच के घेरे में आ गए हैं, बैंक कर्मचारियों से पूछताछ शुरू हो गई है, जिन बैंकों को नोटिस भेजा गया है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन सभी बैंकों की अयोध्या शाखा में ट्रस्ट से जुड़े खाते लॉकर थे, अब SIT सभी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड जुटाने में लग गई। राम मंदिर में चढ़ावा विवाद की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 70-80 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल चंपत राय को लेकर है जिन्हें चढ़ावा चोरी की बात 4 जून को ही बताया जाता है कि पता चल गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी भी बड़ी गड़बड़ी से इनकार करते रहे, सवाल है क्यों?
4: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं।
1: सात जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय चढ़ावा चोरी पर पहली बार और आखिरी बार बोले।
4: सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है।
1: लेकिन इससे चौंकाने वाली बात यह कि इस बयान के दो दिन पहले ही ट्रस्ट के सभी बड़े पदाधिकारियों को पता चल चुका था कि चढ़ावे का गबन राम मंदिर के भीतर किया जा रहा है। ये रहा इसका सबूत इस सीसीटीवी वीडियो में। जिस शख्स को आप बैग लिए देख रहे हैं, इसका नाम है अविनाश शुक्ला, जो चढ़ावा चोरी गैंग का अहम सदस्य, लूटकांड का अहम किरदार। इसके हाथ में जो काले रंग का बैग दिखता है, कहा जा रहा है कि चोरी की रकम इसी में, जो सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे से उड़ाई गई। सूत्रों की माने तो 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे। छापेमारी जब हुई तो अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5,00,000 कैश बरामद हुआ, जो इस बैग में रखा हुआ है।
5: इस वक्त मौजूद है मुख्य आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला के घर के बाहर, जहां से 5 जून की रात को ट्रस्ट के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में अनधिकारिक तौर पर एक मोटी रकम बरामद की, जो कि सीसीटीवी में कैद है। ये वही घर है मेरे पीछे जो अविनाश शुक्ला है, जहां पर वह किराए पर रहा करता था। कल अविनाश शुक्ला के भाई से पुलिस ने यहीं पर लाकर पूछताछ की।
1: राम भक्त पहले से ही चढ़ावा चोरी के आरोपों से दंग है, लेकिन ये नया सच और खुलासा ज्यादा विचलित करने वाला है, क्योंकि इसने नए सिरे से ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया।
6: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला का 5 जून का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को इस चढ़ावा चोरी की जानकारी पहले से थी और इसकी एफआईआर दर्ज कराने में ट्रस्ट ने देरी की। यानी अविनाश शुक्ला समेत सभी आरोपी लगभग ट्रस्ट की निगाह में आ गए थे, और अविनाश शुक्ला का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि कैसे एक सफेद गाड़ी में पुलिसकर्मी व अन्य लोगों की मदद से अविनाश शुक्ला को बैठाया जा रहा है। उनके पास से एक काले बैग में कहा गया कि 5,00,000 रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई।
1: बड़ा सवाल यह है कि जब ट्रस्ट को पता चल गया था कि चढ़ावे का गबन हो रहा है, तो वो मामले को रफा दफा करने या मामले को शांत कराने में क्यों जुटा? आरोपी के घर चढ़ावे की रकम मिलने के तुरंत बाद एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई? उल्टा चंपत राय वीडियो जारी करके इस मामले से क्या गुमराह नहीं करते दिखे?
4: कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
0: तो चंपत राय कह रहे थे कि चढ़ावा चोरी मामले में कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। इसके बाद चंपत राय न कुछ बोले न सामने आए, लेकिन इस मामले ने उन्हें और उनके साथियों को कटघरे में खड़ा कर दिया।
5: 4 जून को ट्रस्ट के लोगों को चोरी का पता चला, जिसके बाद 5 जून को चंपत राय के आदेश पर ट्रस्ट के लोग यहां पर आते हैं और अविनाश शुक्ला के पास से एक मोटी रकम बरामद करते हैं। सीसीटीवी में बैग लेते हुए अविनाश शुक्ला और ट्रस्ट के लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 8 जून को चंपत राय ने यह बयान दिया था कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। 7 जून को यह पूरा मामला सार्वजनिक हुआ था, तो कैसे बिना ऑफिशियल कंप्लेंट के, बिना एफआईआर फाइल हुए एक पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और जो रकम है उसको बरामद किया जा रहा था।
1: तो इस नए खुलासे ने ट्रस्ट और चंपत राय को लेकर कई गंभीर और नए सवाल पैदा कर दिए, क्योंकि ट्रस्ट को 5 जून को ही चढ़ावा चोरी का पता चल गया। इसके बावजूद 7 जून को पहली बार ये मामला जब सार्वजनिक रूप से बाहर आया, उसके बाद 13 जून को यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई, 25 जून को एफआईआर दर्ज हुई, 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, 26 जून को आरोपियों को 3 दिन के लिए जेल भेजा गया। इसी दिन चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, यानी ट्रस्ट को पता लगने के 20 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई और 21 दिन बाद जाकर चंपत राय ने पद छोड़ा। अब सवाल है कि चुप्पी साधे बैठे चंपत राय ने पुलिस जांच में देरी क्यों की? जब 5 जून को ट्रस्ट और पुलिस दोनों को चढ़ावा चोरी की जानकारी और सबूत मिल गए थे, तो फिर फौरन FIR क्यों नहीं दर्ज कराई गई? मामले को दबाने की कोशिश क्यों हुई?
5: ये बताया जा रहा है कि इस पर किसी भी तरीके से किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई, शिकायत नहीं दर्ज कराई गई और ये पूरी घटना होने के 20 दिन बाद जाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस CCTV ने ट्रस्ट के लोगों के उन दावों की पोल खोल दी है जिसमें वह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी पहले नहीं थी।
7: पहले से पकड़ लिया जाके पैसा बरामद चंपत राय जी, तो FIR क्यों नहीं की? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सोचे जो है समझी षड्यंत्र के तहत बड़ों को बचाने के लिए इन लोगों को मोहरा बना के ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। अभी हम मॉनिटरिंग भी डालेंगे, अभी हम सारा काम करेंगे, लेकिन उन पहलुओं को हम देख ले, हमारी कमेटी है बैठ के काम करेगी, बख्शा कोई नहीं जाएगा।
1: पहले तो चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी होता रहा और जब उन्हें इसका पता चला तब भी उन्होंने फौरन इस मामले में FIR दर्ज नहीं करवाई, यानी चंपत राय ने अपनी पद की गरिमा के हिसाब से काम नहीं किया। सवालों में घिरे चंपत राय का पुलिस ने अब बयान दर्ज किया है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा सकती है। इधर पुलिस ने SBI के अयोध्या धाम ब्रांच जाकर आरोपियों के खातों की जांच की ताकि चढ़ावा चोरी का पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल किया गया पता लगाया जा सके। वहीं अयोध्या के वकीलों ने ऐलान किया कि कोई भी चढ़ावा चोरी करने वाले आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा।
8: कि वकील लोग डिफेंस की ओर से वकील नहीं होंगे, अगर होंगे तो संघ में परमिशन लेंगे और 5 लाख रुपए वो पर हेड जमा करेंगे मोकिलों से लेके अपने और वकालत करेंगे। उस पैसे से प्रोसिक्यूशन की पैरवी होगी और उस प्रोसिक्यूशन की पैरवी में मुकदमा इन तीनों लोगों के खिलाफ दर्ज कराने की पूरी कोशिश की जाए।
9: बड़े आरोपियों को सबको बचा लिया गया है, कोई चौकीदार है, कोई रिक्शा वाला है, कोई ड्राइवर है, कोई पोछा वाला है, सबको फंसाया गया है। इतना बड़ा कांड हो जाए, 40 से 70 बार घोटाला हो जाए, किसी बड़े आदमी पता न चले, मैं अधिवक्ता संघ का महामंत्री हूँ, मेरे नाक के नीचे हमारे बाबू लोग चोरी कर ले, उनको पता न चले, तो भाई गले से उतरने वाली बात नहीं है।
7: उसके अलावा जो लोग हैं जिनको आप लोग बड़े लोग कह रहे हैं, उनको जो हम लोगों को जो ये लग रहा है कि SIT से पुलिस से जो संघ का हमारे प्रस्ताव है उनको जो बचाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी सारी लिखा पड़ी जितनी कानूनी पहलू हो सकते हैं सब संघ करेगा, वो चाहे चंपत राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, गोपाल राव जी, अगर शासन प्रशासन कहीं से भी उनको बचाने का प्रयास करता है तो हम लोग उनके खिलाफ भी पैरवी करेंगे।
1: चढ़ावा चोरी की जांच भले ही तेजी से आगे बढ़ रही हो, 8 आरोपियों को अब 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा सवालों में अब भी चंपत राय हैं, जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, जो केवल पद छोड़कर बचे हुए हैं।
0: एक तरफ जांच तो दूसरी तरफ चढ़ावा विवाद की सियासी आंच। उत्तर प्रदेश के अयोध्या कांड के बाद से अखिलेश यादव सनातन की चिंता कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दांव चले हैं, एक दांव कमंडल का, दूसरा दांव मंडल का। हम आपको एक एक करके दोनों के बारे में बताएंगे। पहले बात कमंडल दांव की, जहां अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ चुनौती देते हैं, चुनौती कृष्ण जन्मभूमि पर बोलने की, लेकिन क्यों ये बताएं उससे पहले देखिए आज फिर मुख्यमंत्री ने कैसे चैलेंज दिया।
10: अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की, तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है, अब उसकी चलने की सामर्थ्य समाप्त, खेल खत्म। अब जब खेल खत्म तो फिर आगे की कोई संभावना नहीं, कुछ नहीं तो राम नाम का ही सहारा सही, और राम नाम का सहारा लेंगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही कल्याण हो जाएगा।
0: असल में अखिलेश यादव के पास अभी सियासी मौका अयोध्या विवाद से आया है, जिसका फायदा वो तंज कस के सनातन की बात करके उठा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जांच चल ही रही है, तो अब मुख्यमंत्री की कोशिश अखिलेश यादव को कृष्ण जन्मभूमि पर घेरने की है, जहां अखिलेश नहीं बोलेंगे तो घिरेंगे, बोलेंगे तो भी घिरना तय।
11: जो सच्चे सनातनी हैं, भाजपाइयों से टिकट ना मांगे और ना भाजपाइयों को सच्चे सनातनी वोट दें, सच्चे सनातनी वोट दें, क्योंकि जिन्होंने चढ़ावा चोरी की हो।
12: अरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों, बेश्रमी के साथ डूब मरो, डूब मरो।
13: जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट, डोनेशन फर्स्ट।
14: चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी।
11: जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं, वो हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते, सांसद क्यों नहीं चोरी कर सकते, सांसद क्यों नहीं चोरी कर सकते।
14: एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो।
1: अयोध्या का चढ़ावा चोरी कांड, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच 2027 के चुनाव को लेकर इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां अखिलेश यादव ने सत्ता में आने पर अयोध्या के बिना भ्रष्टाचार वाले विकास की बात कही और चढ़ावा चोरी पर सीधे बीजेपी को घेरा।
13: चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई, देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई जिसने खाई राम की पाई।
1: तो लगातार अयोध्या कांड पर विपक्ष के आक्रमण का जवाब देते मुख्यमंत्री ने वो दांव चल दिया, जिस पर अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे तो घिरेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी घेरे रहेंगे।
14: अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए।
1: असल में अवध को लेकर जब अखिलेश यादव चढ़कर बीजेपी को सनातन की सियासत पर घेरना चाहते हैं,

0: नेताओं में से एक राम मनोहर लोहिया के परिजनों से संपर्क बीजेपी के यूपी अध्यक्ष करते हैं। इसे बीजेपी का मंडल दांव कहा जा रहा है। इस राजनीति को समझने के लिए दो बातें जानी। ये राम मनोहर लोहिया ही थे जिन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के जरिए जाति छोड़ो जनेऊ तोड़ो अभियान चलाया और लाखों लोगों के जनेऊ तोड़वा कर जलवा दिए। ये राम मनोहर लोहिया ही थे जिन्होंने 60 के दशक में पहली दफा पिछड़ों के आरक्षण की मांग करते हुए नारा दिया था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। अब उन्हीं लोहिया के रिश्तेदारों के घर बीजेपी पहुंच बना रही है। वो भी तब जब एक तरफ अखिलेश राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बीजेपी को घेरते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी राम मनोहर लोहिया के परिवार से उनके घर पर जाकर मुलाकात करती है। इस दौरे का संकेत और संदेश सीधे अखिलेश तक है कि अगर सनातन वाली सियासत में एंट्री अखिलेश लेंगे तो फिर बीजेपी मंडल की राजनीति पर जोर देगी।
1: मोदी जी के 12 साल पूरा होने पे जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, जो विशेष जनसंपर्क अभियान, उसके साथ आज मेरा सौभाग्य कि लोहिया जी के परपोतों से, उनके बेटों से मेरी मुलाकात हुई और पूरा एक पारिवारिक बैठना हुआ, सबसे बहुत अच्छा लगा।
2: सुना है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोहिया जी के घर गए थे, वो पार्टी जो जिसके विचार और नीत नफरतवादी हैं, जो समाज के अंदर में नफरत की बात करते हैं, समाज को डिवाइड करने की बात करते हैं। पहले अपने विचार बदलिए। समाजवादी पार्टी लोहिया जी के आदर्श आचरण को अपनाती है, लोहिया जी के बचाए हुए रास्ते पर चलती है, समाज को जोड़ने की बात करती है। किसी के घर जाने से कुछ नहीं होता है, आपको अपनी नीत और विचार बदलने की जरूरत है।
0: चर्चा तो ये भी चल निकली कि बीजेपी कहीं राम मनोहर लोहिया के परिवार वालों को चुनावी राजनीति में लाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, कहीं बीजेपी अखिलेश के उस हथियार को ही कुन तो नहीं करना चाहती जिसके दम पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। अखिलेश को परेशानी इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि राम मनोहर लोहिया का परिवार पीएम मोदी की तारीफ भी कर रहा है।
3: अखिलेश जी के विरुद्ध में तो कुछ नहीं कहना है, जो आदमी अपना जैसे करते हैं अपने अपने हिसाब से हर आदमी करता है। लेकिन पंकज चौधरी जी आए, उनकी देखिए माननीय प्रधानमंत्री के कहने से आए, उन्होंने व्यक्तिगत कॉल किया था तो हम लोगों को अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों को बरसों से प्राप्त है। और जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी थे तब भी हमारी उनकी पारिवारिक संबंध थे और जब से वो पीएम बने हैं उनमें खूबियां हैं।
4: प्रदेश अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मिलने पहुंच गए। ये सब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई ऐसी एक दूसरे में उलझ गई है कि दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के वोट बैंक में सेन लगाने में जुटी हैं। कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों को उनके वैचारिक प्रणेताओं के जरिए साधने की कोशिश कर रही है।
0: बीजेपी जानती है सवर्ण वोट कहीं ज्यादा उसका खिसकने वाला है नहीं, जरूरत पिछड़े वोट को संभाल कर रखने की है। इसीलिए बीजेपी की संपर्क सियासत लोहिया के परिवार तक पहुंची, लेकिन वाकई क्या इससे 2027 में मदद मिलेगी?
5: यूपी में सियासत का एक अहम पहलू धर्मांतरण का भी है। कुछ दिन पहले शामली में आयुष नाम का नौजवान मोहम्मद अली बन गया था। पिता ने एक मुस्लिम लड़की पर आरोप लगाया था कि प्रॉपर्टी पर मुस्लिम लड़की का परिवार कब्जा करना चाहता है, जिसने उनके बेटे को फंसा दिया है। ईद पर नमाज पढ़ने वाला आयुष अब एक बार फिर हिंदू की तरह पूजा पाठ करता दिख रहा है। इसी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस समय जुड़ रहे हैं। बताएं अरविंद, क्या इसमें डेवलपमेंट है?
6: देखिए, जो आयुष मलिक था वो मोहम्मद अली बन गया था और इस पर काफी हंगामा हुआ था, मामला सुर्खियों में था और आरोप लगाया था पिता ने कि एक सुनियोजित साजिश के तहत जो आयुष मलिक हिंदू था उसको मोहम्मद अली बना दिया गया था। लेकिन अब आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एक बार फिर आयुष मलिक ने घर वापसी की है, सनातन धर्म अपना लिया है और वो तस्वीरों में साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि पूजा पाठ कर रहा है। जब आज तक ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था शामली से कि कैसे आयुष मलिक मोहम्मद अली बन गया है, तो यह मामला देश विदेश में सुर्खियों में आ गया था और इसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। लेकिन अब इस मामले में एक बार फिर आज तक यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा है तस्वीरों के साथ कि वो आयुष मलिक जो मोहम्मद अली बन गया था उसने एक बार फिर से घर वापसी कर ली है, सनातन धर्म अपना लिया है और वो फिर से आयुष मलिक बन गया है। श्वेता,
5: शुक्रिया अरविंद ओझा, हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें साथ में आप देख रहे थे। अगली खबर का रुख करते हैं। देश में पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला महाराष्ट्र के टीईटी परीक्षा का है जिसका मास्टरमाइंड विजेंदर गुप्ता है। ये वही विजेंदर गुप्ता है जिसका 2 साल पहले स्टिंग ऑपरेशन तक आज तक ने किया।

0: किया था। आज तक के कैमरे में विजेंदर गुप्ता ने खुलेआम कहा था कि पेपर लीक करवाना उसका धंधा है और जेल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। महाराष्ट्र पुलिस इसी विजेंद्र गुप्ता की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी कर रही है।
1: लगभग 1028 अलग अलग सेंटर्स पे ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन आज इस प्रकार से ये पेपर लीक हो गया है।
2: उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है। 4 सेट मिले हैं, जो बातचीत चल रही थी ये ट्रैप में, उनका 1.5 करोड़ की डिमांड थी। वो 1.5 करोड़ में पेपर बेचने के बाद जो लेने वाला है वो आगे अलग अलग जो बायर है उनको पेपर देने का उनकी सिस्टम थी।
3: महाराष्ट्र में TET यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के करीब 4.5 लाख परीक्षार्थियों के साथ हुए इस धोखे का, इस अन्याय का जिम्मेदार ये चेहरा है, जिसे आज तक ने 2 साल पहले ही ढूंढ निकाला था। नाम है विजेंद्र गुप्ता। महाराष्ट्र में TET परीक्षा का पर्चा लीक करने वाला ये माफिया बेफिक्र होकर घूम रहा है। वहीं महाराष्ट्र के लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंता में डूबे हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ये कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। TET पेपर लीक से पूरी राज्य सरकार निशाने पर है। पेपर लीक की बीमारी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गई। देश का कोई भी राज्य, कोई भी परीक्षा, कुछ भी फुल प्रूफ नहीं है।
4: CBI का उगाड़ने को पकड़ लिया, उसके घर में करूंगा नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ेगा, इंटरव्यू स्पॉट से नहीं पकड़ा, कभी मेरा पेपर नहीं पकड़ा।
3: अब सवाल है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुकते, तो इसका जवाब महाराष्ट्र TET पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड है, जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार का रहने वाला पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता ही महाराष्ट्र TET पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पटना और समस्तीपुर समेत कई राज्यों में महाराष्ट्र पुलिस छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया वो सभी इसी पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता के इशारे पर काम कर रहे थे।
5: महाराष्ट्र के 5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जिस पेपर लीक माफिया को मुंबई पुलिस तलाश रही है, उस पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन आज तक नहीं किया था। वो साल था 2024 जब नीट पेपर लीक हुआ था। मैंने ही बिहार जाकर पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता को बेनकाब किया था। मैंने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें पेपर माफिया विजेंद्र गुप्ता ने पेपर माफियाओं के एक से बड़े एक राज खुले थे। विजेंद्र गुप्ता ने स्टिंग कैमरे में खुलासा किया था कि कैसे पेपर माफिया बेखौफ होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं।
3: तो अगर आपको लगता है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा, तो इसका जवाब विजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का बुलंद हौसला है, जिन्हें कानून का कोई डर नहीं। तभी तो वो खुलेआम कहते फिरते हैं कि यही खेल करेंगे, चाहे कितनी बार भी जेल चले जाएं।
4: नई बार जेल जाने का था, जेल कर गए, फिर परसों से यही खेल करेंगे।
6: आप कैसे UPSC वाला किए थे, वो कौन सी कंपनी?
4: MPPSC। हाँ, इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होंगे।
6: किसका नाम?
4: बेदीराम जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे, विद्यार्थी लाइफ था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गए साथ में, धरा गए, जेल चल गए।
3: जब तक विजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का ढंग से इलाज नहीं होता, ये पेपर लीक वाली बीमारी रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, चाहे कोई भी राज्य हो, किसी की भी सरकार।
7: पेपर फुटले तर फुटू दे, विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली तर करू दे। आजच ठाण्यामध्ये एक पेपर फुटला आहे TET चा, कोणालाच काही पडलेलं नाहीये। नीटचा पेपर फुटला, धर्मेंद्र प्रधानने राजीनामा तर दिलाच पाहिजे।
8: ये सरकार की नाकामयाबी आहे, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है, तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
9: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
0: और अब खबरदार हो जाइए उस सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था से, जहां 19 महीने का बच्चा सरकारी अस्पताल में सर्दी का इलाज कराने पहुंचा, लेकिन सरकारी लापरवाही से आरोप है की आंखों की रोशनी तक खो दी, क्योंकि आरोप है कि गलत आई ड्रॉप उसकी आंख में डाल दी गई।
3: छाती से 19 महीने के बेटे को सटाए ये पिता अब अस्पताल से थाने की दौड़ लगा रहे। वजह उस सरकारी व्यवस्था पर भरोसा कर लेना है जिसने इलाज की जगह आरोप जीवन भर का दर्द दे दिया, जिसने आंखों की रोशनी इनके बच्चे की छीनी। खबर मध्य प्रदेश के सागर की, जहां के बंडा तहसील के सरकारी अस्पताल में इंद्राज विश्वकर्मा अपने 1 साल 7 महीने के बेटे विनय को लेकर इलाज कराने पहुंचे। बच्चे को सर्दी हुई थी, आंखें थोड़ी लाल हो रखी थी। सरकारी डॉक्टर ने दवा लिखी, परिवार दावा करता है दवा लेकर आया। आरोप इस बात का कि आंख की जगह नेजल ड्रॉप आंख में डाल दी गई, जिससे दावा है कि बच्चे की आंख खराब होने लगी और उसे दिखना बंद हो गया।
10: बच्चे की आंखें लाल हुई थी तो हम बंदा सा अस्पताल लेके आए थे, तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा, उसको बॉटल लगाई, एक पैरासिटामोल शीशी थी, एक ड्रॉप दे दी, उससे इन्फेक्शन बन गया, ऑक्सीजन चली गया।
11: आपने और कहाँ दिखाया?
10: हम भोपाल भी ले गए थे, उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन हो गया है, दवा से इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि पहले FIR कर दो। तो हम यहाँ पे FIR के लिए आज कुछ नहीं बैठे बैठे थे, कल भी आए थे, आज भी आए।
3: अब दवा लिखने वाले डॉक्टर हिमांशु वर्मा कहते हैं केमिस्ट ने वो दवा नहीं दी जो इन्होंने लिखी। परिवार कहता है दवा डॉक्टर ने डाली, डॉक्टर कहते हैं दवा इन्होंने बच्चे की आंख में नहीं डाली है, और फिर बच्चे की आंख की रोशनी जाने पर ये कुपोषण का दावा करने लगे।
12: लिखा गया है उससे अलग ड्रॉप।
13: सर वो परिजन बता रहे हैं बच्चे के जो माता पिता आए थे उनने ड्रॉप लिया, वो आपके यहाँ लेकर भी आए थे और आपने कहा था कि 3-3 बूंदे देना, उनका कहना है सर ऐसा?
12: अगर परिजन मेरे पास अगर कोई ड्रॉप लेके, कोई भी पेशेंट अगर मेरे पास आता है ड्रॉप लेके, तो फिर मैं उसको अगर देख के, अगर जो मैंने लिखा तो वो तो मुझे पता है कि मैंने क्या लिखा, अगर गलत होता, अगर उन्हें दिखाया है और गलत होता तो मैं बताता नहीं ये ड्रॉप गलत है। बच्चे को वैसे वजन कम था तो कुपोषण था बच्चे को, तो कुपोषण की वैसे कुपोषण की आखिरी स्टेज में आंखों पर भी असर पड़ता है, तो आखिरी स्टेज में बच्चे को शायद बच्चे को लेके आए तो उसमें कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाते हैं।
3: परिजन कहते हैं डॉक्टर की गलती है, डॉक्टर कहते हैं कुपोषण जिम्मेदार, एक बच्चे की आंख की रोशनी जा चुकी है। सागर जिला अस्पताल से भोपाल एम्स तक के डॉक्टर देख चुके हैं, डॉक्टरों ने कहा इन्फेक्शन फैल चुका है, बच्चे की आंख की रोशनी पूरी तरह से गई है, 1.5 साल का बच्चा नेत्रहीन हो गया।
14: ये जानकारी मेरे को मिली है, इसमें CMHO कार्यालय से जांच कमेटी गठित की गई है, जांच कमेटी जांच करने के उपरांत रिपोर्ट देगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।
13: सर उसमें जो एक ड्रॉप बताए गए जो लिखा था पर्चे में आंखों की और नाक की दे दी है, तो इसमें आपका क्या कहना है?
14: ये तो जांच में पता चलेगा
13: सर, ये तो है तो आपके हॉस्पिटल से, तो आप
14: ये जांच में पता चलेगा कि ड्रॉप क्या लिखा था और क्या दिया गया है, जांच में जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जांच तो हो जाएगी लेकिन बच्चे की आंख की रोशनी कैसे लौटेगी? जरूरी है कि सरकार इस पर ध्यान दे, बच्चे का इलाज सरकार कराए, किसकी लापरवाही से खिलवाड़ हुआ उसकी पहचान हो, सजा दी जाए ताकि फिर किसी परिवार की खुशियां ना छीने।
0: आज तक खबर दिखाता है तो सरकारें खबरदार होती हैं। इसका ताजा सबूत राजस्थान में एम्बुलेंस सेवा का दोबारा शुरू होना है। करीब 200 दिनों से ज्यादा से जननी एक्सप्रेस सेवा ठप पड़ी थी, आज तक ने जनता का यह मुद्दा उठाया, लगातार स्वास्थ्य मंत्री को खबरदार किया। आज राजस्थान सरकार की तरफ से बताया गया है कि 10 जुलाई से ये एम्बुलेंस सेवा दोबारा शुरू होगी। इस एक फैसले ने मरीजों के साथ साथ उन 1200 कर्मचारियों को भी राहत दी है जो ये एम्बुलेंस सेवा ठप होने से बेरोजगार हो गए थे।
15: 104 की एम्बुलेंस जो डिलीवरी के लिए महिलाओं को लेके आती है सर, 104 एम्बुलेंस नहीं चल रही राजस्थान में।
3: आज तक ने 7 महीने से राजस्थान में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक लाने और उन्हें घर तक छोड़ने से जुड़ी एम्बुलेंस सेवा बंद होने पर खबरदार किया, तो अब राजस्थान सरकार जाग गई है। आज तक ने बांसवाड़ा और टोक में जनता की गाढ़ी कमाई से खरीदी गई एम्बुलेंस के कबाड़ बनने से देश को खबरदार किया। जब जनता के हित में खबरदार करने आज तक संवाददाता शरद कुमार ग्राउंड पर उतरे।
16: सरकार टेंडर खत्म होने से पहले नया टेंडर करना भूल गई और अब हालत यह है कि पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से ये एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से बंद पड़ी है।
17: जब आज तक ने पूछा कि गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को अस्पताल लाने घर पहुंचाने के लिए चलने वाली आयुष्मान जननी एक्सप्रेस क्यों जगह जगह धूल फांक रही है, तब जाकर एक्शन में सरकार आई है। 12 जून को आज तक के शो खबरदार में शरद कुमार ने आम आदमी के पैसे से हो रही बर्बादी की खबर को दिखाया।
18: हेल्थ सिस्टम से खबरदार करते हैं, जहां इंजेक्शन के नाम पर दवा नहीं बल्कि पानी भरा इंजेक्शन लगा दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं की मौत हो जाती है।
16: देख सकते हैं गाड़ियां किस तरह से कबाड़ हो रही हैं, मगर कब शुरू होगी और ग्रामीण इलाकों में कब महिलाओं और बच्चों को मदद मिलेगी, इसके बारे में सरकार कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है।
19: हमारा 4,000 गाड़ी का किराया लगा है सर, और हम गाड़ी करके फिर आए हैं।
16: आप कैसे लेकर आए हो?
20: गुरु गाड़ी में लेके।
17: बताया था कि एक तरफ सरकारी सुविधा के बावजूद जनता अपनी जेब से पैसे चुका रही है, वहीं सालों से एम्बुलेंस चलाने वाले बेरोजगार हो रहे हैं।
18: अफसर लीपापोती करते हैं और हालत यह है कि राजस्थान में रूरल हेल्थ सिस्टम की रीढ़ कही जाने वाली एम्बुलेंस पिछले 7 महीने से बंद पड़ी है।
16: सरकार के पास पैसा नहीं है या फिर किसी ऐसी कंपनी को टेंडर देना चाहती है जिसके लिए टेंडर रोका गया है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
21: बेरोजगार हो गए सर, घर बैठे हुए हैं, तब से अब तक कोई भी पायलट उधर उधर नौकरी करने के नहीं गया।
17: आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। 200 दिन से थमी 600 जननी एक्सप्रेस सेवा 10 जुलाई से अब शुरू कर दी जाएगी। इस तरह 104 एम्बुलेंस सेवा ठप होने से बेहाल हो रहे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही वेतन न मिलने से हड़ताल पर गए 1200 कर्मचारियों के रोजगार की भी मुसीबत खत्म होगी।
16: आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार जागी है और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर से जननी एक्सप्रेस दौड़ेगी। इससे राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और बच्चों को बड़ी मदद मिलेगी।
22: माननीय मुख्यमंत्री महोदय के डायरेक्शन में जननी एक्सप्रेस सेवाओं का रिव्यू विस्तृत रूप से सभी CMHOs के साथ किया गया है। कुछ जगह जो कमियां थी उसको भी दुरुस्त किया गया है और सभी जिलों में इसको प्रभावी रूप से चलाने के लिए डायरेक्शन दे दिए गए हैं और अधिकांश जिलों में सही तरीके से चल रही है।
23: हम ये चाहते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट का भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये दोबारा से जो सेवा चालू हो रही है उसके लिए बार बार धन्यवाद देंगे राजस्थान गवर्नमेंट का, और आज तक चैनल ने जो हमारी मुहिम उठाई थी उसके लिए बार बार धन्यवाद देंगे, और जो माताएं बहनें जो उनके लिए जो शिशु हैं छोटे छोटे नवजात शिशु हैं उनके लिए सुविधा चालू होगी, उनके लिए बहुत बेहतर सुविधा मिलेगी राजस्थान के अंदर।
17: तो आज तक ने जनता के हक के लिए सरकार को खबरदार किया, जनता के हित में फैसला आया, आज तक भरोसा देता है, आगे भी आपको जनता के हित के लिए हर खबर से खबरदार करेगा।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, आप देखते रहिए आज तक, रहिए खबरदार।
24: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
25: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
26: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
27: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
28: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
29: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: आगे आगे
4: अरे उधर
2: उधर
4: करेक्ट करेक्ट
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
7: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
6: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
3: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
2: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
8: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
9: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
10: आगे आगे,
11: अरे उधर
10: उधर, करेक्ट करेक्ट,
12: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
14: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
13: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
15: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
16: कुछ तो बात है इस दिल में।
17: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
16: कुछ तो बात है इस दिल में।
18: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
19: हमने तब भी सवाल किया था।
20: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
19: हम आज भी सवाल करते हैं।
20: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
19: ऑपरेशन अग्नि,
20: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
19: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
21: In association with
22: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
23: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
5: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
4: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
6: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
7: Dr. Ramanu Lohia, jinki vichardhara par hamari samajwadi party ka aadhar hai.
8: Dr. Ramanu Lohia ji ke sankalpon pe, unke aadarshon pe, unki batayi hui neetiyon pe.
9: समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे।
8: डॉक्टर रामनो लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं।
10: ना जाने कितनी बार अखिलेश यादव ने खुद को और अपनी समाजवादी पार्टी को राम मनोहर लोहिया और उनकी विचारधारा से जोड़ा है। बार बार लोहिया के विचारों से स्वयं को प्रेरित बताया है। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में अब साल से भी कम का वक्त बचा है और इस अंतराल में लोहिया नाम की गूंज यूपी में और तेज होने वाली है। जी हां, और यूपी की इसी चुनावी बिसात में अब बीजेपी ने एक नया दांव खेलकर समाजवादी पार्टी को चौंका दिया है। एक तरफ अखिलेश राम मंदिर में छड़वा चोरी पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राम मनोहर लोहिया के परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात कर रही है। चुनावी साल में बीजेपी ने मंडल और कमंडल को एक साथ साधना शुरू कर दिया है। मंडल के मसीहा कहें या पिछड़ों के सबसे बड़े विचारक राम मनोहर लोहिया के घर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। इस दौरे का संकेत और संदेश सीधे सीधे अखिलेश तक है कि अब विचारधारा के तौर पर भी सेंधमारी की तैयारी है। एक तरफ प्रयागराज में सीएम योगी समाजवादी पार्टी को अयोध्या और मथुरा पर ललकार रहे थे, तो दूसरी ओर पंकज चौधरी लखनऊ में लोहिया के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे। चर्चा तो ये भी चल निकली कि बीजेपी कहीं राम मनोहर लोहिया के परिवार वालों को चुनावी राजनीति में लाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, कहीं बीजेपी अखिलेश के उस हथियार को ही कुंद तो नहीं करना चाहती है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। अखिलेश को परेशानी इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि राम मनोहर लोहिया का परिवार पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी कर रहा है। राम मनोहर लोहिया मारवाड़ी वैश्य यानी ओबीसी वर्ग से थे और बीजेपी भी जानती है कि बिना ओबीसी समाज को साधे बगैर 2027 चुनाव में उनका कल्याण होने वाला नहीं है। इससे पहले यूपी चुनाव के लिए बनी विशेष टीम में ओबीसी को तरजीह दी और अब लोहिया परिवार से मुलाकात।
11: प्रदेश अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मिलने पहुंच गए। ये सब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई ऐसी एक दूसरे में उलझ गई है कि दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी हैं। कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों को उनके वैचारिक प्रणेताओं के जरिए साधने की कोशिश कर रही है।
10: बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पर ही जोर नहीं दिया है बल्कि क्राइम रेट को लेकर भी एसपी कार्यकाल को घेरना भी शुरू कर दिया है। 2027 को लेकर बीजेपी सिर्फ राम भरोसे नहीं है, उसे मालूम है कि धर्म का मुलम्मा समाज के सभी तबकों का वोट नहीं दिला सकता, इसीलिए अब बीजेपी समाजवादी पार्टी की तथा कथित विचारधारा में भी सेंधमारी करने में जुट गई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आखिर में मौसम के मिजाज की बात आपको बताएं, जहां दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम का मिजाज बदला, बारिश हुई, पटना शिमला मुंबई में भी बरसात हुई और चिलचिलाती गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई। शहरों का हाल देखते हुए कब तक ये राहत रहेगी और आफत नहीं, देखना होगा। अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम उस खौफनाक साजिश की पड़ताल करेंगे जो अगर अंजाम तक पहुंच जाती तो मुंबई ही नहीं पूरा देश सांप्रदायिक आग में झुलस सकता था। मुंबई पुलिस ने पुणे के एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने 50 किलो चूहे मारने का जहर, 30,000 खाली कैप्सूल्स खरीदे थे। आरोप है कि इन कैप्सूल्स में जहर भरकर उन्हें मुहर्रम के जुलूस में शामिल शिया मुसलमानों तक पहुंचाया जाना था ताकि एक साथ हजारों लोगों की जान ली जा सके। सोचिए, अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो अंजाम कितना भयानक होता। देशभर में तनाव फैल सकता था, दंगे भड़क सकते थे, सामाजिक सौहार्द की ऐसी चोट पहुंचती जिसकी भरपाई सालों तक नहीं हो पाती। आज हम इस खबर को सबसे पहले इसलिए दिखाएंगे ताकि देश ये समझ सके कि नफरत और हिंसा की साजिशें अब कितनी संगठित, कितनी योजनाबद्ध, कितनी खतरनाक होती जा रही है। और इसके बाद हम पूछेंगे कि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी के मामले में बुलडोजर वाला न्याय अब तक अयोध्या से नदारद क्यों है। हम आपको लवकुश मिश्रा का वो आलिशान महल दिखाएंगे जो प्रभु श्री राम के चरणों से चुराए गए चढ़ावे से तैयार हुआ। हमारी तफ्तीश बताती है कि मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा ने ऐसी अंधेर गर्दी मचाई कि हाईवे किनारे की जमीनें परिवार के नाम पर खरीदी गई, 20,000 रुपए की तनख्वाह में 50-50 लाख की इमारतें खड़ी हो गई और उन्हें यकीन था कि उनकी करतूतों से कभी पर्दा नहीं उठेगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इन चढ़ावा चोरों ने इंसानों के लगाए सीसीटीवी कैमरों को भले धोखा दे दिया हो, लेकिन ये प्रभु श्री राम के उस अदृश्य सीसीटीवी से नहीं बच सके जो केवल हाथों की चोरी नहीं बल्कि नियत और स्वार्थ को भी रिकॉर्ड करता है। और इसके बाद हम आपको पुणे हत्याकांड का वो चेहरा दिखाएंगे जहां प्यार नहीं, स्वार्थ भय और बच निकलने की कोशिश दिखाई देती है। अब तक आपने यही सुना कि सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, साथ रहना चाहते थे। लेकिन अब जानते हैं क्या, अब पुलिस हिरासत से जो कहानी बाहर आ रही है उसने इस तथाकथित प्यार की पूरी बुनियाद पर सवाल खड़े कर दिए। सूत्रों के मुताबिक सिया और चेतन अब एक दूसरे पर ही हत्या का ठीकरा फोड़ रहे, मतलब जब पकड़े गए तो एक दूसरे पर ठीकरा, सारी मोहब्बत हवा हो चुकी है। दोनों खुद को निर्दोष और दूसरे को मुख्य साजिशकर्ता बताने में जुटे हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इससे सजा कम करवाई जा सकती है, कानूनी राहत ली जा सकती है, जमानत की संभावनाओं को भी मजबूत किया जा सकता है। सोचिए, इसी प्यार के लिए इन दोनों ने केतन को मार डाला। और आखिर में हम आपको जलता यूरोप दिखाएंगे। उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि थोड़ी सी राहत अभी दिल्ली एनसीआर में आई है, हल्की फुल्की बारिश हुई है, लेकिन ज्यादातर उत्तर भारत में जबरदस्त तपती गर्मी है। भारत के लोग इस गर्मी को सहन करते हैं लेकिन यूरोप में गर्मी ने गदर मचा दिया है। फ्रांस की हालत यह है कि वहां 1,000 से ज्यादा लोग हीटवेव के कारण मारे जा चुके हैं जबकि पूरे यूरोप में 1,300 से ज्यादा जाने गर्मी के कारण गई है। आज हम आपको ये बताएंगे कि यूरोप में गर्मी जानलेवा क्यों हुई और ऐसा क्यों है कि भारत के लोग 45 डिग्री ही नहीं 50 डिग्री का पारा भी झेल लेते हैं लेकिन यूरोप के देश 35 डिग्री पर ही जलने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले आप कल्पना कीजिए कि अगर मुहर्रम के जुलूस में हजारों लोगों को कुछ हो जाता तो कैसे हालात बन जाते। पुलिस के मुताबिक उसने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसके पास जानते हैं क्या था, 30,000 कैप्सूल्स, 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड मौजूद था। जिंक फॉस्फाइड क्या है? जिंक फॉस्फाइड का मतलब है चूहे मारने वाला जहर। यही नहीं, इस व्यक्ति ने इस जिंक फॉस्फाइड को 14,900 कैप्सूल्स में भर भी लिया था और ये इन कैप्सूल्स को मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुए मुसलमानों को यह कहकर दे रहा था कि एक पेन किलर कैप्सूल है। आप पहले ये वीडियो देखिए।

0: वैसे तो हम आगे आपको अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला भी दिखाएंगे, अन्य भी जो बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन हमें लगा कि ये आज एक बड़ी खबर है और आपको दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर ये व्यक्ति कामयाब हो जाता तो इससे इस देश में कोहराम मच जाता। आप खुद सोचिए कि यहां तो हजारों लोगों को मारने की ये साजिश रची जा रही थी। ये पूरा मामला मुंबई के सबसे बड़े मुहर्रम जुलूस का है, जहां एक व्यक्ति शिया मुसलमानों को दर्द की दवा बताकर कुछ कैप्सूल्स बांट रहा था। इसी दौरान जब एक लड़के ने कैप्सूल खाने के बाद उल्टी पेट दर्द की शिकायत की तो पुलिस को शक हुआ और जांच में बड़ी मात्रा में जहरीले कैप्सूल्स बरामद किए गए। इस घटना की सबसे डराने वाली बात तो यह है कि इसमें किसी बंदूक या बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया, एक साधारण कैप्सूल जिसको हथियार बनाया गया, जिस पर लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी कुल 30,000 जहरीले कैप्सूल्स मुसलमानों के बीच बांटने वाला था और इनमें हर कैप्सूल में 1 ग्राम चूहे मारने का जहर भरा गया था। यहां सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि साजिश प्रेमजी नाम के एक व्यक्ति ने रची और नाम से ये व्यक्ति कई लोगों को हिंदू लग रहा है और अभी ये बात फैलाने की कोशिश हो रही है कि एक हिंदू व्यक्ति ने मुहर्रम के जुलूस में हजारों मुसलमानों की जान लेने की कोशिश की। तो आज हमने सोचा आपके सामने सच आना चाहिए ताकि कोई भी धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। हकीकत में पूरी तरह यह दावा गलत है। ये व्यक्ति शिया मुसलमानों को ये कैप्सूल बांट रहा था। उसका नाम सिर्फ प्रेम जी नहीं है, उसका पूरा नाम है फैयाज निसार प्रेम जी। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला है और पुणे में ये पेंट का कारोबार करता है और इसी कारोबार की मदद से इसने चूहे मारने का 50 किलो जहर हासिल किया। इसके बाद इसने इंटरनेट से 30,000 खाली कैप्सूल्स खरीदे और इन्हें ये मुंबई के डोंगरी इलाके में लेकर आ गया। यही नहीं, डोंगरी में 15 दिन रहा और 15 दिन रहकर उसने इन खाली कैप्सूल्स में एक एक करके जहर भरा और ये योजना बनाई कि वो मुहर्रम में शामिल होने वाले लोगों को निशाना बनाएगा, पेन किलर के नाम से ये दवा देगा। पुलिस के मुताबिक अगर वो समय रहते इस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती तो ये कई मुसलमानों की जान तक ले सकता। सुनिए।
1: और प्रत्येक कैप्सूल में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल के उसने इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को टारगेट किया और वहां पे बहाना बनाया कि ये कैप्सूल पेन किलर की तरह काम करती है और प्रोसेशन में जाने वाले लोगों को ऐसा फंसा के उसने कैप्सूल बेचने की कोशिश करी। परंतु मुंबई पुलिस की सतर्कता और होशियारी और मेहनत की वजह से ये बड़ा हादसा टला है और एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को हानि हो सकती थी, एक मुख्य त्रासदी हो सकती थी, ये त्रासदी को टाला गया है। जी, उसका मोटिव जो है वो अभी तपास में पता चलेगा, बट ये बात क्लियर है कि उसका जो अल्टीमेट मोटिव था वो लोगों को नुकसान पहुंचाने का था और बहुत सारे लोगों को हानि पहुंचाने का था।
0: यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये व्यक्ति बड़ी संख्या में मुसलमानों की जान आखिर क्यों लेना चाहता था, तो उसने पुलिस को क्या कहा है? इसे पुलिस को यह बताया है कि वो शिया मुसलमानों से बदला लेने की भावना रखता था और इसीलिए इसने एक AI टूल की मदद से पहले यह पता लगाया कि जिंक फॉस्फाइड का लोगों पर क्या असर होगा। बाद में जब AI टूल से यह पता चला कि जहर से बड़ी संख्या में लोग मर भी सकते हैं तो उसने ये पूरी साजिश रची। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपी साल 2019 से 25 के बीच कई बार ईरान और इराक की यात्राओं पर गया है और ऐसे में इस मामले में आतंकी साजिश या विदेशी नेटवर्क की भूमिका का शक भी बढ़ जाता है, जिसकी पुलिस अभी जांच कर रही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 14.2% थी। अगर आज के हिसाब से देखें तो भारत में मुसलमानों की आबादी 20 से 22 करोड़ मानी जाती है। इनमें भी 85% सुन्नी मुस्लिम है और सिर्फ 10-15% शिया मुस्लिम, यानी पूरे भारत में शिया मुसलमानों की आबादी 2-3 करोड़ ही है। और अगर ये साजिश कामयाब हो जाती, हजारों शिया मुस्लिम इसका निशाना बनते तो भारत का सांप्रदायिक माहौल खराब भी हो सकता था। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में शिया मुसलमानों के जुलूसों में कई बार ऐसे हमले हुए हैं जिनके कारण बड़े बड़े दंगे भड़क गए। और यहां भी आज बड़ा सवाल यही है कि फैयाज निसार प्रेम जी 30,000 मुसलमानों को चूहा मारने वाली दवा से निशाना क्यों बनाना चाहता था। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगले विश्लेषण पर जाने से पहले हम आपको कोठारी बंधुओं के बारे में बताना चाहते हैं। कौन थे कोठारी बंधु? जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कोलकाता और कोलकाता के ही कोठारी बंधुओं की को 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसलिए गोलियों से भून दिया था क्योंकि ये दोनों कार सेवक थे और ये अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तक एक पैदल यात्रा निकाल रहे थे। उस समय अयोध्या में काफी तनाव था। अयोध्या में राम मंदिर की मांग को लेकर सैकड़ों कार सेवक आंदोलन कर रहे थे और इन्हीं कार सेवकों में 2 कोलकाता से आए थे, जिनमें एक भाई का नाम था शरद कोठारी और दूसरे भाई का नाम था रामकुमार कोठारी। इनके अलावा सेठा राम माली, रमेश कुमार, महावीर प्रसाद, रमेश पांडे, संजय कुमार, महेंद्र नाथ अरोड़ा, राजेंद्र धारकर जैसे राम भक्तों ने भी राम मंदिर के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान जीवन दिया। लेकिन सोचिए, जिस मंदिर के लिए इन कार सेवकों ने अपनी जान दी, उस मंदिर में भगवान श्री राम के चरणों में चढ़ाया गया चढ़ावा ही चुरा लिया गया। और जानते हैं इस चढ़ावे को चुराने के बाद इन चोरों ने क्या किया? आइए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं। आइए आपको दिखाते हैं, ये जो मकान आप देख रहे हैं ये अयोध्या लखनऊ हाईवे के किनारे सोहावल, ये वाला जो बड़ा स्क्रीन है इस पर आपको दिखाते हैं। पहले ये जो तस्वीरें हैं इससे आपको अंदाजा लगेगा चंदा चोरी के पैसे क्या हो रहे हैं। या अयोध्या लखनऊ हाईवे की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं।

0: तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो कोठरी आप देख रहे हैं, 8,80,000 करोड़ रुपए की चंदा चोरी के पैसे से ये कोठी बन रही है। ये अयोध्या लखनऊ हाईवे की तस्वीर है, सुहावल तहसील का ये घर है। ये देखिए आप, आलिशान बंगले जो बन रहे हैं। सवाल यही है कि जिसकी 15,000-20,000 की सैलरी थी, वो इस तरह के बड़ी बड़ी जमीनें लेकर बड़ी बड़ी कोठियां बना रहे थे, और ये सब कुछ क्या चढ़ावा से चोरी करके किया जा रहा था? आज राम भक्त यही पूछ रहे हैं, तो आइए आपको बताते हैं। जब हमने तफ्तीश की तो हमें पता चला कि ये जमीन प्रभु श्री राम के मंदिर में दानपेटियों का चढ़ावा गिनने वाले लव कुश मिश्रा ने अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदी थी। कुल 8,80,000 रुपए में जमीन खरीदी गई। फिर राम मंदिर के चढ़ावे से जो हर दिन पैसा चोरी होता था, उससे जमीन पर यह शानदार सा घर बनाने का काम हुआ और इस पर लाखों रुपए खर्च हो रहे थे। मैं अब आपको टच स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहती हूं, वहां पर आप समझेंगे कि चढ़ावा चोरी के पैसों से क्या किया जा रहा था, कैसी जमीन खरीदी गई। तो अब तक तो आप इनका नाम समझ ही गए होंगे जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चढ़ावा चोरी के पैसों से जमीन खरीदी लव कुश मिश्रा ने, अपनी पत्नी के नाम पर यह जमीन खरीदी। अब समझिए, खुद का नाम नहीं, पत्नी का नाम डालकर पत्नी के नाम से जमीन खरीदी। लगभग 8,80,000 रुपए की यह जमीन सुप्रिया मिश्रा के नाम से, पत्नी के नाम से खरीद ली। तो अब क्या कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली खुद का नाम नहीं आ रहा, एक महिला का नाम आ रहा है सुप्रिया मिश्रा का। अब भाई कोई छानबीन करेगा तब तो पता चलेगा कि ये सुप्रिया मिश्रा किसकी पत्नी है, लवकुश मिश्रा की। लवकुश मिश्रा का अनिल मिश्रा से क्या रिश्ता है? तो इस तरह से धोखाधड़ी करने की कोशिश की गई, और इसीलिए ये पूरा पेपर हमने आपके सामने रख दिया है। ये न्यायालय तहसीलदार के पास की पूरी जमीन है, जिसमें अंतिम आदेश में तिथि आप देख रहे हैं 6 तारीख तीसरे महीने साल 2026 में, जिसमें आपको ये पूरा श्रीमती सुप्रिया मिश्रा का नाम दिख रहा होगा, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जिनके नाम से, जो कि पत्नी लवकुश मिश्रा निवासी मीनापुर के नाम से ये जमीन खरीदी जाती है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये जो चढ़ावा चोरी का पैसा था, उससे कैसे जमीनें खरीदी जा रही थी और अपनी अपनी जेब भरी जा रही थी। तो कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर है वो अब यही समझ में आ रही है कि कैसे इस पैसे से ये लोग अपना फायदा उठाए। वही लवकुश मिश्रा है जिसके जीजा अनुकल्प मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में नौकरी करते थे, और जिनके करीबी रिश्तेदार ट्रस्ट के 15 सदस्यों में से एक अनिल मिश्रा है। इससे ये पता चलता है कि ये चोरी संगठित तरीके से हो रही थी, और चोरी के पैसे से जमीनें, दुकानें, महंगी गाड़ियां, महंगे फोन खरीदे जा रहे थे, और हमारी ये रिपोर्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है। देखिए,
1: मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए, ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1,000 स्क्वायर फीट का ये मकान है, अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। 1-2 मंजिला मकान ये बनाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस पूरे मकान को सुप्रिया मिश्रा के नाम पर दर्ज है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसके अनुसार 6 मार्च 2026 को इस जमीन की दाखिल खारिज हुई थी, इस प्लॉट को सरकारी दस्तावेजों में दाखिल खारिज किया गया था।
2: ये लवकुश मिश्रा का मकान है जो कि सुप्रिया मिश्रा के नाम पर रजिस्ट्री है।
1: ये जो लवकुश मिश्रा है, ये लवकुश मिश्रा है ये मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ, क्या यही लवकुश मिश्रा है?
2: जी, यही लवकुश मिश्रा है। जी,
1: यही लवकुश मिश्रा है। ये आते थे
2: कभी कभार आते थे, मुलाकात हो जाती थी।
1: अच्छा, आपकी मुलाकात होती थी?
2: आप मुलाकात हुई थी, जब से मकान बनना शुरू हुआ। हाँ, तब से मुलाकात हुई, संपर्क में आई, क्योंकि बगल बन रहा था, जो भी पड़ोसी हैं सबसे मुलाकात हो जाती थी। लगभग यहाँ की कीमत जो है 22-23 लाख रुपए है, 2200-2300 रुपए स्क्वायर फीट ऐसे है।
1: अच्छा, 22-23 लाख, मतलब 2500 लाख का मकान है ये?
2: जी बिल्कुल।
1: कागज में तो ये 8,80,000 का दिखाया गया है।
2: अब कागज पे लोग क्या दिखाते हैं वही जाने, लेकिन जो है मौके पे जो लोग मांगते हैं, जो रेट बिक रहा है 2200-2300-2000 ऐसे है,
1: ऐसे रेट।
2: हाँ, पर स्क्वायर फीट।
1: जब वो लोग आते होंगे तो परिवार के लोगों का रहन सहन देखते होंगे, और क्या ये मंदिर चोरी से ही ये लग रहा है कि उनके रहन सहन से, और ये 25 लाख का मकान बीच शहर के अंदर?
2: ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके रहन सहन से तो नहीं लगता था, क्योंकि बहुत साधारण लोग लगते थे, बाइक से आते थे, पल्सर से, पल्सर बाइक थी उनकी, वही कैसे किया, क्या किया, क्या नहीं किया, ये वही बता पाएंगे, और चूंकि घर से भी पैसा बरामद हुआ है उनके।

0: अजीब बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाले न्याय की इतनी बातें होती हैं, उस उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर अब तक बुलडोजर न्याय कहीं नहीं दिखा। और ये घर जो चढ़ावे की चोरी से बनाया जा रहा था, वो अब भी ऐसे ही खड़ा है। हालांकि ये बात भी सच है कि जहां जहां पर इस तरह से बुलडोजर चले हैं, ज्यादातर जगहों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसकी वजह से वहां बुलडोजर पहुंचा। तो अब सरकार को इस और भी कदम उठाना चाहिए कि कहीं यहां पर भी तो नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, और क्या यहां भी बुलडोजर पहुंच सकता है। यहां ये भी सोचिए, जिस देश में लोग एक दूसरे का अभिवादन ही श्री राम राम कहकर करते हो, उसी देश में भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित चढ़ावा लूट लिया जाएगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और इतने सुनियोजित तरीके से ऐसा मंदिर जिस पर पूरे देश की नहीं, मतलब जो भारतीय विदेशों से भी आते हैं, सबकी नजर रहती है कि अयोध्या जरूर जाना है। उस मंदिर में ये चंपत किया जा रहा था पैसा, लेकिन ऐसा हुआ। और अब इस मामले में कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। आज ही एक नया खुलासा यह हुआ है कि आरोपी अविनाश शुक्ला ने 5 जून को मंदिर के चढ़ावे से चोरी की थी, और इस चोरी का सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस के पास पहुंचा तो उसने अविनाश शुक्ला के घर जाकर वहां से 5 लाख रुपए कैश बरामद किए। और यहां आप इस वीडियो में देख सकते हैं, उस दिन पुलिस के पास एक काला बैग था जिसमें चढ़ावे से चुराए गए पैसों को, माफ कीजिएगा, ये जो शख्स है उसके पास ये काला बैग था जिसमें माना जा रहा है कि चढ़ावे का पैसा रखा गया था। और इससे ये सवाल उठता है कि जब चोरी का पता 5 जून को ही लग गया था, तो फिर उसी वक्त FIR दर्ज क्यों नहीं हुई थी। ये जो आप इस वक्त पैसा देख रहे हैं इस बैग में, ये जो काला बैग आप देख रहे हैं, साथ में खड़ा आपको एक पुलिस वाला दिख रहा है, यानी पुलिस ने यह बरामदगी उस दिन की थी 5 लाख रुपए की। अब सवाल है कि जब बरामदगी वीडियो में दिख रहा है, तो फिर आखिर इस पर FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। जाहिर तौर पर यह पुलिस की टीम है जो वहां से पैसे लेकर जा रही है। आपको साथ में एक यूनिफॉर्म में व्यक्ति भी दिख रहा है, बैग है, बैग में पैसा है जिसमें बताया जा रहा है कि जब्ती का पैसा है, तो ऐसे में FIR दर्ज क्यों नहीं गई। और जब यह पता चल चुका था कि इस तरह की चोरी हो रही थी, तो कौन कौन इसको कालीन के नीचे दबाने की कोशिश कर रहा था। हमें बताते हुए दुख हो रहा है कि इन घटनाओं के बाद देश में बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या उन्हें मंदिरों में दान देना बंद कर देना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि अगर मंदिरों में बैठे लोग ही बेईमान हो जाएं, तो ऐसे में चढ़ावे की संस्कृति को बदला जाना चाहिए, यानी कैश की जगह लोगों को ताजे फल मंदिर में दान देने चाहिए, सोने चांदी के आभूषणों और जेवरातों की जगह गरीबों की मदद करनी चाहिए, अस्पतालों वृद्धाश्रम में जरूरतमंदों को सहायता देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए, लेकिन कैश और जेवरात का चढ़ावा देना कई लोग कह रहे हैं कि बंद होना चाहिए। सोचिए लोगों के मन में ये बातें आखिर आ क्यों रही हैं। इसलिए आ रही है ना क्योंकि उन्होंने अपनी श्रद्धा से जो उनके लिए उनको सबसे कीमती लगता है वो लोग मंदिर में चढ़ाते हैं, दान देते हैं। उस दान को मिली भगत से कुछ लोगों ने कैसे हड़प लिया। और ये भी सोचिए कि ये लोग हैं कौन। एक आरोपी का नाम है रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, यानी जो व्यक्ति अपने नाम में प्रभु श्री राम का नाम लगाता है, उसने भी इतना बड़ा विश्वासघात किया जिस पर पूरा देश आज हैरानी जता रहा है। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिन लोगों ने मंदिर में चोरी का यह पाप किया, क्या कोई वकील अदालत में उनका मुकदमा लड़ेगा, और क्या ऐसे सभी आरोपियों का अदालतों में बचाव होना चाहिए। अयोध्या बार एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि कोई वकील इन आरोपियों का मुकदमा नहीं लड़ेगा, और अगर फिर भी कोई वकील ऐसा करता है तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले सुनिए।
1: अभियुक्तों की ओर से वकालत नहीं करेगा। अगर अधिवक्ता वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपक राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 CRPC की कार्यवाही की जाएगी। और ये भी तय किया गया है इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, CBI से जांच की मांग की जाएगी। इलाहाबाद में दोनों याचिकाएं आज तय कर ली जाएंगी, तय होंगी तो उसी के सीक्वेंस में हमारा संघ ये तय करेगा आगे क्या करना है। जरूरत पड़ी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी अधिवक्ता संघ अयोध्या अपने खर्चे से शरण लेगा।
0: ये आम लोगों का गुस्सा, ये अयोध्या वासियों का गुस्सा, ये देश का गुस्सा ही है जो इन वकीलों के तौर तरीके और उनके फैसले में झलक रहा है। लेकिन अगर कानूनी रूप से देखें तो इस मामले में अयोध्या बार एसोसिएशन का फैसला आने के बाद भी सभी आरोपियों को उनका वकील मिल सकता है। ऐसी स्थिति में वकील ना मिलने पर कोर्ट खुद लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से आरोपियों के वकील को नियुक्त करेगा। अगर ये वकील अयोध्या में नहीं मिले तो दूसरे शहर से, दूसरे राज्यों से भी वकीलों को आरोपियों का मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया जा सकता है। क्योंकि हमारे देश में ऐसे कई मामले हैं जिनमें वकीलों ने आरोपियों का बहिष्कार किया है, लेकिन फिर भी इस देश में उन्हें कानूनी मदद मिली, क्योंकि यही तरीका है, कानूनी तरीका यही है। और इनमें 26/11 मुंबई हमले के आतंकवादी अजमल कसाब और दिल्ली के निर्भया गैंगरेप का मामला प्रमुख है। अब ये तो हुई कानूनी बात, लेकिन यहां आप ये भी सोचिए कि क्या मंदिर का चढ़ावा चुराने वाले इन लोगों को पूरे देश के सामने आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए? दुनिया के कई देशों में ऐसा हुआ है जब लोगों के साथ विश्वासघात करने वाले लोगों को टीवी पर आकर उनसे पूरे देश से में माफी मंगवाई गई और लोगों के भरोसे को बहाल किया गया। इसलिए इस मामले में भी ये सवाल उठता है कि क्या राम मंदिर का चढ़ावा चुराने वाले आरोपी जनता के सामने आकर अपना जुर्म कबूल करेंगे और क्या इस देश के लोगों के विश्वास को बहाल करने की कोशिश होगी। खैर, अभी तो स्थिति यह है कि पुलिस इन आरोपियों को जेल से बाहर भी नहीं लाना चाहती और उन्हें कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जा रहा है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि अयोध्या के लोग इन आरोपियों को लेकर बहुत आक्रोशित है, बड़े गुस्से में है। वो कह रहे हैं हम खुद इनको सजा देंगे। अब सोचिए, अयोध्या में जहां प्रभु राम का ये मंदिर बना है, ट्रस्ट के ये लोग सबसे मिलते जुलते रहे होंगे, किसने सोचा होगा कि ये ऐसा कर रहे होंगे? सबकी नजरों में महान बने हुए थे। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो दुनिया में 15 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां रामायण के अलग अलग संस्करण मौजूद है और पूरी दुनिया में 2000 मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है। लेकिन किसी भी देश में भगवान राम को लेकर, उनके मंदिरों में चढ़ाए चढ़ावे को लेकर वैसा विवाद नहीं है जैसा हमारे देश भारत में है। और वो भी वो भारत, वो भूमि, वो मंदिर जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। इस मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 3 पदाधिकारियों पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इनमें पहले हैं चंपत राय, दूसरे अनिल मिश्रा और तीसरे हैं गोपाल राव। इनमें चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस मामले में उनकी भूमिका संदिग्ध होते हुए भी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव चंपत राय के करीबी थे, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी पुलिस की जांच सिर्फ कुछ कर्मचारियों तक सीमित है, जबकि SIT की रिपोर्ट में भी चंपत राय और अनिल मिश्रा पर सवाल उठाए गए हैं। तो आखिर ऐसी खास मेहरबानी क्यों? अगली खबर का रुख करते हैं और आपको पुणे के उस केतन हत्याकांड के बारे में बताते हैं जिसकी चर्चा हर घर में हो रही है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें 20 साल की सिया गोयल ने अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या कर दी। और इस हत्या के बाद पूरे देश को यही बताया गया कि सिया चेतन से प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपने 26 साल के मंगेतर केतन अग्रवाल को जान से मार दी। लेकिन हकीकत में केतन की हत्या के बाद जो हुआ उसने इस पूरे मामले को और उलझा दिया है। सिया और चेतन जो इस केस में मुख्य आरोपी थे, वो अब एक दूसरे पर ही इस हत्या का आरोप लगाने लगे हैं। यानी सिया कह रही है कि यह हत्या चेतन ने की और चेतन कह रहा है कि यह हत्या सिया ने की। यानी पूरी मोहब्बत, पूरा प्यार हवा हो चुकी है। सोचिए, जिस रिश्ते को बाहर से लोग प्यार समझ रहे थे, वो प्यार पुलिस हिरासत में पूरी तरह बदल गया। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, इंदौर में राजा रघुवंशी की हत्या आपको याद होगा, उस मामले में भी यही हुआ था, जहां घटना के बाद सोनम रघुवंशी और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगाने लगे। यानी जैसे पुलिस पकड़ती है उसके बाद खुद को किसी तरह से बचाने की कोशिश होती है। और उससे पहले मेरठ में आपको याद है मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत के मामले में भी यही तस्वीर सामने आई, जहां घटना के बाद मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड को हत्या के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बता दिया। जबकि उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने यह कहा था कि इस हत्या में उसकी कोई भूमिका नहीं है, लड़की पर इल्जाम लगा दिया। बहुत लंबी सूची है ये। पिछले 2 सालों में जितने भी पुरुषों की हत्याएं उनकी मंगेतर या पत्नियों ने की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको प्यार किसी और से था या फिर उनके दोस्त ने किया, मिलकर किया, साजिशन किया, उन सब में गिरफ्तारी के बाद यही लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। इसमें 2 बातें समझ में आती है। पहली बड़ी बात है खुद को बचाने की कोशिश। लीगली मामला बचता थोड़ा आपको सॉफ्ट हो जाता है, हम बताएंगे आपको। जब 2 लोग एक ही मामले में फंसते हैं और उस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता तो हर कोई अपनी सजा कम कराने या खुद को बचाने के लिए दूसरे पर इल्जाम डालने लगता है और ये एक तरह की कानूनी मानसिक रणनीति बन जाती है। और इसका मकसद होता है अपनी जमानत के लिए जमीन तैयार करना, अदालतों में ये साबित करना कि जो हत्या हुई उसमें उनकी भूमिका नहीं थी। लेकिन सोचिए, अगर ये प्यार ही दिखावटी था और अगर पुलिस की हिरासत में अदालतों में ही आरोपी लड़कियां और उनके बॉयफ्रेंड एक दूसरे पर ही आरोप मढ़ने लगते हैं तो ये किस प्यार के नाम पर अपने मंगेतर, अपने पतियों की जान लेते हैं? अरे भाई, जान तो मत लो, मत करो शादी, पर जान तो मत ले लो, तोड़ दो शादी। अगर पुणे की सिया को अपने बॉयफ्रेंड को ही इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराना था या उससे बॉयफ्रेंड को सिया को जिम्मेदार ठहराना था तो दोनों ने केतन की जान क्यों ली और सिया ने इस रिश्ते से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं निकाला? आप खुद सोचिए, जब अदालतों में बचने के लिए ये लोग इतना दिमाग चला सकते हैं तो ये केतन को मारने के बजाय कोई और रास्ता भी तो ढूंढ सकते थे। आज ही पुलिस की तरफ से ये बात सामने आई कि 18 जून को जब सिया और चेतन ने केतन को लोहागढ़ किले की खाई में धक्का दिया तब सिया ने खुद केतन को नीचे बैठने का इशारा किया था। कल्पना के परे है ये।

0: क्या है ना, कुछ दोस्त लोग मेरे ना बोल रहे थे इसलिए।
1: तुम नहीं, मेरे दोस्तों को लेके चलूंगा।
0: दोस्त लोग कोई बात नहीं, ले चलना।
1: बोल लेता हूँ अभी, बोल ले भाई। अपने को मनाली चलना, 20-25 लोगों को लेके चलना साथ में, ठीक है?
2: हाँ लड़की, लड़की से दूर रहना ही भलाई है।

0: इस घटना को लेकर एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को इसलिए मार दिया क्योंकि वो विग पहनते थे। ये दावा पुलिस सूत्रों के सामने आया था कि पुलिस सूत्रों से सामने आया, लेकिन अब पूछताछ में सिया गोयल के भाई साहिल गोयल ने भी बताया है कि केतन अग्रवाल विग पहनते थे और ये बात उनकी बहन सिया को पसंद नहीं थी, इसे जान ले ली। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ इसी कारण से सिया ने केतन को मारा होगा, ऐसा उन्हें नहीं लगता है। लेकिन इस दावे ने एक नई बहस ये छेड़ दी है कि क्या अगर कोई लड़का विग पहनता है या हेयर पैच लगाता है तो इसके लिए उसकी हत्या कर दी जाएगी। 26 साल का केतन अग्रवाल अमेरिका से पढ़कर आए थे, अपने परिवार की रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर थे। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इन्हीं कारणों से सिया गोयल के परिवार ने उसका रिश्ता केतन के साथ पक्का कर दिया, जबकि सिया केतन को पसंद नहीं करती थी और वो इस बात से भी नाखुश थी कि वो विग पहनते थे। कई बार सुनने में ये बातें अजीब लगती हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आज के सोशल मीडिया युग में ऐसी बातें हत्या का कारण बन रही हैं। इसी साल मध्य प्रदेश के धार में 25 साल की प्रियंका पुरोहित ने अपने पति देवकरण पुरोहित की इसलिए हत्या करवा दी, जो मामला सामने पुलिस के आया, इसलिए हत्या करवा दी क्योंकि देवकरण पुरोहित का रंग थोड़ा सांवला था। इसी तरह साल 2021 में मेरठ में एक महिला ने अपने पति से इसलिए तलाक मांग लिया क्योंकि उसके पति के सिर पर बाल कम थे। ये सूची बहुत लंबी है। साइंस डायरेक्ट में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में अब ज्यादातर युवा अपने पार्टनर्स को उनकी हाइट, उनके बाल, उनके प्रोफेशनल स्टेटस को देखकर चुनते हैं। और अगर किसी लड़के की हाइट कम हो या वो विग पहनता हो, उसकी शादी की औसत उम्र ज्यादा होती है, ऐसे लड़कों को शादी के रिश्ते जल्दी नहीं मिलते। यही कारण है कि हमारे देश में हेयर विग्स और एक्सटेंशंस का मार्केट 3,172 करोड़ रुपए का हो गया है, जबकि हेयर ट्रांसप्लांट का भी मार्केट 2,909 करोड़ रुपए का हो गया है, जो साल 2034 तक 16,492 करोड़ रुपए का हो जाएगा। इसका एक कारण यह भी है कि जब सोशल मीडिया के जमाने में पिक्चर्स और सेल्फी देखी जाती है तो पुणे के इस मामले में भी भले सिया गोयल को केतन का विग पहनना पसंद ना हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पर खुद दिखने के लिए, माफ कीजिए, खुश दिखने के लिए केतन के साथ ऐसे वीडियोस डालती थी जिनमें वो एक परफेक्ट कपल की तरह दिखते थे। इस खबर के बाद में हमारे देश में हेयर विग और हेयर ट्रांसप्लांट को गूगल ट्रेंड में सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। 23 जून को इसका सर्च इंटरेस्ट, जानते हैं, गूगल पर 100 पर पहुंच गया था जिस दिन यह खबर बाहर है। इसके पीछे एक बड़ी समस्या यह है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने अपनी रिसर्च में बताया था कि भारत के युवा लड़कों में हेयर लॉस की समस्या तेजी से बढ़ रही है। जो जेन जी है उन युवाओं में यह समस्या ज्यादा है। ट्राय की भी एक स्टडी है जो कहती है कि भारत में 50% से ज्यादा लोगों को हेयर लॉस की समस्या 25 साल से पहले शुरू हो जाती है और यह मौजूदा वक्त में इसलिए बहुत बड़ी बात बन गई है क्योंकि इस पीढ़ी के युवा सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखना चाहते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि मौजूदा पीढ़ी में डिप्रेशन का एक बड़ा कारण है कि वो कैसे दिखते हैं, उनका रंग कैसा है, उनके बाल, अपने खुद को, अपने अपियरेंस को, अपने लुक्स को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं।
1: जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी नहीं। सिया को आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए।
2: मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं तो। मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले।
3: उन्होंने फोर्सफुली कुछ किया है कुछ नहीं है मुझे मालूम नहीं है सर। ये उन्होंने लॉकअप में उसका सिग्नेचर लिया है, हमको कुछ इस चीज के बारे में उन्होंने इन्फॉर्म किया नहीं है, हमको कॉन्टेक्ट किया नहीं, हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन रखा नहीं है इस चीज के ऊपर से सर। इस चीज के ऊपर हम लोगों ने आज कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि हमारे जो प्रोसीडिंग लॉयर है इसके आगे वो विपुल दिशिंग रहेंगे।

0: किया था आज, उसमें कि उसको वहाँ पे ले जाके घटना कैसे घड़ी है, क्या एक्चुअली हुआ वहाँ पे।
1: हालांकि अब कई सूत्रों से, चाहे वो पुलिस हो या फिर परिवार के लोग हो, वो ये भी कह रहे हैं साफ साफ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विग की वजह से ये हुआ, वो एक और कारण इसमें जुड़ गया क्योंकि वो सिया उन्हें पसंद ही नहीं करती थी और इस वजह से इस तरह की घटना ये घटी है। बहरहाल इसमें आगे क्या होता है हमारी नजर रहेगी, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, आप बताते हैं कि हम क्यों हमारे देश में कानून कई बार सबके लिए बराबर नहीं रहता। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साए में आज बुलडोजर का ऐसा न्याय देखने को मिला जिसने सत्ता, सिस्टम, सरकारी अफसरशाही तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। गुजरात के नर्मदा जिले के गुरुडेश्वर में उन आलिशान बंगलों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया जिन्हें बनाने वाले कोई आम लोग नहीं बल्कि खुद सरकारी अधिकारी थे। तो आप इस कहानी को देखिए और समझिए कि कैसे हमारे देश में सरकारी संसाधनों की लूट होती है। गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग 1 किलोमीटर दूर गुरुडेश्वर इलाके में बने 5 बंगलों को रविवार को बुलडोजर से गिरा दिया गया। वजह, आरोप यह है कि ये बंगले 13 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को आवंटित सरकारी प्लॉट्स पर नियमों का उल्लंघन करके बनाए गए थे। अब उल्लंघन क्या हुआ? नियम यह था कि जिन वरिष्ठ अधिकारियों को 99 लाख रुपए का प्लॉट 37 से 50 हजार रुपए में दिया गया, 99 लाख का प्लॉट 37 से 50 हजार रुपए में दिया गया, उन पर सिर्फ रिहायशी मकान बनाए जा सकते थे। यानी पहले तो जमीन उनको बहुत कम कीमत पर मिली, कौड़ियों के भाव मिली, और ऊपर से नियम इतना सरल था कि यहां रिहायशी मकान ही बनाने थे। लेकिन जब जांच हुई और आरटीआई से सच बाहर आया तो यह पता चला कि कई जगह साधारण घर की बजाय 6 से 12 कमरों वाले बड़े बड़े बंगले बनाए गए। इनमें कई कमरे और कई बाथरूम थे। प्रशासन का कहना है कि ये इमारतें होम स्टे या गेस्ट हाउस की तरह बनाई गई थी ताकि इन्हें पर्यटकों को किराए पर दी जा सके। सोचिए, ये घर, ये जमीन इसलिए दी गई थी ऐसी कीमत पर ताकि अधिकारी वहां पर घर बनाए और वहां पर रहे। लेकिन हो क्या रहा था? इसका कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था, यानी पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। और इसलिए ऐसा भी हुआ क्योंकि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बहुत पास है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। छुट्टियों में यूरोप घूमने का प्लान बना रहे हो तो कुछ दिन रुक जाइए। जो लोग पहुंच गए हैं वो तो बहुत पछता रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के मौजूदा तापमान और यूरोपीय देशों के मौजूदा तापमान में ज्यादा फर्क नहीं है। यूरोप उबल रहा है। यूरोपीय देशों के लोग इस भीषण गर्मी में कूलर, एसी, पंखे खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं क्योंकि वहां पर वैसे भी इतनी ठंड पहले पड़ती थी कि आपको इन घरों में ज्यादातर हीटिंग सिस्टम मिलता है, एसी और पंखा तो होता ही नहीं है, लेकिन अब लगाना पड़ रहा है। आमतौर पर गर्मियों में यूरोपीय देशों का मौसम सुहाना रहता है, लेकिन इस बार की गर्मियों ने पसीने से तरबतर कर दिया। यूरोपियंस को भीषण गर्मियों की आदत नहीं, यही वजह है कि गर्मी की वजह से सैकड़ों लोग मर चुके हैं। WHO के मुताबिक 21 जून के बाद से गर्मी की वजह से यूरोप में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें ज्यादा संख्या बुजुर्गों की है। मौत की संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी घरों में होने वाली मौतों का डेटा आना बाकी है। WHO के मुताबिक यूरोप में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ी जिसका असर करीब 74 करोड़ लोगों पर हो रहा है और इनमें भी 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम हीट झेल रहे हैं, यानी 35 डिग्री से ज्यादा का तापमान झेल रहे हैं जो कि उनके लिए सामान्य स्थिति नहीं है। WHO ने यूरोप को गर्मी से सावधान किया। उनका कहना है कि यूरोप के घर, दफ्तर, स्कूल इस तरह की भीषण गर्मी को झेलने के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए, इसलिए उन्हें ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। वहां पर जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इस तरह से किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्मी जो है वो घर में ट्रैप हो, ज्यादा से ज्यादा हीट घर के अंदर ट्रैप हो। इस बार यूरोप के कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा है, उसके ऊपर भी, और इसी वजह से यूरोप के लोग गर्मी में तपे जा रहे हैं। फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी जैसे 12 देशों ने भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया ताकि लोग इससे बचने के इंतजाम कर सके। फ्रांस में तो बहुत बुरा हाल है, पिछले 4 दिनों में अकेले फ्रांस के ही 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कुछ शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसी वजह से फ्रांस की स्वास्थ्य एजेंसियों ने मौत की संख्या बढ़ने की आशंका जता दी है। पेरिस में तो लोग अपने घरों की खिड़कियों पर रिफ्लेक्टर्स लगा रहे हैं, एल्यूमिनियम फॉयल लगा रहे हैं ताकि घर का तापमान ज्यादा ना बढ़े और जो धूप गिरे वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। फ्रांस में गर्मियों का सामान्य तापमान जानते हैं 20-25 डिग्री रहता था। इस वजह से वहां के लोग कूलर्स एसी लगाते ही नहीं, फैन भी नहीं होता है। इस बार स्थिति अलग है। फ्रांस में पंखा कूलर एसी खरीदने के लिए मारामारी मची हुई है। लोग लाइन लगाकर खरीद रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस तो ऐसे हैं जिसमें दिखाया गया है कि दुकान खुलते ही लोग एसी कूलर ऐसे खरीद रहे हैं जिसे लूट मची। जर्मनी, इटली, पोलैंड में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा छू रहा है। इसी गर्मी से राहत पाने के लिए लोग घर से ज्यादा पेड़ की छांव में रहना पसंद कर रहे हैं। इन देशों में गर्मी से राहत देने के लिए सार्वजनिक जगहों पर वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं। इनके जरिए लोगों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पार्कों में पहुंचे लोग पानी में भीगकर भीषण गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी में कल का रविवार सबसे गर्म दिन था। वहां का तापमान था, सोचिए, लगभग 42 डिग्री पहुंच गया था, 41.7 डिग्री सेल्सियस। चेकिया में गर्मी रिकॉर्ड तोड़, रविवार का दिन वहां अब तक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ, 41.1 डिग्री। पोलैंड में नया रिकॉर्ड बन गया गर्मी का, वहां एक शहर में तापमान 40.5 डिग्री पहुंच गया। 20 जून के बाद से यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हुआ और इस गर्मी ने यूरोपीय देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को पिघला दिया है। हालात ये है कि सड़कों पर बिछा तारकोल पिघल रहा है। ये देखिए, जर्मनी के लिप्ज़िग में ट्राम सर्विस को बंद कर दिया गया, ऐसी नौबत आ गई। दरअसल इसकी पटरियों के पास की जो सड़कें हैं वो पिघलने लगी है। ये देखिए क्या हालत हुई। दुर्घटना की आशंका थी तो ट्राम सर्विस रोका गया। कई वीडियोस तो ऐसे भी आए हैं जहां लोगों के जूते चप्पल सड़क पर बिछे तारकोल के पिघलने का सबूत दिख रहा है। यूरोप की इस गर्मी का असर स्विस ग्लेशियर्स पर हो रहा है, वो तेजी से पिघल रहे हैं। स्विस ग्लेशियर मॉनिटरिंग नेटवर्क के मुताबिक आमतौर पर जो बर्फ अगस्त महीने में पूरी तरह से पिघलती थी, इस बार गर्मी की वजह से वो, सोचिए, पिछले हफ्ते ही पूरी तरह पिघल गई। मुमकिन है कि आने वाले कुछ हफ्तों में गर्मी का प्रकोप और ज्यादा देखने को मिल सकता है। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट की चेतावनी है कि अगले हफ्ते से यूरोप में हीट वेव का और बुरा दौर शुरू होने वाला है। कहा गया है कि कई देशों में तापमान 45 से 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। ECMWF की माने तो यूरोप में हीट डोम की स्थिति बन गई है, यानी गर्म हवा सतह पर कैद होकर रह गई है जिससे हालात खराब हो रहे हैं। यूरोप के आधे से ज्यादा शहर गर्मी का सबसे भयानक रूप देख रहे हैं। सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि उमस की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस भीषण गर्मी ने यूरोप के लोगों को साल 2022 की याद दिला दी है। 2022 में गर्मी का ऐसा ही प्रकोप हुआ था, 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी यूरोप में। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस गर्मी की एक वजह ओमेगा ब्लॉक है। ये मौसम का एक पैटर्न है जो ग्रीक लेटर ओमेगा की तरह बनता है। ये देखिए, इसमें हाई प्रेशर वाली गर्म हवाएं कम प्रेशर वाली दो ठंडी हवाओं के बीच फंस जाती हैं। सामान्य स्थिति में हवाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, लेकिन ओमेगा ब्लॉक की वजह से ये बहाव बिगड़ जाता है, गर्म हवा फंस कर रह जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये स्थिति 3 से 10 दिन तक बनी रहती है और कुछ मामलों में 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। ओमेगा ब्लॉक जिस क्षेत्र में बनता है वहां का तापमान सामान्य से 18 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो सकता है और यही वजह है कि जिस यूरोप में गर्मियों का सामान्य, सोचिए, लोग छुट्टियां मनाने जाते थे 20-25 डिग्री में कि यहाँ की भारत की 40-45 डिग्री से बच सके, वहां 40 डिग्री के ऊपर जा रहा है। इस तरह की गर्मियां यूरोपीय देशों में पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा पड़ने लगी है। साल 1950 से 99 तक यूरोप में 5 बार इस तरह की भीषण गर्मी की स्थिति बनी। इसके बाद साल 2000 से 2021 के बीच करीब 18 बार, लेकिन इसके बाद यानी 2022, 23, 25, 26 में लगभग हर साल यूरोप में भयानक गर्मी पड़ रही है। गर्मी के मौसम में भारत में तापमान सामान्य तौर पर 40 से 48 डिग्री तक रहता है और भारत के लोगों के लिए, मतलब, इसे झेलना मुश्किल हो जाता है। भारत में भी लोग जूझ रहे हैं इस गर्मी से, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति नहीं है जो कि 36-40 डिग्री के बीच में ही यूरोपीय लोगों के लिए हो जाती है। सोचिए उन लोगों का क्या हाल होता होगा जो सामान्य तौर पर गर्मियों में 20 डिग्री 25 डिग्री उनके लिए गर्म मौसम माना जाता था, आज अचानक वहां 40 डिग्री हो गया है। अब हम आपको यूरोप में गर्मी से परेशान लोगों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, इसे आप देखिएगा जिससे समझ में आएगा गर्मी से बचने के क्या उपाय कर रहे हैं। इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा देखते हैं।
2: this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: Right field, and it will.
2: From the first pitch of the season to the stretch run.
3: And that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: Cool fans ke stylish design se घर की शान बढ़ाएं।
6: Cool fans, जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
5: Cool fans, स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे PNB वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या FD, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
9: PNB वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
3: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
4: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
5: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
4: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया के लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
6: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
7: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
8: तू सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना,
6: मतलब
8: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
7: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
8: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
9: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
10: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
9: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू। विमल बोलो जुबा केसरी,
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
3: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
2: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
4: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
5: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
6: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
4: मतलब
6: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
7: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
6: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
8: दुनिया रामलला के पैसों की चोरी पर सवाल खड़े कर रही है, तब कान्हा की भक्ति को चुनौती देते हुए सियासत भी सेंधमारी कर रही है। नई चुनौती यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अखिलेश यादव को दी गई है। बीजेपी कहती है कि राम की चिंता छोड़ कृष्ण की चिंता करनी चाहिए। अखिलेश कहते हैं डोनेशन से पहले नेशन फर्स्ट होना चाहिए। राम से कृष्ण तक मजहबी सियासत के चाहे जितने दांव चले जाएं, लेकिन बुनियादी राजनीति यह है कि बीजेपी 2027 की चुनावी राजनीति का फोकस अवध से हटाकर मथुरा करने की तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी के लिए मथुरा 2027 की चुनावी राजनीति की एक बड़ी धुरी साबित हो सकती है। ये तैयारी यूं ही नहीं है, यूं ही सीएम योगी 38 बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर नहीं जा चुके हैं। यूपी की राजनीति में ब्रज क्षेत्र का वजन बढ़ रहा है। योगी कैबिनेट में 12 मंत्री सिर्फ ब्रज क्षेत्र से आते हैं। प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री मंत्री तक आने वाले नेता ब्रज क्षेत्र से हैं। इतना ही नहीं, आने वाली 12 जुलाई को बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी मथुरा में ही आयोजित की जा रही है, क्योंकि 2027 के रण में बीजेपी अपने सबसे मजबूत ब्रज के किले से ही विजय का शरसंधान करना चाहती है। कारण ये है कि 2022 चुनाव में बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र की 65 में से 53 सीटें जीती थी, जबकि अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, वो भी 82-85% यादव वोटों की बदौलत। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद इस क्षेत्र की हवा भी बदली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 53 की जगह सिर्फ 42 विधानसभा सीटों पर आगे रही, जबकि समाजवादी पार्टी 12 की जगह 23 विधानसभा सीटों पर आगे आ गई और अखिलेश को मिलने वाले यादव वोट प्रतिशत भी 87-89% तक पहुँचे। अब मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि का मामला छोड़कर सीएम योगी ने यदुवंश की विरासत और पीटीए की सियासत का दावा करने वाले अखिलेश के सामने दुविधा खड़ी करने की कोशिश की है। दरअसल बीजेपी चाहे भले मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को सियासी मुलम्बे के साथ पेश करे, लेकिन चुनावी इंजीनियरिंग बीजेपी भी जात के साथ साधती है और जिस तरह सीएम योगी ने चुनावी सियासत की धार अयोध्या से मथुरा की ओर मोड़ी है, उसमें हिंदुत्व के वोट के संग पीडीए की सियासत को तंग करने की पूरी प्लानिंग नजर आती है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।

0: आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जो आपको बार बार गलत ठहराना चाहते हैं, दरअसल उन्हें आपकी सच्चाई सबसे ज्यादा डराती है। नमस्कार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: चोरी केस में SBI समेत 6-7 बैंक्स को नोटिस। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और सभी वित्तीय लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड बुलाया। गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी। पीलीभीत में कहा, यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा होगा, कर्फ्यू और गुंडागर्दी से लोगों का जीना होगा हराम। कल शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर। नौकरशाही की प्रक्रिया में बदलाव के संकेत। बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी। 2 जुलाई को शुभेंदु कैबिनेट में ड्राफ्ट को मिलेगी स्वीकृति। सीएम बोले, अगस्त में लाएंगे UCC बिल। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले की भारत ने की कड़ी निंदा। बताया, संप्रभुता पर हमला, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में खतरे की जताई आशंका।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक और आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक की शुरुआत एक सवाल से। क्या चढ़ावा चोरी कांड में 8 आरोपियों के बाद अब चंपत राय का शिकंजा कसने का नंबर है? आज चंपत राय से जांच टीम ने लंबी पूछताछ की है। चंपत राय का चढ़ावा चोरी के सवालों से सामना हुआ है। जांच टीम ने गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों को लेकर चंपत राय से कई सारे सवाल पूछे हैं। कई घंटों चली पूछताछ के दौरान चंपत राय ने खुद को बेकसूर बताया है। अपना बयान दर्ज तो करवा दिया है, लेकिन चंपत राय के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि 4 जून को चढ़ावा चोरी का पता चलने के बाद भी उन्होंने पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश आखिर क्यों की।
1: चढ़ावा चोरों का गॉडफादर आखिर कौन है? पूछताछ में चंपत राय ने पुलिस को क्या बताया? चढ़ावा चोरों के व्हाट्सएप चैट में किसका नाम? चढ़ावा चोरों का मोबाइल बोलेगा राज खोलेगा? चंपत राय ने चढ़ावा चोरी पर पर्दा क्यों डाला?
2: ये कार्य कई दिनों तक चलता है, यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
1: सीसीटीवी फुटेज की गवाही से फंस गए चंपत राय। आज चढ़ावा चोर अंदर, अब चंपत राय का नंबर। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों ने राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी कांड का एक सिरा सीधे चंपत राय से जोड़ दिया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज यही गवाही दे रही है कि चढ़ावा चोरी का खुलासा होने से पहले चंपत राय को पता था कि चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारी ही चढ़ावे की रकम को चुरा रहे थे। यहां तक कि चंपत राय के कहने पर बिना किसी आधिकारिक शिकायत के पुलिस चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के घर 5 जून को पहुंची थी। पुलिस ने अविनाश शुक्ला के घर से लाखों का कैश भी बरामद किया था। मतलब चंपत राय चढ़ावा चोरी कांड से बेखबर नहीं थे, लेकिन चोरी के खेल पर पर्दा डालने की कोशिश हुई। यही वजह है जब चढ़ावा चोरी कांड में 8 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई तो उन्होंने गिरफ्तारी से ठीक पहले अपने व्हाट्सएप चैट को डिलीट कर दिया। सभी आरोपियों ने अपने मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया। तो क्या व्हाट्सएप चैट को डिलीट करने के पीछे मकसद है अपने गॉडफादर को बचाना?
3: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों की माने तो जेल भेजे गए आरोपियों ने मुकदमा दर्ज होने के बाद और जेल जाने से पहले अपने फोन की चैट्स डिलीट कर दी थी, जिसके बाद अब पुलिस इन सभी आरोपियों के फोन फॉरेंसिक लैब भेजेगी ताकि डिलीट किया गया डेटा और चैट्स को रिकवर किया जा सके। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या इन चैट्स का सीधा संबंध ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के साथ था, या फिर उनको बचाने के लिए और सबूत मिटाने के उद्देश्य से इन चैट्स को डिलीट किया गया। अब इन सभी सवालों का जवाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगा।
1: भले ही चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है। ऐसे में 8 आरोपियों से हुई पूछताछ के बाद आज जांच टीम ने चंपत राय से लंबी पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चंपत राय से बंद कमरे में कई घंटे तक पूछताछ हुई। चढ़ावे की गिनती, दान की प्रक्रिया और आरोपियों से जुड़े सवाल पूछे गए हैं। सवाल नंबर 1, आपको चढ़ावे में चोरी के बारे में कब और कैसे पता चला? सवाल नंबर 2, टिन्नू यादव को आपने मंदिर ट्रस्ट में अहम जिम्मेदारी क्यों दी? सवाल नंबर 3, चढ़ावे की गिनती के लिए बनी गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं हुआ? सवाल नंबर 4, चढ़ावे की गिनती में कर्मचारियों की नियुक्तियां सिफारिश पर क्यों हुई? सवाल नंबर 5, 8 आरोपियों को आप कब से और कैसे जानते हैं? दरअसल चंपत राय के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत 7 जून को दिया वो बयान है, जिसमें चंपत राय चीख चीख कर दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर के बही खाते में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। यही बयान चंपत राय के गले की फांस है। 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर पुलिस चढ़ावा चोर और चढ़ावे में हुई चोरी की रकम बरामद करती है। मतलब चंपत राय को बखूबी पता था कि चढ़ावे की चोरी का खेल चल रहा है। 5 जून को पुलिस रेड डालती है, लेकिन 7 जून को चंपत पूरे मामले को हजम कर जाते हैं, ये दावा करते हुए कि ऑडिट में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है।
2: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
1: 7 जून को राम मंदिर के बही खाते के ऑडिट में कुछ खामी नहीं थी तो 5 जून को चढ़ावे की गिनती में शामिल अविनाश शुक्ला के घर छापा क्यों पड़ा था? 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को SIT क्यों बनानी पड़ी? और तो और 25 जून को चढ़ावा चोरी मामले में FIR क्यों दर्ज हुई, जिसके बाद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी तक हुई? साफ है, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है।
3: इस वक्त मौजूद है मुख्य आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला के घर के बाहर, जहां से 5 जून की रात को ट्रस्ट के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में अनधिकारिक तौर पर एक मोटी रकम बरामद की, जो कि CCTV में कैद है। ये वही घर है मेरे पीछे जो अविनाश शुक्ला है, जहां पर वह किराए पर रहा करता था। कल अविनाश शुक्ला के भाई से पुलिस ने यहीं पर लाकर पूछताछ की। आपको बता दूं कि 4 जून को ट्रस्ट के लोगों को चोरी का पता चला, जिसके बाद 5 जून को चंपत राय के आदेश पर ट्रस्ट के लोग यहां पर आते हैं और अविनाश शुक्ला के पास से एक मोटी रकम बरामद करते हैं। CCTV में बैग लेते हुए अविनाश शुक्ला और ट्रस्ट के लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 8 जून को चंपत राय ने यह बयान दिया था कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। 7 जून को ये पूरा मामला सार्वजनिक हुआ था, तो कैसे बिना ऑफिशियल कंप्लेंट के, बिना FIR फाइल हुए एक पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और जो रकम है उसको बरामद किया जा रहा था।
1: सवाल सिर्फ चंपत राय की भूमिका पर नहीं बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यशैली पर भी हैं, क्योंकि चंपत और अनिल मिश्रा का इस्तीफा होने के बाद भी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया है। मतलब ये है कि ये इंतजार क्यों? दरअसल चढ़ावा चोरी में चौतरफा भद पिटने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। ट्रस्ट का कहना है कि इस्तीफे पर फैसला 5 जुलाई को होने वाली बैठक में होगा। सवाल ये है कि इतने गंभीर मामले में कार्रवाई के लिए बैठक का इंतजार क्यों? क्या इसके पीछे मामले को शांत करने की मंशा है, ताकि कुछ दिनों में मामला ठंडा पड़ जाए और फिर उस हिसाब से निर्णय लिया जाए?
0: 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हर दिन चढ़ावे की चोरी से खड़े किए गए करोड़ों के काले साम्राज्य का खुलासा हो रहा है, लेकिन जांच टीम चंपत राय और अनिल मिश्रा पर चुप्पी साधे हुए है। और ये तब है जब चढ़ावा चोरी कांड के खुलासे के बाद से ही चंपत राय और अनिल मिश्रा सवालों के कटघरे में खड़े हैं। 20 दिनों तक मामले में लीपापोती होती रही और खबर यही है कि दोनों पदाधिकारियों से इस्तीफा मांगा गया, लेकिन दोनों तैयार नहीं थे। लेकिन जब दबाव बढ़ा तो दोनों ने इस्तीफा दिया। अब इस्तीफे के बाद भी कानून के लंबे हाथ इन रसूखदारों के गिरेबां तक नहीं पहुंचे।

0: जांच की आंच से चंपत राय और अनिल मिश्रा कब तक बचते रहेंगे? क्योंकि चढ़ावा चोरी कांड में हो रहे खुलासे सीधे तौर पर चंपत राय को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चढ़ावे की गिनती करने वाले आरोपी कर्मचारियों को चंपत राय का संरक्षण मिला हुआ था। करीब 3 महीने पहले SBI ने भनक लगते ही गिनती में शामिल संदिग्ध कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारी संदिग्ध कर्मचारियों की ढाल बनकर खड़े हो गए। नतीजा ये हुआ कि चढ़ावे में चोरी का खेल बदस्तूर जारी रहा और ट्रस्ट के बड़े बड़े पदाधिकारी आंखें मूंद कर बैठे रहे। जांच में ये भी पता चला है कि गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोर में बैंक के कर्मचारी भी मिले हुए थे। दरअसल गिनती के दौरान ही आरोपी चढ़ावे की रकम को चुराते थे। चूंकि इस दौरान बैंक कर्मियों की मौजूदगी वहां रहती थी, लिहाजा पूरा खेल मिली भगत से खेला गया। बदले में बैंक कर्मियों को बाकायदा मोटा कमीशन मिलता था। ये काली कमाई इतनी थी कि चंद हजार की पगार पाने वाले लवकुश मिश्रा ने कुछ महीनों में ही एक कोठी बनवा डाली। आज तक संवाददाता संतोष शर्मा आरोपी लवकुश मिश्रा की उस कोठी तक पहुंचे, जिसकी नींव चंद महीने पहले लवकुश ने रखी थी।
1: पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए, ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है, जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। पहले थोड़ा मकान के अंदर का भी दिखाते हैं कि ये बाकायदा स्टेयर्स बन गई हैं और इसके बाद कमरे हैं। एक दो मंजिला मकान ये बनाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस पूरे मकान को सुप्रिया मिश्रा के नाम पर दर्ज है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसके अनुसार 6 मार्च 2026 को इस जमीन की दाखिल खारिज हुई थी। इस प्लॉट को सरकारी दस्तावेजों में दाखिल खारिज किया गया था।
0: अयोध्या की सोहावल तहसील के दस्तावेज बताते हैं कि इसी साल लवकुश ने अपनी पत्नी के नाम प्लॉट का दाखिल खारिज करवाया था। पड़ोस में रहने वाले राजकुमार पांडे बताते हैं कि लवकुश को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो इतनी कीमती प्रॉपर्टी खरीद सकता है।
2: ये हम नहीं कह सकते हैं कि उनके रहन सहन से तो नहीं लगता था, क्योंकि बहुत साधारण लोग लगते थे। बाइक से आते थे, पल्सर से, पल्सर बाइक थी उनकी। वही कैसे किया, क्या किया, क्या नहीं किया, ये वही बता पाएंगे। और चूंकि घर से भी पैसा बरामद हुआ है उनके।
3: और हम आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि इसी मामले में एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। कार्रवाई लगातार हो रही है, एक्शन भी हो रहे हैं, और इस दौरान न सिर्फ एक्शन हुआ है बल्कि इस केस में एक कार्रवाई हुई है। RMO अर्जुन देव का अयोध्या से ट्रांसफर कर दिया गया है। 17 साल से अयोध्या में तैनात थे ये अर्जुन देव। अर्जुन देव RMO मतलब वो CCTV कंट्रोल रूम की निगरानी करने का जिम्मा इनके पास था। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, चंपत राय के करीबी बताए जा रहे हैं RMO अर्जुन देव, जिनका ट्रांसफर कर दिया गया है। और अब सभी चंपत राय की जो नज़दीकी हैं वो गिरफ्तार भी हुए हैं, और जो उनके नज़दीकी हैं उन पर शिकंजा कस रहा है। खुद चंपत राय पर बड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। तो राम मंदिर, श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। RMO अर्जुन देव का ट्रांसफर कर दिया गया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने लपक लिया है, और अब अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी का बाउंसर बीजेपी पर फेंक रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उछालकर अखिलेश यादव के विरुद्ध हिंदुत्व की पिच पर छक्का मारने का प्रयास किया है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि हिम्मत है तो अखिलेश मथुरा पर बोलकर दिखाइए, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की आवाज अखिलेश उठाइए। इस बीच 2027 के यूपी चुनावों की फील्डिंग सेट करने में लगी कांग्रेस ने तगड़ा टॉन्ट मारते हुए कहा है कि उज्जैन और अयोध्या तो बस झांकी हैं, लूट के लिए अभी मथुरा बाकी है। तो आइए आपको दिखाएं चढ़ावा चोरी का ये राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा।

0: भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है।
1: अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर चढ़ाई, मथुरा के चैलेंज पर आए।
2: अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए।
1: चढ़ावा चोरी पर विपक्ष सवार, हिंदुत्व की पिच पर सरकार। दो हजार 27 के चुनाव से पहले अयोध्या की सियासत कैसे मथुरा तक आ गई? योगी बनाम अखिलेश की टक्कर 2027 के चुनाव में होगी भयंकर। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा अब यूपी में चुनाव भर गूंजेगा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है। चंपत राय पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव ने सियासी पेच पर चढ़ावा चोरी पर सियासी बाउंसर मारना शुरू कर दिया है। ऐसे में सीएम योगी भी अब हिंदुत्व की पेच पर चौके छक्के मारने उतरे हैं। अखिलेश ने अयोध्या को मुद्दा बनाया तो सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण भूमि वाला चैलेंज दे दिया।
2: अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए, अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए। और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो।
0: हम तो ये कहेंगे कि जो सच्चे सनातनी हैं, भाजपाइयों से टिकट ना मांगे और ना भाजपाइयों को सच्चे सनातनी वोट दें, क्योंकि जिन्होंने चढ़ावा चोरी की हो, चंदा चोरी की हो, सीसीटीवी में फुटेज हो, सीसीटीवी से तो घबरा ही रहे हैं, सीसी से और ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि जनता जान गई है चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, वो सब जग जाहिर हो गई है।
1: बीजेपी कहती है राम की चिंता छोड़ कृष्ण की चिंता करनी चाहिए। अखिलेश कहते हैं नेशन फर्स्ट अब बीजेपी के लिए डोनेशन फर्स्ट हो गया है।
3: जिनके लिए डोनेशन फर्स्ट नेशन नहीं है, मैं कई बार जवाब दे चुका हूं, केदारेश्वर धाम, इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे कि हम इतनी बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं, वहां पर सोचिए उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की, तभी तो कहावत बनी है चिराग तले अंधेरा। सोचिए और जगह पर भ्रष्टाचार कितना हो रहा होगा।
2: मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कावड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है।
1: अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर घिरी बीजेपी 2027 की राजनीति में मथुरा की एंट्री करवा रही है। 12 जुलाई को बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी मथुरा में ही आयोजित की जा रही है, क्योंकि 2027 के रण में बीजेपी अपने सबसे मजबूत ब्रज के किले से चुनावी शंखनाद करना चाहती है।
4: अयोध्या उज्जैन तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। वहां भी लूटने का इंतजाम है, वहां भी कॉरिडोर बन रहा है।
1: श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा सीएम योगी ने क्यों उछाला, इसकी कैलकुलेशन भी अब आपको समझाते हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र की 65 में से 53 सीटें जीती थी, जबकि अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, वो भी 82-85% यादव वोटों की बदौलत। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद इस क्षेत्र की हवा भी बदली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 53 की जगह सिर्फ 42 विधानसभा सीटों पर आगे रही, जबकि समाजवादी पार्टी 12 की जगह 23 विधानसभा सीटों पर आगे आ गई और अखिलेश को मिलने वाले यादव वोट भी 87-89% तक पहुंचे। सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं और अब इसकी काट अखिलेश यादव राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से खोज रहे हैं।
0: प्रभु श्री राम माफ कर देंगे, अपना सीसीटीवी बंद कर दो और आंख बंद कर लो। जो जितना चढ़ावा ले गया है रात के अंधेरे में वापस प्रभु श्री राम जी पे चढ़ा दो, प्रभु श्री राम अपने आप माफ कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम से भी नहीं माफी मांगना चाहते हैं।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच टक्कर जोरदार चल रही है। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर समाजवादी पार्टी मौका ढूंढ रही है ताकि 2027 के चुनाव में धर्म की बात भी हो जाए, धर्म वाली राजनीति भी हो जाए और मुख्यमंत्री योगी की काट भी मिल जाए। और अब लड़ाई परिवार से लेकर व्यक्ति विशेष तक पहुंच रही है।
1: यूपी के पीलीभीत में सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पर तगड़ा निशाना साधा। सीएम योगी ने सीधे कहा कि यूपी की जनता ने उस साइकिल को पंचर कर दिया जो दंगे करवाती थी।
6: परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए, क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी।
0: जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें तो बढ़ी बढ़ी हैं, लेकिन पहले वनस्पति गोरखपुर में ज्यादा पकड़ी जाती थी। इधर पिछले 8-9 साल से हम लोग देख रहे हैं लखनऊ राजधानी में वनस्पति बहुत पकड़ी जा रही है।
5: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे डील भी और युद्ध भी, ईरान और अमेरिका के बीच आखिर चल क्या रहा है, आप देखते रहिए दस्तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक।
8: Tune in's how to a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, Tune in has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: AU सोच बदलो और बैंक भी।
5: आगे आगे
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: Aapka parcel phir se hamare ghar pe aaya hai.
10: Kuch to baat hai is dil mein.
11: Maa bhi hamesha apni mark master oil mein khana banati thi. Ye aapke liye.
12: We mark the mustard specialists since 1933.
13: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
14: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
15: Rungta nahi, to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar, ekdam solid.
16: हमने तब भी सवाल किया था।
17: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
16: हम आज भी सवाल करते हैं।
17: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
16: ऑपरेशन अग्नि,
17: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
16: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
18: In association with
19: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
20: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें साथ तक, देखते रहिए आज तक।
21: वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी, गुंडागर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना आराम कर देगी, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करना, जहां आज गौशालाएं बन रही हैं, ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाही ने कब्जा की होंगी जरूर। और जब सरकार आई और हम लोगों ने पहले दिन ही घोषणा की थी कि अगर जमीन कब्जा किए हो तो खाली कर दो, नहीं तो अगले 48 घंटे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो 7 पीढ़ियों का भुक्तभोगी होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसी समय सिलेंडर कर दिया था कि नहीं साहब आप जमीन ले लीजिए, बकस दो। विस्थापित हिंदू बौद्धों जैनियों सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान से बांग्लादेश से अफगानिस्तान से विस्थापित है, आप याद करिए दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था। आज जो ये सर्टिफिकेट वितरित हो रहे हैं इसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। यानी इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है, कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी, यही पाप ये जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा।
0: तेज बारिश के बीच नदी में सैलाब बढ़ा, उफनती नदी की लहरें पुल तक पहुंची और देखते ही देखते लोहे के पुल को साथ बहा ले गई। पुल पहले बीच से बहा, फिर देखते ही देखते पूरा पुल ही नदी में समाता चला गया। भारी बारिश और बाढ़ की आफत के बीच ये तस्वीरें असम के धीमाजी जिले की। यहाँ कुछ लोग लोहे के पुल के सहारे उफनती नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही दूसरी छोर पर खड़े लोगों ने उन्हें रोक दिया। कुछ देर शोर शराबा हुआ और फिर पुल नदी की लहरों के साथ बहता चला गया।

0: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
1: Presented by Patanjali Gai Ka Ghee. Lagaye swad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
2: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब बात पाकिस्तान अफगानिस्तान की कि कैसे गृह युद्ध से बौखला गया पाकिस्तान, अब अफगानिस्तान पर बॉम्ब बरसा रहा है। पीओके से लेकर कराची तक आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ विद्रोह भड़क रहा है। कराची में पाकिस्तान के ही पाले आतंकवादियों ने हमले किए तो इसका ठीकरा आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान पर फोड़कर मासूमों और बेगुनाहों की जान ले ली। जी हाँ, मुनीर की सेना ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर जमकर बमबारी की, जिसमें 36 अफगानी नागरिकों की मौत हो गई, 160 से अधिक घायल हो गए। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि मरने वालों में कई छोटे छोटे बच्चे हैं। आइए हम आपको दिखाएं कैसे मुनीर की क्रूरता पर तालिबान ने बदले का ऐलान किया है।

अफगानिस्तान में आसिम मुनीर ने दिखाई क्रूरता। अफगानिस्तान में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर बमबारी। कराची ब्लास्ट से बौखलाए पाक की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक। अफगानिस्तान का ऐलाने जंग, पाकिस्तान से बदला लेने की कसम। गृह युद्ध से परेशान पाकिस्तान अफगानिस्तान पर बम बरसाने लगा। पाकिस्तान के कराची में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के पाले हुए आतंकियों ने ब्लास्ट किया तो अपना पाप तहरीके तालिबान यानी टीटीपी पर बढ़ने के लिए अफगानिस्तान पर बमबारी कर दी। जी हाँ, मुनीर की सेना ने अफगानिस्तान के तीन प्रांतों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की जिसमें 36 अफगान नागरिकों की मौत हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि मुनीर की इस क्रूरता का शिकार ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हुई हैं। पहले पाकिस्तान ने रात के 11:30 बजे बमबारी की जब ग्रामीण मलबे में फंसी महिलाओं और चीखते चिल्लाते बच्चों को बाहर निकालने के लिए दौड़े तो पाकिस्तानी जेट रात 12:55 पर वापस आए और निहत्थे बचाव कर्मियों पर बमों की दूसरी खेप गिरा दी। जानबूझकर किए गए इस दूसरे हमले के कारण मरने वालों की संख्या तेजी से 36 पहुँच गयी। वहीं अस्पतालों में घायलों की संख्या 160 से ज्यादा हो गयी। ये वीडियो पक्तिया के जमकनाए जिले का है। इसमें पाकिस्तानी सेना के हमलों का शिकार बने बिस्मिल्ला के एक रिश्तेदार ने पाकिस्तान पर सोची समझी बर्बरता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बमबारी के बाद लोग बचाव के लिए आए, तभी पाकिस्तानी जेट्स ने उन पर दोबारा बमबारी कर दी। अफगानिस्तान से आई तस्वीरों में दिख रहा है कि मरने वालों में 4 से 9 साल के छोटे छोटे बच्चे और कई बुजुर्ग शामिल हैं। साथ ही कई मासूम नन्हे नन्हे बच्चों और बच्चियों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने पक्तिया प्रांत के चमकारी जिले में एक घर को निशाना बनाया जिसमें एक बुजुर्ग और एक बच्चे की मौत हो गई। जब स्थानीय ग्रामीण पीड़ितों को बचाने के लिए वहां इकट्ठा हुए तो उसी जगह पर दोबारा हमला किया गया। पाकिस्तान की सरकार ने दावा किया कि उसने आतंकी संगठन तहरीके तालिबान यानी टीटीपी और जमात उल अहरार के ठिकानों को टारगेट किया है, जबकि सच ये है कि पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी पुराना बहाना बनाकर अपना पाप छुपाने की कोशिश कर रहा है। जबकि अफगानिस्तान दुनिया के सामने बार बार यही कहता रहा है कि पाकिस्तान अपने आतंक का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दे दी गई है। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान प्रशासित इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो हवाई हमले का जवाब नहीं दे पाए तो वो जमीन के

0: रास्ते बदला लेंगे। इस्लामिक अमीरात कुनार, पक्तिया और पक्तिका में पाकिस्तानी हवाई हमलों का बदला लेकर रहेगा। पाकिस्तान को अफगानिस्तान को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए और निर्दोष लोगों का खून बहाने से कुछ भी नहीं बदलेगा। पाकिस्तान में पीओके से लेकर कराची तक रेल युद्ध छिड़ा है। हालात ये है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। पहले आसिम मुनीर ने जनरल डायर बनकर पीओके में महंगाई और बिजली से लेकर अपने हक की आवाज उठाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने उतरे लोगों पर गोलियां चलवा दी और पाकिस्तान के कराची में 27 जून को एक बड़ा हमला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची के गुलिस्ताने जौहर इलाके के ब्लॉक 9 और यूनिवर्सिटी रोड के पास अचानक कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। इन धमाकों के बाद इलाके में भारी गोलीबारी की आवाजें भी सुनाई दी हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों को मौके पर भेजा गया। बाद में पता चला कि पाकिस्तानी रेंजर्स के हेडक्वार्टर के पास एक आत्मघाती हमला हुआ था। पाकिस्तान ने कराची ब्लास्ट को लेकर भारत पर भी आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वो अपने भीतर झांके, अपने यहाँ मौजूद आतंकी ढांचों के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करे।
1: देखो, पाकिस्तान टेररिज्म सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में फैलाता है और इट्स नोन एज हॉट बेड ऑफ टेररिज्म। अब चोर को सारे चोर ही दिखते हैं, तो भारत की ऐसी पॉलिसी रही नहीं है कि किसी टेररिज्म किया जाए और इस तरह के अटैक इनोसेंट लोगों को, बिकॉज ऐसे इंसिडेंट में बहुत सारे इनोसेंट लोग भी मरते हैं। तो मुझे लगता है एमईए ने जो कहा बिल्कुल सही है। भारत, मैंने तो कभी देखा नहीं ना सुना कि भारत कभी इस तरह के टेररिज्म को बढ़ावा कोई एनकरेज करता, कभी भी नहीं करता, वो हमारी पॉलिसी नहीं।
0: भारत से लतार मिली तो गृह युद्ध से बौखलाए पाकिस्तान ने कराची ब्लास्ट का ठीकरा टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पर फोड़कर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने गुमराह करने वाला बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हमले में 25 आतंकवादी मारे गए, लेकिन अफगान विदेश मंत्रालय ने तस्वीरें जारी कर पाकिस्तान की आक्रामकता और अपराध की पोल खोल दी। अस्पतालों की दिल दहला देने वाली तस्वीरों और मलबे में तब्दील हुए घरों की तस्वीरें भी पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर रही हैं। अस्पताल में स्ट्रेचर पर खून से लथपथ बच्चे और बुजुर्ग पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान पर टीटीपी समेत कई आतंकवादी गुटों को शरण देने का आरोप लगाता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि सीमा खुली होने के कारण ये आतंकी हमले कर सीमा पार कर अफगानिस्तान में छिप जाते हैं, जबकि तालिबान ने हमेशा पाकिस्तान के इन आरोपों को खारिज किया है और इसे इस्लामाबाद की घरेलू समस्या बताया है। तालिबान और पाकिस्तान में डूरंड लाइन को लेकर भी विवाद है। तालिबान डूरंड लाइन को मान्यता नहीं देता है। आज तक ब्यूरो।
2: अब खबर अमेरिका और ईरान युद्ध की। 72 घंटे की गोलाबारी के बाद एक बार फिर से अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हो गए हैं। कल दोहा में अमेरिकी वार्ताकारों की ईरानी डेलीगेशन के साथ बैठक होनी है। बैठक का ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है, लेकिन सवाल यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के बावजूद युद्ध की स्थिति क्यों बनी हुई है। ये कैसा शांति समझौता है जिसमें बातचीत भी होगी और युद्ध भी रहेगा।

0: violated the ceasefire. Will they face any consequences?
1: Well, we'll find out.
2: Do you consider the ceasefire to still be in place?
1: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually, four. We knocked down three at a ship. Not an Allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
0: Will the U.S.
1: You'll find out.
0: Will the U.S. respond? What is your message to
1: Will
0: Iran?
1: Will respond? You're going to find out.
3: ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने 17 जून को ईरान के साथ शांति समझौते के एमओयू पर साइन किए थे। ट्रंप के दस्तखत के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने भी शांति समझौते पर मुहर लगाई थी। पूरी दुनिया को लगा कि ईरान और अमेरिका के बीच बात बन गई है और अब युद्ध पर लगाम लगना तय है। दोनों के बीच 60 दिनों में अंतिम समझौते पर सहमति बन सकती है। इसी कड़ी में स्विट्जरलैंड में 21 जून और 22 जून को अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता हुई, लेकिन बीते कुछ दिनों के दौरान अमेरिका और ईरान ने हुर्मुज में एक दूसरे पर हमले किए। हुर्मुज में ईरानी हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। तो पलटवार करते हुए ईरान ने भी कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया। अब ईरान ने ट्रंप पर शांति समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया, तो अमेरिका ने ईरान पर, ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि अगर ईरान नहीं सुधरा तो उसका अस्तित्व मिटा देंगे।
4: ईरान ने सीज फायर का सम्मान नहीं किया तो अमेरिका के विमानों ने उनके मिसाइल और ड्रोन स्टोर करने की जगहों और तटीय रडार साइटों पर हमला किया है। मुझे नहीं लगता कि वे सबक सीखेंगे। हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए जब हमें उस काम को सैन्य तरीके से पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़े जिसे हमने बहुत सफलतापूर्वक शुरू किया था। अगर ऐसा होता है तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा।
3: एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान का अस्तित्व मिटाने की धमकी दी। सवाल यही है कि ये कैसा शांति समझौता जिसमें दोनों तरफ से हवाई हमले जारी हैं, न अमेरिका रुकने को तैयार है और न ही ईरान छुपने को तैयार। पीस डील के भविष्य पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामिनई ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अगर अमेरिकी पक्ष बहुत ज्यादा मांगे रखेगा तो हम इस समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका के साथ हुए समझौते के एमओयू को लेकर मेरा अलग मत था, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के दूसरे सदस्यों के प्रति प्रतिबद्धता के चलते मैंने अनुमति दे दी। ईरानी अधिकारियों ने ईमानदारी से काम किया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बेचैनी में थे। उन्होंने इस समझौते को करवाने के लिए हर तरह के दबाव का इस्तेमाल किया। अगर ट्रंप की डील को कमजोर करने की कोशिश की गई, तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। हम बात करेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। दरअसल मामला उस वक्त बिगड़ा जब 25 जून को ईरानी सेना ने हुर्मुज के करीब एक जहाज को निशाना बनाया। इसी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर शांति समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया। 26 जून को अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। 27 जून को ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा किया। जवाब में 28 जून को अमेरिका ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, तो ईरान भी नहीं रुका। उसने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका का दावा है कि बहरीन और कुवैत पर किए गए हमले नाकाम रहे क्योंकि कोई भी मिसाइल और ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंचने में नाकाम रहे। 3 दिनों तक हमलों के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान ने शांति वार्ता को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। दोनों मुल्कों ने फिलहाल एक दूसरे पर सैन्य हमले रोकने पर सहमति जताई है। अब दोनों देशों के बीच कल दोहा में वार्ता होनी है। व्हाइट हाउस का कहना है कि विटकॉफ और कुश्नर कल दोहा में होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक को लेकर ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ईरान ने बैठक का अनुरोध किया है। ये बैठक कल दोहा में होगी। एक बात साफ है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। ये पहली बार है जब अमेरिकी धमकी के बावजूद ईरान एक बार फिर बातचीत की टेबल पर चंद घंटों के बाद आ गया। यही नहीं, अब ईरान के खिलाफ ओमान ने भी मोर्चा खोल दिया है। ओमान का कहना है कि हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हुर्मुज हॉर्मुज में कोई टैक्स ना लगे इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम टैक्स लगाने के पक्ष में नहीं हैं। ये निर्धारित है, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निषिद्ध है और हम इन नियमों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हॉर्मुज से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना मुख्य रूप से ईरान की जिम्मेदारी है। कि वो सुनिश्चित करे कि हॉर्मुज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत जहाजरानी मार्ग बारूदी सुरंगों से संबंधित किसी भी खतरे से मुक्त हों। ओमान ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे पर मुहर लगाई है, क्योंकि ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि ईरान ने हॉर्मुज पर टैक्स लगाया या फिर हॉर्मुज में किसी जहाज पर हमला किया तो अमेरिकी सेना हमले के लिए तैयार है।
5: And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people Iran if we didn't do that? And we're still, you know, we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. You know, they shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot four of them. We knocked down three of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon they will end every foe. We had everybody was winning and we're going to continue stronger, maybe stronger.
3: हॉर्मुज पर ईरान को टैक्स वसूलने की इजाज़त नहीं मिल सकती और ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। हॉर्मुज और ईरान के एटमी प्लान को लेकर ट्रंप अपनी चेतावनी बार बार दोहरा रहे हैं।
5: And we're going after the bad ones first. We're getting them out. Last week, we signed a historic agreement to accomplish what no president has ever been able to accomplish before, that Iran will never have a nuclear weapon. We're not going to let that happen. And thanks to the power and skill of the United States Armed Forces, Iran today has no Navy, no Air Force, no anti-aircraft capability, no radar, virtually no manufacturing. Their drone capacity has been cut by 82%. Their missile capacity has been cut by 80%.
3: ट्रंप की धमकी पर ईरान की संसदीय समिति के सदस्य ने यही दावा किया है कि जब तक अंतिम समझौते तक ईरान और अमेरिका नहीं पहुंचते, तब तक ईरान के परमाणु ठिकानों के दरवाजे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के लिए नहीं खुल सकते। जब तक वार्ता का परिणाम स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक तेहरान को संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। ईरान अंतिम समझौते पर पहुंचने से पहले फोडो, नतांज और इस्पहान जैसे प्रमुख परमाणु स्थलों में यूएन के परमाणु निरीक्षकों की एंट्री के लिए तैयार नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि का दावा है कि परमाणु मुद्दे पर अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की तो ईरान दबेगा नहीं बल्कि लड़ेगा। ईरान के दुश्मनों द्वारा भविष्य में की गई किसी भी गलती का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। इलाके में बचे हुए अमेरिकी ठिकाने और इजराइल हमारी मिसाइलों की सीमा में हैं। स्विट्जरलैंड में वार्ता दल का मिशन मुश्तबा खामिनई की शर्तों को पूरा करवाना है। अगर दूसरा पक्ष अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं करता तो इस्लामिक गणराज्य भी पिछली स्थिति में लौट आएगा। वहीं दूसरी तरफ IAEA चीफ मानते हैं कि ईरान के पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है जिसे वो परमाणु हथियार बना सकता है। ऐसे में ईरान के परमाणु ठिकानों के निरीक्षण के बाद ही तय होगा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है या नहीं। एक समझौता हुआ है और उस समझौते का पालन करने के लिए IAEA को वहां जाकर निरीक्षण करना होगा। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही वहां पहुंचेंगे। ईरान ने घोषणा की है कि उसका परमाणु हथियार विकसित करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सिर्फ इरादे ही काफी नहीं है। हमें एक बहुत मजबूत सत्यापन प्रणाली स्थापित करनी होगी और निरीक्षण जितनी जल्दी संभव हो फिर से शुरू किए जाने चाहिए। मतलब यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच दो मुद्दों पर सीधा मतभेद है, पहला हॉर्मुज और दूसरा परमाणु हथियार। अब देखना यही है कि एक बार फिर बातचीत को राजी हुए दोनों मुल्क किसी समाधान की तरफ बढ़ते हैं या फिर महायुद्ध की तरफ। आज तक ब्यूरो।
6: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
8: You hear it once and remember everything. Too sexy for your party. Too sexy. sexy for your part. One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
9: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. AU
10: सोच बदलो और बैंक भी.
11: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी या फिर चंद मोहरों को बलि का बकरा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी?
1: ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो और जो भी लोग इसमें शामिल है उन्हें कड़ी सजा मिले।
2: हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा, लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपक राय पाक साफ साबित हो जाते हैं?
3: तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखाधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी की शह से ही हो रहा है।
0: हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं।
4: कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
5: जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है, उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते।
0: एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: डॉक्टर रामनु लोहिया जिनकी विचारधारा पर हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है,
2: डॉक्टर रामनु लोहिया जी के संकल्पों के, उनके आदर्शों पे, उनकी बताई हुई नीतियों पे
3: समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे।
2: डॉक्टर रामनु लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं।
4: ना जाने कितनी बार अखिलेश यादव ने खुद को और अपनी समाजवादी पार्टी को राम मनोहर लोहिया और उनकी विचारधारा से जोड़ा है। बार बार लोहिया के विचारों से स्वयं को प्रेरित बताया है। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में अब साल से भी कम का वक्त बचा है और इस अंतराल में लोहिया नाम की गूंज यूपी में और तेज होने वाली है। जी हाँ, और यूपी की इसी चुनावी बिसात में अब बीजेपी ने एक नया दांव खेलकर समाजवादी पार्टी को चौंका दिया है। एक तरफ अखिलेश राम मंदिर में छड़वा चोरी पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राम मनोहर लोहिया के परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात कर रही है। चुनावी साल में बीजेपी ने मंडल और कमंडल को एक साथ साधना शुरू कर दिया है। मंडल के मसीहा कहें या पिछड़ों के सबसे बड़े विचारक राम मनोहर लोहिया के घर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। इस दौरे का संकेत और संदेश सीधे सीधे अखिलेश तक है कि अब विचारधारा के तौर पर भी सेंधमारी की तैयारी है। एक तरफ प्रयागराज में सीएम योगी समाजवादी पार्टी को अयोध्या और मथुरा पर ललकार रहे थे, तो दूसरी ओर पंकज चौधरी लखनऊ में लोहिया के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे। चर्चा तो ये भी चल निकली कि बीजेपी कहीं राम मनोहर लोहिया के परिवार वालों को चुनावी राजनीति में लाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, कहीं बीजेपी अखिलेश के उस हथियार को ही कुंद तो नहीं करना चाहती है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। अखिलेश को परेशानी इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि राम मनोहर लोहिया का परिवार पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी कर रहा है। राम मनोहर लोहिया मारवाड़ी वैश्य यानी ओबीसी वर्ग से थे और बीजेपी भी जानती है कि बिना ओबीसी समाज को साधे बगैर 2027 चुनाव में उनका कल्याण होने वाला नहीं है। इससे पहले यूपी चुनाव के लिए बनी विशेष टीम में ओबीसी को तरजीह दी और अब लोहिया परिवार से मुलाकात।
5: प्रदेश अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मिलने पहुंच गए। ये सब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई ऐसी एक दूसरे में उलझ गई है कि दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी हैं। कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों को उनके वैचारिक प्रणेताओं के जरिए साधने की कोशिश कर रही है।
4: बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पर ही जोर नहीं दिया है बल्कि क्राइम रेट को लेकर भी एसपी कार्यकाल को घेरना भी शुरू कर दिया है। 2027 को लेकर बीजेपी सिर्फ राम भरोसे नहीं है, उसे मालूम है कि धर्म का मुलम्मा समाज के सभी तबकों का वोट नहीं दिला सकता, इसीलिए अब बीजेपी समाजवादी पार्टी की तथा कथित विचारधारा में भी सेंधमारी करने में जुट गई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।

0: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ट्रस्ट से जुड़े खातों और सभी वित्तीय लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड तलब। गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी। पीलीभीत में कहा, यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा होगा, कर्फ्यू और गुंडागर्दी से लोगों का जीना होगा हराम। कल शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर। नौकरशाही की भी प्रक्रिया में बदलाव के संकेत। बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारियां। 2 जुलाई को शुभेंदु कैबिनेट में ड्राफ्ट को मिलेगी मंजूरी। सीएम ने कहा, अगस्त में लाएंगे यूसीसी बिल। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले की भारत ने कड़ी निंदा की। बताया, संप्रभुता पर हमला, कहा अपनी अंदरूनी नाकामियों को बाहरी वजहों से जोड़ता है पाक।

नमस्कार, मैं हुशम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 18 जून की सुबह लोहगढ़ की पहाड़ी से केतन को खाई में किसने धक्का दिया था, सिया ने या फिर चेतन ने या दोनों ने साथ मिलकर? तो इस सवाल का जवाब सामने आ गया है। पुणे पुलिस के मुताबिक पुलिस हिरासत में पूछताछ के बाद ये साफ हो गया है कि केतन को धक्का सिया ने ही दिया था, जबकि चेतन उस वक्त कुछ दूरी पर खड़ा था। इसी के बाद 28 जून को पुणे पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ सिया को उसी लोहगढ़ की पहाड़ी पर ठीक उसी जगह पर ले गई जहां से 18 जून को केतन को धक्का दिया गया था।

0: ठीक 10 दिन बाद सिया इस किले के ऊपर वहीं खड़ी थी जहां से 18 जून को उसने चेतन के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया था। केतन की मौत के 10 दिन बाद सिया को आज एक बार फिर से ठीक वहीं से केतन को नीचे खाई में दोबारा धक्का देना था। ऊपर पहाड़ की चोटी पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम सिया के साथ खड़ी थी। नीचे खाई में पुलिस और फॉरेंसिक की एक दूसरी टीम खड़ी थी। ऊपर सब कुछ तय होने और सिया के इशारे के बाद पुलिस वालों ने सिया को केतन को धक्का देने के लिए कहा, ठीक उसी तरह जैसे उसने 18 जून की सुबह केतन को धक्का दिया था। उतनी ही ताकत और उतनी ही फोर्स के साथ पहाड़ की चोटी और नीचे खाई में पुलिस और फॉरेंसिक टीम बिल्कुल तैयार थी। इधर इशारा होता है, उधर सिया केतन को चोटी से नीचे धक्का दे देती है। खाई से चोटी की ऊंचाई 340 फीट के आसपास है, लिहाजा नीचे से कैमरा चीजों को साफ साफ नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन अगर आप बारीकी से और बेहद ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा ऊपर से किसी को धक्का दिया गया और वो नीचे की तरफ लुढ़क कर गिर रहा है। अगर अब भी साफ नहीं दिखा तो एक बार फिर से देखिए। अब जाहिर है केतन की मौत तो 18 जून को ही हो चुकी है, तो सिया केतन की मौत के 10 दिन बाद उसे दोबारा तो धक्का नहीं मार सकती। लेकिन 18 जून को सिया ने केतन को धक्का देकर कैसे मारा, बस यही जानने के लिए पुणे पुलिस और फॉरेंसिक टीम के महारथी सिया को अपने साथ लेकर किले की ठीक उसी चोटी या उस जगह पर पहुंचे थे जहां से केतन को धक्का दिया गया था। दरअसल ये एक रिक्रिएशन था, इसे आप डमी ट्रायल भी कह सकते हैं। पुलिस से ज्यादा फॉरेंसिक टीम ये जांचना और परखना चाहती थी कि केतन की मौत पांव फिसलने से हुई थी या धक्का देने से, क्योंकि इन दोनों ही तरीकों से होने वाली मौत में जरा सा फर्क होता है। अगर कोई फिसल कर चोटी से नीचे गिरता है तो उसकी बॉडी नीचे खाई में दूर जाकर नहीं गिरेगी बल्कि पहाड़ी से सट कर ही नीचे गिरेगी, पर अगर किसी को पहाड़ से धक्का दिया जाए तो धक्का देने के फोर्स की वजह से गिरने वाला नीचे पहाड़ के दामन से कुछ दूरी पर जाकर गिरेगा। केतन की लाश खाई में जिस जगह से बरामद हुई थी पहाड़ी की दामन से उस दूरी को नापने के लिए ही ये डमी ट्रायल किया गया।
1: लोगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है, किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी उसको रिक्रिएट जा रहा किया गया, उसमें एक्यूज ने बता दिया है। देखिए एक्यूज को लेके क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन किया गया है, तो वहाँ पे एक्यूज ने कहाँ कहाँ पे गए, किस रास्ता लिया और कैसे वो इंसिडेंट था फाइनली वो हुआ, वो वैसे उन्होंने हमें यहाँ पे दिखाया है। बाकी की इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी
0: इस डमी ट्रायल या रिक्रिएशन से पहले सिया से लंबी पूछताछ हुई थी कि उसने किस पोजीशन में और कितनी ताकत से केतन को धक्का दिया था। सिया के बयान के बाद फॉरेंसिक टीम ने केतन के कदकाठी और वजन का एक पुतला तैयार किया।
2: आज सुबह सिया को हम सिया ने बताया, जैसे हम उसको वहाँ पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है, सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया।
3: और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी, लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था?
2: उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, उसको हमने किया।
0: उसी पुतले को लेकर टीम 28 जून की सुबह पहाड़ी पर पहुंची थी। 18 जून को सिया और केतन किस रास्ते से ऊपर गए, कहां कहां रुके और फिर वो आखिरी जगह कौन सी थी जहां से केतन को धक्का दिया गया, ये सारी बातें सारे रास्ते खुद सिया पुलिस को बताते हुए ऊपर तक पहुंची। फिर उसी की निशानदेही पर ठीक उसी जगह उस पुतले को खड़ा किया गया और सिया ने अपने हिसाब से उसी फोर्स या ताकत के साथ पुतले की शक्ल में एक तरह से केतन को 10 दिन के अंदर दोबारा खाई में धक्का दिया।
2: आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी जैसे हुआ था, वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया है।
4: दोनों आरोपियों को आप लेके आए थे?
2: सिया थी
4: चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना अहम है, क्योंकि जिस मतलब जहां से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना वो भी बाकी।
2: अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, वो सीन रिक्रिएशन हमने किया हुआ है।
4: तो स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड हो गया उसका, अब उनका एग्जैक्टली इस पूरे मामले में क्या कहना है कि क्या पुश एग्जैक्टली किसने किया था, चेतन ने किया था फिसिया ने?
2: देखिए आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया, उसने कभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है।
4: देखो इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दोनों ने रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी कहीं ना कहीं और फिर आके इसे अंजाम दिया गया। तो क्या सिया ये अभी कह रही है कि वो प्रैक्टिस किस तरीके से हुई थी और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया?
2: वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आज का तो सीन रिक्रिएशन हो गया।
4: सर कितने बजे, एक लास्ट क्वेश्चन, कितने बजे लाया गया था और कितने देर तक
2: लेके आए थे? अभी खत्म हुआ है।
0: हालांकि रिकॉर्ड पर अब तक पुलिस ने यह खुलासा नहीं किया है कि 18 जून को केतन को सिया ने धक्का दिया था या चेतन ने या फिर दोनों ने मिलकर, लेकिन इस डमी ट्रायल के जरिए खुद पुलिस ने इस सवाल का जवाब दे दिया कि असल में केतन को धक्का सिया ने ही दिया था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो डमी ट्रायल में सिया ने चेतन हिस्सा ले रहा होता। कुछ दिन पहले चेतन के पिता ने भी ये बात कही थी कि जब वो चेतन से मिलने पुलिस स्टेशन गए थे तब चेतन ने उनसे कहा था कि केतन को उसने नहीं बल्कि सिया ने धक्का दिया था।
5: हम जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में, तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था।
6: तो लड़की खड़ी थी क्या वो लड़के के पास में?
5: हाँ, वो ऐसा चेतन बता,
6: ये लड़की के पास खड़ी थी, लड़का मैं आता आपके पास। हाँ, अब ये बहुत सही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि उस लड़के जो लड़का गिरा है उसके पास लड़की खड़ी थी।
5: हाँ, अभी वो धक्का दिया कि नहीं दिया वो अपने को मालूम नहीं। हाँ, पर चेतन बोल रहा था कि मैं थोड़ा लंबा खड़ा था, वो लड़की के सामने ही बोला था उस टाइम, वो पुलिस दोनों को साथ में लेकर आए थे मेरे सामने।
6: ओके, ऐसा। और वो लड़की लड़के के पास खड़ी थी, धक्का दिया नहीं दिया पता नहीं, लेकिन चेतन दूर खड़ा हुआ था।
0: किले के ऊपर जाने, वहाँ डमी ट्रायल किए जाने और सिया से वारदात वाले दिन हुई बाकी की डिटेल लेकर करीब 3.5 घंटे बाद पुलिस सिया को लेकर नीचे उतरी। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं, सफेद टी शर्ट, नीली जीन्स, चेहरे पर मास्क और हाथ में दुपट्टा लिए सिया को दो लेडी कांस्टेबल पकड़कर नीचे ला रही है।
4: सुबह 6:30 बजे पुलिस पुणे के इस वड़गांव पुलिस स्टेशन से सिया को लोहगढ़ की तरफ लेके गई और लगभग 8 बजे किले के ऊपर जाने के बाद ये रिक्रिएशन सीन की शुरुआत हुई। वहीं से शुरुआत की गई जहां एग्जैक्टली केतन अग्रवाल को धक्का दिया गया था और सिया को साथ में लेके पुणे की वड़गांव मावल की पुलिस वहीं पहुंच गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सबसे अहम यह है कि जो पुतला बनाया गया था वो केतन अग्रवाल के जैसा था, उसी के वजन का था, ताकि वो नीचे जाने के बाद ये पता चले और ये फाइनलाइज हो सके कि किस तरीके का इम्पैक्ट था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इम्पैक्ट के बाद पुतले के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो देखना पुलिस चाह रही थी और उसी की जांच फाइनलाइज हो गई। सबसे अहम यह है कि उसके बाद कुछ फॉरेंसिक के डिटेल्स थे वो कलेक्ट किए गए और सिया को लगभग 10 से 10:30 बजे तक किले को उतरने की शुरुआत हुई और उसी के बाद उसे वापस इसी लॉकअप में लाया गया।
0: रिक्रिएशन के दौरान मीडिया को किले पर जाने से रोक दिया गया था, लिहाजा पूरी मीडिया किले के एंट्री गेट पर सिया और पुलिस का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सिया नीचे उतरी एक रिपोर्टर की आवाज जोर से गूंजी, सिया आपने केतन को क्यों मारा? हालांकि मीडिया के इन सवालों के जवाब तो सिया ने नहीं दिए, उसने ये नहीं बताया कि उसने केतन को क्यों मारा, लेकिन सिया ने पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान पुणे पुलिस को इसका जवाब जरूर दिया कि उसने केतन को क्यों मारा था। पुणे पुलिस सूत्रों के मुताबिक फरवरी में सगाई होने के बाद से सिया परेशान रहने लगी थी, लेकिन सगाई के बाद जैसे ही दोनों के घर वालों ने 25 नवंबर को सिया और केतन की शादी तय कर दी तब वो ज्यादा घबराई। इस बारे में चेतन और सिया ने कई बार लंबी बात की। चेतन ने सिया को ये कहा भी कि वो घर वालों को साफ साफ बता दे कि उसे केतन से शादी नहीं करनी, लेकिन सिया घर वालों से इस रिश्ते को तोड़ने की बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। उसे लगा कि अगर उसने शादी के लिए मना किया तो उसके माँ बाप और भाई का दिल टूट जाएगा, फिर बिरादरी में बदनामी भी होगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब सिया ने घर वालों से इस बारे में बात करने से साफ मना कर दिया, तब चेतन ने पहली बार उससे कहा कि वो दोनों कहीं भाग जाते हैं, फिर भाग कर शादी कर लेंगे। तब सिया ने चेतन को जवाब दिया था कि उसके लिए भागने से ज्यादा आसान काम है केतन की जान लेकर उसे रास्ते से हटा देना। वो सिया ही थी जिसने चेतन से कहा कि अगर केतन को कुछ हो जाता है तो ये शादी अपने आप टूट जाएगी, फिर वो बड़ी आसानी से चेतन से शादी कर सकती है। दरअसल सिया को चेतन से शादी करने के लिए 3 साल का वक्त चाहिए था और 3 साल का ये वक्त खरीदने के लिए ही उसने केतन को मार डाला। सिया ने केतन को मारने का फैसला तो कर लिया था, पर उसे कैसे मारेंगे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। शुरुआत में चेतन केतन को मारने के खिलाफ था, वो भाग कर शादी करना चाहता था, लेकिन फिर वो भी इस साजिश में सिया के साथ शामिल हो गया। दोनों ने केतन को मारने के लिए सबसे पहले गूगल में मौत के तरीके ढूंढे। बहुत से तरीके मिले भी, पर दोनों कोई ऐसा तरीका चाहते थे जिससे किसी को शक ही ना हो। किस्मत का खेल देखिए, इसी बीच 31 मई को ट्रैकिंग का शौकीन केतन पहली बार सिया को अपने साथ लोहगढ़ किले ले जाता है। यहाँ आने के बाद 31 मई को पहली बार सिया को आइडिया मिला, आइडिया केतन को मारने के तरीके का। उसने उसी दिन तय कर लिया था कि वो केतन को ऊपर से खाई में धक्का दे देगी। इसके बाद वो जून के पहले हफ्ते में चेतन के साथ फिर से लोहगढ़ किले गई। वहां दोनों ने पूरे किले का दौरा किया, जगह की रेकी की, सीसीटीवी कैमरों को देखा और फिर वो स्पॉट फाइनल किया जहां से केतन को धक्का देना था। 18 जून को यानी जिस दिन केतन को धक्का दिया गया, उस दिन सिया और केतन तो साथ थे, लेकिन चेतन अपनी इसी स्कूटी से घर से लोहगढ़ किले के लिए निकला था। चूंकि केतन और सिया ने किले की रेकी कर रखी थी, इसीलिए उन्हें ये पहले से पता था कि लोहगढ़ किले में कुल 3 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पहला किले के इस एंट्री गेट पर, दूसरा किले और सेल्फी पॉइंट के ठीक बीच में एक ऐसी जगह पर जहां लोग अमूमन चढ़ाई के बाद सुस्ताने के लिए रुकते हैं, जबकि तीसरा कैमरा जिस जगह किले की सीढ़ियां खत्म होती हैं और सेल्फी पॉइंट शुरू, वहीं लगा है। चूंकि केतन हर कैमरे की लोकेशन को जानता था, इसीलिए उसे पता था कि पहला कैमरा एंट्री पॉइंट पर है, कैमरे में उसका चेहरा कैद होगा। इसलिए 18 जून की सुबह चेतन ने अपना चेहरा छुपाने के लिए हुडी पहन लिया। ये उसी एंट्री गेट की सीसीटीवी कैमरे में कैद चेतन की तस्वीर है। इसमें आप चेतन की पीठ पर पिट्ठू बैग भी देख सकते हैं। जिस जगह केतन को धक्का दिया गया था उससे ठीक पहले चेतन ने अपनी हुडी उतार दी और पिट्ठू बैग से टी शर्ट निकाल कर पहन ली। चेतन को धक्का दिए जाने के बाद चेतन वापसी में कुछ दूरी पर जाकर फिर से अपनी टी शर्ट उतारता है और हुडी पहन लेता है। उसने ये सब कुछ प्लान के तहत किया था। प्लान ये कि अगर गलती से कोई चश्मदीद उसे देख ले तो वो उसे टी शर्ट पहने नजर आए, जबकि किले के एंट्री प्वाइंट पर वो हुडी में दिखे। इससे ये साबित होगा कि ऊपर केतन को धक्का मारने वाले शख्स का हुलिया और कपड़े अलग थे, जबकि चेतन हुडी में था।
4: जांच जैसे आगे बढ़ रही है, पुलिस को ये समझना है कि किस तरीके से इस मौका वारदात को अंजाम दिया गया था और जहां ये सब कुछ हुआ है वहां एग्जैक्टली पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। पहले सिया गोयल का हुआ था और आज जब पुलिस कस्टडी एक्सटेंड हो जाएगी उसके बाद चेतन चौधरी को भी उसी जगह पे लेके जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज होंगे और उसके बाद उसी में देखा जाएगा कि किस तरीके से वो वॉक कर रहा था, कहां तक वो पहुंचा, हुडी कैसे चेंज की और उसके बाद उसने भी इस पूरे वारदात को अंजाम दिया।
0: पुलिस पूछताछ में ये भी पता चला कि सिया और चेतन ने न सिर्फ किले की रेकी की थी, गूगल पर मौत के तरीके ढूंढे थे, बल्कि उन सवालों और जवाबों के भी रिहर्सल किए थे जो पकड़े जाने पर पुलिस उनसे पूछती और जिसका जवाब उन्हें देना था। इन लोगों ने बाकायदा एक एक सवाल और जवाब रटे। इतना ही नहीं, दोनों ने यह भी तय किया था कि 16 जून के बाद दोनों एक दूसरे को न फोन करेंगे न मैसेज, यहाँ तक कि दोनों ने अपने अपने मोबाइल से सभी चैट और तस्वीरें तक डिलीट कर दी थी। फिर उन डिलीटेड आइटम को रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दिया। सिया की पूरी साजिश को समझने के लिए पुणे पुलिस ने एक एक कर अलग अलग सिया के भाई साहिल गोयल और फिर माँ बाप को पूछताछ के लिए बुलाया था। ये सिया का भाई साहिल है जिसे सबसे पहले पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। असल में 6 जून को प्री वेडिंग शूट के लिए केतन और सिया बाली जा रहे थे। इंडोनेशिया में बाली की फ्लाइट पकड़ने के लिए सभी पुणे से एक कैब में मुंबई गए थे क्योंकि फ्लाइट मुंबई से थी। पर सिया बाली जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे केतन को ठिकाने लगाना था, लिहाजा साजिश के तहत उसने रास्ते में ही एक रेस्तरां में केतन का पासपोर्ट उसके बैग से निकाल कर उसे फाड़ दिया और फिर उसे वॉशरूम में फ्लश कर दिया। चूंकि साहिल भी उस वक्त सिया के साथ था इसलिए पुलिस ने पासपोर्ट को लेकर साहिल से भी सवाल पूछे।
4: आप भी निकल रहे थे बाली के लिए?
7: हाँ जी।
4: तो ये हमने ड्राइवर से बात की तो ड्राइवर का कहना था कि आपकी बहन वापस आई थी और उसने कुछ पासपोर्ट वहां से निकाला एंड शी टोर दैट पासपोर्ट। तो क्या आपको याद है कि एग्जैक्टली किस तरीके से वो सीक्वेंस हुआ था?
7: हम लोग उतरे थे सर, उसके बाद मैं वॉशरूम गया था, वी वेंट टू स्टारबक्स, मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा था, इट वॉज लेट एट नाइट, उसकी वजह से आई वॉज अ बिट स्लीपी, तो मैंने स्टारबक्स में कॉफी ऑर्डर की थी। आई नो ओनली अबाउट दैट मच सर।
4: तो ये बाली का प्लान आपका फाइनल था लेकिन?
7: हाँ जी
4: फाइनल, वो पासपोर्ट की वजह से कैंसिल हो गया।
7: हाँ जी।
0: पुलिस ने साहिल से सिया को लेकर क्या क्या पूछा, हालांकि इसके बारे में साहिल ने कुछ नहीं बताया।
4: आप इस पूरे मामले में थे शुरू से, आपकी बहन है जिसने सब कुछ किया है। शुरू में जब शादी का फाइनल हुआ था, जब एंगेजमेंट हो रही थी, तो क्या आपको इस सब बात का अंदाजा था?
7: सर ये मैंने पुलिस स्टेटमेंट में पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में उनको मैंने बताया, आगे आपको कोर्ट हियरिंग में ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू सर।
0: कैमरामैन गोपाल हार ने और श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बाबले, पुणे। आज तक 7 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद सोमवार को सिया और चेतन को पुणे की एक अदालत में पेश किया गया। पुणे पुलिस इन दोनों की पुलिस हिरासत अगले 7 दिनों के लिए और चाहती थी। पुणे पुलिस का कहना था कि अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सामने लाना बाकी है। पहली बार कोर्ट में सिया की तरफ से सिया के वकील भी पेश हुए। अदालत ने तमाम दलीलें सुनने के बाद 3 जुलाई यानी अगले 4 दिनों के लिए सिया और चेतन को पुलिस हिरासत में भेजने का हुक्म दिया।
8: 7 दिनों की सिया की पुलिस हिरासत सोमवार को खत्म हो गई। एक सवाल हर एक के मन में था कि क्या सिया के माँ बाप या भाई सिया के लिए वकील करेंगे, क्योंकि सिया के माँ बाप ने ये कहा था कि अगर उनकी बेटी गुनहगार है तो उसे फांसी दे देनी चाहिए या उसे उसी किले से धक्का देकर मार देना चाहिए।
9: हाँ तो ठीक है ना, आप सिया को फांसी की सजा दे सकते हो।
10: मैं आप माँ हो उसकी?
9: हाँ जी, अगर वो उसने ये
10: मैं तो बोलता हूँ
9: काम किया है तो आप उसे सजा दोगे और जरूर दोगे।
10: अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
0: लेकिन 29 जून को जब सिया और चेतन की पुलिस हिरासत की मियाद खत्म होने वाली थी और कोर्ट में जिरह शुरू, तब पहली बार ये सामने आया कि सिया के घर वाले पिछले 4 दिनों से उसके लिए वकील ढूंढ रहे थे। हालांकि हुआ ये कि एक वकील साहब जिन्हें परिवार ने सिया के केस की पैरवी करने के लिए हायर भी नहीं किया था, वो खुद अपनी मर्जी से सिया का केस लड़ने कोर्ट पहुंच गए, जबकि सिया के भाई ने केस की पैरवी के लिए किन्हीं और वकील साहब को ही हायर किया है।
7: मेरे लॉयर को लेके इशू है जो आशुतोष श्रीवास्तव है, उनको हमने कभी भी हायर नहीं किया है, वो हमारे साथ कभी भी कोऑर्डिनेशन में कभी भी कांटेक्ट में नहीं आए हैं, हम विपुल डिशिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बात हमने जब उनको भी बताई है तो वो हमको थ्रेट कर रहे हैं।
4: क्या आपको लॉयर थ्रेट कर रहे हैं?
7: हाँ जी।
4: तो कुछ पुलिस वुलिस से बात हुई आपकी?
7: इस टाइम पे अभी तक बात नहीं हुई है सर।
4: पुलिस से बात नहीं हुई
7: है? अभी तक बात नहीं हुई सर।
4: तो ये जो मीडिया में आशुतोष श्रीवास्तव आप बोल रहे हो जो अभी आपके बिहाफ ऑफ यू वो बाइट्स दे रहे हैं, मीडिया के साथ बात कर रहे हैं, क्या वो आपके लॉयर नहीं है?
7: हमारे लॉयर नहीं है, हमने विपुल दुशिंग को हायर किया है, उनकी सर्विसेज के लिए हमने उनको अप्रोच किया है, हम उनके साथ 4 दिन से इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं सर।
4: ओके, लेकिन मैंने उनसे बात की थी परसों तो उनका ये कहना था कि सिया ने इसमें उन्हें दस्तखत दी है।
7: ये उन्होंने फोर्सफुली कुछ किया है कुछ नहीं है मुझे मालूम नहीं है सर, ये उन्होंने लॉकअप में उसका सिग्नेचर लिया है, हमको कुछ इस चीज के बारे में उन्होंने इन्फॉर्म किया नहीं है, हमको कॉन्टेक्ट किया नहीं, हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन रखा नहीं है इस चीज के ऊपर से सर। इस चीज के ऊपर हम लोगों ने आज कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि हमारे जो प्रोसीडिंग लॉयर है इसके आगे वो विपुल दिशिंग रहेंगे।
0: हालांकि सोमवार को कोर्ट में पेशी के बाद सिया और चेतन को अदालत ने 3 जुलाई तक यानी अगले 4 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की दलील थी
8: कि सिया को पुणे और मुंबई के बीच उस जगह भी ले जाना है जहां उसने बाली जाने से एन पहले केतन का पासपोर्ट फाड़ कर उसे वॉशरूम में फ्लश किया था। इसके अलावा सिया के बाद चेतन को भी पुलिस अपने साथ लेकर लोहगढ़ किले जा सकती है।
4: केतन अग्रवाल हत्या मामले में अब सिया गोयल और चेतन चौधरी की कस्टडी और चार दिन से बढ़ी है, लेकिन कोर्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ, हमारे साथ सिया के वकील है जो खुद ये सब कुछ बताए गए। शुरुआत तो आज इससे हुई कि वकील कौन है।
11: जी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी, लेकिन बाद में वो सब क्लैरिफाई हुआ। कोर्ट में हमने दलील सिया की तरफ से दलील रखी। सिया को भी कोर्ट ने जब सुना तो सिया ने भी क्लियर टर्म्स में उसने बोला कि शी हैज अपॉइंटेड मी एज हर लॉयर। तो ये वो कंट्रोवर्सी अभी सॉर्टेड है।
4: अहम बात ये है, जब आप डिफेंस के लिए खड़े रहे तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट आपकी ये थी कि ये अरेस्ट इनलीगल है, इसके क्या एग्जैक्टली बेसिस है? आपने अलग अलग चार साइटेशन भी इसमें दिखाए।
11: जी, जब 23 तारीख को सिया को अरेस्ट किया गया था तब उसको BNSS के सेक्शन 47 के तहत उसको एक नोटिस दिया गया था। वो नोटिस देखते हुए, वो नोटिस अगर हम देखेंगे तो वो नोटिस में तीन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उन्होंने दिए हैं। तीन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उन्होंने दिए थे। वो तीन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देखते हुए वो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट सफिशिएंट नहीं है, ऐसा हमने कोर्ट के सामने दलील रखी और कोर्ट ने उसके ऊपर अभी उनका फैसला रिजर्व किया है।
8: वैसे इस बीच एक अजीब सच भी सामने आया है। सिया और केतन का रिश्ता तय करने से पहले दोनों परिवारों ने अपने अपने पंडितों से दोनों की कुंडली दिखाई थी। सिया और केतन की कुंडली बहुत अच्छे से मिल गई। इसी के बाद दोनों की सगाई हुई थी, यानी अब कोई कम से कम इसे कुंडली का दोष तो नहीं कह सकता, कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोष कुंडली का नहीं, इस खूनी इश्क का था, जिसके दोषी ये दोनों हैं, सिया और चेतन। कैमरामैन गोपाल हारने और श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बाबले, पुणे, आज तक।
0: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

चढ़ावा चोरी केस में एसबीआई सहित 6-7 बैंकों को नोटिस। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और सभी वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड पूरा तलब। सभी आरोपियों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी। पीलीभीत में कहा यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा होगा। कर्फ्यू और गुंडागर्दी से लोगों का जीना होगा हराम। कल शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर। नौकरशाही की प्रक्रिया में भी बदलाव के संकेत। यूपी के शामली में इस्लाम कबूलने वाले आयुष मलिक ने फिर से हिंदू धर्म अपनाया। कहा परिवार को परेशान देख कर लिया फैसला। पिता बोले मुस्लिम

जहां गेस्टिंग ऑपरेशन में पहले ही हुआ था कैप्चर, दबोचने के लिए बिहार सहित कई जगहों पर छापेमारी जारी। महाराष्ट्र टीडी पे बली के मामले में भिवंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों आकाश, राजीव और धीरज को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से पेपर बरामद किया गया था। महाराष्ट्र टीडी पे बली के मामले में विपक्ष ने सीबीआई जांच और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को दोहराया। पुणे की स्पेशल कोर्ट ने नसरपुर में 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुनाई। नसरपुर रेप मर्डर मामले में दोषी को फांसी की सजा मिलने पर सीएम फडणवीस ने फैसले पर जताया संतोष, बोले ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। नसरपुर रेप और हत्या केस में कोर्ट के फैसले का सुप्रिया सुले ने स्वागत किया, बोली जल्द से जल्द दी जाएगी फांसी की सजा ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए। नागपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने विश्वास नारंगे पाटिल, आरएसएस कार्यक्रम पर हुए विवाद को लेकर बोले मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास भूमि उपयोग के नियम उल्लंघन पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, वरिष्ठ अधिकारियों के 5 आलीशान बंगले ध्वस्त किए गए। मुंबई के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र में जालना में भी मूसलाधार बारिश, नदी नालों में भर गया पानी। मुंबई के अंधेरी सबवे में पानी भरने से सबवे को बंद कर दिया गया, रूट को किया गया डायवर्ट। गुजरात के साबरकांठा में महिला के लापता मामले के बाद हिंसा, गुस्साई भीड़ ने दुकानों में आग लगाई। महाराष्ट्र के नागपुर में तेज रफ्तार कार पोहे वाले की दुकान में घुसी, लाखों का नुकसान। गुजरात के जामनगर में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से मारपीट, सीसीटीवी के फुटेज सामने आई। गुजरात के द्वारका में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन का सख्त एक्शन, अवैध बॉक्साइट खनन मामले में 2 की गिरफ्तारी। गुजरात के अमरेली गांव में तेंदुए ने पालतू कुत्ते का शिकार किया, रिहायशी इलाकों में हुई घटना से लोगों में दहशत। गुजरात के पाटन में दलित युवक की शादी में हंगामा, दूल्हे को घोड़े से गिराकर मारपीट की गई, जाति सूचक टिप्पणियां हुई, 5 के खिलाफ मामला दर्ज। श्रद्धा कपूर की मच अवेटेड फिल्म ईठा का टीजर रिलीज किया गया, 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वेलकम टू द जंगल का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 3 दिनों में 65 करोड़ से ज्यादा की कमाई। 3 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म अल्फा, फिल्म में आलिया भट्ट, शर्बरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल मुख्य भूमिकाओं में। फिल्म अल्फा का प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंची एक्ट्रेस आलिया और शर्बरी, महिला बाइकर्स के साथ सेल्फी ली। थिएटर में फिल्म देखने पहुंची शर्बरी और वेदांग रैना, मैं वापस आऊंगा पर एक्ट्रेस ने लिखा इमोशनल नोट का, दर्शकों ने फिल्म को अपनाया।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। बात उस हत्याकांड की सबसे पहले करेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। केतन मर्डर केस में आरोपी सिया और चेतन की पुलिस रिमांड 4 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब अगली सुनवाई होनी है 3 जुलाई को। इन 4 दिनों में पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि केतन की हत्या के पीछे असली वजह क्या थी।

लोहगढ़ का ये किला और इस किले की वो गहरी खाई जहाँ केतन अग्रवाल की जान चली गई, वहाँ पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया, तो केतन को धक्का देने वाले सवालों पर और इस साजिश के अलग अलग सवालों का क्या जवाब मिला, पूरे पुलिस को मौके से क्या साक्ष्य मिले। पुलिस रविवार को खाई से खास पुतला लेकर पहुंची थी, तो क्या क्या हुआ था। 18 जून को कैसे केतन को खाई में धक्का दिया गया था, कैसे केतन 340 फीट गहरी खाई में गिरा होगा। खाई में गिरने के बाद जब केतन तड़प रहा था, जिंदगी की भीख मांग रहा था, तब उसकी मंगेतर सिया क्या कर रही थी। जब चेतन ने केतन को धक्का दिया था, उसके बाद सिया और चेतन ने क्या किया था। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए पुणे पुलिस अथक प्रयास कर रही है। 18 जून को ही वारदात की जांच का सबसे अहम पड़ाव था लोहगढ़ किले का ये इलाका। ये वही हिस्सा है जहां केतन को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया गया। वो 340 फीट गहरी खाई में गिरा और दम तोड़ दिया था। उलझाओ और सस्पेंस भरे सवालों के साथ पुलिस 28 जून को ठीक उसी खाई के पास पहुंची। पुलिस के साथ केतन के वजन जितने भार वाला डमी भी था। अब आपको क्राइम सीन को रिक्रिएट किए जाने की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। रविवार को

0: सुबह 7:30 बजे 10 से 15 पुलिस वाले किले में उस जगह पहुंचते हैं। मास्क से चेहरा ढके सिया भी उनके साथ होती है। पुलिस वालों के हाथ में एक डमी था, बिल्कुल केतन की कदकाठी का, उसके जितने ही लंबाई वाला और उतने ही वजन का। सिया के बताए जगह पर पुलिस जाती है, फिर शुरू होता है उससे सवाल जवाब का सिलसिला। पुलिस ने सिया से एक एक सवाल किया और उसी के मुताबिक रिक्रिएशन की प्रक्रिया शुरू होती है। पुलिस ने सिया से जाना कि 18 जून को उस खाई के पास और कौन कौन था, चेतन के साथ उसकी क्या बातें हुई, क्या दोनों में किसी बात को लेकर नाराजगी थी, चेतन को सिया ने मौके पर कितनी देर पहले बुलाया था। ऐसे कई सवाल सिया से किए गए और इसी बीच आता है अब तक का सबसे अहम सस्पेंस। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट करते हुए सिया से कहा कि वो पुतला को खाई में धक्का दे। सिया ने ही पुतले को खाई में ढकेला।
1: जो पुतला बनाया गया था वो केतन अग्रवाल के जैसा था, उसी के वजन का था, ताकि वो नीचे जाने के बाद ये पता चले और ये फाइनलाइज हो सके कि किस तरीके का इम्पैक्ट था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या थे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इम्पैक्ट के बाद पुतले के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो देखना पुलिस चाह रही थी, और उसी की जांच फाइनलाइज हो गई। सबसे अहम यह है कि उसके बाद कुछ फॉरेंसिक के डिटेल्स थे वो कलेक्ट किए गए और सिया को लगभग 10 से 10:30 बजे तक किले को उतरने की शुरुआत हुई और उसी के बाद उसे वापस इसी लॉकअप में लाया गया।
0: खुलासे के मुताबिक सिया और चेतन ने हत्या की गहरी साजिश रची। उसी दौरान तय हुआ था कि किले में ऊंचाई पर पहुंचकर सिया अचानक बैठेगी, ये संकेत होगा कि अब केतन को खाई में धक्का देना है। 18 जून को कुछ ऐसा ही हुआ, सिया बैठी, इशारा मिलते ही चेतन ने तय प्लान के मुताबिक केतन को खाई में धक्का दे दिया। ऐसे में 28 जून को रिक्रिएशन के दौरान सिया ने पुतले को धक्का दिया।
2: उसमें कि उसको वहां पे ले जाके घटना कैसे घड़ी है, क्या एक्चुअली हुआ वहां पे, उसको कवर किया गया है और उसके साथ आगे जो इंट्रोगेशन या जवाब जवाब हो रहे हैं उसमें जो गोष्ठियां अभी हमारे सामने निष्पन्न हो रही हैं वो इन्वेस्टिगेशन के चलते उनको कॉन्फिडेंशियल रख के मैं इतना बोल सकता हूं कि इसमें ये जो केस है इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रगति पर है।
0: अब पुलिस की तैयारी है क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाए और अब की बार पुलिस चेतन से पुतले को धक्का देने को कहेगी। पुणे पुलिस की कोशिश है कि सिया और चेतन के गुनाहों से जुड़े सुराग रिक्रिएशन के जरिए हासिल किए जाएं, उसे वेरीफाई किया जाए और मामले को अंजाम तक पहुंचाया जाए। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार वाबले, पुणे आज तक।
3: महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक का मामला अब एक और बड़े सुनियोजित इंटर स्टेट सिंडिकेट के रूप में सामने आया है। पुलिस ने बिहार के एक व्यक्ति को इसका मास्टरमाइंड माना है और इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए बिहार, यूपी, दिल्ली और हरियाणा में टीमें भेजी गई हैं।
0: ये विरोध प्रदर्शन है महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ, ये आक्रोश है पेपर लीक के खिलाफ। विद्या भवन के भीतर महाविकास आघाड़ी के नेता पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके हाथ में बैनर है जिस पर लिखा है कि पेपर लीक की गुनहगार राज्य सरकार है। हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है कि पेपर लीक कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
4: 10 लाख शिक्षकांची ही परीक्षा आहे टीईटीची, हिचा साधा पेपर सांभाळता येत नाही। भिवंडीमध्ये कोट्यवधी रुपयाचा व्यवहार करून हे पेपर विकल्याचे, याच्यामध्ये शिक्षण मंत्र्याचा काही लोकांचा हात असल्याचे पुरावे समोर येत आहेत। नीटची परीक्षा नीट झाली नाही, नीटचं सुद्धा केंद्रस्थान पेपर फोडीचं हे महाराष्ट्र होतं। बरेच जण म्हटले महाराष्ट्राला का टार्गेट केलं जातं, परंतु टीईटीचा पेपर फुटल्यानंतर हे स्पष्ट झालं की महाराष्ट्रात तर पेपर फोडण्याचे धंदे मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत। कारण सरकारच असं आहे की मला असं वाटतं खासदार फोडण्याबरोबर पेपर फोडण्यामध्ये सुद्धा पुढाकार घेत आहे।
0: दरअसल महाराष्ट्र में 28 जून को टीईटी की परीक्षा होनी थी, मगर 27 जून को ही सुबह भिवंडी में कुछ लोगों के पास प्रश्न पत्र से जुड़ी जानकारी होने की गुप्त सूचना मिली। भिवंडी पुलिस ने उस जगह पर छापा मारा। इसके बाद पुष्टि के लिए महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों को बुलाया गया। जांच करने पर पता चला कि लोगों के पास मौजूद कुछ सवाल टीईटी जून 2026 के प्रश्न पत्र के सवालों से मेल खाते थे। नतीजतन भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई। अब इसी पेपर लीक को विपक्ष महाराष्ट्र में मुद्दा बना रहा है। कह रहा है कि पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश में बीजेपी सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन होगा।
5: तो ये सरकार की औकात नहीं है कि ये 6 लाख बच्चों टीचर लोगों का एग्जाम नहीं ले सकते, वहाँ पे भी पेपर लीक हो रहा है, तो वहाँ 14 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जवाबदारी ये सरकार नहीं ले सकती। और इसलिए ये सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। ये मांग हमारी है, हम विरोध करना शुरू कर दिया, रस्ते पे भी लड़ाई शुरू हो गई, विधानसभा में भी लड़ाई शुरू हो गई और हम लड़ेंगे।
0: कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार से पूछ रही है कि कहाँ है कानून व्यवस्था, क्या कर रहे हैं अधिकारी, क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रहे हैं शिक्षा मंत्री और क्यों हो रहा है पेपर लीक।
6: एवरी टेस्ट पेपर इज लीक्ड एंड यू नो वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, व्हाट द एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग, व्हाट द अथॉरिटीज आर डूइंग। आई थिंक इट इज द फेलियर एट वेरियस लेवल्स एंड द कॉमन मैन इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस।
0: अब सवाल उठ रहे हैं कि कब तक होते रहेंगे पेपर लीक, पेपर लीक रोकने में क्यों नाकाम है सरकार, पेपर लीक कराने वाले माफियाओं का क्यों नहीं टूट रहा सिंडिकेट, बार बार पेपर लीक कराने में क्यों कामयाब हो जाते हैं माफिया, छात्रों के भविष्य से कब तक होता रहेगा यूं ही खिलवाड़। ये वो सवाल है जो हर छात्र पूछ रहा है, हर शिक्षक पूछ रहा है, हर अभिभावक पूछ रहा है और हर वो आदमी पूछ रहा है जिसका देश से सरोकार है, क्योंकि जो जानकारी सामने आई है वो हैरान करने वाली है। देखिए, महाराष्ट्र में टीईटी के पेपर लीक का मास्टरमाइंड है ये, इसका नाम है विजेंद्र गुप्ता, इसी ने टीईटी का पेपर लीक कराया। ये वही विजेंद्र गुप्ता है जिसका स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने किया था। आज तक के कैमरे में विजेंद्र गुप्ता पहले भी ये कहते हुए कैद हो चुका है कि पेपर लीक कराना उसका धंधा है और जेल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इतना खुल्लम खुल्ला अपने गुनाह का ढिंढोरा पीटने के बाद भी विजेंद्र गुप्ता पर कोई खास एक्शन नहीं हुआ और फिर वही महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड निकला। अब इसको पकड़ने के लिए बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है।
7: जिन्होंने भी ये काम किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये सरकार का धोरण है और इसके लिए एक एसआईटी भी गठित की गई है। और हम सबको ये पता है 28 तारीख को ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला था, लेकिन 27 तारीख को ही पुलिस डिपार्टमेंट को अननोन गोपनीय मालूमात मिलने के बाद डिपार्टमेंट ने सुमोटो खुद ट्रैप किया और ये स्कैंडल ओपन किया है। तो मैं समझता हूँ पूरे डिटेल में एसआईटी इंक्वायरी करेंगी और जिन्होंने गलत काम किया है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होंगे, जरूरत पड़ी तो मकोका अंतर्गत भी इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
0: बताया जा रहा है कि विजेंद्र गुप्ता की तलाश में यूपी बिहार समेत कई जगहों पर अलग अलग टीमें भेजी गई हैं और इसकी तलाश जारी है। लेकिन इस तलाश के साथ ही सवाल भी उठ रहा है कि अगर प्रशासन पहले ही इतनी मुस्तैदी दिखाता तो पेपर लीक होता ही नहीं। आज तक पेरो।
3: और अब बात करेंगे मुंबई को दहलाने की आतंकी साजिश के बारे में। ये साजिश रची गई थी मुहर्रम पर, जिसमें पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसने मुहर्रम पर मातम मनाने वालों को 15,000 जहर के कैप्सूल बांटने की योजना बनाई थी। कुछ लोगों को उसने कैप्सूल बांट भी डाले जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस फैयाज प्रेम जी के आतंकी संबंधों को खंगाल रही है।
8: शुक्रवार को मुंबई में ऐसे ही मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। लोग करबला की जंग को याद करते हुए अपने गम का इजहार कर रहे थे, खुद को लहूलुहान कर रहे थे और इसी दौरान फैयाज प्रेमजी ने जुलूस में शामिल लोगों को जहर बांटना शुरू किया। फैयाज प्रेमजी पकड़ा गया, नहीं तो मुंबई में मुहर्रम के इस जुलूस में कोहराम मच जाता, क्योंकि फैयाज की बड़ी संख्या में लोगों को मारने की साजिश थी। फैयाज ने लोगों को जिंक फॉस्फाइड यानी कि चूहा मारने की दवा के कैप्सूल दिए। मातम कर रहे लोगों को कैप्सूल ये कहकर दिया गया कि ये पेन किलर है। कुछ लोगों ने कैप्सूल खाया तो उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस की जांच शुरू हुई और फिर पकड़ा गया फैयाज और इसके साथ ही उसकी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। पता चला कि फैयाज को मुहर्रम जुलूस में 15,000 कैप्सूल बांटने थे और उसकी बड़े स्तर पर सामूहिक नरसंहार की योजना थी।
9: पुणे रहवासी फैयाज प्रेम जी, जिसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो भाईकला में मुहर्रम के जुलूस के समय कैप्सूल बांट रहा था। ये कहकर ये कैप्सूल बांट रहा था कि ये कैप्सूल दर्द निवारक है, पेन किलर कैप्सूल है, पर इस कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड यानी चूहे मारने की दवा उसने मिलाई हुई थी और सामूहिक हताहत, सामूहिक कैजुअल्टी करने के उद्देश्य से उसने ये कैप्सूल बांटे। जब पुलिस को कंप्लेंट मिली कि एक आदमी ये कैप्सूल लेकर बीमार पड़ गया है, उससे वॉमिटिंग हो रही है, उससे उल्टियां हो रही है, तब फैयाज प्रेम जी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अब कहें, आपको बता दें कि और दो ऐसे ही पेशेंट सामने आए हैं जिनको तकलीफ हुई है फैयाज प्रेम जी से ये कैप्सूल लेने के बाद। करीब 15,000 कैप्सूल फैयाज प्रेम जी ने बनाए थे जिसमें चूहे मारने की दवाई उसने मिलाई थी और सामूहिक कैजुअल्टी करने का उसका उद्देश्य था, सामूहिक कैजुअल्टी, सामूहिक हताहत करने का उसका उद्देश्य था मुहर्रम के इस रैली में, इस प्रोसेशन में, इस जुलूस में जिसको उसने टारगेट किया था।
8: पुलिस ने जब पुणे के रहने वाले फैयाज की जांच पड़ताल की तो बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि फैयाज कई बार ईरान और इराक की यात्रा पर गया था। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या फैयाज का किसी आतंकी संगठन से कोई संबंध है या नहीं। कहीं किसी आतंकी संगठन के कहने पर उसने इस सामूहिक नरसंहार की साजिश तो नहीं रची थी। इसके अलावा पुलिस ये भी पता लगा रही है कि फैयाज को जहरीले कैप्सूल बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहां से मिला, और इसके अलावा क्या फैयाज इस साजिश में अकेला शामिल था या फिर उसके साथ कोई दूसरा सहयोगी भी है। इसीलिए मुंबई पुलिस की टीमें इस वक्त दो राज्यों में गई हैं ताकि फैयाज के आतंकी नेटवर्क का पता लगाया जा सके।
9: काफी बार वो ईरान इराक भी गया है। पुलिस अब ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या इसमें कोई आतंकी साजिश तो नहीं, क्या किसी आतंकी संगठन से फैयाज प्रेम जी का कोई संबंध तो नहीं, क्या उसकी कोई कम्युनिकेशन है। इसीलिए उसके मोबाइल की जांच की जा रही है, उसका CDR निकाला गया है। पुलिस टीम अभी दो और प्रांत, महाराष्ट्र के बाहर दो प्रांतों में गई हुई है जहां पर पुलिस ये पता लगा रही है कि जो रॉ मटेरियल सप्लायर थे जिन्होंने कैप्सूल और जिंक फॉस्फाइड यानी कि जो चूहे मारने की दवा है वो फैयाज प्रेम जी को सप्लाई की थी, वो कैसे सप्लाई हुई थी। इसीलिए दो और प्रांतों में पुलिस गई हुई है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या और सह आरोपी कोई शामिल था फैयाज प्रेम जी के साथ, फैयाज प्रेम जी का कोई साथी भी इस पूरे षड्यंत्र में, इस साजिश में शामिल है या नहीं।
8: अभी पुलिस को फैयाज से उन 15,000 जहरीले कैप्सूलों को भी बरामद करना है जिनका इस्तेमाल करके वो इस नरसंहार को अंजाम देना चाहता था। इसीलिए पुलिस ने आज उसकी 7 दिनों की पुलिस रिमांड मांगी। फिलहाल अदालत ने फैयाज को 4 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा है।
9: उसकी 7 दिन की कस्टडी पुलिस ने मांगी। कोर्ट ने पुलिस के आरोप सुनने के बाद, पुलिस की दलीलें सुनने के बाद 4 जुलाई तक फैयाज प्रेम जी को पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया है। आगे की जांच पुलिस अभी भी कर रही है। आतंकी संगठन से संपर्क होने का भी शक पुलिस को है। ईरान इराक के जो दौरे फैयाज ने किए हैं उससे भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है।
8: अब 4 जुलाई तक की पुलिस रिमांड में पुलिस फैयाज से सबसे पहले उन जहरीले कैप्सूलों को बरामद करेगी और इसके अलावा उसके आतंकी नेटवर्क का भी पता लगाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फैयाज लोन वुल्फ था या फिर वो किसी बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा था। दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
3: महाराष्ट्र के पुणे जिले के नसरपुर में 4 साल की नन्ही सी बच्ची से दरिंदगी करने और उसकी बेरहमी से हत्या करने के दोषी भीमराव कांबले को कोर्ट ने सजा सुना दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 65 वर्षीय विनोद कांबले को फांसी पर चढ़ाया जाए।
8: ये आदमी नहीं, हैवान है। 65 साल का जीता जागता जानवर, मगर ये जानवर ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है क्योंकि अदालत ने इसे फांसी की सजा सुना दी है। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम भीमराव कांबले है। भीमराव कांबले ने बीती 1 मई को पुणे के नसरपुर इलाके में घर के बाहर खेल रही एक 4 साल की बच्ची का अपहरण किया, उसके साथ रेप किया और फिर उसका सिर कुचलकर उसे बेरहमी से मार डाला। कांबले की गिरफ्तारी हुई, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचा और 2 महीने के भीतर अदालत ने अपना आदेश सुना दिया। कांबले को फांसी की सजा,
10: लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाए या फिर इसको फांसी की सजा दी जाए, तो काफी लंबा डिबेट हुआ था। उस डिबेट में, डिबेट को सुनने के बाद माननीय कोर्ट ने आरोपी को मिटिगेटिंग जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके आधार पे टाइम दिया, तो आज 29 जून उस केस का जजमेंट आया है।
8: अदालत ने फैसला सुनाते वक्त ये भी कहा कि भीमराव कांबले ने जो गुनाह किया है उसके लिए फांसी की सजा भी कम है, पर अफसोस इससे बड़ी सजा कानून की किताब में नहीं है। बताया जा रहा है कि कांबले को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। दोषी पाए जाने के बाद उसने अदालत में स्वीकार किया था कि उसे किसी तरह का अफसोस नहीं है। अब जब इसे फांसी की सजा हुई है तो बच्ची का परिवार खुश है और इसे फंदे पर लटकते देखना चाहता है।
11: सजा हुई है और जो हम अपेक्षा कर रहे थे न्याय व्यवस्था से वो अभी पूरी हो रही है, वो तब तक पूरी होगी जब कुछ फांसी की अमल बजानी होगी और बहुत ज्यादा हमको समाधान होगा।
8: भीमराव कांबले के मामले में जिस तरह की तेजी दिखाई गई वो काबिले तारीफ है। इतने कम समय में कोर्ट की कार्रवाई पूरी हुई और सरकार कोर्ट का और पुणे प्रशासन का धन्यवाद दे रही है।
12: आरोपी को फांसी मिल गई, मैंने अभी स्टेटमेंट दिया है, ये मैं कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो नसरापुर हत्याकांड जो है एक बहुत ही रेयर में से रेयर केस था और इसीलिए ऐसे आरोपी जो मानवता के लिए कलंक है ऐसे लोगों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है।
13: पूरे सदन ने माननीय न्याय देवता, पुलिस डिपार्टमेंट, सरकारी वकील और जिन्होंने इस केस को यहाँ तक लाने के लिए सहकार्य किया सबका अभिनंदन किया है और मैं समझता हूँ एक सैंपल सेट होगा कि आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा गलत काम करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो सकती है, ऐसा एक अच्छा सैंपल इस माध्यम से सेट हुआ है।
8: भीमराव कांबले जैसे लोग समाज में किसी कोड़ से कम नहीं है, वरना 4 साल की बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत भला कौन करता है। इसीलिए सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी कोर्ट के फैसले की तारीफ कर रहा है।
5: ऐसे लोगों को महिलाओं के अत्याचार के प्रकरण में ऐसे जो भी है लोग हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक में केस चलना चाहिए और तुरंत ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, तभी समाज सुरक्षित रहेगा।
6: प्रोनाउंसमेंट बाय द कोर्ट एंड इन अ फास्ट ट्रैक मैनर, आई थिंक इट इज अ वेलकम जजमेंट।
8: अब इंतजार है उस पल का जब इस आदमी को फंदे पर लटकाया जाएगा।
14: सिर्फ 15 दिन में पुणे के ग्रामीण पुलिस ने सभी सबूतों को इकट्ठा किया और चार्जशीट फाइल कर दी। इतना ही नहीं बल्कि 16 दिन तक इस पूरे मामले में हियरिंग चली और हियरिंग के बाद कोर्ट ने लगभग 55 से 60 दिन में एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया। पुणे के हिस्ट्री में ये सबसे अहम जजमेंट है क्योंकि जितने भी सबूत इकट्ठा किए थे उन सभी को क्रॉस वेरीफाई करना हो, इस पूरे मामले में डिजिटल एविडेंसेस हो, सभी को कलेक्ट किया गया और इतना ही नहीं बल्कि लगभग 45 डेज में सभी जांच पूरी होकर चार्जशीट फाइल होकर इस पूरा मुकदमा भी पूरा हो गया और 60वें दिन इसका फाइनली नतीजा सामने आया और कोर्ट ने भीमराव कांबले को इस पूरे मामले में दोषी करार दिया। इतना ही नहीं बल्कि उसे अब फांसी की सजा होगी। कैमरा पर्सन गोपाल हाथे के साथ उपकार वाबले आज तक पुणे।
3: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
16: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
17: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
15: Presented by
18: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: TalkSport presents The S Word with Will Gavin and Master Tesfasyon.
2: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
3: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
2: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
3: Remember, around here, we use the F Word.
2: Never the S Word.
1: The S Word, available now on TuneIn,
4: wherever you get your podcasts,
1: and on the S Word YouTube channel.
5: ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। एक कार को पीछे से दूसरी कार ने भयानक टक्कर मारी। तस्वीरें सहारनपुर में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र की हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर कट पार कर आगे निकल गया था और निर्माणाधीन हाईवे की ओर लौटने के लिए कार बैक कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर कई मीटर तक घिसटते चली गई, जबकि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चार लोगों की जान चली गई, जबकि तीन बुरी तरह घायल। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार कार ने यहां बाइक सवार को टक्कर मार दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शहर के व्यास वाड़ी चार रास्ता पर यह तेज रफ्तार सफेद कार इधर से आती है, सामने से एक बाइक पर तीन युवक आ रहे हैं। अचानक कार ने बाइक को टक्कर मारी, टक्कर मारकर कार सवार फरार हो गया, जबकि तीनों युवकों की हालत गंभीर है। आज तक ब्यूरो
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चढ़ावा चोरी केस में एसबीआई सहित 6-7 बैंकों को नोटिस। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और सभी वित्तीय लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड तलब। सभी आरोपियों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी। पीलीभीत में कहा यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा होगा। कर्फ्यू गुंडागर्दी से लोगों का जीना होगा हराम। आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर। नौकरशाही में प्रक्रिया के बदलाव के भी संकेत। बिहार के भोजपुर में भरत एनकाउंटर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने की है सीबीआई जांच की मांग। और यूपी के शामली में इस्लाम कबूलने वाले आयुष मलिक ने फिर से हिंदू धर्म अपनाया। कहा परिवार को परेशान देकर लिया फैसला। पिता बोले मुस्लिम लड़की ने किया था ब्रेन वॉश।

आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, कई अहम सुधारों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की सेशेल्स की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा संपन्न, सेशेल्स दौरे को बताया सार्थक, बोले दोनों ही देशों के लिए अगले 50 साल नवाचार और साझा समृद्धि के लिए होंगे। विक्टोरिया के पीस पार्क में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, बापू को नमन भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 1 जुलाई तक आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, राज्य के 2 विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन, उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को ऑपरेशन सिंदूर में नेतृत्व और रणनीतिक योगदान के लिए राष्ट्रपति ने दिया सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। तेलंगाना दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने वारंगल के भद्रकाली माता मंदिर में दर्शन किए, साथ ही तेलंगाना में बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री संग बड़ी बैठक, मीटिंग में हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहे मौजूद। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जांच तेज हुई, अनिल मिश्रा गोपाल राव समेत 80 लोगों को नोटिस, चंपत राय का बयान दर्ज। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, 6 बैंकों को नोटिस जारी। आज अयोध्या जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, अजय राय के नेतृत्व में रामलला के दर्शन करेंगे 9 सांसद। सनातन पांडे ने एसआईटी जांच पर गंभीर आरोप लगाए, बोले एसआईटी जांच स्क्रिप्टेड थी, बड़ी मछलियों को बचाया गया। सहारनपुर में नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद राम मंदिर चोरी को लेकर भड़के, कहा राम मंदिर के नाम पर लूट हुई है, बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। यूपी के पीलीभीत को में सीएम योगी ने विकास की सौगात दी है, 569 करोड़ रुपए की लागत वाली 66 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करने के दौरान समाजवादी पार्टी में जमकर बरसे सीएम योगी, कहा यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा होगा, कर्फ्यू गुंडागर्दी से लोगों का जीना आराम होगा। मुरादाबाद को सीएम योगी ने करोड़ों की सौगात दी, विपक्ष को बताया विकास विरोधी, अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सीएम योगी का अखिलेश पर हमला, बोले 9 साल पहले समाजवादी सरकार में मुरादाबाद उपद्रव के लिए जाना जाता था, अब नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, 2 जुलाई को शुभेंदु कैबिनेट के ड्राफ्ट को मिलेगी मंजूरी, सीएम ने कहा कि अगस्त में लाएंगे यूसीसी बिल। सीबीएसई की नई 3 भाषा नीति से 10वीं के छात्रों को बड़ी राहत, मौजूदा बैच पर लागू नहीं होगा नियम, पॉलिसी को लेकर सीबीएसई की नई गाइडलाइंस जारी। दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होगी नई ईवी पॉलिसी, सीएम रेखा गुप्ता बोली 4 साल में 15,000 करोड़ का निवेश होगा। ईवी खरीदने पर ग्राहकों को बड़ी छूट और सब्सिडी देने की प्लानिंग है, 1 जुलाई 2026 से लागू ईवी पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी, दिल्ली में प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम। महाराष्ट्र विधान परिषद में खाली उपसभापति के लिए चुनाव की घोषणा, 1 जुलाई को मतदान। पुणे केतन मर्डर केस में आरोपी सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी, 3 जुलाई तक बढ़ी है पुलिस कस्टडी। पुणे पुलिस ने कहा है कि सिया चेतन के फोन से डिलीट डेटा की रिकवरी कर फॉरेंसिक जांच करनी है, साथ ही केतन के गायब पासपोर्ट पर सिया से सवाल जवाब। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड निकला है बिजेंद्र गुप्ता, आज तक ने 2024 में पटना के स्टिंग ऑपरेशन से पहले किया था कैप्चर, दबोचने के लिए बिहार समेत कई राज्यों में छापेमारी जारी। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को, आकाश, राजीव और धीरज को गिरफ्तार कर लिया, उनके पास से पेपर बरामद किया गया। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में विपक्ष ने सीबीआई जांच और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। पुणे की स्पेशल कोर्ट ने नसरपुर में 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुनाई। नसरपुर रेप केस मामले में दोषी को फांसी की सजा मिलने पर सीएम फडणवीस ने फैसले पर जताया संतोष, बोले ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। नसरपुर रेप और हत्या केस में फैसले को सुप्रिया सुले ने स्वागत किया, बोली जल्द से जल्द दी जाए फांसी की सजा। नागपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने विश्वास नांगरे पाटिल, आरएसएस कार्यक्रम पर हुए विवाद को लेकर बोले मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल का प्रदर्शन, बिजली घर पर दर्ज मुकदमे के विरोध में बिजली विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय की बिजली काटी गई। बेगूसराय में बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन की मांगों को लेकर आमरण अनशन, अंबेडकर प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे। गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास भूमि उपयोग के नियम उल्लंघन पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, वरिष्ठ अधिकारियों के 5 आलीशान बंगले ध्वस्त किए गए। मंगोलिया में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 में भारतीय सेना के जवानों ने दिखाया रण कौशल, ऑपरेशन तैयारियों का भी प्रदर्शन। भारतीय सेना की एक और बड़ी उपलब्धि, मेडिकल टास्क फोर्स ने पूरी तरह से काम करने वाला फील्ड हॉस्पिटल बनाया। अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी की हुई पहली पूजा, एलजी मनोज सिन्हा ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। अमरनाथ यात्रा को लेकर
और सुरक्षा को लेकर एजेंसियों का मॉक ड्रिल, पुलिस ने सभी यात्री निवास का निरीक्षण किया। कुलगांव में अमरनाथ यात्रा से पहले नेशनल हाईवे पर जवानों ने मॉक ड्रिल किया, यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया अभ्यास। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 108 कलशों से पवित्र जल से भगवान जगन्नाथ का बलभद्र देवी सुभद्रा का महाभिषेक करवाया गया। 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा उत्सव, ओडिशा के सीएम मोहन मांझी, समित पात्रा और धर्मेंद्र प्रधान ने मंदिर में मत्था टेका। विराट के जुनाई में बाढ़ का कहर, डिकारी नदी के उफान से 15 से ज्यादा लोग टापू पर फंसे, राहत और बचाव का काम जारी। असम में भारी बारिश के कारण सड़कें धंस गई हैं। धेमाजी जिले में केमी नदी पर बना 300 मीटर लंबा लोहे का पुल भी बहा, जुनाई से सड़क संपर्क पूरी तरह से टूटा। धेमाजी में सिमेन नदी में आई बाढ़ में 4 लोग बहे, 1 लापता, 3 को ग्रामीणों ने बचाया। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, कई इलाकों में रास्ते बंद हो गए। प्रदेश के गृह मंत्री बोले, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और वायुसेना राहत कार्यों में तैनात। दिल्ली एनसीआर में अचानक से बदल गया मौसम का मिजाज, बारिश के बाद चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। पंजाब के गुरदासपुर में रावी नदी में अचानक से पानी छोड़े जाने के बाद मकोका पतन पर बना हुआ पुल बह गया था, 7 गांव का संपर्क टूटा। पटना के कई इलाकों में आज हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। बिहार के रोहतास में मूसलाधार बारिश के बाद सदर अस्पताल में जलभराव, पूरे परिसर में पानी भरने से बढ़ गई है लोगों की परेशानी। राजस्थान में जल्द खत्म हो सकता है मानसून का इंतजार, 2 जुलाई से राजस्थान में मानसून के एक्टिव होने का अनुमान। 2 से 5 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश होने का आसार, कोटा और उदयपुर में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। असम में जोरहाट में हार्डवेयर गोदाम में भयंकर आग लगी थी, 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। गुजरात के साबरकांठा में महिला के लापता होने के बाद गुस्साई भीड़ ने हिंसा की, दुकानों में आग लगा दी। अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर कैरी खाई में गिर गई थी कार, 4 की मौत हुई, 2 घायल हुए। कानपुर देहात में सड़क पार करते समय भीषण हादसा, प्रतिबंधित रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने महिला को टक्कर मारी, मौके पर मौत हुई। गुजरात के जामनगर में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से मारपीट, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। जयपुर में निर्माणाधीन रिसॉर्ट की दीवार गिरने से मलबे में दब गए थे कई मजदूर, अब तक 3 मजदूरों की मौत हुई, कई घायल हुए। गंगानगर में होटल में 13 साल के मासूम के साथ रेप के मामले में आक्रोश, एसपी और कलेक्ट्रेट के बाहर लोगों का प्रदर्शन, होटल पर बुलडोजर की मांग। कर्नाटक के मंगलुरु हाईवे पर बदमाशों ने सराफा कारोबारी से 180 ग्राम सोना लूटा, सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें सामने आई। जयपुर हाईवे पर सीएनजी से भरे हुए ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी हुई बस में पीछे से टक्कर मारी, 3 की मौत हुई, 6 घायल हुए। मुजफ्फरपुर के क्लब में 50 लाख रुपए के जेवर चोरी करने का पुलिस ने खुलासा किया, 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया, लाखों की नकदी और चोरों से जेवर बरामद किए गए। इंदौर में बिना अनुमति आयोजित हुई हाई प्रोफाइल हाउस पार्टी पर पुलिस का छापा, पार्टी शुरू होने से पहले 6 आयोजकों पर केस दर्ज। महाराष्ट्र के नागपुर में तेज रफ्तार कार पोहे वाली दुकान में घुस गई, लाखों का नुकसान। गुजरात के द्वारका में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन का सख्त एक्शन, अवैध बॉक्साइट खनन मामले में 2 की गिरफ्तारी। गुजरात के अमरेली गांव में तेंदुए ने पालतू कुत्ते का शिकार किया, रिहायशी इलाकों में घटना होने से दहशत। तेलंगाना के निजामाबाद में एक स्कूल में उर्दू पढ़ाने को लेकर विवाद, बीजेपी के नेताओं और पेरेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड के जमशेदपुर में ब्रेन मलेरिया का कहर है, 48 घंटे में 3 बच्चों की मौत से हड़कंप। एमपी के खंडवा में अतिक्रमण हटाने पहुंचे वन विभाग की टीम पर हमला, महिलाओं की आड़ में बरसाए गए 30 पत्थर, 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा 1 में रेलवे विहार में गंगाजल पाइपलाइन के खुले गड्ढे में गिर गई थी कार, बाल बाल बची युवक की जान। गुजरात के पाटन में दलित युवक की शादी में हंगामा, दूल्हे को घोड़े से गिराकर मारपीट की गई, जाति सूचक टिप्पणी, 5 के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र गोवा सीमा पर वज्र झरने से 6 युवक फंसे, 18 घंटे के बाद वन विभाग और दमकल की टीम ने रेस्क्यू किया। श्रद्धा कपूर की मच अवेटेड फिल्म ईटा का टीजर रिलीज किया गया, 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वेलकम टू द जंगल का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 3 दिनों में 65 करोड़ से ज्यादा की कमाई। 3 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म अल्फा, फिल्म में आलिया शर्बरी, अनिल और बॉबी देओल मुख्य भूमिकाओं में। फिल्म अल्फा के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे एक्ट्रेस आलिया और शर्बरी, महिला बाइकर्स के साथ सेल्फी ली। थिएटर्स में फिल्म देखने पहुंचे शर्बरी और वेदांग रैना, मैं वापस आऊंगा पर एक्ट्रेस ने लिखा इमोशनल नोट, कहा दर्शकों ने फिल्म को अपनाया।
इस साल अप्रैल जून तिमाही में भारतीयों के करीब 50 टन पुराना सोना बेचा है। कीमतों में गिरावट की आशंका के बीच मुनाफा वसूली के लिए पिछले साल की इसी तिमाही से 43% ज्यादा गोल्ड बेचा गया। ताइवान और दक्षिण कोरिया के पीछे छोड़कर भारत एक बार फिर से दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना। एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर में कमजोरी के बाद इन देशों के मार्केट में आई है गिरावट। इस बार पड़ी रिकॉर्ड गर्मी ने 1.1 लाख करोड़ के सॉफ्ट ड्रिंक्स बाजार का गणित बदला। इस सीजन लस्सी और छाछ की बिक्री 40% से ज्यादा बढ़ी। युवा ग्राहकों के बीच हेल्दी ड्रिंक्स का बढ़ा चलन। जेपी मॉर्गन के मुताबिक टैक्स सुधारों और नीतिगत बदलावों से घरेलू निवेशक बना बाजार में बने रहे। विदेशी निवेशकों की निकासी के बावजूद घरेलू निवेश के दम पर भारतीय शेयर बाजार स्थिर रहा। आइबन और टोनिनो लिम्बोर्गिनी ने भारत का पहला लग्जरी एलिवेटर कलेक्शन लॉन्च कर दिया है। इटालियन डिजाइन और भारतीय इंजीनियरिंग की इस साझेदारी में 100 करोड़ रुपए निवेश करेगी कंपनी। अमेरिका ईरान के बीच होने वाली कतर की बैठक पर आज सबकी नजरें। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कतर में अमेरिका के साथ अभी कोई बैठक तय नहीं। नेटो शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिटिश पीएम स्टामर ने नेटो चीफ मार्क रूटे के साथ मुलाकात की है और ईरान के साथ बढ़ते हुए तनाव और हॉर्मुज विवाद को लेकर चर्चा। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वादेफुल ने वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात की, नेटो में हिस्सेदारी और यूक्रेन जंग को लेकर चर्चा। फ्रांस दौरे पर ओमान के सुल्तान ने राजधानी पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात की। दोनों ही देशों के बीच शिक्षा, संस्कृति, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में कई समझौते। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार माना यूक्रेनी हमलों से रूसी ईंधन सुविधाओं को नुकसान पहुंचने की बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूक्रेन में रूस की सेना का भीषण हमला, 2 अलग अलग जगहों पर 8 लोगों की मौत। डिनिप्रो में 5 और 28 घायल हुए। जपोरजिया में मिनी बस को निशाना बनाया गया, 3 की मौत हुई, 7 घायल। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के स्ट्राइक, पाकिस्तान की सेना के हमले में 36 लोगों की मौत, 160 घायल। रिहायशी इलाके को बनाया गया था निशाना। जर्मनी के उत्तर शहर शाडे में अंधाधुंध फायरिंग हुई है, 6 लोगों की मौत की खबर, कई लोग घायल हुए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिका के कोलोराडो यूटा इलाके में जंगल में भीषण आग लगी। आग में जलकर 3 दमकल कर्मियों की मौत, 2 दमकल कर्मी बुरी तरह से झुलसे। विंबलडन के दूसरे दौर में पहुंचे दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिन्हा, पहले मैच में सर्बिया के खिलाड़ी को हराया।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम उस खौफनाक साजिश की पड़ताल करेंगे जो अगर अंजाम तक पहुंच जाती तो मुंबई ही नहीं पूरा देश सांप्रदायिक आग में झुलस सकता था। मुंबई पुणे पुलिस ने पुणे के एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने 50 किलो चूहे मारने का जहर 30,000 खाली कैप्सूल्स खरीदे थे। आरोप है कि इन कैप्सूल्स में जहर भरकर उन्हें मुहर्रम के जुलूस में शामिल शिया मुसलमानों तक पहुंचाया जाना था ताकि एक साथ हजारों लोगों की जान ली जा सके। सोचिए, अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो अंजाम कितना भयानक होता। देशभर में तनाव फैल सकता था, दंगे भड़क सकते थे, सामाजिक सौहार्द की ऐसी चोट पहुंचती जिसकी भरपाई सालों तक नहीं हो पाती। आज हम इस खबर को सबसे पहले इसलिए दिखाएंगे ताकि देश ये समझ सके कि नफरत और हिंसा की साजिशें अब कितनी संगठित, कितनी योजनाबद्ध, कितनी खतरनाक होती जा रही है। और इसके बाद हम पूछेंगे कि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी के मामले में बुलडोजर वाला न्याय अब तक अयोध्या से नदारद क्यों है। हम आपको लवकुश मिश्रा का वो आलिशान महल दिखाएंगे जो प्रभु श्री राम के चरणों से चुराए गए चढ़ावे से तैयार हुआ। हमारी तफ्तीश बताती है कि मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा ने ऐसी अंधेर गर्दी मचाई कि हाईवे किनारे की जमीनें परिवार के नाम पर खरीदी गई, 20,000 रुपए की तनख्वाह में 50-50 लाख की इमारतें खड़ी हो गई और उन्हें यकीन था कि उनकी करतूतों से कभी पर्दा नहीं उठेगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इन चढ़ावा चोरों ने इंसानों के लगाए सीसीटीवी कैमरों को भले धोखा दे दिया हो, लेकिन ये प्रभु श्री राम के उस अदृश्य सीसीटीवी से नहीं बच सके जो केवल हाथों की चोरी नहीं बल्कि नियत और स्वार्थ को भी रिकॉर्ड करता है। और इसके बाद हम आपको पुणे हत्याकांड का वो चेहरा दिखाएंगे जहां प्यार नहीं, स्वार्थ भय और बच निकलने की कोशिश दिखाई देती है। अब तक आपने यही सुना कि सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, साथ रहना चाहते थे। लेकिन अब जानते हैं क्या, अब पुलिस हिरासत से जो कहानी बाहर आ रही है उसने इस तथाकथित प्यार की पूरी बुनियाद पर सवाल खड़े कर दिए। सूत्रों के मुताबिक सिया और चेतन अब एक दूसरे पर ही हत्या का ठीकरा फोड़ रहे हैं, मतलब जब पकड़े गए तो एक दूसरे पर ठीकरा, सारी मोहब्बत हवा हो चुकी है। दोनों खुद को निर्दोष और दूसरे को मुख्य साजिशकर्ता बताने में जुटे हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इससे सजा कम करवाई जा सकती है, कानूनी राहत ली जा सकती है, जमानत की संभावनाओं को भी मजबूत किया जा सकता है। सोचिए, इसी प्यार के लिए इन दोनों ने केतन को मार डाला। और आखिर में हम आपको जलता यूरोप दिखाएंगे। उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि थोड़ी सी राहत अभी दिल्ली एनसीआर में आई है, हल्की फुल्की बारिश हुई है, लेकिन ज्यादातर उत्तर भारत में जबरदस्त तपती गर्मी है। भारत के लोग इस गर्मी को सहन करते हैं लेकिन यूरोप में गर्मी ने गदर मचा दिया है। फ्रांस की हालत यह है कि वहां 1,000 से ज्यादा लोग हीट वेव के कारण मारे जा चुके हैं जबकि पूरे यूरोप में 1,300 से ज्यादा जाने गर्मी के कारण गई है। आज हम आपको ये बताएंगे कि यूरोप में गर्मी जानलेवा क्यों हुई और ऐसा क्यों है कि भारत के लोग 45 डिग्री ही नहीं 50 डिग्री का पारा भी झेल लेते हैं लेकिन यूरोप के देश 35 डिग्री पर ही जलने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले आप कल्पना कीजिए कि अगर मुहर्रम के जुलूस में हजारों लोगों को कुछ हो जाता तो कैसे हालात बन जाते। पुलिस के मुताबिक उसने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसके पास जानते हैं क्या था, 30,000 कैप्सूल्स, 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड मौजूद था। जिंक फॉस्फाइड क्या है? जिंक फॉस्फाइड का मतलब है चूहे मारने वाला जहर। यही नहीं, इस व्यक्ति ने इस जिंक फॉस्फाइड को 14,900 कैप्सूल्स में भर भी लिया था और ये इन कैप्सूल्स को मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुए मुसलमानों को ये कहकर दे रहा था कि एक पेन किलर कैप्सूल है। आप पहले ये वीडियो देखिए।

0: वैसे तो हम आगे आपको अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला भी दिखाएंगे, अन्य भी जो बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन हमें लगा कि ये आज एक बड़ी खबर है और आपको दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर ये व्यक्ति कामयाब हो जाता तो इससे इस देश में कोहराम मच जाता। आप खुद सोचिए कि यहां तो हजारों लोगों को मारने की ये साजिश रची जा रही थी। ये पूरा मामला मुंबई के सबसे बड़े मुहर्रम जुलूस का है, जहां एक व्यक्ति शिया मुसलमानों को दर्द की दवा बताकर कुछ कैप्सूल्स बांट रहा था। इसी दौरान जब एक लड़के ने कैप्सूल खाने के बाद उल्टी पेट दर्द की शिकायत की तो पुलिस को शक हुआ और जांच में बड़ी मात्रा में जहरीले कैप्सूल्स बरामद किए गए। इस घटना की सबसे डराने वाली बात तो यह है कि इसमें किसी बंदूक या बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया, एक साधारण कैप्सूल जिसको हथियार बनाया गया, जिस पर लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी कुल 30,000 जहरीले कैप्सूल्स मुसलमानों के बीच बांटने वाला था और इनमें हर कैप्सूल में 1 ग्राम चूहे मारने का जहर भरा गया था। यहां सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि साजिश प्रेमजी नाम के एक व्यक्ति ने रची और नाम से ये व्यक्ति कई लोगों को हिंदू लग रहा है, और अभी ये बात फैलाने की कोशिश हो रही है कि एक हिंदू व्यक्ति ने मुहर्रम के जुलूस में हजारों मुसलमानों की जान लेने की कोशिश की। तो आज हमने सोचा आपके सामने सच आना चाहिए, ताकि कोई भी धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। हकीकत में पूरी तरह यह दावा गलत है। ये व्यक्ति शिया मुसलमानों को ये कैप्सूल बांट रहा था। उसका नाम सिर्फ प्रेम जी नहीं है, उसका पूरा नाम है फैयाज निसार प्रेम जी। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला है और पुणे में ये पेंट का कारोबार करता है, और इसी कारोबार की मदद से इसने चूहे मारने का 50 किलो जहर हासिल किया। इसके बाद इसने इंटरनेट से 30,000 खाली कैप्सूल्स खरीदे और इन्हें ये मुंबई के डोंगरी इलाके में लेकर आ गया। यही नहीं, डोंगरी में 15 दिन रहा और 15 दिन रहकर उसने इन खाली कैप्सूल्स में एक एक करके जहर भरा और ये योजना बनाई कि वो मुहर्रम में शामिल होने वाले लोगों को निशाना बनाएगा, पेन किलर के नाम से ये दवा देगा। पुलिस के मुताबिक अगर वो समय रहते इस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती तो ये कई मुसलमानों की जान तक ले सकता है।
1: और प्रत्येक कैप्सूल में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल के उसने इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को टारगेट किया और वहां पे बहाना बनाया कि ये कैप्सूल पेन किलर की तरह काम करती है और प्रोसेशन में जाने वाले लोगों को ऐसा फंसा के उसने कैप्सूल बेचने की कोशिश करी। परंतु मुंबई पुलिस की सतर्कता और होशियारी और मेहनत की वजह से ये बड़ा हादसा टला है और एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को हानि हो सकती थी, एक मुख्य त्रासदी हो सकती थी, ये त्रासदी को टाला गया है। जी, उसका मोटिव जो है वो अभी तपास में पता चलेगा, बट ये बात क्लियर है कि उसका जो अल्टीमेट मोटिव था वो लोगों को नुकसान पहुंचाने का था और बहुत सारे लोगों को हानि पहुंचाने का था।
0: यह समझना भी जरूरी है कि ये व्यक्ति बड़ी संख्या में मुसलमानों की जान आखिर क्यों लेना चाहता, तो उसने पुलिस को क्या कहा है? इसे पुलिस को यह बताया है कि वो शिया मुसलमानों से बदला लेने की भावना रखता था और इसीलिए इसने एक एआई टूल की मदद से पहले यह पता लगाया कि जिंक फॉस्फाइड का लोगों पर क्या असर होगा। बाद में जब एआई टूल से यह पता चला कि जहर से बड़ी संख्या में लोग मर भी सकते हैं, तो उसने ये पूरी साजिश रची। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपी साल 2019 से 25 के बीच कई बार ईरान और इराक की यात्राओं पर गया है और ऐसे में इस मामले में आतंकी साजिश या विदेशी नेटवर्क की भूमिका का शक भी बढ़ जाता है, जिसकी पुलिस अभी जांच कर रही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 14.2% थी। अगर आज के हिसाब से देखें तो भारत में मुसलमानों की आबादी 20 से 22 करोड़ मानी जाती है। इनमें भी 85% सुन्नी मुस्लिम है और सिर्फ 10-15% शिया मुस्लिम, यानी पूरे भारत में शिया मुसलमानों की आबादी 2-3 करोड़ ही है। और अगर ये साजिश कामयाब हो जाती, हजारों शिया मुस्लिम इसका निशाना बनते, तो भारत का सांप्रदायिक माहौल खराब भी हो सकता था। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में शिया मुसलमानों के जुलूसों में कई बार ऐसे हमले हुए हैं जिनके कारण बड़े बड़े दंगे भड़क गए। और यहां भी आज बड़ा सवाल यही है कि फैयाज निसार प्रेम जी 30,000 मुसलमानों को चूहा मारने वाली दवा से निशाना क्यों बनाना चाहता था। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगले विश्लेषण पर जाने से पहले हम आपको कोठारी बंधुओं के बारे में बताना चाहते हैं। कौन थे कोठारी बंधु? जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कोलकाता और कोलकाता के ही कोठारी बंधुओं की को 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसलिए गोलियों से भून दिया था क्योंकि ये दोनों कार सेवक थे और ये अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तक एक पैदल यात्रा निकाल रहे थे। उस समय अयोध्या में काफी तनाव था। अयोध्या में राम मंदिर की मांग को लेकर सैकड़ों कार सेवक आंदोलन कर रहे थे और इन्हीं कार सेवकों में 2 भाई कोलकाता से आए थे, जिनमें एक भाई का नाम था शरद कोठारी और दूसरे भाई का नाम था राम कुमार कोठारी। इनके अलावा सेठाराम माली, रमेश कुमार, महावीर प्रसाद, रमेश पांडे, संजय कुमार, महेंद्र नाथ अरोड़ा, राजेंद्र धारकर जैसे राम भक्तों ने भी राम मंदिर के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान जीवन दिया। लेकिन सोचिए, जिस मंदिर के लिए इन कार सेवकों ने अपनी जान दी, उस मंदिर में भगवान श्री राम के चरणों में चढ़ाया गया चढ़ावा ही चुरा लिया गया। और जानते हैं इस चढ़ावे को चुराने के बाद इन चोरों ने क्या किया? आइए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं। आइए आपको दिखाते हैं, ये जो मकान आप देख रहे हैं ये अयोध्या लखनऊ हाईवे के किनारे सोहावल, ये वाला जो बड़ा स्क्रीन है इस पर आपको दिखाते हैं। पहले ये जो तस्वीरें हैं इससे आपको अंदाजा लगेगा चंदा चोरी के पैसे क्या हो रहे हैं। ये अयोध्या लखनऊ हाईवे की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं।

तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो कोठरी आप देख रहे हैं 8,80,000 करोड़ रुपए की चंदा चोरी के पैसे से ये कोठी बन रही है। ये अयोध्या लखनऊ हाईवे की तस्वीर है, सुहावल तहसील का ये घर है। ये देखिए आप, आलिशान बंगले जो बन रहे हैं। सवाल यही है कि जिसकी 15,000-20,000 की सैलरी थी, वो इस तरह के बड़ी बड़ी जमीनें लेकर बड़ी बड़ी कोठियां बना रहे थे, और ये सब कुछ क्या चढ़ावा से चोरी करके किया जा रहा था? आज राम भक्त यही पूछ रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं, जब हमने तफ्तीश की तो हमें पता चला कि ये जमीन प्रभु श्री राम के मंदिर में दानपेटियों का चढ़ावा गिनने वाले लव कुश मिश्रा ने अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदी थी। कुल 8,80,000 रुपए में जमीन खरीदी गई। फिर राम मंदिर के चढ़ावे से जो हर दिन पैसा चोरी होता था, उससे जमीन पर यह शानदार सा घर बनाने का काम हुआ और इस पर लाखों रुपए खर्च हो रहे थे। मैं अब आपको टच स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहती हूं, वहां पर आप समझेंगे कि चढ़ावा चोरी के पैसों से क्या किया जा रहा था, कैसी जमीन खरीदी गई। तो अब तक तो आप इनका नाम समझ ही गए होंगे जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चढ़ावा चोरी के पैसों से जमीन खरीदी लव कुश मिश्रा ने, अपनी पत्नी के नाम पर यह जमीन खरीदी। अब समझिए, खुद का नाम नहीं, पत्नी का नाम डालकर पत्नी के नाम से जमीन खरीदी। लगभग 8,80,000 रुपए की यह जमीन सुप्रिया मिश्रा के नाम से, पत्नी के नाम से खरीद ली। तो अब क्या कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली खुद का नाम नहीं आ रहा है, एक महिला का नाम आ रहा है सुप्रिया मिश्रा का। अब भाई कुछ छानबीन करेगा तब तो पता चलेगा कि ये सुप्रिया मिश्रा किसकी पत्नी है, लवकुश मिश्रा की। लवकुश मिश्रा का अनिल मिश्रा से क्या रिश्ता है? तो इस तरह से धोखाधड़ी करने की कोशिश की गई, और इसीलिए ये पूरा पेपर हमने आपके सामने रख दिया है। ये न्यायालय तहसीलदार के पास की पूरी जमीन है, जिसमें अंतिम आदेश में तिथि आप देख रहे हैं 6 तारीख तीसरे महीने साल 2026 में, जिसमें आपको ये पूरा श्रीमती सुप्रिया मिश्रा का नाम दिख रहा होगा, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जिनके नाम से, जो कि पत्नी लवकुश मिश्रा निवासी मीनापुर के नाम से ही ये जमीन खरीदी जाती है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये जो चढ़ावा चोरी का पैसा

0: सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। एक दो मंजिला मकान ये बनाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस पूरे मकान को सुप्रिया मिश्रा के नाम पर दर्ज है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसके अनुसार 6 मार्च 2026 को इस जमीन की दाखिल खारिज हुई थी, इस प्लॉट को सरकारी दस्तावेजों में दाखिल खारिज किया गया था।
1: ये लवकुश मिश्रा का मकान है जो कि सुप्रिया मिश्रा के नाम पर रजिस्ट्री है।
0: ये जो लवकुश मिश्रा है, ये लवकुश मिश्रा है ये मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ, क्या यही लवकुश मिश्रा है?
1: जी जी, यही लवकुश मिश्रा है जी,
0: यही लवकुश मिश्रा है। ये आते थे
1: कभी कभार आते थे, मुलाकात हो जाती थी।
0: अच्छा, आपकी मुलाकात होती थी?
1: आप मुलाकात हुई थी, जब से मकान बनना शुरू हुआ हाँ, तब से मुलाकात हुई, संपर्क में आई, क्योंकि बगल बन रहा था, जो भी पड़ोसी हैं सबसे मुलाकात हो जाती थी। लगभग यहाँ की कीमत जो है 22-23 लाख रुपए है, 2200-2300 रुपए स्क्वायर फीट ऐसे है।
0: अच्छा, 22-23 लाख, मतलब 2500 लाख का मकान है ये?
1: जी बिल्कुल।
0: कागज में तो ये 8,80,000 का दिखाया गया है।
1: अब कागज पे लोग क्या दिखाते हैं वही जाने, लेकिन जो है मौके पे जो लोग मांगते हैं, जो रेट बिक रहा है 2200-2300-2000 ऐसे है,
0: ऐसे रेट
1: पर स्क्वायर फीट।
0: जब वो लोग आते होंगे तो परिवार के लोगों का रहन सहन देखते होंगे, और क्या ये मंदिर चोरी से ही ये लग रहा है कि उनके रहन सहन से, और ये 25 लाख का मकान बीच शहर के अंदर?
1: ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके रहन सहन से तो नहीं लगता था, क्योंकि बहुत साधारण लोग लगते थे, बाइक से आते थे, पल्सर से, पल्सर बाइक थी उनकी, वही कैसे किया, क्या किया, क्या नहीं किया, ये वही बता पाएंगे, और चूंकि घर से भी पैसा बरामद हुआ है उनके।

अजीब बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाले न्याय की इतनी बातें होती हैं, उस उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर अब तक बुलडोजर न्याय कहीं नहीं दिखा। और ये घर जो चढ़ावे की चोरी से बनाया जा रहा था, वो अब भी ऐसे ही खड़ा है। हालांकि ये बात भी सच है कि जहां जहां पर इस तरह से बुलडोजर चले हैं, ज्यादातर जगहों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसकी वजह से वहां बुलडोजर पहुंचा। तो अब सरकार को इस और भी कदम उठाना चाहिए कि कहीं यहां पर भी तो नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, और क्या यहां भी बुलडोजर पहुंच सकता है। यहां ये भी सोचिए, जिस देश में लोग एक दूसरे का अभिवादन ही श्री राम राम कहकर करते हो, उसी देश में भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित चढ़ावा लूट लिया जाएगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और इतने सुनियोजित तरीके से ऐसा मंदिर जिस पर पूरे देश की नहीं, मतलब जो भारतीय विदेशों से भी आते हैं, सबकी नजर रहती है कि अयोध्या जरूर जाना है। उस मंदिर में ये चंपत किया जा रहा था पैसा, लेकिन ऐसा हुआ। और अब इस मामले में कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। आज ही एक नया खुलासा यह हुआ है कि आरोपी अविनाश शुक्ला ने 5 जून को मंदिर के चढ़ावे से चोरी की थी, और इस चोरी का सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस के पास पहुंचा तो उसने अविनाश शुक्ला के घर जाकर वहां से 5 लाख रुपए कैश बरामद किए। और यहां आप इस वीडियो में देख सकते हैं, उस दिन पुलिस के पास एक काला बैग था जिसमें चढ़ावे से चुराए गए पैसों को, माफ कीजिएगा, ये जो शख्स है उसके पास ये काला बैग था जिसमें माना जा रहा है कि चढ़ावे का पैसा रखा गया था। और इससे ये सवाल उठता है कि जब चोरी का पता 5 जून को ही लग गया था, तो फिर उसी वक्त FIR दर्ज क्यों नहीं हुई थी। ये जो आप इस वक्त पैसा देख रहे हैं इस बैग में, ये जो काला बैग आप देख रहे हैं, साथ में खड़ा आपको एक पुलिस वाला दिख रहा है, यानी पुलिस ने ये बरामदगी उस दिन की थी, 5 लाख रुपये नहीं की गई। जाहिर तौर पर ये पुलिस की टीम है जो वहां से पैसे लेकर जा रही है। आपको साथ में एक यूनिफॉर्म में व्यक्ति भी दिख रहा है, बैग है, बैग में पैसा है जिसमें बताया जा रहा है कि जब्ती का पैसा है। तो ऐसे में FIR दर्ज क्यों नहीं गई? और जब ये पता चल चुका था कि इस तरह की चोरी हो रही थी, तो कौन कौन इसको कालीन के नीचे दबाने की कोशिश कर रहा था? हमें बताते हुए दुख हो रहा है कि इन घटनाओं के बाद देश में बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या उन्हें मंदिरों में दान देना बंद कर देना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि अगर मंदिरों में बैठे लोग ही बेईमान हो जाएं, तो ऐसे में चढ़ावे की संस्कृति को बदला जाना चाहिए, यानी कैश की जगह लोगों को ताजे फल मंदिर में दान देने चाहिए, सोने चांदी के आभूषणों और जेवरातों की जगह गरीबों की मदद करनी चाहिए, अस्पतालों वृद्धाश्रम में जरूरतमंदों को सहायता देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए, लेकिन कैश और जेवरात का चढ़ावा देना कई लोग कह रहे हैं कि बंद होना चाहिए। सोचिए लोगों के मन में ये बातें आखिर आ क्यों रही हैं? इसलिए आ रही है ना क्योंकि उन्होंने अपनी श्रद्धा

0: श्रद्धा से जो उनके लिए उनको सबसे कीमती लगता है वो लोग मंदिर में चढ़ाते हैं, दान देते हैं। उस दान को मिली भगत से कुछ लोगों ने कैसे हड़प लिया, और ये भी सोचिए कि ये लोग हैं कौन। एक आरोपी का नाम है रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, यानी जो व्यक्ति अपने नाम में प्रभु श्री राम का नाम लगाता है, उसने भी इतना बड़ा विश्वासघात किया जिस पर पूरा देश आज हैरानी जता रहा है। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिन लोगों ने मंदिर में चोरी का ये पाप किया, क्या कोई वकील अदालत में उनका मुकदमा लड़ेगा, और क्या ऐसे सभी आरोपियों का अदालतों में बचाव होना चाहिए। अयोध्या बार एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि कोई वकील इन आरोपियों का मुकदमा नहीं लड़ेगा, और अगर फिर भी कोई वकील ऐसा करता है तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले सुनिए।
1: अभियुक्तों की ओर से वकालत नहीं करेगा। अगर अधिवक्ता वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपक राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी। और ये भी तय किया गया है इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, सीबीआई से जांच की मांग की जाएगी। इलाहाबाद में दोनों याचिकाएं आज तय कर ली जाएंगी, तय होंगी तो उसी के सीक्वेंस में हमारा संघ ये तय करेगा आगे क्या करना है। जरूरत पड़ी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी अधिवक्ता संघ अयोध्या अपने खर्चे से शरण लेगा।
0: ये आम लोगों का गुस्सा, ये अयोध्या वासियों का गुस्सा, ये देश का गुस्सा ही है जो इन वकीलों के तौर तरीके और उनके फैसले में झलक रहा है। लेकिन अगर कानूनी रूप से देखें तो इस मामले में अयोध्या बार एसोसिएशन का फैसला आने के बाद भी सभी आरोपियों को उनका वकील मिल सकता है। ऐसी स्थिति में वकील ना मिलने पर कोर्ट खुद लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से आरोपियों के वकील को नियुक्त करेगा। अगर ये वकील अयोध्या में नहीं मिले तो दूसरे शहर से, दूसरे राज्यों से भी वकीलों को आरोपियों का मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया जा सकता है। क्योंकि हमारे देश में ऐसे कई मामले हैं जिनमें वकीलों ने आरोपियों का बहिष्कार किया है, लेकिन फिर भी इस देश में उन्हें कानूनी मदद मिली, क्योंकि यही तरीका है, कानूनी तरीका यही है। और इनमें 26/11 मुंबई हमले के आतंकवादी अजमल कसाब और दिल्ली के निर्भया गैंगरेप का मामला प्रमुख है। अब ये तो हुई कानूनी बात, लेकिन यहां आप ये भी सोचिए कि क्या मंदिर का चढ़ावा चुराने वाले इन लोगों को पूरे देश के सामने आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए। दुनिया के कई देशों में ऐसा हुआ है जब लोगों के साथ विश्वासघात करने वाले लोगों को टीवी पर आकर उनसे पूरे देश में माफी मंगवाई गई और लोगों के भरोसे को बहाल किया गया। इसलिए इस मामले में भी ये सवाल उठता है कि क्या राम मंदिर का चढ़ावा चुराने वाले आरोपी जनता के सामने आकर अपना जुर्म कबूल करेंगे, और क्या इस देश के लोगों के विश्वास को बहाल करने की कोशिश होगी। खैर, अभी तो स्थिति यह है कि पुलिस इन आरोपियों को जेल से बाहर भी नहीं लाना चाहती और उन्हें कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जा रहा है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि अयोध्या के लोग इन आरोपियों को लेकर बहुत आक्रोशित है, बड़े गुस्से में। वो कह रहे हैं हम खुद इनको सजा देंगे। अब सोचिए, अयोध्या में जहां प्रभु राम का ये मंदिर बना है, ट्रस्ट के ये लोग सबसे मिलते जुलते रहे होंगे, किसने सोचा होगा कि ये ऐसा कर रहे होंगे। सबकी नजरों में महान बने हुए थे। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो दुनिया में 15 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां रामायण के अलग अलग संस्करण मौजूद है, और पूरी दुनिया में 2000 मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है। लेकिन किसी भी देश में भगवान राम को लेकर, उनके मंदिरों में चढ़ावे को लेकर वैसा विवाद नहीं है जैसा हमारे देश भारत में है। और वो भी वो भारत, वो भूमि, वो मंदिर जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। इस मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 3 पदाधिकारियों पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इनमें पहले है चंपत राय, दूसरे अनिल मिश्रा और तीसरे है गोपाल राव। इनमें चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस मामले में उनकी भूमिका संदिग्ध होते हुए भी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव चंपत राय के करीबी थे। लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी पुलिस की जांच सिर्फ कुछ कर्मचारियों तक सीमित है, जबकि एसआईटी की रिपोर्ट में भी चंपत राय और अनिल मिश्रा पर सवाल उठाए गए हैं। तो आखिर ऐसी खास मेहरबानी क्यों? अगली खबर का रुख करते हैं और आपको पुणे के उस केतन हत्याकांड के बारे में बताते हैं जिसकी चर्चा हर घर में हो रही है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें 20 साल की सिया गोयल ने अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या कर दी। और इस हत्या के बाद पूरे देश को यही बताया गया कि सिया चेतन से प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपने 26 साल के मंगेतर केतन अग्रवाल को जान से मार दी। लेकिन हकीकत में केतन की हत्या के बाद जो हुआ उसने इस पूरे मामले को और उलझा दिया है। सिया और चेतन जो इस केस में मुख्य आरोपी थे वो अब एक दूसरे पर ही इस हत्या का आरोप लगाने लगे हैं। यानी सिया कह रही है कि यह हत्या चेतन ने की और चेतन कह रहा है कि यह हत्या सिया ने की। यानी पूरी मोहब्बत पूरा प्यार हवा हो चुकी है। सोचिए जिस रिश्ते को बाहर से लोग प्यार समझ रहे थे वो प्यार पुलिस हिरासत में पूरी तरह बदल गया। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है। इंदौर में राजा रघुवंशी की हत्या आपको याद होगा, उस मामले में भी यही हुआ था जहां घटना के बाद सोनम रघुवंशी और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगाने लगे। यानी जैसे पुलिस पकड़ती है उसके बाद खुद को किसी तरह से बचाने की कोशिश होती है। और उससे पहले मेरठ में आपको याद है मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत के मामले में भी यही तस्वीर सामने आई, जहां घटना के बाद मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड को हत्या के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बता दिया, जबकि उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने यह कहा था कि इस हत्या में उसकी कोई भूमिका नहीं है, लड़की पर इल्जाम लगा दिया। बहुत लंबी सूची है ये। पिछले 2 सालों में जितने भी पुरुषों की हत्याएं उनकी मंगेतर या पत्नियों ने की सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको प्यार किसी और से था या फिर उनके दोस्त ने किया, मिलकर किया, साजिशन किया, उन सब में गिरफ्तारी के बाद यही लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। इसमें 2 बातें समझ में आती है। पहली बड़ी बात है खुद को बचाने की कोशिश। लीगली मामला बचता थोड़ा आपको सॉफ्ट हो जाता है, हम बताएंगे आपको। जब 2 लोग एक ही मामले में फंसते हैं और उस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता तो हर कोई अपनी सजा कम कराने या खुद को बचाने के लिए दूसरे पर इल्जाम डालने लगता है और ये एक तरह की कानूनी मानसिक रणनीति बन जाती है। और इसका मकसद होता है अपनी जमानत के लिए जमीन तैयार करना, अदालतों में ये साबित करना कि जो हत्या हुई उसमें उनकी भूमिका नहीं थी। लेकिन सोचिए अगर ये प्यार ही दिखावटी था और अगर पुलिस की हिरासत में अदालतों में ही आरोपी लड़कियां और उनके बॉयफ्रेंड एक दूसरे पर ही आरोप मढ़ने लगते हैं तो ये किस प्यार के नाम पर अपने मंगेतर अपने पतियों की जान लेते हैं? अरे भाई जान तो मत लो, मत करो शादी पर जान तो मत ले लो, तोड़ दो शादी। अगर पुणे की सिया को अपने बॉयफ्रेंड को ही इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराना था या उससे बॉयफ्रेंड को सिया को जिम्मेदार ठहराना था तो दोनों ने केतन की जान क्यों ली और सिया ने इस रिश्ते से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं निकाला? आप खुद सोचिए जब अदालतों में बचने के लिए ये लोग इतना दिमाग चला सकते हैं तो ये केतन को मारने के बजाय कोई और रास्ता भी तो ढूंढ सकते थे। आज ही पुलिस की तरफ से ये बात सामने आई कि 18 जून को जब सिया और चेतन ने केतन को लोहागढ़ किले की खाई में धक्का दिया तब सिया ने खुद केतन को नीचे बैठने का इशारा किया था। कल्पना के परे है ये। इस दौरान केतन असहज भी हुआ था लेकिन उसने सिया पर भरोसा किया और इसके बाद सिया ने चेतन के साथ मिलकर उसकी जान ली। इससे यह भी पता चलता है कि कई बार जो रिश्ते बाहर से प्यार जैसे दिखते हैं ना वो अंदर से बहुत कमजोर या स्वार्थ पर टिके होते हैं। और कोई प्यार आपको किसी की हत्या के लिए अगर उकसा रहा है तो उस प्यार की नींव ही क्या है, साफ साफ नजर आ रहा है इस मामले में। सुनिए,
2: 2 accused जिन्होंने मिलकर के षड्यंत्र रचा और वो प्लान किया और उस प्लान को जब वो फेल हो गया तो अब ये एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। और इनका सीधा सा है शिया का ये होगा कि चेतन ने प्लान किया क्योंकि चेतन शिया से शादी करना चाह रहा था, ये चीजें हो सकती हैं। और चेतन का ये है कि अननेसेसरली अब मुझे फंसाया जा रहा है, फियोन से तो वो सिया का था। तो इस तरीके की जब चीजें मीडिया में आई ये अनएक्सपेक्टेड था उन दोनों अक्यूज के लिए, जो कि चीजें डिस्क्लोज हो गई और मीडिया में आ गई। पुलिस ये कोशिश करेगी कि शिया चेतन को ऑफर कर सकती है शिया को कि आपको सजा कम होगी, आप सरकारी गवाह बन करके आ जाइए। तो ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में, और ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है इस केस में।
3: और जो इस केस के आरोपी हैं वो बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि उनके खिलाफ जो है कोई डायरेक्ट एविडेंस है।
0: तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग ये कह रहे हैं कि अब वो शादी नहीं करेंगे, या अब अगर वो अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाएंगे तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। ये देखिए,
4: जिसने अपने माँ बाप की पसंद की शादी की वो हनीमून पे मारा गया, जिसने अपने पसंद की शादी की वो ड्रम में मिला, जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे वो फ्रिज में या फिर कुकर में मिले। सो भाई, अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही है तो आप जहाँ हो सही हो, जिंदा तो हो।
5: ये जो तेरे को और मेरे को जो लड़की छोड़ के गई ना, वो तो मेरा भैया देवी थी, देवी जो कम से कम अपने देशों को जिंदा तो छोड़ के गई इस धरती पर।
6: भैया मेरी वेल्डिंग एनिवर्सरी आ रही तो मेरी लुगाई मुझसे कहने लगी, सुनो जी लोहागढ़ फोर्ट चल रहे हैं, वहीं से एबिलिवेट करेंगे। मैं समझ गया वहाँ 600 करोड़ का मालिक ना बचा, मेरे पे तो उल्टा 6 लाख का कर्जा। मुझे हालात ने इतने धक्के दिए फिर भी जिंदा हूँ, वो एक धक्का देगी और कहानी खत्म। तो मेरा कद्दू जावे फोर्ट, मैं जा रहा हूँ सीधा कोर्ट, लुगाई को दूंगा तलाक, तभी जिंदा बचेगा उसका सुहाग। बताओ है कोई मेरा जवाब?
7: बेबी कुछ देर बाद हमारी शादी होने वाली है, क्यों ना मनाली घूमने चले?
8: मनाली? मनाली क्या?
7: वो क्या है ना, कुछ दोस्त लोग मेरे है ना बोल रहे थे, इसलिए।
8: तुम नहीं, मेरे दोस्तों को लेके चलूंगा।
7: दोस्त लोग? कोई बात नहीं, ले चलना।
8: बोल लेता हूँ, अभी बोल ले। भाई अपने को मनाली चलना, 20-25 लोगों को लेके चलना साथ में, ठीक है?
9: हाँ लड़की, लड़की से दूर रहना ही भलाई है।

0: इस घटना को लेकर एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को इसलिए मार दिया क्योंकि वो विग पहनते थे। यह दावा पुलिस सूत्रों के सामने आया था कि पुलिस सूत्रों से सामने आया, लेकिन अब पूछताछ में सिया गोयल के भाई साहिल गोयल ने भी बताया है कि केतन अग्रवाल विग पहनते थे और ये बात उनकी बहन सिया को पसंद नहीं थी, इसे जान ले ली। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ इसी कारण से सिया ने केतन को मारा होगा, ऐसा उन्हें नहीं लगता है। लेकिन इस दावे ने एक नई बहस ये छेड़ दी है कि क्या अगर कोई लड़का विग पहनता है या हेयर पैच लगाता है तो इसके लिए उसकी हत्या कर दी जाएगी। 26 साल का केतन अग्रवाल अमेरिका से पढ़कर आए थे, अपने परिवार की रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर थे। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इन्हीं कारणों से सिया गोयल के परिवार ने उसका रिश्ता केतन के साथ पक्का कर दिया, जबकि सिया केतन को पसंद नहीं करती थी और वो इस बात से भी नाखुश थी कि वो विग पहनते थे। कई बार सुनने में ये बातें अजीब लगती हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आज के सोशल मीडिया युग में ऐसी बातें हत्या का कारण बन रही हैं। इसी साल मध्य प्रदेश के धार में 25 साल की प्रियंका पुरोहित ने अपने पति देवकरण पुरोहित की इसलिए हत्या करवा दी, जो मामला सामने पुलिस के आया, इसलिए हत्या करवा दी क्योंकि देवकरण पुरोहित का रंग थोड़ा सांवला था। इसी तरह साल 2021 में मेरठ में एक महिला ने अपने पति से इसलिए तलाक मांग लिया क्योंकि उसके पति के सिर पर बाल कम थे। ये सूची बहुत लंबी है। साइंस डायरेक्ट में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में अब ज्यादातर युवा अपने पार्टनर्स को उनकी हाइट, उनके बाल, उनके प्रोफेशनल स्टेटस को देखकर चुनते हैं। और अगर किसी लड़के की हाइट कम हो या वो विग पहनता हो, उसकी शादी की औसत उम्र ज्यादा होती है, ऐसे लड़कों को शादी के रिश्ते जल्दी नहीं मिलते। यही कारण है कि हमारे देश में हेयर विग्स और एक्सटेंशंस का मार्केट 3,172 करोड़ रुपए का हो गया है, जबकि हेयर ट्रांसप्लांट का भी मार्केट 2,909 करोड़ रुपए का हो गया है, जो साल 2034 तक 16,492 करोड़ रुपए का हो जाएगा। इसका एक कारण यह भी है कि जब सोशल मीडिया के जमाने में पिक्चर्स और सेल्फी देखी जाती है, तो पुणे के इस मामले में भी भले सिया गोयल को केतन का विग पहनना पसंद ना हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पर खुश दिखने के लिए केतन के साथ ऐसे वीडियोस डालती थी जिनमें वो एक परफेक्ट कपल की तरह दिखते थे। इस खबर के बाद में हमारे देश में हेयर विग और हेयर ट्रांसप्लांट को गूगल ट्रेंड में सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। 23 जून को इसका सर्च इंटरेस्ट जानते हैं गूगल पर 100 पर पहुंच गया था जिस दिन यह खबर बाहर आई। इसके पीछे एक बड़ी समस्या यह है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने अपनी रिसर्च में बताया था कि भारत के युवा लड़कों में हेयर लॉस की समस्या तेजी से बढ़ रही है। जो जेन जी है उन युवाओं में यह समस्या ज्यादा है। ट्राया की भी एक स्टडी है जो कहती है कि भारत में 50% से ज्यादा लोगों को हेयर लॉस की समस्या 25 साल से पहले शुरू हो जाती है और यह मौजूदा वक्त में इसलिए बहुत बड़ी बात बन गई है क्योंकि इस पीढ़ी के युवा सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखना चाहते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि मौजूदा पीढ़ी में डिप्रेशन का एक बड़ा कारण है कि वो कैसे दिखते हैं, उनका रंग कैसा है, उनके बाल, अपने खुद को, अपने अपियरेंस को, अपने लुक्स को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं।
1: जस्टिस चाहिए फॉर केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी है। नहीं, सिया को आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए।
2: मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं तो। मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले।
3: उन्होंने फोर्सफुली कुछ किया है कुछ नहीं है मुझे मालूम नहीं है सर, ये उन्होंने लॉकअप में उसका सिग्नेचर लिया है, हमको कुछ इस चीज के बारे में उन्होंने इन्फॉर्म किया नहीं है, हमको कॉन्टेक्ट किया नहीं, हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन रखा नहीं है इस चीज के ऊपर से सर। इस चीज के ऊपर हम लोगों ने आज कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि हमारे जो प्रोसीडिंग लॉयर है इसके आगे वो विपुल दिशिंग रहेंगे।
4: रिक्रिएशन ऑफ सीन किया था आज, उसमें अक्यूज को वहां पे ले जाके घटना कैसे घड़ी है, क्या एक्चुअली हुआ वहां पे।
0: हालांकि अब कई सूत्रों से, चाहे वो पुलिस हो या फिर परिवार के लोग हो, वो ये भी कह रहे हैं साफ साफ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विग की वजह से ये हुआ, वो एक और कारण इसमें जुड़ गया क्योंकि वो सिया उन्हें पसंद ही नहीं करती थी और इस वजह से इस तरह की घटना ये घटी है। बहरहाल इसमें आगे क्या होता है हमारी नजर रहेगी, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, आप बताते हैं कि हम क्यों हमारे देश में कानून कई बार सबके लिए बराबर नहीं रहता। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साए में आज बुलडोजर का ऐसा न्याय देखने को मिला जिसने सत्ता, सिस्टम, सरकारी अफसरशाही तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। गुजरात के नर्मदा जिले के गुरुड़ेश्वर में उन आलिशान बंगलों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया जिन्हें बनाने वाले कोई आम लोग नहीं बल्कि खुद सरकारी अधिकारी थे। तो आप इस कहानी को देखिए और समझिए कि कैसे हमारे देश में सरकारी संसाधनों की लूट होती है। गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग 1 किलोमीटर दूर गुरुड़ेश्वर इलाके में बने 5 बंगलों को रविवार को बुलडोजर से गिरा दिया गया। वजह, आरोप यह है कि ये बंगले 13 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को आवंटित सरकारी प्लॉट्स पर नियमों का उल्लंघन करके बनाए गए थे। अब उल्लंघन क्या हुआ? नियम यह था कि जिन वरिष्ठ अधिकारियों को 99 लाख रुपए का प्लॉट 37,000 से 50,000 रुपए में दिया गया, 99 लाख का प्लॉट 37,000 से 50,000 रुपए में दिया गया, उन पर सिर्फ रिहायशी मकान बनाए जा सकते थे। यानी पहले तो जमीन उनको बहुत कम कीमत पर मिली, कौड़ियों के भाव मिली, और ऊपर से नियम इतना सरल था कि यहां रिहायशी मकान ही बनाने थे। लेकिन जब जांच हुई और आरटीआई से सच बाहर आया तो यह पता चला कि कई जगह साधारण घर की बजाय 6 से 12 कमरों वाले बड़े बड़े बंगले बनाए गए। इनमें कई कमरे और कई बाथरूम थे। प्रशासन का कहना है कि ये इमारतें होम स्टे या गेस्ट हाउस की तरह बनाई गई थी ताकि इन्हें पर्यटकों को किराए पर दी जा सके। सोचिए, ये घर, ये जमीन इसलिए दी गई थी ऐसी कीमत पर ताकि अधिकारी वहां पर घर बनाए और वहां पर रहे। लेकिन हो क्या रहा था? इसका कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था, यानी पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। और इसलिए ऐसा भी हुआ क्योंकि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बहुत पास है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। छुट्टियों में यूरोप घूमने का प्लान बना रहे हो तो कुछ दिन रुक जाइए। जो लोग पहुंच गए हैं वो तो बहुत पछता रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के मौजूदा तापमान और यूरोपीय देशों के मौजूदा तापमान में ज्यादा फर्क नहीं है। यूरोप उबल रहा है। यूरोपीय देशों के लोग इस भीषण गर्मी में कूलर, एसी, पंखे खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं क्योंकि वहां पर वैसे भी इतनी ठंड पहले पड़ती थी कि आपको इन घरों में ज्यादातर हीटिंग सिस्टम मिलता है, एसी और पंखा तो होता ही नहीं है, लेकिन अब लगाना पड़ रहा है। आमतौर पर गर्मियों में यूरोपीय देशों का मौसम सुहाना रहता है, लेकिन इस बार की गर्मियों ने पसीने से तरबतर कर दिया। यूरोपियंस को भीषण गर्मियों की आदत नहीं, यही वजह है कि गर्मी की वजह से सैकड़ों लोग मर चुके हैं। WHO के मुताबिक 21 जून के बाद से गर्मी की वजह से यूरोप में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें ज्यादा संख्या बुजुर्गों की है। मौत की संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी घरों में होने वाली मौतों का डेटा आना बाकी है। WHO के मुताबिक यूरोप में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ी जिसका असर करीब 74 करोड़ लोगों पर हो रहा है और इनमें भी 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम हीट झेल रहे हैं, यानी 35 डिग्री से ज्यादा का तापमान झेल रहे हैं जो कि उनके लिए सामान्य स्थिति नहीं है। WHO ने यूरोप को गर्मी से सावधान किया। उनका कहना है कि यूरोप के घर, दफ्तर, स्कूल इस तरह की भीषण गर्मी को झेलने के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए, इसलिए उन्हें ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। वहां पर जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इस तरह से किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्मी जो है वो घर में ट्रैप हो, ज्यादा से ज्यादा हीट घर के अंदर ट्रैप हो। इस बार यूरोप के कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा है, उसके ऊपर भी, और इसी वजह से यूरोप के लोग गर्मी में तपे जा रहे हैं। फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी जैसे 12 देशों ने भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया ताकि लोग इससे बचने के इंतजाम कर सके। फ्रांस में तो बहुत बुरा हाल है, पिछले 4 दिनों में अकेले फ्रांस के ही 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कुछ शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसी वजह से फ्रांस की स्वास्थ्य एजेंसियों ने मौत की संख्या बढ़ने की आशंका जता दी है। पेरिस में तो लोग अपने घरों की खिड़कियों पर रिफ्लेक्टर्स लगा रहे हैं, एल्यूमिनियम फॉयल लगा रहे हैं ताकि घर का तापमान ज्यादा ना बढ़े और जो धूप गिरे वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। फ्रांस में गर्मियों का सामान्य तापमान जानते हैं 20-25 डिग्री रहता था। इस वजह से वहां के लोग कूलर्स, एसी लगाते ही नहीं, फैन भी नहीं होता है। इस बार स्थिति अलग है। फ्रांस में पंखा, कूलर, एसी खरीदने के लिए मारामारी मची हुई है। लोग लाइन लगाकर खरीद रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस तो ऐसे हैं जिसमें दिखाया गया है कि दुकान खुलते ही लोग एसी कूलर ऐसे खरीद रहे हैं जिसे लूट मची। जर्मनी, इटली, पोलैंड में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा छू रहा है। इसी गर्मी से राहत पाने के लिए लोग घर से ज्यादा पेड़ की छांव में रहना पसंद कर रहे हैं। इन देशों में गर्मी से राहत देने के लिए सार्वजनिक जगहों पर वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं। इनके जरिए लोगों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पार्कों में पहुंचे लोग पानी में भीग कर भीषण गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी में कल का रविवार सबसे गर्म दिन था। वहां का तापमान था, सोचिए, लगभग 42 डिग्री पहुंच गया था, 41.7 डिग्री सेल्सियस। चेकिया में गर्मी रिकॉर्ड तोड़, रविवार का दिन वहां अब तक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ, 41.1 डिग्री। पोलैंड में नया रिकॉर्ड बन गया गर्मी का, वहां एक शहर में तापमान 40.5 डिग्री पहुंच गया। 20 जून के बाद से यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हुआ और इस गर्मी ने यूरोपीय देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को पिघला दिया है। हालात ये है कि सड़कों पर बिछा तारकोल पिघल रहा है। ये देखिए, जर्मनी के लिप्ज़िग में ट्राम सर्विस को बंद कर दिया गया, ऐसी नौबत आ गई। दरअसल इसकी पटरियों के पास की जो सड़कें हैं वो पिघलने लगे। ये देखिए क्या हालत हुई, दुर्घटना की आशंका थी तो ट्राम सर्विस रोका गया। कई वीडियोस तो ऐसे भी आए हैं जहां लोगों के जूते चप्पल सड़क पर बिछे तारकोल के पिघलने का सबूत दिख रहा है। यूरोप की इस गर्मी का असर स्विस ग्लेशियर्स पर हो रहा है, वो तेजी से पिघल रहे हैं। स्विस ग्लेशियर मॉनिटरिंग नेटवर्क के मुताबिक आमतौर पर जो बर्फ अगस्त महीने में पूरी तरह से पिघलती थी, इस बार गर्मी की वजह से वो सोचिए पिछले हफ्ते ही पूरी तरह पिघल गई। मुमकिन है कि आने वाले कुछ हफ्तों में गर्मी का प्रकोप और ज्यादा देखने को मिल सकता है। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट की चेतावनी है कि अगले हफ्ते से यूरोप में हीट वेव का और बुरा दौर शुरू होने वाला है। कहा गया है कि कई देशों में तापमान 45 से 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। ECMWF की माने तो यूरोप में हीट डोम की स्थिति बन गई है, यानी गर्म हवा सतह पर कैद होकर रह गई है जिससे हालात खराब हो रहे हैं। यूरोप के आधे से ज्यादा शहर गर्मी का सबसे भयानक रूप देख रहे हैं। सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि उमस की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस भीषण गर्मी ने यूरोप के लोगों को साल 2022 की याद दिला दी है। 2022 में गर्मी का ऐसा ही प्रकोप हुआ था, 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी यूरोप में। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस गर्मी की एक वजह ओमेगा ब्लॉक है। ये मौसम का एक पैटर्न है जो ग्रीक लेटर ओमेगा की तरह बनता है। ये देखिए, इसमें हाई प्रेशर वाली गर्म हवाएं कम प्रेशर वाली दो ठंडी हवाओं के बीच फंस जाती हैं। सामान्य स्थिति में हवाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, लेकिन ओमेगा ब्लॉक की वजह से ये बहाव बिगड़ जाता है, गर्म हवा फंस कर रह जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये स्थिति 3 से 10 दिन तक बनी रहती है और कुछ मामलों में 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। ओमेगा ब्लॉक जिस क्षेत्र में बनता है वहां का तापमान सामान्य से 18 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो सकता है। और यही वजह है कि जिस यूरोप में गर्मियों का सामान्य, सोचिए लोग छुट्टियां मनाने जाते थे 20-25 डिग्री में कि यहाँ की भारत की 40-45 डिग्री से बच सके, वहां 40 डिग्री के ऊपर जा रहा है। इस तरह की गर्मियां यूरोपीय देशों में पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा पड़ने लगी हैं। साल 1950 से 99 तक यूरोप में 5 बार इस तरह की भीषण गर्मी की स्थिति बनी। इसके बाद साल 2000 से 2021 के बीच करीब 18 बार, लेकिन इसके बाद यानी 2022, 23, 25, 26 में लगभग हर साल यूरोप में भयानक गर्मी पड़ रही है। गर्मी के मौसम में भारत में तापमान सामान्य तौर पर 40 से 48 डिग्री तक रहता है और भारत के लोगों के लिए मतलब इसे झेलना मुश्किल हो जाता है। भारत में भी लोग जूझ रहे हैं इस गर्मी से, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति नहीं है जो कि 36-40 डिग्री के बीच में ही यूरोपीय लोगों के लिए हो जाती है। सोचिए उन लोगों का क्या हाल होता होगा जो सामान्य तौर पर गर्मियों में 20 डिग्री 25 डिग्री उनके लिए गर्म मौसम माना जाता था, आज अचानक वहां 40 डिग्री हो गया है। अब हम आपको यूरोप में गर्मी से परेशान लोगों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, इसे आप देखिएगा जिससे समझ में आएगा गर्मी से बचने के क्या उपाय कर रहे हैं। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जो आपको बार बार गलत ठहराना चाहते हैं दरअसल उन्हें आपकी सच्चाई सबसे ज्यादा डराती है। नमस्कार।
5: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 70-80 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल है चंपत राय को लेकर, जिन्हें चढ़ावा चोरी की बात 4 जून को ही पता चल गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी भी बड़ी गड़बड़ी से इनकार करते रहे। सवाल है क्यों?
6: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं।
7: सात जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय चढ़ावा चोरी पर पहली बार और आखिरी बार बोले।
6: सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है।
7: लेकिन इससे चौंकाने वाली बात यह कि इस बयान के 2 दिन पहले ही ट्रस्ट के सभी बड़े पदाधिकारियों को पता चल चुका था कि चढ़ावे का गबन राम मंदिर के भीतर किया जा रहा है। ये रहा इसका सबूत इस सीसीटीवी वीडियो में। जिस शख्स को आप बैग लिए देख रहे हैं, इसका नाम है अविनाश शुक्ला, जो चढ़ावा चोरी गैंग का अहम सदस्य, लूटकांड का अहम किरदार। इसके हाथ में जो काले रंग का बैग दिखता है, कहा जा रहा है कि चोरी की रकम इसी में, जो सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे से उड़ाई गई। सूत्रों की माने तो 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे। छापेमारी जब हुई तो अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5 लाख कैश बरामद हुआ, जो इस बैग में रखा हुआ है।
8: इस वक्त मौजूद है मुख्य आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला के घर के बाहर, जहां से 5 जून की रात को ट्रस्ट के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में अनधिकारिक तौर पर एक मोटी रकम बरामद की, जो कि सीसीटीवी में कैद है। ये वही घर है मेरे पीछे जो अविनाश शुक्ला है, जहां पर वह किराए पर रहा करता था। कल अविनाश शुक्ला के भाई से पुलिस ने यहीं पर लाकर पूछताछ की।
7: राम भक्त पहले से ही चढ़ावा चोरी के आरोपों से दंग है, लेकिन ये नया सच और खुलासा ज्यादा विचलित करने वाला है, क्योंकि इसने नए सिरे से ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया।
9: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला का 5 जून का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को इस चढ़ावा चोरी की जानकारी पहले से थी और इसकी FIR दर्ज कराने में ट्रस्ट ने देरी की। यानी अविनाश शुक्ला समेत सभी आरोपी लगभग ट्रस्ट की निगाह में आ गए थे, और अविनाश शुक्ला का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि कैसे एक सफेद गाड़ी में पुलिस कर्मी व अन्य लोगों की मदद से अविनाश शुक्ला को बैठाया जा रहा है, और इनके पास से एक काले बैग में कहा गया कि 5 लाख रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई।
7: बड़ा सवाल यह है कि जब ट्रस्ट को पता चल गया था कि चढ़ावे का गबन हो रहा है, तो वो मामले को रफा दफा करने या मामले को शांत कराने में क्यों जुटा? आरोपी के घर चढ़ावे की रकम मिलने के तुरंत बाद FIR क्यों नहीं करवाई गई? उल्टा चंपत राय वीडियो जारी करके इस मामले से क्या गुमराह नहीं करते दिखे?
6: कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
5: तो चंपत राय कह रहे थे कि चढ़ावा चोरी मामले में कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। इसके बाद चंपत राय ना कुछ बोले न ही सामने आए, लेकिन चढ़ावा चोरी के मामले ने उन्हें और उनके साथियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
8: 4 जून को ट्रस्ट के लोगों को चोरी का पता चला, जिसके बाद 5 जून को चंपत राय के आदेश पर ट्रस्ट के लोग यहां पर आते हैं और अविनाश शुक्ला के पास से एक मोटी रकम बरामद करते हैं। सीसीटीवी में बैग लेते हुए अविनाश शुक्ला और ट्रस्ट के लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 8 जून को चंपत राय ने यह बयान दिया था कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। 7 जून को यह पूरा मामला सार्वजनिक हुआ था, तो कैसे बिना ऑफिशियल कंप्लेंट के, बिना FIR फाइल हुए एक पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और जो रकम है उसको बरामद किया जा रहा था।
7: तो इस नए खुलासे ने ट्रस्ट और चंपत राय को लेकर कई गंभीर और नए सवाल पैदा कर दिए। क्योंकि ट्रस्ट को 5 जून को ही चढ़ावा चोरी का पता चल गया। इसके बावजूद 7 जून को पहली बार ये मामला जब सार्वजनिक रूप से बाहर आया, उसके बाद 13 जून को यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई, 25 जून को एफआईआर दर्ज हुई, 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, 26 जून को आरोपियों को 3 दिन के लिए जेल भेजा गया। इसी दिन चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, यानी ट्रस्ट को पता लगने के 20 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई और 21 दिन बाद जाकर चंपत राय ने पद छोड़ा। अब सवाल है कि चुप्पी साधे बैठे चंपत राय ने पुलिस जांच में देरी क्यों की, जब 5 जून को ट्रस्ट और पुलिस दोनों को चढ़ावा चोरी की जानकारी और सबूत मिल गए थे, तो फिर फौरन एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई? मामले को दबाने की कोशिश क्यों हुई?
8: ये बताया जा रहा है कि इस पर किसी भी तरीके से किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई, शिकायत नहीं दर्ज कराई गई और ये पूरी घटना होने के 20 दिन बाद जाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस सीसीटीवी ने ट्रस्ट के लोगों के उन दावों की पोल खोल दी है जिसमें वह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी पहले नहीं थी।
10: पहले से पकड़ लिया जाके पैसा बरामद चंपत राय जी, तो एफआईआर क्यों नहीं की? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सोचे जो है समझी षड्यंत्र के तहत बड़ों को बचाने के लिए इन लोगों को मोहरा बना के ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। अभी हम मॉनिटरिंग भी डालेंगे, अभी हम सारा काम करेंगे, लेकिन उन पहलुओं को हम देख ले, हमारी कमेटी है बैठ के काम करेगी, बख्शा कोई नहीं जाएगा।
7: पहले तो चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी होता रहा और जब उन्हें इसका पता चला तब भी उन्होंने फौरन इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, यानी चंपत राय ने अपनी पद की गरिमा के हिसाब से काम नहीं किया। सवालों में घिरे चंपत राय का पुलिस ने अब बयान दर्ज किया है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा सकती है। इधर पुलिस ने एसबीआई के अयोध्या धाम ब्रांच जाकर आरोपियों के खातों की जांच की ताकि चढ़ावा चोरी का पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल किया गया पता लगाया जा सके। वहीं अयोध्या के वकीलों ने ऐलान किया कि कोई भी चढ़ावा चोरी करने वाले आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा।
11: कि वकील लोग डिफेंस की ओर से वकील नहीं होंगे, अगर होंगे तो संघ में परमिशन लेंगे और 5 लाख रुपए वो पर हेड जमा करेंगे मोकिलों से लेके अपने और वकालत करेंगे। उस पैसे से प्रोसिक्यूशन की पैरवी होगी और उस प्रोसिक्यूशन की पैरवी में मुकदमा इन तीनों लोगों के खिलाफ दर्ज कराने की पूरी कोशिश की जाए।
12: बड़े आरोपियों को सबको बचा लिया गया है, कोई चौकीदार है, कोई रिक्शा वाला है, कोई ड्राइवर है, कोई पोछा वाला है, सबको फंसाया गया है। इतना बड़ा कांड हो जाए, 40 से 70 बार घोटाला हो जाए, किसी बड़े आदमी पता न चले, मैं अधिवक्ता संघ का महामंत्री हूँ, मेरे नाक के नीचे हमारे बाबू लोग चोरी कर ले, उनको पता न चले, तो भाई गले से उतरने वाली बात नहीं है।
10: उसके अलावा जो लोग हैं जिनको आप लोग बड़े लोग कह रहे हैं, उनको जो हम लोगों को जो ये लग रहा है कि एसआईटी से पुलिस से जो संघ का हमारे प्रस्ताव है उनको जो बचाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी सारी लिखा पड़ी जितनी कानूनी पहलू हो सकते हैं सब संघ करेगा, वो चाहे चंपत राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, गोपाल राव जी, अगर शासन प्रशासन कहीं से भी उनको बचाने का प्रयास करता है तो हम लोग उनके खिलाफ भी पैरवी करेंगे।
7: चढ़ावा चोरी की जांच भले ही तेजी से आगे बढ़ रही हो, 8 आरोपियों को अब 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा सवालों में अब भी चंपत राय हैं, जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, जो केवल पद छोड़कर बचे हुए हैं।
5: क्या 2027 यूपी चुनाव की लड़ाई अब विचारधारा पर कब्जे की जंग बनती जा रही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में राम मनोहर लोहिया के परिवार से मुलाकात की और इसी के बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या अब बीजेपी अगले साल होने वाले यूपी चुनाव लोहिया वाला दाव खेलने वाली है। वहां मुद्दा बड़ा इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा से खुद को लोहिया की विचारधारा का सबसे बड़ा पैरोकार बताते आए हैं।
13: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनकी विचारधारा पर हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है,
14: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के संकल्पों के, उनके आदर्शों पे, उनकी बताई हुई नीतियों पे
15: समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे।
14: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं।
0: ना जाने कितनी बार अखिलेश यादव ने खुद को और अपनी समाजवादी पार्टी को राम मनोहर लोहिया और उनकी विचारधारा से जोड़ा है। बार बार लोहिया के विचारों से स्वयं को प्रेरित बताया है। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में अब साल से भी कम का वक्त बचा है और इस अंतराल में लोहिया नाम की गूंज यूपी में और तेज होने वाली है। जी हाँ, और यूपी की इसी चुनावी बिसात में अब बीजेपी ने एक नया दांव खेलकर समाजवादी पार्टी को चौंका दिया है। एक तरफ अखिलेश राम मंदिर में छड़वा चोरी पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राम मनोहर लोहिया के परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात कर रही है। चुनावी साल में बीजेपी ने मंडल और कमंडल को एक साथ साधना शुरू कर दिया है। मंडल के मसीहा कहें या पिछड़ों के सबसे बड़े विचारक राम मनोहर लोहिया के घर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। इस दौरे का संकेत और संदेश सीधे सीधे अखिलेश तक है कि अब विचारधारा के तौर पर भी सेंधमारी की तैयारी है।
16: मोदी जी के 12 साल पूरा होने पे जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा, जो विशेष जनसंपर्क अभियान, उसके साथ आज मेरा सौभाग्य है कि लोहिया जी के परपोतों से, उनके बेटों से मेरी मुलाकात हुई और पूरा एक पारिवारिक बैठना हुआ, सबसे बहुत अच्छा लगा।
17: सुना है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोहिया जी के घर गए थे, वो पार्टी जो जिसके विचार और नीत नफरतवादी हैं, जो समाज के अंदर में नफरत की बात करते हैं, समाज को डिवाइड करने की बात करते हैं। पहले अपने विचार बदलिए। समाजवादी पार्टी लोहिया जी के आदर्श आचरण को अपनाती है, लोहिया जी के बचाए हुए रास्ते पे चलती है, समाज को जोड़ने की बात करती है। किसी के घर जाने से कुछ नहीं होता है, आपको अपनी नीत और विचार बदलने की जरूरत है।
0: एक तरफ प्रयागराज में सीएम योगी समाजवादी पार्टी को अयोध्या और मथुरा पर ललकार रहे थे, तो दूसरी ओर पंकज चौधरी लखनऊ में लोहिया के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे। चर्चा तो ये भी चल निकली कि बीजेपी कहीं राम मनोहर लोहिया के परिवार वालों को चुनावी राजनीति में लाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, कहीं बीजेपी अखिलेश के उस हथियार को ही कुंद तो नहीं करना चाहती है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। अखिलेश को परेशानी इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि राम मनोहर लोहिया का परिवार पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी कर रहा है।
18: ले जी के विरुद्ध में तो कुछ नहीं कहना है, जो आदमी अपना जैसे करते हैं अपने अपने हिसाब से हर आदमी करता है। लेकिन पंकज चौधरी जी आए, उनकी देखिए माननीय प्रधानमंत्री के कहने से आए, उन्होंने व्यक्तिगत काल किया था, तो हम लोगों को अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों को बरसों से प्राप्त है। और जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी थे तब भी हमारी उनकी पारिवारिक संबंध थे, और जब से वो पीएम बने हैं उनमें खूबियां हैं।
0: राम मनोहर लोहिया मारवाड़ी वैश्य यानी ओबीसी वर्ग से थे, और बीजेपी भी जानती है कि बिना ओबीसी समाज को साधे बगैर 2027 चुनाव में उनका कल्याण होने वाला नहीं है। इससे पहले यूपी चुनाव के लिए बनी विशेष टीम में ओबीसी को तरजीह दी और अब लोहिया परिवार से मुलाकात।
19: प्रदेश अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मिलने पहुंच गए। ये सब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई ऐसी एक दूसरे में उलझ गई है कि दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के वोट बैंक में सेन लगाने में जुटी हैं। कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों को उनके वैचारिक प्रणेताओं के जरिए साधने की कोशिश कर रही है।
0: बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पर ही जोर नहीं दिया है, बल्कि क्राइम रेट को लेकर भी एसपी कार्यकाल को घेरना भी शुरू कर दिया है।
20: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी।
0: 2027 को लेकर बीजेपी सिर्फ राम भरोसे नहीं है, उसे मालूम है कि धर्म का मुलम्मा समाज के सभी तबकों का वोट नहीं दिला सकता, इसीलिए अब बीजेपी समाजवादी पार्टी की तथा कथित विचारधारा में भी सेंधमारी करने में जुट गई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
5: देश में पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला है महाराष्ट्र के टीईटी परीक्षा का, जिसका मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता है, और ये वही बिजेंद्र गुप्ता है जिसका 2 साल पहले स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने किया था। आज तक के कैमरे में बिजेंद्र गुप्ता ने खुलेआम कहा था कि पेपर लीक करवाना उसका धंधा है और जेल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। महाराष्ट्र पुलिस इसी बिजेंद्र गुप्ता की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी कर रही है।
21: लगभग 1028 अलग अलग सेंटर्स पे ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन आज इस प्रकार से ये पेपर लीक हो गया है।
22: उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है, 4 सेट मिले हैं। जो बातचीत चल रही थी ये ट्रैप में, उनका 1.5 करोड़ की डिमांड थी, वो 1.5 करोड़ में पेपर बेचने के बाद जो लेने वाला है वो आगे अलग अलग जो बायर है उनको पेपर देने का उनके सिस्टम थी।
7: महाराष्ट्र में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के करीब 4.5 लाख परीक्षार्थियों के साथ हुए इस धोखे का, इस अन्याय का जिम्मेदार ये चेहरा है जिसे आज तक ने 2 साल पहले ही ढूंढ निकाला था। नाम है बिजेंद्र गुप्ता। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा का पर्चा लीक करने वाला ये माफिया बेफिक्र होकर घूम रहा है। वहीं महाराष्ट्र के लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंता में डूबे हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ये कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। टीईटी पेपर लीक से पूरी राज्य सरकार निशाने पर है। पेपर लीक की बीमारी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गई। देश का कोई भी राज्य, कोई भी परीक्षा, कुछ भी फुल प्रूफ नहीं है।
1: सीबीआई का उगाने को पकड़ लिया, उसके घर में करूंगा नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ेगा। ऐसा कभी स्पोर्ट्स से नहीं पकड़ा, कभी मेरा पेपर नहीं पकड़ा।
7: अब सवाल है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुकते, तो इसका जवाब महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड है जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार का रहने वाला पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता ही महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पटना और समस्तीपुर समेत कई राज्यों में महाराष्ट्र पुलिस छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया वो सभी इसी पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता के इशारे पर काम कर रहे थे।
2: महाराष्ट्र के 5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जिस पेपर लीक माफिया को मुंबई पुलिस तलाश रही है, उस पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन आज तक नहीं किया था। वो साल था 2024 जब नीट पेपर लीक हुआ था। मैंने ही बिहार जाकर पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता को बेनकाब किया था। मैंने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें पेपर माफिया विजेंद्र गुप्ता ने पेपर माफियाओं के एक से बड़े एक राज खुले थे। विजेंद्र गुप्ता ने स्टिंग कैमरे में खुलासा किया था कि कैसे पेपर माफिया बेखौफ होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं।
7: तो अगर आपको लगता है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा, तो इसका जवाब विजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का बुलंद हौसला है जिन्हें कानून का कोई डर नहीं। तभी तो वो खुलेआम कहते फिरते हैं कि यही खेल करेंगे चाहे कितनी बार भी जेल चले जाएं।
1: रही बात जेल जाने का, था जेल कल के फिर परसों से यही खेल करेंगे।
3: आप कैसे यूपीएससी वाला किए थे, वो कौन सी कंपनी?
1: एमपीपीएससी। हाँ, इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होंगे।
3: किसका नाम?
1: बेदीराम जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे, विद्यार्थी लाइफ था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गए साथ में, धरा गए जेल चल गए।
7: जब तक विजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का ढंग से इलाज नहीं होता, ये पेपर लीक वाली बीमारी रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, चाहे कोई भी राज्य हो, किसी की भी सरकार।
23: पेपर फुटले तो फुटू दे, विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली तो करू दे। आजच ठाण्यामध्ये एक पेपर फुटला आहे टीईटीचा, कोणालाच काही पडलेलं नाहीये। नीटचा पेपर फुटला, धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा तर दिलाच पाहिजे।
24: ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
25: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
7: महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का खुलासा वहाँ की पुलिस ने ही किया है। परीक्षा से पहले भिवंडी पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग दिल्ली और हरियाणा से मुंबई आकर टीईटी के पेपर बेचने का सौदा कर रहे हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर मुंबई से 3 लोग आकाश, राजीव और धीरज को गिरफ्तार किया जिनसे लीक पेपर बरामद हुआ, जिसने आज तक से कही गई पेपर लीक माफिया विजेंद्र की बात को 100% सच साबित कर दिया है कि पेपर लीक नहीं रुकने वाला है।
26: ये संजीव मुखिया अभी तो भगा हुआ है ना, ये
1: पकड़ाएगा भी
26: क्यों? लेकिन पहले भी जेल जा चुका है ना,
1: पैसा कमाया बॉस इधर 1 साल का। एक साल पहले
26: उसकी बीवी इलेक्शन भी तो लड़ी थी,
1: उस इलेक्शन में ही तो बर्बाद हुआ, लोगों से एडवांस उठाया, बेटा वो सब दिन नीट का ही काम करता है, 10-20 कहीं ना कहीं से सेंटर फेंटर से करके उस साल में 2-3 करोड़ रुपया, इस बार उसको 1400-1500 करोड़ रुपया कमाने का शौक था।
27: तो 700 करोड़
1: किया इस बार नीट में,
26: 700
4: मिल ही नहीं सकता।
1: क्यों मिलेगा? 700 काम किया हुआ इस बार,
26: 700 स्टूडेंट्स का
1: 40 लाख से गुना कर दीजिए।
7: पिछले दो दशक में ऐसी परीक्षाएं जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोग बैठे हों, उनमें 45 से ज्यादा पेपर लीक के मामले हुए और सिर्फ 18 लोगों को सजा मिली। सबसे बड़ी बात, ये सभी सजाएं सिर्फ 2 मामलों से जुड़ी, जिनमें से एक साल 2010 का रेलवे भर्ती घोटाला है। बाकी बचे 95% से ज्यादा मामलों में सालों से अदालती सुनवाई हो रही है, मामले लंबित पड़े हैं और पेपर लीक के आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम विजेंद्र गुप्ता का है, जो आज तक के खुफिया कैमरे में लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ पर इतराता सुना और देखा गया। महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक से ये माफिया एक बार फिर सुर्खियों में है। अब देखना है कि क्या महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पेपर लीक के इस माफिया को रिकॉर्ड टाइम में पकड़कर कड़ी सजा दिलाकर कोई नजीर पेश कर पाती है, या फिर पेपर लीक का माफिया इस बार भी चुनौती देकर पेपर लीक कराता ही रहेगा। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
5: और अब बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की, जिन्हें 36 साल के बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है और श्रीनगर के टाडा कोर्ट ने चार्जशीट भी दायर की है।
6: छत्तीस बरस बाद जागी है इंसाफ की उम्मीद। 36 बरस बाद कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। जी हां, जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है। टाडा कोर्ट में 700 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट दायर कर दी गई है।
8: कोर्ट में जो है ट्रायल होना है, यानी कि कोर्ट में अब ट्रायल होगा, उसके बाद ही जो है निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया है इस चार्जशीट में, जिसमें JKLF का खूंखार आतंकी कमांडर यासीन मलिक भी शामिल है। और SIA ने साफ तौर पर कहा है कि यासीन मलिक ही इसमें मुख्य अभियुक्त है। और जो इस पूरे मामले में जो 5 अभियुक्तों के नाम रखे गए हैं, उनमें से 3 जो है उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। एक आतंकी जो है वो एब्सकॉन्डिंग है, यानी कि वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर भाग गया था, वो वहीं पर छिपा हुआ है। और यासीन मलिक जो है इस समय तिहार जेल में है।
6: 18 अप्रैल 1990 को श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी स्किम्स परिसर के पास से JKLF के आतंकवादियों ने स्टाफ नर्स सरला भट्ट का अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद सरला से मारपीट और गैंग रेप किया गया। इसके बाद श्रीनगर की उमर कॉलोनी यानी मालबाग में ऑटोमेटिक राइफल से गोली मारकर सरला की हत्या कर दी गई। डाउनटाउन श्रीनगर में उनकी क्षत विक्षत लाश मिली थी।
8: SIA ने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी पेश किया, और वो क्या था? वो था इंडिया टुडे आज तक ग्रुप का जो न्यूज ट्रैक था 1990 में, जो उस समय न्यूज ट्रैक के पत्रकारों ने जो रिपोर्टिंग की, उसका एविडेंस सामने रखा गया। और खासतौर पर जो JKLF का तबका जो आतंकी कमांडर था फारूक अहमद डार उर्फ बिटा कराटे, उसका जो इंटरव्यू न्यूज ट्रैक ने किया था, वो वीडियो भी अदालत में पेश किया गया है। और इस वीडियो में फारूक अहमद डार ने साफ तौर पर कबूला था कि उसने 20 कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या की थी। अब कश्मीरी पंडित समुदाय की मांग है कि एक व्यापक तौर पर सभी मामलों में जांच होनी चाहिए, ताकि वो तमाम दोषी जो है जिन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के ऊपर अत्याचार किया, उनको सजा मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।
5: अब बात उस हत्याकांड की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। केतन मर्डर केस में आरोपी सिया और चेतन की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब अगली सुनवाई होनी है 3 जुलाई को। इन 4 दिनों में पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि केतन की हत्या के पीछे असली वजह थी क्या।
9: लोहगढ़ किले का ये वही हिस्सा है जहां केतन को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया गया। वो 340 फीट गहरी खाई में गिरा और दम तोड़ दिया। उलझाऊ और सस्पेंस भरे सवालों के साथ पुलिस 28 जून को ठीक उसी खाई के पास पहुंची। पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। पुलिस ने सिया से जाना कि 18 जून को इस खाई के पास और कौन कौन था, चेतन के साथ उसकी क्या बातें हुई, क्या दोनों में किसी बात को लेकर नाराजगी थी, चेतन को सिया ने मौके पर कितनी देर पहले बुलाया था। ऐसे कई सवाल सिया से किए गए और इसी बीच आता है अब तक का सबसे अहम सस्पेंस। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट करते हुए सिया से कहा कि वो पुतले को खाई में धक्का दे। सिया ने ही पुतले को खाई में धकेला।
10: जो पुतला बनाया गया था वो केतन अग्रवाल के जैसा था, उसी के वजन का था, ताकि वो नीचे जाने के बाद ये पता चले और ये फाइनलाइज हो सके कि किस तरीके का इम्पैक्ट था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या थे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इम्पैक्ट के बाद पुतले के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो देखना पुलिस चाह रही थी।
9: खुलासे के मुताबिक सिया और चेतन ने हत्या की गहरी साजिश रची। उसी दौरान तय हुआ था कि किले में ऊंचाई पर पहुंचकर सिया अचानक बैठेगी। ये संकेत होगा कि अब केतन को खाई में धक्का देना है। अब पुलिस की तैयारी है कि क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाए और अब की बार पुलिस चेतन से पुतले को धक्का देने को कहेगी। पुणे पुलिस की कोशिश है कि सिया और चेतन के गुनाहों से जुड़े सुराग रिक्रिएशन के जरिए हासिल किए जाए, उसे वेरीफाई किया जाए और मामले को अंजाम तक पहुँचाया जाए। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
5: कराची ब्लास्ट में अपने रेंजर्स की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बीती रात भीषण बमबारी की। रिहायशी इलाकों में की गई इस बमबारी में औरतों और बुजुर्गों और बच्चों समेत 25 लोगों की जान ले ली गई है।
11: ये भूल से बच्चे पाकिस्तान की कायराना हरकत के शिकार हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में इन बच्चों, बुजुर्गों और औरतों पर बम बरसाए हैं। पक्तिता प्रांत के गयान जिले, पक्तिता प्रांत के समकानी जिले और कुनार प्रांत के मनुगई जिले में नागरिक इलाकों पर हवाई हमले किए। अफगानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिक मारे गए, जिनमें कई छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। अपनी जमीन पर आतंकी पाल रहा पाकिस्तान एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर अफगानी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर बम बरसा रहा है। क्या आसिम मुनीर की नजर में ये लड़का टीटीपी का आतंकी है? क्या ये दुदमुही बच्ची दहशतगर्द है? क्या ये घायल लड़की कराची ब्लास्ट की मास्टरमाइंड है? और क्या ये लहूलुहान बच्चियां, बुजुर्ग और महिलाएं आतंकी नजर आती हैं? अगर नहीं तो ये साफ है कि पाकिस्तान युद्ध अपराध कर रहा है, और इस अपराध का जिम्मेदार आसिम मुनीर नहीं तो और कौन है, जिसने 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिकों को मार डाला। पाकिस्तान गाजा पर इजरायली बमबारी के बाद छाती पीटने लगता है, मगर कल रात उसने सोची समझी सैन्य बर्बरता दिखाते हुए कुख्यात डबल टैप रणनीति का इस्तेमाल किया और 35 बेकसूरों को मार डाला। आज तक
5: इसी के साथ हमें रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

चढ़ावा चोरी केस में एसबीआई सहित 6-7 बैंकों को नोटिस। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और सभी वित्तीय लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड तलब। सभी आरोपियों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी। पीलीभीत में कहा यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा होगा। कर्फ्यू गुंडागर्दी से लोगों का जीना होगा हराम। आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर। नौकरशाही में प्रक्रिया के बदलाव के भी संकेत। बिहार के भोजपुर में भरत एनकाउंटर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने की है सीबीआई जांच की मांग।

0: Wash. अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 70-80 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल है चंपत राय को लेकर, जिन्हें चढ़ावा चोरी की बात 4 जून को ही पता चल गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी भी बड़ी गड़बड़ी से इनकार करते रहे। सवाल है क्यों?
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं।
2: सात जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय चढ़ावा चोरी पर पहली बार और आखिरी बार बोले।
1: सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है।
2: लेकिन इससे चौंकाने वाली बात यह कि इस बयान के 2 दिन पहले ही ट्रस्ट के सभी बड़े पदाधिकारियों को पता चल चुका था कि चढ़ावे का गबन राम मंदिर के भीतर किया जा रहा है। ये रहा इसका सबूत इस सीसीटीवी वीडियो में। जिस शख्स को आप बैग लिए देख रहे हैं, इसका नाम है अविनाश शुक्ला, जो चढ़ावा चोरी गैंग का अहम सदस्य, लूटकांड का अहम किरदार। इसके हाथ में जो काले रंग का बैग दिखता है, कहा जा रहा है कि चोरी की रकम इसी में, जो सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे से उड़ाई गई। सूत्रों की माने तो 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे। छापेमारी जब हुई तो अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5 लाख कैश बरामद हुआ, जो इस बैग में रखा हुआ है।
3: इस वक्त मौजूद है मुख्य आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला के घर के बाहर, जहां से 5 जून की रात को ट्रस्ट के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में अनधिकारिक तौर पर एक मोटी रकम बरामद की, जो कि सीसीटीवी में कैद है। ये वही घर है मेरे पीछे जो अविनाश शुक्ला है, जहां पर वह किराए पर रहा करता था। कल अविनाश शुक्ला के भाई से पुलिस ने यहीं पर लाकर पूछताछ की।
2: राम भक्त पहले से ही चढ़ावा चोरी के आरोपों से दंग है, लेकिन ये नया सच और खुलासा ज्यादा विचलित करने वाला है, क्योंकि इसने नए सिरे से ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया।
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला का 5 जून का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को इस चढ़ावा चोरी की जानकारी पहले से थी और इसकी एफआईआर दर्ज कराने में ट्रस्ट ने देरी की। यानी अविनाश शुक्ला समेत सभी आरोपी लगभग ट्रस्ट की निगाह में आ गए थे, और अविनाश शुक्ला का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि कैसे एक सफेद गाड़ी में पुलिसकर्मी व अन्य लोगों की मदद से अविनाश शुक्ला को बैठाया जा रहा है। उनके पास से एक काले बैग में कहा गया कि 5 लाख रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई।
2: बड़ा सवाल यह है कि जब ट्रस्ट को पता चल गया था कि चढ़ावे का गबन हो रहा है, तो वो मामले को रफा दफा करने या मामले को शांत कराने में क्यों जुटा? आरोपी के घर चढ़ावे की रकम मिलने के तुरंत बाद एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई? उल्टा चंपत राय वीडियो जारी करके इस मामले से क्या गुमराह नहीं करते दिखे?
1: कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
0: तो चंपत राय कह रहे थे कि चढ़ावा चोरी मामले में कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। इसके बाद चंपत राय ना कुछ बोले न ही सामने आए, लेकिन चढ़ावा चोरी के मामले ने उन्हें और उनके साथियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
3: 4 जून को ट्रस्ट के लोगों को चोरी का पता चला, जिसके बाद 5 जून को चंपत राय के आदेश पर ट्रस्ट के लोग यहां पर आते हैं और अविनाश शुक्ला के पास से एक मोटी रकम बरामद करते हैं। सीसीटीवी में बैग लेते हुए अविनाश शुक्ला और ट्रस्ट के लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 8 जून को चंपत राय ने यह बयान दिया था कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। 7 जून को ये पूरा मामला सार्वजनिक हुआ था, तो कैसे बिना ऑफिशियल कंप्लेंट के, बिना एफआईआर फाइल हुए एक पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और जो रकम है उसको बरामद किया जा रहा था।
2: तो इस नए खुलासे ने ट्रस्ट और चंपत राय को लेकर कई गंभीर और नए सवाल पैदा कर दिए।

0: ट्रस्ट को 5 जून को ही चढ़ावा चोरी का पता चल गया। इसके बावजूद 7 जून को पहली बार ये मामला जब सार्वजनिक रूप से बाहर आया, उसके बाद 13 जून को यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई, 25 जून को एफआईआर दर्ज हुई, 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, 26 जून को आरोपियों को 3 दिन के लिए जेल भेजा गया। इसी दिन चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, यानी ट्रस्ट को पता लगने के 20 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई और 21 दिन बाद जाकर चंपत राय ने पद छोड़ा। अब सवाल है कि चुप्पी साधे बैठे चंपत राय ने पुलिस जांच में देरी क्यों की, जब 5 जून को ट्रस्ट और पुलिस दोनों को चढ़ावा चोरी की जानकारी और सबूत मिल गए थे, तो फिर फौरन एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई? मामले को दबाने की कोशिश क्यों हुई?
1: ये बताया जा रहा है कि इस पर किसी भी तरीके से किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई, शिकायत नहीं दर्ज कराई गई और ये पूरी घटना होने के 20 दिन बाद जाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस सीसीटीवी ने ट्रस्ट के लोगों के उन दावों की पोल खोल दी है जिसमें वह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी पहले नहीं थी।
2: पहले से पकड़ लिया जाके पैसा बरामद चंपत राय जी, तो एफआईआर क्यों नहीं की? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सोचे जो समझी षड्यंत्र के तहत बड़ों को बचाने के लिए इन लोगों को मोहरा बना के ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। अभी हम मॉनिटरिंग भी डालेंगे, अभी हम सारा काम करेंगे, लेकिन उन पहलुओं को हम देख ले, हमारी कमेटी है बैठ के काम करेगी, बख्शा कोई नहीं जाएगा।
0: पहले तो चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी होता रहा और जब उन्हें इसका पता चला तब भी उन्होंने फौरन इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, यानी चंपत राय ने अपनी पद की गरिमा के हिसाब से काम नहीं किया। सवालों में घिरे चंपत राय का पुलिस ने अब बयान दर्ज किया है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा सकती है। इधर पुलिस ने एसबीआई के अयोध्या धाम ब्रांच जाकर आरोपियों के खातों की जांच की ताकि चढ़ावा चोरी का पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल किया गया पता लगाया जा सके। वहीं अयोध्या के वकीलों ने ऐलान किया कि कोई भी चढ़ावा चोरी करने वाले आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा।
3: कि वकील लोग डिफेंस की ओर से वकील नहीं होंगे, अगर होंगे तो संघ में परमिशन लेंगे और 5 लाख रुपए वो पर हेड जमा करेंगे मोकिलों से लेके अपने और वकालत करेंगे। उस पैसे से प्रोसिक्यूशन की पैरवी होगी और उस प्रोसिक्यूशन की पैरवी में मुकदमा इन तीनों लोगों के खिलाफ दर्ज कराने की पूरी कोशिश की जाए।
4: बड़े आरोपियों को सबको बचा लिया गया है, कोई चौकीदार है, कोई रिक्शा वाला है, कोई ड्राइवर है, कोई पोछा वाला है, सबको फंसाया गया है। इतना बड़ा कांड हो जाए, 40 से 70 बार घोटाला हो जाए, किसी बड़े आदमी पता न चले, मैं अधिवक्ता संघ का महामंत्री हूँ, मेरे नाक के नीचे हमारे बाबू लोग चोरी कर ले उनको पता न चले, तो भाई गले से उतरने वाली बात नहीं है।
2: उसके अलावा जो लोग हैं जिनको आप लोग बड़े लोग कह रहे हैं, उनको जो हम लोगों को जो ये लग रहा है कि एसआईटी से पुलिस से जो संघ का हमारे प्रस्ताव है उनको जो बचाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी सारी लिखा पड़ी जितनी कानूनी पहलू हो सकते हैं सब संघ करेगा, वो चाहे चंपत राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, गोपाल राव जी, अगर शासन प्रशासन कहीं से भी उनको बचाने का प्रयास करता है तो हम लोग उनके खिलाफ भी पैरवी करेंगे।
0: चढ़ावा चोरी की जांच भले ही तेजी से आगे बढ़ रही हो, 8 आरोपियों को अब 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा सवालों में अब भी चंपत राय हैं, जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, जो केवल पद छोड़कर बचे हुए हैं।
5: क्या 2027 यूपी चुनाव की लड़ाई अब विचारधारा पर कब्जे की जंग बनती जा रही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में राम मनोहर लोहिया के परिवार से मुलाकात की और इसी के बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या अब बीजेपी अगले साल होने वाले यूपी चुनाव लोहिया वाला दाव खेलने वाली है। वहां मुद्दा बड़ा इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा से खुद को लोहिया की विचारधारा का सबसे बड़ा पैरोकार बताते आए हैं।
6: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनकी विचारधारा पर हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है,
7: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के संकल्पों के, उनके आदर्शों पे, उनकी बताई हुई नीतियों पे
8: समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे।
7: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं।
5: ना जाने कितनी बार अखिलेश यादव ने खुद को और अपनी समाजवादी पार्टी को राम मनोहर लोहिया और उनकी विचारधारा से जोड़ा है, बार बार लोहिया के विचारों से स्वयं को प्रेरित बताया है। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में अब साल से भी कम का वक्त बचा है और इस अंतराल में लोहिया नाम की गूंज यूपी में और तेज होने वाली है। जी हाँ, और यूपी की इसी चुनावी बिसात में अब बीजेपी ने एक नया दांव खेलकर समाजवादी पार्टी को चौंका दिया है। एक तरफ अखिलेश राम मंदिर में छड़वा चोरी पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राम मनोहर लोहिया के परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात कर रही है। चुनावी साल में बीजेपी ने मंडल और कमंडल को एक साथ साधना शुरू कर दिया है। मंडल के मसीहा कहें या पिछड़ों के सबसे बड़े विचारक राम मनोहर लोहिया के घर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। इस दौरे का संकेत और संदेश सीधे सीधे अखिलेश तक है कि अब विचारधारा के तौर पर भी सेंधमारी की तैयारी है।
9: मोदी जी के 12 साल पूरा होने पे जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा, जो विशेष जनसंपर्क अभियान, उसके साथ आज मेरा सौभाग्य है कि लोहिया जी के परपोतों से, उनके बेटों से मेरी मुलाकात हुई और पूरा एक पारिवारिक बैठना हुआ, सबसे बहुत अच्छा लगा।
10: सुना है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोहिया जी के घर गए थे, वो पार्टी जो इसके विचार और नीत नफरतवादी है, जो समाज के अंदर में नफरत की बात करते हैं, समाज को डिवाइड करने की बात करते हैं। पहले अपने विचार बदलिए, समाजवादी पार्टी लोहिया जी के आदर्श आचरण को अपनाती है, लोहिया जी के बचाए हुए रास्ते पे चलती है, समाज को जोड़ने की बात करती है। किसी के घर जाने से कुछ नहीं होता है, आपको अपनी नीत और विचार बदलने की जरूरत है।
5: एक तरफ प्रयागराज में सीएम योगी समाजवादी पार्टी को अयोध्या और मथुरा पर ललकार रहे थे, तो दूसरी ओर पंकज चौधरी लखनऊ में लोहिया के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे। चर्चा तो ये भी चल निकली कि बीजेपी कहीं राम मनोहर लोहिया के परिवार वालों को चुनावी राजनीति में लाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, कहीं बीजेपी अखिलेश के उस हथियार को ही कुंद तो नहीं करना चाहती है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। अखिलेश को परेशानी इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि राम मनोहर लोहिया का परिवार पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी कर रहा है।
11: ले जी के विरुद्ध में तो कुछ नहीं कहना है, जो आदमी अपना जैसे करते हैं अपने अपने हिसाब से हर आदमी करता है। लेकिन पंकज चौधरी जी आए, उनकी देखिए माननीय प्रधानमंत्री के कहने से आए, उन्होंने व्यक्तिगत काल किया था, तो हम लोगों को अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों को बरसों से प्राप्त है। और जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी थे तब भी हमारी उनकी पारिवारिक संबंध थे, और जब से वो पीएम बने हैं उनमें खूबियां हैं।
5: राम मनोहर लोहिया मारवाड़ी वैश्य यानी ओबीसी वर्ग से थे, और बीजेपी भी जानती है कि बिना ओबीसी समाज को साधे बगैर 2027 चुनाव में उनका कल्याण होने वाला नहीं है। इससे पहले यूपी चुनाव के लिए बनी विशेष टीम में ओबीसी को तरजीह दी और अब लोहिया परिवार से मुलाकात।
12: प्रदेश अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मिलने पहुंच गए। ये सब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई ऐसी एक दूसरे में उलझ गई है कि दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के वोट बैंक में सेन लगाने में जुटी हैं। कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों को उनके वैचारिक प्रणेताओं के जरिए साधने की कोशिश कर रही है।
5: बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पर ही जोर नहीं दिया है, बल्कि क्राइम रेट को लेकर भी एसपी कार्यकाल को घेरना भी शुरू कर दिया है।
13: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी।
5: 2027 को लेकर बीजेपी सिर्फ राम भरोसे नहीं है, उसे मालूम है कि धर्म का मुलम्मा समाज के सभी तबकों का वोट नहीं दिला सकता, इसीलिए अब बीजेपी समाजवादी पार्टी की तथा कथित विचारधारा में भी सेंधमारी करने में जुट गई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
14: देश में पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला है महाराष्ट्र के टीईटी परीक्षा का, जिसका मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता है, और ये वही बिजेंद्र गुप्ता है जिसका 2 साल पहले स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने किया था। आज तक के कैमरे में बिजेंद्र गुप्ता ने खुलेआम कहा था कि पेपर लीक करवाना उसका धंधा है और जेल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। महाराष्ट्र पुलिस इसी बिजेंद्र गुप्ता की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी कर रही है।
15: लगभग 1028 अलग अलग सेंटर्स पे ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन आज इस प्रकार से ये पेपर लीक हो गया है।
16: उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है, 4 सेट मिले हैं। जो बातचीत चल रही थी ये ट्रैप में, उनका 1.5 करोड़ की डिमांड थी, वो 1.5 करोड़ में पेपर बेचने के बाद जो लेने वाला है वो आगे अलग अलग जो बायर है उनको पेपर देने का उनके सिस्टम थी।
0: महाराष्ट्र में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के करीब 4.5 लाख परीक्षार्थियों के साथ हुए इस धोखे का, इस अन्याय का जिम्मेदार ये चेहरा है जिसे आज तक ने 2 साल पहले ही ढूंढ निकाला था। नाम है बिजेंद्र गुप्ता। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा का पर्चा लीक करने वाला ये माफिया बेफिक्र होकर घूम रहा है। वही महाराष्ट्र के लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंता में डूबे हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ये कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। टीईटी पेपर लीक से पूरी राज्य सरकार निशाने पर है। पेपर लीक की बीमारी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गई। देश का कोई भी राज्य, कोई भी परीक्षा, कुछ भी फुल प्रूफ नहीं है।
17: सीबीआई का उगाड़ने को पकड़ लिया, उसके घर में करूंगा नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ेगा, असेंटरी स्पोर्ट से नहीं पकड़ा, कभी मेरा पेपर नहीं पकड़ा।
0: अब सवाल है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुकते, तो इसका जवाब महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड है जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार का रहने वाला पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता ही महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। बिजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पटना और समस्तीपुर समेत कई राज्यों में महाराष्ट्र पुलिस छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया वो सभी इसी पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता के इशारे पर काम कर रहे थे।
18: महाराष्ट्र के 5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जिस पेपर लीक माफिया को मुंबई पुलिस तलाश रही है, उस पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन आज तक नहीं किया था। वो साल था 2024 जब नीट पेपर लीक हुआ था। मैंने ही बिहार जाकर पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता को बेनकाब किया था। मैंने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें पेपर माफिया बिजेंद्र गुप्ता ने पेपर माफियाओं के एक से बड़े एक राज खुले थे। बिजेंद्र गुप्ता ने स्टिंग कैमरे में खुलासा किया था कि कैसे पेपर माफिया बेखौफ होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं।
0: तो अगर आपको लगता है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा, तो इसका जवाब बिजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का बुलंद हौसला है जिन्हें कानून का कोई डर नहीं। तभी तो वो खुलेआम कहते फिरते हैं कि यही खेल करेंगे चाहे कितनी बार भी जेल चले जाएं।
17: नई बार जेल जाने का था, जेल कर गए, फिर परसों से यही खेल करेंगे।
19: आप कैसे यूपीएससी वाला किए थे, वो कौन सी कंपनी?
17: एमपीपीएससी। हाँ, इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होंगे।
19: किसका नाम?
17: बेदीराम जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे, विद्यार्थी लायक था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गए, साथ में धरा गए, जेल चल गए।
0: जब तक बिजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का ढंग से इलाज नहीं होता, ये पेपर लीक वाली बीमारी रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी चाहे कोई भी राज्य हो।
20: टीईटीचा कोणालाच काही पडलेलं नाहीये, नीटचा पेपर फुटला, धर्मेंद्र प्रधान ने राजीनामा तर दिलाच पाहिजे।
21: ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
22: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
0: महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का खुलासा वहाँ की पुलिस ने ही किया है। परीक्षा से पहले भिवंडी पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग दिल्ली और हरियाणा से मुंबई आकर टीईटी के पेपर बेचने का सौदा कर रहे हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर मुंबई से 3 लोग आकाश, राजीव और धीरज को गिरफ्तार किया जिनसे लीक पेपर बरामद हुआ, जिसने आज तक से कही गई पेपर लीक माफिया बिजेंद्र की बात को 100% सच साबित कर दिया है कि पेपर लीक नहीं रुकने वाला है।
23: ये संजीव मुखिया अभी तो भगा हुआ है ना, ये
17: पकड़ाएगा भी
23: क्यों? नहीं, मैं पहले भी जेल जा चुका है ना,
17: पैसा कमाया बॉस, इधर 1 साल का। एक साल पहले
23: उसके दीवी इलेक्शन भी तो लड़ी थी,
17: उस इलेक्शन में ही तो बर्बाद हुआ, लोगों से एडवांस उठाया बेटा, वो सब दिन नीट का ही काम करता है, 10-20 कहीं ना कहीं से सेंटर फेंटर से करके उस साल में 2-3 करोड़ रुपया, इस बार उसको 200-400 करोड़ रुपया कमाने का शौक था।
23: सात सौ
17: काम किया इस बार
23: 700 स्टूडेंट्स का
17: 40 लाख से गुना कर दीजिए।
0: पिछले दो दशक में ऐसी परीक्षाएं जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोग बैठे हों उनमें 45 से ज्यादा पेपर लीक के मामले हुए और सिर्फ 18 लोगों को सजा मिली। सबसे बड़ी बात, ये सभी सजाएं सिर्फ 2 मामलों से जुड़ी, जिनमें से एक साल 2010 का रेलवे भर्ती घोटाला है। बाकी बचे 95% से ज्यादा मामलों में सालों से अदालती सुनवाई हो रही है, मामले लंबित पड़े हैं और पेपर लीक के आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम विजेंद्र गुप्ता का है, जो आज तक के खुफिया कैमरे में लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ पर इतराता सुना और देखा गया। महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक से ये माफिया एक बार फिर सुर्खियों में है। अब देखना है कि क्या महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पेपर लीक के इस माफिया को रिकॉर्ड टाइम में पकड़कर कड़ी सजा दिलाकर कोई नजीर पेश कर पाती है, या फिर पेपर लीक का माफिया इस बार भी चुनौती देकर पेपर लीक कराता ही रहेगा। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
14: और अब बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की, जिन्हें 36 साल के बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है और श्रीनगर के टाडा कोर्ट में चार्जशीट भी दायर की है।
1: छत्तीस बरस बाद जागी है इंसाफ की उम्मीद। 36 बरस बाद कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। जी हां, जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है। टाडा कोर्ट में 700 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट दायर कर दी गई है।
2: कोर्ट में जो है ट्रायल होना है, यानी कि कोर्ट में अब ट्रायल होगा, उसके बाद ही जो है निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया है इस चार्जशीट में, जिसमें JKLF का खूंखार आतंकी कमांडर यासीन मलिक भी शामिल है। और SIA ने साफ तौर पर कहा है कि यासीन मलिक ही इसमें मुख्य अभियुक्त है। और जो इस पूरे मामले में जो 5 अभियुक्तों के नाम रखे गए हैं, उनमें से 3 जो है उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। एक आतंकी जो है वो एब्सकॉन्डिंग है, यानी कि वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर भाग गया था, वो वहीं पर छिपा हुआ है। और यासीन मलिक जो है इस समय तिहाड़ जेल में है।
1: 18 अप्रैल 1990 को श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी स्किम्स परिसर के पास से JKLF के आतंकवादियों ने स्टाफ नर्स सरला भट्ट का अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद सरला से मारपीट और गैंग रेप किया गया। इसके बाद श्रीनगर की उमर कॉलोनी यानी मालबाग में ऑटोमेटिक राइफल से गोली मारकर सरला की हत्या कर दी गई। डाउनटाउन श्रीनगर में उनकी क्षत विक्षत लाश मिली थी।
2: SIA ने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी पेश किया, और वो क्या था, वो था इंडिया टुडे आज तक ग्रुप का जो न्यूज ट्रैक था 1990 में, जो उस समय न्यूज ट्रैक के पत्रकारों ने जो रिपोर्टिंग की उसका एविडेंस सामने रखा गया। और खासतौर पर जो JKLF का तबका जो आतंकी कमांडर था फारूक अहमद डार उर्फ बिटा कराटे, उसका जो इंटरव्यू न्यूज ट्रैक ने किया था वो वीडियो भी अदालत में पेश किया गया है। और इस वीडियो में फारूक अहमद डार ने साफ तौर पर कबूला था कि उसने 20 कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या की थी। अब कश्मीरी पंडित समुदाय की मांग है कि एक व्यापक तौर पर सभी मामलों में जांच होनी चाहिए, ताकि वो तमाम दोषी जो है जिन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के ऊपर अत्याचार किया उनको सजा मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।
14: अब बात उस हत्याकांड की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। केतन मर्डर केस में आरोपी सिया और चेतन की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब अगली सुनवाई होनी है 3 जुलाई को। इन 4 दिनों में पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि केतन की हत्या के पीछे असली वजह थी क्या।
3: लोहगढ़ किले का ये वही हिस्सा है जहां केतन को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया गया। वो 340 फीट गहरी खाई में गिरा और दम तोड़ दिया। उलझाऊ और सस्पेंस भरे सवालों के साथ पुलिस 28 जून को ठीक उसी खाई के पास पहुंची। पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। पुलिस ने सिया से जाना कि 18 जून को इस खाई के पास और कौन कौन था, चेतन के साथ उसकी क्या बातें हुई, क्या दोनों में किसी बात को लेकर नाराजगी थी, चेतन को सिया ने मौके पर कितनी देर पहले बुलाया था। ऐसे कई सवाल सिया से किए गए और इसी बीच आता है अब तक का सबसे अहम सस्पेंस। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट करते हुए सिया से कहा कि वो पुतले को खाई में धक्का दे। सिया ने ही पुतले को खाई में धकेला।
4: जो पुतला बनाया गया था वो केतन अग्रवाल के जैसा था, उसी के वजन का था, ताकि वो नीचे जाने के बाद ये पता चले और ये फाइनलाइज हो सके कि किस तरीके का इम्पैक्ट था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या थे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इम्पैक्ट के बाद पुतले के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो देखना पुलिस चाह रही थी।
3: खुलासे के मुताबिक सिया और चेतन ने हत्या की गहरी साजिश रची। उसी दौरान तय हुआ था कि किले में ऊंचाई पर पहुंचकर सिया अचानक बैठेगी। ये संकेत होगा कि अब केतन को खाई में धक्का देना है। अब पुलिस की तैयारी है कि क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाए और अब की बार पुलिस चेतन से पुतले को धक्का देने को कहेगी। पुणे पुलिस की कोशिश है कि सिया और चेतन के गुनाहों से जुड़े सुराग रिक्रिएशन के जरिए हासिल किए जाए, उसे वेरीफाई किया जाए और मामले को अंजाम तक पहुँचाया जाए। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
5: कराची ब्लास्ट में अपने रेंजर्स की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बीती रात भीषण बमबारी की। रिहायशी इलाकों में की गई इस बमबारी में औरतों और बुजुर्गों और बच्चों समेत 25 लोगों की जान ले ली गई है।
6: ये फूल से बच्चे पाकिस्तान की कायराना हरकत के शिकार हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में इन बच्चों, बुजुर्गों और औरतों पर बम बरसाए हैं। पक्तिता प्रांत के गयान जिले, पक्तिता प्रांत के समकानी जिले और कुनार प्रांत के मनुगई जिले में नागरिक इलाकों पर हवाई हमले किए। अफगानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिक मारे गए, जिनमें कई छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। अपनी जमीन पर आतंकी पाल रहा पाकिस्तान एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर अफगानी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर बम बरसा रहा है। क्या आसिम मुनीर की नजर में ये लड़का टीटीपी का आतंकी है? क्या ये दुदमुही बच्ची दहशतगर्द है? क्या ये घायल लड़की कराची ब्लास्ट की मास्टरमाइंड है? और क्या ये लहूलुहान बच्चियां, बुजुर्ग और महिलाएं आतंकी नजर आती हैं? अगर नहीं तो ये साफ है कि पाकिस्तान युद्ध अपराध कर रहा है और इस अपराध का जिम्मेदार आसिम मुनीर नहीं तो और कौन है, जिसने 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिकों को मार डाला। पाकिस्तान गाजा पर इजरायली बमबारी के बाद छाती पीटने लगता है, मगर कल रात उसने सोची समझी सैन्य बर्बरता दिखाते हुए कुख्यात डबल टैप रणनीति का इस्तेमाल किया और 35 बेकसूरों को मार डाला। आज तक देरो।
5: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

चढ़ावा चोरी केस में एसबीआई सहित 6-7 बैंकों को नोटिस। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और सभी वित्तीय लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड तलब। सभी आरोपियों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी। पीलीभीत में कहा यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा होगा। कर्फ्यू और गुंडागर्दी से लोगों का जीना होगा हराम। आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर। नौकरशाही में प्रक्रिया के बदलाव के भी संकेत। बिहार के भोजपुर में भरत एन

0: कोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता ने की है सीबीआई जांच की मांग। और यूपी के शामली में इस्लाम कबूलने वाले आयुष मलिक ने फिर से हिंदू धर्म अपनाया, कहा परिवार को परेशान देकर लिया फैसला, पिता बोले मुस्लिम लड़की ने किया था ब्रेन वॉश। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 70-80 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल है चंपत राय को लेकर, जिन्हें चढ़ावा चोरी की बात 4 जून को ही पता चल गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी भी बड़ी गड़बड़ी से इनकार करते रहे। सवाल है क्यों?
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं।
2: सात जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय चढ़ावा चोरी पर पहली बार और आखिरी बार बोले।
1: सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है।
2: लेकिन इससे चौंकाने वाली बात यह कि इस बयान के 2 दिन पहले ही ट्रस्ट के सभी बड़े पदाधिकारियों को पता चल चुका था कि चढ़ावे का गबन राम मंदिर के भीतर किया जा रहा है। ये रहा इसका सबूत इस सीसीटीवी वीडियो में। जिस शख्स को आप बैग लिए देख रहे हैं, इसका नाम है अविनाश शुक्ला, जो चढ़ावा चोरी गैंग का अहम सदस्य, लूटकांड का अहम किरदार। इसके हाथ में जो काले रंग का बैग दिखता है, कहा जा रहा है कि चोरी की रकम इसी में, जो सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे से उड़ाई गई। सूत्रों की माने तो 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे। छापेमारी जब हुई तो अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5 लाख कैश बरामद हुआ, जो इस बैग में रखा हुआ है।
3: इस वक्त मौजूद है मुख्य आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला के घर के बाहर, जहां से 5 जून की रात को ट्रस्ट के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में अनधिकारिक तौर पर एक मोटी रकम बरामद की, जो कि सीसीटीवी में कैद है। ये वही घर है मेरे पीछे जो अविनाश शुक्ला है, जहां पर वह किराए पर रहा करता था। कल अविनाश शुक्ला के भाई से पुलिस ने यहीं पर लाकर पूछताछ की।
2: राम भक्त पहले से ही चढ़ावा चोरी के आरोपों से दंग है, लेकिन ये नया सच और खुलासा ज्यादा विचलित करने वाला है, क्योंकि इसने नए सिरे से ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया।
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला का 5 जून का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को इस चढ़ावा चोरी की जानकारी पहले से थी और इसकी एफआईआर दर्ज कराने में ट्रस्ट ने देरी की। यानी अविनाश शुक्ला समेत सभी आरोपी लगभग ट्रस्ट की निगाह में आ गए थे, और अविनाश शुक्ला का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि कैसे एक सफेद गाड़ी में पुलिसकर्मी व अन्य लोगों की मदद से अविनाश शुक्ला को बैठाया जा रहा है। उनके पास से एक काले बैग में कहा गया कि 5 लाख रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई।
2: बड़ा सवाल यह है कि जब ट्रस्ट को पता चल गया था कि चढ़ावे का गबन हो रहा है, तो वो मामले को रफा दफा करने या मामले को शांत कराने में क्यों जुटा? आरोपी के घर चढ़ावे की रकम मिलने के तुरंत बाद एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई? उल्टा चंपत राय वीडियो जारी करके इस मामले से क्या गुमराह नहीं करते दिखे?
1: कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
0: तो चंपत राय कह रहे थे कि चढ़ावा चोरी मामले में कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। इसके बाद चंपत राय ना कुछ बोले न ही सामने आए, लेकिन चढ़ावा चोरी के मामले ने उन्हें और उनके साथियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
3: 4 जून को ट्रस्ट के लोगों को चोरी का पता चला, जिसके बाद 5 जून को चंपत राय के आदेश पर ट्रस्ट के लोग यहां पर आते हैं और अविनाश शुक्ला के पास से एक मोटी रकम बरामद करते हैं। सीसीटीवी में बैग लेते हुए अविनाश शुक्ला और ट्रस्ट के लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 8 जून को चंपत राय ने यह बयान दिया था कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। 7 जून को यह पूरा मामला सार्वजनिक हुआ था, तो

0: कैसे बिना ऑफिशियल कंप्लेंट के, बिना एफआईआर फाइल हुए एक पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और जो रकम है उसको बरामद किया जा रहा था।
1: तो इस नए खुलासे ने ट्रस्ट और चंपत राय को लेकर कई गंभीर और नए सवाल पैदा कर दिए, क्योंकि ट्रस्ट को 5 जून को ही चढ़ावा चोरी का पता चल गया। इसके बावजूद 7 जून को पहली बार ये मामला जब सार्वजनिक रूप से बाहर आया, उसके बाद 13 जून को यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई, 25 जून को एफआईआर दर्ज हुई, 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, 26 जून को आरोपियों को 3 दिन के लिए जेल भेजा गया। इसी दिन चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, यानी ट्रस्ट को पता लगने के 20 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई और 21 दिन बाद जाकर चंपत राय ने पद छोड़ा। अब सवाल है कि चुप्पी साधे बैठे चंपत राय ने पुलिस जांच में देरी क्यों की, जब 5 जून को ट्रस्ट और पुलिस दोनों को चढ़ावा चोरी की जानकारी और सबूत मिल गए थे, तो फिर फौरन एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई? मामले को दबाने की कोशिश क्यों हुई?
0: ये बताया जा रहा है कि इस पर किसी भी तरीके से किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई, शिकायत नहीं दर्ज कराई गई और ये पूरी घटना होने के 20 दिन बाद जाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस सीसीटीवी ने ट्रस्ट के लोगों के उन दावों की पोल खोल दी है जिसमें वह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी पहले नहीं थी।
2: पहले से पकड़ लिया जाके पैसा बरामद चंपत राय जी, तो एफआईआर क्यों नहीं की? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सोचे जो है समझी षड्यंत्र के तहत बड़ों को बचाने के लिए इन लोगों को मोहरा बना के ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। अभी हम मॉनिटरिंग भी डालेंगे, अभी हम सारा काम करेंगे, लेकिन उन पहलुओं को हम देख लें। हमारी कमेटी है, बैठ के काम करेगी, बख्शा कोई नहीं जाएगा।
1: पहले तो चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी होता रहा और जब उन्हें इसका पता चला तब भी उन्होंने फौरन इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, यानी चंपत राय ने अपनी पद की गरिमा के हिसाब से काम नहीं किया। सवालों में घिरे चंपत राय का पुलिस ने बयान दर्ज किया है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा सकती है। इधर पुलिस ने एसबीआई के अयोध्या धाम ब्रांच जाकर आरोपियों के खातों की जांच की ताकि चढ़ावा चोरी का पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल किया गया पता लगाया जा सके। वहीं अयोध्या के वकीलों ने ऐलान किया कि कोई भी चढ़ावा चोरी करने वाले आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा।
3: वकील लोग डिफेंस की ओर से वकील नहीं होंगे, अगर होंगे तो संघ में परमिशन लेंगे और 5 लाख रुपए वो पर हेड जमा करेंगे मोकिलों से लेके अपने और वकालत करेंगे। उस पैसे से प्रोसिक्यूशन की पैरवी होगी और उस प्रोसिक्यूशन की पैरवी में मुकदमा इन तीनों लोगों के खिलाफ दर्ज कराने की पूरी कोशिश की जाए।
4: बड़े आरोपियों सबको बचा लिया गया है, कोई चौकीदार है, कोई रिक्शा वाला है, कोई ड्राइवर है, कोई पोचाला है, सबको फंसाया गया है। इतना बड़ा कांड हो जाए, 40 से 70 बार घोटाला हो जाए, किसी बड़े आदमी पता न चले। मैं अधिवक्ता संघ का महामंत्री हूँ, मेरे नाक के नीचे हमारे बाबू लोग चोरी कर ले उनको पता न चले, तो भाई गले से उतरने वाली बात नहीं है।
2: उसके अलावा जो लोग हैं जिनको आप लोग बड़े लोग कह रहे हैं, उनको जो हम लोगों को जो ये लग रहा है कि एसआईटी से पुलिस से जो संघ का हमारे प्रस्ताव है उनको जो बचाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी सारी लिखा पड़ी जितनी कानूनी पहलू हो सकते हैं सब संघ करेगा। वो चाहे चंपत राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, गोपाल राव जी, अगर शासन प्रशासन कहीं से भी उनके उनको बचाने का प्रयास करता है तो हम लोग उनके खिलाफ भी पैरवी करेंगे।
1: चढ़ावा चोरी की जांच भले ही तेजी से आगे बढ़ रही हो, 8 आरोपियों को अब 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा सवालों में अब भी चंपत राय हैं, जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, जो केवल पद छोड़कर बचे हुए हैं।
5: क्या 2027 यूपी चुनाव की लड़ाई अब विचारधारा पर कब्जे की जंग बनती जा रही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में राम मनोहर लोहिया के परिवार से मुलाकात की और इसी के बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या अब बीजेपी अगले साल होने वाले यूपी चुनाव लोहिया वाला दाव खेलने वाली है। वहां मुद्दा बड़ा इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा से खुद को लोहिया की विचारधारा का सबसे बड़ा पैरोकार बताते आए हैं।
6: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनकी विचारधारा पर हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है,
7: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के संकल्पों के, उनके आदर्शों पे, उनकी बताई हुई नीतियों पे
8: समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे।
7: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं।
9: ना जाने कितनी बार अखिलेश यादव ने खुद को और अपनी समाजवादी पार्टी को राम मनोहर लोहिया और उनकी विचारधारा से जोड़ा है। बार बार लोहिया के विचारों से स्वयं को प्रेरित बताया है। 2000

0: 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में अब साल से भी कम का वक्त बचा है और इस अंतराल में लोहिया नाम की गूंज यूपी में और तेज होने वाली है। जी हाँ, और यूपी की इसी चुनावी बिसात में अब बीजेपी ने एक नया दांव खेलकर समाजवादी पार्टी को चौंका दिया है। एक तरफ अखिलेश राम मंदिर में छड़वा चोरी पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राम मनोहर लोहिया के परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात कर रही है। चुनावी साल में बीजेपी ने मंडल और कमंडल को एक साथ साधना शुरू कर दिया है। मंडल के मसीहा कहें या पिछड़ों के सबसे बड़े विचारक राम मनोहर लोहिया के घर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। इस दौरे का संकेत और संदेश सीधे सीधे अखिलेश तक है कि अब विचारधारा के तौर पर भी सेंधमारी की तैयारी है।
1: मोदी जी के 12 साल पूरा होने पे जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, जो विशेष जनसंपर्क अभियान, उसके साथ आज मेरा सौभाग्य है कि लोहिया जी के परपोतों से, उनके बेटों से मेरी मुलाकात हुई और पूरा एक पारिवारिक बैठना हुआ, सबसे बहुत अच्छा लगा।
2: सुना है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोहिया जी के घर गए थे, वो पार्टी जो जिसके विचार और नीत नफरतवादी है, जो समाज के अंदर में नफरत की बात करते हैं, समाज को डिवाइड करने की बात करते हैं। पहले अपने विचार बदलिए। समाजवादी पार्टी लोहिया जी के आदर्श आचरण को अपनाती है, लोहिया जी के बचाए हुए रास्ते पे चलती है, समाज को जोड़ने की बात करती है। किसी के घर जाने से कुछ नहीं होता है, आपको अपनी नीति और विचार बदलने की जरूरत है।
0: एक तरफ प्रयागराज में सीएम योगी समाजवादी पार्टी को अयोध्या और मथुरा पर ललकार रहे थे, तो दूसरी ओर पंकज चौधरी लखनऊ में लोहिया के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे। चर्चा तो ये भी चल निकली कि बीजेपी कहीं राम मनोहर लोहिया के परिवार वालों को चुनावी राजनीति में लाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, कहीं बीजेपी अखिलेश के उस हथियार को ही कुंद तो नहीं करना चाहती है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। अखिलेश को परेशानी इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि राम मनोहर लोहिया का परिवार पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी कर रहा है।
3: ले जी के विरुद्ध में तो कुछ नहीं कहना है, जो आदमी अपना जैसे करते हैं अपने अपने हिसाब से हर आदमी करता है। लेकिन पंकज चौधरी जी आए, उनकी देखिए माननीय प्रधानमंत्री के कहने से आए, उन्होंने व्यक्तिगत काल किया था, तो हम लोगों को अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों को बरसों से प्राप्त है। और जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी थे तब भी हमारी उनकी पारिवारिक संबंध थे, और जब से वो पीएम बने हैं उनमें खूबियां हैं।
0: राम मनोहर लोहिया मारवाड़ी वैश्य यानी ओबीसी वर्ग से थे और बीजेपी भी जानती है कि बिना ओबीसी समाज को साधे बगैर 2027 चुनाव में उनका कल्याण होने वाला नहीं है। इससे पहले यूपी चुनाव के लिए बनी विशेष टीम में ओबीसी को तरजीह दी और अब लोहिया परिवार से मुलाकात।
4: प्रदेश अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मिलने पहुंच गए। ये सब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई ऐसी एक दूसरे में उलझ गई है कि दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी हैं। कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों को उनके वैचारिक प्रणेताओं के जरिए साधने की कोशिश कर रही है।
0: बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पर ही जोर नहीं दिया है, बल्कि क्राइम रेट को लेकर भी एसपी कार्यकाल को घेरना भी शुरू कर दिया है।
5: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी।
0: 2027 को लेकर बीजेपी सिर्फ राम भरोसे नहीं है, उसे मालूम है कि धर्म का मुलम्मा समाज के सभी तबकों का वोट नहीं दिला सकता, इसीलिए अब बीजेपी समाजवादी पार्टी की तथा कथित विचारधारा में भी सेंधमारी करने में जुट गई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
6: देश में पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला है महाराष्ट्र के टीईटी परीक्षा का, जिसका मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता है, और ये वही बिजेंद्र गुप्ता है जिसका 2 साल पहले स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने किया था। आज तक के कैमरे में बिजेंद्र गुप्ता ने खुलेआम कहा था कि पेपर लीक करवाना उसका धंधा है और जेल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। महाराष्ट्र पुलिस इसी बिजेंद्र गुप्ता की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी कर रही है।
7: लगभग 1028 अलग अलग सेंटर्स पे ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन आज इस प्रकार से ये पेपर लीक हो गया है।
8: उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है पेपर जब्त किया है, 4 सेट मिले हैं। जो बातचीत चल रही थी ट्रैप में, उनका 1.5 करोड़ की डिमांड थी। वो 1.5 करोड़ में पेपर बेचने के बाद जो लेने वाला है वो आगे अलग अलग जो बायर है उनको पेपर देने का उनकी सिस्टम थी।
9: महाराष्ट्र में TET यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के करीब 4.5 लाख परीक्षार्थियों के साथ हुए इस धोखे का, इस अन्याय का जिम्मेदार ये चेहरा है, जिसे आज तक ने 2 साल पहले ही ढूंढ निकाला था। नाम है विजेंद्र गुप्ता। महाराष्ट्र में TET परीक्षा का पर्चा लीक करने वाला ये माफिया बेफिक्र होकर घूम रहा है। वहीं महाराष्ट्र के लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंता में डूबे हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ये कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। TET पेपर लीक से पूरी राज्य सरकार निशाने पर है। पेपर लीक की बीमारी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गई। देश का कोई भी राज्य, कोई भी परीक्षा, कुछ भी फुल प्रूफ नहीं।
10: CBI का उगाड़ नहीं पकड़ रहा, उसके घर में करूंगा नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ेगा। मैं सेंटर स्पोर्ट्स से नहीं पकड़ रहा, कभी मेरा पेपर नहीं पकड़ रहा।
9: अब सवाल है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुकते, तो इसका जवाब महाराष्ट्र TET पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड है, जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार का रहने वाला पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता ही महाराष्ट्र TET पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पटना और समस्तीपुर समेत कई राज्यों में महाराष्ट्र पुलिस छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वो सभी इसी पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता के इशारे पर काम कर रहे थे।
11: महाराष्ट्र के 5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जिस पेपर लीक माफिया को मुंबई पुलिस तलाश रही है, उस पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन आज तक नहीं किया था। वो साल था 2024 जब नीट पेपर लीक हुआ था। मैंने ही बिहार जाकर पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता को बेनकाब किया था। मैंने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें पेपर माफिया विजेंद्र गुप्ता ने पेपर माफियाओं के एक से बड़े एक राज खुले थे। विजेंद्र गुप्ता ने स्टिंग कैमरे में खुलासा किया था कि कैसे पेपर माफिया बेखौफ होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं।
9: तो अगर आपको लगता है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा, तो इसका जवाब विजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का बुलंद हौसला है, जिन्हें कानून का कोई डर नहीं। तभी तो वो खुलेआम कहते फिरते हैं कि यही खेल करेंगे, चाहे कितनी बार भी जेल चले जाएं।
10: नई बार जेल जाने का था, जेल कर फिर परसों से यही खेल करेंगे।
12: आप कैसे UPSC वाला किए थे, वो कौन सी कंपनी?
10: MPPSC। हाँ। इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होंगे।
12: किसका नाम?
10: बेदीराम जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे। विद्यार्थी लायक था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गए साथ में, धरा गए, जेल चल गए।
9: जब तक विजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का ढंग से इलाज नहीं होता, ये पेपर लीक वाली बीमारी रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, चाहे कोई भी राज्य हो, किसी की भी सरकार।
13: पेपर फुटले तर फुटू दे, विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली तर करू दे। आजच ठाण्यामध्ये एक पेपर फुटला आहे TET चा, कोणालाच काही पडलेलं नाहीये। नीटचा पेपर फुटला, धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा तर दिलाच पाहिजे।
14: ये सरकार की नाकामयाबी आहे। ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है, तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
15: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता, तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
9: महाराष्ट्र TET पेपर लीक का खुलासा वहाँ की पुलिस ने ही किया है। परीक्षा से पहले भिवंडी पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग दिल्ली और हरियाणा से मुंबई आकर TET के पेपर बेचने का सौदा कर रहे हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर मुंबई से 3 लोग, आकाश, राजीव और धीरज को गिरफ्तार किया, जिनसे लीक पेपर बरामद हुआ, जिसने आज तक से कही गई पेपर लीक माफिया विजेंद्र की बात को 100% सच साबित कर दिया है कि पेपर लीक नहीं रुकने वाला है।
16: ये संजीव मुखिया अभी तो भगा हुआ है ना, ये
10: पकड़ाएगा भी
12: क्यों?
16: नहीं, पहले भी जेल जा चुका है ना,
10: पैसा कमाया बॉस, इधर 1 साल का, 1 साल पहले भी लड़ा था।
16: उसकी बीवी इलेक्शन भी तो लड़ी थी,
17: उस इलेक्शन में ही तो बर्बाद हुआ, लोगों से एडवांस उठाया, बेटा वो सब दिन नीट का ही काम करता है, दस बीस कहीं ना कहीं से सेंटर फेंटर से करके उस साल में 2-3 करोड़ रुपया ईश्वर उसको

0: 400 रुपया कमाने का शौक था।
1: सही
2: है, 700 करोड़ तो कम का मालिक
0: 700 काम किया इस बार नीटवर्क
3: 700
2: मिल ही नहीं सकता।
0: क्यों मिलेगा, 700 काम किया हुआ इस बार
3: 700 स्टूडेंट्स का
0: 40 लाख से गुना कर दीजिए।
4: पिछले दो दशक में ऐसी परीक्षाएं जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोग बैठे हों, उनमें 45 से ज्यादा पेपर लीक के मामले हुए और सिर्फ 18 लोगों को सजा मिली। सबसे बड़ी बात, ये सभी सजाएं सिर्फ 2 मामलों से जुड़ी, जिनमें से एक साल 2010 का रेलवे भर्ती घोटाला है। बाकी बचे 95% से ज्यादा मामलों में सालों से अदालती सुनवाई हो रही है, मामले लंबित पड़े हैं और पेपर लीक के आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम विजेंद्र गुप्ता का है, जो आज तक के खुफिया कैमरे में लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ पर इतराता सुना और देखा गया। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक से ये माफिया एक बार फिर सुर्खियों में है। अब देखना है कि क्या महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पेपर लीक के इस माफिया को रिकॉर्ड टाइम में पकड़कर कड़ी सजा दिलाकर कोई नजीर पेश कर पाती है, या फिर पेपर लीक का माफिया इस बार भी चुनौती देकर पेपर लीक कराता ही रहेगा। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
3: और अब बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की, जिन्हें 36 साल के बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है और श्रीनगर के टाडा कोर्ट में चार्जशीट भी दायर की है।
5: छत्तीस बरस बाद जागी है इंसाफ की उम्मीद। 36 बरस बाद कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। जी हां, जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है। टाडा कोर्ट में 700 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट दायर कर दी गई है।
6: कोर्ट में जो है ट्रायल होना है, यानी कि कोर्ट में अब ट्रायल होगा, उसके बाद ही जो है निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया है इस चार्जशीट में, जिसमें JKLF का खूंखार आतंकी कमांडर यासीन मलिक भी शामिल है। और SIA ने साफ तौर पर कहा है कि यासीन मलिक ही इसमें मुख्य अभियुक्त है। और जो इस पूरे मामले में जो 5 अभियुक्तों के नाम रखे गए हैं, उनमें से 3 जो है उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। एक आतंकी जो है वो एब्सकॉन्डिंग है, यानी कि वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर भाग गया था, वो वहीं पर छिपा हुआ है। और यासीन मलिक जो है इस समय तिहार जेल में है।
5: 18 अप्रैल 1990 को श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी स्किम्स परिसर के पास से JKLF के आतंकवादियों ने स्टाफ नर्स सरला भट्ट का अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद सरला से मारपीट और गैंग रेप किया गया। इसके बाद श्रीनगर की उमर कॉलोनी यानी मालबाग में ऑटोमेटिक राइफल से गोली मारकर सरला की हत्या कर दी गई। डाउनटाउन श्रीनगर में उनकी क्षत विक्षत लाश मिली थी।
6: SIA ने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी पेश किया, और वो क्या था, वो था इंडिया टुडे आज तक ग्रुप का जो न्यूज ट्रैक था 1990 में, जो उस समय न्यूज ट्रैक के पत्रकारों ने जो रिपोर्टिंग की उसका एविडेंस सामने रखा गया। और खासतौर पर जो JKLF का तबका जो आतंकी कमांडर था फारूक अहमद डार उर्फ बिटा कराटे, उसका जो इंटरव्यू न्यूज ट्रैक ने किया था वो वीडियो भी अदालत में पेश किया गया है। और इस वीडियो में फारूक अहमद डार ने साफ तौर पर कबूला था कि उसने 20 कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या की थी। अब कश्मीरी पंडित समुदाय की मांग है कि एक व्यापक तौर पर सभी मामलों में जांच होनी चाहिए, ताकि वो तमाम दोषी जो है जिन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के ऊपर अत्याचार किया उनको सजा मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।
3: अब बात उस हत्याकांड की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। केतन मर्डर केस में आरोपी सिया और चेतन की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब अगली सुनवाई होनी है 3 जुलाई को। इन 4 दिनों में पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि केतन की हत्या के पीछे असली वजह थी क्या।
7: लोहगढ़ किले का ये वही हिस्सा है जहां केतन को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया गया। वो 340 फीट गहरी खाई में गिरा और दम तोड़ दिया। उलझाऊ और सस्पेंस भरे सवालों के साथ पुलिस 28 जून को ठीक उसी खाई के पास पहुंची। पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। पुलिस ने सिया से जाना कि 18 जून को इस खाई के पास और कौन कौन था, चेतन के साथ उसकी क्या बातें हुई, क्या दोनों में किसी बात को लेकर नाराजगी थी, चेतन को सिया ने मौके पर कितनी देर पहले बुलाया था। ऐसे कई सवाल

0: माफिया से किए गए। और इसी बीच आता है अब तक का सबसे अहम सस्पेंस। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट करते हुए सिया से कहा कि वो पुतले को खाई में धक्का दे। सिया ने ही पुतले को खाई में धकेला।
1: जो पुतला बनाया गया था वो केतन अग्रवाल के जैसा था, उसी के वजन का था, ताकि वो नीचे जाने के बाद ये पता चले और ये फाइनलाइज हो सके कि किस तरीके का इम्पैक्ट था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इम्पैक्ट के बाद पुतले के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो देखना पुलिस चाह रही थी।
0: खुलासे के मुताबिक सिया और चेतन ने हत्या की गहरी साजिश रची। उसी दौरान तय हुआ था कि किले में ऊंचाई पर पहुंचकर सिया अचानक बैठेगी। ये संकेत होगा कि अब केतन को खाई में धक्का देना है। अब पुलिस की तैयारी है कि क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाए और अब की बार पुलिस चेतन से पुतले को धक्का देने को कहेगी। पुणे पुलिस की कोशिश है कि सिया और चेतन के गुनाहों से जुड़े सुराग रिक्रिएशन के जरिए हासिल किए जाए, उसे वेरीफाई किया जाए और मामले को अंजाम तक पहुँचाया जाए। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
2: कराची ब्लास्ट में अपने रेंजर्स की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बीती रात भीषण बमबारी की। रिहायशी इलाकों में की गई इस बमबारी में औरतों और बुजुर्गों और बच्चों समेत 25 लोगों की जान ले ली गई है।
3: ये फूल से बच्चे पाकिस्तान की कायराना हरकत के शिकार हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में इन बच्चों, बुजुर्गों और औरतों पर बम बरसाए हैं। पक्तिता प्रांत के गयान जिले, पक्तिता प्रांत के समकानी जिले और कुनार प्रांत के मनोगई जिले में नागरिक इलाकों पर हवाई हमले किए। अफगानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिक मारे गए, जिनमें कई छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। अपनी जमीन पर आतंकी पाल रहा पाकिस्तान एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर अफगानी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर बम बरसा रहा है। क्या आसिम मुनीर की नजर में ये लड़का TTP का आतंकी है? क्या ये दुदमुही बच्ची दहशतगर्द है? क्या ये घायल लड़की कराची ब्लास्ट की मास्टरमाइंड है? और क्या ये लहूलुहान बच्चियां, बुजुर्ग और महिलाएं आतंकी नजर आती हैं? अगर नहीं तो ये साफ है कि पाकिस्तान युद्ध अपराध कर रहा है और इस अपराध का जिम्मेदार आसिम मुनीर नहीं तो और कौन है, जिसने 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिकों को मार डाला। पाकिस्तान गाजा पर इजरायली बमबारी के बाद छाती पीटने लगता है, मगर कल रात उसने सोची समझी सैन्य बर्बरता दिखाते हुए कुख्यात डबल टैप रणनीति का इस्तेमाल किया और 35 बेकसूरों को मार डाला। आज तक
2: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

चढ़ावा चोरी केस में एसबीआई सहित 6-7 बैंकों को नोटिस। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और सभी वित्तीय लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड तलब। सभी आरोपियों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी। पीलीभीत में कहा यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा होगा। कर्फ्यू गुंडागर्दी से लोगों का जीना होगा हराम। आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर। नौकरशाही में प्रक्रिया के बदलाव के भी संकेत। बिहार के भोजपुर में भरत एनकाउंटर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने की है सीबीआई जांच की मांग। और यूपी के शामली में इस्लाम कबूलने वाले आयुष मलिक ने फिर से हिंदू धर्म अपनाया। कहा

0: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 70-80 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल है चंपत राय को लेकर, जिन्हें चढ़ावा चोरी की बात 4 जून को ही पता चल गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी भी बड़ी गड़बड़ी से इनकार करते रहे। सवाल है क्यों?
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट

0: न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं।
1: सात जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय चढ़ावा चोरी पर पहली बार और आखिरी बार बोले।
0: सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है।
1: लेकिन इससे चौंकाने वाली बात यह कि इस बयान के दो दिन पहले ही ट्रस्ट के सभी बड़े पदाधिकारियों को पता चल चुका था कि चढ़ावे का गबन राम मंदिर के भीतर किया जा रहा है। ये रहा इसका सबूत इस सीसीटीवी वीडियो में। जिस शख्स को आप बैग लिए देख रहे हैं, इसका नाम है अविनाश शुक्ला, जो चढ़ावा चोरी गैंग का अहम सदस्य, लूटकांड का अहम किरदार। इसके हाथ में जो काले रंग का बैग दिखता है, कहा जा रहा है कि चोरी की रकम इसी में, जो सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे से उड़ाई गई। सूत्रों की माने तो 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे। छापेमारी जब हुई तो अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5 लाख कैश बरामद हुआ, जो इस बैग में रखा हुआ है।
2: इस वक्त मौजूद है मुख्य आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला के घर के बाहर, जहां से 5 जून की रात को ट्रस्ट के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में अनधिकारिक तौर पर एक मोटी रकम बरामद की, जो कि सीसीटीवी में कैद है। ये वही घर है मेरे पीछे जो अविनाश शुक्ला है, जहां पर वह किराए पर रहा करता था। कल अविनाश शुक्ला के भाई से पुलिस ने यहीं पर लाकर पूछताछ की।
1: राम भक्त पहले से ही चढ़ावा चोरी के आरोपों से दंग है, लेकिन ये नया सच और खुलासा ज्यादा विचलित करने वाला है, क्योंकि इसने नए सिरे से ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया।
3: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला का 5 जून का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को इस चढ़ावा चोरी की जानकारी पहले से थी और इसकी एफआईआर दर्ज कराने में ट्रस्ट ने देरी की। यानी अविनाश शुक्ला समेत सभी आरोपी लगभग ट्रस्ट की निगाह में आ गए थे, और अविनाश शुक्ला का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि कैसे एक सफेद गाड़ी में पुलिसकर्मी व अन्य लोगों की मदद से अविनाश शुक्ला को बैठाया जा रहा है। उनके पास से एक काले बैग में कहा गया कि 5 लाख रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई।
1: बड़ा सवाल यह है कि जब ट्रस्ट को पता चल गया था कि चढ़ावे का गबन हो रहा है, तो वो मामले को रफा दफा करने या मामले को शांत कराने में क्यों जुटा? आरोपी के घर चढ़ावे की रकम मिलने के तुरंत बाद एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई? उल्टा चंपत राय वीडियो जारी करके इस मामले से क्या गुमराह नहीं करते दिखे?
0: कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
4: तो चंपत राय कह रहे थे कि चढ़ावा चोरी मामले में कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। इसके बाद चंपत राय ना कुछ बोले, न ही सामने आए, लेकिन चढ़ावा चोरी के मामले ने उन्हें और उनके साथियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
2: 4 जून को ट्रस्ट के लोगों को चोरी का पता चला, जिसके बाद 5 जून को चंपत राय के आदेश पर ट्रस्ट के लोग यहां पर आते हैं और अविनाश शुक्ला के पास से एक मोटी रकम बरामद करते हैं। सीसीटीवी में बैग लेते हुए अविनाश शुक्ला और ट्रस्ट के लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 8 जून को चंपत राय ने यह बयान दिया था कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। 7 जून को यह पूरा मामला सार्वजनिक हुआ था, तो कैसे बिना ऑफिशियल कंप्लेंट के, बिना एफआईआर फाइल हुए एक पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और जो रकम है उसको बरामद किया जा रहा था।
1: तो इस नए खुलासे ने ट्रस्ट और चंपत राय को लेकर कई गंभीर और नए सवाल पैदा कर दिए, क्योंकि ट्रस्ट को 5 जून को ही चढ़ावा चोरी का पता चल गया। इसके बावजूद 7 जून को पहली बार ये मामला जब सार्वजनिक रूप से बाहर आया, उसके बाद 13 जून को यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई, 25 जून को एफआईआर दर्ज हुई, 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, 26 जून को आरोपियों को 3 दिन के लिए जेल भेजा गया। इसी दिन चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, यानी ट्रस्ट को पता लगने के 20 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई और 21 दिन बाद जाकर चंपत राय ने पद छोड़ा। अब सवाल है कि चुप्पी साधे बैठे चंपत राय ने पुलिस जांच में देरी क्यों की, जब 5 जून को ट्रस्ट और पुलिस दोनों को चढ़ावा चोरी की जानकारी और सबूत मिल गए थे, तो फिर फौरन एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई? मामले को दबाने की कोशिश क्यों हुई?
2: ये बताया जा रहा है कि इस पर किसी भी तरीके से किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई, शिकायत नहीं दर्ज कराई गई, और ये पूरी घटना होने के 20 दिन बाद जाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है। बड़े सवाल

0: सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस सीसीटीवी ने ट्रस्ट के लोगों के उन दावों की पोल खोल दी है जिसमें वह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी पहले नहीं थी।
1: पहले से पकड़ लिया जाके पैसा बरामद चंपत राय जी, तो FIR क्यों नहीं की? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सोचे जो समझी षड्यंत्र के तहत बड़ों को बचाने के लिए इन लोगों को मोहरा बना के ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। अभी हम मॉनिटरिंग भी डालेंगे, अभी हम सारा काम करेंगे, लेकिन उन पहलुओं को हम देख ले, हमारी कमेटी है बैठ के काम करेगी, बख्शा कोई नहीं जाएगा।
2: पहले तो चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी होता रहा, और जब उन्हें इसका पता चला तब भी उन्होंने फौरन इस मामले में FIR दर्ज नहीं करवाई, यानी चंपत राय ने अपनी पद की गरिमा के हिसाब से काम नहीं किया। सवालों में घिरे चंपत राय का पुलिस ने अब बयान दर्ज किया है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा सकती है। इधर पुलिस ने SBI के अयोध्या धाम ब्रांच जाकर आरोपियों के खातों की जांच की, ताकि चढ़ावा चोरी का पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल किया गया पता लगाया जा सके। वहीं अयोध्या के वकीलों ने ऐलान किया कि कोई भी चढ़ावा चोरी करने वाले आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा।
3: वकील लोग डिफेंस की ओर से वकील नहीं होंगे, अगर होंगे तो संघ में परमिशन लेंगे और 5 लाख रुपए वो पर हेड जमा करेंगे मोकिलों से लेके अपने, और वकालत करेंगे। उस पैसे से प्रोसिक्यूशन की पैरवी होगी, और उस प्रोसिक्यूशन की पैरवी में मुकदमा इन तीनों लोगों के खिलाफ दर्ज कराने की पूरी कोशिश की जाए।
4: बड़े आरोपियों सबको बचा लिया गया है, कोई चौकीदार है, कोई रिक्शा वाला है, कोई ड्राइवर है, कोई पोछा वाला है, सबको फंसाया गया है। इतना बड़ा कांड हो जाए, 40 से 70 बार घोटाला हो जाए, किसी बड़े आदमी पता ना चले। मैं अधिवक्ता संघ का महामंत्री हूँ, मेरे नाक के नीचे हमारे बाबू लोग चोरी कर ले, उनको पता ना चले, तो भाई गले से उतरने वाली बात नहीं है।
1: उसके अलावा जो लोग हैं जिनको आप लोग बड़े लोग कह रहे हैं, उनको जो हम लोगों को जो ये लग रहा है कि SIT से पुलिस से जो संघ का हमारे प्रस्ताव है उनको जो बचाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी सारी लिखा पड़ी जितनी कानूनी पहलू हो सकते हैं सब संघ करेगा। वो चाहे चंपत राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, गोपाल राव जी, अगर शासन प्रशासन कहीं से भी उनको बचाने का प्रयास करता है तो हम लोग उनके खिलाफ भी पैरवी करेंगे।
2: चढ़ावा चोरी की जांच भले ही तेजी से आगे बढ़ रही हो, 8 आरोपियों को अब 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा सवालों में अब भी चंपत राय हैं, जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, जो केवल पद छोड़कर बचे हुए हैं।
5: क्या 2027 यूपी चुनाव की लड़ाई अब विचारधारा पर कब्जे की जंग बनती जा रही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में राम मनोहर लोहिया के परिवार से मुलाकात की, और इसी के बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या अब बीजेपी अगले साल होने वाले यूपी चुनाव लोहिया वाला दांव खेलने वाली है। वहां मुद्दा बड़ा इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा से खुद को लोहिया की विचारधारा का सबसे बड़ा पैरोकार बताते आए हैं।
6: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनकी विचारधारा पर हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है,
7: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के संकल्पों के, उनके आदर्शों पे, उनकी बताई हुई नीतियों पे समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे।
8: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं।
9: ना जाने कितनी बार अखिलेश यादव ने खुद को और अपनी समाजवादी पार्टी को राम मनोहर लोहिया और उनकी विचारधारा से जोड़ा है, बार बार लोहिया के विचारों से स्वयं को प्रेरित बताया है। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में अब साल से भी कम का वक्त बचा है, और इस अंतराल में लोहिया नाम की गूंज यूपी में और तेज होने वाली है। जी हाँ, और यूपी की इसी चुनावी बिसात में अब बीजेपी ने एक नया दांव खेलकर समाजवादी पार्टी को चौंका दिया है। एक तरफ अखिलेश राम मंदिर में छड़वा चोरी पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राम मनोहर लोहिया के परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात कर रही है। चुनावी साल में बीजेपी ने मंडल और कमंडल को एक साथ साधना शुरू कर दिया है। मंडल के मसीहा कहें या पिछड़ों के सबसे बड़े विचारक राम मनोहर लोहिया के घर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। इस दौरे का संकेत और संदेश सीधे सीधे अखिलेश तक है कि अब विचारधारा के तौर पर भी सेंधमारी की तैयारी है।
10: मोदी जी के 12 साल पूरा होने पे जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, जो विशेष जनसंपर्क अभियान, उसके साथ आज मेरा सौभाग्य कि लोहिया जी के परपोतों से, उनके बेटों से मेरी मुलाकात हुई और पूरा एक पारिवारिक बैठना हुआ, सबसे बहुत अच्छा लगा।
11: सुना है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोहिया जी के घर गए थे, वो पार्टी जो जिसके विचार और नीत नफरतवादी हैं, जो समाज के अंदर में नफरत की बात करते हैं, समाज को डिवाइड करने की बात करते हैं, पहले अपने विचार बदलिए। समाजवादी पार्टी लोहिया जी के आदर्श आचरण को अपनाती है, लोहिया जी के बचाए हुए रास्ते पे चलती है, समाज को जोड़ने की बात करती है। किसी के घर जाने से कुछ नहीं होता है, आपको अपनी नीत और विचार बदलने की जरूरत है।
9: एक तरफ प्रयागराज में सीएम योगी समाजवादी पार्टी को अयोध्या और मथुरा पर ललकार रहे थे, तो दूसरी ओर पंकज चौधरी लखनऊ में लोहिया के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे। चर्चा तो ये भी चल निकली कि बीजेपी कहीं राम मनोहर लोहिया के परिवार वालों को चुनावी राजनीति में लाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, कहीं बीजेपी अखिलेश के उस हथियार को ही कुन तो नहीं करना चाहती है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। अखिलेश को परेशानी इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि राम मनोहर लोहिया का परिवार पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी कर रहा है।
12: ले जी के विरुद्ध में तो कुछ नहीं कहना है, जो आदमी अपना जैसे करते हैं अपने अपने हिसाब से हर आदमी करता है। लेकिन पंकज चौधरी जी आए, उनकी देखिए माननीय प्रधानमंत्री के कहने से आए, उन्होंने व्यक्तिगत कॉल किया था, तो हम लोगों को अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों को बरसों से प्राप्त है। और जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी थे तब भी हमारी उनकी पारिवारिक संबंध थे, और जब से वो पीएम बने हैं उनमें खूबियां हैं।
9: राम मनोहर लोहिया मारवाड़ी वैश्य यानी ओबीसी वर्ग से थे, और बीजेपी भी जानती है कि बिना ओबीसी समाज को साधे बगैर 2027 चुनाव में उनका कल्याण होने वाला नहीं है। इससे पहले यूपी चुनाव के लिए बनी विशेष टीम में ओबीसी को तरजीह दी और अब लोहिया परिवार से मुलाकात।
13: प्रदेश अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मिलने पहुंच गए। ये सब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई ऐसी एक दूसरे में उलझ गई है कि दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी हैं। कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों को उनके वैचारिक प्रणेताओं के जरिए साधने की कोशिश कर रही है।
9: बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पर ही जोर नहीं दिया है, बल्कि क्राइम रेट को लेकर भी एसपी कार्यकाल को घेरना भी शुरू कर दिया है।
14: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी।
9: 2027 को लेकर बीजेपी सिर्फ राम भरोसे नहीं है, उसे मालूम है कि धर्म का मुलम्मा समाज के सभी तबकों का वोट नहीं दिला सकता, इसीलिए अब बीजेपी समाजवादी पार्टी की तथा कथित विचारधारा में भी सेंधमारी करने में जुट गई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
5: देश में पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला है महाराष्ट्र के टीईटी परीक्षा का, जिसका मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता है, और ये वही बिजेंद्र गुप्ता है जिसका 2 साल पहले स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने किया था। आज तक के कैमरे में बिजेंद्र गुप्ता ने खुलेआम कहा था कि पेपर लीक करवाना उसका धंधा है और जेल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। महाराष्ट्र पुलिस इसी बिजेंद्र गुप्ता की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी कर रही है।
15: लगभग 1028 अलग अलग सेंटर्स पे ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन आज इस प्रकार से ये पेपर लीक हो गया है।
16: उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है, 4 सेट मिले हैं, जो बातचीत चल रही थी ये ट्रैप में, उनका 1.5 करोड़ की डिमांड थी, वो 1.5 करोड़ में पेपर बेचने के बाद जो लेने वाला है वो आगे अलग अलग जो बायर है उनको पेपर देने का उनकी सिस्टम थी।
17: महाराष्ट्र में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के करीब 4.5 लाख परीक्षार्थियों के साथ हुए इस धोखे का, इस अन्याय का जिम्मेदार ये चेहरा है जिसे आज तक ने 2 साल पहले ही ढूंढ निकाला था। नाम है बिजेंद्र गुप्ता। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा का पर्चा लीक करने वाला ये माफिया बेफिक्र होकर घूम रहा है। वहीं महाराष्ट्र के लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंता में डूबे हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ये कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। टीईटी पेपर लीक से पूरी राज्य सरकार निशाने पर है। पेपर लीक की बीमारी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गई। देश का कोई भी राज्य, कोई भी परीक्षा, कुछ भी फुल प्रूफ नहीं है।
18: सीबीआई का उगा नहीं पकड़ लिया, उसके घर में करूंगा नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ेगा, ऐसा कभी स्पॉट से नहीं पकड़ा, कभी मेरा पेपर नहीं पकड़ा।
2: अब सवाल है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुकते, तो इसका जवाब महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड है जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार का रहने वाला पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता ही महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पटना और समस्तीपुर समेत कई राज्यों में महाराष्ट्र पुलिस छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने जिन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया वो सभी इसी पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता के इशारे पर काम कर रहे थे।
19: महाराष्ट्र के 5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जिस पेपर लीक माफिया को मुंबई पुलिस तलाश रही है, उस पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन आज तक नहीं किया था। वो साल था 2024 जब नीट पेपर लीक हुआ था। मैंने ही बिहार जाकर पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता को बेनकाब किया था। मैंने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें पेपर माफिया विजेंद्र गुप्ता ने पेपर माफियाओं के एक से बड़े एक राज खुले थे। विजेंद्र गुप्ता ने स्टिंग कैमरे में खुलासा किया था कि कैसे पेपर माफिया बेखौफ होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं।
2: तो अगर आपको लगता है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा, तो इसका जवाब विजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का बुलंद हौसला है जिन्हें कानून का कोई डर नहीं। तभी तो वो खुलेआम कहते फिरते हैं कि यही खेल करेंगे चाहे कितनी बार भी जेल चले जाए।
18: रही बात जेल जाने का, था जेल कर गए फिर परसों से यही खेल करेंगे।
20: आप कैसे यूपीएससी वाला किए थे, वो कौन सी कंपनी?
18: एमपीपीएससी। हाँ, इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होंगे।
20: किसका नाम?
18: बेदीराम जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे, विद्यार्थी लाइफ था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गए साथ में, धरा गए जेल चल गए।
2: जब तक विजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का ढंग से इलाज नहीं होता, ये पेपर लीक वाली बीमारी रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, चाहे कोई भी राज्य हो, किसी की भी सरकार।
21: पेपर फुटले तर फुटू दे, विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली तर करू दे। आजच ठाण्यामध्ये एक पेपर फुटलाय टीईटीचा, कोणालाच काही पडलेलं नाहीये। नीटचा पेपर फुटला, धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा तर दिलाच पाहिजे।
22: ये सरकार की नाकामयाबी आहे। ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
23: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
2: महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक का खुलासा वहाँ की पुलिस ने ही किया है। परीक्षा से पहले भिवंडी पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग दिल्ली और हरियाणा से मुंबई आकर टीटी के पेपर बेचने का सौदा कर रहे हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर मुंबई से 3 लोग आकाश, राजीव और धीरज को गिरफ्तार किया जिनसे लीक पेपर बरामद हुआ, जिसने आज तक से कही गई पेपर लीक माफिया विजेंद्र की बात को 100% सच साबित कर दिया है कि पेपर लीक नहीं रुकने वाला है।
24: ये संजीव मुखिया के अभी तो भगा हुआ है ना, ये
18: पकड़ाएगा भी
20: क्यों?
24: नहीं, पहले भी जेल जा चुका है ना,
18: पैसा कमाया बस इधर एक साल का।
20: एक साल पहले
24: उसकी बीवी इलेक्शन की तो लड़ी थी,
18: उस इलेक्शन में ही तो बर्बाद हुआ, लोगों से एडवांस उठाया, बेटा वो सब दिन नीट का ही काम करता है, 10-20 कहीं ना कहीं से सेंटर फेंटर से करके उस साल में 2-3 करोड़ रुपया, इस बार उसको 1400-1400 करोड़ रुपया कमाने का शौक था।
2: पिछले 2 दशक में ऐसी परीक्षाएं जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोग बैठे हों उनमें 45 से ज्यादा पेपर लीक के मामले हुए और सिर्फ 18 लोगों को सजा मिली। सबसे बड़ी बात, ये सभी सजाएं सिर्फ 2 मामलों से जुड़ी, जिनमें से एक साल 2010 का रेलवे भर्ती घोटाला है। बाकी बचे 95% से ज्यादा मामलों में सालों से अदालती सुनवाई हो रही है, मामले लंबित पड़े हैं और पेपर लीक के आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम विजेंद्र गुप्ता का है, जो आज तक के खुफिया कैमरे में लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ पर इतराता सुना और देखा गया। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक से ये माफिया एक बार फिर सुर्खियों में है। अब देखना है कि क्या महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पेपर लीक केस माफिया को रिकॉर्ड टाइम में पकड़कर कड़ी सजा दिलाकर कोई नजीर पेश कर पाती है, या फिर पेपर लीक का माफिया इस बार भी चुनौती देकर पेपर लीक कराता ही रहेगा। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
5: और अब बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की, जिन्हें 36 साल के बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है और श्रीनगर के टाडा कोर्ट ने चार्जशीट भी दायर की है।
0: छत्तीस बरस बाद जागी है इंसाफ की उम्मीद। 36 बरस बाद कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। जी हां, जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है। टाडा कोर्ट में 700 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट दायर कर दी गई है।
1: कोर्ट में जो है ट्रायल होना है, यानी कि कोर्ट में अब ट्रायल होगा, उसके बाद ही जो है निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया है इस चार्जशीट में, जिसमें JKLF का खूंखार आतंकी कमांडर यासीन मलिक भी शामिल है। और SIA ने साफ तौर पर कहा है कि यासीन मलिक ही इसमें मुख्य अभियुक्त है। और जो इस पूरे मामले में जो 5 अभियुक्तों के नाम रखे गए हैं, उनमें से 3 जो है उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। एक आतंकी जो है वो एब्सकॉन्डिंग है, यानी कि वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर भाग गया था, वो वहीं पर छिपा हुआ है। और यासीन मलिक जो है इस समय तिहाड़ जेल में है।
0: 18 अप्रैल 1990 को श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी स्किम्स परिसर के पास से JKLF के आतंकवादियों ने स्टाफ नर्स सरला भट्ट का अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद सरला से मारपीट और गैंग रेप किया गया। इसके बाद श्रीनगर की उमर कॉलोनी यानी मालबाग में ऑटोमेटिक राइफल से गोली मारकर सरला की हत्या कर दी गई। डाउनटाउन श्रीनगर में उनकी छत विक्षत लाश मिली थी।
1: SIA ने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी पेश किया, और वो क्या था, वो था इंडिया टुडे आज तक ग्रुप का जो न्यूज ट्रैक था 1990 में, जो उस समय न्यूज ट्रैक के पत्रकारों ने जो रिपोर्टिंग की, उसका एविडेंस सामने रखा गया। और खासतौर पर जो JKLF का तबका जो आतंकी कमांडर था फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, उसका जो इंटरव्यू न्यूज ट्रैक ने किया था, वो वीडियो भी अदालत में पेश किया गया है। और इस वीडियो में फारूक अहमद डार ने साफ तौर पर कबूला था कि उसने 20 कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या की थी। अब कश्मीरी पंडित समुदाय की मांग है कि एक व्यापक तौर पर सभी मामलों में जांच होनी चाहिए, ताकि वो तमाम दोषी जो है जिन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के ऊपर अत्याचार किया, उनको सजा मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।
5: अब बात उस हत्याकांड की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। केतन मर्डर केस में आरोपी सिया और चेतन की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब अगली सुनवाई होनी है 3 जुलाई को। इन 4 दिनों में पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि केतन की हत्या के पीछे असली वजह थी क्या।
3: लोहगढ़ किले का ये वही हिस्सा है जहां केतन को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया गया। वो 340 फीट गहरी खाई में गिरा और दम तोड़ दिया। उलझाऊ और सस्पेंस भरे सवालों के साथ पुलिस 28 जून को ठीक उसी खाई के पास पहुंची। पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। पुलिस ने सिया से जाना कि 18 जून को इस खाई के पास और कौन कौन था, चेतन के साथ उसकी क्या बातें हुई, क्या दोनों में किसी बात को लेकर नाराजगी थी, चेतन को सिया ने मौके पर कितनी देर पहले बुलाया था। ऐसे कई सवाल सिया से किए गए। और इसी बीच आता है अब तक का सबसे अहम सस्पेंस। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट करते हुए सिया से कहा कि वो पुतले को खाई में धक्का दे। सिया ने ही पुतले को खाई में धकेला।
4: जो पुतला बनाया गया था वो केतन अग्रवाल के जैसा था, उसी के वजन का था, ताकि वो नीचे जाने के बाद ये पता चले और ये फाइनलाइज हो सके कि किस तरीके का इम्पैक्ट था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इम्पैक्ट के बाद पुतले के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो देखना पुलिस चाह रही थी।
3: खुलासे के मुताबिक सिया और चेतन ने हत्या की गहरी साजिश रची। उसी दौरान तय हुआ था कि किले में ऊंचाई पर पहुंचकर सिया अचानक बैठेगी। ये संकेत होगा कि अब केतन को खाई में धक्का देना है। अब पुलिस की तैयारी है कि क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाए और अब की बार पुलिस चेतन से पुतले को धक्का देने को कहेगी। पुणे पुलिस की कोशिश है कि सिया और चेतन के गुनाहों से धुले सुराग रिक्रिएशन के जरिए हासिल किए जाए, उसे वेरीफाई किया जाए और मामले को अंजाम तक पहुंचाया जाए। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
5: कराची ब्लास्ट में अपने रेंजर्स की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बीती रात भीषण बमबारी की। रिहायशी इलाकों में की गई इस बमबारी में औरतों और बुजुर्गों और बच्चों समेत 25 लोगों की जान ले ली गई है।
6: ये फूल से बच्चे पाकिस्तान की कायराना हरकत के शिकार हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में इन बच्चों, बुजुर्गों और औरतों पर बम बरसाए हैं। पक्तिता प्रांत के गयान जिले, पक्तिता प्रांत के समकानी जिले और कुनार प्रांत के मनुगई जिले में नागरिक इलाकों पर हवाई हमले किए। अफगानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिक मारे गए, जिनमें कई छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। अपनी जमीन पर आतंकी पाल रहा पाकिस्तान एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर अफगानी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर बम बरसा रहा है। क्या आसिम मुनीर की नजर में ये लड़का TTP का आतंकी है? क्या ये दुदमुही बच्ची दहशतगर्द है? क्या ये घायल लड़की कराची ब्लास्ट की मास्टरमाइंड है? और क्या ये लहूलुहान बच्चियां, बुजुर्ग और महिलाएं आतंकी नजर आती हैं? अगर नहीं तो ये साफ है कि पाकिस्तान युद्ध अपराध कर रहा है और इस अपराध का जिम्मेदार आसिम मुनीर नहीं तो और कौन है, जिसने 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिकों को मार डाला। पाकिस्तान गाजा पर इजरायली बमबारी के बाद छाती पीटने लगता है, मगर कल रात उसने सोची समझी सैन्य बर्बरता दिखाते हुए कुख्यात डबल टैप रणनीति का इस्तेमाल किया और 35 बेकसूरों को मार डाला। आज तक बेरो।
5: इसी के साथ हमें रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी केस में एसबीआई सहित 6-7 बैंकों को नोटिस। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और सभी वित्तीय लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड तलब। सभी आरोपियों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी। पीलीभीत में कहा यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा होगा। कर्फ्यू और गुंडागर्दी से लोगों का जीना होगा हराम। आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर। नौकरशाही में प्रक्रिया के बदलाव के भी संकेत। बिहार के भोजपुर में भरत एनकाउंटर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने की है सीबीआई जांच की मांग। और यूपी के शामली में इस्लाम कबूलने वाले आयुष मलिक ने फिर से हिंदू धर्म अपनाया। कहा परिवार को परेशान देकर लिया फैसला। पिता बोले मुस्लिम लड़की ने किया था ब्रेन वॉश। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 70-80 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल है चंपत राय को लेकर, जिन्हें चढ़ावा चोरी की बात 4 जून को ही पता चल गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी भी बड़ी गड़बड़ी से इनकार करते रहे। सवाल है क्यों?
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं।
2: सात जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय चढ़ावा चोरी पर पहली बार और आखिरी बार बोले।
1: सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है।
2: लेकिन इससे चौंकाने वाली बात यह कि इस बयान के 2 दिन पहले ही ट्रस्ट के सभी बड़े पदाधिकारियों को पता चल चुका था कि चढ़ावे का गबन राम मंदिर के भीतर किया जा रहा है। ये रहा इसका सबूत। इस सीसीटीवी वीडियो में जिस शख्स को आप बैग लिए देख रहे हैं, इसका नाम है अविनाश शुक्ला, जो चढ़ावा चोरी गैंग का अहम सदस्य, लूटकांड का अहम किरदार। इसके हाथ में जो काले रंग का बैग दिखता है, कहा जा रहा है कि चोरी की रकम इसी में, जो सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे से उड़ाई गई। सूत्रों की माने तो 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे। छापेमारी जब हुई तो अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5 लाख कैश बरामद हुआ, जो इस बैग में रखा हुआ है।
3: इस वक्त मौजूद है मुख्य आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला के घर के बाहर, जहां से 5 जून की रात को ट्रस्ट के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में अनधिकारिक तौर पर एक मोटी रकम बरामद की, जो कि सीसीटीवी में कैद है। ये वही घर है मेरे पीछे जो अविनाश शुक्ला है, जहां पर वह किराए पर रहा करता था। कल अविनाश शुक्ला के भाई से पुलिस ने यहीं पर लाकर पूछताछ की।
2: राम भक्त पहले से ही चढ़ावा चोरी के आरोपों से दंग है, लेकिन ये नया सच और खुलासा ज्यादा विचलित करने वाला है, क्योंकि इसने नए सिरे से ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया।
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला का 5 जून का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को इस चढ़ावा चोरी की जानकारी पहले से थी और इसकी एफआईआर दर्ज कराने में ट्रस्ट ने देरी की। यानी अविनाश शुक्ला समेत सभी आरोपी लगभग ट्रस्ट की निगाह में आ गए थे, और अविनाश शुक्ला का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि कैसे एक सफेद गाड़ी में पुलिसकर्मी व अन्य लोगों की मदद से अविनाश शुक्ला को बैठाया जा रहा है। उनके पास से एक काले बैग में कहा गया कि 5 लाख रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई।
2: बड़ा सवाल यह है कि जब ट्रस्ट को पता चल गया था कि चढ़ावे का गबन हो रहा है, तो वो मामले को रफा दफा करने या मामले को शांत कराने में क्यों जुटा? आरोपी के घर चढ़ावे की रकम मिलने के तुरंत बाद एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई? उल्टा चंपत राय वीडियो जारी करके इस मामले से क्या गुमराह नहीं करते दिखे?
1: कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
0: तो चंपत राय कह रहे थे कि चढ़ावा चोरी मामले में कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। इसके बाद चंपत राय ना कुछ बोले ना ही सामने आए, लेकिन चढ़ावा चोरी के मामले ने उन्हें और उनके साथियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
3: 4 जून को ट्रस्ट के लोगों को चोरी का पता चला, जिसके बाद 5 जून को चंपत राय के आदेश पर ट्रस्ट के लोग यहां पर आते हैं और अविनाश शुक्ला के पास से एक मोटी रकम बरामद करते हैं। सीसीटीवी में बैग लेते हुए अविनाश शुक्ला और ट्रस्ट के लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 8 जून को चंपत राय ने यह बयान दिया था कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। 7 जून को ये पूरा मामला सार्वजनिक हुआ था, तो कैसे बिना ऑफिशियल कंप्लेंट के, बिना एफआईआर फाइल हुए एक पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और जो रकम है उसको बरामद किया जा रहा था।
2: तो इस नए खुलासे ने ट्रस्ट और चंपत राय को लेकर कई गंभीर और नए सवाल पैदा कर दिए, क्योंकि ट्रस्ट को 5 जून को ही चढ़ावा चोरी का पता चल गया। इसके बावजूद 7 जून को पहली बार ये मामला जब सार्वजनिक रूप से बाहर आया, उसके बाद 13 जून को यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई, 25 जून को एफआईआर दर्ज हुई, 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, 26 जून को आरोपियों को 3 दिन के लिए जेल भेजा गया। इसी दिन चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, यानी ट्रस्ट को पता लगने के 20 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई और 21 दिन बाद जाकर चंपत राय ने पद छोड़ा। अब सवाल है कि चुप्पी साधे बैठे चंपत राय ने पुलिस जांच में देरी क्यों की, जब 5 जून को ट्रस्ट और पुलिस दोनों को चढ़ावा चोरी की जानकारी और सबूत मिल गए थे, तो फिर फौरन एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई, मामले को दबाने की कोशिश क्यों हुई?
3: ये बताया जा रहा है कि इस पर किसी भी तरीके से किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई, शिकायत नहीं दर्ज कराई गई और ये पूरी घटना होने के 20 दिन बाद जाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस सीसीटीवी ने ट्रस्ट के लोगों के उन दावों की पोल खोल दी है जिसमें वह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी पहले नहीं थी।
5: पहले से पकड़ लिया जाके पैसा बरामद चंपत राय जी, तो एफआईआर क्यों नहीं की? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सोचे जो है समझी षड्यंत्र के तहत बड़ों को बचाने के लिए इन लोगों को मोहरा बना के ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। अभी हम मॉनिटरिंग भी डालेंगे, अभी हम सारा काम करेंगे, लेकिन उन पहलुओं को हम देख ले, हमारी कमेटी है बैठ के काम करेगी, बख्शा कोई नहीं जाएगा।
2: पहले तो चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी होता रहा और जब उन्हें इसका पता चला तब भी उन्होंने फौरन इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, यानी चंपत राय ने अपनी पद की गरिमा के हिसाब से काम नहीं किया। सवालों में घिरे चंपत राय का पुलिस ने अब बयान दर्ज किया है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा सकती है। इधर पुलिस ने एसबीआई के अयोध्या धाम ब्रांच जाकर आरोपियों के खातों की जांच की, ताकि चढ़ावा चोरी का पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल किया गया पता लगाया जा सके। वहीं अयोध्या के वकीलों ने ऐलान किया कि कोई भी चढ़ावा चोरी करने वाले आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा,
6: कि वकील लोग डिफेंस की ओर से वकील नहीं होंगे, अगर होंगे तो संघ में परमिशन लेंगे और 5 लाख रुपए वो पर हेड जमा करेंगे मोकिलों से लेके अपने और वकालत करेंगे। उस पैसे से प्रोसिक्यूशन की पैरवी होगी और उस प्रोसिक्यूशन की पैरवी में मुकदमा इन तीनों लोगों के खिलाफ दर्ज कराने की पूरी कोशिश की जाए।
7: बड़े आरोपियों को सबको बचा लिया गया है, कोई चौकीदार है, कोई रिक्शा वाला है, कोई ड्राइवर है, कोई पोछा वाला है, सबको फंसाया गया है। इतना बड़ा कांड हो जाए, 40 से 70 बार घोटाला हो जाए, किसी बड़े आदमी पता ना चले, मैं अधिवक्ता संघ का महामंत्री हूँ, मेरे नाक के नीचे हमारे बाबू लोग चोरी कर ले, उनको पता ना चले, ये तो भाई गले से उतरने वाली बात नहीं है।
5: उसके अलावा जो लोग हैं जिनको आप लोग बड़े लोग कह रहे हैं, उनको जो हम लोगों को जो ये लग रहा है कि एसआईटी से पुलिस से जो संघ का हमारे प्रस्ताव है उनको जो बचाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी सारी लिखा पड़ी, जितनी कानूनी पहलू हो सकते हैं सब संघ करेगा, वो चाहे चंपत राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, गोपाल राव जी, अगर शासन प्रशासन कहीं से भी उनको बचाने का प्रयास करता है तो हम लोग उनके खिलाफ भी पैरवी करेंगे।
2: चढ़ावा चोरी की जांच भले ही तेजी से आगे बढ़ रही हो, 8 आरोपियों को अब 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा सवालों में अब भी चंपत राय हैं, जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, जो केवल पद छोड़कर बचे हुए हैं।
0: क्या 2027 यूपी चुनाव की लड़ाई अब विचारधारा पर कब्जे की जंग बनती जा रही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में राम मनोहर लोहिया के परिवार से मुलाकात की और इसी के बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या अब बीजेपी अगले साल होने वाले यूपी चुनाव लोहिया वाला दांव खेलने वाली है। वहां मुद्दा बड़ा इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा से खुद को लोहिया की विचारधारा का सबसे बड़ा पैरोकार बताते आए हैं।
8: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिनकी विचारधारा पर हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के संकल्पों के, उनके आदर्शों पे, उनकी बताई हुई नीतियों पे समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं।
0: ना जाने कितनी बार अखिलेश यादव ने खुद को और अपनी समाजवादी पार्टी को राम मनोहर लोहिया और उनकी विचारधारा से जोड़ा है। बार बार लोहिया के विचारों से स्वयं को प्रेरित बताया है। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में अब साल से भी कम का वक्त बचा है और इस अंतराल में लोहिया नाम की गूंज यूपी में और तेज होने वाली है। जी हाँ, और यूपी की इसी चुनावी बिसात में अब बीजेपी ने एक नया दांव खेलकर समाजवादी पार्टी को चौंका दिया है। एक तरफ अखिलेश राम मंदिर में छड़वा चोरी पर बीजेपी को घेर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राम मनोहर लोहिया के परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात कर रही है। चुनावी साल में बीजेपी ने मंडल और कमंडल को एक साथ साधना शुरू कर दिया है। मंडल के मसीहा कहें या पिछड़ों के सबसे बड़े विचारक राम मनोहर लोहिया के घर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। इस दौरे का संकेत और संदेश सीधे सीधे अखिलेश तक है कि अब विचारधारा के तौर पर भी सेंधमारी की तैयारी है।
9: मोदी जी के 12 साल पूरा होने पे जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, जो विशेष जनसंपर्क अभियान, उसके साथ आज मेरा सौभाग्य कि लोहिया जी के परपोतों से, उनके बेटों से मेरी मुलाकात हुई और पूरा एक पारिवारिक बैठना हुआ, सबसे बहुत अच्छा लगा।
10: सुना है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोहिया जी के घर गए थे, वो पार्टी जो जिसके विचार और नीत नफरतवादी है, जो समाज के अंदर में नफरत की बात करते हैं, समाज को डिवाइड करने की बात करते हैं। पहले अपने विचार बदलिए। समाजवादी पार्टी लोहिया जी के आदर्श आचरण को अपनाती है, लोहिया जी के बचाए हुए रास्ते पे चलती है, समाज को जोड़ने की बात करती है। किसी के घर जाने से कुछ नहीं होता है, आपको अपनी नीत और विचार बदलने की जरूरत है।
0: एक तरफ प्रयागराज में सीएम योगी समाजवादी पार्टी को अयोध्या और मथुरा पर ललकार रहे थे तो दूसरी ओर पंकज चौधरी लखनऊ में लोहिया के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे। चर्चा तो ये भी चल निकली कि बीजेपी कहीं राम मनोहर लोहिया के परिवार वालों को चुनावी राजनीति में लाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, कहीं बीजेपी अखिलेश के उस हथियार को ही कुंद तो नहीं करना चाहती है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। अखिलेश को परेशानी इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि राम मनोहर लोहिया का परिवार पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी कर रहा है।
11: ले जी के विरुद्ध में तो कुछ नहीं कहना है, जो आदमी अपना जैसे करते हैं अपने अपने हिसाब से हर आदमी करता है। लेकिन पंकज चौधरी जी आए, उनकी देखिए माननीय प्रधानमंत्री के कहने से आए, उन्होंने व्यक्तिगत कॉल किया था तो हम लोगों को अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों को बरसों से प्राप्त है। और जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी थे तब भी हमारी उनकी पारिवारिक संबंध थे और जब से वो पीएम बने हैं उनमें खूबियां हैं।
0: राम मनोहर लोहिया मारवाड़ी वैश्य यानी ओबीसी वर्ग से थे और बीजेपी भी जानती है कि बिना ओबीसी समाज को साधे बगैर 2027 चुनाव में उनका कल्याण होने वाला नहीं है। इससे पहले यूपी चुनाव के लिए बनी विशेष टीम में ओबीसी को तरजीह दी और अब लोहिया परिवार से मुलाकात।
12: प्रदेश अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मिलने पहुंच गए। ये सब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई ऐसी एक दूसरे में उलझ गई है कि दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी हैं। कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों को उनके वैचारिक प्रणेताओं के जरिए साधने की कोशिश कर रही है।
0: बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पर ही जोर नहीं दिया है बल्कि क्राइम रेट को लेकर भी एसपी कार्यकाल को घेरना भी शुरू कर दिया है।
13: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी।
0: 2027 को लेकर बीजेपी सिर्फ राम भरोसे नहीं है, उसे मालूम है कि धर्म का मुलम्मा समाज के सभी तबकों का वोट नहीं दिला सकता, इसीलिए अब बीजेपी समाजवादी पार्टी की तथा कथित विचारधारा में भी सेंधमारी करने में जुट गई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। देश में पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला है महाराष्ट्र के टीईटी परीक्षा का, जिसका मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता है। और ये वही बिजेंद्र गुप्ता है जिसका 2 साल पहले स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने किया था। आज तक के कैमरे में बिजेंद्र गुप्ता ने खुलेआम कहा था कि पेपर लीक करवाना उसका धंधा है और जेल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। महाराष्ट्र पुलिस इसी बिजेंद्र गुप्ता की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी कर रही है।
14: लगभग 1028 अलग अलग सेंटर्स पे ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन आज इस प्रकार से ये पेपर लीक हो गया है।
15: उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है, 4 सेट मिले हैं। जो बातचीत चल रही थी ये ट्रैप में, उनका 1.5 करोड़ की डिमांड थी, वो 1.5 करोड़ में पेपर बेचने के बाद जो लेने वाला है वो आगे अलग अलग जो बायर है उनको पेपर देने का उनकी सिस्टम थी।
2: महाराष्ट्र में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के करीब 4.5 लाख परीक्षार्थियों के साथ हुए इस धोखे का, इस अन्याय का जिम्मेदार ये चेहरा है जिसे आज तक ने 2 साल पहले ही ढूंढ निकाला था। नाम है बिजेंद्र गुप्ता। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा का पर्चा लीक करने वाला ये माफिया बेफिक्र होकर घूम रहा है। वहीं महाराष्ट्र के लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंता में डूबे हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ये कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। टीईटी पेपर लीक से पूरी राज्य सरकार निशाने पर है। पेपर लीक की बीमारी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गई। देश का कोई भी राज्य, कोई भी परीक्षा, कुछ भी फुल प्रूफ नहीं है। अब सवाल है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुकते, तो इसका जवाब महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड है जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार का रहने वाला पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता ही महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। बिजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पटना और समस्तीपुर समेत कई राज्यों में महाराष्ट्र पुलिस छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया वो सभी इसी पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता के इशारे पर काम कर रहे थे।
16: महाराष्ट्र के 5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जिस पेपर लीक माफिया को मुंबई पुलिस तलाश रही है, उस पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन आज तक नहीं किया था। वो साल था 2024 जब नीट पेपर लीक हुआ था। मैंने ही बिहार जाकर पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता को बेनकाब किया था। मैंने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें पेपर माफिया बिजेंद्र गुप्ता ने पेपर माफियाओं के एक से बड़े एक राज खुले थे। बिजेंद्र गुप्ता ने स्टिंग कैमरे में खुलासा किया था कि कैसे पेपर माफिया बेखौफ होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं।
2: तो अगर आपको लगता है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा, तो इसका जवाब बिजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का बुलंद हौसला है जिन्हें कानून का कोई डर नहीं। तभी तो वो खुलेआम कहते फिरते हैं कि यही खेल करेंगे चाहे कितनी बार भी जेल चले जाए।
17: रही बात जेल जाने का, था जेल करके फिर परसों से यही खेल करेंगे।
18: आप कैसे यूपीएससी वाला किए थे, वो कौन सी कंपनी?
17: एमपीपीएससी।
18: हाँ,
17: इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होगा।
18: किसका नाम?
17: बेदीराम जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे, विद्यार्थी लाइफ था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गए साथ में, धरा गए, जेल चल गए।
2: जब तक बिजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का ढंग से इलाज नहीं होता, ये पेपर लीक वाली बीमारी रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, चाहे कोई भी राज्य हो, किसी की भी सरकार।
19: पेपर फुटले तर फुटू दे, विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली तर करू दे। आजच ठाण्यामध्ये एक पेपर फुटलाय टीईटीचा, कोणालाच काही पडलेलं नाहीये। नीटचा पेपर फुटला, धर्मेंद्र प्रधाननी राजीनामा तर दिलाच पाहिजे।
20: ये सरकार की नाकामयाबी आहे। ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
21: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है।
2: महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का खुलासा वहां की पुलिस ने ही किया है। परीक्षा से पहले भिवंडी पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग दिल्ली और हरियाणा से मुंबई आकर टीईटी के पेपर बेचने का सौदा कर रहे हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर मुंबई से 3 लोग आकाश, राजीव और धीरज को गिरफ्तार किया, जिनसे लीक पेपर बरामद हुआ। जिसने आज तक से कही गई पेपर लीक माफिया विजेंद्र की बात को 100% सच साबित कर दिया है कि पेपर लीक नहीं रुकने वाला है।
1: ये संजीव मुखिया के अभी तो भगा हुआ है ना, ये
4: पकड़ाएगा भी
1: क्यों? नहीं, मैं पहले भी जेल जा चुका है ना,
4: पैसा कमाया बस इधर 1 साल का। एक साल पहले
1: उसकी दीदी इलेक्शन भी तो लड़ी थी,
4: उस इलेक्शन में ही तो बर्बाद हुआ, लोगों से एडवांस उठाया बेटा, वो सब दिन नीट का ही काम करता है, 10-20 कहीं ना कहीं से सेंटर फेंटर से करके उस साल में 2-3 करोड़ रुपया, इस बार उसको 100-200-400 करोड़ रुपया कमाने का शौक था।
2: पिछले 2 दशक में ऐसी परीक्षाएं जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोग बैठे हों, उनमें 45 से ज्यादा पेपर लीक के मामले हुए और सिर्फ 18 लोगों को सजा मिली। सबसे बड़ी बात, ये सभी सजाएं सिर्फ 2 मामलों से जुड़ी, जिनमें से 1 साल 2010 का रेलवे भर्ती घोटाला है। बाकी बचे 95% से ज्यादा मामलों में सालों से अदालती सुनवाई हो रही है, मामले लंबित पड़े हैं और पेपर लीक के आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम विजेंद्र गुप्ता का है, जो आज तक के खुफिया कैमरे में लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ पर इतराता सुना और देखा गया। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक से ये माफिया एक बार फिर सुर्खियों में है। अब देखना है कि क्या महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पेपर लीक के इस माफिया को रिकॉर्ड टाइम में पकड़कर कड़ी सजा दिलाकर कोई नजीर पेश कर पाती है, या फिर पेपर लीक का माफिया इस बार भी चुनौती देकर पेपर लीक कराता ही रहेगा। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की, जिन्हें 36 साल के बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है और श्रीनगर के टाडा कोर्ट ने चार्जशीट भी दायर की है।
22: छत्तीस बरस बाद जागी है इंसाफ की उम्मीद। 36 बरस बाद कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। जी हां, जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है। टाडा कोर्ट में 700 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट दायर कर दी गई है।
23: कोर्ट में जो है ट्रायल होना है, यानी कि कोर्ट में अब ट्रायल होगा, उसके बाद ही जो है निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया है इस चार्जशीट में, जिसमें JKLF का खूंखार आतंकी कमांडर यासीन मलिक भी शामिल है। और SIA ने साफ तौर पर कहा है कि यासीन मलिक ही इसमें मुख्य अभियुक्त है। और जो इस पूरे मामले में जो 5 अभियुक्तों के नाम रखे गए हैं, उनमें से 3 जो है उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। एक आतंकी जो है वो एब्सकॉन्डिंग है, यानी कि वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर भाग गया था, वो वहीं पर छिपा हुआ है। और यासीन मलिक जो है इस समय तिहाड़ जेल में है।
22: 18 अप्रैल 1990 को श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी स्किम्स परिसर के पास से JKLF के आतंकवादियों ने स्टाफ नर्स सरला भट्ट का अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद सरला से मारपीट और गैंग रेप किया गया। इसके बाद श्रीनगर की उमर कॉलोनी यानी मालबाग में ऑटोमेटिक राइफल से गोली मारकर सरला की हत्या कर दी गई। डाउनटाउन श्रीनगर में उनकी क्षत विक्षत लाश मिली थी।
23: SIA ने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी पेश किया, और वो क्या था, वो था इंडिया टुडे आज तक ग्रुप का जो न्यूज ट्रैक था 1990 में, जो उस समय न्यूज ट्रैक के पत्रकारों ने जो रिपोर्टिंग की, उसका एविडेंस सामने रखा गया। और खासतौर पर जो JKLF का तब का जो आतंकी कमांडर था फारूक अहमद डार उर्फ बिटा कराटे, उसका जो इंटरव्यू न्यूज ट्रैक ने किया था, वो वीडियो भी अदालत में पेश किया गया है। और इस वीडियो में फारूक अहमद डार ने साफ तौर पर कबूला था कि उसने 20 कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या की थी। अब कश्मीरी पंडित समुदाय की मांग है कि एक व्यापक तौर पर सभी मामलों में जांच होनी चाहिए, ताकि वो तमाम दोषी जो है जिन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के ऊपर अत्याचार किया, उनको सजा मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।
0: अब बात उस हत्याकांड की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। केतन मर्डर केस में आरोपी सिया और चेतन की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब अगली सुनवाई होनी है 3 जुलाई को। इन 4 दिनों में पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि केतन की हत्या के पीछे असली वजह थी क्या।
3: लोहगढ़ किले का ये वही हिस्सा है जहां केतन को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया गया। वो 340 फीट गहरी खाई में गिरा और दम तोड़ दिया। उलझाऊ और सस्पेंस भरे सवालों के साथ पुलिस 28 जून को ठीक उसी खाई के पास पहुंची। पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। पुलिस ने सिया से जाना कि 18 जून को इस खाई के पास और कौन कौन था, चेतन के साथ उसकी क्या बातें हुई, क्या दोनों में किसी बात को लेकर नाराजगी थी, चेतन को सिया ने मौके पर कितनी देर पहले बुलाया था। ऐसे कई सवाल सिया से किए गए और इसी बीच आता है अब तक का सबसे अहम सस्पेंस। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट करते हुए सिया से कहा कि वो पुतले को खाई में धक्का दे। सिया ने ही पुतले को खाई में धकेला।
5: जो पुतला बनाया गया था वो केतन अग्रवाल के जैसा था, उसी के वजन का था, ताकि वो नीचे जाने के बाद ये पता चले और ये फाइनलाइज हो सके कि किस तरीके का इम्पैक्ट था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या थे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इम्पैक्ट के बाद पुतले के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो देखना पुलिस चाह रही थी।
3: खुलासे के मुताबिक सिया और चेतन ने हत्या की गहरी साजिश रची। उसी दौरान तय हुआ था कि किले में ऊंचाई पर पहुंचकर सिया अचानक बैठेगी। ये संकेत होगा कि अब केतन को खाई में धक्का देना है। अब पुलिस की तैयारी है कि क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाए और अब की बार पुलिस चेतन से पुतले को धक्का देने को कहेगी। पुणे पुलिस की कोशिश है कि सिया और चेतन के गुनाहों से जुड़े सुराग रिक्रिएशन के जरिए हासिल किए जाए, उसे वेरीफाई किया जाए और मामले को अंजाम तक पहुँचाया जाए। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
0: कराची ब्लास्ट में अपने रेंजर्स की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बीती रात भीषण बमबारी की। रिहायशी इलाकों में की गई इस बमबारी में औरतों और बुजुर्गों और बच्चों समेत 25 लोगों की जान ले ली गई है।
6: ये फूल से बच्चे पाकिस्तान की कायराना हरकत के शिकार हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में इन बच्चों, बुजुर्गों और औरतों पर बम बरसाए हैं। पक्तिता प्रांत के गयान जिले, पक्तिता प्रांत के समकानी जिले और कुनार प्रांत के मनोगई जिले में नागरिक इलाकों पर हवाई हमले किए। अफगानी विदेश मंत्री और कुनार प्रांत के मनोगई जिले में नागरिक इलाकों पर हवाई हमले किए। अफगानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिक मारे गए, जिनमें कई छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। अपनी जमीन पर आतंकी पाल रहा पाकिस्तान एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर अफगानी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर बम बरसा रहा है। मास्टरमाइंड है, और क्या ये लहूलुहान बच्चियां, बुजुर्ग और महिलाएं आतंकी नजर आती हैं? अगर नहीं तो ये साफ है कि पाकिस्तान युद्ध अपराध कर रहा है, और इस अपराध का जिम्मेदार आसिम मुनीर नहीं तो और कौन है, जिसने 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिकों को मार डाला। पाकिस्तान गाजा पर इजरायली बमबारी के बाद छाती पीटने लगता है, मगर कल रात उसने सोची समझी सैन्य बर्बरता दिखाते हुए कुख्यात डबल टैप रणनीति का इस्तेमाल किया और 35 बेकसूरों को मार डाला। आज तक विरोध।
0: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी केस में एसबीआई से 6-7 बैंकों को नोटिस। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और सभी वित्तीय लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड तलब। सभी आरोपियों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी। पीलीभीत में कहा यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा होगा। कर्फ्यू गुंडागर्दी से लोगों का जीना होगा हराम। आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर। नौकरशाही में प्रक्रिया के बदलाव के भी संकेत। बिहार के भोजपुर में भरत एनकाउंटर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने की है सीबीआई जांच की मांग। और यूपी के शामली में इस्लाम कबूलने वाले आयुष मलिक ने फिर से हिंदू धर्म अपनाया। कहा परिवार को परेशान देकर लिया फैसला। पिता बोले मुस्लिम लड़की ने किया था ब्रेन वॉश। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 70-80 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल है चंपत राय को लेकर, जिन्हें चढ़ावा चोरी की बात 4 जून को ही पता चल गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी भी बड़ी गड़बड़ी से इनकार करते रहे। सवाल है क्यों?
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं।
2: सात जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय चढ़ावा चोरी पर पहली बार और आखिरी बार बोले।
1: सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है।
2: लेकिन इससे चौंकाने वाली बात यह कि इस बयान के 2 दिन पहले ही ट्रस्ट के सभी बड़े पदाधिकारियों को पता चल चुका था कि चढ़ावे का गबन राम मंदिर के भीतर किया जा रहा है। ये रहा इसका सबूत इस सीसीटीवी वीडियो में। जिस शख्स को आप बैग लिए देख रहे हैं, इसका नाम है अविनाश शुक्ला, जो चढ़ावा चोरी गैंग का अहम सदस्य, लूटकांड का अहम किरदार। इसके हाथ में जो काले रंग का बैग दिखता है, कहा जा रहा है कि चोरी की रकम इसी में, जो सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे से उड़ाई गई। सूत्रों की माने तो 5 जून

0: आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे। छापेमारी जब हुई तो अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5 लाख कैश बरामद हुआ जो इस बैग में रखा हुआ है।
1: इस वक्त मौजूद है मुख्य आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला के घर के बाहर, जहां से 5 जून की रात को ट्रस्ट के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में अनधिकारिक तौर पर एक मोटी रकम बरामद की जो कि सीसीटीवी में कैद है। ये वही घर है मेरे पीछे जो अविनाश शुक्ला है, जहां पर वह किराए पर रहा करता था। कल अविनाश शुक्ला के भाई से पुलिस ने यहीं पर लाकर पूछताछ की।
0: राम भक्त पहले से ही चढ़ावा चोरी के आरोपों से दंग है, लेकिन ये नया सच और खुलासा ज्यादा विचलित करने वाला है, क्योंकि इसने नए सिरे से ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया।
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला का 5 जून का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को इस चढ़ावा चोरी की जानकारी पहले से थी और इसकी FIR दर्ज कराने में ट्रस्ट ने देरी की। यानी अविनाश शुक्ला समेत सभी आरोपी लगभग ट्रस्ट की निगाह में आ गए थे और अविनाश शुक्ला का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि कैसे एक सफेद गाड़ी में पुलिस कर्मी व अन्य लोगों की मदद से अविनाश शुक्ला को बैठाया जा रहा है और इनके पास से एक काले बैग में कहा गया कि 5 लाख रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई।
0: बड़ा सवाल यह है कि जब ट्रस्ट को पता चल गया था कि चढ़ावे का गबन हो रहा है तो वो मामले को रफा दफा करने या मामले को शांत कराने में क्यों जुटा? आरोपी के घर चढ़ावे की रकम मिलने के तुरंत बाद FIR क्यों नहीं करवाई गई? उल्टा चंपत राय वीडियो जारी करके इस मामले से क्या गुमराह नहीं करते दिखे?
3: कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
4: तो चंपत राय कह रहे थे कि चढ़ावा चोरी मामले में कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। इसके बाद चंपत राय ना कुछ बोले ना ही सामने आए, लेकिन चढ़ावा चोरी के मामले ने उन्हें और उनके साथियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
1: 4 जून को ट्रस्ट के लोगों को चोरी का पता चला, जिसके बाद 5 जून को चंपत राय के आदेश पर ट्रस्ट के लोग यहां पर आते हैं और अविनाश शुक्ला के पास से एक मोटी रकम बरामद करते हैं। सीसीटीवी में बैग लेते हुए अविनाश शुक्ला और ट्रस्ट के लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 8 जून को चंपत राय ने यह बयान दिया था कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। 7 जून को ये पूरा मामला सार्वजनिक हुआ था, तो कैसे बिना ऑफिशियल कंप्लेंट के, बिना FIR फाइल हुए एक पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और जो रकम है उसको बरामद किया जा रहा था।
0: तो इस नए खुलासे ने ट्रस्ट और चंपत राय को लेकर कई गंभीर और नए सवाल पैदा कर दिए, क्योंकि ट्रस्ट को 5 जून को ही चढ़ावा चोरी का पता चल गया। इसके बावजूद 7 जून को पहली बार ये मामला जब सार्वजनिक रूप से बाहर आया, उसके बाद 13 जून को यूपी सरकार ने SIT बनाई, 25 जून को FIR दर्ज हुई, 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, 26 जून को आरोपियों को 3 दिन के लिए जेल भेजा गया, इसी दिन चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। यानी ट्रस्ट को पता लगने के 20 दिन बाद FIR दर्ज हुई और 21 दिन बाद जाकर चंपत राय ने पद छोड़ा। अब सवाल है कि चुप्पी साधे बैठे चंपत राय ने पुलिस जांच में देरी क्यों की, जब 5 जून को ट्रस्ट और पुलिस दोनों को चढ़ावा चोरी की जानकारी और सबूत मिल गए थे, तो फिर फौरन FIR क्यों नहीं दर्ज कराई गई? मामले को दबाने की कोशिश क्यों हुई?
1: ये बताया जा रहा है कि इस पर किसी भी तरीके से किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई, शिकायत नहीं दर्ज कराई गई और ये पूरी घटना होने के 20 दिन बाद जाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस सीसीटीवी ने ट्रस्ट के लोगों के उन दावों की पोल खोल दी है जिसमें वह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी पहले नहीं थी।
5: पहले से पकड़ लिया जाके पैसा बरामद चंपत राय जी, तो FIR क्यों नहीं की? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सोचे जो है समझी षड्यंत्र के तहत बड़ों को बचाने के लिए इन लोगों को मोहरा बना के ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। अभी हम मॉनिटरिंग भी डालेंगे, अभी हम सारा काम करेंगे, लेकिन उन पहलुओं को हम देख लें। हमारी कमेटी है, बैठ के काम करेगी, बख्शा कोई नहीं जाएगा।
0: पहले तो चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी होता रहा और जब उन्हें इसका पता चला तब भी उन्होंने फौरन इस मामले में FIR दर्ज नहीं करवाई। यानी चंपत राय ने अपनी पद की गरिमा के हिसाब से काम नहीं किया। सवालों में घिरे चंपत राय का पुलिस ने बयान दर्ज किया है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा सकती है। इधर पुलिस ने SBI के अयोध्या धाम ब्रांच जाकर आरोपियों के खातों की जांच की, ताकि चढ़ावा चोरी का पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल किया गया पता लगाया जा सके। वहीं अयोध्या के वकीलों ने ऐलान किया कि कोई भी चढ़ावा चोरी करने वाले आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा।

0: कि वकील लोग डिफेंस की ओर से वकील नहीं होंगे, अगर होंगे तो संघ में परमिशन लेंगे और 5 लाख रुपए वो पर हेड जमा करेंगे मोकिलों से लेके अपने और वकालत करेंगे। उस पैसे से प्रोसिक्यूशन की पैरवी होगी और उस प्रोसिक्यूशन की पैरवी में मुकदमा इन तीनों लोगों के खिलाफ दर्ज कराने की पूरी कोशिश की जाए।
1: बड़े आरोपियों सबको बचा लिया गया है, कोई चौकीदार है, कोई रिक्शा वाला है, कोई ड्राइवर है, कोई पोछाला है, सबको फंसाया गया है। इतना बड़ा कांड हो जाए, 40 से 70 बार घोटाला हो जाए, किसी बड़े आदमी पता न चले। मैं अधिवक्ता संघ का महामंत्री हूँ, मेरे नाक के नीचे हमारे बाबू लोग चोरी कर ले, उनको पता न चले, तो भाई गले से उतरने वाली बात नहीं है।
2: उसके अलावा जो लोग हैं जिनको आप लोग बड़े लोग कह रहे हैं, उनको जो हम लोगों को जो ये लग रहा है कि एसआईटी से पुलिस से जो संघ का हमारे प्रस्ताव है उनको जो बचाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी सारी लिखा पड़ी जितनी कानूनी पहलू हो सकते हैं सब संघ करेगा। वो चाहे चंपत राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, गोपाल राव जी, अगर शासन प्रशासन कहीं से भी उनके उनको बचाने का प्रयास करता है तो हम लोग उनके खिलाफ भी पैरवी करेंगे।
3: चढ़ावा चोरी की जांच भले ही तेजी से आगे बढ़ रही हो, 8 आरोपियों को अब 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा सवालों में अब भी चंपत राय हैं, जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, जो केवल पद छोड़कर बचे हुए हैं।
4: क्या 2027 यूपी चुनाव की लड़ाई अब विचारधारा पर कब्जे की जंग बनती जा रही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में राम मनोहर लोहिया के परिवार से मुलाकात की और इसी के बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या अब बीजेपी अगले साल होने वाले यूपी चुनाव लोहिया वाला दाव खेलने वाली है। वहां मुद्दा बड़ा इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा से खुद को लोहिया की विचारधारा का सबसे बड़ा पैरोकार बताते आए हैं।
5: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनकी विचारधारा पर हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है,
6: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के संकल्पों के, उनके आदर्शों पे, उनकी बताई हुई नीतियों पे
7: समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे।
6: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं।
8: ना जाने कितनी बार अखिलेश यादव ने खुद को और अपनी समाजवादी पार्टी को राम मनोहर लोहिया और उनकी विचारधारा से जोड़ा है, बार बार लोहिया के विचारों से स्वयं को प्रेरित बताया है। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में अब साल से भी कम का वक्त बचा है और इस अंतराल में लोहिया नाम की गूंज यूपी में और तेज होने वाली है। जी हाँ, और यूपी की इसी चुनावी बिसात में अब बीजेपी ने एक नया दांव खेलकर समाजवादी पार्टी को चौंका दिया है। एक तरफ अखिलेश राम मंदिर में छड़वा चोरी पर बीजेपी को घेर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राम मनोहर लोहिया के परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात कर रही है। चुनावी साल में बीजेपी ने मंडल और कमंडल को एक साथ साधना शुरू कर दिया है। मंडल के मसीहा कहें या पिछड़ों के सबसे बड़े विचारक राम मनोहर लोहिया के घर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। इस दौरे का संकेत और संदेश सीधे सीधे अखिलेश तक है कि अब विचारधारा के तौर पर भी सेंधमारी की तैयारी है।
9: मोदी जी के 12 साल पूरा होने पे जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, जो विशेष जनसंपर्क अभियान, उसके साथ आज मेरा सौभाग्य कि लोहिया जी के परपोतों से, उनके बेटों से मेरी मुलाकात हुई और पूरा एक पारिवारिक बैठना हुआ, सबसे बहुत अच्छा लगा।
10: सुना है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोहिया जी के घर गए थे, वो पार्टी जो जिसके विचार और नीत नफरतवादी है, जो समाज के अंदर में नफरत की बात करते हैं, समाज को डिवाइड करने की बात करते हैं। पहले अपने विचार बदलिए, समाजवादी पार्टी लोहिया जी के आदर्श आचरण को अपनाती है, लोहिया जी के बचाए हुए रास्ते पे चलती है, समाज को जोड़ने की बात करती है। किसी के घर जाने से कुछ नहीं होता है, आपको अपनी नीति और विचार बदलने की जरूरत है।
8: एक तरफ प्रयागराज में सीएम योगी समाजवादी पार्टी को अयोध्या और मथुरा पर ललकार रहे थे तो दूसरी ओर पंकज चौधरी लखनऊ में लोहिया के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे। चर्चा तो ये भी चल निकली कि बीजेपी कहीं राम मनोहर लोहिया के परिवार वालों को चुनावी राजनीति में लाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, कहीं बीजेपी अखिलेश के उस हथियार को ही कुंद तो नहीं करना चाहती है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। अखिलेश को परेशानी इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि राम मनोहर लोहिया का परिवार पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी कर रहा है।
11: ले जी के विरुद्ध में तो कुछ नहीं कहना है, जो आदमी अपना जैसे करते हैं अपने अपने हिसाब से हर आदमी करता है, लेकिन पंकज चौधरी जी आए, उनकी देखिए माननीय प्रधानमंत्री के कहने से आए, उन्होंने व्यक्तिगत कॉल किया था तो हम लोगों को अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों को बरसों से प्राप्त है, और जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी थे तब भी हमारी उनकी पारिवारिक संबंध थे और जब से वो पीएम बने हैं उनमें खूबियाँ हैं।
8: राम मनोहर लोहिया मारवाड़ी वैश्य यानी ओबीसी वर्ग से थे और बीजेपी भी जानती है कि बिना ओबीसी समाज को साधे बगैर 2027 चुनाव में उनका कल्याण होने वाला नहीं है। इससे पहले यूपी चुनाव के लिए बनी विशेष टीम में ओबीसी को तरजीह दी और अब लोहिया परिवार से मुलाकात।
12: प्रदेश अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मिलने पहुंच गए। ये सब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई ऐसी एक दूसरे में उलझ गई है कि दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी हैं। कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों को उनके वैचारिक प्रणेताओं के जरिए साधने की कोशिश कर रही है।
8: बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पर ही जोर नहीं दिया है बल्कि क्राइम रेट को लेकर भी एसपी कार्यकाल को घेरना भी शुरू कर दिया है।
13: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी।
8: 2027 को लेकर बीजेपी सिर्फ राम भरोसे नहीं है, उसे मालूम है कि धर्म का मुलम्मा समाज के सभी तबकों का वोट नहीं दिला सकता, इसीलिए अब बीजेपी समाजवादी पार्टी की तथा कथित विचारधारा में भी सेंधमारी करने में जुट गई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
4: देश में पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला है महाराष्ट्र के टीईटी परीक्षा का, जिसका मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता है और ये वही बिजेंद्र गुप्ता है जिसका 2 साल पहले स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने किया था। आज तक के कैमरे में बिजेंद्र गुप्ता ने खुलेआम कहा था कि पेपर लीक करवाना उसका धंधा है और जेल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। महाराष्ट्र पुलिस इसी बिजेंद्र गुप्ता की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी कर रही है।
14: लगभग 1028 अलग अलग सेंटर्स पे ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन आज इस प्रकार से ये पेपर लीक हो गया है।
15: उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है, 4 सेट मिले हैं। जो बातचीत चल रही थी ये ट्रैप में, उनका 1.5 करोड़ की डिमांड थी, वो 1.5 करोड़ में पेपर बेचने के बाद जो लेने वाला है वो आगे अलग अलग जो बायर है उनको पेपर देने का उनकी सिस्टम थी।
16: महाराष्ट्र में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के करीब 4.5 लाख परीक्षार्थियों के साथ हुए इस धोखे का, इस अन्याय का जिम्मेदार ये चेहरा है जिसे आज तक ने 2 साल पहले ही ढूंढ निकाला था। नाम है बिजेंद्र गुप्ता। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा का पर्चा लीक करने वाला ये माफिया बेफिक्र होकर घूम रहा है। वहीं महाराष्ट्र के लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंता में डूबे हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ये कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। टीईटी पेपर लीक से पूरी राज्य सरकार निशाने पर है। पेपर लीक की बीमारी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गई। देश का कोई भी राज्य, कोई भी परीक्षा, कुछ भी फुल प्रूफ नहीं है। अब सवाल है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुकते, तो इसका जवाब महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड है जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार का रहने वाला पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता ही महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। बिजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पटना और समस्तीपुर समेत कई राज्यों में महाराष्ट्र पुलिस छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया वो सभी इसी पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता के इशारे पर काम कर रहे थे।
17: महाराष्ट्र के 5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जिस पेपर लीक माफिया को मुंबई पुलिस तलाश रही है, उस पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन आज तक नहीं किया था। वो साल था 2024 जब नीट पेपर लीक हुआ था। मैंने ही बिहार जाकर पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता को बेनकाब किया था। मैंने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें पेपर माफिया बिजेंद्र गुप्ता ने पेपर माफियाओं के एक से बड़े एक राज खुले थे। बिजेंद्र गुप्ता ने स्टिंग कैमरे में खुलासा किया था कि कैसे पेपर माफिया बेखौफ होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं।
16: तो अगर आपको लगता है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा, तो इसका जवाब विजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का बुलंद हौसला है, जिन्हें कानून का कोई डर नहीं। तभी तो वो खुलेआम कहते फिरते हैं कि यही खेल करेंगे, चाहे कितनी बार भी जेल चले जाएं।
18: रही बात जेल जाने का, था जेल कर फिर परसों से यही खेल करेंगे।
19: आप कैसे यूपीएससी वाला किए थे, वो कौन सी कंपनी?
18: एमपीपीएससी। हाँ, इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होगा।
19: किसका नाम?
18: बेदीराम जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे। विद्यार्थी लाइफ था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गया साथ में, धरा गया जेल चल गया।
16: जब तक विजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का ढंग से इलाज नहीं होता, ये पेपर लीक वाली बीमारी रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, चाहे कोई भी राज्य हो, किसी की भी सरकार।
20: पेपर फुटले तर फुटू दे, विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली तर करू दे। आजच ठाण्यामध्ये एक पेपर फुटला आहे टीईटीचा, कोणालाच काही पडलेलं नाहीये। नीटचा पेपर फुटला, धर्मेंद्र प्रधाननी राजीनामा तर दिलाच पाहिजे।
21: ये सरकार की नाकामयाबी आहे, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है, तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
22: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता, तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
16: महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का खुलासा वहां की पुलिस ने ही किया है। परीक्षा से पहले भिवंडी पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग दिल्ली और हरियाणा से मुंबई आकर टीईटी के पेपर बेचने का सौदा कर रहे हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर मुंबई से 3 लोग आकाश, राजीव और धीरज को गिरफ्तार किया, जिनसे लीक पेपर बरामद हुआ, जिसने आज तक से कही गई पेपर लीक माफिया विजेंद्र की बात को 100% सच साबित कर दिया है कि पेपर लीक नहीं रुकने वाला है।
23: ये संजीव मुखिया अभी तो भगा हुआ है ना, ये
18: पकड़ाएगा भी
19: क्यों?
23: नहीं, मैं पहले भी जेल जा चुका है ना,
18: पैसा कमाया बस इधर 1 साल का। एक साल पहले
23: उसकी बीवी इलेक्शन में तो लड़ी थी,
18: उस इलेक्शन में ही तो बर्बाद हुआ, लोगों से एडवांस उठाया, बेटा उस सब दिन नीट का ही काम करता है, 10-20 कहीं ना कहीं से सेंटर फेंटर से करके उस साल में 2-3 करोड़ रुपया, इस बार उसको 100-200-400 करोड़ रुपया कमाने का शौक था।
16: पिछले 2 दशक में ऐसी परीक्षाएं जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोग बैठे हों, उनमें 45 से ज्यादा पेपर लीक के मामले हुए और सिर्फ 18 लोगों को सजा मिली। सबसे बड़ी बात, ये सभी सजाएं सिर्फ 2 मामलों से जुड़ी, जिनमें से 1 साल 2010 का रेलवे भर्ती घोटाला है। बाकी बचे 95% से ज्यादा मामलों में सालों से अदालती सुनवाई हो रही है, मामले लंबित पड़े हैं और पेपर लीक के आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम विजेंद्र गुप्ता का है, जो आज तक के खुफिया कैमरे में लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ पर इतराता सुना और देखा गया। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक से ये माफिया एक बार फिर सुर्खियों में है। अब देखना है कि क्या महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पेपर लीक के इस माफिया को रिकॉर्ड टाइम में पकड़कर कड़ी सजा दिलाकर कोई नजीर पेश कर पाती है, या फिर पेपर लीक का माफिया इस बार भी चुनौती देकर पेपर लीक कराता ही रहेगा। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
4: और अब बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की, जिन्हें 36 साल के बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है और श्रीनगर के टाडा कोर्ट ने चार्जशीट भी दायर की है।
24: छत्तीस बरस बाद जागी है इंसाफ की उम्मीद। 36 बरस बाद कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। जी हां, जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है। टाडा कोर्ट में 700 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट दायर कर दी गई है।
0: कोर्ट में जो है ट्रायल होना है, यानी कि कोर्ट में अब ट्रायल होगा, उसके बाद ही जो है निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया है इस चार्जशीट में, जिसमें जेकेएलएफ का खूंखार आतंकी कमांडर यासीन मलिक भी शामिल है। और एसआईए ने साफ तौर पर कहा है कि यासीन मलिक ही इसमें मुख्य अभियुक्त है। और जो इस पूरे मामले में जो 5 अभियुक्तों के नाम रखे गए हैं, उनमें से 3 जो है उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। एक आतंकी जो है वो एब्सकॉन्डिंग है, यानी कि वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर भाग गया था, वो वहीं पर छिपा हुआ है। और यासीन मलिक जो है इस समय तिहाड़ जेल में है।
24: 18 अप्रैल 1990 को श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी स्किम्स परिसर के पास से जेकेएलएफ के आतंकवादियों ने स्टाफ नर्स सरला भट्ट का अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद सरला से मारपीट और गैंग रेप किया गया। इसके बाद श्रीनगर की उमर कॉलोनी यानी मालबाग में ऑटोमेटिक राइफल से गोली मारकर सरला की हत्या कर दी गई। डाउनटाउन श्रीनगर में उनकी क्षत विक्षत लाश मिली थी।
0: एसआईए ने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी पेश किया, और वो क्या था, वो था इंडिया टुडे आज तक ग्रुप का जो न्यूज ट्रैक था 1990 में, जो उस समय न्यूज ट्रैक के पत्रकारों ने जो रिपोर्टिंग की, उसका एविडेंस सामने रखा गया। और खासतौर पर जो जेकेएलएफ का तबका जो आतंकी कमांडर था फारूक अहमद डार उर्फ बिटा कराटे, उसका जो इंटरव्यू न्यूज ट्रैक ने किया था, वो वीडियो भी अदालत में पेश किया गया है। और इस वीडियो में फारूक अहमद डार ने साफ तौर पर कबूला था कि उसने 20 कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या की थी। अब कश्मीरी पंडित समुदाय की मांग है कि एक व्यापक तौर पर सभी मामलों में जांच होनी चाहिए, ताकि वो तमाम दोषी जो है जिन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के ऊपर अत्याचार किया उनको सजा मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।
4: अब बात उस हत्याकांड की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। केतन मर्डर केस में आरोपी सिया और चेतन की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब अगली सुनवाई होनी है 3 जुलाई को। इन 4 दिनों में पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि केतन की हत्या के पीछे असली वजह थी क्या।
1: लोहगढ़ किले का ये वही हिस्सा है जहां केतन को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया गया। वो 340 फीट गहरी खाई में गिरा और दम तोड़ दिया। उलझाऊ और सस्पेंस भरे सवालों के साथ पुलिस 28 जून को ठीक उसी खाई के पास पहुंची। पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। पुलिस ने सिया से जाना कि 18 जून को इस खाई के पास और कौन कौन था, चेतन के साथ उसकी क्या बातें हुई, क्या दोनों में किसी बात को लेकर नाराजगी थी, चेतन को सिया ने मौके पर कितनी देर पहले बुलाया था। ऐसे कई सवाल सिया से किए गए। और इसी बीच आता है अब तक का सबसे अहम सस्पेंस। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट करते हुए सिया से कहा कि वो पुतले को खाई में धक्का दे। सिया ने ही पुतले को खाई में धकेला।
2: जो पुतला बनाया गया था वो केतन अग्रवाल के जैसा था, उसी के वजन का था, ताकि वो नीचे जाने के बाद ये पता चले और ये फाइनलाइज हो सके कि किस तरीके का इम्पैक्ट था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इम्पैक्ट के बाद पुतले के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो देखना पुलिस चाह रही थी।
1: खुलासे के मुताबिक सिया और चेतन ने हत्या की गहरी साजिश रची। उसी दौरान तय हुआ था कि किले में ऊंचाई पर पहुंचकर सिया अचानक बैठेगी। ये संकेत होगा कि अब केतन को खाई में धक्का देना है। अब पुलिस की तैयारी है कि क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाए और अब की बार पुलिस चेतन से पुतले को धक्का देने को कहेगी। पुणे पुलिस की कोशिश है कि सिया और चेतन के गुनाहों से धुले सुराग रिक्रिएशन के जरिए हासिल किए जाएं, उसे वेरीफाई किया जाए और मामले को अंजाम तक पहुंचाया जाए। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
4: कराची ब्लास्ट में अपने रेंजर्स की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बीती रात भीषण बमबारी की। रिहायशी इलाकों में की गई इस बमबारी में औरतों और बुजुर्गों और बच्चों समेत 25 लोगों की जान ले ली गई है।
3: ये फूल से बच्चे पाकिस्तान की कायराना हरकत के शिकार हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में इन बच्चों बुजुर्गों और औरतों पर बम बरसाए हैं। पक्तिता प्रांत के गयान जिले, पक्तिता प्रांत के समकानी जिले और कुनार प्रांत के मनोगई जिले में नागरिक इलाकों पर हवाई हमले किए। अफगानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिक मारे गए, जिनमें कई छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। अपनी जमीन पर आतंकी पाल रहा पाकिस्तान एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर अफगानी बच्चों बुजुर्गों और महिलाओं पर बम बरसा रहा है। क्या आसिम मुनीर की नजर में ये लड़का TTP का आतंकी है? क्या ये दुदमुही बच्ची दहशतगर्द है? क्या ये घायल लड़की कराची ब्लास्ट की मास्टरमाइंड है और क्या ये लहूलुहान बच्चियां, बुजुर्ग और महिलाएं आतंकी नजर आती हैं? अगर नहीं तो ये साफ है कि पाकिस्तान युद्ध अपराध कर रहा है और इस अपराध का जिम्मेदार आसिम मुनीर नहीं तो और कौन है, जिसने 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिकों को मार डाला। पाकिस्तान गाजा पर इजरायली बमबारी के बाद छाती पीटने लगता है, मगर कल रात उसने सोची समझी सैन्य बर्बरता दिखाते हुए कुख्यात डबल टैप रणनीति का इस्तेमाल किया और 35 बेकसूरों को मार डाला। आज तक बेरो।
4: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

चढ़ावा चोरी केस में एसबीआई से 6-7 बैंकों को नोटिस, मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और सभी वित्तीय लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड तलब, सभी आरोपियों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी, पीलीभीत में कहा यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा होगा, कर्फ्यू गुंडागर्दी से लोगों का जीना होगा हराम। आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर, नौकरशाही में प्रक्रिया के बदलाव के भी संकेत। बिहार के भोजपुर में भरत एनकाउंटर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता ने की है सीबीआई जांच की मांग। और यूपी के शामली में इस्लाम कबूलने वाले आयुष मलिक ने फिर से हिंदू धर्म अपनाया, कहा

0: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 70-80 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल है चंपत राय को लेकर, जिन्हें चढ़ावा चोरी की बात 4 जून को ही पता चल गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी भी बड़ी गड़बड़ी से इनकार करते रहे। सवाल है क्यों?
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं।
2: सात जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय चढ़ावा चोरी पर पहली बार और आखिरी बार बोले।
1: सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है।
2: लेकिन इससे चौंकाने वाली बात यह कि इस बयान के 2 दिन पहले ही ट्रस्ट के सभी बड़े पदाधिकारियों को पता चल चुका था कि चढ़ावे का गबन राम मंदिर के भीतर किया जा रहा है। ये रहा इसका सबूत इस सीसीटीवी वीडियो में। जिस शख्स को आप बैग लिए देख रहे हैं, इसका नाम है अविनाश शुक्ला, जो चढ़ावा चोरी गैंग का अहम सदस्य, लूटकांड का अहम किरदार। इसके हाथ में जो काले रंग का बैग दिखता है, कहा जा रहा है कि चोरी की रकम इसी में, जो सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे से उड़ाई गई। सूत्रों की माने तो 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे। छापेमारी जब हुई तो अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5,00,000 कैश बरामद हुआ, जो इस बैग में रखा हुआ है।
3: इस वक्त मौजूद है मुख्य आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला के घर के बाहर, जहां से 5 जून की रात को ट्रस्ट के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में अनधिकारिक तौर पर एक मोटी रकम बरामद की, जो कि सीसीटीवी में कैद है। ये वही घर है मेरे पीछे जो अविनाश शुक्ला है, जहां पर वह किराए पर रहा करता था। कल अविनाश शुक्ला के भाई से पुलिस ने यहीं पर लाकर पूछताछ की।
2: राम भक्त पहले से ही चढ़ावा चोरी के आरोपों से दंग है, लेकिन ये नया सच और खुलासा ज्यादा विचलित करने वाला है, क्योंकि इसने नए सिरे से ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया।
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला का 5 जून का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को इस चढ़ावा चोरी की जानकारी पहले से थी और इसकी एफआईआर दर्ज कराने में ट्रस्ट ने देरी की। यानी अविनाश शुक्ला समेत सभी आरोपी लगभग ट्रस्ट की निगाह में आ गए थे, और अविनाश शुक्ला का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि कैसे एक सफेद गाड़ी में पुलिसकर्मी व अन्य लोगों की मदद से अविनाश शुक्ला को बैठाया जा रहा है। उनके पास से एक काले बैग में कहा गया कि 5,00,000 रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई।
2: बड़ा सवाल यह है कि जब ट्रस्ट को पता चल गया था कि चढ़ावे का गबन हो रहा है, तो वो मामले को रफा दफा करने या मामले को शांत कराने में क्यों जुटा? आरोपी के घर चढ़ावे की रकम मिलने के तुरंत बाद एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई? उल्टा चंपत राय वीडियो जारी करके इस मामले से क्या गुमराह नहीं करते दिखे?
1: कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
0: तो चंपत राय कह रहे थे कि चढ़ावा चोरी मामले में कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। इसके बाद चंपत राय ना कुछ बोले, नहीं सामने आए, लेकिन चढ़ावा चोरी के मामले ने उन्हें और उनके साथियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
3: 4 जून को ट्रस्ट के लोगों को चोरी का पता चला, जिसके बाद 5 जून को चंपत राय के आदेश पर ट्रस्ट के लोग यहां पर आते हैं और अविनाश शुक्ला के पास से एक मोटी रकम बरामद करते हैं। सीसीटीवी में बैग लेते हुए अविनाश शुक्ला और ट्रस्ट के लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 8 जून को चंपत राय ने यह बयान दिया था कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। 7 जून को ये पूरा मामला सार्वजनिक हुआ था, तो कैसे बिना ऑफिशियल कंप्लेंट के, बिना एफआईआर फाइल हुए एक पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और जो रकम है उसको बरामद किया जा रहा था।
2: तो इस नए खुलासे ने ट्रस्ट और चंपत राय को लेकर कई गंभीर और नए सवाल पैदा कर दिए, क्योंकि ट्रस्ट को 5 जून को ही चढ़ावा चोरी का पता चल गया, इसके बावजूद 7 जून को पहली बार ये मामला जब सार्वजनिक रूप से बाहर आया, उसके बाद 13 जून को यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई, 25 जून को एफआईआर दर्ज हुई, 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, 26 जून को आरोपियों को 3 दिन के लिए जेल भेजा गया। इसी दिन चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, यानी ट्रस्ट को पता लगने के 20 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई और 21 दिन बाद जाकर चंपत राय ने पद छोड़ा। अब सवाल है कि चुप्पी साधे बैठे चंपत राय ने पुलिस जांच में देरी क्यों की, जब 5 जून को ट्रस्ट और पुलिस दोनों को चढ़ावा चोरी की जानकारी और सबूत मिल गए थे, तो फिर फौरन एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई, मामले को दबाने की कोशिश क्यों हुई?
3: ये बताया जा रहा है कि इस पर किसी भी तरीके से किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई, शिकायत नहीं दर्ज कराई गई और ये पूरी घटना होने के 20 दिन बाद जाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस सीसीटीवी ने ट्रस्ट के लोगों के उन दावों की पोल खोल दी है जिसमें वह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी पहले नहीं थी।
5: पहले से पकड़ लिया जाके पैसा बरामद चंपत राय जी, तो एफआईआर क्यों नहीं की? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सोचे जो है समझी षड्यंत्र के तहत बड़ों को बचाने के लिए इन लोगों को मोहरा बना गया, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, अभी हम मॉनिटरिंग भी डालेंगे, अभी हम सारा काम करेंगे, लेकिन उन पहलुओं को हम देख लें। हमारी कमेटी है, बैठ के काम करेगी, बख्शा कोई नहीं जाएगा।
2: पहले तो चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी होता रहा और जब उन्हें इसका पता चला तब भी उन्होंने फौरन इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, यानी चंपत राय ने अपनी पद की गरिमा के हिसाब से काम नहीं किया। सवालों में घिरे चंपत राय का पुलिस ने बयान दर्ज किया है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा सकती है। इधर पुलिस ने एसबीआई के अयोध्या धाम ब्रांच जाकर आरोपियों के खातों की जांच की ताकि चढ़ावा चोरी का पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल किया गया पता लगाया जा सके। वहीं अयोध्या के वकीलों ने ऐलान किया कि कोई भी चढ़ावा चोरी करने वाले आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा।
6: वकील लोग डिफेंस की ओर से वकील नहीं होंगे, अगर होंगे तो संघ में परमिशन लेंगे और 5 लाख रुपए वो पर हेड जमा करेंगे मोकिलों से लेके अपने और वकालत करेंगे। उस पैसे से प्रोसिक्यूशन की पैरवी होगी और उस प्रोसिक्यूशन की पैरवी में मुकदमा इन तीनों लोगों के खिलाफ दर्ज कराने की पूरी कोशिश की जाए।
7: बड़े आरोपियों सबको बचा लिया गया है, कोई चौकीदार है, कोई रिक्शा वाला है, कोई ड्राइवर है, कोई पोचाला है, सबको फंसाया गया है। इतना बड़ा कांड हो जाए, 40 से 70 बार घोटाला हो जाए, किसी बड़े आदमी पता न चले। मैं अधिवक्ता संघ का महामंत्री हूँ, मेरे नाक के नीचे हमारे बाबू लोग चोरी कर ले उनको पता न चले, तो भाई गले से उतरने वाली बात नहीं है।
5: उसके अलावा जो लोग हैं जिनको आप लोग बड़े लोग कह रहे हैं, उनको जो हम लोगों को जो ये लग रहा है कि एसआईटी से पुलिस से जो संघ का हमारे प्रस्ताव है उनको जो बचाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी सारी लिखा पड़ी जितनी कानूनी पहलू हो सकते हैं सब संघ करेगा। वो चाहे चंपत राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, गोपाल राव जी, अगर शासन प्रशासन कहीं से भी उनके उनको बचाने का प्रयास करता है तो हम लोग उनके खिलाफ भी पैरवी करेंगे।
2: चढ़ावा चोरी की जांच भले ही तेजी से आगे बढ़ रही हो, 8 आरोपियों को अब 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा सवालों में अब भी चंपत राय हैं, जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, जो केवल पद छोड़कर बचे हुए हैं।
0: क्या 2027 यूपी चुनाव की लड़ाई अब विचारधारा पर कब्जे की जंग बनती जा रही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में राम मनोहर लोहिया के परिवार से मुलाकात की और इसी के बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या अब बीजेपी अगले साल होने वाले यूपी चुनाव लोहिया वाला दाव खेलने वाली है। वहां मुद्दा बड़ा इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा से खुद को लोहिया की विचारधारा का सबसे बड़ा पैरोकार बताते आए हैं।
8: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनकी विचारधारा पर हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है,
9: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के संकल्पों के, उनके आदर्शों पे, उनकी बताई हुई नीतियों पे
10: समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे।
9: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं।
11: ना जाने कितनी बार अखिलेश यादव ने खुद को और अपनी समाजवादी पार्टी को राम मनोहर लोहिया और उनकी विचारधारा से जोड़ा है, बार बार लोहिया के विचारों से स्वयं को प्रेरित बताया है। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में अब साल से भी कम का वक्त बचा है और इस अंतराल में लोहिया नाम की गूंज यूपी में और तेज होने वाली है। जी हाँ, और यूपी की इसी चुनावी बिसात में अब बीजेपी ने एक नया दांव खेलकर समाजवादी पार्टी को चौंका दिया है। एक तरफ अखिलेश राम मंदिर में छड़वा चोरी पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राम मनोहर लोहिया के परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात कर रही है। चुनावी साल में बीजेपी ने मंडल और कमंडल को एक साथ साधना शुरू कर दिया है। मंडल के मसीहा कहें या पिछड़ों के सबसे बड़े विचारक राम मनोहर लोहिया के घर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। इस दौरे का संकेत और संदेश सीधे सीधे अखिलेश तक है कि अब विचारधारा के तौर पर भी सेंधमारी की तैयारी है।
12: मोदी जी के 12 साल पूरा होने पे जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, जो विशेष जनसंपर्क अभियान, उसके साथ आज मेरा सौभाग्य कि लोहिया जी के परपोतों से, उनके बेटों से मेरी मुलाकात हुई और पूरा एक पारिवारिक बैठना हुआ, सबसे बहुत अच्छा लगा।
13: सुना है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोहिया जी के घर गए थे, वो पार्टी जो जिसके विचार और नीत नफरतवादी है, जो समाज के अंदर में नफरत की बात करते हैं, समाज को डिवाइड करने की बात करते हैं। पहले अपने विचार बदलिए, समाजवादी पार्टी लोहिया जी के आदर्श आचरण को अपनाती है, लोहिया जी के बचाए हुए रास्ते पे चलती है, समाज को जोड़ने की बात करती है। किसी के घर जाने से कुछ नहीं होता है, आपको अपनी नीत और विचार बदलने की जरूरत है।
11: एक तरफ प्रयागराज में सीएम योगी समाजवादी पार्टी को अयोध्या और मथुरा पर ललकार रहे थे, तो दूसरी ओर पंकज चौधरी लखनऊ में लोहिया के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे। चर्चा तो ये भी चल निकली कि बीजेपी कहीं राम मनोहर लोहिया के परिवार वालों को चुनावी राजनीति में लाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, कहीं बीजेपी अखिलेश के उस हथियार को ही कुंद तो नहीं करना चाहती है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। अखिलेश को परेशानी इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि राम मनोहर लोहिया का परिवार पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी कर रहा है।
14: ले जी के विरुद्ध में तो कुछ नहीं कहना है, जो आदमी अपना जैसे करते हैं अपने अपने हिसाब से हर आदमी करता है। लेकिन पंकज चौधरी जी आए, उनकी देखिए माननीय प्रधानमंत्री के कहने से आए, उन्होंने व्यक्तिगत कॉल किया था, तो हम लोगों को अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों को बरसों से प्राप्त है। और जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी थे तब भी हमारी उनकी पारिवारिक संबंध थे, और जब से वो पीएम बने हैं उनमें खूबियां हैं।
11: राम मनोहर लोहिया मारवाड़ी वैश्य यानी ओबीसी वर्ग से थे, और बीजेपी भी जानती है कि बिना ओबीसी समाज को साधे बगैर 2027 चुनाव में उनका कल्याण होने वाला नहीं है। इससे पहले यूपी चुनाव के लिए बनी विशेष टीम में ओबीसी को तरजीह दी और अब लोहिया परिवार से मुलाकात।
15: प्रदेश अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मिलने पहुंच गए। ये सब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई ऐसी एक दूसरे में उलझ गई है कि दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी हैं। कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों को उनके वैचारिक प्रणेताओं के जरिए साधने की कोशिश कर रही है।
11: बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पर ही जोर नहीं दिया है, बल्कि क्राइम रेट को लेकर भी एसपी कार्यकाल को घेरना भी शुरू कर दिया है।
16: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी।
11: 2027 को लेकर बीजेपी सिर्फ राम भरोसे नहीं है, उसे मालूम है कि धर्म का मुलम्मा समाज के सभी तबकों का वोट नहीं दिला सकता, इसीलिए अब बीजेपी समाजवादी पार्टी की तथा कथित विचारधारा में भी सेंधमारी करने में जुट गई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
0: देश में पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला है महाराष्ट्र के टीईटी परीक्षा का, जिसका मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता है, और ये वही बिजेंद्र गुप्ता है जिसका 2 साल पहले स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने किया था। आज तक के कैमरे में बिजेंद्र गुप्ता ने खुलेआम कहा था कि पेपर लीक करवाना उसका धंधा है और जेल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। महाराष्ट्र पुलिस इसी बिजेंद्र गुप्ता की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी कर रही है।
17: लगभग 1028 अलग अलग सेंटर्स पे ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन आज इस प्रकार से ये पेपर लीक हो गया है।
18: उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है, 4 सेट मिले हैं। जो बातचीत चल रही थी एक ट्रैप में, उनका 1.5 करोड़ की डिमांड थी, वो 1.5 करोड़ में पेपर बेचने के बाद जो लेने वाला है वो आगे अलग अलग जो बायर है उनको पेपर देने का उनके सिस्टम थी।
2: महाराष्ट्र में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के करीब 4.5 लाख परीक्षार्थियों के साथ हुए इस धोखे का, इस अन्याय का जिम्मेदार ये चेहरा है जिसे आज तक ने 2 साल पहले ही ढूंढ निकाला था। नाम है विजेंद्र गुप्ता। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा का पर्चा लीक करने वाला ये माफिया बेफिक्र होकर घूम रहा है। वहीं महाराष्ट्र के लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंता में डूबे हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ये कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। टीईटी पेपर लीक से पूरी राज्य सरकार निशाने पर है। पेपर लीक की बीमारी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गई। देश का कोई भी राज्य, कोई भी परीक्षा, कुछ भी फुल प्रूफ नहीं।
19: सीबीआई का उगाड़ नहीं पकड़ रहा, उसके घर में करूंगा नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ेगा। मैं सेंट्रल स्पॉट से नहीं पकड़ रहा, कभी मेरा पेपर नहीं पकड़ रहा।
2: अब सवाल है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुकते, तो इसका जवाब महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड है जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार का रहने वाला पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता ही महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पटना और समस्तीपुर समेत कई राज्यों में महाराष्ट्र पुलिस छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया वो सभी इसी पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता के इशारे पर काम कर रहे थे।
20: महाराष्ट्र के 5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जिस पेपर लीक माफिया को मुंबई पुलिस तलाश रही है, उस पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन आज तक नहीं किया था। वो साल था 2024 जब नीट पेपर लीक हुआ था। मैंने ही बिहार जाकर पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता को बेनकाब किया था। मैंने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें पेपर माफिया विजेंद्र गुप्ता ने पेपर माफियाओं के एक से बड़े एक राज खुले थे। विजेंद्र गुप्ता ने स्टिंग कैमरे में खुलासा किया था कि कैसे पेपर माफिया बेखौफ होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं।
2: तो अगर आपको लगता है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा, तो इसका जवाब विजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का बुलंद हौसला है जिन्हें कानून का कोई डर नहीं। तभी तो वो खुलेआम कहते फिरते हैं कि यही खेल करेंगे चाहे कितनी बार भी जेल चले जाएं।
19: रही बात जेल जाने का, था जेल कर फिर परसों से यही खेल करेंगे।
21: आप कैसे यूपीएससी वाला किए थे, वो कौन सी कंपनी?
19: एमपीपीएससी। हाँ, इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होंगे।
21: किसका नाम?
19: बेदीराम जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे। विद्यार्थी लाइफ था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गया साथ में, धरा गया जेल चल गया।
2: जब तक विजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का ढंग से इलाज नहीं होता, ये पेपर लीक वाली बीमारी रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, चाहे कोई भी राज्य हो, किसी की भी सरकार।
22: पेपर फुटले तर फुटू दे, विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली तर करू दे। आजच ठाण्यामध्ये एक पेपर फुटला आहे टीईटीचा, कोणालाच काही पडलेलं नाहीये। नीटचा पेपर फुटला, धर्मेंद्र प्रधाननी राजीनामा तर दिलाच पाहिजे।
23: ये सरकार की नाकामयाबी आहे। ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
24: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
2: महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का खुलासा वहाँ की पुलिस ने ही किया। परीक्षा से पहले भिवंडी पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग दिल्ली और हरियाणा से मुंबई आकर टीईटी के पेपर बेचने का सौदा कर रहे हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर मुंबई से 3 लोग आकाश, राजीव और धीरज को गिरफ्तार किया जिनसे लीक पेपर बरामद हुआ, जिसने आज तक से कही गई पेपर लीक माफिया विजेंद्र की बात को 100% सच साबित कर दिया है कि पेपर लीक नहीं रुकने वाला है।
25: ये संजीव मुखिया अभी तो भगा हुआ है ना, ये
19: पकड़ाएगा भी
25: क्यों? लेकिन पहले भी जेल जा चुका है ना,
19: पैसा कमाया बस इधर 1 साल का। एक साल पहले
25: उसकी डीवी इलेक्शन में तो लड़ी थी,
19: उस इलेक्शन में ही तो बर्बाद हुआ। लोगों से एडवांस उठाया बेटा, वो सब दिन नीट का ही काम करता है, 10-20 कहीं ना कहीं से सेंटर फेंटर से करके उस साल में 2-3 करोड़ रुपया। इस बार उसको 200-400 करोड़ रुपया कमाने का शौक था।
26: तो 700 करोड़
19: किया इस बार नीट में,
25: 700
1: मिल ही नहीं सकता
19: क्यों मिलेगा 700 काम किया हुआ इस बार
25: 700 स्टूडेंट्स का
19: 40 लाख से गुना कर दीजिए
3: पिछले दो दशक में ऐसी परीक्षाएं जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोग बैठे हों उनमें 45 से ज्यादा पेपर लीक के मामले हुए और सिर्फ 18 लोगों को सजा मिली सबसे बड़ी बात ये सभी सजाएं सिर्फ 2 मामलों से जुड़ी जिनमें से एक साल 2010 का रेलवे भर्ती घोटाला है बाकी बचे 95% से ज्यादा मामलों में सालों से अदालती सुनवाई हो रही है मामले लंबित पड़े हैं और पेपर लीक के आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं इसमें सबसे बड़ा नाम विजेंद्र गुप्ता का है जो आज तक के खुफिया कैमरे में लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ पर इतराता सुना और देखा गया महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक से ये माफिया एक बार फिर सुर्खियों में है अब देखना है कि क्या महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पेपर लीक के इस माफिया को रिकॉर्ड टाइम में पकड़कर कड़ी सजा दिलाकर कोई नजीर पेश कर पाती है या फिर पेपर लीक का माफिया इस बार चुनौती देकर पेपर लीक कराता ही रहेगा अरविंद ओझा दिल्ली आज तक
0: और अब बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की जिन्हें 36 साल के बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है और श्रीनगर के टाडा कोर्ट ने चार्जशीट भी दायर की है
4: छत्तीस बरस बाद जागी है इंसाफ की उम्मीद 36 बरस बाद कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा जी हां जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है टाडा कोर्ट में 700 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट दायर कर दी गई है
5: कोर्ट में जो है ट्रायल होना है यानी कि कोर्ट में अब ट्रायल होगा उसके बाद ही जो है निर्णय होगा लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया है इस चार्जशीट में जिसमें जेकेएलएफ का खूंखार आतंकी कमांडर यासीन मलिक भी शामिल है और एसआईए ने साफ तौर पर कहा है कि यासीन मलिक ही इसमें मुख्य अभियुक्त है और जो इस पूरे मामले में जो 5 अभियुक्तों के नाम रखे गए हैं उनमें से 3 जो है उनकी मौत पहले ही हो चुकी है एक आतंकी जो है वो एब्सकॉन्डिंग है यानी कि वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर भाग गया था वो वहीं पर छिपा हुआ है और यासीन मलिक जो है इस समय तिहार जेल में है
4: 18 अप्रैल 1990 को श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी स्किम्स परिसर के पास से जेकेएलएफ के आतंकवादियों ने स्टाफ नर्स सरला भट्ट का अपहरण कर लिया था अपहरण के बाद सरला से मारपीट और गैंग रेप किया गया इसके बाद श्रीनगर की उमर कॉलोनी यानी मालबाग में ऑटोमेटिक राइफल से गोली मारकर सरला की हत्या कर दी गई डाउनटाउन श्रीनगर में उनकी क्षत विक्षत लाश मिली थी
5: एसआईए ने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी पेश किया और वो क्या था वो था इंडिया टुडे आज तक ग्रुप का जो न्यूज ट्रैक था 1990 में जो उस समय न्यूज ट्रैक के पत्रकारों ने जो रिपोर्टिंग की उसका एविडेंस सामने रखा गया और खासतौर पर जो जेकेएलएफ का तबका जो आतंकी कमांडर था फारूक अहमद डार उर्फ बिटा कराटे उसका जो इंटरव्यू न्यूज ट्रैक ने किया था वो वीडियो भी अदालत में पेश किया गया है और इस वीडियो में फारूक अहमद डार ने साफ तौर पर कबूला था कि उसने 20 कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या की थी अब कश्मीरी पंडित समुदाय की मांग है कि एक व्यापक तौर पर सभी मामलों में जांच होनी चाहिए ताकि वो तमाम दोषी जो है जिन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के ऊपर अत्याचार किया उनको सजा मिल सके वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट जम्मू आज तक
0: अब बात उस हत्याकांड की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया केतन मर्डर केस में आरोपी सिया और चेतन की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है अब अगली सुनवाई होनी है 3 जुलाई को इन 4 दिनों में पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि केतन की हत्या के पीछे असली वजह थी क्या
6: लोहगढ़ किले का ये वही हिस्सा है जहां केतन को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया गया वो 340 फीट गहरी खाई में गिरा और दम तोड़ दिया उलझाऊ और सस्पेंस भरे सवालों के साथ पुलिस 28 जून को ठीक उसी खाई के पास पहुंची। पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया पुलिस ने सिया से जाना कि 18 जून को इस खाई के पास और कौन कौन था चेतन के साथ उसकी क्या बातें हुई क्या दोनों में किसी बात को लेकर नाराजगी थी चेतन को सिया ने मौके पर कितनी देर पहले बुलाया था ऐसे कई सवाल सिया से किए गए और इसी बीच आता है अब तक का सबसे अहम सस्पेंस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट करते हुए सिया से कहा कि वो पुतले को खाई में धक्का दे। सिया ने ही पुतले को खाई में धकेला।
7: जो पुतला बनाया गया था वो केतन अग्रवाल के जैसा था, उसी के वजन का था, ताकि वो नीचे जाने के बाद ये पता चले और ये फाइनलाइज हो सके कि किस तरीके का इम्पैक्ट था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या थे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इम्पैक्ट के बाद पुतले के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो देखना पुलिस चाह रही थी।
6: खुलासे के मुताबिक सिया और चेतन ने हत्या की गहरी साजिश रची। उसी दौरान तय हुआ था कि किले में ऊंचाई पर पहुंचकर सिया अचानक बैठेगी। ये संकेत होगा कि अब केतन को खाई में धक्का देना है। अब पुलिस की तैयारी है कि क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाए और अब की बार पुलिस चेतन से पुतले को धक्का देने को कहेगी। पुणे पुलिस की कोशिश है कि सिया और चेतन के गुनाहों से धुले सुराग रिक्रिएशन के जरिए हासिल किए जाएं, उसे वेरीफाई किया जाए और मामले को अंजाम तक पहुंचाया जाए। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
0: कराची ब्लास्ट में अपने रेंजर्स की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बीती रात भीषण बमबारी की। रिहायशी इलाकों में की गई इस बमबारी में औरतों और बुजुर्गों और बच्चों समेत 25 लोगों की जान ले ली गई है।
8: ये फूल से बच्चे पाकिस्तान की कायराना हरकत के शिकार हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में इन बच्चों, बुजुर्गों और औरतों पर बम बरसाए हैं। पक्तिता प्रांत के गयान जिले, पक्तिता प्रांत के समकानी जिले और कुनार प्रांत के मनोगई जिले में नागरिक इलाकों पर हवाई हमले किए। अफगानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिक मारे गए, जिनमें कई छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। अपनी जमीन पर आतंकी पाल रहा पाकिस्तान एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर अफगानी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर बम बरसा रहा है। क्या आसिम मुनीर की नजर में ये लड़का TTP का आतंकी है? क्या ये दुदमुही बच्ची दहशतगर्द है? क्या ये घायल लड़की कराची ब्लास्ट की मास्टरमाइंड है? और क्या ये लहूलुहान बच्चियां, बुजुर्ग और महिलाएं आतंकी नजर आती हैं? अगर नहीं तो ये साफ है कि पाकिस्तान युद्ध अपराध कर रहा है, और इस अपराध का जिम्मेदार आसिम मुनीर नहीं तो और कौन है, जिसने 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिकों को मार डाला। पाकिस्तान गाजा पर इजरायली बमबारी के बाद छाती पीटने लगता है, मगर कल रात उसने सोची समझी सैन्य बर्बरता दिखाते हुए कुख्यात डबल टैप रणनीति का इस्तेमाल किया और 35 बेकसूरों को मार डाला। आज तक
0: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी केस में एसबीआई से 6-7 बैंकों को नोटिस, मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और सभी वित्तीय लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड तलब, सभी आरोपियों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी, पीलीभीत में कहा यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा होगा, कर्फ्यू गुंडागर्दी से लोगों का जीना होगा हराम। आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर, नौकरशाही में प्रक्रिया के बदलाव के भी संकेत। बिहार के भोजपुर में भरत एनकाउंटर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता ने की है सीबीआई जांच की मांग। और यूपी के शामली में इस्लाम कबूलने वाले आयुष मलिक ने फिर से हिंदू धर्म अपनाया, कहा परिवार को परेशान देकर लिया फैसला, पिता बोले मुस्लिम लड़की ने किया था ब्रेन वॉश। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 70-80 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल है चंपत राय को लेकर, जिन्हें चढ़ावा चोरी की बात 4 जून को ही पता चल गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी भी बड़ी गड़बड़ी से इनकार करते रहे। सवाल है क्यों?
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है, हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है, हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं।
2: सात जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय चढ़ावा चोरी पर पहली बार और आखिरी बार बोले।
1: सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है, हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है।
2: लेकिन इससे चौंकाने वाली बात यह कि इस बयान के 2 दिन पहले ही ट्रस्ट के सभी बड़े पदाधिकारियों को पता चल चुका था कि चढ़ावे का गबन राम मंदिर के भीतर किया जा रहा है। ये रहा इसका सबूत इस सीसीटीवी वीडियो में, जिस शख्स को आप बैग लिए देख रहे हैं इसका नाम है अविनाश शुक्ला, जो चढ़ावा चोरी गैंग का अहम सदस्य, लूटकांड का अहम किरदार। इसके हाथ में जो काले रंग का बैग दिखता है, कहा जा रहा है कि चोरी की रकम इसी में, जो सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे से उड़ाई गई। सूत्रों की माने तो 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे। छापेमारी जब हुई तो अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5 लाख कैश बरामद हुआ, जो इस बैग में रखा हुआ है।
3: इस वक्त मौजूद है मुख्य आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला के घर के बाहर, जहां से 5 जून की रात को ट्रस्ट के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में अनधिकारिक तौर पर एक मोटी रकम बरामद की, जो कि सीसीटीवी में कैद है। ये वही घर है मेरे पीछे जो अविनाश शुक्ला है, जहां पर वह किराए पर रहा करता था। कल अविनाश शुक्ला के भाई से पुलिस ने यहीं पर लाकर पूछताछ की।
2: राम भक्त पहले से ही चढ़ावा चोरी के आरोपों से दंग है, लेकिन ये नया सच और खुलासा ज्यादा विचलित करने वाला है, क्योंकि इसने नए सिरे से ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला का 5 जून का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को इस चढ़ावा चोरी की जानकारी पहले से थी और इसकी एफआईआर दर्ज कराने में ट्रस्ट ने देरी की। यानी अविनाश शुक्ला समेत सभी आरोपी लगभग ट्रस्ट की निगाह में आ गए थे, और अविनाश शुक्ला का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि कैसे एक सफेद गाड़ी में पुलिसकर्मी व अन्य लोगों की

0: या मामले को शांत कराने में क्यों जुटा? आरोपी के घर चढ़ावे की रकम मिलने के तुरंत बाद FIR क्यों नहीं करवाई गई? उल्टा चंपत राय वीडियो जारी करके इस मामले से क्या गुमराह नहीं करते दिखे?
1: कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
2: तो चंपत राय कह रहे थे कि चढ़ावा चोरी मामले में कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। इसके बाद चंपत राय ना कुछ बोले नहीं सामने आए, लेकिन चढ़ावा चोरी के मामले ने उन्हें और उनके साथियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
3: 4 जून को ट्रस्ट के लोगों को चोरी का पता चला, जिसके बाद 5 जून को चंपत राय के आदेश पर ट्रस्ट के लोग यहां पर आते हैं और अविनाश शुक्ला के पास से एक मोटी रकम बरामद करते हैं। CCTV में बैग लेते हुए अविनाश शुक्ला और ट्रस्ट के लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 8 जून को चंपत राय ने यह बयान दिया था कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। 7 जून को ये पूरा मामला सार्वजनिक हुआ था, तो कैसे बिना ऑफिशियल कंप्लेंट के, बिना FIR फाइल हुए एक पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और जो रकम है उसको बरामद किया जा रहा था।
0: तो इस नए खुलासे ने ट्रस्ट और चंपत राय को लेकर कई गंभीर और नए सवाल पैदा कर दिए, क्योंकि ट्रस्ट को 5 जून को ही चढ़ावा चोरी का पता चल गया। इसके बावजूद 7 जून को पहली बार ये मामला जब सार्वजनिक रूप से बाहर आया, उसके बाद 13 जून को यूपी सरकार ने SIT बनाई, 25 जून को FIR दर्ज हुई, 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, 26 जून को आरोपियों को 3 दिन के लिए जेल भेजा गया, इसी दिन चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, यानी ट्रस्ट को पता लगने के 20 दिन बाद FIR दर्ज हुई और 21 दिन बाद जाकर चंपत राय ने पद छोड़ा। अब सवाल है कि चुप्पी साधे बैठे चंपत राय ने पुलिस जांच में देरी क्यों की, जब 5 जून को ट्रस्ट और पुलिस दोनों को चढ़ावा चोरी की जानकारी और सबूत मिल गए थे, तो फिर फौरन FIR क्यों नहीं दर्ज कराई गई? मामले को दबाने की कोशिश क्यों हुई?
3: ये बताया जा रहा है कि इस पर किसी भी तरीके से किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई, शिकायत नहीं दर्ज कराई गई और ये पूरी घटना होने के 20 दिन बाद जाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस CCTV ने ट्रस्ट के लोगों के उन दावों की पोल खोल दी है जिसमें वह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी पहले नहीं थी।
4: पहले से पकड़ लिया जाके पैसा बरामद चंपत राय जी, तो FIR क्यों नहीं की? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सोचे जो समझी षड्यंत्र के तहत बड़ों को बचाने के लिए इन लोगों को मोहरा बना के ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। अभी हम मॉनिटरिंग भी डालेंगे, अभी हम सारा काम करेंगे, लेकिन उन पहलुओं को हम देख ले, हमारी कमेटी है बैठ के काम करेगी, बख्शा कोई नहीं जाएगा।
0: पहले तो चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी होता रहा और जब उन्हें इसका पता चला तब भी उन्होंने फौरन इस मामले में FIR दर्ज नहीं करवाई, यानी चंपत राय ने अपनी पद की गरिमा के हिसाब से काम नहीं किया। सवालों में घिरे चंपत राय का पुलिस ने बयान दर्ज किया है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा सकती है। इधर पुलिस ने SBI के अयोध्या धाम ब्रांच जाकर आरोपियों के खातों की जांच की, ताकि चढ़ावा चोरी का पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल किया गया पता लगाया जा सके। वहीं अयोध्या के वकीलों ने ऐलान किया कि कोई भी चढ़ावा चोरी करने वाले आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा।
5: वकील लोग डिफेंस की ओर से वकील नहीं होंगे, अगर होंगे तो संघ में परमिशन लेंगे और 5 लाख रुपए वो पर हेड जमा करेंगे मोकिलों से लेके अपने और वकालत करेंगे। उस पैसे से प्रोसिक्यूशन की पैरवी होगी और उस प्रोसिक्यूशन की पैरवी में मुकदमा इन तीनों लोगों के खिलाफ दर्ज कराने की पूरी कोशिश की जाए।
6: बड़े आरोपियों सबको बचा लिया गया है, कोई चौकीदार है, कोई रिक्शा वाला है, कोई ड्राइवर है, कोई पोछा वाला है, सबको फंसाया गया है। इतना बड़ा कांड हो जाए, 40 से 70 बार घोटाला हो जाए, किसी बड़े आदमी पता न चले, मैं अधिवक्ता संघ का महामंत्री हूँ, मेरे नाक के नीचे हमारे बाबू लोग चोरी करने को पता न चले, तो भाई गले से उतरने वाली बात नहीं है।
4: उसके अलावा जो लोग हैं जिनको आप लोग बड़े लोग कह रहे हैं, उनको जो हम लोगों को जो ये लग रहा है कि SIT से पुलिस से जो संघ का हमारे प्रस्ताव है उनको जो बचाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी सारी लिखा पड़ी जितनी कानूनी पहलू हो सकते हैं सब संघ करेगा, वो चाहे चंपत राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, गोपाल राव जी, अगर शासन प्रशासन कहीं से भी उनको बचाने का प्रयास करता है तो हम लोग उनके खिलाफ भी पैरवी करेंगे।
0: चढ़ावा चोरी की जांच भले ही तेजी से आगे बढ़ रही हो, 8 आरोपियों को अब 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा सवालों में अब भी चंपत राय हैं, जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, जो केवल पद छोड़कर बचे हुए हैं।
2: क्या 2027 यूपी चुनाव की लड़ाई अब विचारधारा पर कब्जे की जंग बनती जा रही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी

0: बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में राम मनोहर लोहिया के परिवार से मुलाकात की और इसी के बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या अब बीजेपी अगले साल होने वाले यूपी चुनाव लोहिया वाला दाव खेलने वाली है। वहां मुद्दा बड़ा इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा से खुद को लोहिया की विचारधारा का सबसे बड़ा पैरोकार बताते आए हैं।
1: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनकी विचारधारा पर हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है,
2: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के संकल्पों के, उनके आदर्शों पे, उनकी बताई हुई नीतियों पे
3: समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे।
2: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं।
4: ना जाने कितनी बार अखिलेश यादव ने खुद को और अपनी समाजवादी पार्टी को राम मनोहर लोहिया और उनकी विचारधारा से जोड़ा है। बार बार लोहिया के विचारों से स्वयं को प्रेरित बताया है। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में अब साल से भी कम का वक्त बचा है और इस अंतराल में लोहिया नाम की गूंज यूपी में और तेज होने वाली है। जी हाँ, और यूपी की इसी चुनावी बिसात में अब बीजेपी ने एक नया दांव खेलकर समाजवादी पार्टी को चौंका दिया है। एक तरफ अखिलेश राम मंदिर में छड़वा चोरी पर बीजेपी को घेर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राम मनोहर लोहिया के परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात कर रही है। चुनावी साल में बीजेपी ने मंडल और कमंडल को एक साथ साधना शुरू कर दिया है। मंडल के मसीहा कहें या पिछड़ों के सबसे बड़े विचारक राम मनोहर लोहिया के घर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। इस दौरे का संकेत और संदेश सीधे सीधे अखिलेश तक है कि अब विचारधारा के तौर पर भी सेंधमारी की तैयारी है।
5: मोदी जी के 12 साल पूरा होने पे जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा, जो विशेष जनसंपर्क अभियान, उसके साथ आज मेरा सौभाग्य है कि लोहिया जी के परपोतों से, उनके बेटों से मेरी मुलाकात हुई और पूरा एक पारिवारिक बैठना हुआ, सबसे बहुत अच्छा लगा।
6: सुना है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोहिया जी के घर गए थे, वो पार्टी जो जिसके विचार और नीत नफरतवादी है, जो समाज के अंदर में नफरत की बात करते हैं, समाज को डिवाइड करने की बात करते हैं। पहले अपने विचार बदलिए। समाजवादी पार्टी लोहिया जी के आदर्श आचरण को अपनाती है, लोहिया जी के बचाए हुए रास्ते पे चलती है, समाज को जोड़ने की बात करती है। किसी के घर जाने से कुछ नहीं होता है, आपको अपनी नीति और विचार बदलने की जरूरत है।
4: एक तरफ प्रयागराज में सीएम योगी समाजवादी पार्टी को अयोध्या और मथुरा पर ललकार रहे थे तो दूसरी ओर पंकज चौधरी लखनऊ में लोहिया के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे। चर्चा तो ये भी चल निकली कि बीजेपी कहीं राम मनोहर लोहिया के परिवार वालों को चुनावी राजनीति में लाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, कहीं बीजेपी अखिलेश के उस हथियार को ही कुंद तो नहीं करना चाहती है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। अखिलेश को परेशानी इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि राम मनोहर लोहिया का परिवार पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी कर रहा है।
7: ले जी के विरुद्ध में तो कुछ नहीं कहना है, जो आदमी अपना जैसे करते हैं अपने अपने हिसाब से हर आदमी करता है। लेकिन पंकज चौधरी जी आए, उनकी देखिए माननीय प्रधानमंत्री के कहने से आए, उन्होंने व्यक्तिगत काल किया था तो हम लोगों को अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों को बरसों से प्राप्त है। और जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी थे तब भी हमारी उनकी पारिवारिक संबंध थे और जब से वो पीएम बने हैं उनमें खूबियां हैं।
4: राम मनोहर लोहिया मारवाड़ी वैश्य यानी ओबीसी वर्ग से थे और बीजेपी भी जानती है कि बिना ओबीसी समाज को साधे बगैर 2027 चुनाव में उनका कल्याण होने वाला नहीं है। इससे पहले यूपी चुनाव के लिए बनी विशेष टीम में ओबीसी को तरजीह दी और अब लोहिया परिवार से मुलाकात।
8: प्रदेश अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मिलने पहुंच गए। ये सब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई ऐसी एक दूसरे में उलझ गई है कि दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी हैं। कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों को उनके वैचारिक प्रणेताओं के जरिए साधने की कोशिश कर रही है।
4: बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पर ही जोर नहीं दिया है बल्कि क्राइम रेट को लेकर भी एसपी कार्यकाल को घेरना भी शुरू कर दिया है।
9: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी।
4: 2027 को लेकर बीजेपी सिर्फ राम भरोसे नहीं है, उसे मालूम है कि धर्म का मुलम्मा समाज के सभी तबकों का वोट नहीं दिला सकता, इसीलिए अब बीजेपी समाजवादी पार्टी की तथा कथित विचारधारा में भी सेंधमारी करने में जुट गई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
0: देश में पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला है महाराष्ट्र के टीईटी परीक्षा का, जिसका मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता है। और ये वही बिजेंद्र गुप्ता है जिसका 2 साल पहले स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने किया था। आज तक के कैमरे में बिजेंद्र गुप्ता ने खुलेआम कहा था कि पेपर लीक करवाना उसका धंधा है और जेल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। महाराष्ट्र पुलिस इसी बिजेंद्र गुप्ता की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी कर रही है।
10: लगभग 1028 अलग अलग सेंटर्स पे ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन आज इस प्रकार से ये पेपर लीक हो गया है।
11: उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है, 4 सेट मिले हैं। जो बातचीत चल रही थी ये ट्रैप में, उनका 1.5 करोड़ की डिमांड थी, वो 1.5 करोड़ में पेपर बेचने के बाद जो लेने वाला है वो आगे अलग अलग जो बायर है उनको पेपर देने का उनकी सिस्टम थी।
12: महाराष्ट्र में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के करीब 4.5 लाख परीक्षार्थियों के साथ हुए इस धोखे का, इस अन्याय का जिम्मेदार ये चेहरा है जिसे आज तक ने 2 साल पहले ही ढूंढ निकाला था। नाम है बिजेंद्र गुप्ता। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा का पर्चा लीक करने वाला ये माफिया बेफिक्र होकर घूम रहा है। वहीं महाराष्ट्र के लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंता में डूबे हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ये कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। टीईटी पेपर लीक से पूरी राज्य सरकार निशाने पर है। पेपर लीक की बीमारी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गई। देश का कोई भी राज्य, कोई भी परीक्षा, कुछ भी फुल प्रूफ नहीं है। अब सवाल है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुकते, तो इसका जवाब महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड है जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार का रहने वाला पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता ही महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। बिजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पटना और समस्तीपुर समेत कई राज्यों में महाराष्ट्र पुलिस छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया वो सभी इसी पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता के इशारे पर काम कर रहे थे।
13: महाराष्ट्र के 5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जिस पेपर लीक माफिया को मुंबई पुलिस तलाश रही है, उस पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन आज तक नहीं किया था। वो साल था 2024 जब नीट पेपर लीक हुआ था। मैंने ही बिहार जाकर पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता को बेनकाब किया था। मैंने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें पेपर माफिया बिजेंद्र गुप्ता ने पेपर माफियाओं के एक से बड़े एक राज खुले थे। बिजेंद्र गुप्ता ने स्टिंग कैमरे में खुलासा किया था कि कैसे पेपर माफिया बेखौफ होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं।
12: तो अगर आपको लगता है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा, तो इसका जवाब बिजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का बुलंद हौसला है जिन्हें कानून का कोई डर नहीं। तभी तो वो खुलेआम कहते फिरते हैं कि यही खेल करेंगे चाहे कितनी बार भी जेल चले जाएं।
14: नई बार जेल जाने का था, जेल कर गए, फिर परसों से यही खेल करेंगे।
15: आप कैसे यूपीएससी वाला किए थे, वो कौन सी कंपनी?
14: एमपीपीएससी। हाँ, इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होंगे।
15: किसका नाम?
14: बेदीराम जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे, विद्यार्थी लाइफ था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गए साथ में, धरा गए, जेल चल गए।
12: जब तक विजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का ढंग से इलाज नहीं होता, ये पेपर लीक वाली बीमारी रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, चाहे कोई भी राज्य हो, किसी की भी सरकार।
16: पेपर फुटले तर फुटू दे, विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली तर करू दे। आजच ठाण्यामध्ये एक पेपर फुटला आहे टीईटीचा, कोणालाच काही पडलेलं नाहीये। नीटचा पेपर फुटला, धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा तर दिलाच पाहिजे।
17: ये सरकार की नाकामयाबी आहे, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
18: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
12: महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का खुलासा वहां की पुलिस ने ही किया है। परीक्षा से पहले भिवंडी पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग दिल्ली और हरियाणा से मुंबई आकर टीईटी के पेपर बेचने का सौदा कर रहे हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर मुंबई से 3 लोग आकाश, राजीव और धीरज को गिरफ्तार किया, जिनसे लीक पेपर बरामद हुआ, जिसने आज तक से कही गई पेपर लीक माफिया विजेंद्र की बात को 100% सच साबित कर दिया है कि पेपर लीक नहीं रुकने वाला है।
19: ये संजीव मुखिया अभी तो भगा हुआ है ना, ये
14: पकड़ाएगा
19: क्यों? नहीं, पहले भी जेल जा चुका है ना,
14: पैसा कमाया इधर 1 साल पहले।
19: उसकी बीवी इलेक्शन में तो लड़ी थी,
14: उस इलेक्शन में ही तो बर्बाद हुआ, लोगों से एडवांस उठाया, बेटा वो सब दिन नीट का ही काम करता है, 10-20 कहीं ना कहीं से सेंटर फेंटर से करके उस साल में 2-3 करोड़ रुपया, इस बार उसको 1400-1400 करोड़ रुपया कमाने का शौक था।
12: पिछले 2 दशक में ऐसी परीक्षाएं जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोग बैठे हों, उनमें 45 से ज्यादा पेपर लीक के मामले हुए और सिर्फ 18 लोगों को सजा मिली। सबसे बड़ी बात, ये सभी सजाएं सिर्फ 2 मामलों से जुड़ी, जिनमें से 1 साल 2010 का रेलवे भर्ती घोटाला है। बाकी बचे 95% से ज्यादा मामलों में सालों से अदालती सुनवाई हो रही है, मामले लंबित पड़े हैं और पेपर लीक के आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम विजेंद्र गुप्ता का है, जो आज तक के खुफिया कैमरे में लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ पर इतराता सुना और देखा गया। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक से ये माफिया एक बार फिर सुर्खियों में है। अब देखना है कि क्या महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पेपर लीक के इस माफिया को रिकॉर्ड टाइम में पकड़कर कड़ी सजा दिलाकर कोई नजीर पेश कर पाती है, या फिर पेपर लीक का माफिया इस बार चुनौती देकर पेपर लीक कराता ही रहेगा। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की, जिन्हें 36 साल के बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है और श्रीनगर के टाडा कोर्ट ने चार्जशीट भी दायर की है।
20: छत्तीस बरस बाद जागी है इंसाफ की उम्मीद। 36 बरस बाद कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। जी हां, जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है। टाडा कोर्ट में 700 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट दायर कर दी गई है।
21: कोर्ट में जो है ट्रायल होना है, यानी कि कोर्ट में अब ट्रायल होगा, उसके बाद ही जो है निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया है इस चार्जशीट में, जिसमें JKLF का खूंखार आतंकी कमांडर यासीन मलिक भी शामिल है। और SIA ने साफ तौर पर कहा है कि यासीन मलिक ही इसमें मुख्य अभियुक्त है। और जो इस पूरे मामले में जो 5 अभियुक्तों के नाम रखे गए हैं, उनमें से 3 जो है उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। एक आतंकी जो है वो एब्सकॉन्डिंग है, यानी कि वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर भाग गया था, वो वहीं पर छिपा हुआ है। और यासीन मलिक जो है इस समय तिहार जेल में है।
20: 18 अप्रैल 1990 को श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी स्किम्स परिसर के पास से JKLF के आतंकवादियों ने स्टाफ नर्स सरला भट्ट का अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद सरला से मारपीट और गैंग रेप किया गया। इसके बाद श्रीनगर की उमर कॉलोनी यानी मालबाग में ऑटोमेटिक राइफल से गोली मारकर सरला की हत्या कर दी गई। डाउनटाउन श्रीनगर में उनकी छत विक्षत लाश मिली थी।
21: SIA ने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी पेश किया, और वो क्या था? वो था इंडिया टुडे आज तक ग्रुप का जो न्यूज ट्रैक था 1990 में, जो उस समय न्यूज ट्रैक के पत्रकारों ने जो रिपोर्टिंग की, उसका एविडेंस सामने रखा गया। और खासतौर पर जो JKLF का तबका जो आतंकी कमांडर था फारूक अहमद डार उर्फ बिटा कराटे, उसका जो इंटरव्यू न्यूज ट्रैक ने किया था, वो वीडियो भी अदालत में पेश किया गया है। और इस वीडियो में फारूक अहमद डार ने साफ तौर पर कबूला था कि उसने 20 कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या की थी। अब कश्मीरी पंडित समुदाय की मांग है कि एक व्यापक तौर पर सभी मामलों में जांच होनी चाहिए ताकि वो तमाम दोषी जो है जिन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के ऊपर अत्याचार किया उनको सजा मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।
0: अब बात उस हत्याकांड की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। केतन मर्डर केस में आरोपी सिया और चेतन की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब अगली सुनवाई होनी है 3 जुलाई को। इन 4 दिनों में पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि केतन की हत्या के पीछे असली वजह थी क्या।
1: लोहगढ़ किले का ये वही हिस्सा है जहाँ केतन को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया गया। वो 340 फीट गहरी खाई में गिरा और दम तोड़ दिया। उलझाऊ और सस्पेंस भरे सवालों के साथ पुलिस 28 जून को ठीक उसी खाई के पास पहुंची। पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। पुलिस ने सिया से जाना कि 18 जून को इस खाई के पास और कौन कौन था, चेतन के साथ उसकी क्या बातें हुई, क्या दोनों में किसी बात को लेकर नाराजगी थी, चेतन को सिया ने मौके पर कितनी देर पहले बुलाया था। ऐसे कई सवाल सिया से किए गए और इसी बीच आता है अब तक का सबसे अहम सस्पेंस। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट करते हुए सिया से कहा कि वो पुतले को खाई में धक्का दे। सिया ने ही पुतले को खाई में धकेला।
3: जो पुतला बनाया गया था वो केतन अग्रवाल के जैसा था, उसी के वजन का था, ताकि वो नीचे जाने के बाद ये पता चले और ये फाइनलाइज हो सके कि किस तरीके का इम्पैक्ट था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या थे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इम्पैक्ट के बाद पुतले के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो देखना पुलिस चाह रही थी।
1: खुलासे के मुताबिक सिया और चेतन ने हत्या की गहरी साजिश रची। उसी दौरान तय हुआ था कि किले में ऊंचाई पर पहुंचकर सिया अचानक बैठेगी। ये संकेत होगा कि अब केतन को खाई में धक्का देना है। अब पुलिस की तैयारी है कि क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाए और अब की बार पुलिस चेतन से पुतले को धक्का देने को कहेगी। पुणे पुलिस की कोशिश है कि सिया और चेतन के गुनाहों से धुले सुराग रिक्रिएशन के जरिए हासिल किए जाए, उसे वेरीफाई किया जाए और मामले को अंजाम तक पहुँचाया जाए। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
0: कराची ब्लास्ट में अपने रेंजर्स की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बीती रात भीषण बमबारी की। रिहायशी इलाकों में की गई इस बमबारी में औरतों और बुजुर्गों और बच्चों समेत 25 लोगों की जान ले ली गई है।
22: ये फूल से बच्चे पाकिस्तान की कायराना हरकत के शिकार हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में इन बच्चों, बुजुर्गों और औरतों पर बम बरसाए हैं। पक्तिता प्रांत के गयान जिले, पक्तिता प्रांत के समकानी जिले और कुनार प्रांत के मनुगई जिले में नागरिक इलाकों पर हवाई हमले किए। अफगानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिक मारे गए, जिनमें कई छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। अपनी जमीन पर आतंकी पाल रहा पाकिस्तान एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर अफगानी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर बम बरसा रहा है। क्या आसिम मुनीर की नजर में ये लड़का TTP का आतंकी है? क्या ये दुदमुही बच्ची दहशतगर्द है? क्या ये घायल लड़की कराची ब्लास्ट की मास्टरमाइंड है? और क्या ये लहूलुहान बच्चियां, बुजुर्ग और महिलाएं आतंकी नजर आती हैं? अगर नहीं तो ये साफ है कि पाकिस्तान युद्ध अपराध कर रहा है और इस अपराध का जिम्मेदार आसिम मुनीर नहीं तो और कौन है, जिसने 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिकों को मार डाला। पाकिस्तान गाजा पर इजरायली बमबारी के बाद छाती पीटने लगता है, मगर कल रात उसने सोची समझी सैन्य बर्बरता दिखाते हुए कुख्यात डबल टैप रणनीति का इस्तेमाल किया और 35 बेकसूरों को मार डाला। आज तक देरो।
0: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी केस में एसबीआई सहित 6-7 बैंकों को नोटिस। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और सभी वित्तीय लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड तलब। सभी आरोपियों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी। पीलीभीत में कहा यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा होगा। कर्फ्यू गुंडागर्दी से लोगों का जीना होगा हराम। आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर। नौकरशाही में प्रक्रिया के बदलाव के भी संकेत। बिहार के भोजपुर में भरत एनकाउंटर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने की है सीबीआई जांच की मांग। और यूपी के शामली में इस्लाम कबूलने वाले आयुष मलिक ने फिर से हिंदू धर्म अपनाया। कहा परिवार को परेशान देकर लिया फैसला। पिता बोले मुस्लिम लड़की ने किया था ब्रेन वॉश। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 70-80 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल है चंपत राय को लेकर, जिन्हें चढ़ावा चोरी की बात 4 जून को ही पता चल गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी भी बड़ी गड़बड़ी से इनकार करते रहे। सवाल है क्यों?
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं।
2: सात जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय चढ़ावा चोरी पर पहली बार और आखिरी बार बोले।
1: सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है।
2: लेकिन इससे चौंकाने वाली बात यह कि इस बयान के 2 दिन पहले ही ट्रस्ट के सभी बड़े पदाधिकारियों को पता चल चुका था कि चढ़ावे का गबन राम मंदिर के भीतर किया जा रहा है। ये रहा इसका सबूत इस सीसीटीवी वीडियो में। जिस शख्स को आप बैग लिए देख रहे हैं, इसका नाम है अविनाश शुक्ला, जो चढ़ावा चोरी गैंग का अहम सदस्य, लूटकांड का अहम किरदार। इसके हाथ में जो काले रंग का बैग दिखता है, कहा जा रहा है कि चोरी की रकम इसी में, जो सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे से उड़ाई गई। सूत्रों की माने तो 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे। छापेमारी जब हुई तो अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5,00,000 कैश बरामद हुआ, जो इस बैग में रखा हुआ है।
3: इस वक्त मौजूद है मुख्य आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला के घर के बाहर, जहां से 5 जून की रात को ट्रस्ट के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में अनधिकारिक तौर पर एक मोटी रकम बरामद की, जो कि सीसीटीवी में कैद है। ये वही घर है मेरे पीछे जो अविनाश शुक्ला है, जहां पर वह किराए पर रहा करता था। कल अविनाश शुक्ला के भाई से पुलिस ने यहीं पर लाकर पूछताछ की।
2: राम भक्त पहले से ही चढ़ावा चोरी के आरोपों से दंग है, लेकिन ये नया सच और खुलासा ज्यादा विचलित करने वाला है, क्योंकि इसने नए सिरे से ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया।
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला का 5 जून का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को इस चढ़ावा चोरी की जानकारी पहले से थी और इसकी एफआईआर दर्ज कराने में ट्रस्ट ने देरी की। यानी अविनाश शुक्ला समेत सभी आरोपी लगभग ट्रस्ट की निगाह में आ गए थे, और अविनाश शुक्ला का यह सीसीटीवी साफ बता रहा है कि कैसे एक सफेद गाड़ी में पुलिसकर्मी व अन्य लोगों की मदद से अविनाश शुक्ला को बैठाया जा रहा है। उनके पास से एक काले बैग में कहा गया कि 5,00,000 रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई।
2: बड़ा सवाल यह है कि जब ट्रस्ट को पता चल गया था कि चढ़ावे का गबन हो रहा है, तो वो मामले को रफा दफा करने या मामले को शांत कराने में क्यों जुटा? आरोपी के घर चढ़ावे की रकम मिलने के तुरंत बाद एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई? उल्टा चंपत राय वीडियो जारी करके इस मामले से क्या गुमराह नहीं करते दिखे?
1: कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
0: तो चंपत राय कह रहे थे कि चढ़ावा चोरी मामले में कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। इसके बाद चंपत राय ना कुछ बोले ना ही सामने आए, लेकिन चढ़ावा चोरी के मामले ने उन्हें और उनके साथियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
3: 4 जून को ट्रस्ट के लोगों को चोरी का पता चला, जिसके बाद 5 जून को चंपत राय के आदेश पर ट्रस्ट के लोग यहां पर आते हैं और अविनाश शुक्ला के पास से एक मोटी रकम बरामद करते हैं। सीसीटीवी में बैग लेते हुए अविनाश शुक्ला और ट्रस्ट के लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 8 जून को चंपत राय ने यह बयान दिया था कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। 7 जून को ये पूरा मामला सार्वजनिक हुआ था, तो कैसे बिना ऑफिशियल कंप्लेंट के, बिना FIR फाइल हुए एक पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और जो रकम है उसको बरामद किया जा रहा था।
2: तो इस नए खुलासे ने ट्रस्ट और चंपत राय को लेकर कई गंभीर और नए सवाल पैदा कर दिए, क्योंकि ट्रस्ट को 5 जून को ही चढ़ावा चोरी का पता चल गया। इसके बावजूद 7 जून को पहली बार ये मामला जब सार्वजनिक रूप से बाहर आया, उसके बाद 13 जून को यूपी सरकार ने SIT बनाई, 25 जून को FIR दर्ज हुई, 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, 26 जून को आरोपियों को 3 दिन के लिए जेल भेजा गया। इसी दिन चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, यानी ट्रस्ट को पता लगने के 20 दिन बाद FIR दर्ज हुई और 21 दिन बाद जाकर चंपत राय ने पद छोड़ा। अब सवाल है कि चुप्पी साधे बैठे चंपत राय ने पुलिस जांच में देरी क्यों की, जब 5 जून को ट्रस्ट और पुलिस दोनों को चढ़ावा चोरी की जानकारी और सबूत मिल गए थे, तो फिर फौरन FIR क्यों नहीं दर्ज कराई गई? मामले को दबाने की कोशिश क्यों हुई?
3: ये बताया जा रहा है कि इस पर किसी भी तरीके से किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई, शिकायत नहीं दर्ज कराई गई और ये पूरी घटना होने के 20 दिन बाद जाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस CCTV ने ट्रस्ट के लोगों के उन दावों की पोल खोल दी है जिसमें वह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी पहले नहीं थी।
5: पहले से पकड़ लिया जाके पैसा बरामद चंपत राय जी, तो FIR क्यों नहीं की? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सोचे जो है समझी षड्यंत्र के तहत बड़ों को बचाने के लिए इन लोगों को मोहरा बना के ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। अभी हम मॉनिटरिंग भी डालेंगे, अभी हम सारा काम करेंगे, लेकिन उन पहलुओं को हम देख ले, हमारी कमेटी है बैठ के काम करेगी, बख्शा कोई नहीं जाएगा।
2: पहले तो चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावा चोरी होता रहा और जब उन्हें इसका पता चला तब भी उन्होंने फौरन इस मामले में FIR दर्ज नहीं करवाई, यानी चंपत राय ने अपनी पद की गरिमा के हिसाब से काम नहीं किया। सवालों में घिरे चंपत राय का पुलिस ने बयान दर्ज किया है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा सकती है। इधर पुलिस ने SBI के अयोध्या धाम ब्रांच जाकर आरोपियों के खातों की जांच की, ताकि चढ़ावा चोरी का पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल किया गया पता लगाया जा सके। वहीं अयोध्या के वकीलों ने ऐलान किया कि कोई भी चढ़ावा चोरी करने वाले आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा।
6: वकील लोग डिफेंस की ओर से वकील नहीं होंगे, अगर होंगे तो संघ में परमिशन लेंगे और 5 लाख रुपए वो पर हेड जमा करेंगे मोकिलों से लेके अपने और वकालत करेंगे। उस पैसे से प्रोसिक्यूशन की पैरवी होगी और उस प्रोसिक्यूशन की पैरवी में मुकदमा इन तीनों लोगों के खिलाफ दर्ज कराने की पूरी कोशिश की जाए।
7: बड़े आरोपियों सबको बचा लिया गया है, कोई चौकीदार है, कोई रिक्शा वाला है, कोई ड्राइवर है, कोई पोचाला है, सबको फंसाया गया है। इतना बड़ा कांड हो जाए, 40 से 70 बार घोटाला हो जाए, किसी बड़े आदमी पता न चले। मैं अधिवक्ता संघ का महामंत्री हूँ, मेरे नाक के नीचे हमारे बाबू लोग चोरी कर ले उनको पता न चले, तो भाई गले से उतरने वाली बात नहीं है।
5: उसके अलावा जो लोग हैं जिनको आप लोग बड़े लोग कह रहे हैं, उनको जो हम लोगों को जो ये लग रहा है कि SIT से पुलिस से जो संघ का हमारे प्रस्ताव है उनको जो बचाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी सारी लिखा पड़ी जितनी कानूनी पहलू हो सकते हैं सब संघ करेगा। वो चाहे चंपत राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, गोपाल राव जी, अगर शासन प्रशासन कहीं से भी उनको बचाने का प्रयास करता है तो हम लोग उनके खिलाफ भी पैरवी करेंगे।
2: चढ़ावा चोरी की जांच भले ही तेजी से आगे बढ़ रही हो, 8 आरोपियों को अब 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा सवालों में अब भी चंपत राय हैं, जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, जो केवल पद छोड़कर बचे हुए हैं।
0: और यह खबर है बंगाल से, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी सियासी हलचलें हैं। शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान कर दिया है कि 2 जुलाई को कैबिनेट में UCC के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। अगस्त में टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर बिल लाया जाएगा।
8: आगामी 2 तारीख के कैबिनेट बिलेर खसड़ा अनुमोदन आनते चले আমরা এই বিলে সোর্স বেস এন্ড রিডিং অ্যাপ্রোচ, গুজরাট ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল 2026, দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড আসাম 2026, দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড অব উত্তরাখণ্ড 2024, একে বেস করে আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল আনতে চলেছি, যেখানে এই রাজ্যে একটা আইন চলবে, ধর্মের ভিত্তিতে দুটো বিল চলবে না।
0: क्या 2027 यूपी चुनाव की लड़ाई अब विचारधारा पर कब्जे की जंग बनती जा रही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में राम मनोहर लोहिया के परिवार से मुलाकात की और इसी के बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या अब बीजेपी अगले साल होने वाले यूपी चुनाव लोहिया वाला दाव खेलने वाली है। वहां मुद्दा बड़ा इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा से खुद को लोहिया की विचारधारा का सबसे बड़ा पैरोकार बताते आए हैं।
9: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनकी विचारधारा पर हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के संकल्पों के, उनके आदर्शों पे, उनकी बताई हुई नीतियों पे समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं।
10: ना जाने कितनी बार अखिलेश यादव ने खुद को और अपनी समाजवादी पार्टी को राम मनोहर लोहिया और उनकी विचारधारा से जोड़ा है। बार बार लोहिया के विचारों से स्वयं को प्रेरित बताया है। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में अब साल से भी कम का वक्त बचा है और इस अंतराल में लोहिया नाम की गूंज यूपी में और तेज होने वाली है। जी हाँ, और यूपी की इसी चुनावी बिसात में अब बीजेपी ने एक नया दांव खेलकर समाजवादी पार्टी को चौंका दिया है। एक तरफ अखिलेश राम मंदिर में छड़वा चोरी पर बीजेपी को घेर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राम मनोहर लोहिया के परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात कर रही है। चुनावी साल में बीजेपी ने मंडल और कमंडल को एक साथ साधना शुरू कर दिया है। मंडल के मसीहा कहें या पिछड़ों के सबसे बड़े विचारक राम मनोहर लोहिया के घर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। इस दौरे का संकेत और संदेश सीधे सीधे अखिलेश तक है कि अब विचारधारा के तौर पर भी सेंधमारी की तैयारी है।
11: मोदी जी के 12 साल पूरा होने पे जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा, जो विशेष जनसंपर्क अभियान, उसके साथ आज मेरा सौभाग्य है कि लोहिया जी के परपोतों से, उनके बेटों से मेरी मुलाकात हुई और पूरा एक पारिवारिक बैठना हुआ, सबसे बहुत अच्छा लगा।
12: सुना है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोहिया जी के घर गए थे, वो पार्टी जो जिसके विचार और नीत नफरतवादी है, जो समाज के अंदर में नफरत की बात करते हैं, समाज को डिवाइड करने की बात करते हैं। पहले अपने विचार बदलिए। समाजवादी पार्टी लोहिया जी के आदर्श आचरण को अपनाती है, लोहिया जी के बचाए हुए रास्ते पे चलती है, समाज को जोड़ने की बात करती है। किसी के घर जाने से कुछ नहीं होता है, आपको अपनी नीति और विचार बदलने की जरूरत है।
10: एक तरफ प्रयागराज में सीएम योगी समाजवादी पार्टी को अयोध्या और मथुरा पर ललकार रहे थे तो दूसरी ओर पंकज चौधरी लखनऊ में लोहिया के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे। चर्चा तो ये भी चल निकली कि बीजेपी कहीं राम मनोहर लोहिया के परिवार वालों को चुनावी राजनीति में लाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, कहीं बीजेपी अखिलेश के उस हथियार को ही कुल तो नहीं करना चाहती है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। अखिलेश को परेशानी इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि राम मनोहर लोहिया का परिवार पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी कर रहा है।
13: ले जी के विरुद्ध में तो कुछ नहीं कहना है, जो आदमी अपना जैसे करते हैं अपने अपने हिसाब से हर आदमी करता है। लेकिन पंकज चौधरी जी आए, उनकी देखिए माननीय प्रधानमंत्री के कहने से आए, उन्होंने व्यक्तिगत काल किया था तो हम लोगों को अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों को बरसों से प्राप्त है। और जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी थे तब भी हमारी उनकी पारिवारिक संबंध थे और जब से वो पीएम बने हैं उनमें खूबियां हैं।
10: राम मनोहर लोहिया मारवाड़ी वैश्य यानी ओबीसी वर्ग से थे और बीजेपी भी जानती है कि बिना ओबीसी समाज को साधे बगैर 2027 चुनाव में उनका कल्याण होने वाला नहीं है। इससे पहले यूपी चुनाव के लिए बनी विशेष टीम में ओबीसी को तरजीह दी और अब लोहिया परिवार से मुलाकात।
14: प्रदेश अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मिलने पहुंच गए। ये सब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई ऐसी एक दूसरे में उलझ गई है कि दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी हैं। कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों को उनके वैचारिक प्रणेताओं के जरिए साधने की कोशिश कर रही है।
10: बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पर ही जोर नहीं दिया है, बल्कि क्राइम रेट को लेकर भी एसपी कार्यकाल को घेरना भी शुरू कर दिया है।
15: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी।
10: 2027 को लेकर बीजेपी सिर्फ राम भरोसे नहीं है, उसे मालूम है कि धर्म का मुलम्मा समाज के सभी तबकों का वोट नहीं दिला सकता, इसीलिए अब बीजेपी समाजवादी पार्टी की तथा कथित विचारधारा में भी सेंधमारी करने में जुट गई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और यह खबर है बंगाल से, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी सियासी हलचलें हैं। शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान कर दिया है कि 2 जुलाई को कैबिनेट में यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। अगस्त में टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर बिल लाया जाएगा।
8: आगामी 2 तारीख के कैबिनेट बिलेर खसड़ा अनुमोदन आनते चले बिले सोर्स बेस एंड रीडिंग अप्रोच गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026, द यूनिफॉर्म सिविल कोड आसाम 2026, द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड 2024, एक बेस करे आम्रा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आनते चले जेखने राज्य एक आईन चलबे धर्मेर भित्तिते दुटो बिल चलबे ना।
0: देश में पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला है महाराष्ट्र के टीईटी परीक्षा का, जिसका मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता है, और ये वही बिजेंद्र गुप्ता है जिसका 2 साल पहले स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने किया था। आज तक के कैमरे में बिजेंद्र गुप्ता ने खुलेआम कहा था कि पेपर लीक करवाना उसका धंधा है और जेल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। महाराष्ट्र पुलिस इसी बिजेंद्र गुप्ता की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी कर रही है।
16: लगभग 1028 अलग अलग सेंटर्स पे ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन आज इस प्रकार से ये पेपर लीक हो गया है।
17: उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है। 4 सेट मिले हैं, जो बातचीत चल रही थी ये ट्रैप में, उनका 1.5 करोड़ की डिमांड थी। वो 1.5 करोड़ में पेपर बेचने के बाद जो लेने वाला है वो आगे अलग अलग जो बायर है उनको पेपर देने का उनकी सिस्टम थी।
18: महाराष्ट्र में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के करीब 4.5 लाख परीक्षार्थियों के साथ हुए इस धोखे का, इस अन्याय का जिम्मेदार ये चेहरा है, जिसे आज तक ने 2 साल पहले ही ढूंढ निकाला था। नाम है बिजेंद्र गुप्ता। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा का पर्चा लीक करने वाला ये माफिया बेफिक्र होकर घूम रहा है। वहीं महाराष्ट्र के लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंता में डूबे हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ये कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। टीईटी पेपर लीक से पूरी राज्य सरकार निशाने पर है। पेपर लीक की बीमारी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गई, देश का कोई भी राज्य, कोई भी परीक्षा, कुछ भी फुल प्रूफ नहीं है। अब सवाल है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुकते, तो इसका जवाब महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड है, जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार का रहने वाला पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता ही महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। बिजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पटना और समस्तीपुर समेत कई राज्यों में महाराष्ट्र पुलिस छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया वो सभी इसी पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता के इशारे पर काम कर रहे थे।
19: महाराष्ट्र के 5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जिस पेपर लीक माफिया को मुंबई पुलिस तलाश रही है, उस पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन आज तक नहीं किया था। वो साल था 2024 जब नीट पेपर लीक हुआ था। मैंने ही बिहार जाकर पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता को बेनकाब किया था। मैंने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें पेपर माफिया विजेंद्र गुप्ता ने पेपर माफियाओं के एक से बड़े एक राज खुले थे। विजेंद्र गुप्ता ने स्टिंग कैमरे में खुलासा किया था कि कैसे पेपर माफिया बेखौफ होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं।
18: तो अगर आपको लगता है कि देश में पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा, तो इसका जवाब विजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का बुलंद हौसला है, जिन्हें कानून का कोई डर नहीं। तभी तो वो खुलेआम कहते फिरते हैं कि यही खेल करेंगे, चाहे कितनी बार भी जेल चले जाएं।
20: नई बार जेल जाने का था, जेल करोगे फिर परसों से यही खेल करेंगे।
21: आप कैसे यूपीएससी वाला किए थे, वो कौन सी कंपनी?
20: एमपीपीएससी।
21: हाँ,
20: इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होंगे।
21: किसका नाम?
20: बेदीराम जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे, विद्यार्थी लाइफ था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गए साथ में, धरा गए जेल चल गए।
18: जब तक विजेंद्र गुप्ता जैसे पेपर लीक माफियाओं का ढंग से इलाज नहीं होता, ये पेपर लीक वाली बीमारी रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, चाहे कोई भी राज्य हो, किसी की भी सरकार।
22: पेपर फुटले तर फुटू दे, विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली तर करू दे। आजच ठाण्यामध्ये एक पेपर फुटलाय टीईटीचा, कोणालाच काही पडलेलं नाहीये। नीटचा पेपर फुटला, धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा तर दिलाच पाहिजे।
23: ये सरकार की नाकामयाबी आहे, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है, तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
24: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
18: महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का खुलासा वहाँ की पुलिस ने ही किया है। परीक्षा से पहले भिवंडी पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग दिल्ली और हरियाणा से मुंबई आकर टीईटी के पेपर बेचने का सौदा कर रहे हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर मुंबई से तीन लोग आकाश, राजीव और धीरज को गिरफ्तार किया, जिनसे लीक पेपर बरामद हुआ, जिसने आज तक से कही गई पेपर लीक माफिया विजेंद्र की बात को 100% सच साबित कर दिया है कि पेपर लीक नहीं रुकने वाला है।
25: ये संजीव मुखिया अभी तो भगा हुआ है ना, ये
20: पकड़ाएगा भी
25: क्यों? नहीं, मैं पहले भी जेल जा चुका है ना,
20: पैसा कमाया बस इधर एक साल का। एक साल पहले
25: उसके दीवी इलेक्शन में तो लड़ी थी,
20: उस इलेक्शन में ही तो बर्बाद हुआ, लोगों से एडवांस उठाया बेटा, वो सब दिन नीट का ही काम करता है, 10-20 कहीं ना कहीं से सेंटर फेंटर से करके उस साल में 2-3 करोड़ रुपया, इस बार उसको 200-400 करोड़ रुपया कमाने का शौक था।
18: पिछले दो दशक में ऐसी परीक्षाएं जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोग बैठे हों, उनमें 45 से ज्यादा पेपर लीक के मामले हुए और सिर्फ 18 लोगों को सजा मिली। सबसे बड़ी बात, ये सभी सजाएं सिर्फ 2 मामलों से जुड़ी, जिनमें से एक साल 2010 का रेलवे भर्ती घोटाला है। बाकी बचे 95% से ज्यादा मामलों में सालों से अदालती सुनवाई हो रही है, मामले लंबित पड़े हैं और पेपर लीक के आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम विजेंद्र गुप्ता का है, जो आज तक के खुफिया कैमरे में लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ पर इतराता सुना और देखा गया। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक से ये माफिया एक बार फिर सुर्खियों में है। अब देखना है कि क्या महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पेपर लीक के इस माफिया को रिकॉर्ड टाइम में पकड़कर कड़ी सजा दिलाकर कोई नजीर पेश कर पाती है, या फिर पेपर लीक का माफिया इस बार भी चुनौती देकर पेपर लीक कराता ही रहेगी। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की, जिन्हें 36 साल के बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है और श्रीनगर के टाडा कोर्ट में चार्जशीट भी दायर की है।
26: छत्तीस बरस बाद जागी है इंसाफ की उम्मीद। 36 बरस बाद कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। जी हां, जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है। टाडा कोर्ट में 700 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट दायर कर दी गई है।
1: कोर्ट में जो है ट्रायल होना है, यानी कि कोर्ट में अब ट्रायल होगा, उसके बाद ही जो है निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया है इस चार्जशीट में, जिसमें JKLF का खूंखार आतंकी कमांडर यासीन मलिक भी शामिल है। और SIA ने साफ तौर पर कहा है कि यासीन मलिक ही इसमें मुख्य अभियुक्त है। और जो इस पूरे मामले में जो 5 अभियुक्तों के नाम रखे गए हैं, उनमें से 3 जो है उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। एक आतंकी जो है वो एब्सकॉन्डिंग है, यानी कि वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर भाग गया था, वो वहीं पर छिपा हुआ है। और यासीन मलिक जो है इस समय तिहाड़ जेल में है।
26: 18 अप्रैल 1990 को श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी स्किम्स परिसर के पास से JKLF के आतंकवादियों ने स्टाफ नर्स सरला भट्ट का अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद सरला से मारपीट और गैंग रेप किया गया। इसके बाद श्रीनगर की उमर कॉलोनी यानी मालबाग में ऑटोमेटिक राइफल से गोली मारकर सरला की हत्या कर दी गई। डाउनटाउन श्रीनगर में उनकी क्षत विक्षत लाश मिली थी।
1: SIA ने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी पेश किया, और वो क्या था, वो था इंडिया टुडे आज तक ग्रुप का जो न्यूज ट्रैक था 1990 में, जो उस समय न्यूज ट्रैक के पत्रकारों ने जो रिपोर्टिंग की, उसका एविडेंस सामने रखा गया। और खासतौर पर जो JKLF का तबका जो आतंकी कमांडर था फारूक अहमद डार उर्फ बिटा कराटे, उसका जो इंटरव्यू न्यूज ट्रैक ने किया था, वो वीडियो भी अदालत में पेश किया गया है। और इस वीडियो में फारूक अहमद डार ने साफ तौर पर कबूला था कि उसने 20 कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या की थी। अब कश्मीरी पंडित समुदाय की मांग है कि एक व्यापक तौर पर सभी मामलों में जांच होनी चाहिए, ताकि वो तमाम दोषी जो है जिन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के ऊपर अत्याचार किया, उनको सजा मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।
0: अब बात उस हत्याकांड की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। केतन मर्डर केस में आरोपी सिया और चेतन की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब अगली सुनवाई होनी है 3 जुलाई को। इन 4 दिनों में पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि केतन की हत्या के पीछे असली वजह थी क्या।
2: लोहगढ़ किले का ये वही हिस्सा है जहां केतन को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया गया। वो 340 फीट गहरी खाई में गिरा और दम तोड़ दिया। उलझाऊ और सस्पेंस भरे सवालों के साथ पुलिस 28 जून को ठीक उसी खाई के पास पहुंची। पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। पुलिस ने सिया से जाना कि 18 जून को इस खाई के पास और कौन कौन था, चेतन के साथ उसकी क्या बातें हुई, क्या दोनों में किसी बात को लेकर नाराजगी थी, चेतन को सिया ने मौके पर कितनी देर पहले बुलाया था। ऐसे कई सवाल सिया से किए गए। और इसी बीच आता है अब तक का सबसे अहम सस्पेंस। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट करते हुए सिया से कहा कि वो पुतले को खाई में धक्का दे। सिया ने ही पुतले को खाई में धकेला।
3: जो पुतला बनाया गया था वो केतन अग्रवाल के जैसा था, उसी के वजन का था, ताकि वो नीचे जाने के बाद ये पता चले और ये फाइनलाइज हो सके कि किस तरीके का इम्पैक्ट था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इम्पैक्ट के बाद पुतले के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो देखना पुलिस चाह रही थी।
2: खुलासे के मुताबिक सिया और चेतन ने हत्या की गहरी साजिश रची। उसी दौरान तय हुआ था कि किले में ऊंचाई पर पहुंचकर सिया अचानक बैठेगी। ये संकेत होगा कि अब केतन को खाई में धक्का देना है। अब पुलिस की तैयारी है कि क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाए और अब की बार पुलिस चेतन से पुतले को धक्का देने को कहेगी। पुणे पुलिस की कोशिश है कि सिया और चेतन के गुनाहों से धुले सुराग रिक्रिएशन के जरिए हासिल किए जाए, उसे वेरीफाई किया जाए और मामले को अंजाम तक पहुँचाया जाए। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
0: कराची ब्लास्ट में अपने रेंजर्स की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बीती रात भीषण बमबारी की। रिहायशी इलाकों में की गई इस बमबारी में औरतों और बुजुर्गों और बच्चों समेत 25 लोगों की जान ले ली गई है।
4: ये फूल से बच्चे पाकिस्तान की कायराना हरकत के शिकार हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की रिहायशी इलाकों में इन बच्चों बुजुर्गों और औरतों पर बम बरसाए हैं। पक्तिता प्रांत के गयान जिले, पक्तिता प्रांत के समकानी जिले और कुनार प्रांत के मनुगई जिले में नागरिक इलाकों पर हवाई हमले किए। अफगानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिक मारे गए, जिनमें कई छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। अपनी जमीन पर आतंकी पाल रहा पाकिस्तान एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर अफगानी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर बम बरसा रहा है। क्या आसिम मुनीर की नजर में ये लड़का टीटीपी का आतंकी है? क्या ये दुदमुही बच्ची दहशतगर्द है? क्या ये घायल लड़की कराची ब्लास्ट की मास्टरमाइंड है? और क्या ये लहूलुहान बच्चियां, बुजुर्ग और महिलाएं आतंकी नजर आती हैं? अगर नहीं तो ये साफ है कि पाकिस्तान युद्ध अपराध कर रहा है, और इस अपराध का जिम्मेदार आसिम मुनीर नहीं तो और कौन है, जिसने 35 से ज्यादा बेकसूर नागरिकों को मार डाला। पाकिस्तान गाजा पर इजरायली बमबारी के बाद छाती पीटने लगता है, मगर कल रात उसने सोची समझी सैन्य बर्बरता दिखाते हुए कुख्यात डबल टैप रणनीति का इस्तेमाल किया और 35 बेकसूरों को मार डाला। आज तक विरोध।
0: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: चढ़ावा चोरी केस में एसबीआई सहित 6-7 बैंकों को नोटिस। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े खातों और सभी वित्तीय लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड तलब। सभी आरोपियों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी। पीलीभीत में कहा यूपी में साइकिल चलेगी तो दंगा होगा। कर्फ्यू गुंडागर्दी से लोगों का जीना होगा हराम। आज शाम सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक। प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर जोर। नौकरशाही में प्रक्रिया के बदलाव के भी संकेत। बिहार के भोजपुर में भरत एनकाउंटर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने की है सीबीआई जांच की मांग। और यूपी के शामली में इस्लाम कबूलने वाले आयुष मलिक ने फिर से हिंदू धर्म अपनाया। कहा परिवार को परेशान देकर लिया फैसला। पिता बोले मुस्लिम लड़की ने किया था ब्रेन वॉश। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 70-80 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल है चंपत राय को लेकर, जिन्हें चढ़ावा चोरी की बात 4 जून को ही पता चल गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी भी बड़ी गड़बड़ी से इनकार करते रहे। सवाल है क्यों?
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं।
2: सात जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय चढ़ावा चोरी पर पहली बार और आखिरी बार बोले।
1: सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है।
2: लेकिन इससे चौंकाने वाली बात यह कि इस बयान के 2 दिन पहले ही ट्रस्ट के सभी बड़े पदाधिकारियों को पता चल चुका था कि चढ़ावे का गबन राम मंदिर के भीतर किया जा रहा है। ये रहा इसका सबूत इस सीसीटीवी वीडियो में। जिस शख्स को आप बैग लिए देख रहे हैं, इसका नाम है अविनाश शुक्ला, जो चढ़ावा चोरी गैंग का अहम सदस्य, लूटकांड का अहम किरदार। इसके हाथ में जो काले रंग का बैग दिखता है, कहा जा रहा है कि चोरी की रकम इसी में, जो सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे से उड़ाई गई। सूत्रों की माने तो 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ही ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंचे। छापेमारी जब हुई तो अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5 लाख कैश बरामद हुआ, जो इस बैग में रखा हुआ है।
3: इस वक्त मौजूद है मुख्य आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला के घर के बाहर,